0: बोले बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा, राजनीति में ये चलता है, पार्टी का फैसला सही, मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिले। आमिर खान की तीसरी शादी पर भड़के नीतीश राणे, बताया लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर, युवाओं से की आमिर की फिल्में सोच समझकर देखने की अपील। वियतनाम में भारतीय पर्यटकों से भरी नाव पलटी, अब तक 15 लोगों की मौत, फुकोक द्वीप के पास हादसा, राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने जताई संवेदना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जारी किया आदेश, कहा अगर मेरी हत्या हुई तो ईरान को मिटा दें, जेडी विंस को सौंपी फैसला लेने की जिम्मेदारी। अब बात करते हैं यूपी में चुनाव से पहले छिड़े धर्म युद्ध की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर चढ़ावा चोरी ने पूरी तरह से सियासी रंग ले लिया है, जिसके बाद अब योगी आदित्यनाथ विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को पिछला इतिहास गिना रहे हैं, तो वहीं विपक्ष राम मंदिर के मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा।
1: यूपी में राम मंदिर से शुरू हुआ घमासान अब धर्म की राजनीति तक पहुंच गया है। योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी का इतिहास खंगाल रहे हैं।
2: मंदिरों पे कब्जा करवाते थे लोग, मंदिरों पे कब्जा करवाते थे, और अब कब्जा नहीं, अब उन मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है, और पहले मंदिरों के नाम पर आने वाला पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर खर्च हो जाता था। यही तो करती थी समाजवादी पार्टी।
1: कल योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में इफ्तार का जिक्र करके समाजवादी पार्टी को घेरा था, तो आज विपक्ष योगी पर गुमराह करने का आरोप लगा रहा है।
3: कैसे नमाज पढ़ सकता है कोई आदमी वहां? ये एजेंडा जो है ये तमाम चीजों से ध्यान भटकाने का है। कैसे नमाज पढ़ सकता है? हम तो कह रहे कि आप सड़क पर नमाज ना पढ़े, चूंकि सड़क सरकार की और सरकार मना कर रही है तो आपकी नमाज जायज नहीं होगी। मैं तो बार बार बोलता हूं, जिस प्रॉपर्टी का ओनर अगर उसको इजाजत नहीं देता तो वहां नमाज ही नहीं हो सकती।
1: 2027 के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा अब थमता नहीं दिख रहा है। इस बीच राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के कलंक पर अब समिति से जुड़े लोग दुख जता रहे हैं।
4: राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है, व्यवस्था में सुधार होगा, मुझे पूरा विश्वास है।
1: एक और ताबड़तोड़ जांच और एक्शन जारी है, तो वहीं राम भक्तों का भरोसा जीतने की कोशिश भी की जा रही है। चढ़ावा विवाद के बीच राम मंदिर ट्रस्ट जल्द ही सीईओ की नियुक्ति करने जा रहा है, जिसके लिए समिति का गठन भी कर दिया गया है। सीईओ को मंदिर के प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जिसका उद्देश्य मंदिर के संचालन को अधिक पेशेवर, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। इसके साथ ही सीईओ चढ़ावे के प्रबंधन, श्रद्धालुओं की सुविधाओं, आधारभूत ढांचे के रखरखाव और प्रशासनिक व्यवस्था की भी निगरानी रखेंगे। साफ है कि एक ओर सरकार बार बार भरोसा जताने की कोशिश कर रही है कि वो भक्तों के साथ धोखा करने वालों को बख्शेगी नहीं, वहीं विपक्ष सरकार की पूरी जांच को कटघरे में खड़ा कर रही है। आज तक ब्यूरो।
0: राम मंदिर जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, और इस बीच में मंदिर प्रशासन के सामने चुनौती सिस्टम को सुधारने की भी है, जिस पर लगातार फैसले लिए जा रहे हैं।
1: चढ़ावा चोरी के गंभीर आरोपों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे सामने आते जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से अब सामने आया है कि मंदिर में काम करने वाले कुछ पूर्व सैनिकों पर कुछ भी बोलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके लिए बकायदा सभी पूर्व सैनिकों को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा गया था। कहा गया था कि कोई कुछ भी पूछे बोलना नहीं है। जिस मैसेज पर सवाल उठ रहे हैं उस मैसेज का स्क्रीनशॉट भी आज तक के पास मौजूद है। इसे साफ है कि चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद मामले को छिपाने की कोशिश की गई। इधर अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के दो और आरोपियों को पुलिस जल्द ही रिमांड पर लेगी। राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव से पुलिस पूछताछ करेगी। टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र की 7 दिनों की कस्टडी मांगी है।
5: अयोध्या पुलिस ने अब रामशंकर यादव, टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में 7 दिन की अर्जी डाली है। इन दोनों की पुलिस कस्टडी रिमांड बेहद अहम इसलिए हो जाती है

0: क्योंकि जहां रामशंकर यादव के पास डोनेशन बॉक्स की चाबियां होती थी, वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद उस कमरे के इंचार्ज थे जहां से चढ़ावा चोरी हो रहा था। ऐसे में इन दोनों से की गई पूछताछ से पुलिस पता लगाने की कोशिश में लगी है कि आखिर यह चोरी हो रही थी तो उनके संज्ञान में क्यों नहीं आई, पकड़ी भी गई तो क्यों उन पर कार्रवाई नहीं हुई।
1: इस बीच राम मंदिर में चढ़ावे की गणना के लिए नया टाइम टेबल लागू कर दिया गया है। पहले दो पालियों में होने वाली गिनती अब एक ही शिफ्ट में की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चढ़ावे की गिनती होगी। नई समय सारणी लागू होने के बाद कुछ गणना कर्मियों ने काम छोड़ दिया। उधर राम मंदिर में VIP पास की प्रक्रिया भी रोकी गई, क्योंकि जिन लोगों की ID का इस्तेमाल इस काम के लिए किया गया था उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में जारी घटनाक्रम के बीच गोपाल राव ने निर्मोही अखाड़ा पहुंचकर ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास से मुलाकात की। दोनों के बीच बंद कमरे में काफी देर तक एकांत में चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में ट्रस्ट से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। इस मुलाकात में ट्रस्ट के भीतर चल रहे विवादों के बीच डैमेज कंट्रोल की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हालांकि बैठक में इस चर्चा के संबंध में आधिकारिक रूप से कोई जानकारी साझा नहीं की गई। अयोध्या से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। यूपी में राम मंदिर पर घमासान जारी तो मध्य प्रदेश में लड़ाई बीजेपी बनाम बीजेपी की दिख रही है, जहां दतिया में हो रहे उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा और इसके बाद से कार्यकर्ता भड़क गए।
2: दतिया में टिकट को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा ऐसा फूटा कि वो अपनी ही सरकार की पुलिस से भिड़ गए। मध्य प्रदेश के दतिया में 30 जुलाई को उपचुनाव है। बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। दतिया से आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाने की घोषणा होते ही नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। नेशनल हाईवे पर जाम लग गया, घंटों तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही, पुलिस पर पथराव हुए और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।
3: मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए, पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं ने, ऐसा कोई कार्य न करे।
2: आखिर दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्यों कटा? बताया जा रहा है कि दिल्ली के स्तर पर कराए गए सर्वे में नरोत्तम मिश्रा की स्थिति उम्मीद के मुताबिक मजबूत नहीं पाई गई। 2023 में बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिया था, लेकिन वो विधानसभा का चुनाव हार गए। केंद्रीय नेतृत्व ने स्थानीय संगठन और भविष्य की राजनीति स्वीकारता का भी आकलन कराया। इसमें नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी फिट बैठे, जिसके बाद उन्हें दतिया से टिकट दिया गया। बीजेपी ने एक ब्राह्मण नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर दूसरे ब्राह्मण आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है। इससे जातिगत और सामाजिक संतुलन बरकरार है। उधर पार्टी का संदेश साफ है कि बीजेपी हाईकमान फिलहाल झुकने के मूड में नहीं है।
4: पार्टी इस प्रकार के सोच समझ के निर्णय लेती है और इसलिए हम डंके की चोट जीतेंगे और नरोत्तम जी भी काम करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं नरोत्तम जी को जानता हूँ व्यक्तिगत।
5: नरोत्तम जी मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता, तो उनको कट्टू साइज तो करनी था, कर दिया।
2: दतिया में अब लड़ाई बीजेपी के सामने अपनों से है, जहां अभी तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। भोपाल से रविश पाल के साथ आज तक ब्यूरो।
1: इस पूरे मामले में हमारे सहयोगी रविश पाल ने खास बातचीत की नरोत्तम मिश्रा से।
6: फैसले को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि मान के तो चला जा रहा था कि आप ही इकलौते उम्मीदवार हैं वहां भाजपा के।
7: पार्टी का फैसला जो होता है वो ठीक ही होता है, उसको अच्छे रूप में ही लेना चाहिए, खराब रूप में नहीं लेना चाहिए, ऐसा मेरी मान्यता है।
6: आप के तो सकारात्मक भाव हैं, लेकिन आपके जो समर्थक थे जो महीनों से इंतजार कर रहे थे कि जो प्रकरण आया राजन भारती का, मामला कोर्ट में गया, फिर वहां से विधायक की गई, सदस्यता गई, सबको उम्मीद थी, लेकिन जब ये फैसला आया तो उनका गुस्सा साफ तौर पर सामने मिला। हाईवे जाम हो गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ हो गई, पथराव हो गया।
7: हाँ, छड़े का आवेश था, मैंने कल भी फिर उनसे निवेदन किया था, आज भी किया मैंने। जाम वाम की स्थिति नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ता वो पेट्रोल डाल रहे थे, वो मुझे दिखाए विजुअल फुटेज, मिट्टी का तेल डालते हुए का। धैर्य और संयम का समय यही होता है, यही परीक्षा की घड़ी होती है।
6: आप भोपाल जा रहे हैं तो भोपाल में कोई कार्यक्रम आला नेताओं से आपकी मुलाकात है क्या, प्रदेश अध्यक्ष से या मुख्यमंत्री से या किसी से?
7: अभी तो होगी तो बताऊंगा निश्चित। आप
6: आशुतोष तिवारी को आशीर्वाद रहेगा आपका?
7: सभी को क्यों नहीं रहेगा, कैसी बात कर रहे हैं।
6: हालांकि कैलाश जी ने कहा है कि वो बहुत अच्छे से जानते हैं आपको, उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूं नरोत्तम जी को, पार्टी के फैसले को हमेशा से स्वीकार करते हैं और हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहे हूँ।
7: बिल्कुल सही कहा, मैं सहमत हूँ।
6: आपके लिए भावुक क्षण है?
7: नहीं, राजनीति में ये सब चलने वाली चीज है।
6: लेकिन एक आखिरी सवाल नरोत्तम जी, चुनाव हुआ 2023 का, फिर लोकसभा आया, फिर राज्यसभा चुनाव आए, फिर कई दूसरी जिम्मेदारियां भी थी, हालांकि न्यू ज्वाइनिंग टोली का आपको संयोजक बनाया गया था, तब काफी लोग जुड़ के आए थे कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में, अब तो भाजपा में
7: लगातार लोकसभा राज्यसभा देखिए जो भी आप बात कर रहे हैं, ये अंतर्मुखी होकर स्वयं के चिंतन के लिए पार्टी अवसर दे रही है, हमें चिंतन करना भी चाहिए, अच्छी बात।
8: बांकीपुर उपचुनाव में टिकट को लेकर सियासत तेज है, जहां बीजेपी ने एक दिन के अंदर अपने प्रत्याशी को बदल दिया, जिस पर अब विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है।
1: बांकीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी की ओर से पहले अभिषेक कुमार का नामांकन हुआ, फिर एक दिन बाद ही अचानक अभिषेक ने नामांकन वापस ले लिया और नीरज कुमार को नया उम्मीदवार घोषित किया गया। जिस अभिषेक को सामान्य कार्यकर्ता बताकर बीजेपी ने नितिन नवीन वाली सीट के लिए प्रत्याशी बनाया, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को अपना प्रत्याशी बदलना पड़ा?
9: पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। मैं कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा।
1: अब सवाल ये कि जिस पारिवारिक मामले का हवाला देकर अभिषेक ने नामांकन वापस लिया, वही परिवार एक दिन पहले अभिषेक को आशीर्वाद देते हुए भावुक हो गया था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अभिषेक बंटी के पिता रविंद्र प्रसाद सिन्हा चारा घोटाले में दोषी रहे। वो मगध केमिकल्स कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी में मैनेजर थे। इस कंपनी पर चारा घोटाले में फर्जी बिल के आधार पर सप्लायर बनाने का आरोप था। फर्जी बिलों के जरिए सरकारी खजाने से पैसा निकालने का मामला रविंद्र प्रसाद सिन्हा पर चला था। सूत्रों के मुताबिक दूसरी बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि अभिषेक सिन्हा बंटी ने नामांकन पत्र में गलत जानकारी भी दी थी, उन्होंने पढ़ाई से जुड़ी कुछ जानकारियां छिपाई थी, ऐसे में भी अभिषेक बंटी का नॉमिनेशन रद्द होने की आशंका थी। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी ने कोई जोखिम नहीं लेते हुए अभिषेक बंटी का नामांकन वापस कराने का फैसला लिया, यानी पार्टी को डर था कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लालू परिवार को घेरते रहे, उसी भ्रष्टाचार में अभिषेक के पिता आरोपी हैं। लेकिन अब बीजेपी के नए प्रत्याशी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नीरज कुमार सिन्हा के उम्मीदवार घोषित होने के बाद बीजेपी ने उनका बायोडेटा जारी किया, इसमें उनकी जन्म तिथि 1 जुलाई 1994 बताई गई। इसी बायोडेटा में लिखा गया कि उन्होंने 2006 में बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता लेकर अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की, यानी बीजेपी ज्वाइन करने के वक्त उनकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, जबकि किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने की न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल होती है। इसके कुछ समय बाद बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा का संशोधित बायोडेटा जारी किया। नए बायोडेटा में उनकी जन्म तिथि पहले की तरह 1 जुलाई 1994 ही रखी गई, लेकिन 2006 में बीजेपी की सदस्यता लेने का उल्लेख हटा दिया गया। संशोधित बायोडेटा में यह नहीं बताया गया कि उन्होंने पार्टी की सदस्यता कब ली। बीजेपी ने यह भी नहीं बताया कि पहले और दूसरे बायोडेटा में यह बदलाव क्यों किया गया, लेकिन दो दिन के अंदर हुए इस घटनाक्रम ने विपक्ष को घेरने का एक मौका जरूर दे दिया।
10: ये पहली बार हुआ है कि नामांकन करने के बाद कोई बीजेपी का प्रत्याशी नाम वापस ले रहा हो। विपक्ष के सामने बीजेपी के उम्मीदवार टिक ही नहीं पा रहे हैं। अब जिस दूसरे उम्मीदवार नीरज सिन्हा को बनाया है उनके ऊपर भी विवाद है।
11: विपक्ष इस बात के लिए चिंता करे कि नीचे से फर्स्ट कौन करिएगा, मुकाबला में तो खैर नहीं है, मुकाबला में बहुत ही अंतराल है।
1: बहरहाल बीजेपी की इस पारंपरिक सीट पर प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, जहां बीजेपी के फैसले को और बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी है। शशि भूषण कुमार के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक।
8: बादम मानसून की मार के मानसून भले ही देर से आया हो, लेकिन आने के साथ ही तबाही मचा रखी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है।
1: आसमान से बरसती आफत और जमीन पर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं पानी जिंदगी को अपनी चपेट में ले रहा है। मानसून की बारिश अब सिर्फ मौसम नहीं रही, कई इलाकों में ये डर दहशत और तबाही की वजह बन चुकी है। हिमाचल से उत्तराखंड तक बारिश ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया है कि लोग घर छोड़ने, रास्ते छोड़ने और जिंदगी बचाने को मजबूर हैं। उत्तराखंड में भी बारिश लगातार आफत बनकर बरस रही है। टिहरी गढ़वाल में लगातार तीसरे दिन बारिश जारी है। बारिश के चलते टिहरी झील का जलस्तर बढ़ रहा है। नदी किनारे रहने वाले लोगों में डर का माहौल लगातार बना हुआ है
12: और काफी बारिश से अस्त व्यस्त जीवन हो रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं घनसाली में काफी बारिश लगातार हो रही है।
13: तो नदी के किनारे लोग रह रहे हैं, सभी घरों के जो है नोट चस्पा कर दिया और समय समय पर जैसे बारिश होती है सायरन भी जो है प्रशासन द्वारा जो है बजाया जाता है और अपने अधिकारी भी कर्मचारी भी लगाए हुए हैं कि जो नदी किनारे अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अगर पानी बढ़ता है तो अन्यत्र जो है अपनी व्यवस्था करें। तो लोग सतर्क हैं और क्योंकि मेरा घर भी नदी के किनारे है, हमें भी नोटिस गवर्नमेंट से आया है।
1: प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। दो दिन की छुट्टी के बाद स्कूल खुले, लेकिन बारिश के बीच बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों की चिंता भी सामने आई। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे हालात में एहतियात और ज्यादा जरूरी है।
14: बद्रीनाथ धाम में बीते तीन दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। जहां अब मानसून पहाड़ों में पैर पसार रहा है, वहीं बद्रीनाथ धाम में लगातार बारिश हो रही है। तो बद्रीनाथ धाम में बहने वाली अलकनंदा में अपना विकराल रूप धीरे धीरे जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जो यहां पे नरसिंह शिला, बारह शिला है, वो लगातार पानी में डूबती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी मानसून के दौरान ये पूरी शिला बद्रीनाथ धाम की जो अलकनंदा है उसमें डूब जाती है, लेकिन अब धीरे धीरे उफान पर अलकनंदा बह रही है, पूरा पानी बढ़ता जा रहा है। पल पल बारिश के साथ ही जो पानी है, जलस्तर है, वो बढ़ रहा है। हालांकि मार्ग बाधित होने की जो आशंका है वो बनी हुई है, क्योंकि मानसून का दौर है, बारिश तेज होती है। तो अलग अलग जगहों पे खासकर पीपलकोठी के भनेर पानी में और जो गुलाबकोठी है हिलंग के समीप, वहां पे लगातार भूस्खलन का दौर बन रहा है।
1: चमोली के थराली क्षेत्र में बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार हो रही बारिश के बाद घाघली गदेरे में भारी मात्रा में मलबा आ गया, जिसके चलते थराली देवाल और थराली कुराड़ मार्ग प्रभावित हुए। एक रास्ता खोल दिया गया है, लेकिन कई इलाकों में अब भी लोगों की मुश्किलें बनी हुई है। उफनते नाले के किनारे बसे राडीबगढ़ गांव के लोगों ने पूरी रात दहशत में गुजारी। ग्रामीणों का आरोप है कि सुरक्षा इंतजामों की कमी के कारण हर बारिश में खतरा बढ़ जाता है। चमोली में पहले भी बादल फटने और भारी मलबे की घटनाएं सामने आ चुकी है और इस बार मानसून के शुरुआत में ही हालात डराने लगे। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में लगातार बारिश जारी है। तीन दिनों से हो रही बारिश का असर अब अलकनंदा नदी पर दिखाई दे रहा है। खतरा लगातार बना हुआ है, नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और अलकनंदा उफान पर बह रही है। हालांकि खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था कायम है। बारिश के बीच भी यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। यात्रा मार्ग फिलहाल सुचारू है, लेकिन पहाड़ों के बदलते मौसम के बीच खतरा लगातार बना हुआ है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारिश ने चार धाम यात्रा की रफ्तार रोक दी। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर खांकुरा के पास पहाड़ दरक गया। भारी भरकम बोल्डर सड़क पर आ गिरे और देखते ही देखते हाईवे बंद हो गया। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। कई यात्री घंटों तक रास्ता खुलने का इंतजार करते रहे। बारिश के मौसम में पहाड़ों की यात्रा एक बार फिर चुनौती बन गई है। नैनीताल में लगातार लगभग 8 घंटे हुई मूसलाधार बारिश के बाद 7 नंबर स्थित आलमक कॉटेज और जिला पंचायत रोड क्षेत्र में भूधसा तेज हो गया। पहाड़ी का बड़ा हिस्सा खिसक कर नीचे नाले में जा गिरा, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। सड़क के ऊपर बने 5 और नीचे स्थित 7 परिवारों के मकान खतरे की जद में। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते सुरक्षा कार्य करा दिए गए होते तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती।
15: उनके क्षेत्र में लगातार वर्षा हो रही है। इसी संबंध में आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया गया। तो सर्वप्रथम जो 7 नंबर का हमारा लैंडस्लाइडिंग एरिया है उसको आज विजिट किया गया और वहां पर उस निरीक्षण में एक्सियन पीडब्ल्यूडी और एक्सियन इरिगेशन भी मौजूद थे। एक्सियन इरिगेशन को पूर्व में भी आयुक्त महोदय के द्वारा जो है DPR उस एरिया की गठित करके तत्काल काम कराने के लिए निर्देशित किया गया है। तो उसी के क्रम में आज हम लोगों के द्वारा निरीक्षण किया गया और ये देखा गया कि वहां पर तात्कालिक तौर पर भी कुछ कार्य कराए जाने की आवश्यकता है जिसको इरिगेशन विभाग कल से ही टेकअप करेगा।
1: मौसम विभाग की तरफ से उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और कुमाऊं क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर के लिए रेड अलर्ट, देहरादून, पौड़ी, चंपावत, हरिद्वार, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली और नैनीताल जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए। पूरे उत्तराखंड में 117 सड़कें अब भी बंद हैं। बहरहाल ये मॉनसून की पहली किश्त ने जिसने पहाड़ों पर हाहाकार मचा रखा है, मौसम विभाग की माने तो अभी आसमान से आफत थमने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
8: महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक बारिश अपने साथ मुश्किलें लाई है, वहां पर कैसे हालात हैं रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
1: हिंदुस्तान का ये नक्शा बता रहा है कि जुलाई के 9 दिनों में मॉनसून लगभग पूरे देश पर छा गया है, लेकिन देश के 49% जिले ऐसे हैं जहां अभी भी सामान्य से कम बारिश हुई है। इनमें सबसे ज्यादा जिले यूपी बिहार के नजर आते हैं। ये नक्शा बता रहा है कि मध्य और पश्चिमी भारत में तो सामान्य से ज्यादा बारिश हो गई है, लेकिन अभी पूर्वोत्तर और पूर्वी हिस्से में ठीक से बारिश होना बाकी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में तो लगातार बारिश के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। संजौली इलाके में भूस्खलन के खतरे के चलते कई परिवार घरों से बाहर रहने को मजबूर हैं। लोगों को डर है कि कमजोर हो चुकी जमीन कब धस जाए और कब कोई बड़ा हादसा हो जाए। वहीं न्यू शिमला के राजाना गांव में भी लैंडस्लाइड ने कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है।
16: डर का माहौल है जी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे आप देख रहे हैं, आपने अभी फोटोज भी ली हैं, यहाँ पे जो सारा एरिया है अभी डर के माहौल में। हम पूरे एक साल से डर के साथ ही जी रहे हैं। लास्ट ईयर 28 जून 2025 को सुबह 4:30 बजे के करीब ये जो लैंडस्लाइड हुआ था, जिससे कि सब कुछ यहाँ पे हमारी बिल्डिंग की सीढ़ियां वगैरह सब कुछ टूट गया था। और तब से लेकर हम लोग तो डर डर के ही जी रहे हैं। बार बार हम रिक्वेस्ट करने पर भी यहाँ पे कुछ नहीं, जैसे ही बरसातें शुरू होती है इनका काम भी स्टार्ट होता है। और हमारा तो ये कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इनका बैन किया जाए इसको।
1: जम्मू कश्मीर के पुंछ में बारिश के बाद अचानक बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए। तेज बहाव में कई लोग फंस गए। प्रशासन और राहत टीमों ने लगभग 25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। पानी का वेग इतना तेज था कि लोगों की जिंदगी कुछ घंटों के लिए खतरे में आ गई।
17: चाव हो गया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि हमने पिछले साल भी यहाँ SDM साहब भी मौके पर आए थे, उन्होंने बोला था कि हम आपको क्रेडिट देंगे, अभी तक ना उन्होंने कोई क्रेडिट दिया ना इस पुल का कोई इंतजाम किया।
18: सिचुएशन यहाँ पे हुई है, इसमें तकरीबन 8 से 10 घर जो है वो इफेक्टेड हुए हैं। मैं मुकामी लोगों का और मेरी जो हमारी यहाँ पर पुलिस पोस्ट अड़ी है, इमीडिएट जो रेस्पॉन्डर है वो ये खुद थे। इन्होंने जो है वो लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया, जिसमें तकरीबन 20 से 25 सोल्स हैं और कुछ लाइव स्टॉक पोल्ट्री बोर्ड को जो है वो रेस्क्यू किया गया।
1: सहारनपुर में तो गजब हो गया। भारी बारिश की वजह से कब्रिस्तान में पानी भर गया और इसकी वजह से कई कब्रें क्षतिग्रस्त हो गई। ये गागल हेड़ी के सैयद माजरा गाँव के कब्रिस्तान की घटना है। मिट्टी धंसने से कुछ शव कफन समेत बाहर दिखाई देने लगे। ग्रामीणों ने पुलिस की मौजूदगी में धार्मिक रीति रिवाजों और पूरे सम्मान के साथ शवों को दोबारा सुपुर्द खाक किया। इधर महाराष्ट्र में अब बारिश तो रुक गई है, लेकिन पुणे के एक वेस्ट प्लांट में जो हादसा हुआ था वहां भी 8 लोगों के दबे होने की आशंका है। पुणे के मोशी के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में हादसे के 48 घंटे के बाद भी सभी लोगों का रेस्क्यू नहीं हुआ है। इस प्लांट में कूड़े के पहाड़ सिर्फ एक इमारत पर नहीं गिरा, उसने कई परिवारों की उम्मीदें भी मलबे में दबा दी। जहरीली मीथेन गैस और कूड़े का विशाल ढेर रेस्क्यू ऑपरेशन को लगातार मुश्किल बना रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर खतरे का अंदाजा था तो कूड़े के ढेर के पास इमारत क्यों बनाई गई।
19: तो बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हमारे शहर में हुई थी, उसकी वजह से पूरे शहर में पानी का स्तर बढ़ गया था, हमेशा के जैसे हालात नहीं थे। और इसी के वजह से ये जो कचरे का मलबा था वो पूरा बिल्डिंग के ऊपर गिर गया, उसमें जो कर्मचारी थे एंटनी के वो फंस गए, लेकिन उनको निकालने का काम पूरे प्रयास पूरे जोरों शोर से और पूरे मेहनत से पहले दिन से हम सब कर रहे हैं, आज के दिन उनको निकाला जाएगा।
20: 40 घंटे हुए हैं अभी तक निकाले गए नहीं।
19: आपने पहले दिन आए तो कंडीशन देखी होती तो आपको पता चलता, क्योंकि पहले जो जीवित व्यक्ति थी उनको जिनका आवाज बाहर आ रहा था, प्रशासन को आ रहा था, उनको बाहर निकालना जरूरी था, उनको पहले दिन के रात को बाहर निकाला गया।
1: कई गंभीर सवाल हैं और सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि जो लोग फंसे हुए थे उनके तरफ से रिस्पांस आना भी बंद हो गया है। कुल 23 लोग यहाँ फंसे थे जिनमें से 14 लोगों को निकाला गया था और एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। अभी भी जो 8 लोग हैं उनकी क्या स्थिति है ये पता नहीं है।
20: पुणे स्थित मोशी में जो इंसिडेंट हुआ था इसको लेकर 45 घंटों के बाद भी NDRF टीम की रेस्क्यू जारी है। अभी हम मोशी स्थित कचरा डिपो में है, यहाँ पर देख सकते हैं कि JCB से जहाँ पर वेस्ट टू एनर्जी बिल्डिंग है जो ढही थी उसके आजू बाजू में कचरा निकालने का काम जारी है। 2 दिन पहले यही जो कचरे का ढेर है वो वेस्ट टू एनर्जी बिल्डिंग के ऊपर गिरने से बिल्डिंग ढही थी और उसमें 23 लोग अटके हुए थे, उसमें से 14 लोगों को निकाल लिया गया है और एक की डेथ हुई है, तो 8 लोग अभी भी मौजूद है, उनसे कोई रिस्पॉन्स नहीं है, लेकिन उनको निकालने की कोशिश NDRF द्वारा जारी है। पिछले कुछ घंटों से इस काम में तेजी आई है, JCB ज्यादा लगाए हैं, लेकिन जहां मतलब ग्राउंड फ्लोर में जो लोग अटके हुए हैं, जो मलबे में हैं, उनके रिश्तेदार यहां पे कई घंटों से हैं और उनको आस है कि हमारे जो अंदर अटके हुए लोग हैं वो शायद जिंदा हो।
1: प्रशासन कह रहा है कि बिल्डिंग के अंदर कचरे की वजह से मीथेन गैस है जिसकी वजह से पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में समस्याएं आ रही हैं। अब पूरी इमारत तोड़कर इन लोगों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है।
21: अभी जो लास्ट फेज ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशन है वो बहुत क्रिटिकल हो रहा है। जैसे आप देख रहे हो कि ये कैंटिलीवर फॉल है, तो NDRF के कहने के मुताबिक ये जहाँ कैंटिलीवर फॉल होता है बिल्डिंग का वो बहुत क्रिटिकल और बहुत रिस्की रहता है ऑपरेशन में। अभी NDRF ने जो कचरा है जो अंदर जा रहा है उसको निकालने की पूरे प्रयास कर रहे हैं। उसके आसपास बिल्डिंग का ऑलमोस्ट 80-90% उन्होंने निकाल लिया है। उसके बाद में अभी वो बिल्डिंग खोल के मतलब उनके इक्विपमेंट्स का यूज करके वो तोड़ के अंदर जाके जहां ये लोग फंसे हुए हैं।
1: पालघर की ये तस्वीर देखिए, कैसे घर के नीचे सैलाब के बाद पूरा परिवार छत पर है जिसमें महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं जिनके चेहरे पर खौफ आसानी से देखा जा सकता है। आज तक ब्यूरो। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
22: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

इनका इतिहास राम भक्तों के खून से सना, भारत की विरासत और आस्था को किया था अपमानित। दतिया से टिकट कटने के बाद आज तक से बोले बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा, राजनीति में चलता है पार्टी का फैसला सही, सीएम मोहन यादव से की मुलाकात। आमिर खान की तीसरी शादी पर भड़के नीतीश राणे, बताया लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर, युवाओं से किया आमिर की फिल्में सोच समझकर देखने की अपील। वियतनाम में भारतीय पर्यटकों से भरी हुई नाव पलटी, अब तक 15 लोगों की मौत। विकोक द्वीप के पास हुआ हादसा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी ने जताई संवेदना। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जारी किया आदेश, कहा अगर मेरी हत्या हुई तो ईरान का मिटा देंगे नामो निशान, जेरी वेंस को सौंपी फैसला लेने की जिम्मेदारी।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। सुबह की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा यह किया है कि अमेरिकी सेनाओं ने ईरान के खिलाफ इस हफ्ते तीसरी बार सैन्य हमले शुरू कर दिए हैं। आपको यह भी बता दें कि कहा यह गया है कि कार्रवाई हॉर्मुज से कमर्शियल शिप गैलेक्सी पर हमले के बाद यह की गई है। अमेरिका का आरोप यह है कि IRGC इस हमले के लिए जिम्मेदार है और अमेरिकी कमांड का कहना यह है कि हमले में एक नागरिक चालक दल सदस्य लापता हुआ है और जहाज को आग लगने और इंजन रूम को नुकसान पहुंचने के कारण आगे बढ़ने में परेशानियां हो रही हैं। अमेरिका ने यह भी कहा कि इन कार्रवाइयों का मकसद है व्यापारिक जहाजों और समुद्री कर्मियों पर हमलों की क्षमता को कमजोर कर देना। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीथ हेडसेक ने कहा है कि ईरान ने गलत चुनाव किया, अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। ईरान ने हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान किया है और ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का कहना है कि एक जहाज ने तय नियमों का पालन नहीं किया और चेतावनी के बाद उसे रोक दिया गया। ईरान ने किसी भी जवाबी कार्रवाई पर कड़ी प्रतिक्रिया देने की चेतावनी दी है। वहीं अमेरिका ने ईरान से मांग की है कि जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और समुद्री रास्तों को सभी के लिए खुला रखा जाए। तो ईरान को कीमत चुकानी होगी, ये कहा गया है पीथ हेडसेक की तरफ से। और आपको ये भी बता दें, कहा यह गया था कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की तरफ से हमला किया गया था, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से ये बड़ी सैन्य कार्रवाई की गई है। तीसरा बड़ा हमला अमेरिका की तरफ से इसे बताया गया है। और हॉर्मुज में शिप अटैक के बाद यूएस का एक्शन ये था, जिसमें यूएस का दावा यह है कि यह रास्ता सभी के लिए सुरक्षित होना चाहिए, खुला होना चाहिए। जबकि तेहरान की तरफ से IRGC गार्ड्स की तरफ से साफ कह दिया गया है कि किसी भी तरह के हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा जैसे हमेशा ईरान देता रहा है। हालांकि लगातार अमेरिका की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं कि अब इसकी कीमत ईरान को चुकानी होगी। और अब बात करेंगे यूपी में चुनाव से पहले छिड़े हुए धर्म युद्ध के बारे में। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर चढ़ावा चोरी ने पूरी तरह से सियासी रंग ले लिया है, जिसके बाद अब योगी आदित्यनाथ विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को पिछला इतिहास गिना रहे हैं, तो वहीं विपक्ष राम मंदिर के मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं नजर आ रहा।
1: यूपी में राम मंदिर से शुरू हुआ घमासान अब धर्म की राजनीति तक पहुंच गया है। योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी का इतिहास खंगाल रहे हैं।
2: मंदिरों पे कब्जा करवाते थे लोग, मंदिरों पे कब्जा करवाते थे, और अब कब्जा नहीं, अब उन मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है, और पहले मंदिरों के नाम पर आने वाला पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर खर्च हो जाता था। यही तो करती थी समाजवादी पार्टी।
1: कल योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में इफ्तार का जिक्र करके समाजवादी पार्टी को घेरा था, तो आज विपक्ष योगी पर गुमराह करने का आरोप लगा रहा है।
3: कैसे नमाज पढ़ सकता है कोई आदमी वहां? ये एजेंडा जो है ये तमाम चीजों से ध्यान भटकाने का है। कैसे नमाज पढ़ सकता है? हम तो कह रहे हैं कि आप सड़क पे नमाज ना पढ़े, क्योंकि सड़क सरकार की और सरकार मना कर रही है तो आपकी नमाज जायज नहीं होगी। मैं तो बार बार बोलता हूं, जिस प्रॉपर्टी का ओनर अगर उसको इजाजत नहीं देता तो वहां नमाज ही नहीं हो सकती।
1: 2027 के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा अब थमता नहीं दिख रहा है। इस बीच राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के कलंक पर अब समिति से जुड़े लोग दुख जता रहे हैं।
4: राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है, व्यवस्था में सुधार होगा, मुझे पूरा विश्वास है।
1: एक और ताबड़तोड़ जांच और एक्शन जारी है, तो वहीं राम भक्तों का भरोसा जीतने की कोशिश भी की जा रही है। चढ़ावा विवाद के बीच राम मंदिर ट्रस्ट जल्द ही CEO की नियुक्ति करने जा रहा है, जिसके लिए समिति का गठन भी कर दिया गया है। CEO को मंदिर के प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जिसका उद्देश्य मंदिर के संचालन को अधिक पेशेवर, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। इसके साथ ही CEO चढ़ावे के प्रबंधन, श्रद्धालुओं की सुविधाओं, आधारभूत ढांचे के रखरखाव और प्रशासनिक व्यवस्था की भी निगरानी रखेंगे। साफ है कि एक ओर सरकार बार बार भरोसा जताने की कोशिश कर रही है कि वो भक्तों के साथ धोखा करने वालों को बख्शेगी नहीं, वहीं विपक्ष सरकार की पूरी जांच को कटघरे में खड़ा कर रही है। आज तक ब्यूरो।
0: उधर राम मंदिर में जांच के रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच अब मंदिर प्रशासन के सामने चुनौती है सिस्टम को सुधारने की, जिस पर लगातार फैसले लिए जा रहे हैं।
1: चढ़ावा चोरी के गंभीर आरोपों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे सामने आते जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से अब सामने आया है कि मंदिर में काम करने वाले कुछ पूर्व सैनिकों पर कुछ भी बोलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके लिए बकायदा सभी पूर्व सैनिकों को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा गया था। कहा गया था कि कोई कुछ भी पूछे बोलना नहीं है। जिस मैसेज पर सवाल उठ रहे हैं उस मैसेज का स्क्रीनशॉट भी आज तक के पास मौजूद है। इसे साफ है कि चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद मामले को छिपाने की कोशिश की गई। इधर अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के दो और आरोपियों को पुलिस जल्द ही रिमांड पर लेगी। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव से पुलिस पूछताछ करेगी। टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र की 7 दिनों की कस्टडी मांगी है।
5: अयोध्या पुलिस ने अब रामशंकर यादव और टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में 7 दिन की अर्जी डाली है। इन दोनों की पुलिस कस्टडी रिमांड बेहद अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि जहां रामशंकर यादव के पास डोनेशन बॉक्स की चाबियां होती थी, वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र उस कमरे के इंचार्ज थे जहां से चढ़ावा चोरी हो रहा था। ऐसे में इन दोनों से की गई पूछताछ से पुलिस पता लगाने की कोशिश में लगी है कि आखिर यह चोरी हो रही थी तो उनके संज्ञान में क्यों नहीं आई, पकड़ी भी गई तो क्यों उन पर कार्रवाई नहीं हुई।
1: इस बीच राम मंदिर में चढ़ावे की गणना के लिए नया टाइम टेबल लागू कर दिया गया है। पहले 2 पालियों में होने वाली गिनती अब एक ही शिफ्ट में की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चढ़ावे की गिनती होगी। नई समय सारणी लागू होने के बाद कुछ गणना कर्मियों ने काम छोड़ दिया। उधर राम मंदिर में VIP पास की प्रक्रिया भी रोकी गई क्योंकि जिन लोगों की ID का इस्तेमाल इस काम के लिए किया गया था उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में जारी घटनाक्रम के बीच गोपाल राव ने निर्मोही अखाड़ा पहुंचकर ट्रस्टी महंत दीनेन्द्र दास से मुलाकात की। दोनों के बीच बंद कमरे में काफी देर तक एकांत में चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में ट्रस्ट से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। इस मुलाकात में ट्रस्ट के भीतर चल रहे विवादों के बीच डैमेज कंट्रोल की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हालांकि बैठक में इस चर्चा के संबंध में आधिकारिक रूप से कोई जानकारी साझा नहीं की गई। अयोध्या से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: यूपी में राम मंदिर पर घमासान है तो वहीं मध्य प्रदेश में लड़ाई है बीजेपी बनाम बीजेपी की, जहां दतिया में हो रहे उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद कार्यकर्ता भड़के हुए हैं।
6: दतिया में टिकट को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा ऐसा फूटा कि वो अपनी ही सरकार की पुलिस से भिड़ गए। मध्य प्रदेश के दतिया में 30 जुलाई को उपचुनाव है। बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। दतिया से आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाने की घोषणा होते ही नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। नेशनल हाईवे पर जाम लग गया, घंटों तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही, पुलिस पर पथराव हुए और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।
7: मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए, पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं, ऐसा कोई कार्य न करे।
6: आखिर दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्यों कटा? बताया जा रहा है कि दिल्ली के स्तर पर कराए गए सर्वे में नरोत्तम मिश्रा की स्थिति उम्मीद के मुताबिक मजबूत नहीं पाई गई। 2023 में बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिया था लेकिन वो विधानसभा का चुनाव हार गए। केंद्रीय नेतृत्व ने स्थानीय संगठन और भविष्य की राजनीति स्वीकारता का भी आकलन कराया। इसमें नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी फिट बैठे, जिसके बाद उन्हें दतिया से टिकट दिया गया। बीजेपी ने एक ब्राह्मण नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर दूसरे ब्राह्मण आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है। इससे जातिगत और सामाजिक संतुलन बरकरार है। उधर पार्टी का संदेश साफ है कि बीजेपी हाईकमान फिलहाल झुकने के मूड में नहीं है।
8: पार्टी इस प्रकार के सोच समझ के निर्णय लेती है। और इसलिए हम दंगे की चोट जीतेंगे और नरोत्तम जी भी काम करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं नरोत्तम जी को जानता हूँ व्यक्तिगत।
7: नरोत्तम जी मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता, तो उनको कट्टू साइज तो करनी था, कर दिया।
6: दतिया में अब लड़ाई बीजेपी के सामने अपनों से है, जहां अभी तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। भोपाल से रवीश पाल के साथ आज तक ब्यूरो।
0: इस पूरे मामले में हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह ने बात की नरोत्तम मिश्रा से, क्या उन्होंने कहा सुनिए।
9: फैसले को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि मांग के तो चला जा रहा था कि आप ही इकलौते उम्मीदवार हैं वहां से भाजपा के।
10: पार्टी का फैसला जो होता है वो ठीक ही होता है, उसको अच्छे रूप में ही लेना चाहिए, खराब रूप में नहीं लेना चाहिए, ऐसा मेरी मान्यता है।
9: आप के तो सकारात्मक भाव है, लेकिन आपके जो समर्थक थे जो महीनों से इंतजार कर रहे थे कि जो प्रकरण आया राजन भारती का, मामला कोर्ट में गया, फिर वहां से विधायक की गई, सदस्यता गई, सबको उम्मीद थी, लेकिन जब ये फैसला आया तो उनका गुस्सा साफ तौर पर सामने मिला। हाईवे जाम हो गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ हो गई, पथराव हो गया।
10: हाँ छड़े काबेज था, मैंने कल भी फिर उनसे निवेदन किया था, आज भी किया मैंने। जाम वाम की स्थिति नहीं होना चाहिए, कार्यकर्ता वो पेट्रोल डाल रहे थे, वो मुझे दिखाए विजुअल फुटेज, मिट्टी का तेल डालते हुए का। धैर्य और संयम का समय यही होता है, यही परीक्षा की घड़ी होती है।
9: आप भोपाल जा रहे हैं तो भोपाल में कोई कार्यक्रम आला नेताओं से आपकी मुलाकात है क्या, प्रदेश अध्यक्ष से या मुख्यमंत्री से या किसी से?
10: अभी तो होगी तो बताऊंगा निश्चित। आप
9: आशुतोष तिवारी को आशीर्वाद रहेगा आपका?
10: सभी को क्यों नहीं रहेगा, कैसी बात कर रहे हैं।
9: हालांकि कैलाश जी ने कहा है कि वो बहुत अच्छे से जानते हैं आपको, उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ नरोत्तम जी को, पार्टी के फैसले को हमेशा से स्वीकार करते रहे और हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहे हूँ।
10: बिल्कुल सही कहा, मैं सहमत हूँ।
9: आपके लिए भावुक क्षण है?
10: नहीं, राजनीति में ये सब चलने वाली चीज है।
9: लेकिन एक आखिरी सवाल नरोत्तम जी, चुनाव हुआ 2023 का, फिर लोकसभा आया, फिर राज्यसभा चुनाव आए, फिर कई दूसरी जिम्मेदारियां भी थी, हालांकि न्यू ज्वाइनिंग टोली का आपको संयोजक बनाया गया था, तब काफी लोग जुड़ के आए थे कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में, अब तो भाजपा में
10: लगातार लोकसभा राज्यसभा अध्यक्षी जो भी आप बात कर रहे हैं, ये अंतर्मुखी होकर स्वयं के चिंतन के लिए पार्टी अवसर दे रही है, हमें चिंतन करना भी चाहिए, अच्छी बात है।
0: बांकीपुर उपचुनाव में टिकट को लेकर सियासत तेज हो गई है, जहां बीजेपी ने एक दिन के अंदर अपने प्रत्याशी को बदल दिया, जिस पर अब विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है।
1: बांकीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी की ओर से पहले अभिषेक कुमार का नामांकन हुआ, फिर एक दिन बाद ही अचानक अभिषेक ने नामांकन वापस ले लिया और नीरज कुमार को नया उम्मीदवार घोषित किया गया। जिस अभिषेक को सामान्य कार्यकर्ता बताकर बीजेपी ने नितिन नवीन वाली सीट के लिए प्रत्याशी बनाया, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को अपना प्रत्याशी बदलना पड़ा?
11: भौगोलिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। मैं कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा।
1: अब सवाल ये कि जिस पारिवारिक मामले का हवाला देकर अभिषेक ने नामांकन वापस लिया, वही परिवार एक दिन पहले अभिषेक को आशीर्वाद देते हुए भावुक हो गया था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अभिषेक बंटी के पिता रविंद्र प्रसाद सिन्हा चारा घोटाले में दोषी रहे। वो मगध केमिकल्स कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी में मैनेजर थे। इस कंपनी पर चारा घोटाले में फर्जी बिल के आधार पर सप्लायर बनाने का आरोप था। फर्जी बिलों के जरिए सरकारी खजाने से पैसा निकालने का मामला रविंद्र प्रसाद सिन्हा पर चला था। सूत्रों के मुताबिक दूसरी बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि अभिषेक सिन्हा बंटी ने नामांकन पत्र में गलत जानकारी भी दी थी, उन्होंने पढ़ाई से जुड़ी कुछ जानकारियां छिपाई थी, ऐसे में भी अभिषेक बंटी का नॉमिनेशन रद्द होने की आशंका थी। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी ने कोई जोखिम नहीं लेते हुए अभिषेक बंटी का नामांकन वापस कराने का फैसला लिया, यानी पार्टी को डर था कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लालू परिवार को घेरते रहे, उसी भ्रष्टाचार में अभिषेक के पिता आरोपी हैं। लेकिन अब बीजेपी के नए प्रत्याशी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नीरज कुमार सिन्हा के उम्मीदवार घोषित होने के बाद बीजेपी ने उनका बायोडेटा जारी किया, इसमें उनकी जन्म तिथि 1 जुलाई 1994 बताई गई। इसी बायोडेटा में लिखा गया कि उन्होंने 2006 में बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता लेकर अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। यानी बीजेपी ज्वाइन करने के वक्त उनकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, जबकि किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने की न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल होती है। इसके कुछ समय बाद बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा का संशोधित बायोडेटा जारी किया। नए बायोडेटा में उनकी जन्म तिथि पहले की तरह 1 जुलाई 1994 ही रखी गई, लेकिन 2006 में बीजेपी की सदस्यता लेने का उल्लेख हटा दिया गया। संशोधित बायोडेटा में ये नहीं बताया गया कि उन्होंने पार्टी की सदस्यता कब ली। बीजेपी ने यह भी नहीं बताया कि पहले और दूसरे बायोडेटा में यह बदलाव क्यों किया गया, लेकिन 2 दिन के अंदर हुए इस घटनाक्रम ने विपक्ष को घेरने का एक मौका जरूर दे दिया।
12: ये पहली बार हुआ है कि नामांकन करने के बाद कोई बीजेपी का प्रत्याशी नाम वापस ले रहा हो। विपक्ष के सामने बीजेपी के उम्मीदवार टिक ही नहीं पा रहे हैं। अब जिस दूसरे उम्मीदवार नीरज सिन्हा को बनाया है उनके ऊपर भी विवाद है।
13: विपक्ष इस बात के लिए चिंता करे कि नीचे से फर्स्ट कौन करिएगा। मुकाबला में तो खैर नहीं है, मुकाबला में बहुत ही अंतराल है।
1: बहरहाल बीजेपी की इस पारंपरिक सीट पर प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, जहां बीजेपी के फैसले को और बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी है। शशि भूषण कुमार के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक।
0: और अब बात करेंगे मॉनसून के बारे में, क्योंकि मॉनसून की मार लगातार जारी है। मॉनसून भले ही देर से आया हो, लेकिन आने के साथ ही तबाही मचा दी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है। नदियां उफान पर हैं, तो वहीं शहरों में पानी भरा हुआ है। उत्तराखंड से तबाही की कई तस्वीरें सामने आई हैं, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
1: आसमान से बरसती आफत और जमीन पर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद। कहीं पहाड़ तड़प रहे हैं तो कहीं पानी जिंदगी को अपनी चपेट में ले रहा है। मानसून की बारिश अब सिर्फ मौसम नहीं रही, कई इलाकों में यह डर दहशत और तबाही की वजह बन चुकी है। हिमाचल से उत्तराखंड तक बारिश ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया है कि लोग घर छोड़ने, रास्ते छोड़ने और जिंदगी बचाने को मजबूर हैं। उत्तराखंड में भी बारिश लगातार आफत बनकर बरस रही है। टिहरी गढ़वाल में लगातार तीसरे दिन बारिश जारी है। बारिश के चलते टिहरी झील का जलस्तर बढ़ रहा है। नदी किनारे रहने वाले लोगों में डर का माहौल लगातार बना हुआ है
14: और काफी बारिश से अस्त व्यस्त जीवन हो रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं घनसाली में काफी बारिश लगातार हो रही है।
15: तो नदी के किनारे लोग रह रहे हैं, सभी घरों के जो है नोटिस चस्पा कर दिया और समय समय पर जैसे बारिश होती है सायरन भी जो है प्रशासन द्वारा जो है बजाया जाता है और अपने अधिकारी भी कर्मचारी भी लगाए हुए हैं कि जो नदी किनारे अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अगर पानी बढ़ता है तो अन्यत्र जो है अपनी व्यवस्था करें। तो लोग सतर्क हैं और क्योंकि मेरा घर भी नदी के किनारे है, हमें भी नोटिस गवर्नमेंट से आया है।
1: प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। 2 दिन की छुट्टी के बाद स्कूल खुले, लेकिन बारिश के बीच बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों की चिंता भी सामने आई। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे हालात में एहतियात और ज्यादा जरूरी है।
16: बद्रीनाथ धाम में बीते 3 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। जहां अब मानसून पहाड़ों में पैर पसार रहा है, वहीं बद्रीनाथ धाम में लगातार बारिश हो रही है। तो बद्रीनाथ धाम में बहने वाली अलकनंदा में अपना विकराल रूप धीरे धीरे जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जो यहां पे नरसिंह शिला, बारह शिला है, वो लगातार पानी में डूबती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी मानसून के दौरान ये पूरी शिला बद्रीनाथ धाम की जो अलकनंदा है उसमें डूब जाती है, लेकिन अब धीरे धीरे उफान पर अलकनंदा बह रही है, पूरा पानी बढ़ता जा रहा है। पल पल बारिश के साथ ही जो पानी है, जलस्तर है, वो बढ़ रहा है। हालांकि मार्ग बाधित होने की जो आशंका है वो बनी हुई है, क्योंकि मानसून का दौर है, बारिश तेज होती है, तो अलग अलग जगहों पर खासकर पीपलकोठी के भनेर पानी में और जो गुलाबकोठी है हेलंग के समीप, वहां पे लगातार भूस्खलन का दौर बन रहा है।
1: चमोली के थराली क्षेत्र में बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार हो रही बारिश के बाद घाघली गदेरे में भारी मात्रा में मलबा आ गया, जिसके चलते थराली देवाल और थराली कुराड़ मार्ग प्रभावित हुए। एक रास्ता खोल दिया गया है, लेकिन कई इलाकों में अब भी लोगों की मुश्किलें बनी हुई। उफनते नाले के किनारे बसे राडीबगढ़ गांव के लोगों ने पूरी रात दहशत में गुजारी। ग्रामीणों का आरोप है कि सुरक्षा इंतजामों की कमी के कारण हर बारिश में खतरा बढ़ जाता है। चमोली में पहले भी बादल फटने और भारी मलबे की घटनाएं सामने आ चुकी हैं और इस बार मानसून के शुरुआत में ही हालात डराने लगे। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में लगातार बारिश जारी है। तीन दिनों से हो रही बारिश का असर अब अलकनंदा नदी पर दिखाई दे रहा है। खतरा लगातार बना हुआ है। नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और अलकनंदा उफान पर बह रही है। हालांकि खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था कायम है। बारिश के बीच भी यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। यात्रा मार्ग फिलहाल सुचारू है लेकिन पहाड़ों के बदलते मौसम के बीच खतरा लगातार बना हुआ है। हाईवे पर खांकुरा के पास पहाड़ दरक गया। भारी भरकम बोल्डर सड़क पर आ गिरा और देखते ही देखते हाईवे बंद हो गया। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। कई यात्री घंटों तक रास्ता खुलने का इंतजार करते रहे। बारिश के मौसम में पहाड़ों की यात्रा एक बार फिर चुनौती बन गई है। नैनीताल में लगातार लगभग 8 घंटे हुए मूसलाधार बारिश के बाद 7 नंबर स्थित आलमग कॉटेज और जिला पंचायत रोड क्षेत्र में भू धसाव तेज हो गया। पहाड़ी का बड़ा हिस्सा खिसक कर नीचे नाले में जा गिरा जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। सड़क के ऊपर बने 5 और नीचे स्थित 7 परिवारों के मकान खतरे की जद में। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते सुरक्षा कार्य करा दिए गए होते तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती।
17: इनके क्षेत्र में लगातार वर्षा हो रही है। इसी संबंध में आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया गया। तो सर्वप्रथम जो 7 नंबर का हमारा लैंडस्लाइडिंग एरिया है उसको आज विजिट किया गया और वहां पर उस निरीक्षण में एक्सियन पीडब्ल्यूडी और एक्सियन इरीगेशन भी मौजूद थे। एक्सियन इरीगेशन को पूर्व में भी आयुक्त महोदय के द्वारा जो है DPR उस एरिया की गठित करके तत्काल काम कराने के लिए निर्देशित किया गया है। तो उसी के क्रम में आज हम लोगों के द्वारा निरीक्षण किया गया और ये देखा गया कि वहां पर तात्कालिक तौर पर भी कुछ कार्य कराए जाने की है जिसको इरिगेशन विभाग कल से ही टेकअप करेगा।
1: मौसम विभाग की तरफ से उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और कुमाऊं क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर के लिए रेड अलर्ट, देहरादून, पौड़ी, चंपावत, हरिद्वार, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली और नैनीताल जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए। पूरे उत्तराखंड में 117 सड़कें अब भी बंद है। बहरहाल ये मानसून की पहली किश्त ने जिसने पहाड़ों पर हाहाकार मचा रखा है। मौसम विभाग की माने तो अभी आसमान से आफत थमने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
19: है सूर्य की राशि, क्या है सूर्य की राशि की विशेषता, क्या चंद्रमा की राशि बहुत ज्यादा इमोशनल होती है, क्या चंद्रमा की राशि वालों का वैवाहिक जीवन बेहतर नहीं होता है, क्या है सूर्य और चंद्रमा की राशियों का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ।
20: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
21: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. 2 taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
22: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: Listening to your favorite station just got even easier. With Google Assistant and TuneIn, your go-to station is just a voice away.
3: You're listening to CNBC.
22: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
23: Keep it on smooth jazz.
24: This is Roots Reggae.
25: Exclusively on TuneIn.
26: This is classic hip-hop.
27: Exclusively on TuneIn.
2: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected. The shows, music, and news you love anytime you want.
18: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा.
28: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: सी है सूर्य की राशि, क्या है सूर्य की राशि की विशेषता, क्या चंद्रमा की राशि बहुत ज्यादा इमोशनल होती है, क्या चंद्रमा की राशि वालों का वैवाहिक जीवन बेहतर नहीं होता है, क्या है सूर्य और चंद्रमा की राशियों का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य।
1: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd. To the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
2: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
3: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

अभी में 27 का घमासान तेज। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर फिर बोला हमला, कहा इनका इतिहास राम भक्तों के खून से सना, भारत की विरासत और आस्था को किया था अपमानित। दतिया से टिकट कटने के बाद आज तक से बोले बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा, राजनीति में चलता है पार्टी का फैसला सही, सीएम मोहन यादव से की मुलाकात। आमिर खान की तीसरी शादी पर भड़के नीतीश राणे, बताया लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर, युवाओं से किया आमिर की फिल्में सोच समझकर देखने की अपील। वियतनाम में भारतीय पर्यटकों से भरी हुई नाव पलटी, अब तक 15 लोगों की मौत। विकोक द्वीप के पास हुआ हादसा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी ने जताई संवेदना। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जारी किया आदेश, कहा अगर मेरी हत्या हुई तो ईरान का मिटा देंगे नामो निशान, जेडी वेंस को सौंपी फैसला लेने की जिम्मेदारी।

आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। सुबह की बड़ी और अहम खबर, सबसे पहले आपको बता दें कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा यह किया है कि अमेरिकी सेनाओं ने ईरान के खिलाफ इस हफ्ते की तीसरी बार सैन्य हमले शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि यह कार्रवाई हॉर्मुज में कमर्शियल शिप गैलेक्सी पर हमले के बाद की गई है। अमेरिका का आरोप यह भी है कि IRGC इस हमले के लिए जिम्मेदार है और अमेरिकी कमांड का कहना यह भी है कि हमले में एक नागरिक चालक दल सदस्य लापता हुआ और जहाज को आग लगने और इंजन रूम को नुकसान पहुंचने के कारण आगे बढ़ने में काफी परेशानी हो रही है। अमेरिका ने यह भी दावा किया है कि इन कार्रवाइयों का मकसद है व्यापारिक जहाजों और समुद्री कर्मियों पर हमलों को रोकना और ईरान की क्षमता को कमजोर करना। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीथ हेडसेक ने कहा है कि ईरान ने गलत चुनाव किया है, अब उसकी कीमत उसे चुकानी होगी। तो ईरान ने हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान कर दिया है उधर, और ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का कहना यह है कि एक जहाज ने तय नियमों का पालन नहीं किया था और चेतावनी के बाद उसे रोका गया। ईरान ने किसी भी जवाबी कार्रवाई पर कड़ी प्रतिक्रिया देने की बात भी कही है, और वहीं अमेरिका ने ईरान से मांग की है कि जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और समुद्री रास्ते सभी के लिए खुले रहें। एक और बड़ी और अहम खबर यह कि ईरान के बुशेहर, बंदर अब्बास, सिरिक और केशनदूई समेत कई इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। ईरान के अधिकारियों का दावा यह है कि अमेरिकी हमलों का जवाब अब दिया जाएगा। जैसा कि अमेरिका की तरफ से साफ किया गया था, इस हफ्ते का तीसरा जबरदस्त हमला किया गया है और हमले की वजह बताई गई है समुद्री मार्ग को सुरक्षित करना, सभी के लिए उसे खुले रखे रहना। और जानकारी यह है कि ये तमाम जगह हैं जिसमें है ईरान का बुशेहर, असले, बंदाबाद, सिरिक और केशम द्वीप, इन तमाम इलाकों में जबरदस्त धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। ईरान के अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि अमेरिकी हमलों का तुरंत जवाब दिया जाएगा।

0: और अब बात करेंगे यूपी में चुनाव से पहले छिड़े हुए धर्म युद्ध के बारे में। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर चढ़ावा चोरी ने पूरी तरह से सियासी रंग ले लिया है, जिसके बाद अब योगी आदित्यनाथ विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को पिछला इतिहास गिना रहे हैं, तो वहीं विपक्ष राम मंदिर के मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं नजर आ रहा।
1: यूपी में राम मंदिर से शुरू हुआ घमासान अब धर्म की राजनीति तक पहुंच गया है। योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी का इतिहास खंगाल रहे हैं।
2: मंदिरों पे कब्जा करवाते थे लोग, मंदिरों पे कब्जा करवाते थे, और अब कब्जा नहीं, अब उन मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है, और पहले मंदिरों के नाम पर आने वाला पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर खर्च हो जाता था। यही तो करती थी समाजवादी पार्टी।
1: कल योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में इफ्तार का जिक्र करके समाजवादी पार्टी को घेरा था, तो आज विपक्ष योगी पर गुमराह करने का आरोप लगा रहा है।
3: कैसे नमाज पढ़ सकता है कोई आदमी वहां? ये एजेंडा जो है ये तमाम चीजों से ध्यान भटकाने का है। कैसे नमाज पढ़ सकता है? हम तो कह रहे हैं कि आप सड़क पे नमाज ना पढ़े, चूंकि सड़क सरकार की और सरकार मना कर रही है तो आपकी नमाज जायज नहीं होगी। मैं तो बार बार बोलता हूं, जिस प्रॉपर्टी का ओनर अगर उसको इजाजत नहीं देता तो वहां नमाज ही नहीं हो सकती।
1: 2027 के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा अब थमता नहीं दिख रहा है। इस बीच राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के कलंक पर अब समिति से जुड़े लोग दुख जता रहे हैं।
4: राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है, व्यवस्था में सुधार होगा, मुझे पूरा विश्वास है।
1: एक और ताबड़तोड़ जांच और एक्शन जारी है, तो वहीं राम भक्तों का भरोसा जीतने की कोशिश भी की जा रही है। चढ़ावा विवाद के बीच राम मंदिर ट्रस्ट जल्द ही सीईओ की नियुक्ति करने जा रहा है, जिसके लिए समिति का गठन भी कर दिया गया है। सीईओ को मंदिर के प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जिसका उद्देश्य मंदिर के संचालन को अधिक पेशेवर, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। इसके साथ ही सीईओ चढ़ावे के प्रबंधन, श्रद्धालुओं की सुविधाओं, आधारभूत ढांचे के रखरखाव और प्रशासनिक व्यवस्था की भी निगरानी रखेंगे। साफ है कि एक ओर सरकार बार बार भरोसा जताने की कोशिश कर रही है कि वो भक्तों के साथ धोखा करने वालों को बख्शेगी नहीं, वहीं विपक्ष

0: सरकार की पूरी जांच को कटघरे में खड़ा कर रही है आज तक ब्यूरो।
1: उधर राम मंदिर में जांच के रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच अब मंदिर प्रशासन के सामने चुनौती है सिस्टम को सुधारने की, जिस पर लगातार फैसले लिए जा रहे हैं।
0: चढ़ावा चोरी के गंभीर आरोपों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे सामने आते जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से अब सामने आया है कि मंदिर में काम करने वाले कुछ पूर्व सैनिकों पर कुछ भी बोलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके लिए बकायदा सभी पूर्व सैनिकों को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा गया था। कहा गया था कि कोई कुछ भी पूछे बोलना नहीं है। जिस मैसेज पर सवाल उठ रहे हैं उस मैसेज का स्क्रीनशॉट भी आज तक के पास मौजूद है। इससे साफ है कि चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद मामले को छिपाने की कोशिश की गई। इधर अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के दो और आरोपियों को पुलिस जल्द ही रिमांड पर लेगी। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव से पुलिस पूछताछ करेगी। टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र की 7 दिनों की कस्टडी मांगी है।
2: अयोध्या पुलिस ने अब रामशंकर यादव और टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में 7 दिन की अर्जी डाली है। इन दोनों की पुलिस कस्टडी रिमांड बेहद अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि जहां रामशंकर यादव के पास डोनेशन बॉक्स की चाबियां होती थी, वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद उस कमरे के इंचार्ज थे जहां से चढ़ावा चोरी हो रहा था। ऐसे में इन दोनों से की गई पूछताछ से पुलिस पता लगाने की कोशिश में लगी है कि आखिर यह चोरी हो रही थी तो उनके संज्ञान में क्यों नहीं आई, पकड़ी भी गई तो क्यों उन पर कार्रवाई नहीं हुई।
0: इस बीच राम मंदिर में चढ़ावे की गणना के लिए नया टाइम टेबल लागू कर दिया गया है। पहले 2 पालियों में होने वाली गिनती अब एक ही शिफ्ट में की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चढ़ावे की गिनती होगी। नई समय सारणी लागू होने के बाद कुछ गणना कर्मियों ने काम छोड़ दिया है। उधर राम मंदिर में VIP पास की प्रक्रिया अभी रोकी गई है क्योंकि जिन लोगों की ID का इस्तेमाल इस काम के लिए किया गया था उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में जारी घटनाक्रम के बीच गोपाल राव ने निर्मोही अखाड़ा पहुंचकर ट्रस्टी महंत दीनेन्द्र दास से मुलाकात की। दोनों के बीच बंद कमरे में काफी देर तक एकांत में चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में ट्रस्ट से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। इस मुलाकात में ट्रस्ट के भीतर चल रहे विवादों के बीच डैमेज कंट्रोल की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हालांकि बैठक में इस चर्चा के संबंध में आधिकारिक रूप से कोई जानकारी साझा नहीं की गई। अयोध्या से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
1: यूपी में राम मंदिर पर घमासान है तो वहीं मध्य प्रदेश में लड़ाई है बीजेपी बनाम बीजेपी की। जहां दतिया में हो रहे उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद कार्यकर्ता भड़के हुए हैं।
3: दतिया में टिकट को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा ऐसा फूटा कि वो अपनी ही सरकार की पुलिस से भिड़ गए। मध्य प्रदेश के दतिया में 30 जुलाई को उपचुनाव है। बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। दतिया से आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाने की घोषणा होते ही नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। नेशनल हाईवे पर जाम लग गया, घंटों तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही, पुलिस पर पथराव हुए और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।
4: मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए, पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं, ऐसा कोई कार्य न करे।
3: आखिर दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्यों कटा? बताया जा रहा है कि दिल्ली के स्तर पर कराए गए सर्वे में नरोत्तम मिश्रा की स्थिति उम्मीद के मुताबिक मजबूत नहीं पाई गई। 2023 में बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिया था लेकिन वो विधानसभा का चुनाव हार गए। केंद्रीय नेतृत्व ने स्थानीय संगठन और भविष्य की राजनीति स्वीकारता का भी आकलन कराया। इसमें नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी फिट बैठे, जिसके बाद उन्हें दतिया से टिकट दिया गया। बीजेपी ने एक ब्राह्मण नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर दूसरे ब्राह्मण आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है। इससे जातिगत और सामाजिक संतुलन बरकरार है। उधर पार्टी का संदेश साफ है कि बीजेपी हाईकमान फिलहाल झुकने के मूड में नहीं है।
5: पार्टी इस प्रकार के सोच समझ के निर्णय लेती है और इसलिए हम डंके की चोट जीतेंगे और नरोत्तम जी भी काम करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं नरोत्तम जी को जानता हूँ व्यक्तिगत।
6: नरोत्तम जी मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता, तो उनको कट्टू साइज तो करनी था, कर दिया।
3: दतिया में अब लड़ाई बीजेपी के सामने अपनों से है, जहां अभी तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। भोपाल से रवीश पाल के साथ आज तक ब्यूरो।
1: इस पूरे मामले में हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह ने बात की नरोत्तम मिश्रा से, क्या उन्होंने कहा सुनिए।
7: फैसले को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि मान के तो चला जा रहा था कि आप ही इकलौते उम्मीदवार हैं वहां से भाजपा के।
8: पार्टी का फैसला जो होता है वो ठीक ही होता है, उसको अच्छे रूप में ही लेना चाहिए, खराब रूप में नहीं लेना चाहिए, ऐसा मेरी मान्यता है।
7: आप के तो सकारात्मक भाव है, लेकिन आपके जो समर्थक थे जो महीनों से इंतजार कर रहे थे कि जो प्रकरण आया राजन भारती का, मामला कोर्ट में गया, फिर वहां से विधायी की गई, सदस्यता गई, सबको उम्मीद थी, लेकिन जब ये फैसला आया तो उनका गुस्सा साफ तौर पर सामने मिला, हाईवे जाम हो गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ हो गई, पथराव हो गया।
8: हाँ, छड़े का आवेश था, मैंने कल भी फिर उनसे निवेदन किया था, आज भी किया मैंने, जाम वाम की स्थिति नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ता वो पेट्रोल डाल रहे थे, वो मुझे दिखाए विजुअल फुटेज, मिट्टी का तेल डालते हुए था। धैर्य और संयम का समय यही होता है, यही परीक्षा की घड़ी होती है।
7: आप भोपाल जा रहे हैं तो भोपाल में कोई कार्यक्रम, आला नेताओं से आपकी मुलाकात है क्या, प्रदेश अध्यक्ष से या मुख्यमंत्री से या किसी से?
8: अभी तो नहीं, तो बताऊंगा निश्चित। आप
7: आशुतोष तिवारी को आशीर्वाद रहेगा आपका?
8: सभी को क्यों नहीं रहेगा, कैसी बात कर रहे हैं।
7: हालांकि कैलाश जी ने कहा है कि वो बहुत अच्छे से जानते हैं आपको, उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूं नरोत्तम जी को, पार्टी के फैसले को हमेशा से स्वीकार करते हैं और हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहे हैं।
8: बिल्कुल सही कहा, मैं सहमत हूं।
7: आपके लिए भावुक क्षण है?
8: नहीं, राजनीति में ये सब चलने वाली चीज है।
7: लेकिन एक आखिरी सवाल नरोत्तम जी, चुनाव हुआ 2023 का, फिर लोकसभा आया, फिर राज्यसभा चुनाव आए, फिर कई दूसरी जिम्मेदारियां भी थी, हालांकि न्यू ज्वाइनिंग टोली का आपको संयोजक बनाया गया था, तब काफी लोग जुड़ के आए थे कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में, अब तो भाजपा में
8: लगातार लोकसभा राज्यसभा अध्यक्ष जो भी आप बात कर रहे हैं, ये अंतर्मुखी होकर स्वयं के चिंतन के लिए पार्टी अवसर दे रही है, हमें चिंतन करना भी चाहिए, अच्छी बात है।
1: बांकीपुर उपचुनाव में टिकट को लेकर सियासत तेज हो गई है, जहां बीजेपी ने एक दिन के अंदर अपने प्रत्याशी को बदल दिया, जिस पर अब विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है।
0: बांकीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी की ओर से पहले अभिषेक कुमार का नामांकन हुआ, फिर एक दिन बाद ही अचानक अभिषेक ने नामांकन वापस ले लिया और नीरज कुमार को नया उम्मीदवार घोषित किया गया। जिस अभिषेक को सामान्य कार्यकर्ता बताकर बीजेपी ने नितिन नवीन वाली सीट के लिए प्रत्याशी बनाया, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को अपना प्रत्याशी बदलना पड़ा?
9: प्रभावित कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। मैं कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा।
0: अब सवाल ये कि जिस पारिवारिक मामले का हवाला देकर अभिषेक ने नामांकन वापस लिया, वही परिवार एक दिन पहले अभिषेक को आशीर्वाद देते हुए भावुक हो गया था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अभिषेक बंटी के पिता रविंद्र प्रसाद सिन्हा चारा घोटाले में दोषी रहे। वो मगध केमिकल्स कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी में मैनेजर थे। इस कंपनी पर चारा घोटाले में फर्जी बिल के आधार पर सप्लायर बनाने का आरोप था। फर्जी बिलों के जरिए सरकारी खजाने से पैसा निकालने का मामला रविंद्र प्रसाद सिन्हा पर चला था। सूत्रों के मुताबिक दूसरी बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि अभिषेक सिन्हा बंटी ने नामांकन पत्र में गलत जानकारी भी दी थी, उन्होंने पढ़ाई से जुड़ी कुछ जानकारियां छिपाई थी, ऐसे में भी अभिषेक बंटी का नॉमिनेशन रद्द होने की आशंका थी। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी ने कोई जोखिम नहीं लेते हुए अभिषेक बंटी का नामांकन वापस कराने का फैसला लिया, यानी पार्टी को डर था कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लालू परिवार को घेरते रहे, उसी भ्रष्टाचार में अभिषेक के पिता आरोपी हैं। लेकिन अब बीजेपी के नए प्रत्याशी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नीरज कुमार सिन्हा के उम्मीदवार घोषित होने के बाद बीजेपी ने उनका बायोडेटा जारी किया, इसमें उनकी जन्म तिथि 1 जुलाई 1994 बताई गई। इसी बायोडेटा में लिखा गया कि उन्होंने 2006 में बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता लेकर अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की, यानी बीजेपी ज्वाइन करने के वक्त उनकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, जबकि किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने की न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल होती है। इसके कुछ समय बाद बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा का संशोधित बायोडेटा जारी किया। नए बायोडेटा में उनकी जन्म तिथि पहले की तरह 1 जुलाई 1994 ही रखी गई, लेकिन 2006 में बीजेपी की सदस्यता लेने का उल्लेख हटा दिया गया। संशोधित बायोडेटा में ये नहीं बताया गया कि उन्होंने पार्टी की सदस्यता कब ली। बीजेपी ने ये भी नहीं बताया कि पहले और दूसरे बायोडेटा में ये बदलाव क्यों किया गया, लेकिन 2 दिन के अंदर हुए इस घटनाक्रम ने विपक्ष को घेरने का एक मौका जरूर दे दिया।
10: ये पहली बार हुआ है कि नामांकन करने के बाद कोई बीजेपी का प्रत्याशी नाम वापस ले रहा हो, विपक्ष के सामने बीजेपी के उम्मीदवार टिक ही नहीं पा रहे हैं। अब जिस दूसरे उम्मीदवार नीरज सिन्हा को बनाया है उनके ऊपर भी विवाद है।
11: विपक्ष इस बात के लिए चिंता करे कि नीचे से फर्स्ट कौन करिएगा, मुकाबला में तो खैर नहीं है, मुकाबला में बहुत ही अंतराल है।
0: बहरहाल बीजेपी की इस पारंपरिक सीट पर प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, जहां बीजेपी के फैसले को और बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी है। शशि भूषण कुमार के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक।
1: और अब बात करेंगे मॉनसून के बारे में, क्योंकि मॉनसून की मार लगातार जारी है। मॉनसून भले ही देर से आया हो लेकिन आने के साथ ही तबाही मचा दी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है, नदियां उफान पर हैं तो वहीं शहरों में पानी भरा हुआ है। उत्तराखंड से तबाही की कई तस्वीरें सामने आई हैं, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
0: आसमान से बरसती आफत और जमीन पर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं पानी जिंदगी को अपनी चपेट में ले रहा है। मानसून की बारिश अब सिर्फ मौसम नहीं रही, कई इलाकों में यह डर दहशत और तबाही की वजह बन चुकी है। हिमाचल से उत्तराखंड तक बारिश ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया है कि लोग घर छोड़ने, रास्ते छोड़ने और जिंदगी बचाने को मजबूर हैं। उत्तराखंड में भी बारिश लगातार आफत बनकर बरस रही है। टिहरी गढ़वाल में लगातार तीसरे दिन बारिश जारी है। बारिश के चलते टिहरी झील का जलस्तर बढ़ रहा है। नदी किनारे रहने वाले लोगों में डर का माहौल लगातार बना हुआ है
12: और काफी बारिश से अस्त व्यस्त जीवन हो रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं घनसाली में काफी बारिश लगातार हो रही है।
13: तो नदी के किनारे लोग रह रहे हैं, सभी घरों के जो है नोटिस चस्पा कर दिया और समय समय पर जैसे बारिश होती है सायरन भी जो है प्रशासन द्वारा जो है बजाया जाता है और अपने अधिकारी भी कर्मचारी भी लगाए हुए हैं कि जो नदी किनारे अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अगर पानी बढ़ता है तो अन्यत्र जो है अपनी व्यवस्था करें। तो लोग सतर्क हैं और क्योंकि मेरा घर भी नदी के किनारे है, हमें भी नोटिस गवर्नमेंट से आया है।
0: प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। 2 दिन की छुट्टी के बाद स्कूल खुले, लेकिन बारिश के बीच बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों की चिंता भी सामने आई। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे हालात में एहतियात और ज्यादा जरूरी है।
14: बद्रीनाथ धाम में बीते 3 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। जहां अब मानसून पहाड़ों में पैर पसार रहा है, वहीं बद्रीनाथ धाम में लगातार बारिश हो रही है। तो बद्रीनाथ धाम में बहने वाली अलकनंदा में अपना विकराल रूप धीरे धीरे जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जो यहां पे नरसिंह शिला, बारह शिला है वो लगातार पानी में डूबती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी मानसून के दौरान ये पूरी शिला बद्रीनाथ धाम की जो अलकनंदा है उसमें डूब जाती है, लेकिन अब धीरे धीरे उफान पर अलकनंदा बह रही है, पूरा पानी बढ़ता जा रहा है। पल पल बारिश के साथ ही जो पानी है, जलस्तर है वो बढ़ रहा है। हालांकि मार्ग बाधित होने की जो आशंका है वो बनी हुई है, क्योंकि मानसून का दौर है, बारिश तेज होती है तो अलग अलग जगहों पे खासकर पीपलकोठी के भनेर पानी में और जो गुलाबकोठी है हिलंग के समीप वहां पे लगातार भूस्खलन का दौर बन रहा है।
0: चमोली के थराली क्षेत्र में बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार हो रही बारिश के बाद घाघली गदेरे में भारी मात्रा में मलबा आ गया, जिसके चलते थराली देवाल और थराली कुराड़ मार्ग प्रभावित हुए। एक रास्ता खोल दिया गया है, लेकिन कई इलाकों में अब भी लोगों की मुश्किलें बनी हुई है। उफनते नाले के किनारे बसे राडीबगढ़ गाँव के लोगों ने पूरी रात दहशत में गुजारी। ग्रामीणों का आरोप है कि सुरक्षा इंतजामों की कमी के कारण हर बारिश में खतरा बढ़ जाता है। चमोली में पहले भी बादल फटने और भारी मलबे की घटनाएं सामने आ चुकी हैं और इस बार मॉनसून के शुरुआत में ही हालात डराने लगे। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में लगातार बारिश जारी है। तीन दिनों से हो रही बारिश का असर अब अलकनंदा नदी पर दिखाई दे रहा है। खतरा लगातार बना हुआ है। नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और अलकनंदा उफान पर बह रही है। हालांकि खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था कायम है। बारिश के बीच भी यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। यात्रा मार्ग फिलहाल सुचारू है, लेकिन पहाड़ों के बदलते मौसम के बीच खतरा लगातार बना हुआ है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारिश ने चार धाम यात्रा की रफ्तार रोक दी। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर खांकुरा के पास पहाड़ दरक गया। भारी भरकम बोल्डर सड़क पर आ गिरे और देखते ही देखते हाईवे बंद हो गया। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। कई यात्री घंटों तक रास्ता खुलने का इंतजार करते रहे। बारिश के मौसम में पहाड़ों की यात्रा एक बार फिर चुनौती बन गई है। नैनीताल में लगातार लगभग 8 घंटे हुए मूसलाधार बारिश के बाद 7 नंबर स्थित आलमग कॉटेज और जिला पंचायत रोड क्षेत्र में भू धसाव तेज हो गया। पहाड़ी का बड़ा हिस्सा खिसक कर नीचे नाले में जा गिरा, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। सड़क के ऊपर बने 5 और नीचे स्थित 7 परिवारों के मकान खतरे की जद में। स्थानीय लोगों का कहना है कि अभी समय रहते सुरक्षा कार्य करा दिए गए होते तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती।
15: उनके क्षेत्र में लगातार वर्षा हो रही है, इसी संबंध में आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया गया। तो सर प्रथम जो 7 नंबर का हमारा लैंडस्लाइडिंग एरिया है उसको आज विजिट किया गया और वहां पर उस निरीक्षण में एक्सियन पीडब्ल्यूडी और एक्सियन इरीगेशन भी मौजूद थे। एक्सियन इरीगेशन को पूर्व में भी आयुक्त महोदय के द्वारा जो है DPR उस एरिया की गठित करके तत्काल काम कराने के लिए निर्देशित किया गया है। तो उसी के क्रम में आज हम लोगों के द्वारा निरीक्षण किया गया और ये देखा गया कि वहां पर तात्कालिक तौर पर भी कुछ कार्य कराए जाने की आवश्यकता है, जिसको इरिगेशन विभाग कल से ही टेकअप करेगा।
0: मौसम विभाग की तरफ से उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और कुमाऊं क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर के लिए रेड अलर्ट है। देहरादून, पौड़ी, चंपावत, हरिद्वार, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली और नैनीताल जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए। पूरे उत्तराखंड में 117 सड़कें अब भी बंद है। बहरहाल ये मॉनसून की पहली किश्त ने जिसने पहाड़ों पर हाहाकार मचा रखा है, मौसम विभाग की माने तो अभी आसमान से आफत थमने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
17: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.

0: से पूछिए, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा को इस बात का इल्म हो गया है कि इस बार जनता भाजपा के विरोधी नहीं, जो भाजपा के समर्थक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो नेता हैं, उनको जो जिन्होंने वोट दिया है, उनका बिल्कुल मत क्लियर है कि सम्राट चौधरी जैसे व्यक्ति को, के चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को आप बिहार का मुख्यमंत्री नहीं थोप सकते हैं। आपको जिस समाज का भी मुख्यमंत्री बनाना है बनाइए, कुशवाहा समाज का मुख्यमंत्री बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी अच्छे व्यक्ति को बनाइए, चरित्रवान व्यक्ति को बनाइए, पढ़े लिखे व्यक्ति को बनाइए, ताकि बिहार का तरक्की हो। बिहार के लोग, बिहार के बच्चे सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, आपको वोट दिया है बिहार के लोगों ने, 202 विधायक जिताया है, तो आपकी जिम्मेवारी है कि सबसे अच्छे व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व दीजिए ताकि बिहार का विकास हो सके।
1: हाँ, उनके प्रत्याशी हार के डर से नामांकन के बाद भी नाम वापस ले रहे हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में इतना अंतरकला है, इतना द्वंद्व है, वो डिसीजन कर ही नहीं पाते, तो उनका प्रत्याशी कौन जीत सकता है?
2: कौन सी है सूर्य की राशि, क्या है सूर्य की राशि की विशेषता, क्या चंद्रमा की राशि बहुत ज्यादा इमोशनल होती है, क्या चंद्रमा की राशि वालों का वैवाहिक जीवन बेहतर नहीं होता है, क्या है सूर्य और चंद्रमा की राशियों का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
3: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

मिडिल ईस्ट में फिर बढ़ के युद्ध के शोले। ईरान के बुशहर समेत कई शहरों में अमेरिकी हमला आया। जीसी ने कहा करारा जवाब मिलेगा, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर फिर बोला हमला, कहा इनका इतिहास राम भक्तों के खून से सना, भारत की विरासत और आस्था को किया अपमानित। बीजेपी आलाकमान की सख्ती से नरोत्तम मिश्रा का सरेंडर। एमपी के सीएम मोहन यादव से मुलाकात, बोले सही है पार्टी का फैसला, राजनीति में सब चलता रहता है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वर्डिंग को हटाने पर अड़ा चन्नी ग्रुप। भूपेश बघेल से मुलाकात के बाद भी नहीं बनी बात, अब आलाकमान के पाले में है गेंद। और आमिर खान की तीसरी शादी पर भड़के नीतीश राणे, बताया लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर। युवाओं से की आमिर खान की फिल्में सोच समझ कर देखने की अपील।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आजकल हम रोज अलग अलग ग्रहों की राशियों के बारे में बात कर रहे हैं और आज नंबर आ गया है सूर्य और चंद्रमा की राशियों के बारे में। तो आज आपको बताएंगे कि सूर्य की राशि कौन सी है, चंद्रमा की राशि कौन सी है और इनकी विशेषताएं क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

26 दिन रविवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, रात के 10:29 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, प्रातः 8:29 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम के 7:06 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज आपको बता रहे हैं सूर्य और चंद्र की राशियों के बारे में। देखिए, सबसे बड़ी इनकी विशेषता ये है कि इनके पास केवल एक ही एक राशियां हैं, बाकी ग्रहों के पास दो दो राशियां हैं। तो पहले जानते हैं कि सूर्य की राशि कौन सी है और इसकी विशेषता क्या है। देखिए, सूर्य पूरी तरह से अग्नि तत्व का ग्रह है और सूर्य एक ही राशि का स्वामी है, एक ही राशि के साथ इसका संबंध है, वो है सिंह राशि। सिंह राशि पूर्ण रूप से अग्नि तत्व की राशि है और सिंह राशि मंगल को बड़ी प्रिय मानी जाती है। आम तौर पर सिंह में बैठा हुआ मंगल बड़े बेहतरीन परिणाम जीवन में देता है। अगर आपके ऊपर सिंह राशि का प्रभाव है तो आपके जीवन में सूर्य की शक्तियां प्रबल होंगी। आपका लग्न सिंह हो या आपकी राशि सिंह हो, अगर सिंह का प्रभाव आपके जीवन में है तो सूर्य पूरी तरह से आपके जीवन को कंट्रोल करेंगे और आपके जीवन में सूर्य से संबंधित गुण पैदा होंगे। सूर्य की राशि पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में कुछ बदलाव होगा, मानसिक चिंता समाप्त होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, खूब सारी दौड़ भाग करनी पड़ेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।
मिथुन राशि, मानसिक चिंता रह सकती है, करियर में समस्या हो सकती है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। तो सूर्य के पास एकमात्र राशि है सिंह राशि, और चूंकि एक ही राशि है तो सूर्य की सारी ताकत, सूर्य का सारा गुण इस राशि के अंदर पाया जाता है। इसकी विशेषता क्या है? देखिए, सिंह राशि को अग्नि तत्व की प्रमुख राशि माना जाता है, 100% फायर एलिमेंट की राशि है। सिंह राशि को नेतृत्व, साहस, संघर्ष और राजनीति की राशि मानते हैं। सिंह वालों के अंदर नेतृत्व करने का गुण और साहस जबरदस्त होता है। ऐसा देखा गया है कि अगर बाकी राशियों का साथ मिले, ग्रह अनुकूल हो, तो इस राशि के लोग अक्सर समाज का नेतृत्व करते हैं। शरीर की हड्डियों के मामले में, बोन स्ट्रक्चर के मामले में और विद्या के मामले में ये राशि बड़ी महत्वपूर्ण है। सिंह राशि से आपकी एजुकेशन देखी जाएगी और शरीर की हड्डियों का हाल क्या है वो भी सिंह राशि आपको बता देगी। सिंह राशि वाले वैसे बड़े उदार होते हैं, क्रोधी तो होते हैं लेकिन दूसरों के लिए करने में बहुत आगे होते हैं, उदार होते हैं। 3-5 का गुण इनके अंदर नहीं होता। इस राशि की सबसे बड़ी कमजोरी है अति विश्वास। ये अक्सर जीवन में मात खाते हैं ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में। अगर ये बैलेंस दिमाग से चलें तो जितनी ये मेहनत करते हैं जीवन में उतनी ही तरक्की करेंगे। इनको सलाह लेकर एक मूंगा धारण करना चाहिए और सिंह राशि के लोगों को अपनी बुद्धि, अपने दिमाग को कंट्रोल करने के लिए गायत्री मंत्र का नियमित जप करना चाहिए, वो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। आगे चंद्रमा की राशि पर बात करेंगे लेकिन बता दें कि कार्यक्रम में आगे ये भी बताएंगे कि आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

काम की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है। अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न मनोज ने हमें लिखा है। इंदौर से मनोज जी लिखते हैं, इनकी जन्म की तारीख है 2 दिसंबर 1989, जन्म का समय शाम के 6:45, जन्म का स्थान है शहडोल मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है तो मेरे विवाह होने की क्या संभावना है, क्या स्थितियां बनती हैं? मनोज जी, आपकी कुंडली में अति विलंब से विवाह का योग जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी शादी नहीं होगी। आपकी शादी की संभावनाएं बनी हुई हैं और साल 2027 के आरंभ में आपका विवाह होगा। आपका वैवाहिक जीवन कुल मिला जुला के ठीक है, उसमें कोई बहुत समस्या दिखाई नहीं दे रही है। आपका विवाह शीघ्र हो, वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें और एक मोती लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती अगर धारण करें तो आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं चंद्रमा की राशि की। चंद्रमा भी केवल एक ही राशि का स्वामी है, तो चंद्रमा की राशि कौन सी है और इसकी विशेषता क्या है? देखिए, चंद्रमा मुख्य रूप से जल तत्व का, वाटर एलिमेंट का ग्रह है और चंद्रमा सिर्फ एक ही राशि का स्वामी है। एक ही राशि के साथ इसका पूर्ण संबंध है, कर्क राशि। कर्क राशि 100% जल की राशि है। ये कर्क राशि बृहस्पति को अत्यंत प्रिय है। बृहस्पति इस राशि के संपर्क में आने पर बड़े शक्तिशाली हो जाते हैं। कर्क राशि का जो प्रभाव है वो चंद्रमा और बृहस्पति को मजबूत कर देता है। अब चूंकि चंद्रमा की एक ही राशि है तो चंद्रमा के सारे गुण, अच्छाई भी और बुराई भी, ये सब कर्क राशि के अंदर पाए जाते हैं। बाकी जो ग्रह हैं उनके पास दो राशियां हैं, तो किसी में अच्छा, किसी में बुरा, किसी में निगेटिव, किसी में पॉजिटिव, लेकिन अब चंद्रमा की तो एक ही राशि है ना, कर्क। तो चंद्रमा के सारी प्रॉपर्टी, सारे गुण कर्क राशि में पाए जाएंगे। आपका लग्न कर्क हो या आपकी राशि कर्क हो, कर्क का प्रभाव आपके ऊपर जरूर होगा। चंद्रमा की राशि पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल।

अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, चिंताएं कम होती जाएंगी, करियर में सफलता मिलेगी, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। तो ये बात आपने जान ली कि चंद्रमा की राशि है कर्क राशि। कर्क राशि की विशेषताएं क्या हैं, इनकी कमजोरी क्या है, ये समझते हैं। देखिए, कर्क राशि आम तौर पर बड़ी सुंदर राशि और बड़ी चंचल राशि मानी जाती है। आप ज्यादातर देखेंगे कर्क वालों का कॉन्सेंट्रेशन जल्दी नहीं बनता, उनका मन बहुत जल्दी जल्दी भटकता रहता है या चंचल होता रहता है। कर्क राशि क्रिएटिविटी की सबसे बड़ी राशि है। इस राशि में कल्पना, सौंदर्य, दया और ज्ञान पाया जाता है। ज्यादातर आप कर्क वालों को देखेंगे वो दयालु होते हैं, दूसरों के दुख से तुरंत दुखी हो जाते हैं। और ज्यादातर जो कर्क वाले होते हैं वो कलाकार होते हैं, बड़े क्रिएटिव होते हैं, कला में, मीडिया में, फिल्म में, ये क्षेत्र इनको बड़ा सूट करते हैं क्योंकि ये क्रिएट करना जानते हैं। कर्क राशि हृदय और भावनाओं की सबसे बड़ी राशि है। आप सोचते क्या हैं, आपके विचार क्या हैं, आपका मन कैसा रहता है, ये कर्क राशि आपके कुंडली में बता देगी। अब देखिए, कर्क राशि वाले इतने ज्यादा इमोशनल होते हैं कि इमोशंस के चक्कर में अक्सर बेवकूफ भी बनते रहते हैं। ज्यादातर आप कर्क राशि वालों को या कर्क लग्न वालों को देखेंगे, उनकी लव लाइफ, उनकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं होती, क्योंकि ये जिस लेवल पर इमोशन में जाते हैं दूसरा आदमी उस लेवल पर इमोशन में नहीं आता है। इसीलिए इमोशनली और भावनात्मक रूप से ये हमेशा कमजोर बने रहते हैं। जैसा आपको बताया कि इस राशि की सबसे बड़ी कमजोरी है इमोशनल होना। देखिए, भावुक होना बुरी बात नहीं है, आप इंसान हैं, मानव हैं, तो भावुक तो होंगे ही, भावनाएं तो होंगी, लेकिन जरूरत से ज्यादा भावनाओं का होना और भावनाओं से ट्रिगर होना, ये कर्क राशि वालों की समस्या है। कर्क राशि के साथ वैवाहिक जीवन और प्रेम का जीवन अक्सर अच्छा नहीं होता, और अगर कर्क लग्न है तो 90% मामलों में ये वैवाहिक जीवन में असंतोष या अकेलापन पैदा करता है। कर्क वालों को सलाह लेकर एक ओपल या एक मोती ये जरूर पहनना चाहिए, वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कर्क वाले जितना मेडिटेट करें, जितना ध्यान करें, उतना बढ़िया होगा। और कर्क

लोगों को यथाशक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार शिव जी की उपासना करनी चाहिए। शिव जी की ये जितनी उपासना करेंगे उतना ज्यादा इनके लिए बेहतर होगा। देखिए, सूर्य और चंद्रमा की केवल एक ही एक राशियां हैं, इसीलिए सूर्य का 100% प्रभाव सिंह पर होता है और चंद्रमा का 100% प्रभाव कर्क पर होता है। देखिए, सिंह वाले दो बातें समझ लें कि जीवन में अगर आपको मुश्किलों से बचना है, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और हनुमान जी की पूजा करिए, आप जीवन की मुश्किलों से बचे रहेंगे। और कर्क वाले अगर जीवन की मुश्किलों से बचना चाहते हैं तो नियमित रूप से शिव जी को जल चढ़ाएं और जितना संभव हो उनके मंत्र का जप करें। नमः शिवाय का कर्क वाले जितना ज्यादा जप करेंगे उतना ही उनके लिए बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना विशेष है और आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, ऑफिस की स्थिति में सुधार होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। कुंभ राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, परिवार में विवादों से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। मीन राशि, चिंताएं थोड़ी कम होंगी, नौकरी की स्थिति अच्छी हो जाएगी, चोट चपेट से सावधान रहें। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर सूर्य सुबह उदित ना हो, बारिश हो, सर्दियां हो तो पूरब दिशा की तरफ चेहरा करके जल चढ़ा देना चाहिए। क्या ऐसा उचित है? देखिए, सूर्य देव जब उदित होते हैं और आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं तो सूर्य की किरणें जल के माध्यम से होती हुई आपके शरीर में प्रवेश करती हैं, तब आपको रंगों का, कलर का, कलर थेरेपी का फायदा होता है। अगर बारिश की वजह से, सर्दियों की वजह से सूर्य देव उदित नहीं हुए हैं तो पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके जल चढ़ाने का कोई लाभ नहीं है, ऐसा ना करें। अगर घर के सामने बिल्डिंग बन गई है, सूर्य देव के दर्शन सुबह नहीं होते हैं तो भी आप बिल्डिंग को जल मत चढ़ाइए, नीचे उतरिए, पार्क में जाकर जहां सूर्य देव के दर्शन हो
वहां से जल चढ़ाना उचित होगा। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं।

हैं। नंबर दो, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। नंबर तीन, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर चार, काम की रुकावट दूर होगी। नंबर पांच, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। नंबर छह, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर सात, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। नंबर आठ, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। नंबर नौ, संपत्ति का लाभ हो सकता है। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करें, आपके काम में चली आ रही बाधा दूर होगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न आदित्य जी ने हमें लिखा है और आदित्य जी हमें मुंबई से मेल लिखते हैं। 28 फरवरी 1983 का जन्म है। दोपहर में 2:10 जन्म स्थान है नासिक। मेल लिखते हैं मुंबई से। ये कह रहे हैं कि मेरी नौकरी छूटने वाली है, मैं नोटिस पीरियड पे काम कर रहा हूँ। अगली नौकरी मुझे कब तक मिलेगी या मुझे किसी व्यापार में जाना चाहिए? आदित्य, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी नौकरी मिलने का समय इस साल के अंत में है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के समय तक आप जो टेक्निकल नौकरी कर रहे थे लगभग वैसी ही टेक्निकल नौकरी आप पा जाएंगे, चिंता की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात आपके लिए ये है कुंडली में कि आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है नई नौकरी पाने के सिलसिले में। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकले की सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज कोई परीक्षा है तो पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आज, तो अपने साथ एक लाल फूल रख करके जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज के लिए या चिकित्सा के लिए जाना है तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। और अगर आज कोई खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो लाल रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा।

धन का लाभ होगा, आज का दिन मंगलमय होगा, धनु राशि वालों के लिए रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में सफलता मिलेगी। आज सावधान रहना होगा, कुंभ राशि वालों को सेहत बिगड़ सकती है, तनाव बढ़ सकता है। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना विशेष है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज त्रयोदशी तिथि है, आज महत्वपूर्ण काम करने से बचिएगा, लेकिन आज शीघ्र विवाह के लिए भगवान कामदेव की उपासना करना लाभकारी होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

अमेरिका ईरान तनाव पर फिर चरम पर है। हॉर्मुज में युद्ध का खतरा गिराया। अमेरिका के तीसरे सैन्य हमले के बाद खाड़ी देशों में बढ़ा है तनाव। ईरान के जास पोर्ट पर धमाकों से हड़कंप। आईएनए का दावा, हॉर्मुज प्रांत जास बंदरगाह शहर में 10 से ज्यादा विस्फोटों की आवाज सुनी गई। अमेरिका ईरान टकराव तेज हुआ। हॉर्मुज के जहाजों पर हमलों के बाद सैन्य कार्रवाई। समुद्र में बढ़ा है सैन्य तनाव। ईरान बोला, नियम तोड़ने पर जहाज रोका गया। अमेरिका ने कहा, हमलों की कीमत चुकानी होगी। रिलीज में फिर युद्ध जैसे हालात हैं। व्यापारिक जहाजों पर हमले के बीच अमेरिका का एक्शन। ईरान के जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। वियतनाम में भारतीय पर्यटकों को लेकर जा रही नाव पलट गई, 15 लोगों की मौत। वियतनाम के फूक्योक द्वीप के पास हादसे के समय बोट में सवार थे 32 भारतीय पर्यटक और चार क्रू मेंबर्स। 21 लोगों को बचाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर दुख जताया। वियतनाम के हनोई में भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। तीन देशों के कामयाब दौरे के बाद आज लौटेंगे प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड से। दिल्ली के लिए भरी उड़ान। न्यूजीलैंड के साथ 10 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। दोनों ही देशों के बीच कारोबार को 2030 तक 35,000 करोड़ रुपए करने का रखा गया है टारगेट। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का कहर। उत्तराखंड में डॉक्टर की मौत। उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी और पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट। 8 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया। टिहरी गढ़वाल में लगातार तीन दिन से लगातार बारिश। नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट के निर्देश। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग रुद्रप्रयाग के निकट खाकरा में प्रभावित हुआ है। हाई पर टूटकर आ गए थे पत्थर। नोएडा के सेक्टर 76 में सोसाइटी के लोगों ने आवाज बुलंद की। प्रिंसली एस्टेट के निवासियों ने अतिक्रमण के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। राम मंदिर ट्रस्ट को मिलेगा नया सीईओ। सर्च कमेटी की पहली बैठक में चयन प्रक्रिया तेज हुई। 1 महीने में नियुक्ति का लक्ष्य है। सीईओ पद के लिए हुई योग्यता ग्रेजुएशन के साथ प्रशासन या वित्त में 20 साल का अनुभव भी होना चाहिए। मंदिर प्रबंधन का अनुभव बनेगा प्लस पॉइंट। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने अनुभवी और हिंदू धर्म के उम्मीदवारों को दी है प्राथमिकता। 18 जुलाई तक मांगे जाएंगे आवेदन। 3 साल के कार्यकाल के लिए होगा चयन। अयोध्या में रहकर संभालनी होगी जिम्मेदारी। विपक्ष का बीजेपी पर बड़ा हमला। कांग्रेस ने चंदा विवाद पर पीएम

की चुप्पी पर सवाल उठाए। चंदाचोरी पर कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी बोली दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राम मंदिर ट्रस्ट विवाद पर कांग्रेस हमलावर, बीजेपी ने विपक्ष पर राजनीति करने के आरोप लगाए। सीएम योगी का पलटवार, बोले राम भक्तों के खून से सना हुआ है एससी का इतिहास। समाजवादी पार्टी का इतिहास, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में निगरानी में जांच की मांग उठाई। योगी ने एसपी को आस्था विरोधी बताया, कांग्रेस ने संसद में पीएम से जवाब मांगने का ऐलान किया। भोपाल में नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव से मुलाकात की, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी रहे मौजूद, मौजूदा हालात पर चर्चा की गई। दतिया से टिकट कटने पर आज तक से बोले नरोत्तम मिश्रा, मुझे कोई नाराजगी नहीं है, पार्टी जो कहेगी वही करूंगा, आशुतोष तिवारी के नामांकन में जाऊंगा। दतिया में बीजेपी के बीच टिकट विवाद में कूदी कांग्रेस, पवन खेड़ा का सोशल मीडिया पर बयान, बीजेपी की पोल खुल गई है। दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर समर्थकों का बवाल, नेशनल हाईवे पर समर्थकों ने लगाया घंटों जाम, जमकर हंगामा किया। कांग्रेस ने दतिया सीट से घनश्याम सिंह को बनाया उम्मीदवार, बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी से टक्कर होगी। श्रीनगर की रैली में उमर अब्दुल्ला का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की तोड़ने की कोशिश की, 20 से 30 करोड़ रुपए मंत्रिपद का ऑफर था। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा झटका, भरोसेमंद नेता अनुव्रत मंडल बार खेमे में शामिल। बंगाल के सीएम सुब्रत अधिकारी ने बारुईपुर में पीड़ित परिवार से मुलाकात की, नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या की घटना को के बाद पीड़ित परिवार ने न्याय की मांग की है। अंजाम में अमरिंदर राजा बडिंग के अध्यक्ष पद पर बने रहने पर चरणजीत सिंह चन्नी गुट खफा है, भूपेश बघेल की मुलाकात के बाद भी नहीं सुलझे हैं हालात। चंडीगढ़ के देवर के बीच बोले अमरिंदर राजा वडिंग, पंजाब कांग्रेस में कोई अंदरूनी कलह नहीं है, सब एकजुट। आमिर खान की तीसरी शादी पर बढ़के महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे, बताया लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर, युवाओं को आमिर खान की फिल्में सोच समझकर देखने की अपील की। जामनगर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई गुजरात के मंत्री बाबा जडेजा, युवाओं को आत्मनिर्भर, शिक्षा और स्वदेशी का संदेश दिया। योगी सरकार ने झारखंड और छत्तीसगढ़ को दी है बड़ी सौगात, 9,000 करोड़ रुपए के रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी। हैदराबाद में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, कोंडाकल में मेधा बोगी फैक्ट्री और मेधा सर्वो ड्राइव्स लिमिटेड के विनिर्माण संयंत्र का दौरा किया। रामपुर में अब अग्निशमन विभाग में जौहर यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसा गया है, नोटिस जारी करके जवाब तलब किया गया, नियमों की अनदेखी के आरोप लगाए गए। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की, कहा आत्मनिर्भरता बढ़ाना बहुत जरूरी। भारतीय नौसेना को मिला एक और नगीना, नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ आईएनएस महेंद्रगिरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई दी। भारतीय सेना खरीदेगी 450 कालगुस्ताफ मल्टी रोल रॉकेट लॉन्चर, जंगल पहाड़ रेगिस्तान और अर्बन वॉरफेयर में घातक हथियार। पीएफआई टेरर केस में 20 आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम, आतंकी साजिश के मामले में 29 जुलाई से शुरू होगा ट्रायल। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर केस में न्यायिक आयोग के सामने माता पिता की गवाही पूरी हुई, कहा जब जांच के बाद ही समझ में आएगा कि इंसाफ मिला या नहीं। इंदौर में 22वें पुण्योदय प्रकल्प का शुभारंभ, एमपी में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को फ्री बांटी जाएंगी 3 लाख कॉपियां।

0: फ्रेंड्स फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अमानी बनी फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन 2026 मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया सम्मानित। देश की सबसे शक्तिशाली महिला का खिताब मिलने पर नीता अंबानी ने कहा रिलायंस फाउंडेशन ने 10 करोड़ लोगों की जिंदगी में बेहतर बदलाव लाने का लक्ष्य हासिल किया। लक्स कोजी ग्रुप में बंगाल में 600 करोड़ रुपए के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए रखी आधारशिला। एशिया के सबसे बड़े गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में से एक बनाने की तैयारियां। लक्स कोजी ग्रुप ने अपने इस इतिहास का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग निवेशक बताया है। इस प्रोजेक्ट से एशिया का सबसे बड़ा गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा कोलकाता। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में खीर गंगा का बढ़ने लगा है जलस्तर। हर्षिल थाना पुलिस ने एहतियात के तौर पर स्थानीय लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। इंदौर में 22वें पुण्योदय प्रकल्प का शुभारंभ। एमपी के आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को फ्री में बांटी जाएंगी 3,00,000 कॉपियां। स्विगी इंस्टामार्ट को एफएसएसआई ने इंग्लैंड ने आखिरी T20 में भारत को 56 रन से हराकर सीरीज पर 4-0 से कब्जा किया। मेजबान ने 3 विकेट खोकर बनाए 257 रन। चेक गणराज्य का लिंडा नोस्कोवा ने जीता विंबलडन में महिला सिंगल्स का खिताब। फाइनल में वो मोचा को 3 सेट में हराया। विंबलडन 2026 मेंस फाइनल आज दुनिया के नंबर 1 यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में एंट्री मारी। रोमांचक क्वार्टर फाइनल जीत के साथ स्पेन का खिताब की ओर दमदार कदम। इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में बनाई है जगह। रोमांचक क्वार्टर फाइनल में अतिरिक्त समय में जीत खिताब की दौड़ में बरकरार इंग्लैंड। स्पेन में जंगल की आग से भीषण तबाही। अल्मेरिया में 12 की मौत हुई 23 लापता 3,200 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जलकर खाक। स्पेन में आग से जंग जारी है। मिलिट्री इमरजेंसी यूनिट का रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन। कई कस्बों से लोगों को सुरक्षित निकाला गया। टाइफून बावी का एशिया में कहर। जापान ताइवान और फिलीपींस में तेज हवाओं और बारिश के साथ जनजीवन अस्त व्यस्त। जापान में बावी से बिजली संकट। इशिगागी में 4,000 से ज्यादा घरों की बिजली गुल हुई। हवाई और फेरी सेवाएं ठप हुई। चीन की ओर बढ़ गया है टाइफून बावी। ताइवान में 36 घायल हुए। 14,000 लोग सुरक्षित स्थानों पर। चीन ने 18,00,000 लोगों को कराया शिफ्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई ने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामनेई की हत्या का बदला लेने की कसम खाई। कहा शहीद नेता का बदला लेना देश की मांग। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच ओमान पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगाची। हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को लेकर बातचीत की। यमन में हूती समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन। ईरान के समर्थन में 14 प्रांतों में निकाली गई रैलियां। यूक्रेन बनाएगा पैट्रियट जैसी स्वदेशी मिसाइल रक्षा प्रणाली। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा ऐलान। रूस के खिलाफ प्रस्तावित 21वें प्रतिबंध पैकेज पर फिलहाल नहीं बन पाई है सहमति। यूरोपीय संघ में सदस्य देशों ने सहमति न बनने के कारण नहीं लागू हो सका प्रतिबंधों का 21वां पैकेज। दिल्ली के जसोला इलाके में दीवार गिरने से एक की मौत हुई 2 घायल हुए। राजस्थान के नागौर में स्कॉर्पियो ने स्कूटी सवार 2 वाहनों को टक्कर मारी थी 2 गंभीर रूप से घायल। टोंक में घर के बाहर खड़ी हुई कार को ले भागे थे चोर। रेकी के बाद वारदात को अंजाम दिया था। सीसीटीवी फुटेज सामने आई। आगरा के सुभाष बाजार हादसे में महिला की अब तक नहीं मिल पाई है कोई सुराग। मलबे में 7 नाले में समा गई महिला। झांसी में छुट्टी के बाद 11वीं के छात्र को बदमाशों ने पीटा भाई पर किया हमला। नोएडा में 9 जुलाई को इंजीनियर आर्यन की मौत का मामला सामने आया। फुटेज भी सामने आई। प्रशासन के मुताबिक करंट लगने से जान गई। नोएडा में फर्जी लोन कॉल सेंटर का भांडाफोड़। 5 साइबर ठग गिरफ्तार। करोड़ों की ठगी का आरोप है। हापुड़ में दुकानदार ने खरीदी पानी की बोतल में एसिड मिलने का आरोप लगाया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। बिहार के मुजफ्फरपुर में पवन एक्सप्रेस में टिकट हैम्परिंग का खुलासा। छेड़छाड़ किए गए टिकट के साथ 4 की गिरफ्तारी। मुजफ्फरपुर में ज्वेलरी कारोबारी को बदमाशों ने गोली मारी। 2,50,000 रुपए के गहने लूट कर फरार कारोबारी अस्पताल में भर्ती। सूरत में बैंक रिकवरी एजेंट की धारदार हथियार से हत्या। शॉपिंग सेंटर में शव मिला। इंदौर में कॉलेज छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। दीवार पर अंग्रेजी में लिखा सुसाइड नोट। रेवाड़ी में सिलेंडर ब्लास्ट में एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हुई। इलाज के दौरान पिता ने तोड़ा दम। 9 जुलाई को बेटी की जान गई थी। टिहरी के थाना कामटी इलाके में 12 घंटे के भीतर नाबालिग बरामद किया गया। पहला फुसला कर एक युवक ने वारदात को अंजाम दिया था। राजस्थान के बूंदी में सिगरेट उधार नहीं देने पर दुकानदार चाकू से उस पर हमला बोला गया। दुकानदार को कोटा किया गया है रेफर, आरोपी फरार। पीलीभीत में सड़क निर्माण की मांग को लेकर पानी टंकी पर चढ़ गया था ग्रामीण, एसडीएम के आश्वासन के बाद नीचे उतारा गया। एमपी के अलीराजपुर में गैंगरेप कर महिला से दरिंदगी, डकैती के इरादे से घुसे 8 हथियारबंदों ने वारदात को अंजाम दिया। अमरावती के परतवाड़ा में हुए सेक्स स्कैंडल मामले में 4 आरोपियों को जमानत मिल गई है। मुख्य आरोपी अयान और उजैर खान भी अब जेल में बंद। सतारा में करार के आगाशिप पहाड़ पर स्कूली छात्रों पर मधुमक्खियों ने हमला बोला, 30 से 40 छात्र घायल हुए। संभाजीनगर में पुलिस की छापेमारी में 2 पिस्तौल, 5 राइफल, हथियारों और बाकी की जिंदा कारतूसों को जब्त किया गया। मृतक अपराधी बाबा फरजान के घर से भारी मात्रा में सोना चांदी भी जब्त।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस, चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
4: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world.
5: We know that Hamas has agreed to a deal at some point, and
4: or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
6: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
7: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
8: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
9: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
10: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक।
11: विमल बोलो जुबा केसरी, हिंट बड़े आराम से।
12: जय हिंद फ्रेंड्स। ईसाइत, सोना, मसाला या विस्तार, 1498 में क्या थी वास्को डिगामा की मंशा? मधुमक्खी जैसे गोरे जो शहद लेकर आ रहे थे, भारत को डंक मारना शुरू कर दिया और बेवकूफ राजाओं का फायदा उठाकर इस देश को गुलाम बना। लेकिन मीर जाफर और मीर कासिम ने अगर सर झुकाया तो रानी लक्ष्मीबाई ने सर उठाया और गोरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कैसी थी लड़ाई, कौन थे इसके महानायक, तलवारें चली या भजन चला? अगर बचपन में नहीं समझ में आया, नोटबुक निकाल लीजिए। मैं अवध ओझा जल लेकर आ रहा हूं मास्टर जी इन द न्यूज रूम, सिर्फ ललन टॉप पर।
13: वी मस्ट राइज, वी मस्ट फाइट। दरअसल ईरान की सड़कों पर ऐसे पोस्टर तो आपने देखे होंगे, लेकिन आपको याद होगा कि ये सिंबॉलिक जो हाथ आप देख रहे हैं, ये पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई का है। लेकिन अब ये हाथ जो है जिसमें उनकी अंगूठी हमेशा नजर आती थी, जो एक पावर का साइन था, वो अब ईरान में, खासतौर पर तेहरान के इन इलाकों में नजर आएगा, आजादी स्क्वायर पर नजर आएगा। आप देखते रहिए आज तक।
14: से पूछिए, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा को इस बात का इल्म हो गया है कि इस बार जनता भाजपा के विरोधी नहीं, जो भाजपा के समर्थक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो नेता हैं, उनको जो जिन्होंने वोट दिया है, उनका बिल्कुल मत क्लियर है कि सम्राट चौधरी जैसे व्यक्ति को, के चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को आप बिहार का मुख्यमंत्री नहीं थोप सकते हैं। आपको जिस समाज का भी मुख्यमंत्री बनाना है बनाइए, कुशवाहा समाज का मुख्यमंत्री बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी अच्छे व्यक्ति को बनाइए, चरित्रवान व्यक्ति को बनाइए, पढ़े लिखे व्यक्ति को बनाइए, ताकि बिहार का तरक्की हो। बिहार के लोग, बिहार के बच्चे सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, आपको वोट दिया है बिहार के लोगों ने, 202 विधायक जिताया है, तो आपकी जिम्मेवारी है कि सबसे अच्छे व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व दीजिए ताकि बिहार का विकास हो सके।
15: हाँ, उनके प्रत्याशी हार के डर से नामांकन के बाद भी नाम वापस ले रहे हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में इतना अंतरकला है, इतना द्वंद है, वो डिसीजन कर ही नहीं पाते तो उनका प्रत्याशी कौन जीत सकता है।
16: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: Soccer's biggest stage is here, and we've got everything you need to be plugged into the action. Stay connected to the World Cup with live commentary, expert analysis, and all the moments everyone's talking about. From pre-match buzz to post-match breakdowns, we bring you closer to the game with insights you won't want to miss. No matter where you are, take the World Cup with you. Search World Cup on TuneIn to find the stations and podcasts covering your favorite team.
1: दतिया, जहां बीजेपी का कमल खिलाने का प्लान है, वहां कमल के अपने ही पत्ते बिखरते दिखाई दिए।
2: भाजपा मुर्दाबाद,
3: मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
1: जिस पार्टी ने दशकों तक खुद को पार्टी विद डिफरेंस कहा, जिसने संगठन को व्यक्ति से बड़ा बताया, जिसने अनुशासन को अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी बताया, आज उसी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी ही सरकार की पुलिस से भिड़ गए। टिकट बदला तो सड़कें बदल गईं, कार्यकर्ता बदले तो नारों का निशाना भी बदल गया। मध्य प्रदेश के दतिया में 30 जुलाई को उपचुनाव है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। दतिया से आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाने की घोषणा होते ही नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। नेशनल हाईवे पर जाम लग गया, घंटों तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही, पुलिस पर पथराव हुए, कई पुलिसकर्मी घायल हुए। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि शांति बनाए रखें, पार्टी फोरम पर इस मुद्दे को उठाया जाएगा। आखिर दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्यों कटा? बताया जा रहा है कि दिल्ली के स्तर पर कराए गए सर्वे में नरोत्तम मिश्रा की स्थिति उम्मीद के मुताबिक मजबूत नहीं पाई गई। 2023 में बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिया था, लेकिन वो विधानसभा का चुनाव हार गए। केंद्रीय नेतृत्व ने स्थानीय संगठन और भविष्य की राजनीतिक स्वीकार्यता का भी आकलन कराया। इसमें नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी फिट बैठे, जिसके बाद उन्हें दतिया से टिकट दिया गया। बीजेपी ने एक ब्राह्मण नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर दूसरे ब्राह्मण आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है। इससे जातिगत और सामाजिक संतुलन बरकरार है। उधर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी साफ कर दिया कि बीजेपी में टिकट घोषित होने के बाद वापस लेने की परंपरा नहीं है। यानी संदेश साफ है, बीजेपी हाईकमान फिलहाल झुकने के मूड में नहीं है। नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं देने पर कांग्रेस उनके समर्थन में आ गई है। कांग्रेस ने तुरंत मौका देख और कहना शुरू कर दिया कि बीजेपी बड़े नेताओं को खत्म करती है। राजनीति में इसे अवसरवाद भी कहते हैं, क्योंकि जिस कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे पर वर्षों तक खींचतान चली, जहां टिकट बंटवारे पर दर्जनों बार बगावत हुई, वो अगर बीजेपी को संगठन का पाठ पढ़ाने लगे तो जनता मुस्कुराए बिना नहीं रह सकती। राजनीति में याददाश्त छोटी हो सकती है, लेकिन जनता की याददाश्त इतनी भी छोटी नहीं होती। लेकिन माहौल चुनावी है तो कांग्रेस जरूरत से ज्यादा बड़ा बनना चाहती है। हालांकि बीजेपी अक्सर कांग्रेस पर आरोप लगाती रही कि वहां फैसले ऊपर से होते हैं, नीचे सिर्फ पालन होता है। लेकिन दतिया में नरोत्तम मिश्रा के समर्थक आज बीजेपी से भी वही सवाल पूछ रहे हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ा संकट तब नहीं आता जब सिर्फ विपक्ष सवाल पूछता है, सबसे बड़ा संकट तब आता है जब सवाल अपने पूछने लगते हैं। अब देखना है कि क्या दतिया की दरार यहीं भर जाएगी या संदेश पूरे मध्य प्रदेश तक जाएगा। दतिया का उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं है, यहाँ बीजेपी के लिए अनुशासन बनाम असंतोष, हाईकमान बनाम जमीनी कार्यकर्ता और व्यक्ति बनाम संगठन, तीनों की एक साथ परीक्षा है। एक परीक्षा बिहार में बांकीपुर सीट पर भी देखने को मिली, जहाँ बीजेपी के उम्मीदवार ने आखिरी मौके पर पर्चा वापस लिया तो दूसरे उम्मीदवार को टिकट थमाना पड़ा। हुआ यूं कि बिहार ने पहले बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अभिषेक कुमार को उम्मीदवार बनाया। अभिषेक कुमार ने नामांकन भी भर दिया, लेकिन अचानक अभिषेक कुमार ने पर्चा वापस ले लिया और इसके पीछे निजी वजह बताया। इसके बाद बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को अपना उम्मीदवार घोषित किया। 13 जुलाई को बांकीपुर सीट से पर्चा भरने का आखिरी दिन है। फिलहाल नीरज कुमार सिन्हा ने बांकीपुर से पर्चा नहीं भरा है। इस सीट से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक थे, राज्यसभा के लिए सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दे दिया था। सवाल ये नहीं कि बांकीपुर जीतेगा कौन, सवाल ये नहीं कि दतिया में क्या होगा, सवाल ये कि बीजेपी जैसी पार्टी में ये क्या हो रहा है। कहीं बगावत तो कहीं मैदान छोड़कर भागने की शुरुआत। ऐसे में लोकतंत्र में बीजेपी विपक्ष को कैसे चुनौती दे पाएगी, इसका असर कार्यकर्ताओं और वोटरों पर क्या होगा। आज तक ब्यूरो।
4: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

वियतनाम के समंदर में भारतीय पर्यटकों से भरी नाव पलटी, अब तक 15 की मौत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री ने जताया शोक। राम मंदिर चढ़ावे चोरी को लेकर बयानों की जंग, सीएम योगी ने कहा समाजवादी पार्टी का इतिहास राम भक्तों के खून से सना, आस्था को किया अपमानित, कांग्रेस संसद में उठाएगी मामला। दतिया से बेटिकट नरोत्तम मिश्रा का सरेंडर, एमपी के सीएम मोहन यादव से मुलाकात के बाद बोले राजनीति में ये सब चलता रहता है, कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सिंह। और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वडिंग को हटाने पर अड़ा चन्नी गुट, राज्य प्रभारी भूपेश बघेल से मुलाकात के बाद भी नहीं बनी बात, अब आलाकमान के पाले में है गेंद।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। सुबह के 8 बजे हैं और आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ इस बुलेटिन में हम शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और ईरान से जुड़ी बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जहां ईरान की ओर से हॉर्मुज बंद किए जाने के दावे के बीच अमेरिका भड़क चुका है और ईरान के कई शहरों में अमेरिका ने हमला बोला है। उधर कनाडा के टोरंटो में एक फेस्टिवल के दौरान फायरिंग की खबर सामने आई। इसी के साथ हम बात करने वाले हैं वियतनाम के बारे में भी, जहां बड़ा जहाज हादसा हुआ है 15 भारतीयों की, जिसमें जान चली गई है। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तीनों ही तस्वीरें देखिए किस तरीके से टोरंटो में फायरिंग की खबर है और दूसरी तरफ 15 भारतीय जिन्होंने अपनी जान गंवाई है इस हादसे में, कई लोगों को बचा लिया गया है। साथ ही हॉर्मुज पर एक बार हंगामा फिर से शुरू हो चुका है। तो अमेरिका की सेना ने एक बार फिर से ईरान पर हमला बोला है और अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा यह किया है कि अमेरिकी सेनाओं ने ईरान के खिलाफ इस हफ्ते तीसरी बार सैन्य हमले शुरू कर दिए हैं। हॉर्मुज में कमर्शियल शिप पर हमले के बाद यह कार्रवाई की गई है। अमेरिका का आरोप यह भी है कि आईआरजी से इस हमले के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना यह है कि हमले में एक नागरिक चालक दल का सदस्य लापता है और जहाज को आग लगने और इंजन रूम को नुकसान पहुंचने के कारण आगे बढ़ने में परेशानी हो रही है। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि इन कार्रवाइयों का मकसद है व्यापारिक जहाजों और समुद्री कर्मियों पर हमलों की क्षमता को कमजोर करना। इसी बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पीथ हेडसेक ने ईरान ने गलत चुनाव किया है ये भी कहा और उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल ईरान ने हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान कर दिया है और ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का कहना यह है कि एक जहाज ने तय नियमों का पालन नहीं किया था और चेतावनी के बाद उसे रोका गया। ईरान ने किसी भी जवाबी कार्रवाई पर कड़ी प्रतिक्रिया देने की भी चेतावनी दी है। और इसी बीच बड़ी और अहम खबर भी आपको बता दें कि ईरान से ही मिल रही है, जहां बुशहर और साथ ही साथ अलसुले, बंदर अब्बास, सिरिक और केशम द्वीप सबसे ज्यादा धमाके सुने जाने वाले इलाकों में से एक हैं, जहां धमाकों की आवाजें लगातार सुनी गई हैं। ईरान की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका ने इन तमाम जगहों पर धमाके किए हैं जिसका बदला लिया जाएगा। तो अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने के बाद वैसे ही ईरान को चेताया था और कहा था कि यह तीसरा बड़ा सैन्य हमला है इस हफ्ते का ईरान के ऊपर अमेरिका की तरफ से। अब जानकारी है कि ईरान के बुशहर, साथ ही साथ अलसुले और बंदर अब्बास, सिरिक और केशम द्वीप पर जबरदस्त धमाकों की आवाजों को सुना गया है। ईरान की तरफ से एक बार फिर से चेतावनी को दोहराया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमलों का जवाब दिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी अशरफ वानी जुड़ गए। अशरफ, क्या जानकारी मिल रही है? कहा यह जा रहा है कि एक बार फिर से जबरदस्त तनाव है, क्योंकि कई अलग अलग जगहों पर जबरदस्त धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं, कितना नुकसान?
1: बिल्कुल शशि, और जो इस एमओयू के साइन होने के बाद तीसरी घटना है ये, जब सीज फायर का वायलेशन हुआ है, तो अब तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कल किया था कि अब अमेरिका ईरान के साथ अमेरिका का कोई सीज फायर नहीं है। तो उस बीच सूत्रों का ये कहना है कि ईरान पर अब तक जो दो हमले हुए उनसे भी जोरदार हमला ये अमेरिका की तरफ से था, और खासतौर से छोटी नावों को, जो अमेरिका का कहना है कि आईआरजीसी की स्पीड बोट्स हैं, जबकि ईरान का कहना है कि वो मछुआरों की बोट्स हैं जिन पर ये बमबारी की है अमेरिका ने। और खासतौर से इन नावों के साथ साथ बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आईआरजीसी का, उसको भी निशाना बनाया है अमेरिका ने अपनी कार्रवाई में, और यही कारण है कि तुरंत इस हमले के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने एक बार फिर बंद घोषित किया है। बंद घोषित करने का मतलब यह है कि अब अगर कोई भी जहाज उस रास्ते से गुजरता है जो कि अमेरिका ने तय किया था ओमान के तट से, उसको दोबारा उसी तरह निशाना बनाया जाएगा आईआरजीसी की तरफ से, जिस तरह इस हमले से पहले जो अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला किया गया है, जिसकी वजह यही बताई गई कि एक जहाज को आईआरजीसी ने निशाना बनाया, उसके इंजन रूम को भारी नुकसान पहुंचा, वो चलने के काबिल नहीं है, उस जहाज में अब आग भी पकड़ी है, उसका एक क्रू मेंबर जो है वो लापता है, उसके बाद ही अमेरिका ने कार्रवाई की थी। इसका संकेत अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले ही दिया था। जैसे आपको पता है शशि की, दरअसल जो वजह ही नहीं थी इस युद्ध की, वो अब वजह बन गई है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और एक तरफ ईरान ये चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उनके रेगुलेशन के मुताबिक उनके तय किए गए रास्ते पर ही जो है शिपिंग और नेविगेशन हो, जबकि अमेरिका और खाड़ी के देश ये चाहते हैं कि उस रास्ते से वो नहीं गुजरेंगे।
0: बिल्कुल, अशरफ, वाकई में तनाव जबरदस्त बना हुआ है और अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि ईरान ने भी पलटवार किया है, अमेरिकी ठिकानों पर ईरान के हमले लगातार जारी हैं और अब ये युद्ध फिर से शुरू हो गया है। सबसे बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि ट्रंप ने पहले ही कहा था कि सीज फायर खत्म हो चुका है और अब दोनों ही एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। पहले अमेरिका ने अटैक किया और अब ईरान की तरफ से पलटवार किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं और आपको यह भी बता दें कि अमेरिका ईरान में बढ़ते हुए तनाव के बीच इसराइल ने एक बार फिर से दक्षिणी लेबनान में भी हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया है। सबसे महत्वपूर्ण बात अशरफ ये कि बार बार सीज फायर के उल्लंघन की बात और उसके बाद सीज फायर खत्म हो रहा है, हम हमले कर रहे हैं, अमेरिका की तरफ से लगातार ये बयान दिए जाते रहे हैं। अब जिस तरह के हालात हैं, अब जिस तरह का तनाव, क्योंकि हॉर्मुज बंद कर दिया गया है, दोनों ही तरफ से लगातार जवाबी कार्रवाई की जा रही है, यानी माना जाए कि फुल फ्लेज्ड एक बार फिर से युद्ध शुरू हो चुका है,
1: ऐसा ही लगता है शशि। दरअसल क्योंकि इसका संकेत जब सीज फायर खत्म करने की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद की और दूसरी तरफ से इसराइल ने जो आपने अभी कहा कि तेजी लाई है हिजबुल्ला के खिलाफ हमलों में, जबकि कुछ ही दिन पहले जो है एक सीज फायर एग्रीमेंट लेबनान की सरकार और इसराइल के बीच में हुआ था, बातचीत के दो दौर हुए थे वो भी वाशिंगटन में, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अब इस तनाव से बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल को एक बार फिर मौका मिला है कि उन्होंने एमओयू की पहली शर्त जो लेबनान में भी सीज फायर की थी उसको पूरी तरह से उसका फायदा लेते हुए बड़ी भीषण बमबारी वहां पर शुरू कर दी है। और यहां तक कि दक्षिणी लेबनान से ये खबरें आ रही हैं कि गांवों के गांव जो हैं बमों से उड़ाए जा रहे हैं और वहां पर भी कई सारे लोगों के मारे जाने की खबरें अभी तक आ रही हैं।
0: अच्छा, बने रहे आप हमारे साथ। अपने दर्शकों को मैं भी बता दें कि अमेरिका ईरान में बढ़ते हुए तनाव के बीच इसराइल ने एक बार फिर से दक्षिणी लेबनान जो कि हिजबुल्ला का ठिकाना माना जाता है वहां जबरदस्त तरीके से हमले किए, निशाना बनाया हिजबुल्ला ने आतंकवादियों ने एक एंटी टैंक मिसाइल को इमारत में पहुंचाया था जिसे तबाह करने के लिए इजरायली रक्षा बल IDF ने उस इमारत को टारगेट किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस इलाके से लगातार पलायन लोगों का जारी रहा है, लाखों लाख लोग यहां से पलायन कर गए थे, लेकिन सीज फायर के बाद यहां लोग वापस लौटने लगे थे अपने घरों की तरफ, क्योंकि इसराइल का कहना यह है कि यह पूरा का पूरा इलाका हिजबुल्ला का गढ़ है। आगे बढ़ेंगे और यह खबर है कनाडा के टोरंटो से, जहां पर स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान गोलीबारी हुई और इस गोलीबारी में दो लोगों की जान चली गई जबकि 6 लोग बुरी तरह से घायल हुए। टोरंटो पुलिस के मुताबिक यह घटना शनिवार रात करीब 8 बजे सेंट क्लेयर एवेन्यू वेस्ट और आलिगटन एवेन्यू के पास हुई है। शुरुआती जांच के बाद टोरंटो पुलिस ने स्थिति को बेहद ही गंभीर बताते हुए एक्टिव शूटर को इसे एक्टिव शूटर की घटना करार दिया। पुलिस ने इस पूरे इलाके को घेरेबंदी करके छावनी में तब्दील किया है। हमलावर की तलाश बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो कनाडा के टोरंटो में स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान जबरदस्त फायरिंग हुई है, कई राउंड गोलियां चलाई गई हैं और आपको बता दें कि 2 लोगों की इसमें मौत हो गई है, कई लोग बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। अभी तक जो ये हमलावर है वो पकड़ा नहीं जा सका। शनिवार रात 8 बजे की ये घटना है जब ये शुरुआती जांच पुलिस की तरफ से जो की गई तो पता ये चला कि ये एक्टिव शूटर की घटना है और पुलिस ने इस पूरे इलाके को घेर लिया है। तलाशी के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी तक इस हमलावर को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। और अब बात करेंगे चढ़ावा चोरी पर जारी सियासी संग्राम के बारे में। चढ़ावा चोरी पर जारी राजनीति के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से राम मंदिर के बहाने SP पर सनातन के अपमान के आरोप लगाए। तो अयोध्या राम मंदिर चंदा विवाद को लेकर सियासी घमासान तेज हो चुका है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए पूरे मामले में उनकी चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेताओं ने देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मांग की है कि कथित चंदा अनियमितताओं की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। पार्टी का कहना यह है कि संसद के आगामी सत्र में वो इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से जवाब मांगेंगे। कांग्रेस ने SIT जांच को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि यह मामला सिर्फ शुरुआत है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई होगी और विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक रंग न दे। तो अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सीईओ की नियुक्ति को लेकर भी प्रक्रिया तेज हो चुकी है। सीईओ चयन के लिए बनाई गई सर्च कमेटी की पहली बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में तय किया गया कि सीईओ पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम योग्यता होगी ग्रेजुएशन, साथ ही साथ प्रशासन या वित्त के क्षेत्र में कम से कम 20 साल का अनुभव होना जरूरी है। मंदिर प्रबंधन का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। सीईओ पद के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति हिंदू धर्म से होना चाहिए। नियुक्ति शुरुआती तौर पर 3 साल के लिए होगी और उसके बाद चुने गए अधिकारी को अयोध्या में रहकर ही जिम्मेदारी संभालनी होगी। सीईओ पद के लिए आवेदन 18 जुलाई तक किए जा सकते हैं। सर्च कमेटी का लक्ष्य होगा करीब 1 महीने में चयन प्रक्रिया को पूरी करने का। कमेटी ने प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक सचिव नियुक्त करने का भी फैसला किया है। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत के बारे में, क्योंकि नया घमासान यहां शुरू हुआ है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर जारी राजनीति के बीच अब सिद्धिविनायक मंदिर में दान चोरी के आरोप लगाकर एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे और महायुति पर हमला बोला है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सवाल किए हैं कि उद्धव ठाकरे इस मुख्यमंत्री रहने के दौरान सिद्धिविनायक मंदिर में दान में गड़बड़ी के आरोपों पर चुप आखिर क्यों रहे।
2: उन्होंने कहा था किलेदार जी ने, बंसी के लीडर ने, कि सिद्धि विनायक को धोके और वहापुर स्थिति खोके। अब ये मेरा नहीं बोलना, मैंने नहीं बोला है, ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसका दाखिला मैंने दिया है। अभी राम रक्षा तो मैंने बता दिया कि ये तमाम करोड़ों राम भक्तों की एक आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है। जो हुआ है उसकी जांच शुरू है और उसमें कोई भी नहीं छूटेगा। आपको पता है कि मोदी जी की भूमिका क्या है, ना मैं खाऊंगा ना मैं किसको खाने दूंगा। चोरी तो करने की दिली को दूर की बात है, इसलिए मोदी जी और योगी जी जिन्होंने इसमें गलत काम किया होगा उनको जेल में बिल्कुल जेल के सलाखों के पीछे अंदर डाल देंगे, ये विश्वास है। ये करोड़ों करोड़ों राम भक्तों का ये संवेदना का विषय है, ये श्रद्धा का विषय है।
3: देखो, सिद्धि विनायक ट्रस्ट ये हमारे दिल के बहुत करीब है। ये मंदिर हमारे लोगों ने वहाँ इतना अच्छा काम किया है, गरीब लोगों को इतनी सहायता दी है, आपको मालूम है, जाकर देखिए आप। और हमारे अभी भी वहाँ लोग है, वो अभी जो उनका नया न्यास बना है वो राम मंदिर ट्रस्ट जैसा है, लूटने वाले लोग बैठे, उनके चोरी को हम नियंत्रित कर रहे हैं आज, इसलिए उनका वो गुस्सा है इतना शिंदे का, हम उनको चोरी नहीं करने दे रहे सिद्धिविनायक मंदिर में।
0: और अब बात करेंगे आमिर खान की तीसरी शादी के बारे में और इस पर शुरू हुई सियासी बयानबाजी के बारे में भी, क्योंकि महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे के बयान के बाद अब यह मामला राजनीतिक बहस का मुद्दा बन चुका है। अलीगढ़ से लेकर महाराष्ट्र तक आमिर खान को लेकर बयान और पलटवार का दौर जारी है। इस रिपोर्ट को देखिए।
4: लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो आमिर खान बनते नहीं जा रहे।
5: शिरडी में मत्स्य पालन मंत्री नितेश राणे ने आमिर खान की निजी जिंदगी को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सेलिब्रिटी को फॉलो करने वाले युवाओं को ये सोचना चाहिए कि उन्हें किससे प्रेरणा लेनी चाहिए।
4: इस तरीके की जब सेलिब्रिटी अपनी जिंदगी के बारे में कोई डिसीजन लेते हैं तो हिंदू समाज ने इसके बारे में सोचना चाहिए, ऐसे मानने वाला मैं हूँ। लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो आमिर खान बनते नहीं जा रहे, इसलिए हिंदू समाज ने और हिंदू युवाओं ने जो जो इनके पिक्चर देखते हैं, जो जो इनके मूवीज देखते हैं, उन्होंने सोच समझ के ऐसे लोगों को बड़ा करना चाहिए।
5: नीतीश राणे के इस बयान के बाद विवाद और तेज हो गया। अलीगढ़ में AIMIM जिलाध्यक्ष यामीन अब्बासी ने कहा कि देश का संविधान हर बालिग नागरिक को अपनी पसंद से शादी करने और धर्म चुनने का अधिकार देता है।
6: अगर आमिर खान ने 3 शादी की है तो मैं उन हिंदूवादी संगठनों के तमाम चिंतुओं से कहना चाहता हूं कि जब कोई गरीब व्यक्ति अगर शादी कर लेता है हिंदू समाज की लड़की से तो सड़कों पर उतर के उन पर लव जिहाद का और उन धर्म परिवर्तन के मुकदमे उन पर दर्ज करा करके उन्हें जेल भिजवाने का काम करते हैं। लेकिन यही काम कोई अगर नेता बड़ा या कोई अभिनेता ये काम करता है तो उनको वो जीजा बना करके और उनका स्वागत करते हैं।
5: AIMIM के बयान पर छत्री करणी सेना और विश्व हिंदू परिषद ने पलटवार किया। करणी सेना के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि लव जिहाद के मुद्दे पर हिंदू संगठनों का रुख पहले से साफ है।
7: यामीन अब्बासी जी, आपको हमें सिखाने की आवश्यकता नहीं है कि आमिर खान के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की। आपको पता हिंदू संगठन क्या कर रहा है या हिंदू क्या कर रहा है, उसका जवाब आपको मिल जाएगा देखने को कि आमिर खान हो या कोई नेता हो या अन्य कोई अभिनेता हो या कोई गरीब हो या अमीर हो, हिंदुओं की नजर में, हिंदू संगठनों की नजर में लव जिहाद मतलब लव जिहाद, चाहे वो कोई भी करे, गरीब करे तब भी उतनी सजा है, जो अमीर करेगा उसके लिए भी उतनी सजा है, नेता करेगा उसके लिए भी वही सजा, अभिनेता करेगा उसके लिए भी वही सजा है।
5: वही विश्व हिंदू परिषद ने भी AIMIM के बयान पर प्रतिक्रिया दी। VHP के प्रांत मीडिया प्रमुख प्रतीक रघुवंशी ने कहा कि इस मुद्दे पर संगठन पहले भी आवाज उठाता रहा है और आगे भी उठाता रहेगा। एक अभिनेता की निजी जिंदगी से शुरू हुआ मामला अब सियासी गलियारों तक पहुंच गया है। अलग अलग पक्ष अपने अपने तर्क दे रहे हैं लेकिन विवाद लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। नितिन मिराड़े के साथ शिवम सारस्वत, शिरडी आज तक।
0: और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर के पहलगाम से आई एक बड़ी और अहम खबर के बारे में। यह नाला में फ्लैश फ्लड से भारी नुकसान हुआ है। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद पानी का बहाव तेज हो गया जिससे आसपास के कुछ होटल्स में पानी घुस गया था। हालात बिगड़ने के बाद स्थानीय प्रशासन ने तुरंत ही हरकत में आकर राहत और बचाव का काम शुरू किया। रेस्क्यू तुरंत ही शुरू कर दिया गया था। होटल में फंसे हुए तमाम पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। फिलहाल किसी बड़े नुकसान या जनहानि की खबर नहीं आई सामने। प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं और हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। पर्यटकों से भी सतर्क रहने की अपील की गई है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, होटल के भीतर की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जबरदस्त बारिश के बाद निचले इलाके खासतौर से पूरी तरह से पानी ही पानी, यहां तक कि होटल्स में पानी भर गया है। पर्यटकों के लिए काफी मुश्किलें हैं क्योंकि फ्लैश फ्लड के बाद यहां इस तरह के हालात पैदा हुए हैं। और उधर देहरादून में भी बारिश का कहर देखने को मिला क्योंकि मूसलाधार बारिश के बाद विजय कॉलोनी की हाला बस्ती में एक सुरक्षा दीवार भरभराकर गिर पड़ी। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे दीवार गिरने से आसपास के मकान क्षतिग्रस्त नजर आ रहे हैं। हादसे की चपेट में आने से 2 से 3 मकानों को काफी नुकसान पहुंचा है जबकि एक महिला इसमें घायल भी हो गई है। महिला को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया इलाज के लिए। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई थी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और देहरादून के जिलाधिकारी ने मौके का निरीक्षण किया। एहतियात के तौर पर 7 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है और लोगों से संवेदनशील इलाकों में सावधानी बरतने की अपील की गई है। बात करेंगे क्रिकेट की क्योंकि भारत का इंग्लैंड दौरा T20 सीरीज में पूरी तरह से निराशाजनक साबित हुआ है। 5वें और आखिरी मुकाबले में भी टीम इंडिया ने 56 रन से हार का सामना किया। इसी के साथ इंग्लैंड ने 5 मैचों की सीरीज जो T20 सीरीज थी 4-0 से अपने नाम करते हुए T20 रैंकिंग में नंबर 1 टीम का गौरव हासिल कर लिया है। साउथहैम्पटन में रोज बॉल स्टेडियम में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट पर 257 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जोस बटलर ने 131 और कप्तान हैरी बुक ने नाबाद 95 रनों की तूफानी पारी खेली और दूसरे विकेट के लिए रिकॉर्ड 233 रनों की साझेदारी की। 258 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत बड़ी लड़खड़ाती हुई। ईशान किशन ने 56 और तिलक वर्मा ने 53 रन बनाए। संघर्ष जरूर उन्होंने किया लेकिन 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 201 रन ही हम बना पाए। इंग्लैंड के लिए सैम करने के लिए 3 और आदिल रशीद ने 2 विकेट झटके थे। वहीं सीरीज में हैरी ब्रूक सबसे ज्यादा 229 रन बनाकर रहे टॉप स्कोरर जबकि गेंदबाजी में सैम करन और जोफ्रा आर्चर ने जोश ट्रंक से ने 7-7 विकेट लेकर इंग्लैंड की जीत में अहम भूमिका निभाई। और अब बात करेंगे विंबलडन के बारे में क्योंकि नया चैंपियन मिल गया है इसे और इस बार ये कमाल किया है सिर्फ 21 साल की लिंडा नोस्कोवा ने। चेक गणराज्य की इस युवा खिलाड़ी ने अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम जीतकर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। विंबलडन के महिला सिंगल्स फाइनल में लिन्ना ने अपने ही देश की कैरोलिना मुचोवा को 6-2, 5-7 और 6-3 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। पहले सेट में लिन्ना पूरी तरह से हावी रही, लेकिन दूसरे सेट में मुकाबला पलट गया। हालांकि तीसरे और आखिरी सेट में उन्होंने दमदार वापसी की और इतिहास रच डाला। 21 साल की लिंडा अब साल 2011 के बाद विंबलडन जीतने वाली सबसे युवा महिला खिलाड़ी बन गई हैं। पहला ग्रैंड स्लैम, पहली विंबलडन ट्रॉफी और एक ऐसा प्रदर्शन जिसने टेनिस की दुनिया में उन्हें नया सितारा बना दिया है। और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
8: Thumbtack presents Tile Trouble. Every single time I use my sink, I make eye contact with the uneven grout on my kitchen backsplash. The crooked corners eye me, and I'm haunted by more tiling questions than I thought possible. What kind of pro can fix a backsplash? Can I replace one cracked tile, or should I replace them all? What if I just use Thumbtack? I can hire top-rated pros, read reviews, and compare prices with a tap, all on the app. Thumbtack knows homes. Download the app today.
9: There's a wild world waiting on Earth Day 365. Hunt with predators. Dive with sharks. Explore the unexplored. From nature, science, and space. To premiere original series and exclusive IMAX theater documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel.
10: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
11: मैं करता हूँ ना,
12: मैं करूँगा।
13: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
11: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
13: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे, डाइनिंग एंड मच मोर।
11: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन हैं।
13: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।
14: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
15: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
6: इन एसोसिएशन विद
7: E3 HDMR ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: जय हिंद फ्रेंड्स। ईसाइत सोना मसाला या विस्तार, 1498 में क्या थी वास्को डिगामा की मंशा? मधुमक्खी जैसे गोरे जो शहद लेकर आ रहे थे, भारत को डंक मारना शुरू कर दिया और बेवकूफ राजाओं का फायदा उठाकर इस देश को गुलाम बना दिया। लेकिन मीर जाफर और मीर कासिम ने अगर सर झुकाया तो रानी लक्ष्मीबाई ने सर उठाया और गोरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कैसी थी लड़ाई, कौन थे इसके महानायक? तलवारें चली या भजन चला? अगर बचपन में नहीं समझ में आया नोटबुक निकाल लीजिए। मैं अवध ओझा जल लेकर आ रहा हूं मास्टर जी इन द न्यूज रूम, सिर्फ ललन टॉप पर।
9: यूट्यूब पे अब देखिए आज तक वर्टिकल। अरे भाई फिर घुमा रहे हैं, छोड़ दीजिए घुमाने की आदत, आज तक वर्टिकल।
10: आसमान से बरसती आफत और जमीन पर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद। कहीं पहाड़ टूट रहे हैं तो कहीं पानी घरों को निगल रहा। बारिश ने चारों तरफ तबाही का मंजर खड़ा कर दिया है। पहाड़ों पर बारिश अब सिर्फ बरस नहीं रही, कहर बनकर टूट रही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भूस्खलन ने चार धाम यात्रा की रफ्तार रोक दी। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर खांकरा के पास पहाड़ दरक गया और सड़क पर आ गिरे भारी भरकम बोल्डर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में अचानक आई बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए। पानी के तेज बहाव में फंसे करीब 25 लोगों को रेस्क्यू किया गया। उधर मैदानों में भी पानी ने जिंदगी की रफ्तार रोक दी। महाराष्ट्र के पालघर में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया। एक परिवार ने मौत से बचने के लिए घर की खिड़की तोड़ दी और दो मासूम बच्चों समेत 8 घंटे तक छत पर बैठकर रात गुजारी। वहीं हरियाणा की अंबाला में तंगरी नदी का स्तर बढ़ने से लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर जाने को मजबूर हुए। सहारनपुर के सैयद माजरा गांव में भारी बारिश ने कब्रिस्तान को भी अपनी चपेट में ले लिया। लगातार 3 दिनों की मूसलाधार बारिश के बाद पानी का बहाव इतना तेज हुआ कि कब्रिस्तान की मिट्टी धंस गई और कई कब्रें क्षतिग्रस्त हो गईं। इतना ही नहीं, कई लाशें पानी में तैरने लगी। पहाड़ से मैदान तक बारिश ने अपना रौद रूप दिखाया है। कहीं रास्ते बंद हुए, कहीं घर डूबे। बारिश थमने के बाद भी तबाही के ये निशान कई सवाल छोड़ गए हैं कि क्या हम ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए तैयार हैं? ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

अमेरिकी हमले से ईरान युद्ध के फिर से भड़कने का खतरा। अबू शहर बंदर अब्बास से लेकर केशम द्वीप तक 10 से ज्यादा धमाके। ईरान ने कुवैत बहरीन जॉर्डन पर दागी मिसाइल। वियतनाम के समंदर में भारतीय पर्यटकों से भरी हुई नाव पलटी, अब तक 15 लोगों की मौत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री ने जताया शोक। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर बयानों की जंग, सीएम योगी

अमेरिका ईरान तनाव फिर से चरम पर है। हॉर्मुज में युद्ध का खतरा गहराया। अमेरिका के तीसरे सैन्य हमले के बाद खाड़ी देशों में बढ़ गया है तनाव। ईरान ने शुरू किया अमेरिका पर जवाबी हमला। अमेरिकी ठिकानों को बनाया गया निशाना। ईरान के जास पोर्ट पर धमाकों से हड़कंप। IRNA का दावा। हॉर्मुज प्रांत जास बंदरगाह शहर में 10 से ज्यादा विस्फोटों की आवाज सुनी गई। अमेरिका ईरान टकराव तेज हुआ। बड़ा दावा। हॉर्मुज में जहाजों पर हमले के बाद सैन्य कार्रवाई की गई। समुद्र में बढ़ गया सैन्य तनाव। ईरान बोला नियम तोड़ने पर जहाज रोका गया। अमेरिका ने कहा हमलों की कीमत चुकानी होगी। वियतनाम में भारतीय पर्यटकों को लेकर जा रही नाव पलटी। 15 लोगों की मौत की खबर। वियतनाम के वो क्विक द्वीप के पास हादसे के बाद समय बोट में सवार थे 32 भारतीय पर्यटक और 4 क्रू मेंबर्स। 21 लोगों को बचाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर दुख जताया। वियतनाम के हनोई में भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। 3 देशों के कामयाब दौरे के बाद आज लौटेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। न्यूजीलैंड से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। न्यूजीलैंड के दौरे पर 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों ही देशों के बीच कारोबार को 2030 तक 35,000 करोड़ रुपए तक करने का रखा गया है टारगेट। राम मंदिर ट्रस्ट को मिलेगा नया सीईओ। सर्च कमेटी की पहली बैठक में चयन प्रक्रिया तेज हुई। 1 महीने में नियुक्ति का लक्ष्य। सीईओ पद के लिए तय हुई योग्यता। ग्रेजुएशन के साथ ही प्रशासन या वित्त में 20 साल का अनुभव होना जरूरी है। मंदिर प्रबंधन का अनुभव बनेगा प्लस पॉइंट। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने अनुभवी और हिंदू धर्म के उम्मीदवारों को दी है प्राथमिकता। 18 जुलाई तक माने जाएंगे आवेदन। 3 साल के कार्यकाल के लिए चयन होगा। अयोध्या में रहकर संभालनी होगी जिम्मेदारी। विपक्ष का बीजेपी पर बड़ा हमला। कांग्रेस ने चंदा विवाद पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया। चंदा चोरी पर कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी बोली दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। राम मंदिर ट्रस्ट विवाद पर कांग्रेस हमलावर। बीजेपी ने विपक्ष पर राजनीति करने के आरोप लगाए। सीएम योगी का पलटवार। बोले राम भक्तों के खून से सना हुआ है एसपी का इतिहास। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग उठाई। योगी ने एसपी को आस्था विरोधी बताया। कांग्रेस ने संसद में प्रधानमंत्री मोदी से जवाब मांगने का ऐलान किया। भोपाल में नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव से मुलाकात। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे। मौजूदा हालात पर चर्चा। दतिया से टिकट कटने के बाद आज तक से बोले नरोत्तम मिश्रा मुझे किसी से भी नाराजगी नहीं है। पार्टी जो कहेगी वही करूंगा। आशुतोष तिवारी के नामांकन में भी जाऊंगा। दतिया में बीजेपी के बीच टिकट विवाद में कूदी है कांग्रेस। पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर लिखा बीजेपी की पोल खुल गई है। दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी के टिकट नहीं मिलने के बाद समर्थकों का बवाल। नेशनल हाईवे पर समर्थकों ने लगाया घंटों जाम। जमकर हंगामा। कांग्रेस ने दतिया सीट घनश्याम सिंह को बनाया उम्मीदवार। बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी से टक्कर होगी। आमिर खान की तीसरी शादी पर बढ़ के महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे। बताया लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर। युवाओं से की आमिर खान की फिल्मों को सोच समझ कर देखने की अपील। जामनगर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई गुजरात की मंत्री रिवाबा जडेजा। युवाओं को आत्मनिर्भरता शिक्षा स्वदेशी का संदेश दिया। मोदी सरकार ने झारखंड और छत्तीसगढ़ को दिए बड़ी सौगात। 9,000 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। हैदराबाद में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। कोंडाकल में मेधा बोगी फैक्ट्री और मेधा सर्वो ड्राइव्स लिमिटेड के विनिर्माण संयंत्र में दौरा करने के लिए पहुंचे। रामपुर में अब अग्निशमन विभाग ने कसा है जौहर यूनिवर्सिटी पर शिकंजा। नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर। तकनीकी काम में चलते कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। गोरखपुर कैंट पनिहवा रूट पर असर है। 10 ट्रेनें रहेंगी कैंसिल। सोलह का रूट बदलेगा और 17 ट्रेनों का शॉर्ट टर्मिनेशन। रेलवे अलर्ट। 10 ट्रेनें रहेंगी कैंसिल। सोलह का बदलेगा रूट और 17 ट्रेनों का टर्मिनेशन होगा। दोहरीकरण कार्य के चलते 16 से 21 जुलाई तक ट्रेनें प्रभावित। भारतीय सेना खरीदेगी 450 कार्गो स्टाफ मल्टी रोल रॉकेट लॉन्चर। जंगल पहाड़ रेगिस्तान और अर्बन वॉर के लिए घातक हथियार। पीएफआई टेरर केस में 20 आरोपियों के खिलाफ चार्ज। फ्रेम आतंकी साजिश के मामले में 29 जुलाई से शुरू हो जाएगा ट्रायल। भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर केस में न्यायिक आयोग के सामने माता पिता की गवाही पूरी। कहा अब जांच के बाद समझ आएगा कि इंसाफ मिला या नहीं। रिलायंस फाउंडेशन के चेयरपर्सन नीता अंबानी बनी फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन 2026। मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सम्मानित किया।

देश की सबसे शक्तिशाली महिला का खिताब मिलने के बाद नीता अमानी ने कहा, रिलायंस फाउंडेशन ने 10 करोड़ लोगों को बेहतर जिंदगी और उनमें बदलाव लाने का लक्ष्य हासिल किया। लक्स कोजी ग्रुप ने बंगाल में 600 करोड़ रुपए की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए रखी आधारशिला। एशिया के सबसे बड़े गार्मेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में एक बड़ी तैयारियां शुरू। लक्स कोजी ग्रुप ने इसे अपने इतिहास का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बताया। इस प्रोजेक्ट से एशिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग गार्मेंट हब बनने की उम्मीद भी जताई। इंग्लैंड ने आखिरी टी20 में भारत को 56 रन से हराकर सीरीज पर कब्जा किया। 4-0 से मेजबान ने 3 विकेट खोकर बनाए थे 257 रन। चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने जीता है विंबलडन के महिला सिंगल्स का खिताब। फाइनल में मुचोवा को 3 सेट्स में हराया। विंबलडन 2026 मेंस फाइनल आज, दुनिया के नंबर 1 यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच होगी खिताबी जंग। स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर मारी है सेमीफाइनल में एंट्री। रोमांचक क्वार्टर फाइनल जीत के साथ ही स्पेन का खिताब की ओर दमदार कदम। इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। रोमांचक क्वार्टर फाइनल में अतिरिक्त समय में जीत, खिताब की दौड़ में बरकरार है इंग्लैंड। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में खीर गंगा का बढ़ गया है जलस्तर। हर्षल थाना क्षेत्र में एहतियात के तौर पर स्थानीय लोगों को घर से बाहर न निकलने की सलाह। देहरादून में बारिश का कहर, सुरक्षा दीवार गिरने से 3 मकान क्षतिग्रस्त हुए, एक महिला भी घायल हुई, 7 परिवारों को नुकसान। मूसलाधार बारिश बन गई आफत, विजय कॉलोनी के खाला बस्ती में हड़कंप मच गया। प्रशासन अलर्ट पर है, मौके से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। बेलगांव में फ्लैश फ्लड का कहर, नाला उबरा में उफान से होटल में पानी ही पानी। भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए, पर्यटकों को बाहर निकाला जा रहा है। जम्मू कश्मीर में मानसून के बाहर अनंतनाग में झमाझम बारिश और तेज बारिश के बीच सड़कों पर निचले इलाकों में बढ़ गया है जल स्तर। हालात पर नजर। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का कहर, उत्तराखंड में डॉक्टर की मौत की खबर। उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी और साथ ही पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट। 8 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। टिहरी गढ़वाल में लगातार 3 दिन से बारिश, नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग रुद्रप्रयाग के निकट खांकरा में प्रभावित हुआ, हाईवे पर टूट कर आ गए हैं पत्थर। नोएडा के सेक्टर 76 में सोसाइटी के लोगों ने आवाज बुलंद की है। प्रिंसली एस्टेट में निवासियों ने अतिक्रमण के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। अमरेली में सांडों का तांडव, युवक घायल हुआ। बाजार में मची अफरा तफरी। विडी गांव में सांड के हमले में युवक घायल हुआ, 2 की गिरफ्तारी। अमरेली में शेर का खौफ, 21 साल के युवक की हमले में मौत के बाद लिलिया रेंज के अंतालिया इलाके में वन विभाग की कार्रवाई, 2 की गिरफ्तारी। प्रेमिका के कहने पर प्रेमी ने पेट्रोल पंप सेल्समैन को गोली मारी, परेशान करने के आरोप लगाए, रची साजिश, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। डीओ कार्यालय के बरामदे में पड़ा रहा शव, अधिकारी ने नहीं ली सुध। शिक्षिका के पति की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों का प्रदर्शन, रवैये पर उठाए सवाल। आरपीएफ हिरासत से फरार हुए 2 शराब तस्कर, सब इंस्पेक्टर समेत 4 निलंबित। मामले में जीआरपी थाने में एफआईआर दर्ज। दिल्ली के जसोला इलाके में दीवार गिरने से 1 की मौत हुई है, 2 लोगों के घायल होने की खबर। राजस्थान के नागौर में स्कॉर्पियो ने स्कूटी सवार को बहनों को टक्कर मारी थी, दोनों गंभीर रूप से घायल हुए। टोंक में घर के बाहर खड़ी हुई कार को चोर ले भागी, रेकी के बाद वारदात को अंजाम दिया, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। आगरा के सुभाष बाजार इलाके में महिला की अब तक नहीं मिल पाया है कोई सुराग, मलबे के साथ नाले में ही समा गई थी महिला। झांसी में छुट्टी के बाद 11वीं के छात्र को बदमाशों ने पीटा, भाई पर भी हमला बोला। नोएडा में 9 जुलाई को इंजीनियर आर्यन की मौत का मामला सामने आया, सीसीटीवी फुटेज भी देखी गई, करंट लगने से गई थी जान। नोएडा में फर्जी लोन कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 5 साइबर ठग गिरफ्तार किए गए, करोड़ों की ठगी का आरोप। हापुड़ में दुकानदार से खरीद पानी की बॉटल में एसिड मिलने के आरोप लगाए गए, घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। बिहार के मुजफ्फरपुर में पवन एक्सप्रेस में टिकट टैंपरिंग का एक मामला सामने आया, छेड़छाड़ किए गए टिकट्स के साथ 4 की गिरफ्तारी। मुजफ्फरपुर में ज्वेलरी कारोबारी को बदमाशों ने गोली मारी, 2.5 लाख रुपए के गहने लूटकर फरार हुए, कारोबारी बुरी हालत में अस्पताल में भर्ती। सूरत में बैंक रिकवरी एजेंट की धारदार हथियार से हत्या, शॉपिंग सेंटर में शव पाया गया। इंदौर के कॉलेज छात्रा से फांसी लगाकर आत्महत्या की, दीवार पर अंग्रेजी में सुसाइड नोट भी छोड़ा।
रेवाड़ी में सिलेंडर ब्लास्ट में एक ही परिवार के दो लोगों की मौत की खबर। इलाज के दौरान पिता ने तोड़ा दम। 9 जुलाई को बेटी की गई थी जान। टिहरी के थाना कैंपटी इलाके में 12 घंटे के अंदर नाबालिग को बरामद किया गया। पहला फुसला कर एक युवक ने वारदात को अंजाम दिया था। राजस्थान के बूंदी में सिगरेट उधार नहीं देने के बाद दुकानदार पर चाकू से हमला बोला गया। कोटा रेफर किया गया दुकानदार को। हालत गंभीर। एक्टर प्रियंका चोपड़ा ने जारी किया अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म द साइकिल ऑफ लव का ट्रेलर। फिल्म की कार्यकारी निर्माता हैं प्रियंका। पीके मानंदिया की प्रेम कहानी पर डॉक्यूमेंट्री। प्यार के लिए साइकिल से भारत से स्वीडन तक 6000 मील का सफर। वेब सीरीज रक्तांजल 3 का ट्रेलर रिलीज किया गया। क्रांति प्रकाश झा और निकितिन धीर अपनी पहली वाली भूमिकाओं में ही नजर आएंगे। 16 जुलाई से अमेजॉन एमएक्स प्लेयर पर मुफ्त स्ट्रीम होगी रक्तांचल 3। करण पटेल, माही गेल समेत कई कलाकार हैं भूमिकाओं में। शादी के बंधन में बंधी टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस फेम एक्ट्रेस पलक बॉयफ्रेंड रोहन खन्ना के साथ सात फेरे लिए। स्पेन में जंगलों में भीषण आग से तबाही। अल्मेरिया में 12 की मौत हुई है तो 23 लापता हैं। 3,200 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जलकर खाक। स्पेन में आग से जंग जारी है। मिलिट्री इमरजेंसी यूनिट का रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन। कई कस्बों से लोगों को बाहर निकाला गया। टाइफून बावी के एशिया के कहर के जापान, ताइवान और फिलीपींस के तेज हवाओं के और बारिश के साथ ही जनजीवन अस्त व्यस्त। जापान में बावी से बिजली संकट और शिगागी में 4,000 से ज्यादा घरों की बिजली गुल हुई। हवाई और फेरी सेवाएं भी ठप हुई। चीन की ओर बढ़ गया है टाइफून बावी। ताइवान में 26 घायल, 14,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। चीन ने 18,00,000 से ज्यादा लोगों को शिफ्ट कराया। कनाडा के टोरंटो में स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान अंधाधुंध फायरिंग में 2 लोगों की मौत हुई है। 6 लोग बुरी तरह से घायल। टोरंटो के साल्सा ऑन सेंट क्लेयर फेस्टिवल में गोलियों की गूंज। हमलावर फरार हुए। पुलिस ने इलाके को घेरा। लोगों से घटनास्थल से दूर रहने की अपील की गई। यमन में हूती समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन। ईरान के समर्थन में 14 प्रांतों में निकाली गई थी रैलियां। यूक्रेन बनाएगा पैट्रियट जैसी स्वदेशी मिसाइल रक्षा प्रणाली। यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा ऐलान। रूस के खिलाफ प्रस्तावित 21वें प्रतिबंध पैकेज पर फिलहाल नहीं बन पाई है सहमति। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने सहमति न बनने के कारण नहीं लागू हो सका प्रतिबंधों का 21वां पैकेज।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आजकल हम रोज अलग अलग ग्रहों की राशियों के बारे में बात कर रहे हैं और आज नंबर आ गया है सूर्य और चंद्रमा की राशियों के बारे में। तो आज आपको बताएंगे कि सूर्य की राशि कौन सी है, चंद्रमा की राशि कौन सी है और इनकी विशेषताएं क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

2026 दिन रविवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, रात के 10:29 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, प्रातः 8:29 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम के 7:06 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज आपको बता रहे हैं सूर्य और चंद्र की राशियों के बारे में। देखिए, सबसे बड़ी इनकी विशेषता ये है कि इनके पास केवल एक ही एक राशियां हैं, बाकी ग्रहों के पास दो दो राशियां हैं। तो पहले जानते हैं कि सूर्य की राशि कौन सी है और इसकी विशेषता क्या है। देखिए, सूर्य पूरी तरह से अग्नि तत्व का ग्रह है और सूर्य एक ही राशि का स्वामी है, एक ही राशि के साथ इसका संबंध है, वो है सिंह राशि। सिंह राशि पूर्ण रूप से अग्नि तत्व की राशि है और सिंह राशि मंगल को बड़ी प्रिय मानी जाती है। आम तौर पर सिंह में बैठा हुआ मंगल बड़े बेहतरीन परिणाम जीवन में देता है। अगर आपके ऊपर सिंह राशि का प्रभाव है तो आपके जीवन में सूर्य की शक्तियां प्रबल होंगी। आपका लग्न सिंह हो या आपकी राशि सिंह हो, अगर सिंह का प्रभाव आपके जीवन में है तो सूर्य

गुण पैदा होंगे। सूर्य की राशि पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में कुछ बदलाव होगा, मानसिक चिंता समाप्त होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, खूब सारी दौड़ भाग करनी पड़ेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों की समस्या हल होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, मानसिक चिंता रह सकती है, करियर में समस्या हो सकती है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। तो सूर्य के पास एकमात्र राशि है सिंह राशि, और चूंकि एक ही राशि है तो सूर्य की सारी ताकत, सूर्य का सारा गुण इस राशि के अंदर पाया जाता है। इसकी विशेषता क्या है? देखिए, सिंह राशि को अग्नि तत्व की प्रमुख राशि माना जाता है, 100% फायर एलिमेंट की राशि है। सिंह राशि को नेतृत्व, साहस, संघर्ष और राजनीति की राशि मानते हैं। सिंह वालों के अंदर नेतृत्व करने का गुण और साहस जबरदस्त होता है। ऐसा देखा गया है कि अगर बाकी राशियों का साथ मिले, ग्रह अनुकूल हों, तो इस राशि के लोग अक्सर समाज का नेतृत्व करते हैं। शरीर की हड्डियों के मामले में, बोन स्ट्रक्चर के मामले में और विद्या के मामले में ये राशि बड़ी महत्वपूर्ण है। सिंह राशि से आपकी एजुकेशन देखी जाएगी और शरीर की हड्डियों का हाल क्या है वो भी सिंह राशि आपको बता देगी। सिंह राशि वाले वैसे बड़े उदार होते हैं, क्रोधी तो होते हैं लेकिन दूसरों के लिए करने में बहुत आगे होते हैं, उदार होते हैं। 3-5 का गुण इनके अंदर नहीं होता। इस राशि की सबसे बड़ी कमजोरी है अति विश्वास। ये अक्सर जीवन में मात खाते हैं ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में। अगर ये बैलेंस दिमाग से चलें
तो जितनी ये मेहनत करते हैं जीवन में उतनी ही तरक्की करेंगे। इनको सलाह लेकर एक मूंगा धारण करना चाहिए और सिंह राशि के लोगों को अपनी बुद्धि, अपने दिमाग को कंट्रोल करने के लिए गायत्री मंत्र का नियमित जप करना चाहिए, वो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। आगे चंद्रमा की राशि पर बात करेंगे, लेकिन बता दें कि कार्यक्रम में आगे ये भी बताएंगे कि आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है। अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

रुके हुए काम पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न मनोज ने हमें लिखा है, इंदौर से मनोज जी लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 2 दिसंबर 1989, जन्म का समय शाम के 6:45, जन्म का स्थान है शहडोल मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है तो मेरे विवाह होने की क्या संभावना है, क्या स्थितियां बनती हैं? मनोज जी, आपकी कुंडली में अति विलंब से विवाह का योग जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी शादी नहीं होगी। आपकी शादी की संभावनाएं बनी हुई हैं और साल 2027 के आरंभ में आपका विवाह होगा। आपका वैवाहिक जीवन कुल मिला जुला के ठीक है, उसमें कोई बहुत समस्या दिखाई नहीं दे रही है। आपका विवाह शीघ्र हो, वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें और एक मोती, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती अगर धारण करें तो आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं चंद्रमा की राशि की। चंद्रमा भी केवल एक ही राशि का स्वामी है, तो चंद्रमा की राशि कौन सी है और इसकी विशेषता क्या है? देखिए, चंद्रमा मुख्य रूप से जल तत्व का, वाटर एलिमेंट का ग्रह है और चंद्रमा सिर्फ एक ही राशि का स्वामी है। एक ही राशि के साथ इसका पूर्ण संबंध है, कर्क राशि। कर्क राशि 100% जल की राशि है। ये कर्क राशि बृहस्पति को अत्यंत प्रिय है। बृहस्पति इस राशि के संपर्क में आने पर बड़े शक्तिशाली हो जाते हैं। कर्क राशि का जो प्रभाव है वो चंद्रमा और बृहस्पति को मजबूत कर देता है। अब चूंकि चंद्रमा की एक ही राशि है तो चंद्रमा के सारे गुण, अच्छाई भी और बुराई भी, ये सब कर्क राशि के अंदर पाए जाते हैं। बाकी जो ग्रह हैं उनके पास दो राशियां हैं, तो किसी में अच्छा, किसी में बुरा, किसी में निगेटिव, किसी में पॉजिटिव, लेकिन अब चंद्रमा की तो एक ही राशि है ना, कर्क। तो चंद्रमा के सारी प्रॉपर्टी, सारे गुण कर्क राशि में पाए जाएंगे। आपका लग्न कर्क हो या आपकी राशि कर्क हो, कर्क का प्रभाव आपके ऊपर जरूर होगा। चंद्रमा की राशि पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल।

शाम से स्थितियों में सुधार होगा। अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, चिंताएं कम होती जाएंगी, करियर में सफलता मिलेगी, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। तो ये बात आपने जान ली कि चंद्रमा की राशि है कर्क राशि। कर्क राशि की विशेषताएं क्या हैं, इनकी कमजोरी क्या है, ये समझते हैं। देखिए, कर्क राशि आम तौर पर बड़ी सुंदर राशि और बड़ी चंचल राशि मानी जाती है। आप ज्यादातर देखेंगे कर्क वालों का कॉन्सेंट्रेशन जल्दी नहीं बनता, उनका मन बहुत जल्दी जल्दी भटकता रहता है या चंचल होता रहता है। कर्क राशि क्रिएटिविटी की सबसे बड़ी राशि है। इस राशि में कल्पना, सौंदर्य, दया और ज्ञान पाया जाता है। ज्यादातर आप कर्क वालों को देखेंगे वो दयालु होते हैं, दूसरों के दुख से तुरंत दुखी हो जाते हैं। और ज्यादातर जो कर्क वाले होते हैं वो कलाकार होते हैं, बड़े क्रिएटिव होते हैं, कला में, मीडिया में, फिल्म में, ये क्षेत्र इनको बड़ा सूट करते हैं क्योंकि ये क्रिएट करना जानते हैं। कर्क राशि हृदय और भावनाओं की सबसे बड़ी राशि है। आप सोचते क्या हैं, आपके विचार क्या हैं, आपका मन कैसा रहता है, ये कर्क राशि आपके कुंडली में बता देगी। अब देखिए, कर्क राशि वाले इतने ज्यादा इमोशनल होते हैं कि इमोशंस के चक्कर में अक्सर बेवकूफ भी बनते रहते हैं। ज्यादातर आप कर्क राशि वालों को या कर्क लग्न वालों को देखेंगे, उनकी लव लाइफ, उनकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं होती, क्योंकि ये जिस लेवल पर इमोशन में जाते हैं दूसरा आदमी उस लेवल पर इमोशन में नहीं आता है। इसीलिए इमोशनली और भावनात्मक रूप से ये हमेशा कमजोर बने रहते हैं। जैसा आपको बताया कि इस राशि की सबसे बड़ी कमजोरी है इमोशनल होना। देखिए, भावुक होना बुरी बात नहीं है, आप इंसान हैं, मानव हैं, तो भावुक तो होंगे ही, भावनाएं तो होंगी, लेकिन जरूरत से ज्यादा भावनाओं का होना और भावनाओं से ट्रिगर होना, ये कर्क राशि वालों की समस्या है। कर्क राशि के साथ वैवाहिक जीवन और प्रेम का जीवन अक्सर अच्छा नहीं होता, और अगर कर्क लग्न है तो 90% मामलों में ये वैवाहिक जीवन में असंतोष या अकेलापन पैदा करता है। कर्क वालों को सलाह लेकर एक ओपल या एक मोती ये जरूर पहनना चाहिए, वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कर्क वाले जितना मेडिटेट करें
जितना ध्यान करें उतना बढ़िया होगा। और कर्क राशि वालों को यथाशक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार शिव जी की उपासना करनी चाहिए। शिव जी की ये जितनी उपासना करेंगे उतना ज्यादा इनके लिए बेहतर होगा। देखिए, सूर्य और चंद्रमा की केवल एक ही एक राशियां हैं, इसीलिए सूर्य का 100% प्रभाव सिंह पर होता है और चंद्रमा का 100% प्रभाव कर्क पर होता है। देखिए, सिंह वाले दो बातें समझ लें कि जीवन में अगर आपको मुश्किलों से बचना है, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और हनुमान जी की पूजा करिए, आप जीवन की मुश्किलों से बचे रहेंगे। और कर्क वाले अगर जीवन की मुश्किलों से बचना चाहते हैं तो नियमित रूप से शिव जी को जल चढ़ाएं और जितना संभव हो उनके मंत्र का जप करें। नमः शिवाय का कर्क वाले जितना ज्यादा जप करेंगे उतना ही उनके लिए बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना विशेष है और आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, ऑफिस की स्थिति में सुधार होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, परिवार में विवादों से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। मीन राशि, चिंताएं थोड़ी कम होंगी, नौकरी की स्थिति अच्छी हो जाएगी, चोट चपेट से सावधान रहें। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर सूर्य सुबह उदित ना हो, बारिश हो, सर्दियां हो, तो पूरब दिशा की तरफ चेहरा करके जल चढ़ा देना चाहिए। क्या ऐसा उचित है? देखिए, सूर्य देव जब उदित होते हैं और आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं तो सूर्य की किरणें जल के माध्यम से होती हुई आपके शरीर में प्रवेश करती हैं, तब आपको रंगों का, कलर का, कलर थेरेपी का फायदा होता है। अगर बारिश की वजह से, सर्दियों की वजह से सूर्य देव उदित नहीं हुए हैं तो पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके जल चढ़ाने का कोई लाभ नहीं है, ऐसा ना करें। अगर घर के सामने बिल्डिंग बन गई है, सूर्य देव के दर्शन सुबह नहीं होते हैं
तो भी आप बिल्डिंग को जल मत चढ़ाइए, नीचे उतरिए, पार्क में जाकर जहां सूर्य देव के दर्शन हो वहां से जल चढ़ाना उचित होगा। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं।

रखें। नंबर दो, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। नंबर तीन, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर चार, काम की रुकावट दूर होगी। नंबर पांच, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। नंबर छह, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर सात, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। नंबर आठ, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। नंबर नौ, संपत्ति का लाभ हो सकता है। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करें, आपके काम में चली आ रही बाधा दूर होगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न आदित्य जी ने हमें लिखा है और आदित्य जी हमें मुंबई से मेल लिखते हैं। 28 फरवरी 1983 का जन्म है। दोपहर में 2:10 जन्म स्थान है नासिक। मेल लिखते हैं मुंबई से। ये कह रहे हैं कि मेरी नौकरी छूटने वाली है, मैं नोटिस पीरियड पे काम कर रहा हूँ। अगली नौकरी मुझे कब तक मिलेगी या मुझे किसी व्यापार में जाना चाहिए? आदित्य, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी नौकरी मिलने का समय इस साल के अंत में है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के समय तक आप जो टेक्निकल नौकरी कर रहे थे, लगभग वैसी ही टेक्निकल नौकरी आप पा जाएंगे। चिंता की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात आपके लिए ये है कुंडली में कि आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है नई नौकरी पाने के सिलसिले में। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलने की सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज कोई परीक्षा है तो पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आज, तो अपने साथ एक लाल फूल रख करके जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज के लिए या चिकित्सा के लिए जाना है तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। और अगर आज कोई खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो लाल रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा।

वृषभ राशि वालों के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा। धनु राशि वालों के लिए रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में सफलता मिलेगी। आज सावधान रहना होगा। कुंभ राशि वालों को सेहत बिगड़ सकती है, तनाव बढ़ सकता है। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना विशेष है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज त्रयोदशी तिथि है। आज महत्वपूर्ण काम करने से बचिएगा, लेकिन आज शीघ्र विवाह के लिए भगवान कामदेव की उपासना करना लाभकारी होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
7: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
8: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
9: In association with
10: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
11: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
9: Vimal, bolo zubaan kesri. Hint, bade aaram se.
12: Jai Hind friends. Isaiyat, sona, masala ya vistar. 1498 mein क्या थी वास्को डिगामा की मंशा? मधुमक्खी जैसे गोरे जो शहद लेकर आ रहे थे, भारत को डंक मारना शुरू कर दिया और बेवकूफ राजाओं का फायदा उठाकर इस देश को गुलाम बना दिया। लेकिन मीर जाफर और मीर कासिम ने अगर सर झुकाया तो रानी लक्ष्मीबाई ने सर उठाया और गोरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कैसी थी लड़ाई, कौन थे इसके महानायक? तलवारें चली या भजन चला? अगर बचपन में नहीं समझ में आया, नोटबुक निकाल लीजिए। मैं अवध ओझा जल लेकर आ रहा हूं मास्टर जी इन द न्यूज रूम, सिर्फ ललन टॉप पर।
13: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
14: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
15: इस मांग को आगे बढ़ाया, उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
13: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम,

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
2: अमेरिका और ईरान में फिर से युद्ध शुरू हो गया है और पहले अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और अब ईरान की तरफ से पलटवार किया गया है। ईरान ने मिडिल ईस्ट के अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए हैं और आपको बता दें कि जानकारी है कि जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, यूएई पर हमला किया गया। ईरान की तरफ से जबरदस्त तरीके से पलटवार जारी है। सीज़फ़ायर के उल्लंघन के बारे में पहले ही जानकारी मिल रही थी। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर फिर से जबरदस्त दोनों ही देशों के बीच ये वार पलटवार शुरू हो गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से साफ कर दिया गया था कि इस पूरे मामले में अब अमेरिका किसी की नहीं सुनने वाला है, ट्रंप सीज़फ़ायर के खात्मे की बात पहले ही कर चुके हैं और आपको बता दें कि दोनों ही तरफ से लगातार अब हमले किए जा रहे हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से एक बार फिर से बंद होने की खबर है। इस तनाव के बीच ईरान की तरफ से साफ किया गया है और अमेरिका की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट सभी के लिए सुरक्षित और खुला हुआ होना चाहिए। और इसी बीच अमेरिका की तरफ से जबरदस्त हमले किए गए हैं। ईरान के भीतर कई जगहों पर धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं, जिसके बाद ईरान की तरफ से भी जबरदस्त पलटवार किया जा रहा है। और आपको बता दें कि बुशेसर, साथ ही साथ बंदर अब्बास, सिरिक और केशम द्वीप पर जबरदस्त तरीके से धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं ईरान के भीतर। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के इन तमाम हमलों का जवाब दिया जाएगा। तो लगातार अमेरिका की तरफ से हमले जारी हैं। अमेरिका ने 140 ठिकानों को टारगेट किया है, जो जानकारी मिल रही है। ट्रंप की तरफ से पहले ही साफ किया गया था कि ये इस हफ्ते के तीसरे सैन्य हमले हैं, जिसमें कई अलग अलग ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए गए हैं और निशाना बनाया गया है 140 से ज्यादा ठिकानों को अमेरिका की तरफ से। ईरान के बुशेहर, साथ ही साथ असलुए, बंदर अब्बास, सिरिक और केशम द्वीप पर जबरदस्त तरीके के धमाके की आवाजें सुनी गई हैं। लगातार ईरान की तरफ से चेतावनी जारी की जा रही है कि मुंह तो जवाब दिया जाएगा, पलटवार किया जाएगा। खाड़ी के देशों में ईरान ने पलटवार किया है अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर। तो अमेरिका ईरान में बढ़ते हुए तनाव के बीच इसराइल ने एक बार फिर से दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया है। हिजबुल्ला ने आतंकवादियों ने एक एंटी टैंक मिसाइल को इमारत को नुकसान पहुंचाया था, जिसे तबाह करने के लिए इजरायली रक्षा बल IDF ने उस इमारत को टारगेट किया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, धुएं का गुबार और आग आप देख सकते हैं। और आपको बता दें कि यही वो दक्षिणी लेबनान है जो लंबे समय से यहाँ इसराइल की जो सेना है वो इसे टारगेट कर रही है, क्योंकि ये गढ़ माना जाता है हिजबुल्ला का। इसराइल के तमाम जो अटैक्स हैं वो यहाँ होते रहे और लगातार यहाँ से पलायन की खबरें भी आती रही हैं, क्योंकि इसराइल की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि आधे से ज्यादा इस पूरे के पूरे दक्षिणी लेबनान को खाली करा लिया गया है, आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। बड़ी और अहम खबर है कनाडा के टोरंटो से, जहां जबरदस्त तरीके से फायरिंग की खबर है। स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान जबरदस्त गोलीबारी की गई है। गोलीबारी में दो लोगों की जान चली गई है, कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। टोरंटो पुलिस ने इस घटना को बताया है शनिवार रात करीब 8 बजे की, सेंट क्लेयर एवेन्यू और साथ ही साथ एलिगेटन एवेन्यू के पास ये घटना हुई है। जांच में ये पता चला है टोरंटो पुलिस की तरफ से कि बहुत ही ज्यादा गंभीर स्थिति बनी और इसे एक्टिव शूटर की घटना करार दिया गया। पुलिस ने इस पूरे इलाके की घेरेबंदी शुरू कर दी थी और हमलावर की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया था, लेकिन अभी तक हमलावर को नहीं गिरफ्तार किया जा सका। और आपको बता दें कि इस गोलीबारी में दो लोगों की जान चली गई, 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और अभी घायलों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि ताबड़तोड़ फायरिंग यहां पर की गई है स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान। अब बात करेंगे चढ़ावा चोरी पर जारी सियासी संग्राम के बारे में, क्योंकि चढ़ावा चोरी पर जारी सियासत के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। योगी आदित्यनाथ ने इस बार राम मंदिर के बहाने समाजवादी पार्टी पर सनातन के अपमान के आरोप लगाए।
3: कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जो कांग्रेस राम के अस्तित्व को नकारती थी, जो समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती थी, वे आस्था की कौन सी बात कर रहे हैं? जो धार्मिक हिंदू विरासत से जुड़े हुए धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार का पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल पर खर्च कर देते थे, वे लोग कौन सी आस्था की बात कर रहे हैं? और यही प्रश्न आपको करना चाहिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से, उनसे पूछना चाहिए, वे जब तुम्हारी सरकार थी तब तुम राम भक्तों पर गोली चलाते थे, जय श्री राम बोलने पर लाठी डंडा चलाते थे, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में तक बोलती थी कि राम तो हुए ही नहीं, ये कांग्रेस के हाल थे।
2: आगे बढ़ेंगे और अब आपको दिखाएंगे हेडलाइंस
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस
1: इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

फिर से तेज हुआ खाड़ी युद्ध। अमेरिका ने बुशहर बंदर अब्बास से लेकर केशम द्वीप तक 10 ईरानी शहरों पर बमबारी की। ईरान का कुवैत, बहरीन, जॉर्डन के अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी प्रहार। राम मंदिर चढ़ावे चोरी को लेकर बयानों की जंग। सीएम योगी ने कहा, समाजवादी पार्टी का इतिहास राम भक्तों के खून से सना, आस्था को किया अपमानित। कांग्रेस संसद में उठाएगी मामला।

से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। देहरादून में बारिश का कहर जारी है। सुरक्षा दीवार ढहने से 3 मकान क्षतिग्रस्त हुए, 1 महिला के घायल होने की खबर। 7 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। मूसलाधार बारिश बन गई आफत। विजय कॉलोनी की खाला बस्ती में मच गया था हड़कंप। प्रशासन अलर्ट पर है। डीएम और मंत्री गणेश जोशी ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। पहलगाम फ्लैश फ्लड का कहर जारी। नाला ओवरा में उफान से होटल पानी में डूबे। पानी भरने के बाद बिगड़ गए हालात। जम्मू कश्मीर में मानसून के बाद अनंतनाग में झमाझम बारिश के बाद तेज बारिश के बीच सड़कों पर और निचले इलाकों में बढ़ गया जलस्तर। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का कहर। उत्तराखंड में डॉक्टर्स की मौत की खबर। उत्तराखंड के देहरादून टेहरी और पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। 8 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। टेहरी गढ़वाल में लगातार 3 दिन से बारिश। नदी के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग रुद्रप्रयाग के निकट खांकरा में प्रभावित हुआ। हाईवे पर टूटकर आ गए हैं पत्थर। नोएडा के सेक्टर 76 में सोसाइटी के लोगों ने आवाज बुलंद की। प्रिंसली एस्टेट के निवासियों ने अतिक्रमण के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। अमेरिका ईरान तनाव पर फिर से हंगामा। हॉर्मुज में युद्ध का खतरा गहराया। अमेरिका के 3रे सैन्य हमले के बाद खाड़ी में बढ़ गया टकराव। ईरान ने शुरू किया अमेरिका पर जवाबी हमला। अमेरिकी ठिकानों को बनाया गया निशाना। ईरान के जास पोर्ट पर धमाकों से हड़कंप। आया रहने का दावा। हॉर्मुजगान प्रांत और जास बंदरगाह शहर में 10 से ज्यादा विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। अमेरिका ईरान टकराव तेज हुआ। हॉर्मुज में जहाजों पर हमले के बाद की गई सैन्य कार्रवाई। समुद्र में बढ़ा है सैन्य तनाव। ईरान बोला नियम तोड़ने पर जहाज रोका गया। अमेरिका ने कहा हमलों की कीमत चुकानी होगी। वियतनाम में भारतीय पर्यटकों को लेकर जा रही नाव पलट गई। 15 की मौत की खबर। वियतनाम में फो क्विक द्वीप के पास हादसे के समय बोट में सवार थे 32 भारतीय पर्यटक और 4 क्रू मेंबर्स। 21 लोगों को बचाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया। वियतनाम के हनोई में भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। 3 देशों के कामयाब दौरे के बाद आज लौटेंगे प्रधानमंत्री मोदी। न्यूजीलैंड से दिल्ली के लिए भरी उड़ान। न्यूजीलैंड के साथ 10 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। दोनों ही देशों के बीच कारोबार के 2030 तक 35,000 करोड़ रुपए तक करने का रखा गया है टारगेट। राम मंदिर ट्रस्ट को मिलेगा नया सीईओ। सर्च कमेटी की पहली बैठक में चयन प्रक्रिया तेज की गई। 1 महीने में नियुक्ति का लक्ष्य। सीईओ पद के लिए तय हुई योग्यता ग्रेजुएशन के साथ प्रशासन एवं वित्त में 20 साल का अनुभव होना अनिवार्य है। मंदिर प्रबंधन का अनुभव बनेगा प्लस पॉइंट। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने अनुभवी और हिंदू धर्म के उम्मीदवारों को दी है प्राथमिकता। 18 जुलाई तक मांगे जाएंगे आवेदन। 3 साल के कार्यकाल के लिए होगा चयन। अयोध्या में रहकर संभालनी होगी जिम्मेदारी। विपक्ष का बीजेपी पर बड़ा हमला। कांग्रेस ने चंदा विवाद पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए। चंदा चोरी पर कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी बोली दोषियों पर कार्रवाई होगी। राम मंदिर ट्रस्ट विवाद पर कांग्रेस हमलावर। बीजेपी ने विपक्ष पर राजनीति करने के आरोप लगाए। सीएम योगी का पलटवार बोले राम भक्तों के खून से सना हुआ है एसपी का इतिहास। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में निगरानी की जांच की मांग उठाई। योगी ने एसपी को आस्था विरोधी बताया। कांग्रेस ने संसद में प्रधानमंत्री मोदी से जवाब मांगने का ऐलान किया। भोपाल में नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव से मुलाकात की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे। मौजूदा हालात पर चर्चा। दतिया से टिकट कटने पर आज तक से बोले नरोत्तम मिश्रा मुझे किसी से नाराजगी नहीं। पार्टी जो भी कहेगी करूंगा। आशुतोष तिवारी के नामांकन में भी जाऊंगा। दतिया में बीजेपी के बीच टिकट विवाद में कूदी है कांग्रेस। पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर लिखा बीजेपी की पोल खुल गई है। दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी के टिकट नहीं मिलने के बाद समर्थकों का बवाल। नेशनल हाईवे पर समर्थकों ने लगाया घंटों जाम। जमकर हंगामा। कांग्रेस ने दतिया सीट से घनश्याम सिंह को बनाया उम्मीदवार। बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी से टक्कर होगी। आमिर खान की तीसरी शादी पर महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे भड़के। बताया लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर। युवाओं से की आमिर खान की फिल्मों को सोच समझकर देखने की अपील। जामनगर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई गुजरात की मंत्री रीवावा जडेजा। युवाओं से आत्मनिर्भरता शिक्षा स्वदेशी की बात की। मोदी सरकार ने झारखंड और छत्तीसगढ़ को दी है बड़ी सौगात। 9,000 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी। हैदराबाद में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कोंडाकल में मेधा बोगी फैक्ट्री और मेधा सर्वो ड्राइव्स लिमिटेड के संयंत्र का दौरा। रामपुर में अब अग्निशमन

0: विभाग ने कसा है जौहर यूनिवर्सिटी पर शिकंजा, नोटिस जारी करके जवाब तलब किया गया, नियमों पर बड़ा सवाल। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, तकनीकी काम के चलते कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। गोरखपुर कैंट पनियावा रूट पर असर है, 10 ट्रेनों के कैंसिल होने की खबर, 16 का रूट बदल जाएगा और 17 ट्रेनों का शॉर्ट टर्मिनेशन होगा। रेलवे अलर्ट, 10 ट्रेनें कैंसिल रहेंगी, 16 का बदल जाएगा रूट और 17 ट्रेनों का होगा शॉर्ट टर्मिनेशन। दोहरीकरण कार्य के चलते 16 से 21 जुलाई तक कई ट्रेनें प्रभावित। भारतीय सेना खरीदेगी 450 कार्ल गुस्ताफ मल्टी रोल रॉकेट लॉन्चर, जंगल पहाड़ रेगिस्तान और अर्बन वॉरफेयर का घातक हथियार। एफआई टेरर केस में 20 आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम करने में आतंकी साजिश के मामले में 29 जुलाई से शुरू होगा ट्रायल। भोजपुर के भरत तिवारी हत्याकांड में इस एनकाउंटर केस में न्यायिक जांच के सामने माता पिता की गवाही पूरी हो गई है, कहा जब जांच पूरी हो जाएगी तभी समझ में आएगा इंसाफ मिला कि नहीं। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुनीता अमानी बनी है फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन 2026। मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया सम्मानित। देश की सबसे शक्तिशाली महिला का खिताब मिलने के बाद नीता अमानी ने कहा रिलायंस फाउंडेशन ने 10 करोड़ लोगों को जिंदगी में बेहतर बदलाव लाने का लक्ष्य हासिल किया। लक्स कोजी ग्रुप ने बंगाल में 600 करोड़ रुपए की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए रखी आधारशिला। एशिया के सबसे बड़े गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बड़ी तैयारियां शुरू हुई। लक्स कोजी ग्रुप ने इसे अपने इतिहास का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग निवेश बताया है। इस प्रोजेक्ट से एशिया का सबसे बड़ा गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की उम्मीद भी जताई। इंग्लैंड ने आखिरी टी ट्वेंटी में भारत को 56 रन से हराकर सीरीज पर कब्जा किया। 4-0 से कब्जा मेजबान ने 3 विकेट खोकर बनाए थे 257 रन। चेक गणराज्य की लिंडा जीत चुकी हैं विंबलडन, महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया, मुचोवा को 3 सेट्स में हराया। विंबलडन 2026 मेंस फाइनल आज है, दुनिया के नंबर एक यानिक सिनर और एलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच में खिताबी भिड़ंत होगी। स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर मारी है सेमीफाइनल में एंट्री, रोमांचक क्वार्टर फाइनल जीत के साथ स्पेन का खिताब की ओर दमदार कदम। इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई, रोमांचक क्वार्टर फाइनल में अतिरिक्त समय में जीत हासिल की, खिताब की दौड़ में बरकरार है इंग्लैंड। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में पहुंची हॉकी एशियन चैंपियन मेजर ध्यानचंद, नेशनल स्टेडियम में आयोजन हुआ। हैदराबाद दौरे पर पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, कोंडाकल में मेधा बोगी फैक्ट्री और मेधा सर्वो ड्राइव्स लिमिटेड के संयंत्र का दौरा किया। भारत मंडपम में एक सोच साथिया कार्यक्रम, 75 दृष्टि बाधित छात्रों को मिली आर्थिक मदद, शिक्षा और सपनों का नया सहारा। ब्रिटेन के दौरे से भारत लौटे आचार्य प्रशांत का बड़ा बयान, बोले पश्चिमी दुनिया को भारत की असली सोच, सनातन दर्शन और जीवन के गहरे मूल्यों से परिचित कराने गया था। जैसलमेर में 92 वर्षीय रिटायर्ड आर्मी कैप्टन ने लगाया जमीन हड़पने का आरोप, न्याय की गुहार लेकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। अमरेली में सांडों का तांडव, युवक घायल हुआ, बाजार में अफरा तफरी मची, विरणी गांव में सांड के हमले में युवक के घायल होने की खबर। अमरेली में शेर का खौफ 21 साल के युवक पर हमला किया था, मौत हुई। लीलिया रेंज के अंतालिया इलाके में वन विभाग की कार्रवाई, 2 की गिरफ्तारी। प्रेमिका के कहने पर प्रेमी ने पेट्रोल पंप पर सेल्समैन को गोली मार दी थी, परेशान करने के आरोप लगाए, रची साजिश, पुलिस ने गिरफ्तार किया। डीओ कार्यालय के बरामदे में पड़ा रहा शव, अधिकारियों ने नहीं ली सुध, शिक्षिका के पति की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों ने प्रदर्शन किया, रवैये पर सवाल उठाए। आरपीएफ हिरासत से फरार हुए 2 शराब तस्कर, सब इंस्पेक्टर समेत 4 निलंबित, हाजत का अल्बेस्टर तोड़कर भागे थे आरोपी, मामले में जीआरपी थाने में एफआईआर दर्ज। दिल्ली के चसोला इलाके में दीवार गिरने की वजह से 1 की मौत हुई है, 2 बुरी तरह से घायल हुए। राजस्थान के नागौर में स्कॉर्पियो ने स्कूटी सवार 2 बहनों को टक्कर मारी थी, दोनों ही की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। टोंक में घर के बाहर खड़ी हुई कार को ले भागे थे चोर, रेकी के बाद वारदात को अंजाम दिया था, सीसीटीवी फुटेज सामने आई। आगरा के सुभाष बाजार हादसे में महिला का अब तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया, मलबे के साथ नाले में समा गई थी महिला। झांसी में छुट्टी के बाद 11वीं के छात्र को बदमाशों ने पीटा, भाई पर भी हमला बोला था। नोएडा में फर्जी लोन कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ, 5 साहब बैठक, गिरफ्तार किए गए, करोड़ों की ठगी के आरोप है। हापुड़ में दुकानदार से खरीदी गई पानी की बोतल में एसिड मिलने के बाद हंगामा, सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बिहार के मुजफ्फरपुर में पवन एक्सप्रेस में टिकट टैंपरिंग का मामला सामने आया, 4 की गिरफ्तारी की गई। मुजफ्फरपुर में ज्वेलरी कारोबारी को बदमाशों ने गोली मारी, 2.5 लाख रुपए के गहने लूटकर फरार हुआ आरोपी, अस्पताल में भर्ती। सूरत में बैंक रिकवरी एजेंट की धारदार हथियार से हत्या, शॉपिंग सेंटर में पाया गया शव। इंदौर में कॉलेज छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, दीवार पर अंग्रेजी में लिखा था अपना सुसाइड नोट। रेवाड़ी में सिलेंडर ब्लास्ट में एक ही परिवार के दो लोगों की मौत की खबर, इलाज के दौरान पिता ने तोड़ा दम, 9 जुलाई को बेटी की जान चली गई थी। टिहरी के थाना कैंपटी इलाके में पुलिस ने 12 घंटे के भीतर नाबालिग बरामद कर लिया, बहरा फुसलाकर एक युवक ने वारदात को अंजाम दिया था। राजस्थान के बूंदी में सिगरेट उधार नहीं देने के बाद दुकानदार चाकू से गोदा गया, दुकानदार को कोटा रेफर किया गया, हालत गंभीर, आरोपी फरार। एक्टर प्रियंका चोपड़ा ने जारी किया है अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म द साइकिल ऑफ लव का ट्रेलर, फिल्म की कार्यकारी निर्माता है प्रियंका चोपड़ा। पीके महानंदिया की प्रेम कहानी पर डॉक्यूमेंट्री, प्यार के लिए साइकिल से भारत से स्वीडन तक 6000 मील का सफर तय किया। वेब सीरीज रक्तांजल 3 का ट्रेलर रिलीज किया गया, क्रांति प्रकाश झा और निकितन धीर अपनी पहली वाली भूमिकाओं में नजर आएंगे। 16 जुलाई को अमेजॉन एमएक्स प्लेयर पर मुफ्त में स्ट्रीम होगी रक्तांजल 3, करण पटेल, माही गिल समेत कई कलाकार अहम भूमिकाओं में। शादी के बंधन में बंधी टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस फेम एक्ट्रेस पलक, बॉयफ्रेंड रोहन खन्ना के साथ 7 फेरे लिए। स्पेन में जंगल की आग से भीषण तबाही, अल्मेरिया में 12 की मौत हुई, 23 लापता, 3200 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जलकर खाक। स्पेन में आग से जंग जारी है, मिलिट्री इमरजेंसी यूनिट का रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन, कई कस्बों से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। टाइफून बाबी का एशिया में कहर, जापान, ताइवान और फिलीपींस में तेज हवाओं के साथ बारिश और जनजीवन अस्त व्यस्त। जापान में बाबी के बिजली संकट और इशिकागी में 4000 से ज्यादा घरों की बिजली गुल हो गई है, हवाई और फेरी सेवाएं भी ठप। चीन की ओर बढ़ गया टाइफून बाबी, ताइवान में 14,000 लोग घायल हुए हैं और सभी को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया, चीन ने 18 लाख लोगों को शिफ्ट किया। कनाडा के टोरंटो में स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान अंधाधुंध फायरिंग में 2 लोगों की मौत की खबर, 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। टोरंटो के साल्सा ऑन सेंटियर फेस्टिवल में गोलियों की गूंज, हमलावर अभी भी फरार है, पुलिस ने इलाके को घेरा, लोगों को घटनास्थल से दूर रहने के लिए कहा गया। यमन में यहूदी समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन, ईरान के समर्थकों में 14 प्रांतों से निकाली गई थी रैलियां। यूक्रेन बनाएगा पेट्रियट जैसी स्वदेशी मिसाइल रक्षा प्रणाली, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा ऐलान। रूस के खिलाफ प्रस्तावित 21वें प्रतिबंधित पैकेज पर फिलहाल नहीं बन पाई है सहमति, यूरोपीय संघ में सदस्य देशों ने सहमति न बनने के कारण नहीं लागू हो सका प्रतिबंधों का 21वां पैकेज। और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि ईरान ने ओमान के अमेरिकी बेस पर बड़ा हमला किया है और ईरान का दावा यह है कि उसने ओमान के दुकम पोर्ट पर जबरदस्त हमला किया। ये पोर्ट है जहां से अमेरिका एयरक्राफ्ट करियर को लॉजिस्टिक सपोर्ट करता है। आपको बता दें कि यूएस एयरक्राफ्ट करियर और रिफ्यूलिंग प्लेटफॉर्म को ईरान ने तबाह करने का दावा किया है। जिस तरीके से 140 से ज्यादा जगहों पर अमेरिका की तरफ से टारगेट किया गया था ईरान को, अलग अलग जगहों पर जबरदस्त धमाकों की आवाजें भी सुनी गई थी, अमेरिका को साफ कर दिया गया था ईरान की तरफ से भी कि जबरदस्त हमले उसकी तरफ से भी किए जाएंगे। और आपको बता दें कि जानकारी जो फिलहाल मिल रही है वो ये कि अलग अलग जगहों पर जहां बेस है अमेरिका के, वहां खाड़ी के देशों में ईरान ने भी बदला लिया है। ईरान का दावा यह कि उसने ओमान के दुकम पोर्ट पर हमला किया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्ट है जहां से अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलता था। यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर और साथ ही रिफ्यूलिंग प्लेटफॉर्म को ईरान ने पूरी तरह से तबाह करने का दावा किया है। तो दोनों ही तरफ से लगातार हमले जारी हैं। हॉर्मुज पहले ही बंद करने का ऐलान ईरान की तरफ से किया जा चुका है। अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि किसी भी तरह से हॉर्मुज सबके लिए फ्री और सुरक्षित होना चाहिए, जिसके बाद एक बार फिर से फुल फ्लेश्ड दोनों ही देशों के बीच युद्ध नजर आ रहा है। और कतर के अल उदया बेस पर भी ईरान की तरफ से हमला किया गया है। ईरान का दावा यह है कि उसने हॉर्मुज में अमेरिकी जहाज को भी निशाना बनाया है। एक और बड़ी और अहम खबर, हॉर्मुज के भीतर कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से एक बार फिर से अमेरिकी जहाज को निशाना बनाया गया है। तो लगातार ईरान की तरफ से अलग अलग जगहों पर टारगेटेड हमले जारी हैं, जिसमें तमाम सैन्य बेसों के साथ साथ कहा जा रहा है कि ईरान ने एक बार फिर से अमेरिका के जहाज को हॉर्मुज में निशाना बनाया है। और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी.
3: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed. Whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest, you can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
5: Sokudo.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: से पूछिए, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा को इस बात का इल्म हो गया है कि इस बार जनता भाजपा के विरोधी नहीं, जो भाजपा के समर्थक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो नेता हैं, उनको जो जिन्होंने वोट दिया है, उनका बिल्कुल मत है, क्लियर है कि सम्राट चौधरी जैसे व्यक्ति को, के चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को आप बिहार का मुख्यमंत्री नहीं थोप सकते हैं। आपको जिस समाज का भी मुख्यमंत्री बनाना है बनाइए, कुशवाहा समाज का मुख्यमंत्री बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी अच्छे व्यक्ति को बनाइए, चरित्रवान व्यक्ति को बनाइए, पढ़े लिखे व्यक्ति को बनाइए, ताकि बिहार का तरक्की हो। बिहार के लोग, बिहार के बच्चे सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, आपको वोट दिया है बिहार के लोगों ने, 202 विधायक जिताया है, तो आपकी जिम्मेवारी है कि सबसे अच्छे व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व दीजिए ताकि बिहार का विकास हो सके।
3: हाँ, उनके प्रत्याशी हार के डर से नामांकन के बाद भी नाम वापस ले रहे हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में इतना अंतरकला है, इतना द्वंद्व है, वो डिसीजन कर ही नहीं पाते कि उनका प्रत्याशी कौन जीत सकता है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
4: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस, चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
5: सो सॉरी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: दतिया, जहां बीजेपी का कमल खिलाने का प्लान है, वहां कमल के अपने ही पत्ते बिखरते दिखाई दिए। जिस पार्टी ने दशकों तक खुद को पार्टी विद डिफरेंस कहा, जिसने संगठन को व्यक्ति से बड़ा बताया, जिसने अनुशासन को अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी बताया, आज उसी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी ही सरकार की पुलिस से भिड़ गए। टिकट बदला तो सड़कें बदल गई, कार्यकर्ता बदले तो नारों का निशाना भी बदल गया। मध्य प्रदेश के दतिया में 30 जुलाई को उपचुनाव है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। दतिया से आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाने की घोषणा होते ही नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। नेशनल हाईवे पर जाम लग गया, घंटों तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही, पुलिस पर पथराव हुए, कई पुलिसकर्मी घायल हुए। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि शांति बनाए रखें, पार्टी फोरम पर इस मुद्दे को उठाया जाएगा। आखिर दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्यों कटा? बताया जा रहा है कि दिल्ली के स्तर पर कराए गए सर्वे में नरोत्तम मिश्रा की स्थिति उम्मीद के मुताबिक मजबूत नहीं पाई गई। 2023 में बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिया था, लेकिन वो विधानसभा का चुनाव हार गए। केंद्रीय नेतृत्व ने स्थानीय संगठन और भविष्य की राजनीतिक स्वीकार्यता का भी आकलन कराया। इसमें नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी फिट बैठे, जिसके बाद उन्हें दतिया से टिकट दिया गया। बीजेपी ने एक ब्राह्मण नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर दूसरे ब्राह्मण आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है। इससे जातिगत और सामाजिक संतुलन बरकरार है। उधर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी साफ कर दिया कि बीजेपी में टिकट घोषित होने के बाद वापस लेने की परंपरा नहीं है। यानी संदेश साफ है, बीजेपी हाईकमान फिलहाल झुकने के मूड में नहीं है। नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं देने पर कांग्रेस उनके समर्थन में आ गई है। कांग्रेस ने तुरंत मौका देख और कहना शुरू कर दिया कि बीजेपी बड़े नेताओं को खत्म करती है। राजनीति में इसे अवसरवाद भी कहते हैं, क्योंकि जिस कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे पर वर्षों तक खींचतान चली, जहां टिकट बंटवारे पर दर्जनों बार बगावत हुई, वो अगर बीजेपी को संगठन का पाठ पढ़ाने लगे तो जनता मुस्कुराए बिना नहीं रह सकती। राजनीति में याददाश्त छोटी हो सकती है, लेकिन जनता की याददाश्त इतनी भी छोटी नहीं होती। लेकिन माहौल चुनावी है तो कांग्रेस जरूरत से ज्यादा बड़ा बनना चाहती है। हालांकि बीजेपी अक्सर कांग्रेस पर आरोप लगाती रही कि वहां फैसले ऊपर से होते हैं, नीचे सिर्फ पालन होता है। लेकिन दतिया में नरोत्तम मिश्रा के समर्थक आज बीजेपी से भी वही सवाल पूछ रहे हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ा संकट तब नहीं आता जब सिर्फ विपक्ष सवाल पूछता है, सबसे बड़ा संकट तब आता है जब सवाल अपने पूछने लगते हैं। अब देखना है कि क्या दतिया की दरार यहीं भर जाएगी या संदेश पूरे मध्य प्रदेश तक जाएगा। दतिया का उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं है, यहाँ बीजेपी के लिए अनुशासन बनाम असंतोष, हाईकमान बनाम जमीनी कार्यकर्ता और व्यक्ति बनाम संगठन, तीनों की एक साथ परीक्षा है। एक परीक्षा बिहार में बांकीपुर सीट पर भी देखने को मिली, जहाँ बीजेपी के उम्मीदवार ने आखिरी मौके पर पर्चा वापस लिया तो दूसरे उम्मीदवार को टिकट थमाना पड़ा। हुआ यूं कि बिहार ने पहले बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अभिषेक कुमार को उम्मीदवार बनाया। अभिषेक कुमार ने नामांकन भी भर दिया, लेकिन अचानक अभिषेक कुमार ने पर्चा वापस ले लिया और इसके पीछे निजी वजह बताया। इसके बाद बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को अपना उम्मीदवार घोषित किया। 13 जुलाई को बांकीपुर सीट से पर्चा भरने का आखिरी दिन है। फिलहाल नीरज कुमार सिन्हा ने बांकीपुर से पर्चा नहीं भरा है। इस सीट से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक थे, राज्यसभा के लिए सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दे दिया था। सवाल ये नहीं कि बांकीपुर जीतेगा कौन, सवाल ये नहीं कि दतिया में क्या होगा, सवाल ये कि बीजेपी जैसी पार्टी में ये क्या हो रहा है। कहीं बगावत तो कहीं मैदान छोड़कर भागने की शुरुआत। ऐसे में लोकतंत्र में बीजेपी विपक्ष को कैसे चुनौती दे पाएगी, इसका असर कार्यकर्ताओं और वोटरों पर क्या होगा। आज तक ब्यूरो।
3: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
5: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

अमेरिका ने बुशहर बंदर अब्बास से लेकर केशम द्वीप तक 140 ठिकानों पर हमला बोला। ईरान का कुवैत, बहरीन, जॉर्डन के अमेरिकी बेस पर जवाबी प्रहार। राम मंदिर चढ़ावे चोरी को लेकर बयानों की जंग, सीएम योगी ने कहा समाजवादी पार्टी का इतिहास राम भक्तों के खूनों से सना, आस्था को किया अपमानित, कांग्रेस संसद में उठाएगी मामला। जम्मू कश्मीर ऑपरेशन लोटस पर संग्राम, सीएम उमर अब्दुल्ला ने विधायक को 20 से 30 करोड़ और मंत्री बनाने के ऑफर की बात कही, बीजेपी ने आरोपों को बताया झूठा, कहा मुख्यमंत्री सबूत दें। और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वडिंग को हटाने पर अड़ा चन्नी गुट, रंधावा बोले नहीं चाहिए कॉम्प्रोमाइज लीडर, भूपेश बघेल से मुलाकात के बाद भी नहीं बनी बात, अब आला कमान के पाले में है गेंद। और फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची मेसी की टीम अर्जेंटीना, एक्स्ट्रा टाइम में स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया, नॉर्वे को 2-1 से हराने वाले इंग्लैंड से 15 जुलाई को मुकाबला।

नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और वॉर रूम में आपका स्वागत है। आज शो में हम दिखाएंगे कि कैसे ईरान और अमेरिका फिर से एक बार जंग के मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं, कैसे इन दोनों देशों ने पूरे वेस्ट एशिया के भविष्य को आग में झोंकने की तैयारी कर ली है, क्यों कहा जा रहा है कि ईरान की चुनी हुई सरकार बनाम IRGC का मुद्दा फिर से गर्म हो रहा है। दिखाएंगे ये भी कि किसके पास है ईरान में असली ताकत। वॉर रूम में हम एक और मोर्चे की जंग पर अपने संवाददाता के साथ आपको लिए चलेंगे, अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग। एक तरफ POJ के और बलूचिस्तान में लगातार प्रदर्शन और हमले जारी हैं और उधर पाकिस्तान अफगानिस्तान के नागरिक इलाकों पर हमले कर रहा है, लेकिन तालिबान ने भी पाकिस्तान के खिलाफ पूरी तैयारी कर रखी है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ईरान से हमारी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, ईरान अमेरिका युद्ध के पहले दिन जिस जगह हमले में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की जान गई थी, वहां से हमारे संवाददाता सुमित चौधरी की यह रिपोर्ट देखिए।

0: is in the midst of a dangerous new escalation. Major wave of strikes against Iran in response to attacks on commercial shipping.
1: टीवी न्यूज के इतिहास में पहली बार हम दिखाएंगे वो घर जहां बीता अली खामेनेई का आखिरी पल। वो घर जिसकी गिरती दीवारों ने खड़ा कर दिया दुनिया का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस।

0: 28 फरवरी 2026 की वो सुबह ईरान के लिए कयामत बनकर आई। ऑपरेशन के पहले ही दिन पास्ट स्ट्रीट के उस कंपाउंड पर 30 मिसाइलें शाल बनकर गिरी और इसी के साथ खत्म हो गया था आयतुल्ला अली खामेनेई का दौर। आज तक पहुंचा वहां जहां बीता ईरान के सुप्रीम लीडर का अंतिम पल।
1: आज तक की टीम इस समय मौजूद है उस जगह पे, उस घर पर जो पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई का घर हुआ करता था, जहां पर उनकी हत्या की गई। मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं, दरअसल आप देखें इसको पूरा कॉर्डन कर दिया गया। पीछे जो इमारतें देख रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो उनको नुकसान पहुंचा था। सारी इमारतें आसपास की बम्बारमेंट किया गया था और कहा जाता है कि न सिर्फ एक इमारत को बल्कि मल्टीपल आसपास की जो भी इमारतें थी उनको भी ध्वस्त कर दिया गया। अब इस पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया गया है, इस पूरे इलाके से डिब्रीज को या फिर उनको हर चीज़ों को हटा दिया गया। लेकिन अगर आप देखें कि यहाँ पर जहाँ पर गेट लगाया गया है, ये वो पूरा कंपाउंड था जहाँ वो अपने परिवार के साथ उस समय रह रहे थे, उनका ऑफिस भी वही था। और अभी यहाँ पर लोग उनसे उनकी दुआओं के लिए उनको याद करते हुए, अगर आप देखें बच्चे भी आपको नजर आएंगे, महिलाएँ भी याद हैं, रो रहे हैं आप अपने सुप्रीम लीडर को याद करते हुए। और इस समय के ताज़ा हालात कुछ ऐसे हैं कि लोग गमजदा हैं।
0: इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ पूरे के पूरे ईरान का शासन तंत्र ही लगभग खत्म हो गया। लेकिन अली खामेनेई की मौत ने ईरान को वो हौसला दिया जो आज भी अमेरिका को परेशान कर रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है ईरान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची अहम बातचीत के लिए ओमान की राजधानी मस्कट पहुंच गए हैं। उधर अमेरिका ने साफ चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने जहाजों पर हमले नहीं रोके तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पिछले कई दिनों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तनाव लगातार बढ़ रहा है, अमेरिका और ईरानी सेनाओं के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है और इस बीच ओमान सुरक्षित समुद्री आवाजाही को लेकर मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है।

0: क्या अब ईरान को अमेरिकी कार्रवाई का भी डर नहीं? कैसे बार बार अमेरिका को चुनौती दे रहा है ईरान? कब और कैसे बहेगा हॉर्मुज का पानी? ईरान तय करेगा।
1: Everything's gone. Their leaders are gone. They had leaders, they're gone. And they had another set of leaders, they're gone. Now they have another set of leaders, they may be gone. Who knows? And you know what? I may be gone too. Because I'm their number one target. It's out all over the place. I'm their number one because they're scum. That's the way they act.
0: सवाल है, क्या फिर से शुरू हो रहा है अमेरिका ईरान युद्ध? क्या हुआ एमओयू के उस क्लॉज का जिसमें लिखा था कि 60 दिनों तक हॉर्मुज खुला रहेगा? युद्ध विध्वंसक है, विनाशकारी, युद्ध संहारक है, युद्ध घातक है, युद्ध प्रलयंकारी है। लेकिन युद्ध आखिर युद्ध है, युद्ध कूटनीति है, युद्ध काल है, युद्ध खेल है। इसीलिए कूटनीति में युद्ध को राजनीति जारी रखने का एक हिंसक साधन बताया गया है, और शायद ईरान अब इसी साधन का उपयोग उस असाध्य को साधने के लिए कर रहा है। युद्ध को रणनीतिकार कार्ल वॉन क्लॉजविट्ज ने वॉर इज अ पॉलिटिक्स बाय अदर मींस कहा है, और यही ईरान अब कर रहा है। एमओयू होने के 21 दिन के अंदर ही ईरान ने उसको तोड़ दिया। अब तक ईरान अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन क्या ओमान के क्षेत्र में चल रहे जहाजों पर हमला भी उसके अधिकार क्षेत्र में आता है? ईरान संयुक्त राष्ट्र के मानकों को भी मानने से मना कर रहा है। अमेरिका की आपत्ति है कि ईरान अकेले हॉर्मुज के समूचे क्षेत्र पर अपना अधिकार नहीं जता सकता। एक बड़ी वॉर ब्रेकिंग सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दी है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर दावा किया है कि ईरान की ओर 1000 मिसाइलें पहले से लॉक्ड एंड लोडेड हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान उनकी हत्या करने का प्रयास करता है तो अमेरिका पूरे ईरान को तबाह कर देगा। इस बयान के बाद वेस्ट एशिया में तनाव और बढ़ गया है। वेस्ट एशिया एक बार फिर बम के धमाकों और बारूद के धुएं से घिर गया है। स्विट्जरलैंड की वादियों में जो अमन और शांति का वादा हुआ था उसे ईरान ने पलक झपकते हवा में उड़ा दिया। मामला एक बार फिर आकर फंसा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कह दिया है कि शांति समझौते जैसा अब कुछ बचा नहीं।
1: It's a very interesting question. To me, I think it's over.

0: नेटो समिट के समापन पर बोलते हुए यूएस प्रेसिडेंट जब ये कह रहे थे, उससे पहले ही ईरान ने बता दिया था कि उसके लिए एमओयू का क्या मतलब है। सवाल उठता है कि आखिर ये लड़ाई फिर से क्यों भड़की? आखिर ईरान ने क्यों हमला कर दिया ओमान के क्षेत्र से निकल रहे जहाजों पर? क्या अब ईरान मन बना चुका है कि हॉर्मूज के संपूर्ण इलाके पर उसी का कंट्रोल चलेगा? दरअसल एमओयू के क्लॉज 5 के तहत ईरान ने वादा किया था कि वो 60 दिनों तक पर्शियन गल्फ से ओमान की खाड़ी के बीच कमर्शियल जहाजों को सेफ पैसेज देगा और कोई टैक्स या चार्ज नहीं वसूलेगा। लेकिन दावा है कि इस वादे की मियाद पूरी होने से पहले ही ईरान अपनी बात से पलट गया, जिसके बाद ट्रंप ने भी कह दिया एमओयू खत्म हो चुका है।
1: It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them. They're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. Liars. We make a deal. And they were, if I make a deal with him, we have a deal. And he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo.
0: 6 जुलाई को ईरान ने हॉर्मूज जल मार्ग में 2 बड़े टैंकरों पर मिसाइल हमले किए। पहला हमला ओमान के लीमा तट से केवल 8 नॉटिकल माइल दूर कतर की गैस ले जा रहे टैंकर पर हुआ और दूसरा सऊदी अरब के तेल टैंकर पर। अगले ही दिन 7 जुलाई को एक और अज्ञात टैंकर पर ड्रोन से हमला कर दिया गया। जिस जगह हमला हुआ वो जल क्षेत्र ओमान का है। अंतर्राष्ट्रीय कानून कहते हैं कि यहाँ से गुजरने वाले जहाजों पर ओमान का नियंत्रण और इंटरनेशनल मैरिटाइम लॉ लागू होते हैं। तो फिर ईरान ने ओमान की संप्रभुता पर प्रहार क्यों किया?
2: There is a very simple line in Strait of Hormuz. Either you coordinate with the Iranian officials to pass through the Strait of Hormuz, or there would be some attacks or some, let's say, measures taken against allowing ships to pass through the waterway. And that's something that has been mentioned in the MOU as well.
3: Iran aur khas kar IRGC ko lagta hai ki chahe memorandum of understanding dastakat hua usme 5ve bindu ke upar 60 din ke liye Strait of Hormuz ko khula rakhne ke liye izazat hai, kyunki unki taraf mines hone ke karan USA ne yakeen kiya hai कि सारा जो शिपिंग है, जितना भी नेविगेशन है, वो ओमानी पानी के बीच से गुजर सकता है। और ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं आईआरजीसी को खा रहा है। ये तो ओमान की तरफ से पूरा का पूरा शिपिंग तकरीबन 70-80% रिस्टोर हो गया, इसलिए मुझे लगता है कि ईरान ने इस तरीके से हरकत की। और जिस प्रकार से उन्होंने 3 शिप्स वो भी सऊदी अरेबिया के उसमें शामिल, कतर में शामिल, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो है खा रहा है ईरान को, उसका वजूद खत्म हो रहा है।
0: ईरान के हमले ने अमेरिका और ईरान के साथ साथ फिर से पूरे पश्चिम एशिया को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं।
4: No, I don't think it's gonna start again. I think it's gonna go very quickly. They hit a couple of ships. And so we hit them much harder. When they hit, we hit 10 times harder. You know, we hit much harder than they do. We have a lot better equipment than they do.
0: अमेरिका ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार साइट्स और एंटी शिप मिसाइल ठिकानों समेत 80 से ज्यादा ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी कर दी। बंदर अब्बास, सिरिक, रणनीतिक रूप से अहम केश्म आइलैंड, यहाँ तक कि बुशहर के सैन्य ठिकाने अमेरिकी मिसाइलों से दहल उठे। यही नहीं, पहली बार ईरान के चाबहार पोर्ट पर भी हमला किया गया। इसके साथ ही अमेरिका ने ईरान पर फिर से कड़े ऑयल प्रतिबंध थोप दिए हैं। हमलों का जवाब देते हुए ईरान ने भी कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस और बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के मीना सलमान कमांड सेंटर पर हमला कर दिया। तो सुमित चौधरी की रिपोर्ट आपने देखी, ये जो पूरा कार्यक्रम चला था जहां पर जो अंतिम यात्रा थी ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर की, उसको कवर करके सुमित चौधरी लौट आए हैं और स्टूडियो में हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं, जिनसे ईरान को लेकर अगर आपके भी मन में सवाल उठ रहे होंगे, क्योंकि भारत के पत्रकार कम ही वहां पर आपको दिखते हैं, सुमित इससे पहले भी ईरान में कवरेज किए हैं, ये बताइए कि 60 दिन भी ये एमओयू नहीं चल पाया, क्या हो गया कि जो ओमान कह रहा है कि ओमान के वाटर्स हैं वहां पर ईरान जाकर अटैक कर रहा है?
5: देखिए श्वेता, आप तो कह रहे हैं 60 दिन, मुझे तो उम्मीद थी, पहले से उम्मीद थी कि 9 जुलाई से पहले ही ये टूट जाएगा, क्योंकि देखिए यूएस को अपने 250 साल की अपनी जो सेरेमनी थी वो पूरा करना था, ईरान के लिए सबसे महत्वपूर्ण था उनके सुप्रीम लीडर को स्पुर्दे खाक करना, जो पिछले करीबन 125 दिनों से वो इंतजार कर रहे थे, तो दोनों के ऑब्जेक्टिव क्लियर थे और ये डेडलॉक हमेशा बना रहेगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका चाहता है कि 28 फरवरी से पहले की परिस्थिति बन जाए, जो ईरान अब बिल्कुल नहीं चाहेगा, क्योंकि ईरान के लिए अब वो दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन गए, एक तो वो एक ऐसा नेचुरल वेपन बन गया है जिसका इस्तेमाल, जिसको हासिल करना ईरान के लिए कोई बहुत बड़ी चैलेंज नहीं है, वो कभी ईरान नहीं छोड़ेगा, दूसरा उसका आर्थिक पहलू, आर्थिक पहलू ऐसे कि अगर आपको हर साल 2 बिलियन से ज्यादा का पैसा सिर्फ टैक्स और बाकी चीजों से मिल रहा है शिपिंग वहां पे गुजारने के लिए, तो आपके लिए बैठे बैठाए आपकी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा, ईरान ये जानता है कि उसके लिए उसको किसी से मजबूर होने के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
0: पर ये तो एक तो इंटरनेशनल मैरिटाइम लॉज कुछ है, आपका ओमान से लगते हुए समुद्र का इलाका जहां से अमेरिका कई शिप्स को वहां से गुजार रहा था, ये चीजें कैसे, मतलब ये ईरान का एक्चुअली क्षेत्र तो नहीं हुआ ना?
5: देखिए मैंने बिल्कुल, आपने जो सवाल मुझसे पूछा यही सवाल मैंने ईरान के उन लोगों से पूछा जो उनके हुक्मरान या फिर आप कह सकते हैं उनके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री में मौजूद है। उन्होंने एक बहुत स्पष्टीकरण के साथ एक बहुत दो मुझे तर्क दिए। पहला तर्क उन्होंने मुझे दिया कि इस जो 1982 के अंदर या 1983 के अंदर जो संधि हुई थी इंटरनेशनल वाटरवेज को लेकर, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि ईरान उसमें पार्टी ही नहीं था, ये उनकी तरफ से कहा गया। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि जब वॉर में आप जाते हैं तो फिर कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी उस पर लागू नहीं होती, ये ईरान के तर्क हैं। ईरान ही कहता है कि हम पर वो लागू नहीं होता, इसलिए हम मानते ही नहीं। तो अब ऐसे में अगर यूएस हमें प्रेशराइज कर रहा है उन संधियों के लिए, उन शर्तों के लिए जो समय एप्लीकेबल ही नहीं है, तो हम वो क्यों माने? तो ईरान का एक टूक ये कहना था ये इलाका हमारा है, हमारा ही रहेगा, नियम हमारे होंगे, कानून हमारे होंगे, और यहाँ पे से पैसे वसूलने की शर्त भी हमारी होगी।
0: बहुत शुक्रिया सुमित इस पूरी जानकारी के लिए। सीधे तौर पर कहें तो ईरान और अमेरिका के लिए तो क्या खबर होगी, लेकिन दुनिया के लिए ये अच्छी खबर नहीं। वॉर रूम में एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि कैसे दुनिया के सामने शांति का मसीहा, पीस मीडिएटर बनने वाला पाकिस्तान अफगानिस्तान के गांवों में बच्चों महिलाओं का कत्ल कर रहा है। बने रहिए हमारे इस वॉर रूम में।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से पर
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम एंड दैट्स द साउंड ऑफ अ फ्रॉड अलर्ट फ्रॉम वेल्स फार्गो flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd. To the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
4: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
0: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
1: In association with
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
3: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
4: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
5: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
6: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
5: Big 12 Radio.
7: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
5: and
7: down.
5: Talk sports.
8: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
5: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
9: So... जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
1: In association with
0: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: ये है ट्रंप की नई धमकी। ईरान को मिट्टी में मिलाने का नया ऐलान, दुनिया भर में हड़कंप मचाने वाला नया फरमान। आखिर किसने रची ट्रंप की हत्या की साजिश? ईरान युद्ध की वजह से है ट्रंप को खुद की हत्या का अंदेशा। बढ़ रहा है महायुद्ध का महाखतरा। खामिनई की अंतिम यात्रा के बाद सुलह से ज्यादा संग्राम का जो डर लग रहा था वो सही साबित होता दिख रहा है। इस पूरे हफ्ते अमेरिका और ईरान में सिर्फ बयानों का वार पलटवार ही नहीं हुआ, मिसाइलों का प्रहार भी जमकर हुआ। हुर्मुज में जहाजों पर हमलों से शुरू हुई लड़ाई कुछ ही घंटों में ईरान के अलग अलग शहरों में बमबारी तक पहुंच गई। एक तरफ ईरान अली खामिनई को दफनाने की तैयारियों में जुटा था तो दूसरी तरफ उसे अमेरिका के हमले का जवाब देने के लिए कतर और बहरीन तक सैन्य ठिकानों पर निशाने लगाने पड़े। दोनों इतने पर ही नहीं रुके, अमेरिका ने तेहरान के आसपास कई इलाकों में ताबड़तोड़ हमले किए, पुल उड़ा डाले और ऑयल रिफाइनरी तक को निशाना बनाया। तो ईरान ने तेल अवीव और कई इलाकों में इजराइल के मिलिट्री बेस को बर्बाद कर दिया। सीज फायर की धज्जियां उड़ाते इन हालात ने ट्रंप का गुस्सा और बढ़ा दिया। पहले उन्होंने बयान दिया कि हमने अच्छे होने की वजह से ईरान को एक हफ्ते की छुट्टी दी है ताकि वो अपने नेता को अंतिम विदाई दे पाए। फिर ट्रंप ने कहा कि ईरान युद्ध में हमारे हाथों पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। लेकिन अब ट्रंप का जो ताजा बयान आया है उसने तो हड़कंप मचा दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर साझा की पोस्ट में कहा है कि अगर ईरान की सरकार ने अपनी उस धमकी पर अमल किया जिसमें उसने अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति यानी मुझ पर जानलेवा हमला करने या हत्या करने की बात कही है तो ईरान पर 1000 मिसाइलें दागी जाने के लिए तैयार हैं। इसके तुरंत बाद हजारों और मिसाइलें दागी जाएंगी। इसके लिए आदेश दिए जा चुके हैं और अमेरिकी सेना पूरी तरह तैयार और सक्षम है कि वो एक साल तक ईरान पर हमले जारी रखें और ईरान के हर इलाके को पूरी तरह तबाह और बर्बाद कर दें। ट्रंप ने इस पोस्ट के जरिए एक तरफ जहां अमेरिकी सेना के महायुद्ध के लिए पूरी तरह तैयार रहने का संदेश दिया है, वहीं ये भी साफ कर दिया है कि फिलहाल जो हालात हैं उसमें युद्ध किसी भी पल फिर से शुरू हो सकता है। वैसे भी वो बार बार दोहरा रहे हैं कि युद्ध विराम अब खत्म हो चुका है। ईरान भी अमेरिका पर ही आरोप लगा रहा है कि ये सब उसी का किया धरा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने एक्स पर लिखा कि ईरान ने अब तक अपना वादा निभाया है, जबकि अमेरिका ने एमओयू के पैरा 9 का उल्लंघन किया। अमेरिका एक के बाद एक उल्लंघन कर रहा है। सीज फायर के स्थायी होने की सारी उम्मीदें फिलहाल टूट चुकी हैं। अब दोनों देशों की मिसाइलें तैयार हैं, गरजने के लिए भी और बरसने के लिए भी। आज तक ब्यूरो

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: ईरान की राजनीति से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची और सत्ता के भीतर टकराव बढ़ने की खबरें हैं। ईरानी सांसद हामिद रसाई ने संसद अध्यक्ष मोहम्मद बकर गलिबाफ पर आरोप लगाया है कि उन्होंने युद्ध और अमेरिका के साथ बातचीत के दौरान विदेश मंत्री अराग्ची को संसद के सवालों से बचाया। वहीं कट्टरपंथी नेताओं का कहना है कि अमेरिका से बातचीत ने ईरान को नहीं बल्कि उसके दुश्मनों को फायदा पहुंचाया है। बड़े आरोप हैं ये, और इन आरोपों के बाद तेहरान की सत्ता में अंदरूनी संघर्ष खुलकर सामने आ गया। इस तरह की खबरें आ रही हैं। इस राजनीतिक घमासान के बीच ये युद्ध कौन सा मोड़ लेगा, इस पर सबकी निगाहें।
1: ईरान एक देश के तौर पर एक किले से कम नहीं है, जहां किले की दीवारों के भीतर क्या होता है किसी को नहीं पता। ईरान को लेकर अक्सर यह संदेह बना रहता है कि सरकार और आईआरजीसी में कौन ईरान का असली प्रतिनिधित्व करता है। यूएस से बातचीत ईरान की सरकार की तरफ से होती है, टैंकरों पर हमला आईआरजीसी की तरफ से होता है। सवाल तो यह भी है कि क्या ईरान के राष्ट्रपति सिर्फ एक रबर स्टैंप बनकर रह गए हैं, साथ ही क्या ईरान की चुनी हुई सरकार और आईआरजीसी एक ही पेज पर है।
0: क्या ईरान में सब कुछ ठीक है? क्या ईरान सरकार और आईआरजीसी में सत्ता संघर्ष तेज हो गया है? क्या दरकने लगी है ईरान की
2: दीवारें?
0: द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका से बातचीत को लेकर ईरान की सत्ता के भीतर गहरी खींचतान शुरू हो गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बातचीत के पक्ष में खड़े राष्ट्रपति और विदेश मंत्री पर कट्टरपंथी समर्थकों ने हमला किया। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन पर सोमवार को अली खामेनेई की अंतिम यात्रा के दौरान कट्टरपंथी समर्थकों ने धक्का मुक्की और हमला करने की कोशिश की। उसी दिन विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची पर भी हमला होने का दावा किया गया। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो के अनुसार उनका पीछा किया गया और उन पर पत्थर फेंके गए। अमेरिकी हमलों और बढ़ते तनाव के बीच ईरान की सियासत क्या सचमुच दो धड़ों में बढ़ती नजर आ रही है, या फिर ये मीडिया नैरेटिव की लड़ाई है? क्योंकि एक अखबार की रिपोर्ट के अनुसार खबर आई थी कि मसूद पेजेश्कियन ने ईरान के नए बने सुप्रीम लीडर को अपना इस्तीफा दे दिया है। कारण बताया गया कि चुनी हुई सरकार की ताकत को पूरी तरह खत्म कर देना और ईरान के फैसलों पर आईआरजीसी कमांडर्स का पूरी तरह कब्जा होना।

0: यानी ईरान में लगातार असली ताकत आईआरजीसी के हाथों में ही है।
1: आईआरजीसी आज की तारीख में अब ये ईरान में पूरा उसका कमांड कंट्रोल है और जो गवर्नमेंट है उससे वो सुप्रीम है, क्योंकि अगर आपने देखा ये जो अभी खमेनी का फिनरल भी हुआ था, इसमें मुस्तफा खमेनी कहीं पर भी नहीं आए, ना आज तक उनका कोई वीडियो मैसेज आया है, जितने भी मैसेजेस आए हैं उसमें वो कभी नहीं दिखे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा शक और सवाल उठाता है, ये चला कौन रहा है वहां सिस्टम को। तो ये जो गालिबाफ है और जो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये बेसिकली एक कवर अप है, पर सारा कमांड कंट्रोल आईआरजीसी का है और वो सुप्रीम है और वही ये युद्ध को यूनाइटेड स्टेट्स के साथ चला रही है। और जितने भी ये बम्बार्डमेंट, चाहे कुवैत में हो, बहरीन में हो या कतार में, ये सारे आईआरजीसी द्वारा ही कराए जा रहे हैं। और हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए कि ये जो कवर अप है, इनके जो फॉरेन मिनिस्टर है अराकची और गालिबाफ, मेरे ख्याल इनके भी अभी गिने चुने दिन दिख रहे हैं। पूरा कमांड कंट्रोल आईआरजीसी का है।
0: ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन और अराकची जैसे नेता डिप्लोमेटिक सोच रखते हैं, शांति चाहते हैं, लेकिन मिसाइल का रिमोट लिए आईआरजीसी किसी के ऑर्डर्स नहीं सुन रही। ओमान के तट पर हुए शिप अटैक ने ईरान को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां सरकार लाचार है। आईआरजीसी ओमान के तट पर हुए शिप अटैक ने ईरान को एक बहुत मुश्किल मोड़ पर ला खड़ा किया है।
2: और अब बात उस मुल्क की हम करने जा रहे हैं जो दुनिया भर में दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है लेकिन उसमें खुद ही गिर जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कंगाली और बदहाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान की। दरअसल आजकल उसका कोई दांव नहीं चल रहा। पहले पीओजेके में विद्रोह, अब बलूचिस्तान की आग भी उसके बुझाए नहीं बुझ रही।

0: पहले बलूचिस्तान का हाल देखिए। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान सरकार के नाक में दम कर दिया है, वो भी ऐसा कि इस्लामाबाद कांप रहा है।
1: यही बलूचिस्तान तकरीबन 237 दिन तक आजाद था 1947 के बाद, बिल्कुल इंडिपेंडेंट। और ये पाकिस्तान का एक मेजर जनरल अकबर खान, उसने जाके वो कैप्चर किया था, जैसे हमारे कश्मीर को किया था। और तब से वहां पर बलूचिस्तान में बलूचिस की एक इंडिपेंडेंस की आग चल रही है। तकरीबन कईयों को तो उन्होंने मार काट के भी रख दिया है, जो 17 इन्होंने पकड़े थे। कहने का मतलब है बलूचिस्तान में अभी एक ज्वाला फट चुका है आजादी के लिए।
0: पिछले एक हफ्ते में ही ताबड़तोड़ हमले कर 42 पाक सुरक्षा कर्मी मार गिराए हैं। ज़ियारत जिले में पुलिस पोस्ट पर हमला करके 18 जवानों को अगवा किया गया और फिर उन्हें बेरहमी से भून दिया गया। ये वीडियो देखिए, क्वेटा की सड़कों पर खुद पुलिस वालों के परिवार अपनों के शव रखकर धरने पर बैठे। धरने और गिरते मनोबल की खबरें इस्लामाबाद पहुंची, जिसे सुनकर शहबाज और मार्शल आसिम मुनीर क्वेटा पहुंचे।
1: ये पाकिस्तान सरकार के लिए हेडेक इसलिए बना है क्योंकि कश्मीर हमेशा हमारा रहा है और इन्होंने इलीगली ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कैप्चर किया था। और वहां के लोगों को जितना सताया जा रहा है, और आपको पता है जब ये JAAC बना था, इसके बाद जो इनका लीडर है वो मुल्ला उमर, उसको भी इन्होंने कोशिश की, उसको घायल कर दिया था। लोगों में आक्रोश आ चुका है और आज वहां पर POK की जो आवाम है वो भारत के साथ जुड़ना चाहती है। और ये पाकिस्तान के लिए अभी सिरदर्दी हकीकत है, ये तो होना ही था, एक दिन होना था। और आज की तारीख में वहां महिलाएं भी, यंग महिलाएं बहुत भारी संख्या में, खासकर रावलकोट वगैरह में जमा हो रही हैं। तो पाकिस्तान के लिए तो हेडेक, ये लॉन्ग टर्म हेडेक रहेगा।
0: अब आपको ले चलते हैं POJK। विरोध प्रदर्शन में बर्बरता के बाद अब POJK में लोग आजादी को ही

0: अपना पहला हक मान रहे हैं। पाकिस्तान आज इतिहास के उस मोड़ पर खड़ा है जहां वो अपने ही बोए आतंकवाद के दलदल में पूरी तरह धस चुका है। दरअसल पाकिस्तान में शरणार्थियों के नाम पर 12 डमी सीटें बनाई गई। इसको लेकर स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये नया तरीका इस्लामाबाद का है लोगों की आवाज को दबाने का, यानी बिजली और पानी पीओजेके की, और मौज ले रहा पाकिस्तान का पंजाब प्रांत। विरोध प्रदर्शन में बर्बरता के बाद अब पीओजेके में लोग आजादी को ही अपना पहला हक मान रहे हैं। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने इस्लामाबाद को सिर्फ 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अल्टीमेटम कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी तो मुजफ्फराबाद में ऐसा मार्च होगा जो तख्ता पलट कर देगा।
1: 8 तारीख इस 8 तारीख की तारीख में इस खत्ते में कभी लासानी फिरका वाराना कभी किसी किस्म का कोई तशद्दुद वाकया रोनमा नहीं हुआ, कहीं लोग आपस में नहीं लड़े, कहीं बंदूक का इस्तेमाल नहीं हुआ, और आज आपने कश्मीरियों को एक माह के बाद उस पॉइंट पर लाया है। देखते हैं फिर अब कौन जीतता है।
0: वैसे 27 जुलाई को पीओजेके में चुनाव होने हैं और उससे पहले ये टकराव पाकिस्तान सरकार के लिए बड़ा सरदर्द बनता दिख रहा है। सच तो ये है कि पाकिस्तान अब घिरता जा रहा है, बलूचिस्तान हाथ से जा रहा है, पीओजेके में बगावत की राह पर, टीटीपी वाले खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान फौज की कब्र खोदी जा रही है। इस सबसे बचने का एक ही फॉर्मूला है, भारत पर आरोप लगा दो, जो पाकिस्तान की पुरानी आदत है। पाकिस्तान आज इतिहास के उस मोड़ पर खड़ा है जहां वो अपने ही बोए आतंकवाद के दलदल में पूरी तरह धंस चुका है। अब ले चलते हैं आपको अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा क्षेत्र डूरंड लाइन के पास, जहां पाकिस्तान आतंक के खात्मे के नाम पर मौत का खेल खेल रहा है। पाकिस्तान के हमलों में बच्चों और महिलाओं की जान जा रही। आज तक संवाददाता मीर फरीद इस समय अफगानिस्तान में है, उसी गांव में जहां शहबाज शरीफ के आदेश पर मुनीर की फौज ने बमबारी की। 28 जून की रात को भी अफगानिस्तान पर हवाई हमले हुए, देखिए हमारी ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये जो खंडहर है वो कभी घर हुआ करते थे, लेकिन अब बस मलबा बचा है। एक रात पहले तक ये आबाद था, लेकिन अब बस अवशेष बचे हैं और कुछ यादें। इनके इस हाल के पीछे पाकिस्तान की हुकूमत और फौज का हाथ है, जो इनाम अफगानियों और आतंकियों में फर्क नहीं कर पाई। हमारी टीम पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर डूरंड लाइन के पास उस गांव में पहुंची जहां स्थानीय लोगों के मुताबिक पाकिस्तान की सेना ने सैन्य कार्रवाई के दौरान घरों को निशाना बनाया।
2: आज तक की टीम वो पहला इंटरनेशनल क्रू है जो इस इतना दूर जो है इस डूरंड लाइन के करीब पहुंचा है और आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है कि क्या हुआ था उस दिन यहाँ, किस तरीके से तबाही हुई थी और कैसे जो है उसके बाद एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस का।
0: ये है अफगानिस्तान का पक्तिया प्रांत। इसी राज्य के चमकानी गांव में पाकिस्तान ने 28 जून को हवाई हमला किया। पाकिस्तान जिनको आतंकी बताने की कोशिश कर रहा है, उन 26 निर्दोष नागरिकों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। इस घर की हालत देखकर ही पता लगा सकते हैं कि हमला कितना जोरदार रहा होगा।
2: यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि आसपास का जो सामान है उससे भी बहुत कुछ पता चलता है कि आखिर यहाँ पे क्या था। इसे आप देख सकते हैं, जो मैट्रेसेस हैं या फिर तकिए, और उसके अलावा जो महिलाओं के कपड़े हैं और जो बाकी सामान होता है घर का, वो यहाँ तबाह होके बिखरा हुआ है। उसके बाद एक और सिलसिला एस्केलेशन का शुरू हुआ और आज हालत ये है कि जब हम डूरंड लाइन के बहुत करीब हैं, डूरंड लाइन इस तरफ आपको दिखाऊंगा, कैमरन को बोलूंगा कि आपको दिखाए, यहां से जो है डूरंड लाइन का जो 2600 किलोमीटर इलाका है इस तरफ से है, और ज्यादातर जो ये ड्यूरन लाइन जो ये बॉर्डर है ये खुला है, यानी कि इसकी फेंसिंग नहीं है, और वो एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में।
0: जिन लोगों को पाकिस्तान आतंकी बताकर अपने घर पर मिल रही हार और सेटबैक को जीत में बदलने की कोशिश कर रहा है, उस इमारत के हालात देखिए। यहाँ पाकिस्तान ने 28 जून की रात को बम गिराए थे।
3: जब मैं वहां फंसा था, मैं उस रूम पीता हूँ तीसरी फ्लोर पे, वहां फंसा था, मैंने किसी को आवाज की कि मेरी मुझे सीढ़ी दे दी, वहां की जो सीढ़ी है वो बंद थी पूरी ऊपर से जो गिरा हुआ था, तो मैंने आवाज की कि मुझे सीढ़ी दे दे, मेरी बाँ बंद है। मेरे पास अपनी वाइफ थी और छोटी एक साल की बच्ची थी, तो उनको मैंने निकाल दिया, जख्मी थे तो उसको मैंने खुद निकाल दिया। पहले तो मैं सब चीज मेरे ऊपर पड़ी थी, मैं खुद को निकाल के फिर उनको निकाल दिया मैंने,
2: फिर एक और ब्लास्ट
3: यहाँ बिठा के उनके ऊपर कंबल कोई चादर मदर औरतों की जो चादर होते हैं हवातीन के, तो चादर मदर कुछ भी नहीं थी घर में, तो मैंने उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दी कि आप यहाँ बैठे, मेरी माँ पसी है, बहुत सारे बच्ची पसी है, मैं उनको निकालता हूँ।
4: डर तो इतना ज्यादा डर है पाकिस्तान के जो नाम अभी उसको देता है लोग दूसरा इसराइल, इसके जहाज हर शब हर रात यहाँ आते हैं, चक्कर लगाते हैं, लोगों के साथ बहुत ज्यादा खौफ है। जब भी उनकी तैयारी यहाँ पर फिजा में आते हैं, लोग आसमान की तरफ देखते हैं, रोज की इस तरफ रोज हम आसमान की तरफ देखते हैं, कब क्या होगा, कहाँ पे अटैक होगा, यूँ तो उसने मामूल बनाया है। कुनड़ में, खोस में, पक्तिका में, अभी यहाँ पर हुआ, यहाँ पर जो हमला हुआ वहशतनाक, इसराइल ने इतना जुल्म फलस्तीनियों पर भी नहीं किया है।
0: दरअसल पाकिस्तान दावा करता है कि पाकिस्तान में बढ़ते आत्मघाती हमलों में टीटीपी का हाथ है, और साथ ही पाकिस्तान ये भी दावा करता है कि टीटीपी के ठिकाने अफगानिस्तान के भीतर मौजूद हैं और वो ही इन आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार है। इसीलिए पाकिस्तान पहले भी बिना किसी ठोस सबूत के अफगानिस्तान पर हवाई हमले करता रहा है।
2: जो गुस्सा है साफ तौर पे कि पाकिस्तान सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, और जो बाद में ये बात है कि ये टेरर टारगेट्स हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं, क्योंकि सिविलियन इलाका है, और यहाँ भी जो है आसपास के लोगों का माने तो वो वही कह रहे हैं जो तालिबान सरकार कह रही है कि एक और टारगेट था सिविलियन पॉपुलेशन पे, और इसमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं जो है मारी गई हैं।
0: हालांकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करती है। दोनों ही देशों के बीच इस मुद्दे को लेकर सीमा पर कई बार गोलीबारी हो चुकी है। इसके साथ ही अफगानिस्तान से तनातनी के पीछे एक जो मुख्य वजह है वो दोनों देशों का सीमा विवाद भी है। पाकिस्तान ने ही अफगानिस्तान में आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा दिया था, जो अब उसी के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। उनका कहना है कि आज इन हालात का सबसे बड़ा खामियाजा बेगुनाह और आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। अफगानिस्तान में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के खिलाफ बहुत गुस्सा देखने को मिल रहा है। अब आपको ले चलते हैं हमारे संवाददाता मीर फरीद के पास। मीर फरीद, बताएं क्या हालात आपको दिखे वहां के अलग अलग इलाकों में आप पहुंचे?
2: जी श्वेता, जैसे ही मैंने काबुल में लैंड किया, तालिबान से तो बात करनी थी, लेकिन कोशिश मेरी थी कि जो आम इंसान है उससे बात करूं और उसका सेंटिमेंट जानूं, और क्रॉस सेक्शन से मैंने बात की, और एक बात सबने कही कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की पीठ में छुरा घोंपा है। पाकिस्तान से वो सबसे कम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान पे इस तरीके से हमला करेगा, और न सिर्फ बॉर्डर्स पे बल्कि काबुल में भी एक हॉस्पिटल पे हमला हुआ है। लोग जवाब चाहते हैं पाकिस्तान से, क्योंकि सवाल ये पूछ रहे हैं कि आप क्या सबूत लेके, क्या इनपुट है आपके पास कि आप सिविलियन एरियाज पे जो है बॉम्बिंग कर रहे हैं, और बाद में ये कह रहे हैं कि ये तालिबान का या टीटीपी का ठिकाना था, या इस जगह को पाकिस्तान के खिलाफ हमले के लिए जो है प्लान वो सब वहां हो रहे थे। तो गुस्सा बहुत ज्यादा है, और पाकिस्तान की लीडरशिप ऑब्वियसली, चाहे आसिम मुनीर हो या शहबाज शरीफ, उनके खिलाफ भी बहुत हमने देखा, और उसका दूसरा पहलू भी ये कि भारत के लिए जो है दोस्ती का हाथ बनाना चाहते हैं अफगानी, और इज्जत जो है भारत के लिए काफी बढ़ गई है वहां। और जब वो मुझे भी जब उन्होंने देखा कि कहा कि आप हिंदी हैं, आप इंडिया से हैं, तो हर एक ने कहा कि हमारे मेहमान बन जाओ। और उसका मतलब श्वेता ये है कि आप से हम पैसा नहीं लेंगे, आप हमारे घर आपके लिए खुले हैं, आप हमारे दस्तरखान पे आ जाइए, तो इस तरीके का सेंटिमेंट है। तो साफ तौर पे बहुत ज्यादा गुस्सा है, और जितने ये अटैक हुए हैं उस पे है, और वो भी कि जो डर है आगे कि पाकिस्तान और ऐसे अटैक ना करे, और अफगानिस्तान जो पिछले 5 साल से पीस और स्टेबिलिटी देख रहा था, अब पाकिस्तान की वजह से फिर एक बार जो है वहां हालात खराब ना हो। जी श्वेता,
0: पर इस बात को लेकर क्या वहां पर थॉट है कि पाकिस्तान लगातार क्यों अफगानिस्तान को इस तरीके से, खासकर सिविलियन एरियाज को इस तरीके से निशाना बना रहा है?
2: जी श्वेता बिल्कुल, तालिबान के काफी लोगों से हमने बात की, कुछ से बात हुई कैमरा पे, कुछ से पर्दे के पीछे बात की, मुहाजिर फराही जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं तालिबान के, उनसे मैंने बात की एक्सक्लूसिवली, उन्होंने आज तक और इंडिया टुडे से बात की, और कहा कि पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि वो अभी भी समझता है कि तालिबान उनके हाथों की कठपुतली है, क्योंकि तालिबान और पाकिस्तान का रिलेशन हम जानते हैं, जब तक ऑक्यूपाइंग फोर्सेज थी अफगानिस्तान में तो भरपूर जो है तालिबान पाकिस्तान पे निर्भर करता था, चाहे किसी भी किस्म की मदद हो, खासकर हथियार, इंटेलिजेंस। लेकिन अब तालिबान ने मानता है कि वो वक्त जा चुका है, पहले तालिबान को अपना इंटरेस्ट जो है नेशनल इंटरेस्ट देखना है, और पाकिस्तान की ये समझते हैं कि फ्रस्ट्रेशन ये है कि अब वो तालिबान जो वो तालिबान को कहता है तालिबान वो नहीं करता, तालिबान जो है अपने फैसले खुद लेना चाहता है, और शायद वही वजह है कि पाकिस्तान इतना एग्रेसिव हो गया है तालिबान के खिलाफ और अफगानिस्तान के खिलाफ। जी श्वेता
0: बहुत शुक्रिया, मीर फरीद हमारे संवाददाता ये जानकारी हमें दे रहे हैं। वॉर रूम में आज के लिए इतना ही, देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Chogan Perfumes, the French edition for him and her.
1: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
2: What you got for me, Jack?
1: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
3: ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव का ऐलान है, जो सनातन है वही समाजवाद है।
4: जो सनातन है वही समाजवादी है।
3: ये एक और संकेत है कि अखिलेश यादव अब अपनी समाजवादी पहचान के साथ साथ खुलकर उस पिच पर खेल रहे हैं जिस पर बीजेपी दम भरती थी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बीजेपी को घेरने में सफल दिख रहे अखिलेश की दलील है कि आज सनातनी दुखी है, क्योंकि बीजेपी धर्म की नहीं धन की राजनीति करती है।
5: जो भारतीय जनता पार्टी के विचार हैं वो वोट के लिए बदलते हैं, उनके लिए धर्म नहीं धन प्राथमिकता है।
6: हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, चढ़ावे की चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं है, इन्होंने महापाप किया है।
3: बात सिर्फ राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आक्रामक होने की नहीं है। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने हाल में कई ऐसे संदेश दिए हैं जिसे बीजेपी के हिंदुत्व वोट बैंक में सेंध मारने की कोशिश माना जा सकता है। 8 जुलाई को समाजवादी पार्टी की नेता पूजा शुक्ला ने लखनऊ में अविमुक्तेश्वरानंद की मौजूदगी में धार्मिक अनुष्ठान, आध्यात्मिक प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया है। इसके पहले अखिलेश यादव 8 बड़े मंगल पर हनुमान जी को याद करते देखे गए, यहाँ तक कि उन्होंने बड़ा मंगल पर भंडारे का प्रसाद बांटा था। समाजवादी पार्टी ने इसी हफ्ते ब्राह्मण सम्मेलन किया था जिसमें बैनर लगा था ब्राह्मण चला अखिलेश के संग, लेकिन जब अखिलेश अपनी नई राजनीति का नैरेटिव खड़ा करने में लगे हैं तब उनके सामने असल सवाल आने वाले यूपी चुनाव में इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का हो सकता है। हाल में कांग्रेस के नए यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा है कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं और गठबंधन में हमारी बराबर की हिस्सेदारी होगी, यानी सीट बंटवारे पर कांग्रेस ने दबाव बनाने के तेवर दिखा दिए हैं। कांग्रेस की दलील है कि बीजेपी से राष्ट्रीय पार्टी ही लड़ सकती है। राजेंद्र पाल गौतम के इस बयान से पहले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मुसलमानों पर अखिलेश की चुप्पी पर सवाल उठाया था।
7: मंदिर की चंदा चोरी के ऊपर आप मुखरता के साथ बोलते हो लेकिन मुसलमान की सीना चोरी के ऊपर आप खामोश हो जाते हो, ये समझ में नहीं आ रहा है।
3: इस बयान को भी समाजवादी पार्टी पर कांग्रेस के दबाव की रणनीति माना जा रहा है। हालांकि यूपी में सीट बंटवारे पर अखिलेश की लकीर साफ है, सीट नहीं जरूरी है। उधर अखिलेश जब इस जीत के लिए पीडीए और सनातन का जोड़ लेकर आए हैं तब योगी आदित्यनाथ उन बातों को कुरेद रहे हैं जिस पर समाजवादी पार्टी पहले से घिरती रही है।
8: बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था। उनको कब्रिस्तान प्यारा है इसलिए वे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम और नैमिषारण्य और चित्रकूट धाम के विकास का विरोध करते हैं।
3: यूपी चुनाव नजदीक आते ही योगी की ओर से अखिलेश यादव पर ऐसे हमले और बढ़ेंगे। अगर अखिलेश इंडिया गठबंधन का मजबूत जोड़ बनाए रख पाते हैं तो मुकाबले में उन्हें आसानी होगी। आज तक ब्यूरो।
9: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

अमेरिका ने बुशहर बंदर अब्बास से लेकर केशम द्वीप तक 140 ठिकानों पर हमला किया। ईरान का दावा, जॉर्डन का अमेरिकी बेस तबाह, बहरीन कुवैत पर भी जवाबी अटैक। राम मंदिर चढ़ावे चोरी को लेकर बयानों की जंग। सीएम योगी ने कहा, समाजवादी पार्टी का इतिहास राम भक्तों के खून से सना, आस्था को किया अपमानित, कांग्रेस संसद में उठाएगी मसला। जम्मू कश्मीर ऑपरेशन लोटस पर संग्राम। सीएम उमर अब्दुल्ला ने विधायक को 20 से 30 करोड़ रुपए मंत्री बनाने के ऑफर की बात कही। बीजेपी ने आरोपों को बताया झूठा, कहा सबूत दे मुख्यमंत्री। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वडिंग को हटाने पर अड़ा चन्नी गुट। रंधावा बोले, नहीं चाहिए कॉम्प्रोमाइज लीडर। भूपेश बघेल से मुलाकात के बाद भी नहीं बनी बात, अब आला कमान के पाले में है गेंद। और सेमीफाइनल में पहुंची मेसी की टीम अर्जेंटीना। एक्स्ट्रा टाइम में स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया, नॉर्वे को 2-1 से हराने वाले इंग्लैंड से 15 जुलाई को मुकाबला। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। बड़ी और अहम खबर सबसे पहले आपको बता दें, ईरान और अमेरिका के बीच फिर से जंग शुरू हो चुकी है। पहले अमेरिका ने ईरान पर हमले किए और अब ईरान ने पलटवार किया है। आपको बता दें कि ईरान ने कुवैत, कतर, बहरीन, जॉर्डन पर एक साथ हमला बोला है। इसके अलावा ओमान के अमेरिकी बेस पर भी जबरदस्त हमला बोला गया है ईरान की तरफ से। ईरान का दावा यह है कि उसने ओमान के दुकम पोर्ट पर जबरदस्त हमला बोला है, और ये जो पोर्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां से अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलता था, उसे पूरी तरह से ईरान का दावा है कि तबाह कर दिया गया है। यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर और रिफ्यूलिंग प्लेटफॉर्म को ईरान ने तबाह करने का दावा किया है। 140 से ज्यादा ठिकानों पर अमेरिका की तरफ से ईरान में हमले किए गए हैं, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी पलटवार किया है। आगे बढ़ेंगे और अब आपको दिखाएंगे शतक। फिर से तेज हुआ खाड़ी युद्ध। अमेरिका ने बुशहर बंदर अब्बास से लेकर केशम द्वीप तक 140 ठिकानों पर हमला बोला। ईरान ने शुरू किया अमेरिका पर जवाबी हमला। ईरान का कुवैत, बहरीन, जॉर्डन के अमेरिकी बेसों पर जवाबी प्रहार। ईरान के जास पोर्ट पर धमाकों से हड़कंप, आया रहने का दावा। होर्मुज़गान प्रांत और जास बंदरगाह शहर में 10 से ज्यादा विस्फोटों की आवाज सुनी गई। अमेरिका ईरान टकराव तेज हुआ, बड़ा दावा, होर्मुज़ के जहाज पर हमले के बाद सैन्य कार्रवाई। समुद्र में बढ़ा है सैन्य तनाव, ईरान बोला नियम तोड़ने पर जहाज रोका, अमेरिका ने कहा हमलों की कीमत चुकानी होगी। वियतनाम में भारतीय पर्यटकों को लेकर जा रही नाव पलटी, 15 की मौत की खबर। वियतनाम के फुकुक द्वीप के पास हादसे के समय बोट में सवार 32 भारतीय पर्यटक और 4 क्रू मेंबर्स, 21 लोगों को बचाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर दुख जताया, वियतनाम के हनोई में अब भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। तीन देशों के कामयाब दौरे के बाद आज लौटेंगे प्रधानमंत्री मोदी, न्यूजीलैंड के दौरे से भारत के लिए उड़ान भरी। न्यूजीलैंड के साथ 10 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर, दोनों ही देशों के बीच कारोबार को 2030 तक 35,000 करोड़ रुपए तक करने का रखा गया है टारगेट। राम मंदिर ट्रस्ट को लेगा नया सीईओ, सर्च कमेटी की पहली बैठक में चयन प्रक्रिया तेज हुई, 1 महीने में नियुक्ति का लक्ष्य है। सीईओ के लिए तय हुआ है योग्यता, ग्रेजुएशन के साथ ही प्रशासन या वित्त में 20 साल का अनुभव होना अनिवार्य है। मंदिर प्रबंधन का अनुभव बनेगा प्लस पॉइंट, राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने अनुभवी और हिंदू धर्म के उम्मीदवारों को दी है प्राथमिकता। 18 जुलाई तक मांगे जाएंगे आवेदन, 3 साल के कार्यकाल के लिए चयन किया जाएगा। अयोध्या में रहकर संभालनी होगी जिम्मेदारी। विपक्ष का बीजेपी पर बड़ा हमला, कांग्रेस ने चंदा विवाद पर पीएम मोदी की चुप्पी पर उठाए सवाल। चंदा चोरी पर कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी बोली दोषियों पर कड़ी कार्रवाई। राम मंदिर ट्रस्ट विवाद में कांग्रेस हमलावर, बीजेपी ने विपक्ष पर राजनीति करने के आरोप लगाए।
सीएम योगी का पलटवार, बोले राम भक्तों के खून से सना है एसपी का इतिहास। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट निगरानी में जांच की मांग उठाई। योगी ने एसपी को आस्था विरोधी बताया। कांग्रेस ने संसद में प्रधानमंत्री से जवाब मांगने का ऐलान किया। भोपाल में नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव से मुलाकात। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे। मौजूदा हालात पर चर्चा। दतिया से टिकट कटने पर आज तक से बोले नरोत्तम मिश्रा, मुझे किसी से नाराजगी नहीं है, पार्टी से जो कहेगी वो करूंगा, आशुतोष तिवारी के नामांकन में भी जाऊंगा। दतिया में बीजेपी के बीच टिकट विवाद में कूदी कांग्रेस। पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर लिखा, कांग्रेस की पोल खुल गई, बीजेपी की अब पोल खुल गई है। दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद समर्थकों का बवाल। नेशनल हाईवे पर समर्थकों ने घंटों तक जाम लगाया, जमकर हंगामा किया। कांग्रेस ने दतिया सीट पर घनश्याम सिंह को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के साथ टक्कर। आमिर खान की तीसरी शादी पर भड़के महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे, बोले लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर हैं आमिर। युवाओं से की आमिर खान की फिल्में सोच समझ कर देखने की अपील। जामनगर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई गुजरात की मंत्री रीवा जडेजा। युवाओं को आत्मनिर्भरता, शिक्षा और स्वदेशी का संदेश दिया। मोदी सरकार ने झारखंड और छत्तीसगढ़ को दी है बड़ी सौगात। 9000 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। हैदराबाद में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कोडनकल में मेधा बोगी फैक्ट्री और मेधा सर्वो ड्राइव लिमिटेड के संयंत्र का दौरा करने पहुंचे। नासिक में ग्राम विकास की अनोखी मिसाल। ग्राम पंचायत विधा अधिकारी गणेश पगारे ने आवास, स्वच्छता और शिक्षा से बदली ग्रामीणों की जिंदगी। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, तकनीकी काम के चलते कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। गोरखपुर कैंट और साथ ही बाकी की ट्रेनों पर असर। 10 ट्रेनें रहेंगी कैंसिल, 16 का बदलेगा रूट और 17 ट्रेनों का होगा शॉर्ट टर्मिनेशन। रेलवे अलर्ट, 10 ट्रेनें कैंसिल रहेंगी, 16 का बदल जाएगा रूट और 17 ट्रेनों का शॉर्ट टर्मिनेशन होगा। दोहरीकरण कार्य के चलते 16 से 21 जुलाई के बीच में कई ट्रेनें प्रभावित। भारतीय सेना खरीदेगी 450 कालगुस्ताफ मल्टी रोल रॉकेट लॉन्चर। जंगल, पहाड़, रेगिस्तान और अर्बन वॉरफेयर का घातक हथियार। पीएफआई टेरर केस में 20 आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम। आतंकी साजिश के मामले में 29 जुलाई से शुरू होगा ट्रायल। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर केस में न्यायिक आयोग के सामने माता पिता की गवाही पूरी, कहा अब जांच के बाद समझ में आएगा इंसाफ मिला भी कि नहीं। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में खीर गंगा का बढ़ने लगा है जलस्तर। हर्षिल थाना पुलिस ने एहतियात के तौर पर स्थानीय लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा। देहरादून में बारिश का कहर जारी है। सुरक्षा दीवार ढहने से 3 मकान क्षतिग्रस्त हुए, 1 महिला घायल। खतरे के निशान को देखते हुए 7 परिवारों को सही जगह शिफ्ट किया गया। मूसलाधार बारिश बन गई आफत। विजय कॉलोनी के खाला बस्ती में मच गया हड़कंप। प्रशासन अलर्ट। डीएम और मंत्री गणेश जोशी ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। पहलगांव में फ्लैश फ्लड का कहर। नाला ओवरा में उफान से होटल पानी डूबे। भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े। पर्यटकों को सुरक्षित जगहों पर रेस्क्यू किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में मानसून की मार। अनंतनाग में झमाझम बारिश के बीच, तेज बारिश के बीच सड़कों पर निचले और इलाकों में भर गया है पानी। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में एक डॉक्टर की मौत। उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी और पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट। 8 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। टिहरी गढ़वाल में लगातार तीन दिन से लगातार हो रही है बारिश। नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट में रहने के निर्देश। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग रुद्रप्रयाग के निकट खांकरा प्रभावित हुआ। हाईवे पर टूटकर आ गए हैं पत्थर। नोएडा के सेक्टर 76 में सोसाइटी के लोगों ने आवाज बुलंद की है। प्रिंसली एस्टेट के निवासियों ने अतिक्रमण के खिलाफ निकाला कैंडल मार्च। छत्तीसगढ़ राज्य की लिंडा नोस्कोवा ने जीता विंबलडन में महिला सिंगल्स का खिताब। फाइनल में मुचोवा को 3 सेट्स में हराया। विंबलडन 2026 मेंस फाइनल आज है। दुनिया के नंबर 1 यानिक सिनर और एलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। फीफा में अर्जेंटीना का धमाका। स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंची टीम। मेसी की टीम का शानदार प्रदर्शन। स्पेन में बेल्जियम को 2-1 से हराकर मारा है सेमीफाइनल में एंट्री। रोमांचक क्वार्टर फाइनल जीत के साथ स्पेन का खिताब की ओर एक और दमदार कदम। इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में बनाई है जगह। क्वार्टर फाइनल में अतिरिक्त समय में जीत, खिताब की दौड़ में बरकरार है इंग्लैंड।
अमरेली में सांडों का तांडव, युवक घायल और बाजार में मची अफरा तफरी। विरंडी गांव में सांड के हमले में युवक घायल भी हुआ। अमरेली में शेर का खौफ, 21 साल के युवक की हमले में हो गई थी मौत। लीलिया रेंज के अंतालिया इलाके में वन विभाग की कार्रवाई, दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। प्रेमिका के कहने पर प्रेमी ने पेट्रोल पंप सेल्समैन को गोली मारी थी, परेशान करने के आरोप लगाए, साजिश रचकर गोली मारी गई, आरोपी गिरफ्तार। डीओ कार्यालय के बरामदे में पड़ा रहा शव, अधिकारी ने नहीं ली सुध। शिक्षिका के पति की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों ने प्रदर्शन किया, रवैये पर सवाल उठाए। आरपीएफ हिरासत से फरार हुए दो शराब तस्कर, इस सब इंस्पेक्टर समेत चार निलंबित। हाउस का अल्बेस्टर तोड़कर भागे थे आरोपी, मामले में जीआरपी थाने में एफआईआर। दिल्ली के जसोला इलाके में दीवार गिरने से एक की मौत हुई है, दो बुरी तरह से घायल। राजस्थान के नागौर में स्कॉर्पियो ने स्कूटी सवार दो बहनों को टक्कर मारी थी, दोनों की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती करवाया गया। टोंक में घर के बाहर खड़ी हुई कार को ले भागे थे चोर, रेकी के बाद वारदात को अंजाम दिया, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। आगरा के सुभाष बाजार हादसे में महिला की अब तक नहीं मिली है कोई जानकारी, मलबे के साथ नाले में सब आ गई थी महिला। झांसी में छुट्टी के बाद 11वीं के छात्र को बदमाशों ने पीटा, भाई पर भी हमला बोला था। गाजियाबाद के कासिमाबाद में एसडीएम पर सोशल मीडिया टिप्पणी का विवाद गहराया, लेखपालों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर तहसील प्रशासन को सौंपा गया ज्ञापन। नोएडा में फर्जी लोन कॉल सेंटर तक भंडाफोड़, 5 साइबर ठग गिरफ्तार, करोड़ों का ठगी का आरोप। हापुड़ में दुकानदार ने खरीदा हुआ पानी में एसिड मिलने के बाद जबरदस्त हंगामा, घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। बिहार के मुजफ्फरपुर में पवन एक्सप्रेस में टिकट टैंपरिंग का मामला सामने आया, छेड़छाड़ किए गए टिकट्स के साथ चार की गिरफ्तारी। मुजफ्फरपुर में ज्वेलरी कारोबारी को बदमाशों ने गोली मारी थी, 2.5 लाख रुपए के गहने लूटकर फरार हुए, बुरी हालत में कारोबारी अस्पताल में भर्ती। सूरत में बैंक रिकवरी एजेंट की धारदार हथियार से हत्या, शॉपिंग सेंटर के में शव पाया गया। इंदौर में कॉलेज छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, दीवार पर अंग्रेजी में सुसाइड नोट लिखा। रेवाड़ी में सिलेंडर ब्लास्ट में एक ही परिवार के दो लोगों की मौत हुई, इलाज के दौरान पिता ने तोड़ा दम, 9 जुलाई को बेटी की जान चली गई थी। टिहरी के थाना कैंपटी इलाके में पुलिस ने 12 घंटे के भीतर नाबालिग बरामद की, बहला फुसला कर एक युवक ने वारदात को अंजाम दिया था। जलंधर के बूंदी में सिगरेट उधार नहीं देने पर दुकानदार चाकू से उस पर हमला बोला गया, दुकानदार को कोटा रेफर कर दिया गया है, आरोपी फरार। प्रियंका चोपड़ा ने जारी किया है अपना डॉक्यूमेंट्री फिल्म द साइकिल ऑफ लव का ट्रेलर, फिल्म की कार्यकारी निर्माता हैं प्रियंका चोपड़ा। पीके महानंदिया की प्रेम कहानी पर है डॉक्यूमेंट्री, प्यार के लिए साइकिल से भारत से स्वीडन तक का सफर 6000 किलोमीटर तय किया था। वेब सीरीज रक्तांचल 3 का ट्रेलर रिलीज किया गया, क्रांति प्रकाश झा और निकितन धीर अपनी पहली वाली भूमिकाओं में नजर आएंगे। 16 जुलाई से अमेजॉन एमएक्स प्लेयर पर मुफ्त में स्ट्रीम होगी रक्तांचल 3, करण पटेल, माई गिल समेत कई और अहम कलाकार भी भूमिकाओं में। शादी के बंधन में बंधी टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस फेम एक्ट्रेस पलक, बॉयफ्रेंड रोहन खन्ना के साथ 7 फेरे लिए। स्पेन में जंगल की आग से भीषण दबाई, अल्मेरिया में 12 की मौत हुई, 23 लापता, 3200 हेक्टेयर से ज्यादा की जंगल जलकर खाक। स्पेन में आग से जंगल जंग जारी है, मिलिट्री इमरजेंसी यूनिट का रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला, कई कस्बों से लोगों को बाहर निकाला गया। टाइफून बावी का एशिया में कहर, जापान, ताइवान और फिलीपींस में तेज हवाओं के साथ बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। जापान में बावी से बिजली संकट भी गहराया, इशिगाकी में 4000 से ज्यादा घरों की बिजली गुल हुई, हवाई और फेरी सेवाएं ठप। चीन की ओर बढ़ गया है टाइफून बावी, ताइवान में 14,000 लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए, चीन ने 18 लाख लोगों को शिफ्ट किया। कनाडा के टोरंटो में स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान अंधाधुंध फायरिंग की गई, गोलीबारी में 2 लोगों की मौत, 6 लोग बुरी तरह से घायल हुए। टोरंटो के साल्सा ऑन सेंट क्लेयर फेस्टिवल में गोलियों की गूंज से गूंज गया था पूरा इलाका, पुलिस ने इलाके की घेरेबंदी की, लोगों से घटनास्थल से दूर रहने की अपील की गई। यमन में हूती समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन, ईरान के समर्थन में 14 प्रांतों में निकाली गई थी रैलियां। यूक्रेन बनाएगा पेट्रियट जैसी स्वदेशी मिसाइल रक्षा प्रणाली, यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा। रूस के खिलाफ प्रस्तावित 21वें प्रतिबंध पैकेज पर फिलहाल नहीं लगाई पाई कोई सहमति, यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में सहमति न बनने के कारण नहीं लागू हो पाया है प्रतिबंधों का 21वां पैकेज।

0: तो अमेरिका ईरान के बीच जंगी तनाव एक बार फिर से जबरदस्त तरीके से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि टकराव है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, जिसे ईरान ने बंद करने का दावा कर दिया है। तो अमेरिका ने ईरान के कई शहरों में ताबड़तोड़ हमला बोला है। उधर अमेरिका के इन हमलों के जवाब में ईरान का गुस्सा भड़क उठा है। ईरान ने मध्य पूर्व में कई अमेरिकी ठिकानों पर हवाई हमले बोले हैं। कुवैत, बहरीन और साथ ही जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ईरान ने टारगेट किया है। इन हमलों के बीच दोनों ही देशों के बीच लगातार हालात और ज्यादा बिगड़ते नजर आ रहे हैं। तो अमेरिका ने देर रात इस हफ्ते की तीसरी बार ईरान पर एयर स्ट्राइक की थी, जो अमेरिका की तरफ से साफ किया गया था। और आपको बता दें कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक न्यूक्लियर सिटी बुशहर समेत कई और जगहों पर जबरदस्त तरीके से सैन्य ठिकानों को अमेरिका ने निशाना बनाया था। आपको यह भी बता दें कि इसका बदला लेने की बात तुरंत कह दी गई थी ईरान की तरफ से। हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान ईरान की तरफ से कर दिया गया था और अलग अलग जगहों पर खाड़ी के देशों में ईरान की तरफ से जबरदस्त एयर स्ट्राइक की गई है। सैन्य ठिकानों को अमेरिका के निशाना बनाया गया है। दोनों ही तरफ से लगातार हमले जारी हैं। हम अलग अलग जगह दिखा रहे हैं कि कहां कहां किस तरीके से हमले किए गए हैं और अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया ईरान की तरफ से। एक पोर्ट को जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचने की जानकारी भी ईरान ने दी है। कहा है कि पूरी तरह से पोर्ट तबाह हो चुका है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण था अमेरिका के रीफ्यूलिंग के लिए। तो अमेरिका ने इस हफ्ते तीसरी बार ईरान पर हमला बोला है, लेकिन इस बार अमेरिका के हमले बड़े ज्यादा भीषण है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा यह है कि ईरान में करीब 140 सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया, जिसमें ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स अड्डे, नौसैनिक क्षमताओं से जुड़े हुए ठिकाने, गोला बारूद भंडारण केंद्र, संचार नेटवर्क और तटीय निगरानी केंद्र भी शामिल हैं। तो 140 से ज्यादा अलग अलग जगहों पर जबरदस्त हमले किए गए हैं अमेरिका की तरफ से, जिसमें कई जगहों पर जबरदस्त धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय जुड़ गए हैं। प्रणय, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस बार कहा गया है कि भीषण हमले हैं ये, क्योंकि ईरानी मिसाइल, ड्रोन अड्डे, नौसैनिक क्षमताओं से जुड़े हुए ठिकाने, गोला बारूद भंडारण, संचार नेटवर्क, तटीय निगरानी केंद्र, इन तमाम ठिकानों को जबरदस्त तरीके से निशाना बनाया गया, टारगेट किया गया अमेरिका की तरफ से।
1: बीते 12 घंटों के अंदर 140 ठिकाने ईरान के, बीते अगर हम दो दिनों की बात करें तो 230 ठिकाने, और बीते एक हफ्ते के दौरान 300 ईरान के ठिकानों के ऊपर अमेरिका की तरफ से कार्रवाई की गई है। यह साफ बताता है कि पश्चिम एशिया का इलाका एक बार फिर युद्ध की आग के अंदर झुलसता हुआ नजर आ रहा है। यह बात अलग है कि अपने अपने राजनीतिक कारणों के चलते न तो अमेरिका इसे फुल फ्लेज्ड वॉर कह रहा है, न ईरान की तरफ से ऐलान जंग इसे बताया जा रहा है, लेकिन कार्रवाई लगभग वही है जैसी कि इस 18 जून के सो कॉल्ड जो संघर्ष विराम हुआ था या जो एमओयू हुआ था उसके पहले या संघर्ष विराम के पहले की स्थिति थी। यानी दोनों तरफ से एक दूसरे के कई इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान की तरफ से पलटवार करते हुए दो कार्रवाई की गई है। पहली ये कि कुवैत में, बहरीन में, कतर में और संयुक्त अरब अमीरात के में अमेरिका के जो ठिकाने हैं उन पर लगभग वैसा ही वार किया जा रहा है जैसा कि 40 दिन के युद्ध के दौरान हमें तस्वीरें देखने को मिली थी। और उसके बाद ईरान की तरफ से यह भी ऐलान कर दिया गया है कि एक तरफा डील्स का वक्त अब खत्म हो चुका है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम क्लोज कर रहे हैं। आप यहां ये देखें कि आखिर ये हालात क्यों बन रहे हैं। यहां भी एक बार फिर यही स्थिति सामने आई है कि साइप्रस का एक ऑयल टैंकर था गैलेक्सी, उसको कथित तौर पर टारगेट किया गया। उसके बाद अमेरिका की तरफ से ये कार्रवाई की गई जिसके अंदर 140 ठिकानों को निशाना बनाया गया। और अमेरिका एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों को निकलने के लिए प्रेरित कर रहा है, कह रहा है कि जहाजों को वहां से निकलना चाहिए। ईरान दबाव बना रहा है कि कोई भी जहाज उसकी इजाजत के बिना नहीं निकल पाएगा। यही बोन ऑफ कंटेंशन है, टकराव का बिंदु है, लेकिन इसके बीच में अमेरिका हर जहाज पर
0: बिल्कुल प्रणय और हम समझ सकते हैं। और अभी तो ईरान की तरफ से साफ कर दिया है कि हॉर्मुज पूरी तरह से बंद है, और उसके बाद जबरदस्त तरीके से ईरान की तरफ से भी कई ठिकानों पर, अमेरिकी सैन्य बेसों पर, खाड़ी के देशों में जबरदस्त अटैक किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे हम, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
4: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
5: From the New York Times, I'm Michael Barro. This is The Daily.
6: Smartless. Hey guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of
4: Marketplace.
7: Big three on the program today, or you know, the big three of
4: and more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
8: Sokudo.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
7: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
8: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
7: Vimal, bolo zubaan kesri. Hint, bade aaram se.
9: Jahan friends, isayat, sona, masala ya vistar. 1498 mein क्या थी वास्को डिगामा की मंशा? मधुमक्खी जैसे गोरे जो शहद लेकर आ रहे थे, भारत को डंक मारना शुरू कर दिया और बेवकूफ राजाओं का फायदा उठाकर इस देश को गुलाम बना दिया। लेकिन मीर जाफर और मीर कासिम ने अगर सर झुकाया तो रानी लक्ष्मीबाई ने सर उठाया और गोरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कैसी थी लड़ाई, कौन थे इसके महानायक? तलवारें चली या भजन चला? अगर बचपन में नहीं समझ में आया, नोटबुक निकाल लीजिए। मैं अवध ओझा जल लेकर आ रहा हूं मास्टर जी इन द न्यूज रूम, सिर्फ ललन टॉप पर।
10: हम इस वक्त मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर। आप देख सकते हैं कि ये मालगाड़ी रिलीफ के लिए इस्तेमाल की जा रही है। हम मौजूद हैं मंकी हिल, जहां पर भूस्खलन हुई है, क्योंकि यहां पर 327 mm से ज्यादा पिछले 4 घंटों में बरसात हुई है। करीब 85 से ज्यादा रेल सर्विसेज इफेक्ट हुए हैं, बहुत सी ट्रेनें कैंसिल हुई। ऐसे 3 और स्थल हैं और आज तक वो इकलौता चैनल है जो इस स्पॉट तक पहुंचा है। कैमरा पर्सन स्वराज दीक्षित के साथ दिव्येश सिंह, लोनावला आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
3: और अब बड़ी और अहम खबर, सावधान कर देने वाली खबर। बेंगलुरु में फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय वॉशरूम के बहाने लड़की के घर में घुसा और उसके बाद उसने कई हरकतें कर डाली हैं। लड़की लगातार मना करती रही लेकिन फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय जबरदस्ती उसके वॉशरूम में घुस गया था और जब वॉशरूम से निकलने लगा तो उसने गंदी हरकतें शुरू कर दी। धमकी देता हुआ वो भाग निकला। लड़की ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। उसके बाद बेंगलुरु पुलिस ने इस केस की जांच की है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
4: I don't allow anyone. What is this, huh? What is this, huh? What is this, huh? What are you thinking about me? No, what are you thinking about me? No, no, no. Wait, I am sorry. I have not said anything. I have closed the door. I have closed the door. I have shown the guy forcefully. Oh, mushroom, chale gaya. मेरे दिमाग में बस चल रहा था क्योंकि आजकल इतने ज्यादा क्राइम हो, मेरे को पता है मैं खुद एक विक्टिम हूँ, इसलिए मैं कभी किसी को भरोसा नहीं करती, मैं इसको भी अलाउ नहीं कर रही थी, ये फोर्सफुली गया।
3: और इस मामले में इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
5: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
6: To right field, and it will leave.
5: From the first pitch of the season to the stretch run.
6: And that's the ball game.
5: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.

0: नहीं थम रही रूस यूक्रेन जंग। कीव पर फिर रूसी हमला, 10 घायल। यूक्रेन ने भी तेल डिपो को बनाया निशाना। तबाही की ये तस्वीरें यूक्रेन की राजधानी कीव की हैं। चारों तरफ फैले धुएं और धूल के गुब्बार से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला कितना विनाशकारी था। बमबारी से इलाके की कई इमारतें पूरी तरह जमींदोज हो गईं और कई घंटों तक राहत दलों को बचाव अभियान चलाना पड़ा। रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर 12 मिसाइल और 120 ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इन हमलों में 11 लोग घायल हो गए, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। इन हमलों में रूस ने 6 इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, लेकिन एंटी मिसाइल सिस्टम लगातार कमजोर होने की वजह से यूक्रेन एक को भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। रूस के हमले कीव तक ही सीमित नहीं रहे। क्रामाटोर्स्क में रूसी एयर स्ट्राइक में 4 लोगों की जान चली गई और 9 लोग घायल हो गए। रूसी बमबारी से कई रिहायशी इमारतों में आग लग गई और लोगों को सुरक्षित निकलने का मौका ही नहीं मिला। यूक्रेन ने भी पलटवार करते हुए रूस के कई तेल डिपो पर हमला किया है। रूस के क्रास्नोडार की लिस्की रिफाइनरी में यूक्रेन के हमले से भयानक आग लग गई। अजोब के तेल डिपो पर भी हमले की वजह से रूस को भारी नुकसान हुआ है। जेलेंस्की इसे अपनी सेना की बड़ी जीत बता रहे हैं। उनका दावा है कि हजारों किलोमीटर दूर के रूसी ठिकानों को तबाह करके यूक्रेन ने साबित किया है कि लंबी दूरी की उनकी मिसाइलें और ड्रोन कितने घातक हैं।
1: Сьогодні наші далекобійні удари досягли кількох регіонів самої Росії, а також об'єктів на тимчасово окупованій території України. Я дякую нашим воїнам за влучність. Добре іде операція і Служба безпеки України по далекобійним санкціям. Будемо цей напрямок ще посилювати. У наших воїнів має бути значно більше можливостей досягати російських окупантів саме там, звідки вони в Україну несуть війну на території Росії.
0: अभी एक दिन पहले ही यूक्रेन ने क्रीमिया में रूसी तेल टैंकरों को बर्बाद कर दिया था। जुलाई के महीने में रूस और यूक्रेन की जंग और तेज हो गई है। रूस ने कीव पर 3 बार इतने भीषण हमले किए हैं कि कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इधर यूक्रेन रूस की मिसाइलों को ठिकाने पर पहुंचने से पहले नाकाम नहीं कर पा रहा है। जेलेंस्की लगातार यूरोप से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका एंटी मिसाइल सिस्टम दुरुस्त नहीं हो पाया है। आज तक ब्यूरो।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

से तेज हुआ खाड़ी युद्ध। अमेरिका ने बुशहर बंदर अब्बास से लेकर केशम द्वीप तक 140 ठिकानों पर हमला किया। ईरान का दावा, ओमान का अमेरिका बेस तबाह हुआ। बहरीन कुवैत पर भी जवाबी अटैक। राम मंदिर चढ़ावे चोरी को लेकर बयानों की जंग। सीएम योगी ने कहा समाजवादी पार्टी का इतिहास राम भक्तों के खून से सना। आस्था को किया अपमानित, कांग्रेस संसद में उठाएगी मामला। जम्मू कश्मीर ऑपरेशन लोटस पर संग्राम। सीएम उमर अब्दुल्ला ने विधायकों को 20 से 30 करोड़ रुपए और मंत्री बनाने के ऑफर्स की बात कही। बीजेपी ने आरोपों को बताया झूठा, कहा मुख्यमंत्री सबूत दें। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष राजा वडिंग को हटाने पर अड़ा है चन्नी ग्रुप। रंधावा बोले नहीं चाहिए कॉम्प्रोमाइज। लीडर भूपेश बघेल से मुलाकात के बाद भी नहीं बनी बात, अब आला कमान के पाले में है गेंद।

0: सभी उसी हिसाब से अपनी भूमिका निभाते थे। उसी भूमिका में चढ़ावा चोरों का भी हिसाब किताब तय था। चढ़ावे की गिनती के लिए पहली शिफ्ट सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक होती थी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक थी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि चोरी की वारदात सिर्फ दूसरी शिफ्ट में ही हुई, यानी चढ़ावा चोरी की वारदात दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक की शिफ्ट में ही हुई। इससे एक बात यह भी साफ होता है कि चढ़ावा चोरी के सभी आरोपी उसी 2 से 9 वाली शिफ्ट में काम करते थे। दरअसल शाम की शिफ्ट में चोरी करना आरोपियों के लिए ज्यादा आसान था।
1: मंदिर चढ़ावा गिनती में दूसरी शिफ्ट के दौरान हुई और ये सभी चोरियां अनुकल्प मिश्रा अविनाश पांडे के साथ साथ लवकुश मिश्रा कर्णेश पांडे राम शंकर मिश्रा ने की है। सेकंड शिफ्ट चुनने की वजह भी सामने आ रही है। सेकंड शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक होती थी और ये वो वक्त होता था जब कैश लेकर बाहर निकलते समय न सिर्फ निगरानी कम होती थी बल्कि इनके लिए कैश लेकर निकलना भी आसान हो जाता था। और यही वजह है कि 40 दिन में हुई 70 बार चोरी सिर्फ सेकंड शिफ्ट में हुई। अब पुलिस की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है तो इस चोरी की परतें भी सामने आ रही हैं।
0: काउंटिंग की दूसरी शिफ्ट में चढ़ावा चोरी का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने 4 आरोपियों अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे से कड़ी पूछताछ की। हाल ही में पुलिस ने रिमांड लेकर इनसे सवाल जवाब किए। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 40 दिन में 70 बार चोरी की गई। सबसे ज्यादा 50 से अधिक बार चोरी अविनाश शुक्ला ने ही की थी। वो एक दिन में 2 बार चढ़ावा चोरी करता था। खुलासा ये भी हुआ कि अनुकल्प मिश्रा और अविनाश शुक्ला हर बार चोरी में एक दूसरे की मदद करते थे। जिन 40 दिनों का रिकॉर्ड पुलिस ने खंगाला है उसमें से 5 दिन ऐसे भी रहे जब एक ही दिन में चढ़ावा चोरों ने 3-3 बार चोरी की। पुलिस की जांच में ये सच सामने आने के बाद ही राम मंदिर ट्रस्ट ने चढ़ावे की गिनती अब सिर्फ एक ही शिफ्ट में करने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत अब सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चढ़ावे की गिनती शुरू कर दी गई है। इस फैसले के बाद काउंटिंग में लगे कुछ स्टाफ ने काम छोड़ दिया है। तमाम खुलासों के बीच अयोध्या पुलिस रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव से फिर पूछताछ की तैयारी में है। पुलिस ने दोनों की 7 दिनों की कस्टडी मांगी है। पुलिस की याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई की उम्मीद है। संतोष कुमार शर्मा, अयोध्या आज तक।
2: तो संतोष शर्मा हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं जिनकी रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे। संतोष, सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल यह कि शाम की शिफ्ट इतनी कन्वीनियंट क्यों थी, क्या इसके बारे में खुलासा हुआ है?
1: देखिए, शाम की शिफ्ट इसलिए कन्वीनियंट थी क्योंकि 2 बजे से रात में 9 बजे तक होती थी और दूसरी चीज कि शाम के समय पर आसानी से क्योंकि बैंक बंद हो जाता था जो कैश बचता था वो उसी काउंटिंग रूम में ही रह जाता था। ऐसे में इनके लिए काउंटिंग के बाद निकल पाना आसान और जो सिक्योरिटी थी वो पहले से ही लैब सिक्योरिटी बहुत ढीली थी और रात के अंधेरे में तो और भी इनके लिए आसान होता था क्योंकि जो कैश मिलता था, जो पहली रिकवरी हुई अनुकल्प मिश्रा से 2,25,000 की, जो कैश बरामद हुआ 4 जून को उसमें भी इस बात के लिए कि 2,25,000 कोई लेकर के अपने कपड़ों में छिपाकर ले जा रहा है तो अगर दिन के उजाले में होगा तो किसी की भी नजर में आ सकता है, लेकिन रात के अंधेरे में अगर वो कपड़े में ये कैश पॉकेट में या कहीं और छिपाकर ले जा रहा है तो आसानी से पकड़ में नहीं आएगा, उसके कपड़े में वो दिखाई नहीं पड़ेगी गड्डी। और यही वजह थी कि इन लोगों ने 2 से 9 रात में 9 बजे की जो सेकंड शिफ्ट थी उसको चुना और उसी में ये चोरी हुई है। जो 2 शिफ्ट हो रही थी सुबह की शिफ्ट में चोरी नहीं होती थी। ये सारे लोग अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा, कर्णेश पांडे, अविनाश पांडे, ये तमाम लोग जितने लोग थे ये सारे लोग सेकंड शिफ्ट के ही आरोपी हैं और सेकंड शिफ्ट में ही चोरियां हुई हैं। जो 40 दिन में 70 बार चोरी की बात आई है वो 70 बार की चोरी सिर्फ सेकंड शिफ्ट में है और उसमें भी 50 बार चोरी अविनाश पांडे ने की है। और इसके साथ ही साथ दिन में एक और भी महत्वपूर्ण बात कि दिन में 1 से 2 बार तो चोरी इनके लिए रूटीन हो गया था। कई बार जो मेरे पास जानकारी है कि 5 दिन ऐसे भी आए 40 दिनों में जब इन लोगों ने 3 बार चोरी की है, एक दिन में 3-3 बार पैसा लेकर के गए। तो
2: आप अंदाजा लगाइए करोड़ों लोगों की आस्था का सैलाब जहां उमड़ता है, जहां लोग पहुंचते हैं वहां किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संतोष आपका। अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सीईओ पद के लिए गठित

0: सर्च कमेटी की पहली बैठक हुई है, शनिवार को हुई। इस बैठक में सीईओ पद के लिए मानदंड तय कर दिए गए हैं। फैसला किया गया है कि आवेदक को हिंदू धर्म से होना चाहिए, उसकी जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो होनी चाहिए ग्रेजुएशन, एडमिनिस्ट्रेशन या फाइनेंस में 20 साल का अनुभव होना अनिवार्य है। साथ ही अहम फैसला ये भी किया गया कि टेम्पल मैनेजमेंट का अनुभव रखने वाले व्यक्ति को ही प्राथमिकता दी जाएगी। 18 जुलाई तक सीईओ के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। शुरुआत में 3 साल के लिए सीईओ की नियुक्ति होनी है और नियुक्त सीईओ को अयोध्या में रहकर ही काम करना पड़ेगा। महीने में सीईओ के चयन की प्रक्रिया को पूरा करने की कोशिश की जाएगी।
1: वास्तविकता तो यह है कि मैं नहीं जानता हूं कि 18 जुलाई की कोई तारीख है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। और यह कार्य तो एक 3 सदस्यीय समिति है, वो करेगी, तो वो तो जो ट्रस्ट होगा उसके अधीन ही सीईओ होगा, वो स्वतंत्र नहीं है, वो ट्रस्ट के अधीन कार्य करेगा। तो जैसे आज इतने सारे लोग कार्य कर रहे हैं, इंजीनियर कार्य कर रहे हैं, वैसे ही सीईओ भी कार्य करेगा।
0: और इस मामले को लेकर तमाम विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावर हैं। कांग्रेस ने भी मोर्चा खोला हुआ है। एक बार फिर से कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने सवाल उठाए और सरकार को घेरा है। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा है। तो उधर शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे ने चढ़ावा चोरी को लेकर बड़ा बयान दिया है और बीजेपी से सीधा सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी अब बावर जनता पार्टी बन गई है।
2: Absolutely, we are protecting Lord Ram from the BJP. The BJP is now Babar Janata Party. Absolutely, we are protecting Lord Ram from the BJP. The BJP is now Babar Janata Party.
0: तो तमाम सियासी आरोप प्रत्यारोपों के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाते हुए कल कहा कि इन्होंने सदैव भारत की विरासत और आस्था को अपमानित किया है।
3: समाजवादी पार्टी के बारे में तो कहना ही क्या है, इनका तो इतिहास राम भक्तों के खून से सना हुआ है। इन्होंने भारत की विरासत का अपमान किया है, भारत की आस्था को सदैव अपमानित करने का कार्य किया है। याद करिए कैसे लोग, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, कैसे दंगे होते थे, पर्व और त्योहारों को कैसे लोग प्रतिबंधित करते थे, कैसे कांवड़ यात्रा को रोकते थे, कैसे भारत की आस्था को अपमानित करने का काम करते थे। लेकिन आज जब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में विरासत का भी सम्मान कर रही है और विकास के कार्यों को द्रुत गति से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को पहचान नहीं पा रही है।
0: और उधर चढ़ावा चोरी को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाने वाले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। दिल्ली बीजेपी ने सोशल मीडिया पोस्ट करके गंभीर आरोप लगाए हैं और पार्टी ने केजरीवाल पर आरोप लगाया कि पंजाब के आगामी चुनाव में हार देखकर वो चुनावी हिंदू बनने की नौटंकी कर रहे हैं।
4: अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं और ये हम पहली बार नहीं बोल रहे। जब जब चुनाव आते हैं अरविंद केजरीवाल के जो कर्म होते हैं वो प्रूफ कर देते हैं कि वो चुनावी हिंदू हैं। आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसको लेके हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे। ये सब दिखाता है कि चूंकि वहां उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं, इसलिए आज अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग चुनावी हिंदू बनकर हिंदू बनने का एक सॉन्ग रच रहा है।
0: और यह खबर है जम्मू कश्मीर से। मुख्यमंत्री सीएम उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कल एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त में लगी हुई है। ऐसा दावा करते हुए उन्होंने बताया कि हमारे एमएलए को 20 से 30 करोड़ रुपए और मंत्री पद का लालच दिया जा रहा है।
5: क्या कुछ नहीं सीखा आपने? तुम्हारा नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और आज जहां आपके पैसों की लालच नहीं चली, जहां आपकी मिनिस्ट्रियों की लालच नहीं चली, वहां आप बंद कमरे में मेरे एमएलएओं को कह रहे हो आओ हमारे साथ, आप जब आओगे तो हम आपको रियासत देंगे। अल्लाह गवाह है, अगर मेरे जम्मू के एक एमएलए ने मुझे कमरे में आके ये बात नहीं कही हो। सुप्रीम कोर्ट का बीजेपी का एक अहदेदार, सुप्रीम कोर्ट का वकील, बीजेपी का अहदेदार मेरे एक जम्मू के एमएलए को बंद कमरे में कहता है, हम 20 से 30 करोड़ एक मिनिस्ट्री और रियासत का दर्जा, आप हमारे साथ चलो। उनको लगता है कि इन लोगों का ईमान इतना सस्ता है। देखिए यहां स्टेज पे एक भी आपको नजर नहीं आएगा जो 20 करोड़ में क्या 100 करोड़ में अपनी ईमान देखने के लिए जा रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं।
0: और उमर अब्दुल्ला के ऐसे गंभीर आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। पार्टी ने कहा है कि मुख्यमंत्री के पास अगर इन आरोपों को लेकर कोई सबूत है तो वो दे, नहीं तो माफी मांगे।
6: वास्तविकता यह है कि जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार की अक्षमता, अकर्मण्यता और कुशासन को छिपाने के लिए और इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार का अनर्गल आरोप जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी ने लगाया है। हम इसकी कठोर निंदा करते हैं और यही बात हम उनसे कहते हैं कि या तो वे इस विषय का साक्ष्य रखें अथवा वो अपने बयान के लिए माफी मांगें।
0: अगले साल पंजाब में विधानसभा के चुनाव हैं और इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसी बीच कांग्रेस की जो अंदरूनी कलह है वो भी सामने आई है। नाराजगी है अमरिंदर राजा वडिंग को लेकर, और एक तरफ चन्नी है उनके समर्थक हैं और जबरदस्त तरीके से उन्होंने मोर्चा खोला हुआ है, तो दूसरी तरफ है राजा वडिंग।
7: २०२७ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पंजाब में 117 सीटों की जोरदार लड़ाई है। कांग्रेस के सामने सत्ता में वापसी का एक मौका है, लेकिन इस लड़ाई से पहले कांग्रेस अंदरूनी खटपट से परेशान है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हैं, तो दूसरी ओर वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर राजा वडिंग। चन्नी के समर्थन में कई कांग्रेस नेताओं ने वडिंग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सवाल है कि कांग्रेस में कॉम्प्रोमाइज्ड लीडर कौन है। इसी सवाल के साथ पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष से सुखजिंदर रंधावा के बयान का हवाला देते हुए जवाब मांगा गया।
8: अगर नाम नहीं लिया तो फिर तुसी ये क्यों कह रहे हो कि कॉम्प्रोमाइज्ड लीडर, तुसी मेरे वाल क्यों इशारा कर रहे
9: हो? दूजी
8: सुखजिंदर सिंह रंधावा बिल्कुल ठीक कह रहे।
7: दरअसल पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी नाराजगी के केंद्र में है अमरिंदर राजा वडिंग। चुन्नी गुट वडिंग को दोबारा अध्यक्ष बनाए जाने से नाराज बताया जा रहा है। वो आला कमान के फैसले से खुश नहीं है। चुन्नी गुट इसी को लेकर पहले भी बैठक कर चुका है। नाराजगी बढ़ी तो हालात संभालने पंजाब कांग्रेस प्रभारी चंडीगढ़ जा पहुंचे। उन्होंने नाराज नेताओं के साथ अहम बैठक की। मीटिंग में पूर्व सीएम चन्नी, सुखजिंदर रंधावा, प्रताप सिंह बाजवा, प्रगट सिंह समेत कई दिग्गज पहुंचे। सभी ने अपनी अपनी बात भूपेश बघेल के सामने रखी। बैठक के बाद पंजाब कांग्रेस प्रभारी ने पहले तो कांग्रेस में किसी भी अंदरूनी कलह को खारिज किया, लगे हाथ कथित कम्प्रोमाइज लीडर को सख्त संदेश भी दे दिया।
10: देखो परिवार में रहें सब प्रकार की बातें होती हैं, है ना, और सब बातों को बाहर को बोला नहीं जाता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई कम्प्रोमाइज नेता नहीं चलेगा।
0: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: in association with
11: Bharat ki apni electric sawari Sokudo.
12: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
13: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
14: Tune in to How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
15: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?

0: से पूछिए, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा को इस बात का इल्म हो गया है कि इस बार जनता भाजपा के विरोधी नहीं, जो भाजपा के समर्थक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो नेता हैं, उनको जो जिन्होंने वोट दिया है, उनका बिल्कुल मत क्लियर है कि सम्राट चौधरी जैसे व्यक्ति को, के चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को आप बिहार का मुख्यमंत्री नहीं थोप सकते हैं। आपको जिस समाज का भी मुख्यमंत्री बनाना है बनाइए, कुशवाहा समाज का मुख्यमंत्री बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी अच्छे व्यक्ति को बनाइए, चरित्रवान व्यक्ति को बनाइए, पढ़े लिखे व्यक्ति को बनाइए, ताकि बिहार का तरक्की हो। बिहार के लोग, बिहार के बच्चे सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, आपको वोट दिया है बिहार के लोगों ने, 202 विधायक जिताया है, तो आपकी जिम्मेवारी है कि सबसे अच्छे व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व दीजिए ताकि बिहार का विकास हो सके।
1: हाँ, उनके प्रत्याशी हार के डर से नामांकन के बाद भी नाम वापस ले रहे हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में इतना अंतरकला है, इतना द्वंद्व है, वो डिसीजन कर ही नहीं पाते तो उनका प्रत्याशी कौन जीत सकता है।
2: होर्मुज की शांत लहरों में बमों की बारिश के बाद से एक बार फिर सुनामी दिखने लगी है। दो दिन में तीन जहाजों पर ईरान की बमबारी के बाद से सीज फायर की पूरी तस्वीर ही बदल गई है। एक बार फिर होर्मुज का पेच ही अमेरिका और ईरान के बीच फंस गया है, और आशंका तो इस बात की लगातार बढ़ रही है कि तेल के खेल की वजह से ही महायुद्ध का पार्ट टू शुरू होने वाला है। ईरान ने होर्मुज से गुजर रहे इन तीन कमर्शियल जहाजों पर हमला किया था। इससे ट्रंप का पारा इतना चढ़ा कि दोनों ओर से हमलों की एक नई लहर से ईरान के कई शहरों के अलावा बहरीन और कतर तक में बर्बादी का मंजर दिखाई देने लगा। होर्मुज में इस हफ्ते जो हमले हुए हैं, क्या ईरान ने इसे अपनी गलती मानी है? CBS न्यूज ने यह दावा किया है। इसमें अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि ईरानी अफसरों ने निजी तौर पर ट्रंप के सलाहकारों से कहा कि होर्मुज में जहाजों पर अटैक गलती थी और ये हमले कट्टरपंथियों के एक ऐसे गुट ने किए जो बातचीत को नाकाम करना चाहते हैं। ईरान बेशक कितना ही कह ले कि होर्मुज में हमले एक गलती थे, लेकिन अमेरिका ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है और उसके खिलाफ हटाई गई तेल निर्यात की पाबंदियों को एक बार फिर लगा दिया है, जो अगले हफ्ते से लागू कर दी जाएंगी। होर्मुज से शुरू हुई लड़ाई तेजी से खार्क तक पहुंच गई है। हफ्ते भर पहले ही अमेरिका ने यहां एयर स्ट्राइक की और ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया। ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा खार्क से ही जुड़ा है। जब से दोनों देशों के बीच जंग शुरू हुई है, खार्क को अमेरिका के कई हमले झेलने पड़े हैं। अब ये एक बार फिर से अमेरिका के निशाने पर आ गया है। वैसे अमेरिका ने ईरान को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि ईरान कमर्शियल जहाजों के लिए होर्मुज को खोले और जहाजों पर हमले पूरी तरह बंद करे, साथ ही सार्वजनिक तौर पर इसका ऐलान करे। अमेरिका ने दो टूक चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने ऐसा नहीं किया तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। ये चेतावनी ऐसे वक्त पर दी गई है जब अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हवाई हमले कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।

0: क्या इथेनॉल से नुकसान हो रहा है सर गाड़ियों?
1: मारुति सुजुकी के पास एक भी कंप्लेन नहीं है, टोयोटो के पास एक भी कंप्लेन नहीं है। मुझे बदनाम करने के लिए और इथेनॉल को बदनाम करने के लिए प्रयास है।
0: नए नए एक्सप्रेस वेज जो बन रहे हैं उनमें गड्ढे,
1: हमारे हाईवे में जितने गड्ढे हैं उसके ऊपर आप कार्यक्रम करिए और दिखा दीजिए।
2: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
3: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
4: Jazz fans, rejoice! Stingray Jazz offers riveting concert films and documentaries from the world's most prestigious stages. Whether you're a lifelong connoisseur or just getting up to tempo, Stingray Jazz, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.

0: हर साल ITR भरते वक्त कई टैक्स पेयर्स को यही चिंता रहती है कि कहीं कोई बड़ा वित्तीय लेनदेन बाद में टैक्स विभाग की नजर में सवाल न खड़ा कर दे। FD मैच्योर होने पर मिली रकम, म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन या फिर घर खरीदने जैसे बड़े लेनदेन अक्सर विभागीय रिकॉर्ड और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी AIS में दिखाई देते हैं। ऐसे में कई बार रिटर्न और उपलब्ध जानकारी के बीच तालमेल को लेकर सवाल उठ सकते हैं। इस तरह के हालात को ध्यान में रखते हुए आयकर विभाग ने ITR यूटिलिटी में एक अहम बदलाव किया है। दरअसल असेसमेंट ईयर 2026-27 की ITR यूटिलिटी में स्केड्यूल EI यानी एग्जेम्प्ट इनकम के तहत नया अदर इनकम कॉलम जोड़ दिया गया है। इसके जरिए टैक्स पेयर्स ऐसी टैक्स फ्री या नॉन टैक्सेबल प्राप्तियों की जानकारी दे सकेंगे जो पहले से मौजूद किसी सेगमेंट में फिट नहीं बैठती। टैक्स पेयर्स के मुताबिक कई बड़े ट्रांजैक्शन AIS में तो दिखाई देते हैं, लेकिन रिटर्न में उनके सोर्स की साफ जानकारी हमेशा नहीं मिलती। खासकर उन टैक्स पेयर्स के लिए ये चुनौती बढ़ जाती है जिन्हें पर्सनल बैलेंस शीट दाखिल नहीं करनी होती। ऐसे मामलों में अतिरिक्त जानकारी देने से संभावित मिसमैच या फिर सफाई देने की जरूरत कम हो सकती है।
1: नए डिस्क्लोजर से कोई एडिशनल टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी, लेकिन हाँ, इसे आपकी रिकंसिलेशन करने में इनकम टैक्स ऑफिस को इजी होगी। आपकी रेवेन्यू का सोर्स, आपके रिसीट्स का सोर्स वर्सेज आपने जो एक्सपेंसेस करे, आपने जो पेमेंट्स करे उसका सोर्स, तो इससे टैक्स पेयर को ये फायदा होगा कि आइटम आराम से रिकनसाइल होंगे, अननेसेसरी ये फ्लैग नहीं लगेंगे और आपके पास इनकम टैक्स के नोटिस और क्वेरीज कम आएंगे।
0: नए कॉलम का मकसद ऐसी नॉन टैक्सेबल रिसीविंग को रिपोर्ट करने का विकल्प देना है जो मौजूदा सेगमेंट्स में शामिल नहीं है। मिसाल के तौर पर रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट, खेती की जमीन बेचने से मिली नॉन टैक्सेबल रकम या दूसरी टैक्स फ्री रिसिप्ट की जानकारी यहां दी जा सकती है। इस डिस्क्लोजर से कोई नई टैक्स देनदारी पैदा नहीं होगी। वहीं ये विभाग के रिकॉर्ड और रिटर्न के बीच बेहतर तालमेल बनाने में मदद कर सकता है और संभावित मिसमैच या अतिरिक्त पूछताछ की आशंका कम हो सकती है। रिटायरमेंट के दौरान मिलने वाली रकम को लेकर भी कई बार दुविधा की स्थिति पैदा होती है। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम यानी VRS के तहत मिलने वाले मुआवजे पर सेक्शन 10C के तहत निर्धारित सीमा तक टैक्स छूट मिलती है। वहीं लीव एनकैशमेंट पर सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अलग अलग नियम लागू होते हैं। टैक्स एक्सपर्ट्स की सलाह है कि रिटायरमेंट से जुड़ी ऐसी रकम का जो हिस्सा टैक्स फ्री है और उसे एग्जेम्प्ट इनकम स्केड्यूल में दिखाया जाए, जबकि जो हिस्सा टैक्सेबल है उसे संबंधित आय वर्ग में दर्ज किया जाए। जानकारों का मानना है कि नया अदर इनकम कॉलम टैक्स पेयर्स को अपनी टैक्स फ्री रिसीविंग की जानकारी ज्यादा साफ तरीके से देने का विकल्प देता है, जिससे भविष्य में संभावित सवालों या मिसमैच की स्थिति को कम करने में मदद मिल सकती है। आज तक ब्यूरो।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर

अखाड़ी युद्ध। अमेरिका ने बुशहर बंदर अब्बास से लेकर केशम द्वीप तक 140 ठिकानों पर हमला किया। ईरान का दावा, ओमान का अमेरिकी बेस तबाह, बहरीन कुवैत पर भी जवाबी अटैक। राम मंदिर चढ़ावे चोरी को लेकर बयानों की जंग। सीएम योगी ने कहा, समाजवादी पार्टी का इतिहास राम भक्तों के खून से सना, आस्था को किया अपमानित, कांग्रेस संसद में उठाएगी मामला। जम्मू कश्मीर ऑपरेशन लोटस पर संग्राम। सीएम उमर अब्दुल्ला ने विधायक को 20 से 30 करोड़ रुपए और मंत्री बनाने के ऑफर की बात कही। बीजेपी ने आरोपों को बताया झूठा, कहा मुख्यमंत्री सबूत दें। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वडिंग को हटाने पर अड़ा है चन्नी ग्रुप। रंधावा बोले, नहीं चाहिए कॉम्प्रोमाइज्ड लीडर। भूपेश बघेल से मुलाकात के बाद भी नहीं बनी बात, अब आलाकमान के पाले में है गेंद। और फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची मेसी की टीम अर्जेंटीना। एक्स्ट्रा टाइम में स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया, नॉर्वे को 2-1 से हराने वाले इंग्लैंड से 15 जुलाई को मुकाबला।

आप मंदिर दर्शन करने जाते होंगे तो घर पर सबके लिए वहां से प्रसाद लेकर आते होंगे, पर आज हम आपको एक ऐसे सिद्ध धाम लिए चलेंगे जहां से प्रसाद बाहर लाना मना है। आमतौर पर आप मंदिर से निकलकर एक बार पीछे देखकर फिर ईश्वर को प्रणाम करते होंगे, पर आज हम आपको एक ऐसे मंदिर लिए चलेंगे जहां पलट कर देखना मना है। यहां की हर रीति अद्भुत है, हर मान्यता अविश्वसनीय, यहां की महिमा अकल्पनीय है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आज चलिए हमारे साथ राजस्थान के दौसा जिले के श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम।

0: से बाबा के शरण में आए हैं बालाजी के, तब से बहुत आराम है हमारे बच्चे।
1: ऐसा जगह है कि आपका हर एक चीज जो काम नहीं बनेगा यहाँ पे बन जाएगा।
2: यहाँ आने के बाद में यहाँ के वातावरण में ही ऐसी पॉजिटिविटी है कि यहाँ आके लोग ऑटोमेटिक ही सही हो जाते हैं।
3: यहाँ पे किसी को कुछ किया कराया हो कुछ है, यहाँ पे सब आके सब बाधाएं विघ्न दूर हो जाती हैं।
4: आप खुद देखो ना, ये तो एक तरह से बाबा की कचहरी है।
5: मैंने जब फर्स्ट टाइम एंट्री करी थी तो मुझे इस धरती पे पैर रखते ही मुझे पता लगने लग गया था कि बाबा साक्षात यहाँ पर है।
6: यहाँ पर पीछे मुड़ के न देखना, प्रसाद न खाना,

0: एक मंदिर जहां लगती है भूतों की अदालत। एक धाम जहां तालों में कैद कर दी जाती हैं बुरी शक्तियों की परछाइयां। एक आस्था जहां हर चीख के पीछे छिपी होती है एक उम्मीद। अद्भुत है यहाँ की मान्यताएं।
1: बाबा के दर्शन करने से तो दर्शन मात्र से ही संकट कट जाते हैं, वैसे ही इन्हें संकट मोचन कहते हैं।
0: अविश्वसनीय है श्रद्धालुओं का विश्वास।
2: मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो आते थे जिसे सांस नहीं होती थी, यहाँ पर आके ठीक हो जाते थे। मैंने खुद का अनुभव है, मैंने देखा है यहाँ।
0: अकल्पनीय है यहाँ से जुड़ी लोक कथाएं।
3: ये ऐसा केंद्र है, चाहे दुखी हो, बीमार हो, लाचार हो, कोई भी व्यक्ति आता है तो प्रभु उनका भला करते हैं। भगवान का और भक्त का मिलन होता है, जो जिस आस्था से आता है उसको उसी प्राप्ति होती है सर।
0: कोई अपने भय के साथ आता है और विश्वास लेकर लौटता है, कोई अपनी व्यथा लेकर आता है और प्रार्थना छोड़कर जाता है, कोई उत्तर खोजने आता है तो कोई केवल श्री बालाजी का आशीर्वाद पाने।
4: मेहंदीपुर बालाजी धाम का हर रहस्य एक नई परंपरा से जुड़ा है और हर परंपरा के पीछे छिपी है सदियों पुरानी आस्था। यहां केवल भगवान के दर्शन नहीं होते बल्कि कुछ ऐसी मर्यादाओं का भी पालन किया जाता है जिन्हें लाखों श्रद्धालु आज भी अटूट विश्वास के साथ निभाते हैं।

0: हर मंदिर की अपनी परंपरा होती है, लेकिन ये ऐसा मंदिर है जहां भगवान के दर्शन से पहले नियमों के दर्शन होते हैं, जहां श्रद्धा के साथ अनुशासन भी अनिवार्य है और जहां हर कदम पर आस्था की मर्यादाएं आपका इंतजार करती हैं।
1: ये बाबा बालाजी हनुमान जी महाराज का धाम है, इसे घाटे वाले बालाजी और मेहंदीपुर बालाजी के नाम से लोग बाग जानते हैं। मैं पिछले लगभग 20-25 साल से यहाँ बाबा के दरबार में आ रहा हूँ। लोग बाग यहाँ आते हैं, ये तो आस्था की बात है। बाबा की तो कृपा ऐसी है कि लोगों का संकट ही काट देते हैं बाबा यहाँ, और इसी आस्था के लिए लोग बाग यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ संकट कटते लोगों ने अपने प्रत्यक्ष देखा है और कटते भी हैं। आप खुद देखो ना, ये तो एक तरह से बाबा की कचहरी है कि यहाँ कोतवाल जी भी बैठे हैं, प्रेतराज जी भी बैठे हैं, भैरव बाबा भी बैठे हैं और स्वयं बाबा खुद विराजमान है। और ऐसा भी है कि बाबा स्वयं यहाँ रोज विराजमान रहते ही हैं, ऐसा नहीं है कि जाते हैं। लोगों के संकट कटते हैं, यहाँ से संकट भी कट रहे हैं और लोगों को लाभ मिल रहा है। जब भी तो इतनी तादाद में भीड़ उमड़ रही है यहाँ।
0: भारत में अनेकों मंदिर हैं, लेकिन राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी धाम की परंपराएं बिल्कुल अलग हैं। भक्तों को बालाजी का प्रसाद घर लेकर जाना मना है। मंदिर दर्शन से पहले ही आपको लहसुन, प्याज, मांसाहार और मदिरा का त्याग करना है। दरबार में प्रवेश से पहले इत्र और परफ्यूम का इस्तेमाल निषेध है। दर्शन के बाद 40 दिनों तक सात्विक जीवन का पालन करना है। मंदिर परिसर में पीड़ित व्यक्तियों को छूना या बातचीत करना मना है। बालाजी, प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा तीनों का दर्शन अनिवार्य है। और सबसे बढ़कर मंदिर से बाहर निकलते समय पीछे मुड़कर देखना मना है।
1: बाबा जो लोगों के संकट काटते हैं, अपना संकट कौन कट के पीछे मुड़ के देखना चाहेगा? जो संकट कट गया वो बाबा ने काट दिया, आपको उससे क्या करना? आपका तो संकट कट गया, तो इसलिए आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना। आपको तो जो बाबा ने आप पर कृपा करी है, उस कृपा का सुख का आनंद लो। आप बाबा के दर्शन करो और अपने सुख का आनंद लो।
2: ये बिल्कुल सही है, जो भी लाचार व्यक्ति होता है वो नहीं जा पाता कहीं भी, या सोखा ओझा जो भी किस चक्कर में पड़ते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति के चक्कर में ना पड़े, सीधा बालाजी के दरबार आए। जो नियम है, कानून है कुछ यहाँ के, उन नियम का पालन करेंगे पुनः ठीक हो जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। यही बालाजी की कृपा है, सबसे बड़ी कृपा है। कलयुग के राजा हैं ये, और कलयुग में सबसे ज्यादा अगर चलता है तो बालाजी का ही चलता है।
0: क्या ये सच है या केवल भ्रांति? अगर सच है तो क्यों? क्या इन नियमों के पीछे कोई प्राचीन धार्मिक परंपरा है? क्या ये केवल लोक मान्यताएं हैं, या फिर सदियों से चली आ रही ऐसी आस्था जिसे आज भी लाखों श्रद्धालु पूरे विश्वास के साथ निभाते हैं?
3: मेहंदीपुर धाम ऐसा धाम है जो कष्टों को निवारण करता है, सुखों को प्रदान करता है। तो इसलिए दुनिया ये आजकल कलयुग में देव सिद्ध हो तुम्हें हनुमान तुम्हारा क्या कहना, ऐसे बाबा हैं, स्वयंभू हैं, प्रकट अपने आप हुए हैं। प्रेतराज सरकार जी हैं, कोतवाल कप्तान जी हैं और स्वयं दीवान जी महाराज जी हैं। प्रेतराज सरकार की दया दृष्टि से सभी के देवी पितरों का जो है उद्धार होता है, मुक्ति होती है, शुद्धि होती है और सभी के घर परिवार में धन संतान में कारोबार में वृद्धि होती है। इसी की कामना से सभी दीन दुखियारी जो भी आता है वो अपनी सद मनोकामना पूर्ण करके जाता है।
0: मेहंदीपुर बालाजी धाम में नियम किसी शिलालेख पर नहीं लिखे, बल्कि श्रद्धालुओं के विश्वास में बसते हैं। शायद यही वजह है कि इस दिव्य दरबार में आने वाला हर भक्त केवल दर्शन करने नहीं आता, बल्कि उन परंपराओं का पालन करने आता है जिन्हें पीढ़ियों से आस्था ने जीवित कर रखा है। और यही विश्वास मेहंदीपुर बालाजी धाम को देश के सबसे रहस्यमयी और सबसे अनोखे तीर्थों में से एक अलग पहचान देता है।
4: कोई इसे संकट मोचन हनुमान की दिव्य कृपा का दरबार मानता है, तो कोई इन सब बातों को लेकर कहता है कि ये तो केवल लोक विश्वास है। विज्ञान भूत प्रेत को नहीं मानता और इंसानों में अगर कुछ अलग व्यवहार होता है उसके लिए मनोचिकित्सा होती है। लेकिन एक बात तय है, अद्भुत है यहाँ की परंपराएं, अविश्वसनीय है यहाँ से जुड़े लोगों के अनुभव और अकल्पनीय है वो मान्यताएं जिन्होंने मेहंदीपुर बालाजी धाम को रहस्य और आस्था का अनोखा संगम बना दिया है।

0: यहाँ विश्वास का संसार तर्क से नहीं श्रद्धा से चलता है।
1: हमारे साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, हमारे घर में भी ऐसे बहुत सारे हुए हैं जो यहाँ आके हमें बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मिली हैं, और हमें कहीं से भी आराम नहीं आ रहा था तो हम बाबा के दर्शन करने आते हैं तो हमें बहुत ही यहाँ पे सुकून मिलता है आके। यहाँ पे तो इतनी अद्भुत चीजें हैं कि कोई जो विश्वास भी नहीं करता वो एक बार आके यहाँ देखेगा तो उसको अपने आप पे खुद ही विश्वास होने लग जाएगा।
2: मैं 15 साल से ज्यादा हो गया, हम अपना कोई भी शुभ कार्य करने से पहले बाबा के इधर आते हैं और बाबा हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और साइंटिफिकली मैं इन चीज़ों को नहीं मानती थी कि यहाँ पे भूत प्रेत या ऐसा कुछ होता है, लेकिन मैंने जब फर्स्ट टाइम एंट्री करी थी तो मुझे इस धरती पे पैर रखते ही मुझे पता लगने लग गया था कि बाबा साक्षात यहाँ पर हैं। और हमारे साथ पर्सनल एक चीज़ हुई कि मेरे मामा की बेटी थी, वो काफ़ी बीमार रहती थी, किसी भी डॉक्टर ने कोई इलाज समझ नहीं आ पाया, ना ही रिपोर्ट में कुछ आ रहा था, लेकिन वो जब यहाँ आई तो बिल्कुल ठीक होके गई है। हम बिलीव नहीं करते थे लेकिन हमें विश्वास है कि बाबा हैं यहाँ पे।
0: यहाँ 2400 घंटे प्रार्थनाएं गूंजती हैं और उम्मीद कभी खत्म नहीं होती।
3: वो भी घर ले जाते हैं परिवार के लिए, उनमें उसमें लिखा है आपको घर ले जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, पैकेट पे लिखा है।
4: मंदिर में पैकेट बांटते हैं वो ले जाते
3: हैं। बहुत महिमा है बालाजी।
0: जब हर दरवाजा बंद हो जाता है तब बहुत से लोग आखिरी उम्मीद लेकर मेहंदीपुर बालाजी धाम पहुंचते हैं।

0: मैं नर्सिंग स्टाफ हूँ, इन चीजों पे विश्वास नहीं करती थी, और यहाँ आके मैंने देखा हाँ साइंस अलग है, भगवान बहुत बड़ी चीज है।
1: आपको कैसे यकीन हुआ?
0: मेरे में कष्ट आया।
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: कब से आ रही है?
0: 20 साल से।
1: हाँ
0: हाँ, मेरे सिर का दर्द हुआ था, मैंने जोधपुर वगैरह हर जगह से इलाज लिया, कहीं कोई फायदा नहीं आया, यहाँ पे आई मैं, उसके बाद मेरे को पता चला हाँ साइंस अलग चीज है, भगवान भगवान है। और जब भी मेरी शादी की सालगिरह होती है तो मैं यहाँ अब की बार मनाया है, तो बहुत अच्छा लगा, हमें तो सब कुछ बाबा का ही है।
2: विज्ञान की नजर में भूत प्रेत या ऊपरी बाधा का कोई प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन इस दरबार में आने वाले अनेक श्रद्धालु दावा करते हैं कि उन्हें यहाँ राहत मिली।
3: हम अयोध्या जी से आए हैं, हमारे बच्चे को संकट ने बहुत तकलीफ दिया है, लड्डू में खिलाया गया था, बाबा हमको बहुत शक्ति दिए, हम बच्चे को कंट्रोल में कर ले, नहीं दबाव का काम नहीं कर रहा था, इतना तकलीफ देता था, ये देखो हाथ में काट लिया, यहाँ पूरा हाथ काट दिया था मुंह से, माँ बाप को छोटे भाई को बहुत मारता था। और ये मतलब 2014 का मैटर है, 2014 में मतलब 5 साल का था तभी उसको लड्डू में खिलाया गया था। तो मतलब हम तांत्रिक के पास जाते थे तो तांत्रिक मतलब करते थे, मतलब आराम हो जाता था, मतलब इसको अच्छे से नहीं ठीक कर पाते थे। तो इसके वजह से जब से बाबा के शरण में आए हैं बालाजी के, तब से बहुत आराम है हमारे बच्चे।
2: अद्भुत है ये अनुभव, अविश्वसनीय है ये दावे, और अकल्पनीय है कहानियां जो हर दिन मेहंदीपुर बालाजी धाम में सुनाई देती है।
4: मेरे को यहाँ आते आते 20 साल हो गए करीब, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, 6 महीने इलाज कराया मैंने कम से कम 5-6 डॉक्टर से अच्छे अच्छे से, पर मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। तो हमारे यहाँ गुरु जी एक मंदिर की पूजा करते थे माता जी का, तो उनने बोला साले रोता क्यों है, जाओ मेहंदीपुर बालाजी चला जा। मेरे को उनने एक हनुमान चालीसा दिया छोटा, तेरे को तकलीफ हो रस्ते में तो रख ले जा, बस देख लेना, बस दर्शन कर ले।
1: तो
4: अब बिल्कुल स्वस्थ है, 8 बार आ गया मैं यहाँ परिवार सहित, और एक बार तो मैं भंडारा भी कर चुका हूँ, पूरी गाड़ी भर के लाया था मैं।

0: क्या ये केवल अटूट आस्था की शक्ति है? क्या ये मनोवैज्ञानिक विश्वास का असर है, या फिर ऐसा कोई रहस्य जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया?
1: मेहंदीपुर बालाजी धाम की एक तस्वीर वो है जो रहस्य और लोक मान्यताओं से जुड़ी दिखाई देती है, लेकिन इस पवित्र दरबार का एक दूसरा रूप भी है, जहां लोग केवल अपनी परेशानियां लेकर नहीं आते, बल्कि उम्मीद, प्रार्थना और नए सपनों के साथ पहुंचते हैं।
0: मेहंदीपुर बालाजी धाम नाम सुनते ही कई लोगों के मन में भूत प्रेत और प्रेत बाधा की कहानियां उभर आती हैं, लेकिन इस दिव्य दरबार की पहचान सिर्फ इतनी नहीं है।
2: सौ % मनोकामना पूरी होती है जब से आए हैं, जब से बाबा की इतनी कृपा हुई है हमारे ऊपर कि हम बस वर्णन नहीं कर सकते। सब नेगेटिव एनर्जी क्या ये समझ लो कि आपको सुकून, जीवन में सुकून मिल जाता है।
3: मेरी सारी मनोकामना पूरी हुई है। घर पे मेरे पे टहलने भी नहीं जा सकता है और यहाँ पे मैं दौड़ दौड़ के चलती हूँ।
4: इनका बुलावा रहेगा तभी आ पाएंगे, नहीं तो ऐसे नहीं आ सकते। कितनों आप कोशिश करेंगे नहीं आ पाएंगे जब से इनका बुलावा नहीं रहेगा। हाँ, हम अर्जी लगाए थे तो हम यहाँ पे आए हैं, हसीन बालाजी कृपा है तभी।
0: सदियों पुराना ये धाम केवल रहस्य का बिंदु नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ कोई अपने बच्चों के बेहतर भविष्य की प्रार्थना लेकर पहुंचता है, कोई नौकरी की मनोकामना लेकर आता है, तो कोई व्यापार में सफलता की उम्मीद के साथ।
5: यहाँ पर आते हुए हमें लगभग 2-3 साल हुए हैं और बाबा की ऐसी कृपा हुई, गुरुदेव भगवान की ऐसी कृपा आशीर्वाद से हम यहाँ पर जब से आए हैं हमारे दिन दुगनी रात चौगनी कृपा होती रही है और बाबा जी का आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहा है और बरसता रहा है।
0: इस दरबार में अर्जी अलग अलग है लेकिन हर प्रार्थना का पता एक ही है, श्री बालाजी महाराज।
2: जय श्री बालाजी महाराज की जय, भैरव बाबा की जय, प्रेतरा सरकार की जय, समाधि वाले बाबा की जय, दीवान सरकार की जय।
6: मैं यहाँ पर पिछले जुलाई से आ रहा हूँ, यानी 1 साल लगभग हो गया। हाँ, पारिवारिक समस्या जो हमने विचार करके यहाँ आते आना शुरू किए उस पर ये तो नहीं कहा जा सकता है कि पूर्णतया समाप्त हो गए, लेकिन उस पर हम सुधार की तरफ हैं। आशा, मतलब आशा से अधिक। हमारी वाइफ वहीं सुल्तानपुर डाइट पर लेक्चरर हैं तो इनको कुछ दिक्कत रहती थी, दवा पाती होती थी, लेकिन मतलब स्वस्थ नहीं रहती थी। थोड़ा सा सुधार क्या लगभग 50% के अब कह लिया जाए कि परिवार में सकारात्मक ऊर्जा जो कहीं से नकारात्मक आ गया था उसका निदान हो रहा है।
0: भाषा बदल जाती है, पहनावा बदल जाता है, लेकिन एक चीज नहीं बदलती, बालाजी महाराज पर अटूट विश्वास।
7: मैं 40 साल से यहाँ दुकान चला रहा हूँ प्रसाद की, तो यहाँ लोग नेगेटिव एनर्जी को लेके आते हैं और उनको यहाँ के वातावरण में आते ही पॉजिटिविटी फील होती है। बालाजी महाराज यहाँ अपने बाल रूप में विराजमान है और उनकी एक चमत्कार है कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी से ग्रसित लोग यहाँ आते हैं उनको पॉजिटिविटी फील होती है और मतलब जो चमत्कार वैज्ञानिक भी नहीं कर पाते वो बालाजी महाराज स्वयं चला कर आते हैं। लोग यहाँ पर पागलों जैसी हरकत करते हुए आते हैं और 1-2 दिन में यहाँ से बिल्कुल सही होके जाते हैं।
0: इस दरबार में कोई अपने आंसू लेकर आता है तो कोई अपनी उम्मीद, कोई खाली हाथ आता है लेकिन लौटते वक्त अपने साथ एक नया विश्वास लेकर जाता है।
1: मेहंदीपुर बालाजी धाम में हर सवाल के साथ एक नया रहस्य सामने आ रहा था। कहीं ताले थे, कहीं हथेलियों के निशान, कहीं पीछे मुड़कर न देखने की परंपरा, तो कहीं इन्हीं मान्यताओं को केवल लोक विश्वास बताने वाले लोग, यानी एक ही धाम लेकिन धारणाएं अलग अलग तरह की।

0: आस्था का एक विशाल संसार हमेशा यहाँ जीवंत रहता है। आगे बढ़ते हुए हमारी नजर मंदिर के अलग अलग प्रवेश द्वार पर लोहे के सैकड़ों तालों पर पड़े।
1: ये ताला क्या है, जैसे अपने कोई कष्ट है परेशानी उसको यही कैद करने के लिए बांधते हैं कि जो हमारी दिक्कत है वो यहीं रह जाए, हमारे साथ हमारे घर पर नहीं जाए। तो ऐसी मतलब मान्यता है कि ताला लगाने से हमारी दिक्कत यहीं कैद हो जाती है।
0: श्रद्धालुओं का विश्वास है कि जब किसी व्यक्ति को यहां आकर राहत मिलती है तो वो मंदिर के द्वार पर एक ताला बांधकर अपनी प्रार्थना पूर्ण होने का प्रतीक छोड़ जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि जैसे ताला बंद हो जाता है वैसे ही उनके जीवन में संकट भी यहीं रुक जाते हैं। नकारात्मक शक्तियां इसी द्वार पर बंद कर रह जाती हैं और दोबारा उनका पीछा नहीं करती।
2: बाबा का नाम लेते ही सब ठीक हो जाता है। हमारी में वैसे भी नॉर्मल जो भी चीजें आई है ना, हमारी कभी कोई दिक्कत आती है तो मान लो सुबह से शाम तक में उसका सोल्यूशन हमें मिल जाता है। कुछ ना कुछ होके तभी हम यहाँ पे मतलब आते हैं, क्योंकि भाई हमेशा मतलब आके मन को बहुत संतुष्टि मिलती है। अगर एक बार जो आएगा ना दर्शन करने, वो वापिस आने की जरूर सोचेगा।
3: मंदिर से भगवान के यहाँ से प्रसाद मिले, भोग मिले तो वो ले जाना चाहिए, लेकिन यहाँ से जो बटता है वो नहीं लेना चाहिए।
4: जो नरेशपुरी जी महाराज है यहाँ के, तो उन्होंने भी बोला है कि जो यहाँ पे जो मंदिर में प्रसाद मिलता है उसको हम घर पे लेके जा सकते हैं।
0: ताले के इस रहस्य से हम आगे बढ़े तो मंदिर की दीवारों ने हमें रोक लिया। गेरुए रंग से बने सैकड़ों हथेलियों के निशान हर तरफ नजर आ रहे थे। हमने अलग अलग लोगों से बात की और लगभग हर व्यक्ति ने अलग कहानी सुनाई। किसी ने कहा ये उन श्रद्धालुओं की हथेलियों के निशान है जिन्हें यहां आकर मानसिक शांति मिली। कुछ लोगों ने बताया कि संकट से मुक्ति मिलने के बाद श्रद्धालु अपनी हथेली दीवार पर लगाकर घर की ओर जाते हैं। हर उत्तर अलग था, लेकिन हर उत्तर में विश्वास की गहराई समान थी। इसी बीच एक और बात लगभग हर श्रद्धालु की जुबान से सुनाई दी, दर्शन करके लौटो लेकिन पीछे मत देखना। जब हमने इसका कारण पूछा तो कुछ लोगों ने बताया ये वर्षों पुरानी परंपरा है, कुछ ने बताया ये सब मनगढ़ंत है।
5: हाँ, इसका कारण है ना इसके पीछे कि बाबा जो लोगों के संकट काटते हैं, अपना संकट कौन कट के पीछे मुड़ के देखना जाएगा। जो संकट कट गया वो बाबा ने काट दिया, आपको उससे क्या करना, आपका तो संकट कट गया, तो इसलिए आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना। आपको तो जो बाबा ने आप पर कृपा करी है उस कृपा का सुख का आनंद लो, आप बाबा के दर्शन करो और अपने सुख का आनंद लो।
6: अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए बाबा के दरबार में धागा बांध के आते हैं, और ये लोग जो बोलते हैं कि पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए या फिर प्रसाद नहीं खाना चाहिए, ये भी सब गलत बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
7: अमूमन देखा जाता है कि किसी सिद्ध जगह को लेकर प्राचीन मान्यताएं अलग होती हैं और समय के साथ साथ काफी चीजें यूं ही जोड़ दी जाती हैं। हमें ऐसे ही कुछ स्थानीय लोग मिले जिनकी शिकायत थी कि मेहंदीपुर बालाजी धाम को लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैला दी गई हैं।
0: इन लोगों का कहना था कि हर सुनी सुनाई बात पर विश्वास करना उचित नहीं, आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन अफवाह और परंपरा में अंतर भी समझना जरूरी है।
1: ये क्या है, जिनको कोई दिक्कत है परेशानी है उनके लिए नियम है, बाकी आम आदमी कोई दर्शन करने आता है वो प्रसाद भी ले जाते हैं और खूब चले जाते हैं आराम से। और जिनको कोई दिक्कत परेशानी है उनको यहाँ से जाने के बाद जैसे नियम करने पड़ते हैं और वो प्रसाद भी लेके नहीं जाते। परेशानी दिक्कत वालों के लिए है, आम आदमी के लिए नहीं है। नहीं,
8: भगवान के प्रसाद को ग्रहण करने से घर ले जाने से कुछ फायदा ही मिलता है, ना कि कोई नुकसान। आज तक कभी हमने ऐसा नहीं सुना अगर यहाँ का प्रसाद खाने से किसी के कुछ गलत हुआ हो, न कि आदमी के जो भी कोई बीमारी लगती है। यहाँ के तो वातावरण में ही पॉजिटिविटी है, प्रसाद में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी यहाँ तो सिर्फ एक अफवाह है लोगों की कि भाई प्रसाद में ऐसा, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रसाद लोग घर भी लेके जाते हैं, हम किलो किलो तोल के मिठाइयाँ भर के शोकेस में रखते हैं और लोग खूब लेके जाते हैं हमारे यहाँ से। लेकिन कुछ लोग हैं जो अफवाहों से ग्रसित होते हैं, वो लोग इन चीज़ों को मानते हैं। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रसाद घर नहीं ले जाने से बल्कि फायदा होता है, ना कि नुकसान होता है।
9: ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि प्रसाद नहीं ले जाते, ये तो लोगों ने एक अफवाह बना रखी कि भाई यहाँ का प्रसाद ले जाते हैं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाए, वो हो जाए, ऐसा कुछ नहीं।
0: इतना ही नहीं, प्रसाद को लेकर भी अलग अलग मान्यताएं सुनने को मिली। कुछ श्रद्धालुओं ने कहा कि यहाँ का लड्डू प्रसाद घर नहीं ले जाया जाता, तो कुछ लोगों ने स्पष्ट किया कि ये नियम हर व्यक्ति के लिए नहीं है।
10: मैं कई सालों से यहाँ पर आने लग रहा हूँ, मेरा यहाँ पे आके बहुत दिल लगता है जी, और हमें यहाँ पे लोग कहते हैं कि यहाँ पे कि पीछे मुड़ के मत देखना चाहिए, वो नहीं देखना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं होती। यहाँ बाबा साथ है तो सब साथ है जी। बाबा के अलावा देखो, आप लोग कई लोग कहते हैं कि यूं हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, भूत प्रेत साथ चले जाएंगे, बाबा साथ जाना चाहिए, भूत प्रेत कुछ नहीं होते जी।
11: यहाँ पर पीछे मुड़ के न देखना, प्रसाद न खाना और तरह तरह की यहाँ की भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एक भगवान का और भक्त का मिलन होता है, जो जिस आस्था से आता है उसको उसी प्राप्ति होती है।
0: हमारी आंखों के सामने आस्था के अनेक रूप थे, कहीं मंदिर के द्वार पर बंधे ताले, कहीं दीवारों पर हथेलियों के गिरे हुए निशान, कहीं पीछे मुड़कर ना देखने की परंपरा, तो कहीं इन्हीं बातों को लोक विश्वास मानने वाले लोग। मेहंदीपुर बालाजी धाम में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, उतना ही स्पष्ट होता गया कि यहाँ केवल दर्शन नहीं होते, यहाँ विश्वास की अनगिनत कथाएं जन्म लेती हैं। अद्भुत है यहाँ की परंपराएं, अविश्वसनीय है यहाँ से जुड़ी लोक मान्यताएं, और अकल्पनीय है वो अटूट श्रद्धा जो हर दिन देश के कोने कोने से लाखों लोगों को इस दिव्य दरबार तक खींच लाती है।
7: मेहंदीपुर बालाजी धाम के दिव्य दरबार में भगवान हनुमान के बाल स्वरूप की पूजा होती है, और साथ में ही होती है प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा की पूजा। कहा जाता है यहां आने पर तीनों के दर्शन और तीनों की पूजन करना अनिवार्य है।
0: तो ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा एक ऐसा धाम जहां कदम रखते ही सब कुछ बदल जाता है। जयकारों की गूंज, घंटियों की आवाज और हजारों श्रद्धालुओं की आस्था। लेकिन मेहंदीपुर बालाजी धाम की पहचान केवल यहीं तक सीमित नहीं है। सदियों से लोगों का विश्वास है कि यहां संकट मोचन श्री बालाजी महाराज अपने भक्तों के हर संकट को हर

0: कि मैं पिछले 8 साल पहले काफी बीमार हो गया था और 1 महीने तक मैं बीमार रहा था। डॉक्टरों ने मेरे हाथ में उठा दिया था, रेफर्स कर दिया था बुलंदशहर से नोएडा जेपी अस्पताल के लिए। लेकिन मेरे माँ बापों ने बाबा मेहंदीपुर बालाजी धाम के लिए पैसे उठा के रखे थे मेरे ऊपर से। बाबा ने ऐसी कृपा सुनी थी, मैं 5 दिन में अपने घर पहुंच गया था वापस। और फिर मैं बाबा के दरबार में आया था, मेरे पापा ने मुझे प्रसाद चढ़वाया था, मतलब साथ में हम आए थे सब और प्रसाद चढ़वाया था। मेरा परिवार हर महीने आता है, 30 के 30 दिन का मतलब नागा का आता है, हर महीने आता है मेरा परिवार।
1: धाम में विराजमान बालाजी महाराज संकट मोचन हनुमान के बाल स्वरूप है। मान्यताओं के अनुसार ये प्रतिमा किसी शिल्पकार ने नहीं बनाई, बल्कि ये स्वयंभू है। कहा जाता है कि ये मूर्ति लगभग 1000 साल पुरानी है।

0: और खुशी मिलती है बाबा के यहाँ आने से, और जो मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद बाबा का प्रसाद सभामणि है।
1: यहाँ आने वाले श्रद्धालु केवल बालाजी महाराज के ही नहीं बल्कि प्रेत राज सरकार और भैरव बाबा के भी दर्शन करते हैं। परंपरा के अनुसार तीनों देव स्थलों पर अलग अलग प्रसाद अर्पित किया जाता है। बालाजी महाराज को लड्डू, प्रेत राज सरकार को चावल और भैरव बाबा को उड़द अर्पित किया जाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि तीनों देवों की कृपा से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव समाप्त हो जाता है।
2: ये तीन देव हैं, बालाजी, भैरव जी और प्रेतराज। अंदर तीन मूर्ति है, बालाजी, भैरव जी और प्रेतराज। अर्जी जो लगती है सबसे पहले बालाजी को लगती, उसके बाद भैरव जी को, फिर प्रेतराज। पहले चावल उधर की लगती थी, वो बंद हो गई, अब लड्डू की लगती है। वर्षों से चलती आई है जो ही काम चल रहा है।
3: प्रेतराज सरकार जी है, कोतवाल कप्तान जी है और स्वयं दीवान जी महाराज जी हैं। प्रेतराज सरकार की दया दृष्टि से सभी के देवी पितरों का जो है उद्धार होता है, मुक्ति होती है, शुद्धि होती है।
1: विज्ञान इन मान्यताओं को अपने नजरिए से देख सकता है, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी धाम में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए सबसे बड़ा प्रमाण उनका अपना विश्वास है। लेकिन इस धाम की पहचान केवल आस्था और रहस्यों तक ही सीमित नहीं है। ये केवल प्रार्थनाओं का स्थान नहीं बल्कि हजारों सपनों को नई उड़ान देने वाला केंद्र भी है।
4: शिक्षा के क्षेत्र में मंदिर ट्रस्ट वर्तमान में बालाजी मेहंदीपुर बालाजी शिक्षण संस्थान के तहत 7 संस्थाएं संचालित करता है, जिसमें 3 कॉलेजेस हैं, जिसमें एक महिला कॉलेज पीजी कॉलेज है जो राजस्थान विश्वविद्यालय से एफिलेटेड है, एक संस्कृत महाविद्यालय है जो जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय से एफिलेटेड है, एक संस्कृत की संस्था के रूप में गुरुकुल है जहां पर आप बैठे हैं, इस गुरुकुल में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से एफिलिएशन लेकर के और बालकों को प्राचीन ज्ञान के साथ साथ आधुनिक विज्ञान को भी संयोजित करके जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ बालक जो है वो अपना दृष्टिकोण विशेष स्तर पर जमीन से जुड़ करके आसमान छूने की ताकत रखने का प्रभाव रखते हैं।
1: यहाँ मंदिर की घंटियों के साथ साथ बच्चों की पाठशाला भी गूंजती है।

0: मेहंदीपुर बालाजी धाम की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? क्या ये केवल सदियों से चली आ रही लोक मान्यताओं का प्रभाव है या फिर करोड़ों लोगों की अटूट आस्था का संकल्प? क्या यहां मिलने वाली शांति केवल मन का विश्वास है या सचमुच इस दरबार में ऐसी दिव्य ऊर्जा है जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता? यहां आने वाला हर व्यक्ति अपने साथ कोई ना कोई सवाल लेकर आता है, लेकिन लौटते समय उसके पास एक जवाब जरूर होता है और शायद यही इस धाम का सबसे बड़ा रहस्य भी है।
1: मेहंदीपुर बालाजी धाम की इस यात्रा में हमने बहुत कुछ देखा। कहीं रहस्य से जुड़ी लोक मान्यताएं थी, कहीं आस्था की ऐसी तस्वीरें जो हर सवाल से बड़ी दिखाई दी। शायद यही मेहंदीपुर बालाजी धाम की सबसे बड़ी पहचान है। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज के लिए इतना ही। अनिमेश रंजन और कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
7: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: पत्रकारिता के गुर यहाँ नहीं सीखे तो क्या सीखे, नाम ही काफी है। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
9: I'm a very independent person जिसे अकेले घूमना बहुत पसंद है। Like I don't need anyone's company. I love to just hang out by myself. Fun fact, I've never had any job in my life. मैंने सिर्फ content creation ही किया है आज तक। मेरा content creation journey start किया when I was 16. So just fresh out of school. तो जब आपने ये बात अपने family में रखी होगी, family के सामने रखी होगी, तो उनका क्या reaction था? क्या मतलब YouTuber बनना है?
10: So for them to even think कि मैं post graduation नहीं करने वाली हूँ was like mind-blowing to them.
11: Most embarrassing influencer moment. A beauty hack that actually works.
12: Ooh. YouTube पे अब देखिए आज तक वर्टिकल। अरे भाई फिर घुमा रहे हैं, छोड़ दीजिए घुमाने की आदत। अब देखिए आज तक वर्टिकल।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
1: Right field, and it will...
0: From the first pitch of the season to the stretch run.
1: And that's the ball game.
0: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: ये तस्वीरें पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान को खत्म करने की हैं, जहां कांग्रेस के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने चन्नी गुट के नेताओं के साथ करीब दो घंटे लंबी बैठक की। बैठक खत्म होने के बाद बघेल ने किसी भी तरह की नाराजगी से इनकार किया।
3: हमारे सीनियर लीडर हैं, उन्होंने आमंत्रित किया और राणा साहब के हाथ में अनेक बार आया हूँ, भोजन किया हूँ, तो हमारा राणा साहब से तो अलग ही इस तरह का संबंध है, प्रेम का, भाई का संबंध है, तो उन्होंने आखिरी में मुझे आमंत्रित किया।
2: भले ही बघेल सब कुछ ठीक होने की बात कर रहे हो, लेकिन सूत्रों की माने तो बैठक में कुछ खास नतीजा नहीं निकला।
4: जो अंदर बात हुई है वो भावना जो है वो सबके सामने रख दी गई है, और उस भावना की कदर करते हुए बोला भी बाहर इसके अलावा कोई बात नहीं करनी, भी जो लीडरशिप है उसको हमने अपनी ए टू जेड बड़ी क्लियरली एक एक बात, एक एक रीजन लॉजिक के साथ आगे रख दिया है, और उम्मीद करते हैं भी वो जो बात है वो बड़ी क्लियरली बघेल साहब हाईकमांड तक।
2: दरअसल कांग्रेस में चन्नी गुट राजा वर्डिंग को अध्यक्ष बनाए जाने से नाराज चल रहा है, जिसे लेकर चन्नी गुट पहले बैठक कर चुका है। हालात बिगड़ते देख बघेल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज हुई बैठक में भी राजा वर्डिंग को लेकर नेताओं से राय ली गई, लेकिन इस पर आखिरी मुहर दिल्ली से लगनी है। पिछले चुनाव से पहले कांग्रेस की अंदरूनी कलह ने उसे सत्ता से बाहर कर दिया था, ऐसे में एक बार फिर बगावत ने आलाकमान की टेंशन बढ़ा दी है।
5: पार्टी सोर्सेज जो बताते हैं कि अंदर ये वॉइस उठाई गई कि राजा वड़िंग की प्रधानगी मौजूद नहीं, हमें मंजूर नहीं है, और इसके अलावा जब सुखजिंदर रंधावा बाहर आए तो उन्होंने बोला कि हमने साफ डिमांड रखी है, पहली डिमांड ये है कि जो है जो 2027 का इलेक्शन है वो कांग्रेस जीते, और लड़ाई ऐसा लीडर लड़े जो कॉम्प्रोमाइज ना हो। हालांकि किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अब हाईकमान के पाले में गेंद जाएगी जिस तरह की ये सिचुएशन लग रही है। तो पंजाब कांग्रेस ने जिसने भूपेश बघेल ने एक अटेम्प्ट किया था कि बैठ के डेडलॉक टूटे, तो ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने बोला अप्रीहेंशंस अब टेकअप की जाएंगी। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन मुजीत के साथ असीम बस्सी, आज तक।
6: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आप लोगों के कोट अनकोट पाप गिनवाए हैं, ये कहके कि आपके समय में जो नॉन बीजेपी सरकार पहले रही है उस समय में हनुमानगढ़ी के मंदिर के सीढ़ियों पे नमाज पढ़वाया गया, क्या जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा अलाउ करेंगे?
7: कैसे नमाज पढ़ सकता है कोई आदमी वहां? ये एजेंडा जो है ये तमाम चीजों से ध्यान भटकाने का है। कैसे नमाज पढ़ सकता है? हम तो कह रहे हैं कि आप सड़क पे नमाज ना पढ़े, चूंकि सड़क सरकार की और सरकार मना कर रही है तो आपकी नमाज जायज नहीं होगी। मैं तो बार बार बोलता हूं, जिस प्रॉपर्टी का ओनर अगर उसको इजाजत नहीं देता तो वहां नमाज ही नहीं हो सकती। मस्जिद के अंदर अगर एक इंच जगह भी गलत है तो उस मस्जिद में नमाज नहीं होगी। तो ये बेकार की बातें हैं, ये मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। पहले बताइए कि प्राथमिक विद्यालय कितने बंद हुए इस उत्तर प्रदेश के अंदर? 8,500 गांव है उत्तर प्रदेश के अंदर, 8,500 न्याय पंचायत उत्तर प्रदेश के अंदर कितने बंद हो गए स्कूल देख लीजिए आप। अगर आंकड़ा उठाएंगे तो वो भयावता को बता देगा कि देश की शिक्षा व्यवस्था कहां जा रही है। शिक्षा व्यवस्था के अंदर आपने ऐसे लोगों को बैठा दिया जो सिर्फ नफरत बांटते हैं।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
1: I have no idea how this election is going to play out,
0: or want to catch up on your team's live play-by-play, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
2: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
3: In association with
4: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
2: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Chogan Perfumes, the French edition for him and her.
5: Tune In Radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. From what's happening now to what you want to hear next. Enjoy it all on Tune In. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.
6: चढ़ावा चोरी के गंभीर आरोपों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे सामने आते जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से अब सामने आया है कि मंदिर में काम करने वाले कुछ पूर्व सैनिकों पर कुछ भी बोलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके लिए बकायदा सभी पूर्व सैनिकों को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा गया था। कहा गया था कि कोई कुछ भी पूछे बोलना नहीं है। जिस मैसेज पर सवाल उठ रहे हैं उस मैसेज का स्क्रीनशॉट भी आज तक के पास मौजूद है। इसे साफ है कि चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद मामले को छिपाने की कोशिश की गई। इधर अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के दो और आरोपियों को पुलिस जल्द ही रिमांड पर लेगी। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव से पुलिस पूछताछ करेगी। टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र की 7 दिनों की कस्टडी मांगी है।
7: अयोध्या पुलिस ने आप रामशंकर यादव और टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में 7 दिन की अर्जी डाली है। इन दोनों की पुलिस कस्टडी रिमांड बेहद अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि जहां रामशंकर यादव के पास डोनेशन बॉक्स की चाबियां होती थी, वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र उस कमरे के इंचार्ज थे जहां से चढ़ावा चोरी हो रहा था। ऐसे में इन दोनों से की गई पूछताछ से पुलिस पता लगाने की कोशिश में लगी है कि आखिर यह चोरी हो रही थी तो उनके संज्ञान में क्यों नहीं आई, पकड़ी भी गई तो क्यों उन पर कार्रवाई नहीं हुई।
6: इस बीच राम मंदिर में चढ़ावे की गणना के लिए नया टाइम टेबल लागू कर दिया गया है। पहले 2 पालियों में होने वाली गिनती अब एक ही शिफ्ट में की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चढ़ावे की गिनती होगी। नई समय सारणी लागू होने के बाद कुछ गणना कर्मियों ने काम छोड़ दिया है। उधर राम मंदिर में VIP पास की प्रक्रिया भी रोकी गई क्योंकि जिन लोगों की ID का इस्तेमाल इस काम के लिए किया गया था उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में जारी घटनाक्रम के बीच गोपाल राव ने निर्मोही अखाड़ा पहुंचकर ट्रस्टी महंत दीनेन्द्र दास से मुलाकात की। दोनों के बीच बंद कमरे में काफी देर तक एकांत में चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में ट्रस्ट से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। इस मुलाकात में ट्रस्ट के भीतर चल रहे विवादों के बीच डैमेज कंट्रोल की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हालांकि बैठक में इस चर्चा के संबंध में आधिकारिक रूप से कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। अयोध्या से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

फिर से तेज हुआ खाड़ी युद्ध। अमेरिका ने बुशहर बंदर अब्बास से लेकर किशनद्वीप तक 140 ठिकानों पर किया हमला। ईरान का दावा, ओमान का अमेरिकी बेस तबाह, मंगलवार को सामने आएंगे मुजतबा खामने। बीस जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, नितिन नवीन, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत सभी पार्टियों के फ्लो लीडर्स रहेंगे मौजूद। जम्मू कश्मीर ऑपरेशन लोटस पर संग्राम। सीएम उमर अब्दुल्ला ने विधायक को 20 से 30 करोड़ रुपए और मंत्री बनाने के ऑफर की बात कही। बीजेपी ने आरोपों को बताया झूठ, कहा मुख्यमंत्री सबूत दें। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वडिंग को हटाने पर अड़ा चन्नी गुट, रंधावा बोले नहीं चाहिए कॉम्प्रोमाइज लीडर। भूपेश बघेल ने मुलाकात के बाद भी नहीं बनी बात, अब आलाकमान के पाले में ही गेंद। और अयोध्या राम मंदिर में इवनिंग शिफ्ट में दान चोरी के खुलासे के बाद बदली गई गणना कर्मचारियों की टाइमिंग, अब सिर्फ सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चढ़ावे की होगी गिनती।

नमस्कार, मैं नेहा बाथम और आप देख रहे हैं कहानी 2.0। मुंबई, वो शहर जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कभी सोता नहीं है, देश की आर्थिक राजधानी, सपनों की नगरी और करोड़ों उम्मीदों का ठिकाना। लेकिन हर मानसून के साथ इस शहर की एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जो विकास के तमाम दावों पर सवाल खड़े कर देती है। करोड़ों के इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच आखिर ऐसा क्या है कि कुछ ही घंटों की बारिश पूरी व्यवस्था को डुबो देती है? क्या यह सिर्फ प्राकृतिक चुनौती है या फिर बरसों से चली आ रही प्रशासनिक अनदेखी का नतीजा? आज कहानी मुंबई की।

0: चमक दी दमक दी मुंबई, लेकिन उसी मुंबई में एक तस्वीर ये भी है
1: जिन पाइपलाइन से दरअसल स्टॉर्म वाटर ड्रेनेजेस और पाइपलाइन से जहां से पानी निकलना चाहिए था वहीं से पानी दरअसल बाहर आके यहां इस वक्त पानी जो है अंधेरी सबवे में घुस रहा है।
0: सपनों का शहर मुंबई, लेकिन ये तस्वीरें भी उसी सपनों के शहर की। सितारों की मुंबई, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर दिल बैठ जाता है। मेट्रो ट्रेन, मोनोरेल, बड़े बड़े मॉल्स, ऊंची ऊंची इमारतें, फ्लाईओवर, अंडरपास, फुटओवर ब्रिज, पैसा, शोहरत, रसूख, क्या नहीं है मुंबई के पास। फिर क्यों हर मानसून में मुंबई की यही कहानी। हालात बताते हैं कि मुंबई के पास सब कुछ है सिवाय अच्छी नालियों के।
2: लगातार बारिश हो रहा है और पानी निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है और पब्लिक परेशान है, आने जाने का दिक्कत है। बस भी देखो इधर पड़ी है,
3: देख सकते हैं कितना पानी भरा है। क्या करें, सोच रहे चल के जाओ या कैसे जाओ।
4: 3 दिन से हम काम पर नहीं जा रहे हैं ये बारिश की वजह से, घर पे ही बैठे हैं 3 दिन से। हम लोग का रूम में भी पानी भर चुका है,
5: पानी इतना है कोई पैदल नहीं चल पा रहा है, इतने गाड़ी वाले जा रहे हैं, सब गाड़ियां बंद हो रही हैं।
6: लोग परेशान है, यहाँ पे हर जगह पे पानी पानी हो गया है, कहीं भी लोगों को मतलब घर से निकलने के लिए भी जगह नहीं है कोई।
5: देखो कितनी
6: दिक्कत हो रही है, क्या पब्लिक परेशान हो के पब्लिक समझ में नहीं आ रही किधर जाना है किधर नहीं जाना है, हर जगह तकलीफ ही तकलीफ है यहाँ पे।
0: जी हाँ, गटर, नाला, मेन होल जो भी कह लें, लेकिन मुंबई परसों बरस से तरस रही है ढंग की नाली के लिए। मंगलयान तक उड़ान भरने वाले देश में इस सच पर क्या किसी को शर्म नहीं आती। कुछ घंटों की बरसात में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे चमकदार शहर गटर में तैरने लगता है। मुंबई के इन हालातों के कारण निवारण की पूरी कहानी सुनाएंगे, लेकिन पहले उन सवालों की बात कर लेते हैं जो हर साल सामने आ खड़े होते हैं। 80,000 करोड़ का बजट होने के बावजूद हर साल मुंबई क्यों डूब जाती है? क्या बीएमसी का अरबों रुपए का बजट सिर्फ कागजों तक सीमित है? क्या मुंबई की भौगोलिक स्थिति ही इसकी सबसे बड़ी मजबूरी है या फिर सरकारी लापरवाही? क्या बेतहाशा शहरीकरण और कंक्रीट के जंगलों ने बारिश के पानी का रास्ता बंद कर दिया है? आखिर देश को सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर हर बारिश में बेबस क्यों हो जाता है?
7: मुंबई शहर का प्लानिंग इस तरह है कि इसको तीनों छोर से समुद्र ने घेर रखा है और यहाँ पर जो ड्रेनेज है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन है, उसका सारे पानी समुद्र में निचोड़ के डाला जाता है। लेकिन जब वर्षा होती है, जब बारिश होती है, तब समुद्र का पानी उसी स्टॉर्म वाटर ड्रेन से शहर में घुसता है, जिसकी वजह से मुंबई शहर में ये बाढ़ जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। मैं समझता हूँ कि मुंबई शहर में इतना बजट है कि वो अगर चाहें तो इस पर काम कर सकते हैं, इस पर पैसा खर्च करके फ्लड जोन का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन जो बाढ़ हर साल मुंबई में आती है उसको रोका जा सकता है और मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये करने में सक्षम है, बस वो करना नहीं चाहती।
0: इन सवालों का जवाब चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन फिलहाल मुंबई की यही तस्वीर है। सड़क स्विमिंग पूल बन गई है, अंडरपास में पानी इतना भर गया है कि आदमी डूब जाए, दौड़ने वाली गाड़ियां तैर रही और जो नाव नहीं बन पाई वो बंद हो गई। अब बीएमसी के कर्मचारी सड़कों के किनारे नालियां ढूंढ रहे हैं।
8: देश की आर्थिक राजधानी, सपनों की नगरी, कभी न रुकने वाली मुंबई, लेकिन हर मानसून आते ही ये शहर पानी में डूब जाता है और हर साल वही सवाल फिर खड़ा हो जाता है, क्या मुंबई की किस्मत में हर बरस डूबना ही लिखा है? क्यों हर बार मानसून की बारिश लोगों के मन में अनहोनी का डर लेकर आती है?

0: अंधेरी सबवे इस वक्त जलमग्न हो चुका है और ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ये जो एक कंक्रीट की बिल्डिंग थी, ये दरअसल पतरे के बने हुए जो शांटीज थी, जो घर थे, उनके ऊपर ये गिर गई।
1: वही ग्राउंड प्लस 3 जो मंजिला झोपड़ा था, जो अचानक जो है रविवार रात करीब 8 बजे करीब जो है ढह गया।
2: सिटी गैस रोड जो है पूरे तरह से पानी के नीचे गया है। ये जो रोड है नाला सोपर और विरार की तरफ जुड़ जाता है, इस रोड पर बड़े पैमाने पे पानी जम चुका है और ये पानी में बहुत सारी गाड़ियां है वो बंद हो चुकी है।
0: चार लेन की ये जो सड़क है ये देखिए हो गई है प्रिसाइसली 1 लेन की। इतनी ज्यादा बरसात जो दरअसल सवेरे से हो रही है,
3: केवल कुछ दिनों की बरसात ने ही मुंबई को दुनिया के सबसे बर्बाद, बेहाल और बदहाल शहरों में शुमार कर दिया है। आपको भी अजीब लगता होगा कि हर बरसात के बाद हम वही कहानी दोहराने लगते हैं कि लोकल के पहिए थम गए, कि स्कूल कॉलेज बंद हो गए, कि ट्रैफिक जाम लग गया, कि रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया, कि कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। वही हिंद माता, वही सायन, वही अंधेरी, वही कुर्ला, वही बांद्रा, वही दादर, वही किंग सर्किल, वही चेंबूर और वही डूबने तैरने की तस्वीरें। लेकिन मुंबई के कर्ता धर्ताओं को ना चिंता होती है, ना बुरा लगता है और ना ही कभी तस्वीर बदल पाती है।
0: वसई इलाके में है, वसई ये दरअसल पालघर डिस्ट्रिक्ट में आता है और पिछले 4 दिनों से लगातार तकरीबन 200 mm से ज्यादा की बरसात हो रही है यहाँ पे। और इस वक्त आप मेरे पीछे देख लीजिए, ये है वसई नाला सोपारा लिंक रोड। दरअसल यहाँ पर कुछ जो एवरशाइन सिटी और ऐसे कई सारे इलाके हैं जहाँ पर की कनेक्टिविटी इसी रोड के जरिए है और लोग देखिए अपनी गाड़ियां आप और जो लोग हैं खुद भी अपने आप को इसी तरह से। दरअसल ये जो इलाका है ये पूरा सॉल्ट पैन का इलाका है, यहाँ पर नमक बनाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये खाली मैदान है और यहाँ पर देखिए इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है। ये जिस पर हम अभी इस वक्त खड़े हैं वो है ईस्ट वेस्ट, जो वसई का जो मेन ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी रोड है वहां पर है। और इस वक्त आप देख लीजिए, आइए लोगों से बात करते हैं, कितने दिनों से पानी भरा हुआ है यहाँ पे?
4: चार दिन से भरा हुआ है, आने जाने का रास्ता एकदम ब्लॉक है। उधर ग्राउंड फ्लोर पे पूरा बिल्डिंग में पानी लग गया है और इधर भी जो एवरशाइन वाला रास्ता है उधर भी ग्राउंड फ्लोर में पानी।
0: हर साल की एक ही कहानी
4: है, हर साल की एक कहानी है।
0: चल रही है आपकी गाड़ी?
5: गाड़ी अभी चालू है, गाड़ी चालू है। पासपोर्ट का आज ही टाइम है, वो भी लास्ट डेट है, जाना तो पड़ेगा ही, है ना।
0: ये हर मॉनसून में आप यही लगा लेते हैं?
5: नहीं, इस बार ट्राई करके देख रहे हैं,
4: जुगाड़ में अपना लगा लिया बस।
3: हजारों करोड़ खर्च करके मुंबई को एक नरक की व्यवस्था दी है सारे इंतजाम ने मिलकर। 80,000 करोड़ के बजट का क्या करती है बीएमसी? मॉनसून से पहले नालों की सफाई में 158 करोड़ रुपए खर्च किए गए और इतने बड़े खर्च के बाद इस शहर का जो हाल है वो आपके सामने।
6: जिन घरों में पानी घुसने की शक्यता है या फिर उनके घर का संपर्क टूट सकता है और उनके घरों में फ्लडिंग हो सकती है बड़े प्रमाण में, उन लोगों को हमने स्थलांतरण करने के लिए उपाय योजना किया।
3: ये भारत की आर्थिक राजधानी की हालत है, शंघाई से तुलना का सपना दिखाते हैं इस शहर को सियासत के सिरमौर, कौन यकीन करेगा। अकेले मुंबई शहर हर साल 5,00,000 करोड़ तक डायरेक्ट टैक्स देता है। बीएमसी ने बजट में प्रॉपर्टी टैक्स से 6,200 करोड़ का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है। पूरे देश को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से जो पैसा मिलता है उसका 30-35% अकेले मुंबई शहर से ही आता है। इस मुंबई में सब कुछ बिकता है, हवेली से सपने और नींद तक, लेकिन वो दिल नहीं मिलता जो इस शहर की धड़कनों को अपनी राजनीति का मकसद बना ले।
7: सवाल ये है कि ऐसा हुआ ही क्यों? क्या ये जल प्रहार ही मुंबई का भाग्य है या एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का टूटा हुआ भरोसा? 21 साल पहले 2005 में कुदरत ने संभल जाने की चेतावनी दी थी, लेकिन मुंबई को चलाने वाले, महाराष्ट्र को चलाने वाले जैसे उन चेतावनियों को सुनने की कोशिश ही नहीं कर रहे।

0: ये तस्वीरें कोई सतयुग द्वापर या त्रेता की नहीं है, इसी कलयुग के आधुनिक कालखंड की, मात्र 20 साल पुरानी। साल था 2005, यही जुलाई का महीना। ऐसे ही बादल उमड़े थे, ऐसे ही इंतजाम थे, और आदमी की जान नाले के समान बनकर रह गई।
1: सब बहुत लेट पहुंचे सब लोग, क्योंकि कल बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया था आरे के उधर।
2: जब मॉनसून शुरू होता है तो एक पॉइंट ऐसा आता है यार, एक ऐसा फेज आता है जहां पर पूरी मुंबई थम जाती है। तो हम लोग अगर मराठी में बोलते हैं, इंग्लिश मराठी में, तो व्हाट लवली टू व्हाट लवली। तो ये एक फेज आता ही है कि एक 4-5 दिन 10 दिन की ऐसी बारिश होती है।
1: 4-5 दिन मजेदार भी रहे, चैलेंजिंग भी रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि बारिश आती है तो जितना खूबसूरत होता है, बट एट द सेम टाइम उसके अपने चैलेंजेस भी होते हैं। तो हाँ, कम्यूट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था, मैं सुन रही थी क्रू मेंबर्स के लिए। वो
3: बरसात आए, बरसात आने के पहले मुंबई करो को बीएमसी महानगर पालिका, ये ऐसा मतलब खाली एक बयान देने का काम ना करे, उस पर काम भी करे।
4: पानी भरने की वजह से बहुत तकलीफ हुई, बच्चे लोग को लेके जाने में लेट हो रहा है, और भी समस्याएं हैं, जैसे कि कहीं आना जाना है, गाड़ी ज़्यादातर पानी के अंदर ख़राब हो जा रही है, ज़्यादा पानी जहाँ पे लग जा रहा है वहाँ पे गाड़ियों में बहुत दिक्कत आ रही है।
0: ये 20 साल के विकास की तस्वीरें साल दर साल सारी दिखाने लगे तो घंटों गुजर जाएंगे, इसलिए चुनिंदा देखिए। 2005 में डूब जाने वाला हिंद माता आज 20 साल बाद पहले दिन की बरसात में नहर हो जाता है, नाला हो जाता है, गटर हो जाता है।
5: काफ़ी प्रतीक्षा के बाद मुंबई में बारिश आई थी, लेकिन इस तरह से मतलब जो चेंबूर की दुर्घटना हो गई, उसके बाद में साकिना का एल वार्ड, और उसके बाद में मानकुर आरे कॉलोनी में भी एक बच्चा बाइक पे जा रहा था, उसके ऊपर भी ब्रांच गिर के वो भी गया। ये बहुत ही दुर्दैवी घटना हुई है, इसके लिए मैं खुद मेयर करके मेरा मन भी उसके लिए बहुत व्यथित है। लेकिन अभी तो फिलहाल जितना भी मैंने इसके बारे में ब्यौरा लिया है, तो लोगों को मैं आह्वान करना चाहती हूँ कि अभी ये जो पूरा हमारा कामकाज है एवरीडे का, वो चालू है। यहाँ की मुंबई की जब वाहतूक व्यवस्था अच्छे से चालू है, उसी के साथ में लोकल व्यवस्था भी चालू है।
0: कांदिवली की पूरी सड़क गायब हो गई, नाला सोपारा की सड़कों पर कारें तैर रही हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बड़े काम पर नहीं जा सकते, और मुंबई को चलाने वाले चाहते हैं कि जनता यकीन करे इस बात पर कि सब ठीक।
1: इस वक्त हम वैसाई रेलवे स्टेशन से थोड़ा आगे हैं, पालघर जिले के इस इलाके में काफी तेज बरसात हो रही है, जिसकी वजह से रेलवे ट्रैक पर आप देख लीजिए पूरा पानी है, और यही वजह है कि रेलवे ट्रैक के ऊपर पानी होने की वजह से गाड़ियां वसई से आगे विरार तक नहीं जा रही हैं, और लोग ये आप देख लीजिए, जहां तक आपकी दूर नजर जाती हो वहां तक लोग ही लोग हैं जो रेलवे ट्रैक पर चल रहे हैं। आइए यहां पर लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं, ये भाई साहब आप लोग कितनी दूर जाएंगे अभी?
6: अभी यहाँ से विरार जाना है, 2 घंटा कम से कम लगेगा पैदल जाने में, 2-2.5 घंटे।
7: वसई विरार में ऐसा कौन सा भी रोड नहीं, कौन सा एरिया नहीं वहाँ के पानी भरा हुआ है। फिलहाल मैं खड़ा हूँ वसई स्टेशन के अंबाड़ी रोड मानिकपुर रोड पे, आप देख सकते हैं कितना पानी भरा है। तो दूसरी ओर आने बहुत सारे लोगों के दुकानों में, घरों में पानी गए हैं, गाड़ियां बंद पड़ चुकी है। तो दूसरी ओर मधुबन का इलाका जो है, मधुबन का इलाका जो सैटरडे में जो हाल थे वैसे ही हाल हो चुके हैं।
0: 20 साल से हर साल बादल मुंबई की परीक्षा लेते हैं, लेकिन हर साल कुछ आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, कुछ सफाइयां दी जाती हैं, कुछ संकल्प लिए जाने की कोशिशें होती हैं, और जमकर राजनीति होती है।
8: आज जो मुंबई में हो रहा है, ये बीजेपी का भ्रष्टाचार, दलाली और पूरी मुंबई बिल्डरों के हाथ में देने का नतीजा है। उसके लिए देवेंद्र फडणवीस, मंगल प्रभात लोढ़ा, मुंबई बीजेपी का अध्यक्ष, ये सब जिम्मेदार है।
0: सच ये है कि शहर को स्वप्न नगरी बनाने के लिए रात रात भर काम करने वाले मुंबईकरों को सियासत ने हरा दिया है। ये राजनीति की ऐसी रवायत है जिसमें जनता की हार तो होती है, लेकिन जीत किसी की नहीं। 1985 से 2 साल को छोड़कर बीएमसी में शिवसेना और बीजेपी के सत्ता रहे। 1996 से तो लगातार बीजेपी और शिवसेना का ही मेयर होता आया है, मतलब 30 साल से लगातार शिवसेना बीजेपी के पास मुंबई का बंदोबस्त है। बीएमसी का काम है सड़क, सीवर, पानी, पुल और परिवहन का इंतजाम। सवाल पूछते पूछते लोग थक गए, लेकिन हालात नहीं बदले।
9: मुंबई के बारिश और बारिश के कारण होने वाला नुकसान, जो जीवित हानि हो या मालमत्ता की हानि हो, इसके ऊपर अगर आप देखते हो तो पिछले कई सालों में हमने देखा है कि शहर में पानी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं जमता है। जिससे पहले कभी जीवित हानि होती थी या मालमत्ता की हानि होती थी, वो सब कम हो गया बिकॉज उसके लिए मेजर्स लिए हैं। अभी जो हानि हो रही है वो कुछ इस तरह के फ्रीक इंसिडेंट्स है, जहाँ पे पेड़ गिरना ये एक बात है, या अभी मैनहोल का ओपन रहना, इस पे भी बीएमसी ने पिछले कई सालों में बहुत मेहनत करके सिस्टमिक चेंजेस बहुत लाए हुए हैं, बट फिर भी कभी कभी ये इंसिडेंट्स इस तरह का होता है, उसको रोकने की जरूरत है।
0: बीएमसी के 227 पार्षदों में 119 बीजेपी शिवसेना के हैं। मुंबई की कुल 36 विधानसभा सीटों में से एनडीए के पास 25 विधायक हैं। मुंबई की 6 सीटों में से 3 सीटों पर एनडीए के सांसद हैं।
10: कोई भी व्यवस्था नहीं है पानी की, बहुत ज्यादा बारिश का देख लीजिए कितनी प्रॉब्लम है, सब भीगते भीगते कैसे कैसे कमर तक पानी के साथ जा रहे हैं, कोई भी व्यवस्था नहीं है।
11: सुविधा नहीं है कुछ भी, इतने बड़े पानी से हम लोग जा रहे हैं, इतने इसे कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, ये रास्ता तो बनाना मांगता है, उधर से पूरा हम इतना भीग के आए हैं।
0: जिस मुंबई की अर्थव्यवस्था कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से विशाल है, उस मुंबई का ये हाल है। इसे ऐसे समझिए कि पूरे बांग्लादेश का जितना साल भर का बजट है, उससे कहीं ज्यादा तो मुंबई वाले टैक्स भरते हैं। यूरोप और एशिया के कई देशों की जीडीपी नहीं है मुंबई शहर के बराबर, लेकिन 20 साल बाद भी ऐसा ड्रेनेज सिस्टम नहीं विकसित हो पाया जो सूरत हाल बदल दे।
12: वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे तैरती और डूबती मुंबई की कहानी, देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
4: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
5: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
6: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
9: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
10: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
9: Vimal, bolo zuban kesri. Hint, bade aaram se.
11: Jai Hind friends. Isaiyat, sona, masala ya vistar. 1498 mein क्या थी वास्को डिगामा की मंशा? मधुमक्खी जैसे गोरे जो शहद लेकर आ रहे थे, भारत को डंक मारना शुरू कर दिया और बेवकूफ राजाओं का फायदा उठाकर इस देश को गुलाम बना दिया। लेकिन मीर जाफर और मीर कासिम ने अगर सर झुकाया तो रानी लक्ष्मीबाई ने सर उठाया और गोरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कैसी थी लड़ाई, कौन थे इसके महानायक? तलवारें चली या भजन चला? अगर बचपन में नहीं समझ में आया, नोटबुक निकाल लीजिए। मैं अवध ओझा जल लेकर आ रहा हूं मास्टर जी इन द न्यूज रूम, सिर्फ ललन टॉप पर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
3: क्या इथेनॉल से नुकसान हो रहा है सर गाड़ियों?
4: मारुति सुजुकी के पास एक भी कंप्लेंट नहीं है, टोयोटो के पास एक भी कंप्लेंट नहीं है। मुझे बदनाम करने के लिए और इथेनॉल को बदनाम करने के लिए प्रयास है।
3: नए नए एक्सप्रेस वे जो बन रहे हैं उनमें गड्ढे,
4: ये हमारे हाईवे में जितने गड्ढे हैं उसके ऊपर आप कार्यक्रम करिए और दिखा दीजिए।
5: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
6: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
7: Looking for even more of the audio you love? Upgrade to TuneIn Premium to remove ads, like this one, and score more of the content you love. That's more curated news.
8: If one party is saying we will never raise taxes, even on millionaires and billionaires.
7: More top sports.
9: And he's gonna go! There's the tying goal!
7: And everything in between.
10: The game is over!
7: Upgrade now for the premium listening experience.
11: शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ।
12: गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
13: वो हॉस्पिटल है, तकरीबन 470 जो पेशेंट थे पाकिस्तानी बॉम्बिंग में मारे गए, जो वो पेशेंट्स थे उनके रहने की जो व्यवस्था वहाँ पे थी, पूरे कंपाउंड में जो है प्लान्ड बॉम्बिंग हुई और कोई यहाँ का कोना हिस्सा नहीं है जो बचा, सब कुछ तबाह हो गया। मीर फरीद, काबुल, आज तक।

0: नहीं थम रही रूस यूक्रेन जंग। कीव पर फिर रूसी हमला, 10 घायल। यूक्रेन ने भी तेल डिपो को बनाया निशाना। तबाही की ये तस्वीरें यूक्रेन की राजधानी कीव की हैं। चारों तरफ फैले धुएं और धूल के गुब्बार से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला कितना विनाशकारी था। बमबारी से इलाके की कई इमारतें पूरी तरह जमींदोज हो गईं और कई घंटों तक राहत दलों को बचाव अभियान चलाना पड़ा। रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर 12 मिसाइल और 120 ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इन हमलों में 11 लोग घायल हो गए, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। इन हमलों में रूस ने 6 इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, लेकिन एंटी मिसाइल सिस्टम लगातार कमजोर होने की वजह से यूक्रेन एक को भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। रूस के हमले कीव तक ही सीमित नहीं रहे। क्रामाटोर्स्क में रूसी एयर स्ट्राइक में 4 लोगों की जान चली गई और 9 लोग घायल हो गए। रूसी बमबारी से कई रिहायशी इमारतों में आग लग गई और लोगों को सुरक्षित निकलने का मौका ही नहीं मिला। यूक्रेन ने भी पलटवार करते हुए रूस के कई तेल डिपो पर हमला किया है। रूस के क्रास्नोडार की लिस्की रिफाइनरी में यूक्रेन के हमले से भयानक आग लग गई। अजोब के तेल डिपो पर भी हमले की वजह से रूस को भारी नुकसान हुआ है। जेलेंस्की इसे अपनी सेना की बड़ी जीत बता रहे हैं। उनका दावा है कि हजारों किलोमीटर दूर के रूसी ठिकानों को तबाह करके यूक्रेन ने साबित किया है कि लंबी दूरी की उनकी मिसाइलें और ड्रोन कितने घातक हैं।
1: Сьогодні наші далекобійні удари досягли кількох регіонів самої Росії, а також об'єктів на тимчасово окупованій території України. Я дякую нашим воїнам за влучність. Добре іде операція і Служба безпеки України по далекобійним санкціям. Будемо цей напрямок ще посилювати. У наших воїнів має бути значно більше можливостей досягати російських окупантів саме там, звідки вони в Україну несуть війну на території Росії.
0: अभी एक दिन पहले ही यूक्रेन ने क्रीमिया में रूसी तेल टैंकरों को बर्बाद कर दिया था। जुलाई के महीने में रूस और यूक्रेन की जंग और तेज हो गई है। रूस ने कीव पर 3 बार इतने भीषण हमले किए हैं कि कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इधर यूक्रेन रूस की मिसाइलों को ठिकाने पर पहुंचने से पहले नाकाम नहीं कर पा रहा है। जेलेंस्की लगातार यूरोप से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका एंटी मिसाइल सिस्टम दुरुस्त नहीं हो पाया है। आज तक ब्यूरो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

बारिश मुंबई के डूबने की कहानी का एक सिरा हजारों साल की उस कहानी से जुड़ता है जिसने मुंबई शहर की स्थापना की। मुंबई देश का खूबसूरत शहर दरअसल 7 टापुओं को जोड़कर बनाया गया है और दुनिया के अमीर शहरों में शुमार होता है। कभी 10 पाउंड में खरीदी गई 7 द्वीपों वाली जगह जो आज मुंबई है। हम आपको बताएंगे क्यों मुंबई हर साल बारिश में तैरने से लगती है।

1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रागंजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से हुई। दहेज में मिले सातों द्वीप राजा ने इन्हें 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया। किराया था सालाना सिर्फ 10 पाउंड। 1782 में बॉम्बे के गवर्नर विलियम हार्नबी ने फैसला किया इन द्वीपों को जोड़ना होगा। वर्ली क्रीक पर एक बड़ा बांध बनाया गया। समुद्र का पानी रोककर

0: से महंगाई बढ़ गई है, वो बोलते इतना महंगा देते हमको परवड़ता नहीं है, फिर अभी क्या करेंगे हम लोग भी।
1: साफ सफाई तो बराबर हुआ, लेकिन जो सफाई हुआ वो रोड पे ही रह गया, हटाया नहीं गया, तब तक बारिश चालू हो गई। गटर तो साफ हुआ, निकाल के सब रख दिए, बाहर उठा नहीं उसके पहले बारिश चालू हो गई, इसलिए जगह जगह डूब गया सब।
2: मुंबई के बीचों बीच से निकलने वाली नदी को मीठी नदी कहा जाता है। तूफान या बरसात के दौरान मीठी नदी में बरसात का पानी बहकर अरब सागर की तरफ निकल जाता था, लेकिन वर्ली सी लिंक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और दूसरी इमारतों के निर्माण के कारण मीठी नदी का प्रवाह रुक गया, जिससे उसमें पानी का बहाव खत्म हो गया। जो कुछ बचा उसे शहर की तरफ से आने वाले पॉलिथीन और कचरे ने चोक कर दिया। इसका असर ये हुआ कि जो पानी नदी से निकल जाना था वो शहर के अंदर आने लगा और समस्या साल दर साल बढ़ती चली गई।

0: मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम ब्रिटिश जमाने का है, जो सिर्फ 25 मिलीमीटर प्रति घंटे की बारिश को झेलने के लिए डिजाइन किया गया था। मुंबई की ड्रेनेज व्यवस्था लगभग 146 वर्ष पुरानी है, जिसे ब्रिटिश काल में डिजाइन किया गया था। उस समय मुंबई का अधिकांश द्वीपीय क्षेत्र हरा भरा था। ड्रेनेज सिस्टम को इस हिसाब से तैयार किया गया था कि 50% वर्षा जल नालियों से निकल जाएगा और बाकी पानी जमीन में रिसकर भूजल में चला जाएगा। अब दक्षिण मुंबई के बहुत कम इलाके खुले बचे हैं, लेकिन भूमिगत ड्रेनेज सिस्टम वैसा ही पुराना बना हुआ है। 2011 में जर्नल ऑफ क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित एक शोध पत्र में कहा गया था कि मुंबई के ड्रेनेज सिस्टम को अपग्रेड करने से 100 साल में एक बार आने वाले बाढ़ के घटनाक्रम से होने वाले नुकसान को 70% तक कम किया जा सकता है। बीएमसी ने समय समय पर इसमें सुधार किए हैं, लेकिन कई हिस्सों में अब भी पुरानी व्यवस्था ही काम कर रही है। प्लास्टिक कचरा, गाद और ठोस पदार्थ नालों की क्षमता को और कम कर देते हैं।
1: यहाँ पर लोगों के नालों में, ड्रेनेज में गंदगी फैलाने की जो लोग कार्य करते हैं, उसको अगर हम रोकें तो उससे भी हमारे अभियंता को बड़ा सौभाग्यपूर्ण काम करने का मौका मिलेगा। मैं जानता हूँ कि हमारे जो अभियंता हैं और महानगर पालिका के जो अफसर हैं, वो बिल्कुल सक्षम है अगर उनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि उनको मालूम है वो सारी जगह जो बंबई में है, जिसके ऊपर ध्यान देकर हम बाढ़ की स्थिति को रोक सकते हैं। बस उनको कार्य करने दिया जाए। मैं ऐसा समझता हूँ कि उनको जब लोग गलत दिशा देते हैं, लोग कुछ और करने को कहते हैं, तभी गड़बड़ होती है।
0: अमेरिकन नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की एक रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र किनारे बसे दुनिया भर के जो शहर संकट में हैं, उनमें मुंबई का भी नाम है। उस रिपोर्ट के हिसाब से अगर मुंबई का तापमान मौजूदा सामान्य तापमान से 4 डिग्री और ज्यादा बढ़ा, तो अरब सागर की लहरें उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन सकती है।
1: शहरीकरण की वजह से ही हमारे करीब 50% निवासी मुंबई में झोपड़पट्टी में रहते हैं, उनको रहने के लिए सही जगह नहीं है, और जिसकी वजह से जितनी भी जमीन जो खुली थी वो भी अब बंद हो गई है। दूसरी बात, फ्लड जोन की मैपिंग नहीं होने की वजह से और स्टॉर्म वाटर ड्रेन के प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं करने की वजह से भी फ्लडिंग हो रही है। तो शहरीकरण तो बिल्कुल पक्का कारण है इस शहर को बर्बादी की ओर ले जाने के लिए, लेकिन सरकार नवी मुंबई बनाती है, तीसरी मुंबई बनाती है, वसई विरार बनाती है, कल्याण डोंबिवली बनाती है, जो खुद बाढ़ की स्थिति में है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन को जब तक एक साथ देखकर बाढ़ की स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए ठीक से अभ्यास नहीं होता, तब तक ये बाढ़ की स्थिति बनी रहेगी।
0: हाल के वर्षों में बारिश का पैटर्न भी बदल गया है, जिसके चलते कम समय में अधिक बारिश की घटनाएं बढ़ी हैं। ऐसे में मौजूदा नालों की पानी निकास की क्षमता अब पर्याप्त नहीं रह गई है, इसलिए उनकी चौड़ाई बढ़ाने और क्षमता में सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही है, ताकि भारी बारिश के दौरान जल भराव की समस्या को कम किया जा सके।
2: मुंबई में बारिश के साथ जैसे ही जल भराव की स्थिति बढ़ जाती है, लोग सिहर जा

लगातार बारिश मुंबई करों के लिए अभिशाप की तरह लगती है, क्योंकि बारिश के साथ मुंबई की कई डरावनी यादें जुड़ी हुई हैं।

0: बारिश के साथ जैसे जैसे जलभराव या लोगों के मरने की खबरें सामने आती जाती हैं, लोगों के सामने साल 2005 की जुलाई में हुई भयंकर बारिश और तबाही का मंजर तैरने लगता है। में हुई बारिश की वजह से मुंबई समेत महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। अंदरूनी सड़कों से लेकर राजमार्गों तक पर कई फीट पानी जमा हो गया था। भीषण बारिश की वजह से कई दिनों तक यातायात प्रभावित रहा था। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे और लोग कई दिनों तक अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए थे। हजारों की संख्या में घरों, दुकानों, फैक्ट्रियों, कंपनियों और सब स्टेशन में पानी भरने से लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। जुलाई 2005 की इस भीषण बारिश के कारण महाराष्ट्र को लगभग 550 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा था। कई दिनों तक ट्रेन और फ्लाइट का संचालन बुरी तरह से प्रभावित रहा था। 26 जुलाई को लाखों की संख्या में लोग अपने कार्यालय और सड़क पर गाड़ियों में फंसे रहे थे। इस दिन महाराष्ट्र में 944 mm बारिश हुई थी। भारी बारिश की वजह से जुलाई 2005 में एक महीने के अंदर महाराष्ट्र में 1094 लोगों की जान चली गई थी। मरने वालों में सैकड़ों की संख्या में मुंबई के लोग थे। इनमें से ज्यादातर लोगों ने खुले मैनहोल और नालों की वजह से जान गंवाई थी। यही वजह है कि मुंबई में जब जब मूसलाधार बारिश होती है, लोग 2005 की इस बारिश को याद कर कांप उठते हैं।
1: अभी यह जो स्थिति है, ये बाकी पिछले 10 और 15 साल से कभी अधिकतम ज्यादा से ज्यादा है। जो आप अभी आपके सामने, हम कांदिवली से आ रहे हैं, कांदिवली से यहाँ तक चल के आ रहे हैं, तो पूरी यही परिस्थिति है।
2: और आज भी रात को इतना बारिश आया ना, तो हम लोग रात भर डर के ऐसा बैठे थे क्या घर में अभी ज्यादा हो जाएगा, हम लोग क्या करें, हमारी तबीयत भी तब से खराब चल रही।
3: रात को पानी भरा तो सब ने हमारे, हम लोग डर गए और हमारे घर में बहुत नुकसान हो गया, 1.5 लाख का नुकसान हो गया।
4: यहाँ का ये सिचुएशन है, म्यूनसिपालिटी को कम्प्लेंट करो तो बोलता है कि महाड़ा का ड्रेनेज है, महाड़ा का ड्रेनेज है, बोल महाड़ा को कम्प्लेंट करो तो बोलता है कि म्यूनसिपालिटी का ड्रेनेज है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ से ड्रेनेज से है, और सबसे घर में पहले पानी आता है, अंदर से संडास या बाथरूम से पानी आता है घर के अंदर।
0: 2006 से 2015 के बीच मॉनसून के मौसम में हर साल औसतन 2,718 लोगों की मौत हुई, जो उन्हीं महीनों में कैंसर से होने वाली मौतों के लगभग बराबर थी। ২০২৬ के मॉनसून की शुरुआत भी सीवर और मैनहोल में लोगों की मौतों के साथ हुई। अभी तक 26 जून से 8 जुलाई तक 13 लोगों की जान जा चुकी है। इसके साथ ही मुंबई में पेड़ों की गिरने की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। 2023 में मॉनसून के सीजन में 687 पेड़ गिरे थे, 2024 में 653, 2025 में 855 और अभी 8 जुलाई तक 826 पेड़ों के गिरने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनके कारण गाड़ियों और सड़कों का भारी नुकसान होता है।
5: हमारे दो बड़े मेट्रो शहर हैं जैसे दिल्ली और मुंबई, बरसात के आते ही वहाँ पे पेड़ों की गिरने की संख्या बढ़ जाती है। इसका सीधा सा समझ सकते हैं उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण है इसके पीछे, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि पूरे शहरों में कंक्रीटाइजेशन बहुत जबरदस्त हुआ है। जो भी हमारे चलने वाले रास्ते हैं सड़क के किनारे पे, वहाँ पे जितने भी पेड़ हैं वो पूरे के पूरे कंक्रीट से घिरे हुए हैं। कम से कम हमें 1 से 2 मीटर का दायरा वहाँ पे छोड़ना चाहिए। अगर हम ये नहीं करते तो वहाँ पे पानी और जो ऑक्सीजन है उसकी कमी होती है, प्लस जड़ों को लेटरली जाने के लिए रोका जाता है, तो पेड़ जो है बहुत हेल्दी नहीं होता, वो लगता है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती ठीक से। एक ही सबसे बड़ा कारण है। नंबर टू, जितनी भी खुदाई होती है हमारे, उसमें समय समय पर जैसे आपका MCD वाले आते हैं, पाइपलाइन आपको डालनी है, उसके बाद में फिर गैस पाइपलाइन वाले आते हैं, तो जो पेड़ है पेड़ों की जड़ें नीचे से कट जाती हैं और वो हमें पता नहीं चलता। ऊपर से लगता है कि पेड़ बहुत हेल्दी है लेकिन अंदर से वो डैमेज हो चुका होता है।
6: मुंबई के चेंबूर इलाके में मंगलवार दोपहर अचानक जब तेज धूप निकली हुई थी और उस समय तेज हवाएं भी नहीं चल रही थी, अचानक ये एक पेड़ गिर गया एक स्कूल वैन के ऊपर जो बगल से गुजर रही थी। स्कूल वैन में कुछ बच्चे थे, 13 बच्चों में से कुछ अभी घायल हैं, लेकिन एक बच्चे विहान श्रीवास्तव की इस पूरे हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद से पूरा परिवार सदमे में है। फिलहाल मुंबई में बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो मेयर हैं उन्होंने वादा किया है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जरूर होगी, लेकिन यहाँ इस वक्त इलाके के लोग जो हैं वो यही कह रहे हैं कि दरअसल 2-3 महीने पहले इस सड़क का कॉन्क्रीटाइजेशन किया गया था। कॉन्क्रीटाइजेशन के दौरान ये जो पेड़ है ये खोखला पाया गया था, इसकी जड़ें खोखली पाई गई थी, लेकिन उस समय कॉन्ट्रैक्टर ने इस पूरे वाक्य के बारे में कुछ नहीं किया। और उसके बाद भी जब मानसून से पहले, दरअसल हर साल मानसून जब आता है, बरसात जब आती है, उससे पहले जो पेड़ हैं उनकी प्रूनिंग की जाती है, उनको छांटा जाता है, लेकिन इस पूरे सड़क में कई पेड़ों को छांटा गया, लेकिन इस पेड़ के जो जड़ है उस पर नज़र नहीं टिकाई गई और जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। और अब लोग यही चाह रहे हैं कि जितने भी पेड़ हैं शहर में उन सब की जाँच पड़ताल अच्छे से हो जाए, ताकि आगे जो बरसात का जो मौसम है वो बिना किसी होने के गुजरे।
0: बारिश के साथ ही मुंबई की जर्जर दीवारें खुले सीवर मौत का मुंह बन जाते हैं, जिनमें निर्दोष लोग गिरकर अपनी जान गंवाते रहते हैं। इस मानसून भी जाने जाने का सिलसिला जारी है, साथ ही जगह जगह से दीवारों के ढहने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ।2019 में मलाड इलाके में दीवार गिरने से 18 लोगों की मौत हो गई। 2021 में चेंबूर और विक्रोली इलाके में दीवार गिरने से 24 लोग दबकर मर गए थे। 5 जुलाई 2026 को मानखुर्द इलाके में दीवार के नीचे दबकर 6 लोग मौत के मुंह में समा गए।
7: कमाने वाला वो एक अकेला इंसान था, उसके लिए मुआवजा चाहिए, प्लस दोबारा ऐसा कुछ ना हो। ये कॉन्ट्रैक्टर को सिखाओ, जैसे छोटे बच्चों को सिखाते है ना, वैसे कॉन्ट्रैक्टर को भी सिखाओ, अगर तुमको काम करना है तो किस तरीके से काम करना है।
0: मानसून में मुंबई के हालात जिस तरह भयावह रूप ले लेते हैं, उससे अब ये लगने लगा है कि मुंबई की स्थितियां ठीक करने के लिए प्लान से नहीं बल्कि प्रॉपर सर्जरी की जरूरत है। कड़े और बड़े कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

0: से पूछिए, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा को इस बात का इल्म हो गया है कि इस बार जनता भाजपा के विरोधी नहीं, जो भाजपा के समर्थक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो नेता हैं, उनको जो जिन्होंने वोट दिया है, उनका बिल्कुल मत क्लियर है कि सम्राट चौधरी जैसे व्यक्ति को, के चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को आप बिहार का मुख्यमंत्री नहीं थोप सकते हैं। आपको जिस समाज का भी मुख्यमंत्री बनाना है बनाइए, कुशवाहा समाज का मुख्यमंत्री बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी अच्छे व्यक्ति को बनाइए, चरित्रवान व्यक्ति को बनाइए, पढ़े लिखे व्यक्ति को बनाइए, ताकि बिहार का तरक्की हो। बिहार के लोग, बिहार के बच्चे सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, आपको वोट दिया है बिहार के लोगों ने, 202 विधायक जिताया है, तो आपकी जिम्मेवारी है कि सबसे अच्छे व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व दीजिए ताकि बिहार का विकास हो सके।
1: हाँ, उनके प्रत्याशी हार के डर से नामांकन के बाद भी नाम वापस ले रहे हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में इतना अंतरकला है, इतना द्वंद है, वो डिसीजन कर ही नहीं पाते, तो उनका प्रत्याशी कौन जीत सकता है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: Chogan Perfumes, the French edition for him and her. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

0: pros. Save more on what you need to get the job done right. Right now at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt Max 2-tool combo kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.
1: K-pop takes center stage. Bold sounds, global energy, and hits that move fast. Today's K-pop plays the biggest tracks, breakout anthems, and chart toppers. Fresh music on repeat, so you never miss a beat. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's K-pop to start listening now.
2: होर्मुज की शांत लहरों में बमों की बारिश के बाद से एक बार फिर सुनामी दिखने लगी है। दो दिन में तीन जहाजों पर ईरान की बमबारी के बाद से सीज फायर की पूरी तस्वीर ही बदल गई है। एक बार फिर होर्मुज का पेच ही अमेरिका और ईरान के बीच फंस गया है और आशंका तो इस बात की लगातार बढ़ रही है कि तेल के खेल की वजह से ही महायुद्ध का पार्ट टू शुरू होने वाला है। ईरान ने होर्मुज से गुजर रहे इन तीन कमर्शियल जहाजों पर हमला किया था। इससे ट्रंप का पारा इतना चढ़ा कि दोनों ओर से हमलों की एक नई लहर से ईरान के कई शहरों के अलावा बहरीन और कतर तक में बर्बादी का मंजर दिखाई देने लगा। होर्मुज में इस हफ्ते जो हमले हुए हैं, क्या ईरान ने इसे अपनी गलती मानी है? CBS न्यूज ने यह दावा किया है। इसमें अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि ईरानी अफसरों ने निजी तौर पर ट्रंप के सलाहकारों से कहा कि होर्मुज में जहाजों पर अटैक गलती थी और ये हमले कट्टरपंथियों के एक ऐसे गुट ने किए जो बातचीत को नाकाम करना चाहते हैं। ईरान बेशक कितना ही कह ले कि होर्मुज में हमले एक गलती थे, लेकिन अमेरिका ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है और उसके खिलाफ हटाई गई तेल निर्यात की पाबंदियों को एक बार फिर लगा दिया है जो अगले हफ्ते से लागू कर दी जाएंगी। होर्मुज से शुरू हुई लड़ाई तेजी से खार्क तक पहुंच गई है। हफ्ते भर पहले ही अमेरिका ने यहां एयर स्ट्राइक की और ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया। ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा खार्क से ही जुड़ा है। जब से दोनों देशों के बीच जंग शुरू हुई है, खार्क को अमेरिका के कई हमले झेलने पड़े हैं। अब ये एक बार फिर से अमेरिका के निशाने पर आ गया है। वैसे अमेरिका ने ईरान को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि ईरान कमर्शियल जहाजों के लिए होर्मुज को खोले और जहाजों पर हमले पूरी तरह बंद करे, साथ ही सार्वजनिक तौर पर इसका ऐलान करे। अमेरिका ने दो टूक चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने ऐसा नहीं किया तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। ये चेतावनी ऐसे वक्त पर दी गई है जब अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हवाई हमले कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
4: क्या इथेनॉल से नुकसान हो रहा है सर गाड़ियों?
5: मारुति सुजुकी के पास एक भी कंप्लेन नहीं है, टोयोटा के पास एक भी कंप्लेन नहीं है। मुझे बदनाम करने के लिए और इथेनॉल को बदनाम करने के लिए प्रयास है।
4: नए नए एक्सप्रेस वे जो बन रहे हैं उनमें गड्ढे,
5: हमारे हाईवे में जितने गड्ढे हैं उसके ऊपर आप कार्यक्रम करिए और दिखा दीजिए।
6: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included.
7: Oh yeah.
6: So get your household up to speed. Switch to Cox internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
8: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
9: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
10: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
11: Jack, come home. It's supper time.
10: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
12: Hey, Jack, could you play that one song with the words?
10: Jack FM, playing what we want.
13: हर साल ITR भरते वक्त कई टैक्स पेयर्स को यही चिंता रहती है कि कहीं कोई बड़ा वित्तीय लेन देन बाद में टैक्स विभाग की नजर में सवाल न खड़ा करते। FD मैच्योर होने पर मिली रकम, म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन या फिर घर खरीदने जैसे बड़े लेन देन अक्सर विभागीय रिकॉर्ड और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी AIS में दिखाई देते हैं। ऐसे में कई बार रिटर्न और उपलब्ध जानकारी के बीच तालमेल को लेकर सवाल उठ सकते हैं। इस तरह के हालात को ध्यान में रखते हुए आयकर विभाग ने ITR यूटिलिटी में एक अहम बदलाव किया है। दरअसल असेसमेंट ईयर 2026-27 की ITR यूटिलिटी में स्केड्यूल EI यानी एग्जेम्प्ट इनकम के तहत नया अदर इनकम कॉलम जोड़ दिया गया है। इसके जरिए टैक्स पेयर्स ऐसी टैक्स फ्री या नॉन टैक्सेबल प्राप्तियों की जानकारी दे सकेंगे जो पहले से मौजूद किसी सेगमेंट में फिट नहीं बैठती। टैक्स पेयर्स के मुताबिक कई बड़े ट्रांजैक्शन AIS में तो दिखाई देते हैं, लेकिन रिटर्न में उनके सोर्स की साफ जानकारी हमेशा नहीं मिलती। खासकर उन टैक्स पेयर्स के लिए ये चुनौती बढ़ जाती है जिन्हें पर्सनल बैलेंस शीट दाखिल नहीं करनी होती। ऐसे मामलों में अतिरिक्त जानकारी देने से संभावित मिसमैच या फिर सफाई देने की जरूरत कम हो सकती है।
14: नए डिस्क्लोजर से कोई एडिशनल टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी, लेकिन हाँ, इसे आपकी रिकंसिलेशंस करने में इनकम टैक्स ऑफिस को इजी होगी। आपकी रेवेन्यू का सोर्स, आपके रिसीट्स का सोर्स वर्सेज आपने जो एक्सपेंसेस करे, आपने जो पेमेंट्स करी उसका सोर्स, तो इससे टैक्स पेयर को ये फायदा होगा कि आइटम आराम से रिकंसाइल होंगे, अननेसेसरी ये फ्लैग नहीं लगेंगे और आपके पास इनकम टैक्स के नोटिस और क्वेरीज कम आएंगे।
13: नए कॉलम का मकसद ऐसी नॉन टैक्सेबल रिसीविंग को रिपोर्ट करने का विकल्प देना है जो मौजूदा सेगमेंट्स में शामिल नहीं है। मिसाल के तौर पर रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट, खेती की जमीन बेचने से मिली नॉन टैक्सेबल रकम या दूसरी टैक्स फ्री रिसिप्ट की जानकारी यहाँ दी जा सकती है। इस डिस्क्लोजर से कोई नई टैक्स देनदारी पैदा नहीं होगी। वहीं ये विभाग के रिकॉर्ड और रिटर्न के बीच बेहतर तालमेल बनाने में मदद कर सकता है और संभावित मिसमैच या अतिरिक्त पूछताछ की आशंका कम हो सकती है। रिटायरमेंट के दौरान मिलने वाली रकम को लेकर भी कई बार दुविधा की स्थिति पैदा होती है। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम यानी VRS के तहत मिलने वाले मुआवजे पर सेक्शन 10C के तहत निर्धारित सीमा तक टैक्स छूट मिलती है। वहीं लीव एनकैशमेंट पर सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अलग अलग नियम लागू होते हैं। टैक्स एक्सपर्ट्स की सलाह है कि रिटायरमेंट से जुड़ी ऐसी रकम का जो हिस्सा टैक्स फ्री है और उसे एग्जेम्प्ट इनकम स्केड्यूल में दिखाया जाए, जबकि जो हिस्सा टैक्सेबल है उसे संबंधित आय वर्ग में दर्ज किया जाए। जानकारों का मानना है कि नया अदर इनकम कॉलम टैक्स पेयर्स को अपनी टैक्स फ्री रिसीविंग की जानकारी ज्यादा साफ तरीके से देने का विकल्प देता है, जिससे भविष्य में संभावित सवालों या मिसमैच की स्थिति को कम करने में मदद मिल सकती है। आज तक ब्यूरो।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति ट्रुथ।
1: युद्ध संकट के बीच सामने आएंगे मुज्तबा खामने। मंगलवार को शहीदों की श्रद्धांजलि सभा में दिखेंगे। अमेरिका का 3 दिन में 300 ठिकानों पर हमले का दावा। ईरान का अमेरिका के बेसों पर पलटवार।

कमर्शियल जहाज जीएफसी गैलेक्सी पर हमले की निंदा की। 10 भारतीयों को सुरक्षित बचाया गया, अभी भी एक लापता। जम्मू कश्मीर ऑपरेशन लोटस पर संग्राम, सीएम उमर अब्दुल्ला ने विधायक को 20 से 30 करोड़ रुपए मंत्री बनाने के ऑफर की बात कही। बीजेपी ने आरोपों को बताया झूठा, कहा मुख्यमंत्री सबूत दें। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष राजा वडिंग को हटाने पर अड़ा चन्नी ग्रुप, रंधावा बोले नहीं चाहिए कॉम्प्रोमाइज्ड लीडर। भूपेश बघेल से मुलाकात के बाद भी नहीं बनी बात, अब आलाकमान के पाले में है गेंद। और अयोध्या राम मंदिर में इवनिंग शिफ्ट में दान चोरी के खुलासे के बाद बदली गई गणना कर्मचारियों की टाइमिंग, अब सिर्फ सुबह 9 बजे से ये शाम 6 बजे तक चढ़ावे की गिनती होगी।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। दोपहर के 2 बजे हैं और इस बुलेटिन में तमाम बड़ी और अहम खबरें होंगी, लेकिन जिन 2 अहम खबरों पर हमारी नजर होगी उसमें पहला है अयोध्या राम मंदिर का चढ़ावा चोरी मामला और दूसरा है जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन लोटस वाली सियासत। इन दोनों ही खबरों को विस्तार से हम आपको दिखाएंगे। कई अन्य सियासी खबरें भी इस बुलेटिन में होंगी, लेकिन सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका के बारे में, क्योंकि ईरान और अमेरिका में तनाव के बीच एक बड़ी और अहम खबर आ रही है। इस वक्त युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। ईरानी मीडिया ने कहा है कि मुज्तबा खामनेई 14 जुलाई को तेहरान में आयोजित होने वाले श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक सर्वोच्च नेता मंगलवार को तेहरान के मुसल्ला में शहीद इमाम मुजाहिद की याद में एक समारोह आयोजित करेंगे। मुज्तबा खामनेई के कार्यालय ने इस संबंध में बयान भी जारी कर दिया है। आपको ये भी बता दें कि अपने पिता आयतुल्लाह अली खामनेई के जनाजे में मुज्तबा खामनेई शामिल नहीं हुए थे, सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द 14 तारीख को मुज्तबा खामनेई सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्रद्धांजलि सभा है जिसमें वो शामिल होने जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय जुड़ गए। प्रणय, और क्या जानकारी मिल रही है, और ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है, अपने पिता आयतुल्लाह अली खामनेई के श्रद्धांजलि सभा में वो शामिल नहीं हुए और अब 14 तारीख को वो सबके सामने होंगे।
1: देखिए, मुझे लगता है कि सिक्योरिटी कंसिडरेशन, उनकी सुरक्षा की चिंताएं वो एक बड़ी वजह रही होगी, जिसके कारण जो है इसका फैसला लिया गया कि बजाय नमाज जनाजा के अंदर वो शामिल हों या जो फ्यूनरल के कार्यक्रम है उसमें सुपुर्द खाक जब किया जा रहा हो उसमें शामिल होने की बजाय वो एक ऐसे एनवायरमेंट में, जिसे जो कंट्रोल्ड एनवायरमेंट कहा जाता है, और जहां पर वो नमाज को लीड कर सकें। क्योंकि इस समय ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुज्तबा खामनेई ठीक है। ईरान के अंदर भी जो जनता सड़कों पर उतरी थी शोक व्यक्त करने के लिए पूर्व सुप्रीम लीडर के लिए, उनके बीच से भी ये सवाल उठ रहे होंगे जाहिर तौर पर उनके मन में भी, कि आखिर अपने पिता के जनाजे के अंदर बेटे का शामिल न होना बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा था। तो शायद यही वजह है कि ये फैसला किया गया कि सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई जो है ईरान के, वो अब शामिल होंगे एक कार्यक्रम के अंदर, नजर आएंगे। और ये जो कार्यक्रम है ये 14 जुलाई को होगा तेहरान के अंदर, और उस दौरान वो नमाज को जो ये कॉमेमोरेशन सेरेमनी जो है वो कही जा सकती है, जो स्मृति समारोह है, स्मृति आयोजन है, उसके अंदर वो शामिल होंगे। और साथ ही शशि, यहाँ पर ये भी देखना होगा कि शायद चूंकि बहुत सारी भीड़ जो है पूर्व लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के जनाजे के लिए सड़कों पर थी, उस समय में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट भी आए थे, बहुत सारे लोग विदेशों से आए थे। उसके बाद अब चूंकि वो वापस लौट चुके हैं, इसलिए अब शायद मुज्तबा खामनेई की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, जो उनकी सिक्योरिटी है, उसके लिए ज्यादा मुफीद हो सकता है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब आगे बढ़ेंगे, खबर है राम मंदिर चढ़ावा मामले से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि इस मामले में कई अहम खुलासे हुए। एक तरफ पता ये चला है कि आरोपी ने चोरी को लेकर पुलिस को अहम बयान दिए हैं, तमाम जानकारियां दी हैं, बताया है कि कैसे सिर्फ इवनिंग शिफ्ट में ही वो चोरी किया करते थे। वहीं एक और अहम और बड़ी खबर यह कि ट्रस्ट ने सीईओ की नियुक्ति की कोशिशें भी तेज कर दी हैं। और तीसरी बड़ी और अहम खबर यह कि टिन्नू और सुभाष यादव से अयोध्या पुलिस ने पूछताछ की तैयारियां कर ली हैं। तो 3 बड़ी अहम खबरें राम मंदिर अयोध्या से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जानकारी जिस तरीके से दी गई है वो और ज्यादा हैरान करने वाली है कि कैसे इवनिंग शिफ्ट में इस चोरी को अंजाम आसानी के साथ वो दे पाते थे। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस और एसआईटी की जांच के बीच अब अहम खुलासा हुआ है कि एक ही शिफ्ट में चढ़ावे की गणना के पीछे बड़ी वजह सामने आ गई है। पता ये चला कि ज्यादातर दूसरी शिफ्ट यानी कि जो इवनिंग शिफ्ट हुआ करती थी उसके ही सबूत मिले हैं, चोरी सबसे ज्यादा तभी हुई है। पुलिस की जांच में साफ हुआ है कि आरोपी दोपहर 2 बजे से रात को 9 बजे वाली ड्यूटी में यानी उस शिफ्ट में आया करते थे और लगातार चोरी की वारदातों को वो अंजाम दे रहे थे।

0: राम मंदिर के प्रांगण में मौजूद जिस कमरे में चढ़ावे की गिनती होती थी, वहां दो पालियों में काउंटिंग का काम होता था। दो शिफ्ट में अलग अलग स्टाफ थे, सभी की जिम्मेदारियां बटी हुई थी, सभी उसी हिसाब से अपनी भूमिका निभाते थे। उसी भूमिका में चढ़ावा चोरों का भी हिसाब किताब तय था। चढ़ावे की गिनती के लिए पहली शिफ्ट सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक होती थी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक थी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि चोरी की वारदात सिर्फ दूसरी शिफ्ट में ही हुई, यानी चढ़ावा चोरी की वारदात दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक की शिफ्ट में ही हुई। इससे एक बात यह भी साफ होता है कि चढ़ावा चोरी के सभी आरोपी उसी 2 से 9 वाली शिफ्ट में काम करते थे। दरअसल शाम की शिफ्ट में चोरी करना आरोपियों के लिए ज्यादा आसान था।
1: मंदिर चढ़ावा गिनती में दूसरी शिफ्ट के दौरान हुई और ये सभी चोरियां अनुकल्प मिश्रा अविनाश पांडे के साथ साथ लवकुश मिश्रा कर्णेश पांडे राम शंकर मिश्रा ने की है। सेकंड शिफ्ट चुनने की वजह भी सामने आ रही है। सेकंड शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक होती थी और ये वो वक्त होता था जब कैश लेकर बाहर निकलते समय न सिर्फ निगरानी कम होती थी बल्कि इनके लिए कैश लेकर निकलना भी आसान हो जाता था। यही वजह है कि 40 दिन में हुई 70 बार चोरी सिर्फ सेकंड शिफ्ट में हुई। अब पुलिस की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है तो इस चोरी की परतें भी सामने आ रही हैं।
0: काउंटिंग की दूसरी शिफ्ट में चढ़ावा चोरी का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने 4 आरोपियों अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे से कड़ी पूछताछ की। हाल ही में पुलिस ने रिमांड लेकर इनसे सवाल जवाब किए। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 40 दिन में 70 बार चोरी की गई। सबसे ज्यादा 50 से अधिक बार चोरी अविनाश शुक्ला ने ही की थी, वो एक दिन में 2 बार चढ़ावा चोरी करता था। खुलासा ये भी हुआ कि अनुकल्प मिश्रा और अविनाश शुक्ला हर बार चोरी में एक दूसरे की मदद करते थे। जिन 40 दिनों का रिकॉर्ड पुलिस ने खंगाला है उसमें से 5 दिन ऐसे भी रहे जब एक ही दिन में चढ़ावा चोरों ने 3-3 बार चोरी की। पुलिस की जांच में ये सच सामने आने के बाद ही राम मंदिर ट्रस्ट ने चढ़ावे की गिनती अब सिर्फ एक ही शिफ्ट में करने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत अब सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चढ़ावे की गिनती शुरू कर दी गई है। इस फैसले के बाद काउंटिंग में लगे कुछ स्टाफ ने काम छोड़ दिया है। तमाम खुलासों के बीच अयोध्या पुलिस रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव से फिर पूछताछ की तैयारी में है। पुलिस ने दोनों की 7 दिनों की कस्टडी मांगी है। पुलिस की याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई की उम्मीद है। संतोष कुमार शर्मा, अयोध्या आज तक।
2: और इस खबर में तमाम जानकारी के साथ मेरे साथ मेरे सहयोगी संतोष शर्मा जुड़ गए हैं। संतोष, हमने आपकी रिपोर्ट देखी, सवाल अब यह है कि अगर थोड़ा सा भी रेगुलर ऑडिट या थोड़ी सी भी अनियमितताओं पर ध्यान दिया गया होता, क्योंकि जिस जिस तरीके से ये चढ़ावे चोरी की बातें सामने आ रही हैं, लगता है कि कितना कन्वीनियंट रहा होगा सब कुछ कि बहुत आसानी के साथ सांठगांठ से लगातार एक के बाद एक चोरी को अंजाम देने में कामयाब रहे।
1: बिल्कुल, इनके लिए आसानी से चोरी करना इतना आसान था कि जो 4 जून को अनुकल्प मिश्रा जब गिरफ्तार किया गया और इसके पास से 2,25,000 रुपए बरामद हुए। ये बात एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में भी कही कि फर्स्ट डे जो 4 जून को 2,25,000 रुपए बरामद हुए वो उसके कपड़ों से बरामद हुए। आप सोचिए कि 2.25 लाख रुपए आदमी कपड़े में लेकर जा रहा है और कपड़े पहनकर जा रहा है तो किसी को भनक नहीं लगी, किसी ने देखने की कोशिश नहीं की और रात के अंधेरे में इसीलिए चुना गया, सेकंड शिफ्ट इसीलिए टाइमिंग चुनी गई, शाम को 2 बजे से लेकर रात में 9 बजे की टाइमिंग, कि जब ये 9 बजे की शिफ्ट खत्म होती हिसाब पूरा देने के बाद ट्रस्ट में जमा करने के बाद तब ये निकलते तो उससे पहले चोरी की रकम ये जेब में रख लेते थे और चोरी की रकम आसानी से पार कर लेते। रात का अंधेरा होता था, सिक्योरिटी गार्ड जानते ही थे कि कोई टिन्नू यादव का भतीजा है, कोई अनुकल्प मिश्रा का जीजा है, कोई रामशंकर यादव रामशंकर यादव टिन्नू यादव खुद है। तो इस तरीके से तमाम लोग चोरी में एक तरीके से लूट मची थी कि जिसको जितना मौका मिल रहा है वो चोरी करे ले रहा है। एक दिन में 2 बार हो रही है, कभी 3 बार हो रही है और चेक करने वाला कोई नहीं था। यही वजह थी कि 40 दिन में 70 बार चोरी हुई और ये 70 बार जितनी बार चोरी हुई सब सेकेंड शिफ्ट में हुई। इसीलिए राम मंदिर ट्रस्ट ने अब नई व्यवस्था में सिर्फ सिंगल शिफ्ट सुबह से शाम तक ये लागू की गई है।
2: बिल्कुल, शाम 6 बजे तक अब शिफ्ट रखने की बात कही गई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सीईओ पद के लिए भी गठित सर्च कमेटी की पहली बैठक हुई है। शनिवार को ही इस बैठक में सीईओ पद के लिए मानदंड तय कर लिए गए हैं। फैसला यह किया गया कि आवेदक को हिंदू धर्म से होना चाहिए, उसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, ग्रेजुएशन, इसके साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन या फाइनेंस में उसका 20 साल का अनुभव होना भी जरूरी है। अहम फैसला यह भी है कि टेम्पल मैनेजमेंट का अनुभव रखने वाले व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। 18 जुलाई तक सीईओ के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। शुरुआत में 3 साल तक सीईओ की नियुक्ति होनी है और नियुक्त सीईओ को अयोध्या में ही रहना पड़ेगा। 1 महीने में सीईओ के चयन की प्रक्रिया को पूरी करने की कोशिश की जा रही है।
3: वास्तविकता तो यह है कि मैं नहीं जानता हूं कि 18 जुलाई की कोई तारीख है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। और यह कार्य तो एक 3 सदस्यीय समिति है, वो करेगी, तो वो तो जो ट्रस्ट होगा उसके अधीन ही सीईओ होगा, वो स्वतंत्र नहीं है, वो ट्रस्ट के अधीन कार्य करेगा। तो जैसे आज इतने सारे लोग कार्य कर रहे हैं, इंजीनियर कार्य कर रहे हैं, वैसे ही सीईओ भी कार्य करेगा।
2: तमाम सियासी आरोप प्रत्यारोपों के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने सदैव भारत की विरासत और आस्था को अपमानित किया है।
4: समाजवादी पार्टी के बारे में तो कहना ही क्या है, इनका तो इतिहास राम भक्तों के खून से सना हुआ है। इन्होंने भारत की विरासत का अपमान किया है, भारत की आस्था को सदैव अपमानित करने का कार्य किया है। याद करिए कैसे लोग, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, कैसे दंगे होते थे, पर्व और त्योहारों को कैसे लोग प्रतिबंधित करते थे, कैसे कांवड़ यात्रा को रोकते थे, कैसे भारत की आस्था को अपमानित करने का काम करते थे। लेकिन आज जब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में विरासत का भी सम्मान कर रही है और विकास के कार्यों को द्रुत गति से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसको पचा नहीं पा रही है।
2: और उधर चढ़ावा चोरी को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाने वाले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी बीजेपी ने पलटवार किया है। दिल्ली बीजेपी ने सोशल मीडिया पोस्ट करके गंभीर आरोप लगाए। पार्टी ने केजरीवाल पर आरोप लगाया कि पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों की हार को देखकर वो चुनावी हिंदू बनने की नौटंकी कर रहे हैं। तो ये पोस्ट की गई है बीजेपी की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा है क्योंकि विधानसभा के इलेक्शन बहुत करीब है पंजाब में और इसीलिए चुनावी हिंदू बनने की कोशिश में है अरविंद केजरीवाल।
5: अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं और ये हम पहली बार नहीं बोल रहे, जब जब चुनाव आते हैं अरविंद केजरीवाल के जो कर्म होते हैं वो प्रूफ कर देते हैं कि वो चुनावी हिंदू हैं। आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसको लेके हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे। ये सब दिखाता है कि चूंकि वहां उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं, इसलिए आज अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग चुनावी हिंदू बनकर हिंदू बनने का एक स्वांग रच रहा है।
2: तो बीजेपी के तमाम आरोपों के बाद अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और सरकार पर निशाना भी साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चढ़ावा चोरी के आरोपियों को बचाने के लिए तमाम प्रयास ये किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि चढ़ावा चोरी को लेकर छोटी मोटी जांच की जा रही है, सही जांच अभी हुई ही नहीं, क्योंकि हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की बात कही गई थी केजरीवाल की तरफ से।
6: थोड़ा सा टेढ़ा हो गया उसको
7: वो तो सर इस पे जाएगा, असली
6: साइन तो इस पे जाएगा। थैंक यू। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया।
8: ये एक चिट्ठी जो सबसे पहली चिट्ठी है उस पे डाला हुआ, उस पे तो जांच ही नहीं चल रही। नन मंदिर निर्माण में जो कमीशन खोली हुई इस पे तो जांच ही नहीं चल रही। चढ़ावे के चोरी को लेके कुछ एक छोटी मोटी जांच एक फर्जी एसआईटी बना दी गई, एक फर्जी एफआईआर पर लिख दी गई, तो लोगों को भरोसा नहीं रहा प्रधानमंत्री जी कुछ करेंगे। तो आज सुंदरकांड का पाठ किया गया और सभी राम भक्तों ने यह शपथ खाई है कि जब तक इन डकैतों को, इन चोरों को सख्त से सख्त सजा नहीं दिलवा देंगे, इनको सरेआम फांसी पे नहीं चढ़वा देंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे।
2: राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ी एक और फिल्म आ रही है और इस फिल्म में राम मंदिर आंदोलन की पूरी कहानी बयां की गई है। इसमें अनुपम खेर, बीएचपी नेता अशोक सिंघल की भूमिका में है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर अनुपम खेर से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चोरी करने वालों को सजा मिलेगी।
9: इसकी जो प्रतिष्ठा है टेम्पल की खराब हो गई। मेरा सिर्फ उसमें मुझे इशू है कि कैसे खराब हो गई। जो चोर है वो तो चोर ही है और उसको पकड़ा जाएगा, वो या पकड़े जाएंगे, फिर उनको सजा भी होगी। बट वाई आर वी सॉर्ट ऑफ थिंकिंग ओ माई गॉड राम मंदिर में चोरी हो गई। ऑफकोर्स हो सकती है, जिनकी इच्छा शक्ति चोरी करने की है, जिनके जिनका जहन ऐसा है, जिनके विचार ऐसे हैं, वो चोरी करने से नहीं कतराते हैं। उनके अंदर कोई मानवता नाम की चीज़ नहीं है। और ऑफ कोर्स देयर इज अ कलर बीइंग गिवन टू इट। माय पॉइंट इज दैट आवर टेंपल्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड फॉर सो मेनी इयर्स, वेदर इट्स इन कश्मीर, सोमनाथ, वी वर रूल्ड फॉर 800 इयर्स बाय मुगल्स, दे डिस्ट्रॉयड ईच एंड एवरी टेंपल। ये तो चोरी है, होनी नहीं चाहिए और सजा मिलनी चाहिए जो भी पकड़ा जाएगा। मगर मेरे खुद के कश्मीर में हर टेंपल तोड़ा गया है, हर टेंपल की स्थापना दोबारा की गई है। सो व्हाट आर द पीपल ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ ट्राइंग टू से, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट।
2: और अगली खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य का दर्जा मांगते हुए बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्रंप का जिक्र करते हुए तंज भी कसा।
10: असेंबली से नहीं मिलेगा, ठीक, फिर हमने सड़कों पर बात करना शुरू किया, फिर कहते थे अब आपको जम्मू कश्मीर में बात करके ये मिलेगा नहीं, ठीक, अब हम जंतर मंतर जा रहे हैं, अब ये हमें कहते ना जंतर मंतर से आपको रियासत का दर्जा नहीं मिलेगा। खुदारा फिर ये बीजेपी वाले बताए ना मुझे, क्या ट्रंप के पास जाना पड़ेगा व्हाइट हाउस में अमरीका रियासत का दर्जा लेने के लिए? अगर मुझे अपने मुल्क के राजधानी में जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा की बहाली नहीं मिलेगी तो कहिए हम लोग टिकट करेंगे, हम अमेरिका जाके ट्रंप साहब के घर के बाहर एहतजाज करके वहां से स्टेटहुड मांग लेंगे, दे दीजिए। अगर हमारी तार वहां से बजती है तो बताओ, क्योंकि हमने तो नहीं सोचा था कहीं और जाने का। आप लोग कह रहे हो कि जंतर मंतर से नहीं मिलेगा, आप लोग कह रहे हो कि पार्लियामेंट के पहले दिन एहतजाज करने से नहीं मिलेगा, हैरानगी की बात है।
2: और इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
2: गुजरात के अमरेली में आवारा जानवरों के आतंक हैं लगातार, शहरों के साथ साथ अब ग्रामीण इलाकों में भी सांड लोगों के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। अमरेली के वेडी में सांडों की लड़ाई में एक शख्स घायल हुआ, तस्वीरें जरा देखिए। दरअसल सांड आपस में लड़ रहे थे और लड़ते हुए उस ओर पहुंच गए जहां कुछ लोग खड़े हुए थे। कुछ लोग सावधान हुए, कुछ बच निकले, लेकिन बाइक पर बैठा एक शख्स उसकी चपेट में आया, उसे गंभीर चोटें लगी हैं। अस्पताल में शख्स को भर्ती करवा दिया गया है। गुजरात के अमरेली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां सांडों के झगड़े में एक शख्स बुरी तरह से घायल हुआ है। बुरी हालत में, लहूलुहान अवस्था में इस शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आसपास के लोगों का कहना यह है कि यह कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, जब सांडों और गायों की वजह से कई लोग बुरी तरह से चोटिल हुए हैं। इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
13: क्या इथेनॉल से नुकसान हो रहा है सर गाड़ियों?
14: मारुति सुजुकी के पास एक भी कंप्लेन नहीं है, टोयोटा के पास एक भी कंप्लेन नहीं है। मुझे बदनाम करने के लिए और इथेनॉल को बदनाम करने के लिए प्रयास है।
13: नए नए एक्सप्रेस वे जो बन रहे हैं उनमें गड्ढे,
14: हमारे हाईवे में जितने गड्ढे हैं उसके ऊपर आप कार्यक्रम करिए और दिखा दीजिए।
15: Listening to your favorite station just got even easier. With Google Assistant and TuneIn, your go-to station is just a voice away. You're listening to CNBC.
16: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
17: Keep it on smooth jazz.
18: This is Roots Reggae.
19: Exclusively on TuneIn.
20: This is Classic Hip Hop.
21: Exclusively on TuneIn.
15: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected. The shows, music, and news you love anytime you want.
22: शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ।
23: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
24: आसमान से बरसती आफत और जमीन पर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद, कहीं पहाड़ टूट रहे हैं तो कहीं पानी घरों को निगल रहा, बारिश ने चारों तरफ तबाही का मंजर खड़ा कर दिया है। पहाड़ों पर बारिश अब सिर्फ बरस नहीं रही, कहर बनकर टूट रही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भूस्खलन ने चार धाम यात्रा की रफ्तार रोक दी। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर खांकरा के पास पहाड़ दरक गया और सड़क पर आ गिरे भारी भरकम बोल्डर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में अचानक आई बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए। पानी के तेज बहाव में फंसे करीब 25 लोगों को रेस्क्यू किया गया। उधर मैदानों में भी पानी ने जिंदगी की रफ्तार रोक दी। महाराष्ट्र के पालघर में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया। एक परिवार ने मौत से बचने के लिए घर की खिड़की तोड़ दी और दो मासूम बच्चों समेत 8 घंटे तक छत पर बैठकर रात गुजारी। वहीं हरियाणा के अंबाला में तंगरी नदी का स्तर बढ़ने से लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर जाने को मजबूर हुए। सहारनपुर के सैयद माजरा गांव में भारी बारिश ने कब्रिस्तान को भी अपनी चपेट में ले लिया। लगातार 3 दिनों की मूसलाधार बारिश के बाद पानी का बहाव इतना तेज हुआ कि कब्रिस्तान की मिट्टी धंस गई और कई कब्रें क्षतिग्रस्त हो गईं। इतना ही नहीं, कई लाशें पानी में तैरने लगी। पहाड़ से मैदान तक बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। कहीं रास्ते बंद हुए, कहीं घर डूबे। बारिश थमने के बाद भी तबाही के ये निशान कई सवाल छोड़ गए हैं कि क्या हम ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए तैयार हैं? ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

युद्ध संकट के बीच सामने आएंगे मुज्तबा खामनेई, मंगलवार को शहीदों की श्रद्धांजलि सभा में देखेंगे। अमेरिका का 3 दिन में 300 ठिकानों पर हमला, ईरान का अमेरिका के बेसों पर पलटवार। विदेश मंत्रालय ने ओमान तट पर कमर्शियल जहाज जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की निंदा की। 10 भारतीयों को सुरक्षित बचाया गया, एक अभी भी लापता। जम्मू कश्मीर ऑपरेशन लोटस पर संग्राम, सीएम उमर अब्दुल्ला ने विधायक को 20 से 30 करोड़ रुपए और मंत्री बनाने के ऑफर की बात कही। बीजेपी ने आरोपों को बताया झूठा, कहा मुख्यमंत्री सबूत दे। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वडिंग को हटाने पर अड़ा चन्नी गुट, रंधावा बोले नहीं चाहिए कॉम्प्रोमाइज लीडर। भूपेश बघेल से मुलाकात के बाद भी नहीं बनी बात, अब आलाकमान के पाले में हैं। और अयोध्या राम मंदिर में इवनिंग शिफ्ट में दान चोरी के खुलासे के बाद बदली गई गणना, कर्मचारियों की टाइमिंग अब सिर्फ 9 बजे से शाम 6 बजे तक चढ़ावे की गिनती की जाएगी।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। अमेरिका ईरान के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ चुका है। ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने के बाद अमेरिका ने ईरान के कई शहरों पर जबरदस्त हमले किए हैं। वहीं इसके जवाब में ईरान ने मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। उसके बाद दोनों ही देशों के बीच तनाव एक बार फिर से चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। उधर दोनों देशों में बढ़ते हुए तनाव के बीच खबर यह भी है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई बहुत ही जल्द शहीदों के लिए आयोजित श्रद्धांजलि सभा में नजर आ सकते हैं। तो अमेरिका ईरान के बीच जंगी तनाव एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है। टकराव स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर है जिसे ईरान ने बंद करने का दावा किया है। तो अमेरिका ने ईरान के कई बड़े शहरों में ताबड़तोड़ हमले बोले हैं। उधर अमेरिका के इन हमलों के बाद ईरान ने भी गुस्सा दिखाते हुए बदला लेने की बात कही है। ईरान ने मध्य पूर्व के कई अमेरिकी ठिकानों को जो सैन्य बेसेस हैं उन पर हवाई हमले किए गए, जिसमें कुवैत, बहरीन, जॉर्डन और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ईरान ने यहां टारगेट किया है। इन हमलों के बीच दोनों ही देशों के बीच लगातार हालात और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर से बंद कर दिया गया और आपको बता दें कि ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया था कि बदला पूरी तरह से लिया जाएगा, क्योंकि 140 से ज्यादा जगहों पर अमेरिका की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए गए थे। अलग अलग जगहों पर तेज धमाकों की आवाजों को सुना गया था। इसके बाद ईरान की तरफ से भी पलटवार करते हुए अलग अलग जो सैन्य बेसेज हैं खास खाड़ी के देशों में अमेरिका के, उन पर जबरदस्त हमले किए गए हैं। बार बार कहा जा रहा है कि अब हालात और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर से बंद कर दिया गया है और एक बार फिर से दोनों ही देशों के बीच जबरदस्त हमले जारी हैं। अमेरिका ने देर रात इस हफ्ते की तीसरी बार एयर स्ट्राइक की है ईरान के ऊपर। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक न्यूक्लियर सिटी बुशहर समेत असालिह बंदर दायर, जास्क और चाबहार के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया अमेरिका की तरफ से। तो तमाम ये वो एरिया हैं जहां पर अमेरिका की तरफ से जबरदस्त हमले किए गए। कहा जा रहा है कि कल रात से अभी तक 140 से ज्यादा जगहों पर ताबड़तोड़ अमेरिका की तरफ से हमले किए गए हैं। अमेरिका ने इस हफ्ते तीसरी बार ईरान पर जबरदस्त हमले बोले, लेकिन इस बार अमेरिका काफी भीषण हमला बोल चुका है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा यह किया कि ईरान में करीब 140 सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया था, जिसमें ईरानी मिसाइल, ड्रोन्स, अड्डे, नौसैनिक क्षमताओं से जुड़े हुए ठिकाने, साथ ही साथ गोला बारूद भंडारण केंद्र, संचार नेटवर्क और तटीय निगरानी केंद्र भी शामिल हैं जिन्हें अमेरिका ने निशाना बनाया है। तो अमेरिका की तरफ से ताबड़तोड़ हमलों में इन तमाम जगहों को निशाना बनाया गया है, जिसमें संचार नेटवर्क है, साथ ही साथ तटीय निगरानी केंद्र भी शामिल है, बारूद भंडारण केंद्र हैं, इसके अलावा नौसैनिक क्षमताओं से जुड़े हुए ठिकाने हैं और ड्रोन्स अड्डे हैं। मिसाइल और ड्रोन्स अड्डों को भी टारगेट किया गया है अमेरिका की तरफ से। तो तीन दिन में 300 से ज्यादा अलग अलग जगहों पर जबरदस्त तरीके से हमले किए गए अमेरिका की तरफ से और कहा यह जा रहा है कि ईरान को जबरदस्त नुकसान हुआ है, जिसका बदला ईरान ने लेना शुरू किया है। खाड़ी के देशों में अमेरिकी

करने में कामयाब रहा है। लेकिन आपको बता दें कि यूएई के ऊपर भी ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई हैं। इसके अलावा बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, इन तमाम जगहों पर अमेरिकी बेस पर निशाना साधा गया है ईरान की तरफ से। इसी बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा यह किया कि उसने कतर स्थित अमेरिकी अल उदीद एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोला है। आईआरजीसी के मुताबिक इस हमले में लड़ाकू विमानों की मेंटेनेंस और रिपेयर सेंटर के साथ ही साथ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी ईरान की तरफ से निशाना बनाया गया है। आईआरजीसी ने दावा किया है कि लगातार बड़े हमले उनकी तरफ से भी जारी हैं। इस हमले में लड़ाकू विमानों के मेंटेनेंस और रिपेयर सेंटर के साथ ही कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया है आईआरजीसी की तरफ से। काफी नुकसान की भी आईआरजीसी ने जानकारी दी है। तो अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। ईरान की नौसेना की तरफ से हॉर्मुज स्ट्रेट को अगले नोटिस तक बंद करने का ऐलान कर दिया गया तो अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर भीषण अटैक किया है। ईरान की ओर से जवाबी हमले शुरू हो चुके हैं जिससे हालात और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं।

0: एक बार फिर अमेरिका ईरान के बीच हमलों का दौर तेज हो गया है। एक बार फिर दोनों ओर से भीषण हमले शुरू हो गए हैं। एक बार फिर अमेरिका ईरान के शहर शहर पर बम बरसा रहा है और ईरान भी पूरी ताकत के साथ मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। यानी इस हफ्ते की शुरुआत में दोनों ओर से शुरू हुए हमले अब भीषण जंग में तब्दील होते जा रहे हैं और इस तनाव का असर पूरे मध्य पूर्व में दिखना शुरू हो गया है। इस टकराव की सबसे बड़ी वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे लेकर दोनों देश फिर आमने सामने हैं। ये विवाद तब भड़का जब ईरान ने हॉर्मुज रूट को अगले नोटिस तक बंद करने का ऐलान कर दिया, जिसके कुछ घंटों बाद ही अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों और रणनीतिक इलाकों पर हमला करना शुरू किया। अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर सिटी बुशहर समेत कई शहरों को टारगेट किया।
1: इस एमओयू के साइन होने के बाद तीसरी घटना है ये, जब सीज फायर का वायलेशन हुआ है। तो अब तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कल किया था कि अब अमेरिका ईरान के साथ अमेरिका का कोई सीज फायर नहीं है। तो उस बीच सूत्रों का ये कहना है कि ईरान पर अब तक जो दो हमले हुए उनसे भी जोरदार हमला ये अमेरिका की तरफ से था, और खासतौर से छोटी नावों को, जो अमेरिका का कहना है कि आईआरजीसी की स्पीड बोट्स हैं, जबकि ईरान का कहना है कि वो मछुआरों की बोट्स हैं जिन पर ये बमबारी की है अमेरिका ने। और खासतौर से इन नावों के साथ साथ बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आईआरजीसी का, उसको भी निशाना बनाया है अमेरिका ने अपनी कार्रवाई में।
0: दरअसल अमेरिका ईरान की जंग में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबसे अहम और खतरनाक मोर्चा बनकर उभरा है, जिसे लेकर दोनों देशों के बीच तनातनी लंबे वक्त तक जारी रही। यही वजह है कि अमेरिका ईरान की बातचीत में भी हॉर्मुज पर लंबी चर्चा हुई। जब सीज फायर के बीच ईरान ने हॉर्मुज रूट खोलने का ऐलान किया तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे पूरी दुनिया के लिए सबसे शानदार दिन बताया। उम्मीद जगी कि ईरान के इस कदम से दोनों देशों में शांति की दिशा में बड़ी कामयाबी मिलेगी, लेकिन इस बार फिर हॉर्मुज को लेकर दोनों देश आमने सामने हैं। इस ताजा तनाव की वजह एक कमर्शियल जहाज पर आईआरजीसी का हमला है। ईरानी नौसेना का दावा है कि जहाज ने तय समुद्री मार्ग का पालन नहीं किया, साथ ही उन्होंने अपने नेविगेशन सिस्टम भी बंद कर दी और चेतावनी के बाद भी रास्ता नहीं बदला, जिसके चलते इस जहाज को निशाना बनाया गया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव फिर से भड़क गया। इस बीच ईरान ने साफ चेतावनी दी कि जब तक क्षेत्र में अमेरिकी दखल खत्म नहीं होता तब तक हॉर्मुज खोला नहीं जाएगा। साथ ही ईरान की ओर से किसी सैन्य कार्रवाई का सख्ती से जवाब देने की बात कही गई। अब जब हॉर्मुज को लेकर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ हमलों की बौछार कर दी है, ईरान की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई है, तो पूरे मध्य पूर्व में स्थिति फिर बिगड़ती दिख रही है। आज तक ब्यूरो।
2: आईआरजीसी ने, आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ने जहाज को निशाना बनाया, तो लगातार हालात और ज्यादा बेहद खराब हो गए। इसी बीच सवाल अब यह उठाया जा रहा है कि आखिर ईरान बार बार जहाजों को निशाना क्यों बना रहा है। दरअसल ईरान हर हाल में हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहता है, ये सबसे बड़ी वजह है। और ईरान चाहता है कि सभी जहाज उसके तय किए गए रूट से ही गुजरें और उनकी बनाई हुई ट्रांजिट अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन करवाएं, जिससे उसे हॉर्मुज पर नियंत्रण और भविष्य में शुल्क वसूलने का अधिकार मिल जाएगा।

के अलावा ओमान के वैकल्पिक रूट का विरोध भी लगातार जारी है। ओमान ने अपने तट के पास नया समुद्री मार्ग शुरू कर दिया है। इससे जहाज ईरान के नियंत्रण वाले रूट से बचकर निकल सकते थे, लेकिन ईरान को लगा कि उससे हॉर्मुज पर उसकी पकड़ बहुत कमजोर हो जाएगी। अमेरिका पर दबाव लगातार बनाए रखना चाहता है ईरान, और ईरान को लग रहा है कि अमेरिका क्षेत्र में उसकी ताकत कम करने की कोशिश में जुटा हुआ है, और हॉर्मुज का कंट्रोल अमेरिका लेना चाहता है, जो ईरान कभी नहीं होने देना चाहता। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर से बंद करने का ऐलान ईरान की तरफ से कर दिया है, और उधर अमेरिका की तरफ से लगातार एक ही बात कही जा रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए और निःशुल्क होना चाहिए सभी कमर्शियल वाहनों के लिए। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, मध्य पूर्व में बड़े तनाव के बीच ईरानी सेना के प्रवक्ता जनरल अकरमीनिया ने बड़ा बयान दिया है। ईरानी सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि हॉर्मुज में एक अवैध मार्ग स्थापित करने की कोशिश में अमेरिका ने क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर कर दिया। उन्होंने कहा कि सेना हॉर्मुज पर ईरानी लोगों के अधिकारों की मजबूती से रक्षा करेगी। तो अवैध रूट स्थापित करने की कोशिश की गई है अमेरिका की तरफ से, यह कहा गया है ईरान की सेना के प्रवक्ता जनरल अकरमीनिया की तरफ से। उन्होंने कहा है कि ईरान की सेना ने इस अवैध मार्ग को स्थापित करने की कोशिशों में बड़ा रोड़ा अटकाया है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हॉर्मुज पर ईरानी लोगों के अधिकारों की मजबूती से रक्षा ईरान की तरफ से की जाएगी। तो जब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हुई तो परमाणु कार्यक्रम और हॉर्मुज रूट दो ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिस पर ईरान अमेरिका की मांगे मानने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि किसी तरह बात बढ़ी, ईरान ने हॉर्मुज रूट खोला, लेकिन अब इसी रूट को लेकर एक बार फिर से युद्ध का मोर्चा खुला हुआ है। अमेरिका ने जिस तरह से ईरान पर हमला बोला है, फिर महायुद्ध का खतरा एक बार मंडराने लगा है, क्योंकि ईरान की तरफ से भी पलटवार शुरू कर दिया गया है।

0: हॉर्मुज रूट को लेकर फिर ऐसा तनाव भड़का कि ईरान के कई शहर, कई सैन्य ठिकाने अमेरिका के टारगेट पर आ गए। ईरान के 140 ठिकानों पर अमेरिका ने भीषण हमले किए। अमेरिका ने ईरान के मिसाइल अड्डों पर हमला किया, ईरान के ड्रोन अड्डों को तबाह किया, ईरानी गोला बारूद भंडार को निशाने पर लिया, ईरान के संचार नेटवर्क पर मिसाइलें बरसाई, साथ ही तटीय निगरानी केंद्रों को भी टारगेट पर लिया। यानी हॉर्मुज रूट पर जहाज पर हुए IRGC के हमले के बाद अब अमेरिका की ओर से ये सबसे बड़ा प्रहार किया गया है, जिसका सीधा मकसद हॉर्मुज पर ईरान के दबदबे को कमजोर करना है, और अमेरिका ने इस कोशिश में भारी बम बारूद बरसाना शुरू कर दिया है। क्योंकि ईरान पर हुए ताजा हमले के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड की ओर से दावा किया गया कि पिछले 3 दिनों में ईरान के 300 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं, ताकि हॉर्मुज रूट पर व्यापारिक जहाजों पर ईरान की क्षमता को कमजोर किया जा सके। साथ ही अमेरिकी सेना ने यह दावा भी किया कि अब तक उसने 800 से ज्यादा व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट पार कराने में मदद की है, जिनमें करीब 40 करोड़ बैरल तेल ले जा रहे जहाज भी शामिल थे। उधर अमेरिका के इस बड़े और ताजा हमलों ने ईरान का गुस्सा भी भड़का दिया। ईरान की ओर से मध्य पूर्व के कई देशों में अमेरिका सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसने कतर स्थित अल उदीद एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इस हमले में लड़ाकू विमानों के मेंटेनेंस और रिपेयर सेंटर के साथ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी निशाना बनाया गया। साथ ही दावा ओमान के दुख्म पोर्ट पर भी हमले का है। IRGC की ओर से कहा गया कि अमेरिकी विमान वाहक पोतों में इस्तेमाल होने वाले लॉजिस्टिक सपोर्ट सेंटर और ईंधन भरने वाले प्लेटफॉर्म पर बड़ा हमला किया गया और इस अमेरिकी ठिकाने को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। जाहिर है कि जिस ताकत से अमेरिका ने हमला किया, ईरान का जवाब वैसा ही खतरनाक रहा। इस तनाव के बीच सवाल उठ रहा है कि क्या हॉर्मुज को लेकर फिर छिड़ती जंग के बीच फिर से रूट पूरी तरह से ब्लॉक होगा? क्या एक बार फिर दुनिया के सामने तेल गैस का संकट खड़ा होगा? क्योंकि ईरान का रुख साफ है कि वो किसी भी कीमत पर हॉर्मुज पर अपने अधिकार को कम करने को तैयार नहीं। ईरान की ओर से साफ कहा है कि हॉर्मुज पर उसका नियंत्रण जारी रहेगा। उधर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के साफ संकेत ईरान के शीर्ष वार्ताकार और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ की सोशल मीडिया पोस्ट में भी दिखा। उन्होंने लिखा कि एक तरफा समझौतों का दौर खत्म हो चुका है, हमने पहले ही कहा था, या तो अपना वादा निभाइए या फिर इसकी कीमत चुकाइए, अब हकीकत सामने है। साफ है कि मध्य पूर्व में जंग अब नए मोड़ पर पहुंचती जा रही है। अमेरिका के हमले और ईरान के जवाब के बाद स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है। आज तक ब्यूरो।
1: तो अमेरिका ईरान में बढ़ते हुए तनाव के बीच इसराइल ने एक बार फिर से दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया है। हिजबुल्ला ने आतंकवादियों ने एक एंटी टैंक मिसाइल को इमारत में पहुंचाया था, जिसे तबाह करने के लिए इजरायली रक्षा बल IDF ने उस इमारत को ही टारगेट किया। पूरा दक्षिणी लेबनान वैसे भी लगातार हमले वहां जारी हैं, तमाम जो बिल्डिंग्स हैं नेस्तनाबूद नजर आती है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये हाल ही की तस्वीर है, जिसको निशाना बनाया गया IDF की तरफ से। कहा यह गया है कि यहां तक एक टैंक पहुंचाया गया था जिसे नेस्तनाबूद किया गया। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
4: At Northwest Bank, we're here for what's next. The next bucket list trip. The next home renovation. Or the next milestone celebration. Right now, earn 4.0% annual percentage yield with a new high-yield performance savings account. Opening an account online takes just minutes. Go to northwest.com/performance to get started today. And visit a new financial center opening in your neighborhood soon. Member FDIC. Northwest Bank. For what's next.
5: Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
6: Schwarber to right field, and it will leave.
5: From the first pitch of the season to the stretch run.
6: And that's the ball game.
5: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
7: Sokudo,

राम मंदिर के प्रांगण में मौजूद जिस कमरे में चढ़ावे की गिनती होती थी, वहां दो पालियों में काउंटिंग का काम होता था। दो शिफ्ट में अलग अलग स्टाफ थे, सभी की जिम्मेदारियां बटी हुई थी, सभी उसी हिसाब से अपनी भूमिका निभाते थे। उसी भूमिका में चढ़ावा चोरों का भी हिसाब किताब तय था। चढ़ावे की गिनती के लिए पहली शिफ्ट सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक होती थी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक थी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि चोरी की वारदात सिर्फ दूसरी शिफ्ट में ही हुई, यानी चढ़ावा चोरी की वारदात दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक की शिफ्ट में ही हुई। इससे एक बात यह भी साफ होता है कि चढ़ावा चोरी के सभी आरोपी उसी 2 से 9 वाली शिफ्ट में काम करते थे। दरअसल शाम की शिफ्ट में चोरी करना आरोपियों के लिए ज्यादा आसान था। काउंटिंग की दूसरी शिफ्ट में चढ़ावा चोरी का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने 4 आरोपियों अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे से कड़ी पूछताछ की। हाल ही में पुलिस ने रिमांड लेकर इनसे सवाल जवाब किए। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 40 दिन में 70 बार चोरी की गई। सबसे ज्यादा 50 से अधिक बार चोरी अविनाश शुक्ला ने ही की थी। वो एक दिन में 2 बार चढ़ावा चोरी करता था। खुलासा यह भी हुआ कि अनुकल्प मिश्रा और अविनाश शुक्ला हर बार चोरी में एक दूसरे की मदद करते थे। जिन 40 दिनों का रिकॉर्ड पुलिस ने खंगाला है, उसमें से 5 दिन ऐसे भी रहे जब एक ही दिन में चढ़ावा चोरों ने 3-3 बार चोरी की। पुलिस की जांच में यह सच सामने आने के बाद ही राम मंदिर ट्रस्ट ने चढ़ावे की गिनती अब सिर्फ एक ही शिफ्ट में करने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत अब सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चढ़ावे की गिनती शुरू कर दी गई है। इस फैसले के बाद काउंटिंग में लगे कुछ स्टाफ ने काम छोड़ दिया है। तमाम खुलासों के बीच अयोध्या पुलिस रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव से फिर पूछताछ की तैयारी में है। पुलिस ने दोनों की 7 दिनों की कस्टडी मांगी है। पुलिस की याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई की उम्मीद है। संतोष कुमार शर्मा, अयोध्या आज तक।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
0: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Chogan Perfumes, the French edition for him and her.
2: TuneIn has all of your favorite audio in one spot. So you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news.
3: After multiple assassination attempts, they can't even get...
4: They're reliable.
5: Always when I need them.
2: To live sports action.
6: One-hand jam by LeBron on the break.
7: That's another three, Steph Curry.
2: And your favorite music.
8: Well, the dawn begins to crack.
2: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app. Or ask your device to play TuneIn.
9: रामलला के भव्य मंदिर के रोड़े अटकाने में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की भूमिका दुनिया जानती है। ये केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के तहत अयोध्या धाम पर लगातार हमले कर रहे हैं। इन्हें प्रदेश जनता कभी माफ नहीं करेगी। हमारी सरकार का स्टैंड है, ट्रस्ट ने FIR कराई है और ट्रस्ट के ही कहने पर FIR हुई। सरकार निष्पक्ष जाँच कर रही है और जो भी दोषी होगा उसे सजा अवश्य मिलेगी।
10: कब से चल रहा है, हो सकता है जो उजागर हुआ हो वो बहुत कम मात्रा पता पड़ी है, लेकिन पूरा, और लोग तो कह रहे हैं जमीन जब खरीदी गई थी उसमें बहुत अहित हुआ था। अब आरोप लगेंगे तो एक बार चोरी पकड़ी जाती है तो शक बहुत दूर तक जाता है। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को इस तरह का बयान देना चाहिए। हालांकि बोलते बहुत कम है, मैं तो इतना कह रहा हूँ कि जो SIT की जाँच है इससे कुछ निकलेगा नहीं। लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में अगर जांच होगी तो वह ऊपर तक नाम आएंगे। उसका जनता पर विश्वास दिलाकर खुद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि हम जांच को अंतिम छोर तक लेकर जाएं।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins and Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
3: नरोत्तम मिश्रा जो शिवराज सरकार में गृह मंत्री रहे, उन्होंने 15 साल तक दतिया विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। प्रदेश की राजनीति में प्रभावशाली चेहरा रहे, उन पर बीजेपी ने भरोसा क्यों नहीं जताया? सियासी हलकों में चर्चा थी कि बीजेपी एक बार फिर दतिया से नरोत्तम मिश्रा को टिकट देगी। वे इन दिनों लगातार दतिया में सक्रिय भी थे और दावेदारी को लेकर निश्चिंत थे। उन्होंने नामांकन फॉर्म तक ले डाला था, लेकिन सूत्र बताते हैं कि उनका टिकट काटा जाना और आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया जाना अचानक नहीं हुआ। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी ने दिल्ली स्तर पर सर्वे कराए। उस सर्वे में नरोत्तम मिश्रा की स्थिति मजबूत नहीं पाई गई। लगे हाथ केंद्रीय नेतृत्व ने केवल उम्मीदवार की लोकप्रियता नहीं बल्कि स्थानीय संगठन और भविष्य की राजनीतिक स्वीकार्यता का भी आकलन किया और आशुतोष तिवारी को टिकट देने का फैसला लिया गया। बीजेपी नए पावर सेंटर से बचना चाहती थी। अगर नरोत्तम मिश्रा उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचते तो उनके मंत्री बनने और अहम विभाग मिलने की पूरी संभावना थी। इससे बीजेपी और सरकार में एक नया पावर सेंटर बनता। ऐसे में पार्टी के अंदर टकराव बढ़ने की आशंका थी। बीजेपी आला कमान उसी संकट से बचना चाहता था, लिहाजा रणनीतिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया। नरोत्तम मिश्रा दतिया से 2008, 2013 और 2018 में लगातार विधायक रह चुके हैं। ऐसे में बीजेपी के फैसले को लेकर कांग्रेस भी कुछ ऐसे ही आरोप लगा रही है।
4: नरोत्तम जी मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता, तो उनको कट्टू साइज तो करना ही था, कर दिया। ये बाई इलेक्शन जो हो रहा है, ये नरोत्तम मिश्रा जी की पैरवी के कारण, गलत पैरवी के कारण, गलत ढंग से कांग्रेस का हमारी सदस्य की संस्था ली गई और इसलिए हटा दिया, कहीं नरोत्तम मिश्रा खतरा न बन जाए। ये जो छुटवैया नेता मुख्यमंत्री और सब बन जाते हैं, और वैसे भी कोई ब्राह्मण भाजपा में मजबूत न होने पाए, ये तो भाजपा की परंपरा।
3: उधर दतिया में नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों के हंगामे के बीच मोहन सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कह दिया है कि अब टिकट बदलने की संभावना नहीं। नरोत्तम मिश्रा के समर्थक नाराज हैं। बीजेपी के सामने मतदान से पहले नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने की असल चुनौती है। दतिया से अशोक शर्मा के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।

युद्ध संकट के बीच सामने आएंगे मुज्तबा खामिनई। मंगलवार को शहीदों के श्रद्धांजलि सभा में दिखेंगे। अमेरिका का 3 दिन में 300 ठिकानों पर हमला। ईरान का अमेरिकी बेसों पर पलटवार। विदेश मंत्रालय ने ओमान तट पर कमर्शियल जहाज GFS गैलेक्सी पर हमले की निंदा की। 10 भारतीयों को सुरक्षित बचाया गया, अब भी एक लापता। जम्मू कश्मीर ऑपरेशन लोटस पर संग्राम। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधायकों को 20 से 30 करोड़ और मंत्री बनाने के ऑफर की कही बात। बीजेपी ने आरोपों को बताया झूठा, कहा कि मुख्यमंत्री सबूत दें। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वडिंग को हटाने पर चन्नी गुट आड़ा। रंधावा बोले नहीं चाहिए कॉम्प्रोमाइज लीडर। भूपेश बघेल से मुलाकात के बाद भी नहीं बनी बात, अबाला कमान के पाले में गिर। और अयोध्या राम मंदिर में इवनिंग शिफ्ट में धान चोरी के खुलासे के बाद बदली गई गणना कर्मचारियों की टाइमिंग। अब सिर्फ 9 से शाम 6 बजे तक चढ़ावे की होगी गिनती।

0: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। बुलेटिन में आपके शहर की खबर सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाते हैं, 100 शहर 100 खबर में। तेहरान में शहीद सैन्य कमांडर को श्रद्धांजलि, सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामिनी करेंगे स्मृति समारोह का नेतृत्व। ईरान में शहीद कमांडरों के सम्मान में बड़ा आयोजन, तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला में आयोजित होगा श्रद्धांजलि समारोह। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान का बड़ा दावा, संसदीय समिति के प्रवक्ता बोले ताकत से नियंत्रण हासिल किया, ताकत से ही बनाए रखेंगे। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर ईरान और ओमान में बातचीत, समुद्री सुरक्षा और जहाजों की आवाजाही को लेकर अहम सहमति। फिर से तेज हुआ खाड़ी युद्ध, अमेरिका ने बुशहर बंदर अब्बास में केशम द्वीप तक 140 ईरानी ठिकानों पर हमला किया। ईरान ने शुरू किया अमेरिका पर जवाबी हमला, ईरान का कुवैत बहरीन जॉर्डन के अमेरिकी बेसिस पर जबरदस्त हमला। ईरान के जास पोर्ट पर धमाकों से हड़कंप, IRNA का दावा और होर्मुज़गान प्रांत जास्क बंदरगाह शहर में 10 से ज्यादा विस्फोटों की आवाज आई। अमेरिका ईरान टकराते, सेंटकॉम का बड़ा दावा, होर्मुज़ में जहाजों पर हमले के बाद अब सैन्य कार्रवाई। समुद्र में बढ़ा सैन्य तनाव, ईरान बोला कि नियम तोड़ने का जहाज रोका गया और अमेरिका ने कहा कि हमलों की तो कीमत चुकानी होगी। वियतनाम में भारतीय पर्यटकों को लेकर जा रही नाव पलट गई, 15 लोगों की मौत। वियतनाम में फुकुक द्वीप के पास में हादसे के समय बोट में सवार थे 32 भारतीय पर्यटक, 4 क्रू मेंबर, 21 लोगों को बचाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर जताया दुख, वियतनाम के हनोई में भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। 3 देशों के दौरे के बाद आज लौटेंगे प्रधानमंत्री मोदी, न्यूजीलैंड से दिल्ली के लिए उड़ान भी भरी। न्यूजीलैंड के साथ 10 समझौतों पर हस्ताक्षर, दोनों ही देशों के बीच में कारोबार को 2030 तक 35,000 करोड़ पहुंचाने का टारगेट। कनाडा के टोरंटो में स्वीट फेस्टिवल के दौरान अंधाधुंध फायरिंग, गोलीबारी में 2 लोगों की मौत, 6 लोग को गोली लगी। टोरंटो के साल्सा ऑन सेंट क्लेयर फेस्टिवल में गोलियों की गूंज, हमला पर अब भी फरार, पुलिस ने इलाके को घेरा, घटनास्थल से सबसे दूर रहने की अपील। यमन में हुती समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन, ईरान के समर्थन में 14 प्रांतों में रैलियां निकाली गई। यूक्रेन बनाएगा पेट्रियट जैसी स्वदेशी मिसाइल रक्षा प्रणाली, यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा ऐलान। रूस के खिलाफ प्रस्तावित 21वें प्रतिबंध पैकेज पर फिलहाल नहीं बन पाई सहमति, यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में सहमति न बनने के कारण नहीं लागू हो सका प्रतिबंधों का 21वां पैकेज। संसद सत्र से पहले सरकार की सर्वदलीय बैठक, 20 जुलाई से पहले रणनीति पर मंथन, राजनाथ, अमित शाह, राहुल और खड़गे समेत सभी दलों के फ्लोर लीडर होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन लोटस पर सियासी घमासान, सीएम उमर बोले कि विधायकों को 20 से 30 करोड़ और मंत्री पद को ऑफर, बीजेपी ने सबूत मांगे हैं। उमर के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस के दावों को बताया बेबुनियाद, कहा कि आरोप हैं तो सबूत भी पेश करें। पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर फिर बवाल, राजा वर्डिंग को हटाने की मांग पर अड़ा चन्नी गुट, रंधावा बोले समझौता नहीं चलेगा। पंजाब कांग्रेस का फैसला आलाकमान के भरोसे, भूपेश बघेल से मुलाकात भी नतीजा, अब नए प्रदेशाध्यक्ष पर हाईकमान की नजर। राम मंदिर ट्रस्ट को मिलेगा नया सीईओ, सर्च कमेटी की पहली बैठक में चयन प्रक्रिया तेज, 1 महीने में नियुक्ति का लक्ष्य है। सीईओ पद के लिए तय हुई योग्यता ग्रेजुएशन के साथ प्रशासन या वित्त में 20 साल का अनुभव अनिवार्य। मंदिर प्रबंधन का अनुभव बनेगा प्लस पॉइंट, राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने अनुभवी और हिंदू धर्म के उम्मीदवारों को ही प्राथमिकता दी। 18 जुलाई तक मांगे जाएंगे आवेदन, 3 साल के कार्यकाल के लिए होगा चयन, अयोध्या में रहकर संभालनी होगी जिम्मेदारी। विपक्ष का बीजेपी पर बड़ा हमला, कांग्रेस ने चंदा विवाद पर पीएम मोदी की चुप्पी पर उठाए सवाल। चंदा चोरी पर कांग्रेस का देशभर में प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी बोली दोषियों पर होगी कार्रवाई। राम मंदिर ट्रस्ट विवाद पर कांग्रेस हमला पर बीजेपी ने विपक्ष पर राजनीति करने का लगाया आरोप। सीएम योगी का पलटवार, बोले राम भक्तों के खून से सना है एसपी का इतिहास, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट निगरानी में जांच की मांग उठाई। योगी ने एसपी को आस्था विरोधी बताया, कांग्रेस ने संसद में पीएम से जवाब मांगने का ऐलान। भोपाल में नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से की मुलाकात, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी रहे मौजूद, मौजूदा हालात पर चर्चा। दतिया से टिकट कटने पर आज तक से बोले नरोत्तम मिश्रा, मुझे किसी से नाराजगी नहीं, पार्टी जो कहेगी वो मैं करूंगा, आशुतोष तिवारी के नामांकन में जाऊंगा। दतिया में बीजेपी के टिकट विवाद पर कूदे कांग्रेस, पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बीजेपी की तो पोल खुल गई। दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर समर्थकों का बवाल। नेशनल हाईवे पर समर्थकों ने लगाया घंटों जाम, जमकर किया बवाल। कांग्रेस ने दतिया सीट से घनश्याम सिंह को बनाया उम्मीदवार, बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी से होगी टक्कर। बस में आम यात्री बनकर निकले कर्नाटक के परिवहन मंत्री, लापरवाही पर ड्राइवर कंडक्टर सस्पेंड। यात्री के इशारे पर बस नहीं रोकना पड़ा भारी, खुले पैसे नहीं होने पर भी कंडक्टर ने मंत्री को बस से उतरने को कहा था। राहुल गांधी की गैर मौजूदगी पर बीजेपी के आरोप, कांग्रेस ने अयोध्या ट्रस्ट और पेपर लीक पर सरकार को घेरा। कांग्रेस का आरोप है प्रशासनिक वजहों से रद्द हुए कार्यक्रम, प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली। छात्रों की गूंज पर कांग्रेस का पलटवार, एनटीए को बताया नेशनल ट्रॉमा एजेंसी। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है, तकनीकी काम के चलते कई ट्रेन प्रभावित, गोरखपुर कैंट पनिहवा रूट पर भी इंपैक्ट, 10 ट्रेनें रहेंगी कैंसिल, 16 का बदलेगा रूट, 17 ट्रेनों का शॉर्ट टर्मिनेशन होगा। रेल अलर्ट, 10 ट्रेनें कैंसिल रहेंगी, 16 का बदलेगा रूट और कई कुछ का शॉर्ट टर्मिनेशन। दोहरीकरण कार्य के चलते 16 से 21 जुलाई तक कई ट्रेनें प्रभावित। भारतीय सेना खरीदेगी 450 काल गुस्ताफ मल्टी रोल रॉकेट लॉन्चर, जंगल पहाड़ रेगिस्तान और अर्बन वॉरफेयर में घातक हथियार। डीएफआई टेरर केस में 20 आरोपियों के खिलाफ चार्ज, प्रेम आतंकी साजिश के मामले में 29 जुलाई से शुरू होगा ट्रायल। नवी मुंबई एमएसएमई समिट में पेश हुई ईयू इंडिया एफटीए रिपोर्ट, हर्ष पटेल ने उद्योग मंत्री, रक्षा मंत्री, कानून मंत्री को सौंपा रणनीतिक ब्लूप्रिंट। उत्तरकाशी थराली क्षेत्र में खीर गंगा का बढ़ने लगा जलस्तर, हर्षिल थाना पुलिस ने एहतियात के तौर पर स्थानीय लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की। देहरादून में बारिश का कहर, सुरक्षा दीवार ढहने से 3 मकान क्षतिग्रस्त है, मकान घायल, खतरे को देखते हुए 7 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर किया गया शिफ्ट। मूसलाधार बारिश बनी आफत, विजय कॉलोनी में खाला बस्ती में मचा हड़कंप, प्रशासन अलर्ट मोड पर, डीएम और मंत्री गणेश जोशी ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। पहलगाम में फ्लैश फ्लड का कहर, नाला ओबरा में तूफान से होटल में पानी भरा, भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े, पर्यटकों को सुरक्षित निकालने में जुटा प्रशासन। जम्मू कश्मीर में मानसून की मार, अनंतनाग में झमाझम बारिश, तेज बारिश के चलते सड़क और निचले इलाकों में इंपैक्ट नेगेटिव दिखा। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का कहर, उत्तराखंड में डॉक्टर की हो गई मौत। देहरादून में टिहरी और पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, कुलाट जिलों के लिए येलो अलर्ट। टिहरी गढ़वाल में लगातार 3 दिन से बारिश, नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट पर रहने का निर्देश। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग रुद्रप्रयाग के निकट खांकरा में प्रभावित, हाईवे पर टूट कर आए हैं बड़े बड़े पत्थर। नोएडा के सेक्टर 76 में सोसाइटी में लोगों ने आवाज बुलंद की, प्रिंस एस्टेट के निवासियों ने अतिक्रमण के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। चेक गणराज्य की लिंडा नुस्कोवा ने जीता विंबलडन का महिला सिंगल्स का खिताब, फाइनल में मुचोवा को 3 सेट में हराया। विंबलडन 2026 में मेंस फाइनल आज, दुनिया के नंबर 1 यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़्वेरेव के बीच में खिताबी जंग। फीफा में अर्जेंटीना का धमाका, स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंची टीम, मेसी की टीम का भी शानदार प्रदर्शन। स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर मारी सेमीफाइनल में एंट्री, रोमांचक क्वार्टर फाइनल जीत के साथ स्पेन का खिताब की ओर दमदार कदम। इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह, रोमांचक क्वार्टर फाइनल में अतिरिक्त समय में जीत, खिताब की दौड़ में बरकरार इंग्लैंड। अमरेली में सांडों का तांडव, युवक घायल, बाजार में मची अफरा तफरी, विरडी गांव में सांड के हमले में युवक घायल, अंबारडी में 2 सांडों की लड़ाई से दहशत। अमरेली में शेर का भी खौफ, 21 साल के युवक की हमले में मौत, लिलिया रेंज के अंतालिया इलाके में वन विभाग ने 2 गिरफ्तार किए। प्रेमिका के कहने पर प्रेमी ने पेट्रोल पंप सेल्समैन को गोली मार दी, परेशान करने का आरोप लगाकर रची गई साजिश, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। डीओ कार्यालय के बरामदे में पड़ा मिला शव, अधिकारी सूत्र तक नहीं ले, शिक्षिका के पति की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों का प्रदर्शन, रवैये पर सवाल। आरपीएफ हिरासत में फरार हुए 2 शराब तस्कर, सब इंस्पेक्टर समेत 4 सस्पेंड, हाजत का एल्बेस्ट तोड़कर भागे ये आरोपी, मामले में जीआरपी थाने में एफआईआर। दिल्ली के जसोला इलाके में दीवार गिरने से 1 की मौत, 2 लोग घायल। राजस्थान के नागौर में स्कॉर्पियो ने स्कूटी सवार 2 महीनों को मारी टक्कर, दोनों गंभीर रूप से घायल। टोंक में घर के बाहर खड़ी कार को चोर लेकर भाग गए, ब्रेकिंग के बाद वारदात को उन्होंने दिया अंजाम, घटना सीसीटीवी में कैद। आगरा के सुभाष बाजार इलाके में महिला की अब तक कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई, मलबे के साथ ही नाले में समा गई थी महिला। झांसी में छुट्टी के बाद 11वीं के छात्र को बदमाशों ने पीटा, भाई पर भी हमला किया। गाजीपुर के कसीमाबाद में एसडीएम पर सोशल मीडिया टिप्पणी का विवाद गहरा, लेखपालों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा गया। नोएडा में फर्जी लोन कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 5 साइबर ठग गिरफ्तार, करोड़ों की ठगी का इनपरा। हापुड़ में दुकानदार ने खरीदी पानी की बोतल में एसिड मिलने का आरोप है, घटना का सीसीटीवी भी सामने आया। बिहार के मुजफ्फरपुर में पवन एक्सप्रेस में टिकट टैंपरिंग का खुलासा, छेड़छाड़ किए गए टिकट के साथ 4 यात्री गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में ज्वेलरी कारोबारी को बदमाशों ने मार दी गोली और 2.5 लाख के गहने लूटकर फरार, कारोबारी अस्पताल में भर्ती है। सूरत में बैंक रिकवरी एजेंट की धारदार हथियार से हत्या, शॉपिंग सेंटर में मिला शव। इंदौर में कॉलेज छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, दीवार पर अंग्रेजी में लिखा सुसाइड नोट। रेवाड़ी में सिलेंडर ब्लास्ट में एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत, इलाज के दौरान पिता ने तोड़ा दम, 9 जुलाई को बेटी की जान गई थी। टिहरी के थाना कैंप की पुलिस ने 12 घंटे के अंदर नाबालिग बरामद की महिला फुसला कर एक युवक अपने इसने वारदात को दिया था अंजाम। राजस्थान के बूंदी में सिगरेट उधार नहीं देने पर दुकानदार पर चाकू से किया गया वार, दुकानदार को कोटा किया गया रेफर, आरोपी फरार। प्रियंका चोपड़ा ने जारी किया अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म द साइकिल ऑफ लव का एक ट्रेलर, फिल्म में कार्यकारी निर्माता भी हैं प्रियंका। पीके महानंदिया की प्रेम कहानी पर डॉक्यूमेंट्री, प्यार के लिए साइकिल से भारत से स्वीडन तक 6000 मील का सफर किया। वेब सीरीज रक्तांचल 3 का ट्रेलर रिलीज, क्रांति प्रकाश झा और निकितिन धीर पहली वाली भूमिकाओं में दिखाई देंगे। 16 जुलाई से अमेजन एम स्क्वायर पर मुफ्त में स्ट्रीम होगी रक्तांचल 3, करण पटेल, माही गिल समेत कई अहम कलाकार भूमिकाओं। शादी के बंधन में बंधी टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस फेम एक्ट्रेस पलक पुरस्वानी बॉयफ्रेंड रोहन खन्ना के साथ शादी की। अब बात करते हैं कनाडा की। कनाडा के टोरंटो में फायरिंग हुई है और टोरंटो में एक स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान गोलीबारी से हड़कंप मच गया। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई, कई लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इस एक्टिव शूटर केस से बताया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है।
1: टोरंटो में साल साउंड सेंट क्लेयर फेस्टिवल, फेस्टिवल में गोलियों की तड़ताहट, अफरा तफरी का माहौल, चीखते चिल्लाते लोग। तस्वीरें कनाडा के टोरंटो की हैं, जहां शनिवार शाम एक प्रसिद्ध स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान अचानक गोलियों की तड़ताहट से हड़कंप मच गया। मिड टाउन टोरंटो में आयोजित वार्षिक लैटिन सांस्कृतिक उत्सव साल साउंड सेंट क्लेयर के दौरान हुई इस फायरिंग के बाद मौके पर भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। टोरंटो पुलिस के मुताबिक गोलीबारी में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने इलाके को तुरंत अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और लोगों से घटनास्थल से दूर रहने की अपील की गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक संदिग्ध हमलावर अभी फरार है। फिलहाल पुलिस फायरिंग के कारणों, हमलावर की पहचान और घटना के पीछे की वजहों की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़ी और जानकारी जल्द जारी की जाएगी। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात वियतनाम से आए एक बड़े हादसे की। वियतनाम के फुकोक द्वीप के पास में भारतीय पर्यटकों से भरी हुई एक टूरिस्ट बोट पलट गई। हादसे में 15 भारतीयों की जान चले गई, 21 लोगों को हालांकि सुरक्षित बचाया गया। बोट पर उस समय कुल 36 लोग सवार थे, जिसमें 32 भारतीय, 4 क्रू मेंबर्स हादसे में शामिल थे। आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं।
2: वियतनाम में छुट्टियों की तस्वीरें आखिर यादें बन गई हैं। समंदर का सफर मौत का सफर बन गया। परिवारों के लिए अब सिर्फ दर्द बचा है। वियतनाम के फुकवोक आइलैंड के पास एक टूरिस्ट बोट पलटी और देखते ही देखते गहरे पानी ने कई जिंदगियां निगल ली। जिस नाव में सवार होकर लोग नए अनुभवों की तलाश में निकले थे, वही नाव कई परिवारों के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा बन गई। वियतनाम से आई ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। समंदर की ऊंची लहरों के बीच पलटी हुई टूरिस्ट बोट और चारों तरफ मदद के लिए जूझते लोग। ये वही नाव थी जिसमें भारत से घूमने पहुंचे पर्यटक सवार थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटक और 4 क्रू मेंबर मौजूद थे। नाव होन में रूट से अनथोई पोर्ट की तरफ जा रही थी, तभी फुकवोक आइलैंड के पास करीब 400 मीटर दूर अचानक हादसा हो गया और देखते ही देखते पूरी नाव समंदर में पलट गई और 15 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे की खबर मिलते ही भारत सरकार भी सक्रिय हो गई। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बताया कि हादसे के बाद हनोई स्थित एम्बेसी और होची मिन्ह सिटी स्थित कॉन्सुलेट में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। दूतावास ने कहा कि भारतीय पर्यटकों की जानकारी जुटाई जा रही है और हर संभव मदद दी जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हादसे पर दुख जताते हुए लिखा, वियतनाम के फुकवोक के पास भारतीय नागरिकों से जुड़े इस दर्दनाक हादसे से बेहद दुखी हूँ। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया। पीएम मोदी ने कहा, वियतनाम में भारतीय नागरिकों से जुड़े नाव हादसे की खबर से बेहद दुखी हूँ। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूँ। भारतीय दूतावास और अधिकारी हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। हादसे में पीड़ित परिवारों में मातम है। केरल के मछलीपट्टनम में रहने वाले पीड़ित परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वियतनाम नाव हादसे में गेली जयलक्ष्मी की मौत की खबर के बाद परिवार में चीख पुकार मच गई। घर में मौजूद परिजन अब सिर्फ उस पल को याद कर रहे हैं जब एक सफर जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। वहीं केरल के ही रहने वाले एसी थॉमस और लोवेनी थॉमस की मौत की पुष्टि की गई है। केरल सरकार विदेश मंत्रालय के संपर्क में है ताकि मृतकों के पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाया जा सके। एक टूरिस्ट ट्रिप जो यादों का सफर बनने निकली थी वो अचानक मातम में बदल गई। समंदर की एक लहर ने कई परिवारों से उनके अपने छीन लिए। अब सवाल सिर्फ हादसे का नहीं, सवाल ये भी है कि आखिर ऐसी पर्यटक नावों की सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है। वियतनाम से आई इस त्रासदी ने एक बार फिर समंदर में सुरक्षा इंतजामों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: और वक्त हो चला है छोटे से ब्रेकअप, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
5: व्हाटएवर यू आर इन द मूड फॉर, देयर्स ऑलवेज समथिंग टू लिसन टू ऑन ट्यून इन। म्यूजिक, न्यूज, स्पोर्ट्स, पॉडकास्ट्स एंड लाइव रेडियो फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, ऑल इन वन प्लेस। Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices, so you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.
3: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
6: क्या इथेनॉल से नुकसान हो रहा है सर गाड़ियों?
7: मारुति सुजुकी के पास एक भी कंप्लेन नहीं है, टोयोटो के पास एक भी कंप्लेन नहीं है। मुझे बदनाम करने के लिए और इथेनॉल को बदनाम करने के लिए प्रयास है।
6: नए नए एक्सप्रेस वे जो बन रहे हैं उनमें गड्ढे,
7: हमारे हाईवे में जितने गड्ढे हैं उसके ऊपर आप कार्यक्रम करिए और दिखा दीजिए।
8: When it's too hot to go out, it's definitely too hot for your AC to go out. The Waterworks Heating and Cooling Pros are here to help. We offer fast repair and AC replacement for any cooling system when you need it. Plus, we're a premier Linux dealer and can install an energy-efficient system for a great price. Call the Waterworks at 614-232-2222 or visit us online at thewaterworks.com. The Waterworks. Better care. Better value. Better results.
9: Hey, music lovers. Ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going. So you get more of today's hits. More country roads. Classic rock. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.
10: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
11: गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश
12: In association with
13: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
14: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
12: विमल बोलो जुबां केसरी हिंद बड़े आराम से
15: जो मिसिंग लिंक है उस पर जो लैंडस्लाइड हुआ था ये लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए के बाद उसको एक्सपेंड करने के बाद काफी सालों की मेहनत करने के बाद उसको वो सर्वे करेंगे और उसके बाद पता चलेगा कि डैमेज इस तरह का हादसा फिर से ना हो उसको रोकने की कोशिश करेंगे वो कैमरामैन महेश मोरे के साथ विद्या पुणे आज तक

0: नहीं थम रही रूस यूक्रेन जंग। कीव पर फिर रूसी हमला, 10 घायल। यूक्रेन ने भी तेल डिपो को बनाया निशाना। तबाही की ये तस्वीरें यूक्रेन की राजधानी कीव की हैं। चारों तरफ फैले धुएं और धूल के गुब्बार से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला कितना विनाशकारी था। बमबारी से इलाके की कई इमारतें पूरी तरह जमींदोज हो गईं और कई घंटों तक राहत दलों को बचाव अभियान चलाना पड़ा। रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर 12 मिसाइल और 120 ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इन हमलों में 11 लोग घायल हो गए, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। इन हमलों में रूस ने 6 इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, लेकिन एंटी मिसाइल सिस्टम लगातार कमजोर होने की वजह से यूक्रेन एक को भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। रूस के हमले कीव तक ही सीमित नहीं रहे। क्रामाटोर्स्क में रूसी एयर स्ट्राइक में 4 लोगों की जान चली गई और 9 लोग घायल हो गए। रूसी बमबारी से कई रिहायशी इमारतों में आग लग गई और लोगों को सुरक्षित निकलने का मौका ही नहीं मिला। यूक्रेन ने भी पलटवार करते हुए रूस के कई तेल डिपो पर हमला किया है। रूस के क्रास्नोडार की लिस्की रिफाइनरी में यूक्रेन के हमले से भयानक आग लग गई। अजोब के तेल डिपो पर भी हमले की वजह से रूस को भारी नुकसान हुआ है। जेलेंस्की इसे अपनी सेना की बड़ी जीत बता रहे हैं। उनका दावा है कि हजारों किलोमीटर दूर के रूसी ठिकानों को तबाह करके यूक्रेन ने साबित किया है कि लंबी दूरी की उनकी मिसाइलें और ड्रोन कितने घातक हैं।
1: Сьогодні наші далекобійні удари досягли кількох регіонів самої Росії, а також об'єктів на тимчасово окупованій території України. Я дякую нашим воїнам за влучність. Добре іде операція і Служба безпеки України по далекобійним санкціям. Будемо цей напрямок ще посилювати. У наших воїнів має бути значно більше можливостей досягати російських окупантів саме там, звідки вони в Україну несуть війну на території Росії.
0: अभी एक दिन पहले ही यूक्रेन ने क्रीमिया में रूसी तेल टैंकरों को बर्बाद कर दिया था। जुलाई के महीने में रूस और यूक्रेन की जंग और तेज हो गई है। रूस ने कीव पर 3 बार इतने भीषण हमले किए हैं कि कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इधर यूक्रेन रूस की मिसाइलों को ठिकाने पर पहुंचने से पहले नाकाम नहीं कर पा रहा है। जेलेंस्की लगातार यूरोप से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका एंटी मिसाइल सिस्टम दुरुस्त नहीं हो पाया है। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
3: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

युद्ध संकट के बीच सामने आएंगे मुज्तबा खामेनेई, मंगलवार को शहीदों के श्रद्धांजलि सभा में दिखेंगे। अमेरिका का 3 दिन में 300 ठिकानों पर हमला, ईरान का अमेरिकी बेसों पर पलटवार। विदेश मंत्रालय ने ओमान तट पर कमर्शियल जहाज जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की निंदा की। 10 भारतीयों को सुरक्षित बचाया गया, अब भी एक लापता। जम्मू कश्मीर ऑपरेशन लोटस पर संग्राम, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधायक को 20 से 30 करोड़ और मंत्री बनाने के ऑफर की कही बात। बीजेपी ने आरोपों को बताया झूठा, साथी मांगे सबूत। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वडिंग को हटाने पर अड़ा चन्नी गुट, रंधावा बोले नहीं चाहिए कॉम्प्रोमाइज लीडर। भूपेश बघेल से मुलाकात के बाद भी नहीं बनी बात, अब आला कमान के पाले में गेंद। और अयोध्या राम मंदिर में इवनिंग शिफ्ट में दान चोरी के खुलासे के बाद बदली गई गणना, कर्मचारियों की टाइमिंग अब सिर्फ सुबह 9 से शाम 6 बजे तक चढ़ावे की गिनती होगी।

और अब खबर राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस से जुड़ी हुई। इस मामले में कई अहम खुलासे हुए। एक तरफ यह पता चला है कि आरोपी तो रात को चोरियां करते थे। चोरी को लेकर पुलिस को उन्होंने अहम बयान दिए हैं। उन्होंने बताया कि कैसे सिर्फ इवनिंग शिफ्ट में ही वो चोरी करते थे। वहीं एक और खबर अहम ये भी है कि ट्रस्ट ने सीईओ की नियुक्ति की कोशिशें तेज कर दी है। और तीसरी बड़ी खबर है कि टिन्नू और सुभाष यादव से अयोध्या पुलिस ने पूछताछ की तैयारियां की हैं। तो अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस और एसआईटी की जांच के बीच में अहम खुलासा हुआ है। अब एक ही शिफ्ट में चढ़ावे की घटना के पीछे कई बड़ी वजह सामने आई। चढ़ावे की गिनती के पीछे की बड़ी वजह है, पता चला कि ज्यादातर दूसरे शिफ्ट में यानी कि जो शाम की इवनिंग शिफ्ट होती थी उसमें ये लोग गणना करते थे। और अब इसके सबूत भी मिल चुके हैं। पुलिस की जांच में साफ हुआ कि आरोपी दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे वाले शिफ्ट में ही ड्यूटी करते थे और वो लगातार इसी दरमियान चोरी की वारदातों को अंजाम देते, लगातार चोरी कर रहे थे और करोड़ों की उन्होंने चोरी भी करी। और सबसे ज्यादा चोरी अविनाश शुक्ला ने की है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है।

0: राम मंदिर के प्रांगण में मौजूद जिस कमरे में चढ़ावे की गिनती होती थी, वहां दो पालियों में काउंटिंग का काम होता था। दो शिफ्ट में अलग अलग स्टाफ थे, सभी की जिम्मेदारियां बटी हुई थी, सभी उसी हिसाब से अपनी भूमिका निभाते थे। उसी भूमिका में चढ़ावा चोरों का भी हिसाब किताब तय था। चढ़ावे की गिनती के लिए पहली शिफ्ट सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक होती थी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक थी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि चोरी की वारदात सिर्फ दूसरी शिफ्ट में ही हुई, यानी चढ़ावा चोरी की वारदात दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक की शिफ्ट में ही हुई। इससे एक बात यह भी साफ होता है कि चढ़ावा चोरी के सभी आरोपी उसी 2 से 9 वाली शिफ्ट में काम करते थे। दरअसल शाम की शिफ्ट में चोरी करना आरोपियों के लिए ज्यादा आसान था।
1: मंदिर चढ़ावा गिनती में दूसरी शिफ्ट के दौरान हुई और ये सभी चोरियां अनुकल्प मिश्रा अविनाश पांडे के साथ साथ लवकुश मिश्रा कर्णेश पांडे राम शंकर मिश्रा ने की है। सेकंड शिफ्ट चुनने की वजह भी सामने आ रही है। सेकंड शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक होती थी और ये वो वक्त होता था जब कैश लेकर बाहर निकलते समय ना सिर्फ निगरानी कम होती थी बल्कि इनके लिए कैश लेकर निकलना भी आसान हो जाता था। यही वजह है कि 40 दिन में हुई 70 बार चोरी सिर्फ सेकंड शिफ्ट में हुई। अब पुलिस की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है तो इस चोरी की परतें भी सामने आ रही हैं।
0: काउंटिंग की दूसरी शिफ्ट में चढ़ावा चोरी का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने 4 आरोपियों अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे से कड़ी पूछताछ की। हाल ही में पुलिस ने रिमांड लेकर इनसे सवाल जवाब किए। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 40 दिन में 70 बार चोरी की गई। सबसे ज्यादा 50 से अधिक बार चोरी अविनाश शुक्ला ने ही की थी। वो एक दिन में 2 बार चढ़ावा चोरी करता था। खुलासा ये भी हुआ कि अनुकल्प मिश्रा और अविनाश शुक्ला हर बार चोरी में एक दूसरे की मदद करते थे। जिन 40 दिनों का रिकॉर्ड पुलिस ने खंगाला है उसमें से 5 दिन ऐसे भी रहे जब एक ही दिन में चढ़ावा चोरों ने 3-3 बार चोरी की। पुलिस की जांच में ये सच सामने आने के बाद ही राम मंदिर ट्रस्ट ने चढ़ावे की गिनती अब सिर्फ एक ही शिफ्ट में करने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत अब सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चढ़ावे की गिनती शुरू कर दी गई है। इस फैसले के बाद काउंटिंग में लगे कुछ स्टाफ ने काम छोड़ दिया है। तमाम खुलासों के बीच अयोध्या पुलिस रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव से फिर पूछताछ की तैयारी में है। पुलिस ने दोनों की 7 दिनों की कस्टडी मांगी है। पुलिस की याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई की उम्मीद है। संतोष कुमार शर्मा, अयोध्या आज तक।
2: उधर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सीईओ पद के लिए गठित सर्च कमेटी की पहली बैठक भी हुई है। शनिवार को भी बैठक में सीईओ पद के लिए मानदंड भी तय किया गया है। यह फैसला किया गया है कि आवेदक को हिंदू धर्म से होना चाहिए, उसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन या फाइनेंस में 20 सालों का उसका एक्सपीरियंस अनुभव होना चाहिए। अहम फैसला ये कि टेम्पल मैनेजमेंट का अनुभव, मंदिर में मैनेजमेंट का प्रबंधन का अनुभव रखने वाले व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। 18 जुलाई तक सीईओ के लिए आवेदन भी मंगाए गए। शुरुआत में 3 साल के लिए सीईओ की नियुक्ति होगी और नियुक्त सीईओ को अयोध्या में ही रहना पड़ेगा। 1 महीने में सीईओ के चयन की प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश है।
3: वास्तविकता तो यह है कि मैं नहीं जानता हूं कि 18 जुलाई की कोई तारीख है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। और यह कार्य तो 3 सदस्यीय समिति है, वो करेगी। तो वो तो जो ट्रस्ट होगा उसके अधीन ही सीईओ होगा, वो स्वतंत्र नहीं है, वो ट्रस्ट के अधीन कार्य करेगा। तो जैसे आज इतने सारे लोग कार्य कर रहे हैं, इंजीनियर कार्य कर रहे हैं, वैसे ही सीईओ भी कार्य करेगा।
2: तो ट्रस्ट में सीईओ की तलाश है, लेकिन क्या ये तलाश वो दाग धो देगी जो दाग खुद ट्रस्ट पर लगे? क्योंकि ट्रस्ट पर क्या वाकई ट्रस्ट कर रहे हैं लोग, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि चोरी हुई है, बहुत बड़ी चोरी हुई है और उसमें लगातार खुलासे भी हो रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता संतोष शर्मा भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। संतोष, अब जो नए खुलासे हुए हैं, मतलब इवनिंग शिफ्ट का ही चयन क्यों करते थे चोर? तो सुबह ये लोग, क्योंकि सिस्टम इनके हाथ में था, कोई देख नहीं रहा था, मतलब ये तो सुबह भी चोरी कर सकते थे, लेकिन इवनिंग में ही चोरी करने के पीछे की प्लानिंग क्यों थी?
1: देखिए, चोर के लिए चाहे जितना सपोर्टिव सिस्टम हो, लेकिन

0: था ही शुरू से, कोई चेकिंग पहले भी नहीं होती थी, और रात के अंधेरे में तो भगवान ही मालिक होता था। तो ये रात में बहुत मुफीद होता था उस कैश को निकालना, और यही वजह थी कि सेकंड शिफ्ट में जो 2 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक सेकंड शिफ्ट चलती थी, उसी में ये चोरियां हुई। और उस चोरी की पुष्टि एसआईटी की रिपोर्ट में कि 40 दिन में 70 बार ये चोरियां हुई, और सबसे बड़ी बात कि सबसे ज्यादा 50 से अधिक बार ये अविनाश जो मुख्य आरोपी है जिसके पास से 20 लाख रुपए मिले, ये सबसे ज्यादा बार चोरी करते दिखाई पड़ा है। एसआईटी ने जो सीसीटीवी खंगाले हैं, उसके मदद करता था अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा भी हाथ साफ किया। तो ये तमाम चीजें हैं जो इन सारे लोगों ने, सेकंड शिफ्ट के लोग थे, गोलबंदी करके, एकजुट होकर, गैंग बना करके, और ये सिर्फ चोरी हो रही थी।
1: इनके तो आरोप सामने आ ही रहे हैं, बहुत बड़े खुलासे में संतोष हो रहा है, लेकिन ट्रस्ट का कौन सा सदस्य इनका सपोर्ट कर रहा था, कौन मदद पहुंचा रहा था, क्या उसका नाम अब तक सामने नहीं आया, क्या उसका जिक्र ही नहीं हो रहा कहीं भी?
0: देखिए, रमाशंकर यादव, टिन्नू यादव, इसके पास जो कैश बॉक्स था उसकी चाबी होती थी, लॉक डबल की लॉक था, उसमें एक चाबी टिन्नू यादव के पास और एक चाबी बैंक कर्मी के पास। तो कोई भी कैश बॉक्स जो दान पेटी होती थी, डोनेशन बॉक्स, वो खुलता तभी था जब दोनों की चाबी मिलती थी। इसीलिए रामशंकर यादव, टिन्नू यादव जेल में है। सुभाष चंद्र है, इनके ऊपर निगरानी की जिम्मेदारी थी, तो निगरानी की जिम्मेदारी थी, चोरी में शामिल, ये चोरी करते नहीं पकड़े गए ये अलग बात है, लेकिन चोरी हुई इनकी निगरानी में, तो इसका मतलब कि पुलिस ने भी इनको माना, इनके पास से रिकवरी कुछ नहीं हुई, लेकिन पुलिस ने इनकी लापरवाही चाहे कह लीजिए, और चाहे कह लीजिए कि इनकी मंशा से, यही पुलिस जांच कर रही है कि रामशंकर यादव के पास से, तो टिन्नू यादव के पास से 1 लाख रुपए मिला भी, कैश मिला उसके पास, और उसका भतीजा मनीष यादव उसके पास से 3 लाख रुपए मिले। तो आप समझिए कि ये सारे लोग मिले हुए थे, और
1: जिसमें तो कोई दो राय है नहीं। संतोष, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तमाम सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाते हुए कल ये कहा कि सदैव भारत की विरासत और आस्था को इन्होंने अपमानित किया है।
2: समाजवादी पार्टी के बारे में तो कहना ही क्या है, इनका तो इतिहास राम भक्तों के खून से सना हुआ है। इन्होंने भारत की विरासत का अपमान किया है, भारत की आस्था को सदैव अपमानित करने का कार्य किया है। याद करिए कैसे लोग, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, कैसे दंगे होते थे, पर्व और त्योहारों को कैसे लोग प्रतिबंधित करते थे, कैसे कांवड़ यात्रा को रोकते थे, कैसे भारत की आस्था को अपमानित करने का काम करते थे। लेकिन आज जब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में विरासत का भी सम्मान कर रही है और विकास के कार्यों को द्रुत गति से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को पचा नहीं पा रही है।
1: उधर चढ़ावा चोरी को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाने वाले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी बीजेपी ने पलटवार किया है। दिल्ली बीजेपी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर गंभीर आरोप लगाया। पार्टी ने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया कि पंजाब के आगामी चुनाव में हार देखकर वो चुनावी हिंदू बनने की नौटंकी कर रहे हैं। तो ये साथ साथ में एक कटाक्ष करता हुआ एक पोस्ट भी है, और उसमें अरविंद केजरीवाल की उन्होंने तस्वीर लगाई है। फिल्म में जो एक पात्र है उसमें अरविंद केजरीवाल को एक तरीके से दिखाया गया है, और चुनावी हिंदू अरविंद केजरीवाल को बताया गया है, और कहा कि वो जो अब राजनीति कर रहे हैं, हिंदू की बात करें, दरअसल वो हैं तो हिंदू विरोधी, लेकिन पंजाब में चुनाव जीतना चाह रहे हैं इसलिए हिंदू बन रहे हैं।
3: अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं, और ये हम पहली बार नहीं बोल रहे, जब जब चुनाव आते हैं अरविंद केजरीवाल के जो कर्म होते हैं वो प्रूफ कर देते हैं कि वो चुनावी हिंदू हैं। आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसको लेके हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे। ये सब दिखाता है कि चूंकि वहां उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं, इसलिए आज अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग चुनावी हिंदू बनकर हिंदू बनने का एक स्वांग रच रहा है।
1: बीजेपी के आरोपों के बाद अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि चढ़ावा चोरी के आरोपियों को बचाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि चढ़ावा चोरी को लेकर छोटी मोटी जांच की जा रही है, छोटी मोटी जांच चल रही है बस।

0: तो हमलावर अरविंद केजरीवाल भी हैं और वो कह रहे हैं कि चढ़ावा चोरी पर ये जो जांच चल रही है वो छोटी मोटी है क्योंकि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है।
1: लेकिन पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम ये दिखाता है कि सारे प्रयास किए जा रहे हैं चोरों को बचाने के, डकैतों को बचाने के, जमीनों के जो घोटाला हुआ उस पर तो जांच ही नहीं चल रही, नन मंदिर निर्माण में जो कमीशन खोली हुई इस पर तो जांच ही नहीं चल रही, चढ़ावे के चोरी को लेके कुछ एक छोटी मोटी जांच, एक फर्जी SIT बना दी गई, एक फर्जी FIR लिख दी गई, तो लोगों को भरोसा नहीं रहा प्रधानमंत्री जी कुछ करेंगे। तो आज सुंदरकांड का पाठ किया गया और सभी राम भक्तों ने यह शपथ खाई है कि जब तक इन डकैतों को, इन चोरों को सख्त से सख्त सजा नहीं दिलवा देंगे, इनको सरेआम फांसी पे नहीं चढ़वा देंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे।
0: राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ी एक फिल्म भी आ रही है और इस फिल्म में राम मंदिर आंदोलन की पूरी कहानी है। इसमें अनुपम खेर VHP नेता अशोक सिंघल की भूमिका में है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर अनुपम खेर से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चोरी करने वालों को सजा मिलेगी।
2: इसकी जो प्रतिष्ठा है टेम्पल की खराब हो गई, मेरा सिर्फ उसमें मुझे इशू है कि कैसे खराब हो गई। जो चोर है वो तो चोर ही है और उसको पकड़ा जाएगा, वो या पकड़े जाएंगे फिर उनको सजा भी होगी। बट वाई आर वी सॉर्ट ऑफ थिंकिंग ओ माई गॉड राम मंदिर में चोरी हो गई। ऑफकोर्स हो सकती है, जिनकी इच्छा शक्ति चोरी करने की है, जिनके जिनका जहन ऐसा है, जिनके विचार ऐसे हैं, वो चोरी करने से नहीं कतराते हैं। उनके अंदर कोई मानवता नाम की चीज़ नहीं है। और ऑफ कोर्स देयर इज अ कलर बीइंग गिवन टू इट। माय पॉइंट इज दैट आवर टेंपल्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड फॉर सो मेनी इयर्स, वेदर इट्स इन कश्मीर, सोमनाथ, वी वर रूल्ड फॉर 800 इयर्स बाय मुगल्स, दे डिस्ट्रॉयड ईच एंड एवरी टेंपल। ये तो चोरी है, होनी नहीं चाहिए और सजा मिलनी चाहिए जो भी पकड़ा जाएगा। मगर मेरे खुद के कश्मीर में हर टेंपल तोड़ा गया है, हर टेंपल की स्थापना दोबारा की गई है। सो व्हाट आर द पीपल ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ ट्राइंग टू से, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट।
0: अब अगली खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य का दर्जा मांगते हुए बीजेपी और केंद्र सरकार को फिर घेरा है। उन्होंने ट्रंप का जिक्र करके तंज कसा है।
3: असेंबली से नहीं मिलेगा, ठीक, फिर हमने सड़कों पर बात करना शुरू किया, फिर कहते थे अब आपको जम्मू कश्मीर में बात करके ये मिलेगा नहीं, ठीक, अब हम जंतर मंतर जा रहे हैं, अब ये हमें कहते हैं ना जंतर मंतर से आपको रियासत का दर्जा नहीं मिलेगा। खुदा रा फिर ये बीजेपी वाले बताएं ना मुझे, क्या ट्रंप के पास जाना पड़ेगा व्हाइट हाउस में अमेरिका रियासत का दर्जा लेने के लिए? अगर मुझे अपने मुल्क के राजधानी में जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा की बहाली नहीं मिलेगी तो कहिए हम लोग टिकट करेंगे, हम अमेरिका जाके ट्रंप साहब के घर के बाहर एहतजाज करके वहां से स्टेटहुड मांग लेंगे, दे दीजिए। अगर हमारी तार वहां से बजती है तो बताओ, क्योंकि हमने तो नहीं सोचा था कहीं और जाने का। आप लोग कह रहे हो कि जंतर मंतर से नहीं मिलेगा, आप लोग कह रहे हो कि पार्लियामेंट के पहले दिन एहतजाज करने से नहीं मिलेगा, हैरानगी की बात है।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर गंभीर भी आरोप लगाए। उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त में लगी हुई है। उन्होंने दावा करते हुए बताया कि हमारे MLA को 20 से 30 करोड़ रुपए और मंत्री पद का लालच दिया गया था।
4: क्या कुछ नहीं सीखा आपने? तुम्हारा नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और आज जहां के पैसों की लालच नहीं चली, जहां की मिनिस्ट्रियों की लालच नहीं चली, वहां आप बंद कमरे में मेरे MLA को कह रहे हो आओ हमारे साथ
3: आप जब आओगे तो हम आपको रियासत देंगे। अल्लाह गवाह है, अगर मेरे जम्मू के एक एमएलए ने मुझे कमरे में आके ये बात नहीं कही हो। सुप्रीम कोर्ट का बीजेपी का एक अहदेदार, सुप्रीम कोर्ट का वकील, बीजेपी का अहदेदार मेरे एक जम्मू के एमएलए को बंद कमरे में कहता है, हम 20 से 30 करोड़ एक मिनिस्ट्री और रियासत का दर्जा, आप हमारे साथ चलो। उनको लगता है कि इन लोगों का ईमान इतना सस्ता है। देखिए यहां स्टेज पे एक भी आपको नजर नहीं आएगा जो 20 करोड़ में क्या 100 करोड़ में अपनी ईमान बेचने के लिए बता रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं।
0: उमर अब्दुल्ला के ऐसे गंभीर आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया और पार्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास अगर इन आरोपों को लेकर कोई सबूत है तो वो दे दें, नहीं तो उनको माफी मांगनी होगी।
5: वास्तविकता ये है कि जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार की अक्षमता, अकर्मण्यता और कुशासन को छिपाने के लिए और इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार का अनर्गल आरोप जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी ने लगाया है, हम इसकी कठोर निंदा करते हैं और यही बात हम उनसे कहते हैं कि या तो वे इस विषय का साक्ष्य रखें अथवा वो अपने बयान के लिए माफी मांगें।
0: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
6: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
9: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?

0: दतिया में टिकट को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा ऐसा फूटा कि वो अपनी ही सरकार की पुलिस से भिड़ गए। मध्य प्रदेश के दतिया में 30 जुलाई को उपचुनाव है। बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। दतिया से आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाने की घोषणा होते ही नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। नेशनल हाईवे पर जाम लग गया, घंटों तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही, पुलिस पर पथराव हुए और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।
1: मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए, पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं, ऐसा कोई कार्य न करे।
0: आखिर दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्यों कटा? बताया जा रहा है कि दिल्ली के स्तर पर कराए गए सर्वे में नरोत्तम मिश्रा की स्थिति उम्मीद के मुताबिक मजबूत नहीं पाई गई। 2023 में बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिया था, लेकिन वो विधानसभा का चुनाव हार गए। केंद्रीय नेतृत्व ने स्थानीय संगठन और भविष्य की राजनीति स्वीकारता का भी आकलन कराया। इसमें नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी फिट बैठे, जिसके बाद उन्हें दतिया से टिकट दिया गया। बीजेपी ने एक ब्राह्मण नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर दूसरे ब्राह्मण आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है। इससे जातिगत और सामाजिक संतुलन बरकरार है। उधर पार्टी का संदेश साफ है कि बीजेपी हाईकमान फिलहाल झुकने के मूड में नहीं है।
2: पार्टी इस प्रकार के सोच समझ के निर्णय लेती है और इससे हम डंके की चोट जीतेंगे और नरोत्तम जी भी काम करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं नरोत्तम जी को जानता हूँ व्यक्तिगत।
3: नरोत्तम जी मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता, तो उनको कट्टू साइज तो करनी था, कर दिया।
0: दतिया में अब लड़ाई बीजेपी के सामने अपनों से है, जहां अभी तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। भोपाल से रवीश पाल के साथ आज तक ब्यूरो।

0: क्या इथेनॉल से नुकसान हो रहा है सर गाड़ियों?
1: मारुति सुजुकी के पास एक भी कंप्लेंट नहीं है, टोयोटा के पास एक भी कंप्लेंट नहीं है। मुझे बदनाम करने के लिए और इथेनॉल को बदनाम करने के लिए प्रयास है।
0: नए नए एक्सप्रेस वे जो बन रहे हैं उनमें गड्ढे,
1: ये हमारे हाईवे में जितने गड्ढे हैं उसके ऊपर आप कार्यक्रम करिए और दिखा दीजिए।
2: Catch up on what's hot with TikTok Radio, curated by Stingray Music. Your destination for trending hits and must-see videos. Stay in the loop one viral moment at a time. TikTok Radio, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
3: चढ़ावा चोरी के गंभीर आरोपों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे सामने आते जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से अब सामने आया है कि मंदिर में काम करने वाले कुछ पूर्व सैनिकों पर कुछ भी बोलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके लिए बकायदा सभी पूर्व सैनिकों को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा गया था। कहा गया था कि कोई कुछ भी पूछे बोलना नहीं है। जिस मैसेज पर सवाल उठ रहे हैं उस मैसेज का स्क्रीनशॉट भी आज तक के पास मौजूद है। इसे साफ है कि चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद मामले को छिपाने की कोशिश की गई। इधर अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के दो और आरोपियों को पुलिस जल्द ही रिमांड पर लेगी। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव से पुलिस पूछताछ करेगी। टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र की 7 दिनों की कस्टडी मांगी है।
4: अयोध्या पुलिस ने अब रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में 7 दिन की अर्जी डाली है। इन दोनों की पुलिस कस्टडी रिमांड बेहद अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि जहां रामशंकर यादव के पास डोनेशन बॉक्स की चाबियां होती थी, वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र उस कमरे के इंचार्ज थे जहां से चढ़ावा चोरी हो रहा था। ऐसे में इन दोनों से की गई पूछताछ से पुलिस पता लगाने की कोशिश में लगी है कि आखिर यह चोरी हो रही थी तो उनके संज्ञान में क्यों नहीं आई, पकड़ी भी गई तो क्यों उन पर कार्रवाई नहीं हुई।
3: इस बीच राम मंदिर में चढ़ावे की गणना के लिए नया टाइम टेबल लागू कर दिया गया है। पहले 2 पालियों में होने वाली गिनती अब एक ही शिफ्ट में की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चढ़ावे की गिनती होगी। नई समय सारणी लागू होने के बाद कुछ गणना कर्मियों ने काम छोड़ दिया है। उधर राम मंदिर में VIP पास की प्रक्रिया भी रोकी गई क्योंकि जिन लोगों की ID का इस्तेमाल इस काम के लिए किया गया था उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में जारी घटनाक्रम के बीच गोपाल राव ने निर्मोही अखाड़ा पहुंचकर ट्रस्टी महंत दीनेन्द्र दास से मुलाकात की। दोनों के बीच बंद कमरे में काफी देर तक एकांत में चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में ट्रस्ट से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। इस मुलाकात में ट्रस्ट के भीतर चल रहे विवादों के बीच डैमेज कंट्रोल की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हालांकि बैठक में इस चर्चा के संबंध में आधिकारिक रूप से कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। अयोध्या से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
5: सर, इस फैसले को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि मान के तो चला जा रहा था कि आप ही इकलौते उम्मीदवार हैं वहां से भाजपा के।
6: पार्टी का फैसला जो होता है वो ठीक ही होता है, उसको अच्छे रूप में ही लेना चाहिए, खराब रूप में नहीं लेना चाहिए, ऐसा मेरी मान्यता है।
5: आप के तो सकारात्मक भाव है लेकिन आपके जो समर्थक थे जो महीनों से इंतजार कर रहे थे कि जो प्रकरण आया राजन भारती का, मामला कोर्ट में गया, फिर वहां से विधाई की गई, सदस्यता गई, सबको उम्मीद थी लेकिन जब ये फैसला आया तो उनका गुस्सा साफ तौर पर सामने मिला। हाईवे जाम हो गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ हो गई, पथराव हो गया।
6: छड़े का आवेश था, मैंने कल भी फिर उनसे निवेदन किया था, आज भी किया मैंने। जी, जाम वाम की स्थिति नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ता वो पेट्रोल डाल रहे थे, वो मुझे दिखाए विजुअल फुटेज, पट्टी का तेल डालते हुए का। धैर्य और संयम का समय यही होता है, यही परीक्षा की घड़ी होती है।
5: आप भोपाल जा रहे हैं तो भोपाल में कोई कार्यक्रम आला नेताओं से आपकी मुलाकात है क्या, प्रदेश अध्यक्ष से या मुख्यमंत्री से या किसी से?
6: अभी तो होगी तो बताऊंगा निश्चित। आप
5: आशुतोष तिवारी को आशीर्वाद रहेगा आपका?
6: सभी को क्यों नहीं रहेगा, कैसी बात कर रहे हैं।
5: हालांकि कैलाश जी ने कहा है कि वो बहुत अच्छे से जानते हैं आपको, उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूं नरोत्तम जी को, पार्टी के फैसले को हमेशा से स्वीकार करते हैं और हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहे हैं।
6: बिल्कुल सही कहा, मैं सहमत हूँ।
5: आपके लिए भावुक क्षण है?
6: नहीं, राजनीति में ये सब चलने वाली चीज है।
5: लेकिन एक आखिरी सवाल नरोत्तम जी, चुनाव हुआ 2023 का, फिर लोकसभा आया, फिर राज्यसभा चुनाव आए, फिर कई दूसरी जिम्मेदारियां भी थी, हालांकि न्यू ज्वाइनिंग टोली का आपको संयोजक बनाया गया था, तब काफी लोग जुड़ के आए थे कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में, अब तो भाजपा में
6: लगातार लोकसभा राज्यसभा अध्यक्ष जो भी आप बात कर रहे हैं, ये अंतर्मुखी होकर स्वयं के चिंतन के लिए पार्टी अवसर दे रही है, हमें चिंतन करना भी चाहिए, अच्छी बात है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर

आपस में ही हाथ आजमाते दिख रहे हैं कांग्रेसी। प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग को हटाने पर अड़ा चन्नी गुट। रंधावा ने बताया कॉम्प्रोमाइज लीडर आलाकमान के दरबार पहुंचा ये झगड़ा।

0: जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने लगाया था आरोप, हमारे विधायकों को खरीदने की हो रही है साजिश। बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा के गिनाए 10 फायदे, कहा इंडो पैसिफिक में भारत बना रहा है बड़ी ताकत, वैश्विक साझेदारी को मिल रही है बड़ी मजबूती, कांग्रेस ने किया कटाक्ष। ओमान तट के पास कमर्शियल शिप पर बड़ा हमला, 10 भारतीयों को बचाया गया, एक भारतीय अब भी लापता, विदेश मंत्रालय ने की निंदा, पूरे मामले पर नई दिल्ली की नजर। अमेरिकी हमलों के नई किश्त के बीच दुनिया के सामने आएंगे मुश्तबा खामनेई, मंगलवार को करेंगे सभा में शिरकत, अटैक में मारे गए लोगों को देंगे श्रद्धांजलि, अमेरिका ने जारी किया भयानक बमबारी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सो गुड।
0: नमस्कार, रणभूमि स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। 3 दिन और 300 से ज्यादा हमले, ऐसा लगता है कि अब ट्रंप ने इसे अपनी नाक की लड़ाई बना दिया, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस जंग में जितनी जग हसाई ट्रंप की हुई है आज तक किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की नहीं हुई है। वहीं ईरान के भी हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो गए कि ईरान अब न्यूक्लियर बम के प्रकोप से भी डरने की बजाय अब बड़ी लड़ाई लड़ने की बात कह रहा है। वहीं 5 महीने में पहली बार ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई दुनिया के सामने आने वाले हैं। माना जा रहा है, जानकार बता रहे हैं कि शायद इसी के साथ किसी नई जंग का ऐलान भी वो कर सकते हैं। आज रणभूमि पर इस बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि रणभूमि स्पेशल में आपके लिए कौन सी बड़ी खबरें आपके सामने होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे रणभूमि स्पेशल में ईरान और अमेरिका में फिर से महायुद्ध शुरू हो गया है। अमेरिका ने आज ईरान के 140 ठिकानों पर हमले का दावा किया है। रणभूमि स्पेशल में दूसरी बड़ी खबर, हम आपको बताएंगे कि अमेरिका ने पिछले 5 दिनों में ईरान पर 3 बार हमले बोले हैं, जिसमें कुल मिलाकर 310 से ज्यादा मिसाइलें से अलग अलग ठिकानों पर अटैक किया गया है। रणभूमि स्पेशल में तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि हॉर्मूज पर वर्चस्व की लड़ाई और ये जंग कहां जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिका भी अपनी ताकत दिखाकर इस इलाके को अपने हाथ में लेना चाहता है। रणभूमि स्पेशल में चौथी खबर हम आपको हैरान करने वाली है, क्योंकि ईरानी मीडिया का दावा है कि मंगलवार को ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई 28 फरवरी के बाद पहली बार दुनिया के सामने आने वाले हैं। वहीं रणभूमि स्पेशल में आखिरी खबर हम आपको वियतनाम से भी दिखाएंगे, वो घटना दिखाएंगे जिसमें 15 भारतीयों की जान चली गई है, उसको लेकर भी आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। और रणभूमि स्पेशल में आज हमारे साथ 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े होंगे, मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन सर हमारे साथ होंगे और मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवा सर भी हमारे साथ जुड़े होंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं उस खबर की, यानी अमेरिका और ईरान के भीषण बमबारी को लेकर। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध इतना ज्यादा भीषण होता जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर ईरान के कई शहरों में ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक्स की गई है। अमेरिका ने ईरान के कई बंदरगाह पर बम भी बरसाए, जिसके बाद जवाब में ईरान ने कतर बहरीन समेत कई खाड़ी देशों पर एक बार फिर से अटैक करने शुरू कर दिए, और खास तौर पर अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर। दोनों देशों के बीच युद्ध विराम पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, और अब तो दोनों देश के नेता इसका ऐलान भी कर चुके हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर 5 से ज्यादा देशों में बमबारी हो चुकी है और महायुद्ध तेज होने के आसार बन गए हैं।

0: टूटा युद्ध विराम, शुरू हो गया भयंकर घमासान। ईरान के कई शहरों पर अमेरिका के विनाशकारी प्रहार, ईरान ने कई खाड़ी देशों पर बरसाए बम, हॉर्मुज पर ईरान की तालाबंदी, कीमतों में फिर लगेगी आग। आखिर जिसका डर था वही हुआ, धीरे धीरे टूटता युद्ध विराम अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। एक के बाद एक मिसाइल छोड़ी जा रही है, कई शहरों में सायरन की आवाज गूंज रही है जो हमलों का संदेश देने के साथ साथ युद्ध फिर से शुरू होने का ऐलान कर रही है। अमेरिकी मिसाइलों ने हफ्ते भर में तीसरी बार ईरान पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। ड्रोन और मिसाइलों के जखीरे ने एक बार फिर तबाही का तांडव मचाना शुरू कर दिया है। अमेरिका का दावा है कि इस बार करीब 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इनमें मिसाइल और ड्रोन साइट, नेवी के ठिकाने, गोला बारूद भंडार, संचार नेटवर्क और तटीय निगरानी केंद्र शामिल हैं। जिन ईरानी शहरों को निशाना बनाया गया उनमें न्यूक्लियर सिटी बुशहर समेत असालुये, बंदर एतेयर, जास्क और चाबहार के सैन्य ठिकाने शामिल हैं। अमेरिका हॉर्मुज में लगातार हो रहे हमलों से गुस्से में है और उसने पहले ही ईरान को ताबड़तोड़ हमलों की चेतावनी दी थी। पिछले तीन दिनों में ईरान के 300 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। खैर, ईरान को भी जवाब देना ही था, लिहाजा उसने भी कई खाड़ी देशों में बने अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों के जरिए बम बरसाने शुरू कर दिए। कतर में अमेरिका के अलुदीद एयरबेस पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से हुए हमले में जंगी जहाजों के मेंटेनेंस और रिपेयर सेंटर के साथ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया है। कतर में ईरानी हमले को नाकाम करने के दौरान मलबा गिरने से 3 लोग घायल हो गए। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने भी मिसाइलों का मोर्चा मध्य पूर्व की ओर खोल दिया है। कतर के अलावा जॉर्डन, कुवैत, बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी ईरान ने निशाना बनाया है। साथ ही यूएई पर भी ईरान की ओर से मिसाइल दागी गई है। बहरीन में लगातार सायरन बज रहे हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी जा रही है। ईरान अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले करने के साथ साथ बयानों में भी आक्रामक होता जा रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई ने अपने पिता अली खामेनेई की मौत का बदला लेने का ऐलान कर दिया है, जिससे अमेरिका और ईरान के बीच घमासान और तेज होने की आशंका बढ़ गई है। अमेरिका के साथ बातों मुलाकातों के दौर में ईरान की ओर से अहम किरदार निभाने वाले मोहम्मद बागेर गालिबाफ के सुर भी तल्ख हो गए। उन्होंने लिखा कि एक तरफा समझौतों का दौर खत्म हो चुका है, हमने पहले ही कहा था, या तो अपना वादा निभाइए या फिर इसकी कीमत चुकाइए, अब हकीकत सामने है। गालिबाफ ने अपने पोस्ट के साथ समझौते की तस्वीर भी साझा की है, जिसमें हॉर्मुज को दोबारा खोलने और वहां व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी ईरान की बताई गई है। खैर, अमेरिका तो जो नुकसान ईरान का कर रहा है वो दुनिया देख ही रही है, लेकिन ईरान के जबरदस्त पलटवार से ट्रंप के बार बार किए जा रहे इन दावों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने ईरानी की पूरी सैन्य ताकत का खात्मा कर दिया है।
1: I think the third regime is more reasonable, but we'll find out. But we've destroyed their, as you know, completely destroyed 150. They had 159 ships. Every single ship is at the bottom of the sea. We've completely destroyed. They don't have one airplane. They don't have radar.
0: सीज़फ़ायर के दौरान ईरान ने अपने एंटी-मिसाइल सिस्टम को दुरुस्त किया और मिसाइल लॉन्चर्स को मजबूत किया। ईरान की ये तैयारी खाड़ी देशों पर किए गए हमलों में साफ दिखाई दे रही है। तांडव की इन तस्वीरों से इतना तो साफ है कि महायुद्ध पार्ट 2 और विनाशकारी होने जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
2: और महायुद्ध की खबरों में आगे बढ़े, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि युद्ध शुरू होने से यानी 28 फरवरी के बाद पहली बार नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। ईरानी मीडिया फास्ट न्यूज के मुताबिक मुज्तबा खामेनेई 14 जुलाई को तेहरान में आयोजित होने वाले श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक सर्वोच्च नेता मंगलवार को तेहरान के मुसल्ला ग्रैंड मुसल्ला की मस्जिद में शामिल होंगे। और आपको यह भी बता दें, ये वही मस्जिद या मुसल्ला है जहां पर मुस्तफा खामनेई के पिता यानी आयतुल्लाह अली खामनेई के पार्थिव शरीर को रखा गया था और यहीं पर बड़ा आयोजन किया गया था। मुस्तफा खामनेई के कार्यक्रम में इस संबंध में बयान जारी किया गया है। आपको बता दें कि पिता आयतुल्लाह अली खामनेई के जनाजे में मुस्तफा खामनेई इसलिए शामिल नहीं हो पाए थे क्योंकि उनकी सुरक्षा को लेकर कड़े इनपुट मिले थे, जिसके बाद उनके आने की आशंका खत्म हो गई थी। लेकिन अब 14 जुलाई को पहली बार मुस्तफा खामनेई सामने आने वाले हैं। और आइए आपको बताते हैं कि बड़ी स्क्रीन पर आपको ले चलते हैं, आपको बताते हैं कि पिछले 5 दिनों में अमेरिका ने ईरान के कितनी बार कितने ठिकानों पर हमले किया, क्योंकि ये आप जान लीजिए कि एक बार फिर से ईरान ने करीबन 3 दिनों में 310 से ज्यादा टारगेट्स को अचीव किया। जी हां, 5 दिन 3 हमले और 310 से ज्यादा ठिकानों। सबसे पहले अगर आप देखें 17 जून को जब दोनों के बीच में MOU साइन हो गया था, तो फिर कब दोनों के बीच में लड़ाई हुई। सबसे पहले 7 जुलाई की बात कर लीजिए, ईरान के 80 ठिकानों पर एक बार फिर से अमेरिका ने हमला किया। 7 जुलाई को ही एयर डिफेंस सिस्टम्स, कंट्रोल सिस्टम्स और रेडार साइट्स को टारगेट किया गया। और अमेरिका का कहना था कि हमने ये इसलिए किया क्योंकि ईरान ने हाल ही में कई ऑयल टैंकर्स पर अटैक किया था। आईआरजीसी ने कहा कि देखिए 60 से ज्यादा स्पीड बोट्स पर भी टारगेट किए गए थे और ईरान के 90 ठिकानों पर यूएस ने अटैक किया। ये 9 जुलाई का आंकड़ा है, दरअसल 7 जुलाई उसके बाद 9 जुलाई और उसके बाद आप देखिए कि बुशेर चाबार और बंदर अब्बास पर भी मिसाइल से हमले किए गए। और देखिए 14 लोगों के मारे जाने का अपडेट भी 9 जुलाई की इस घटना में सामने आया था। उसके बाद 12 जुलाई को यानी तीसरा दिन 12 जुलाई को ईरान के 140 ठिकानों पर हमले किए गए, 140 ठिकानों पर। और आप देखिए शहर वही है, बुशेर का इलाका हो, जस का इलाका हो, चाबार का इलाका हो, और ये सारे बंदरगाह के वो इलाके हैं जहां पर अटैक किए गए। दरअसल रह रहकर अब अमेरिका सिर्फ और सिर्फ उनके जो आप कह सकते हैं जो उनका कोस्टल एरिया है उस पर अटैक किया जा रहा। अब अमेरिकी निशाने पर ईरानी टारगेट, ईरान के 140 ठिकानों पर अटैक किए गए। और ये हम आपको इसलिए बता रहे ताकि आप समझिए कि अब युद्ध और ज्यादा भीषण होता जा रहा है। स्पेसिफिक जगहों पर टारगेट किए जा रहे, ईरानी मिसाइलों और ड्रोन अड्डों पर अटैक किए गए, उनके कंट्रोल और कमांड सेंटर पर अटैक किए गए, नौसैनिक क्षमता को वाले बेसिस पर भी अटैक किए जा रहे हैं जो कोस्टल एरियाज में मौजूद है, ताकि गोला बारूद और भंडार केंद्र पर भी अटैक किए जा रहे हैं। और ये सारे अटैक कोशिश ये की जा रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक किसी भी तरीके से ईरान की पकड़ मजबूत हो या कमजोर हो, और संचार नेटवर्क पर भी अटैक किए जा रहे हैं ताकि कम से कम जो वहां पर माइनिंग डी माइनिंग का काम है वो सुरक्षित तरीके से अमेरिका कर सके। और इसी वजह से ईरान को कमजोर करने के लिए कोस्टल एरियाज पर जो उनके तटीय निगरानी केंद्र हैं, जो सर्वेलेंस सेंटर्स हैं, उन पर भी अटैक किए जा रहे हैं। अब आपने ये तो देख लिया कि आखिरकार अटैक कितने किए गए, कहां कहां किए गए, लेकिन अब वो कोस्टल एरियाज कौन कौन से, ये भी मैं आपको बड़े मैप पर दिखाकर समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप देखें, ये है ईरान का पूरा कोस्टल एरिया जो करीबन 2450 किलोमीटर का है, ये देखिए 2500। और इस पूरे इलाके के अंदर मुख्य रूप से 8 या 9 बेसेस ईरान के ऐसे कोस्टल एरियाज हैं, पोर्ट्स हैं जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और 3 ऊपर की तरफ है, यानी आप माने कि करीबन 12 से 13। लेकिन अमेरिका का स्पेसिफिक टारगेट इन इलाकों में हो रहा है। सबसे पहले आप बात करते हैं, यह है कोनार का एरिया जो इधर पड़ता है बंद, फिर चाबार का एरिया बिल्कुल उसके करीब में, फिर अगर आप देखें बंदर अब्बास का इलाका, बंदर अब्बास का इलाका बहुत इंपॉर्टेंट है, जसदीप जो ये आप कह सकते हैं ये इलाका, फिर अबू मूसा द्वीप और सीरिया का इलाका, सिरिक का इलाका बिल्कुल बंदर अब्बास के, और ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर आप देख रहे हो यहां पर जो है वो 34 किलोमीटर 35 किलोमीटर का जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का स्ट्रेट है, छोटी सी गलियारा है, वो यहां पर है। और अगर आप देखें बुशेर का इलाका, बुशेर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुशेर कहा जाता है कि यहां पर रशियंस की मौजूदगी बहुत ज्यादा थी, रूसी साइंटिस्ट की, इसको पहले भी टारगेट किया गया था, हालांकि वहां पर रूस ने अपने सभी साइंटिस्ट को निकाल लिया गया था। लेकिन अब इन पूरे इलाकों के ऊपर, कोस्टल इलाकों के ऊपर अमेरिका ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है, क्योंकि अगर इन इलाकों में अटैक कर दिया गया तो फिर जो कोस्टल पावर है या फिर आप कह सकते हैं अपने सर्वेलेंस की, अपने ड्रोन की, अपने मिसाइल की ताकत ईरान की खत्म हो जाएगी। और ये हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि अब तेहरान की तरफ अटैक नहीं हो रहे, सिर्फ कोस्टल एरिया में नीचे की तरफ अटैक किए जा रहे हैं। अब आपको एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर ईरान ने कबूल कर लिया है कि अमेरिकी हमलों में उसके केरमन शहर के कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी संचार सुविधा को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान की महर न्यूज एजेंसी ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि केरमन के साथ ही दूसरे शहरों पर भी अमेरिकी बमबारी से नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि यूएस ने इसको लेकर कुछ तस्वीरें भी साझा की गई थी, लेकिन अब ईरान ने भी माना है कि उसके कई कम्युनिकेशन सेंटर्स को इन हमलों के अंदर भारी नुकसान पहुंचा है। और हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ मेस्टन सर भी है और हमारे साथ एके सिवासर भी है। मेस्टन सर, हम तो ये मान के चल रहे थे कि चलिए एमओयू साइन हो गया है, 17 जून के बाद परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी, लेकिन ये तो मुझे लग रहा है कि 28 फरवरी के बाद और ज्यादा भयानक रूप लेती जा रही है।
3: बिल्कुल सुमित, देखिए ये जो एमओयू था ये एक्चुअली मैं बोलूं तो ये मेमोरेंडम ऑफ पॉज था, ये सिर्फ एक लड़ाई में पॉज था, टेम्परेरी पॉज था और वो हो चुका है। और अब लड़ाई फिर से, जैसे आपने बोला, वो भीषण लड़ाई शुरू हो चुकी है। इसके कारण ये है कि देखिए, पहली बात, जो एमओयू जो पाकिस्तान और कतार के लीडरशिप में बना था, वो उसमें तो बहुत ज्यादा लूप होल्स है, वो हम सबको मालूम है, तो उसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसमें तो इतनी चीजें हैं जो खास तौर पे पैलेस्टीन का इश्यू नहीं है, ये प्रॉक्सीज का इश्यू नहीं है, मिसाइल्स और ड्रोन्स का इश्यू नहीं है, तो बहुत चीजें हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी बड़ा वेग सा है, आर्टिकल 5 बहुत वेग करके छोड़ा हुआ है। तो हकीकत यह है कि ये लड़ाई तो बढ़ेगी और उसमें कोई शक नहीं है। और अब जो हालात होते जा रहे हैं इतने खराब हो रहे हैं कि जैसे आपने बताया 14 तारीख को अभी मुश्तफा खोमेनी भी स्टेटमेंट देगा। ऑब्वियसली आपने देखा, आप खुद वहां पर मौजूद थे, जो एक फ्यूनरल प्रोसेशन हुआ है उसमें इतने लोग जमा हुए, तो वो सब एक ही चीज चला रहे थे, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू ट्रम्प। तो कहने का मतलब है ये एक जज्बा भी लीडरशिप के अंदर और आ जाएगा और वो चाहेंगे खासकर IRGC और मुश्तफा खोमेनी के ये बदला लेंगे। सवाल उठता है वो बदला लेंगे कैसे। यस, इंडिविजुअल टारगेटिंग प्रेसिडेंट ट्रंप की कोशिश की जाएगी, लेकिन उनके पास आज जो ऑप्शंस हैं वो सिर्फ यही है कि खाड़ी देशों में ये GCC कंट्रीज में ये फायर कर सकते हैं। और अभी तक जितना भी फायर हुआ है ये पिछले 3 दिन के अंदर कोई खास इम्पैक्ट हुआ नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है तो तकरीबन टोटल अमेरिका ने जो फायर किया ये 3 दिन के अंदर 310 टारगेट से ज्यादा, इसपे टोटल एरियाज में काफी इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन हमें ये चाहिए कि जो जागरे माउंटेन रेंजेस हैं वो इन्हीं कोस्टल एरियाज के पीछे, ईस्ट टू वेस्ट जो जा रहे हैं, आप खुद वो इलाके में गए होंगे, और वो पहाड़ से ज्यादा उनको एडवांटेज देते हैं, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, क्योंकि वहां से वो आराम से लूप होल्स के जरिए ड्रोन्स और मिसाइल्स को लॉन्च कर सकते हैं।
2: जी, हमारे साथ जनरल सिवाज भी जुड़े। जनरल सिवाज, जिस तरीके से मेस्टर सर भी बता रहे थे कि स्ट्रेटेजिक चेंज हमने देखा है, पहले जब टारगेट किए गए थे 28 फरवरी के बाद वो रैंडम अटैक थे और खास तौर पे उन स्पेसिफिक लोकेशन पे थे जहां पर इनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, वो तेहरान को स्पेसिफिक टारगेट किए गए थे, तेहरान हो, इश्फहान इलाका हो, नतांज का इलाका हो, फोर्दो का इलाका हो। लेकिन अभी के जो ताजा अटैक हम देख रहे हैं, 3 दिनों के अंदर 310 अटैक सिर्फ और सिर्फ कोस्टल एरियाज में किए गए हैं, बोशर का इलाका, सिरिक का इलाका या फिर बंदरबास का इलाका, चाबार बीच में इंक्लूड किया गया है, तो कोस्टल इलाकों पे ही ज्यादा अटैक क्यों किए जा रहे हैं?
4: हाँ बिल्कुल, देखो सुमित, एक बात है, सबसे अब लड़ाई होगी है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिए कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना है। और अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना है तो आपको क्या करना है कि जो भी कोस्टल लाइन पे ईरान के जो इसको डोमिनेट करते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज को, चाहे उनके वो सर्वेलेंस सिस्टम है, रडार सिस्टम है, या इनकी कोस्टल बैटरी है, या इनका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, उसको बर्बाद करना। तो ये जो जितने भी अब की बार जो टाउन है, चाहे वो बुशार है या सिरक है या बंदर अब्बास है या चाबार है, के सारे ये 2400 किलोमीटर का जो कोस्ट लाइन है उसको डोमिनेट करते हैं, और एक प्रकार से क्योंकि पहाड़ी इलाके से एक प्रकार से टेपर डाउन करते हैं, तो ये पूरे के पूरे स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करते हैं। अब बात आती है कि क्या ये लड़ाई दोबारा स्टार्ट होगी, जो मेन क्वेश्चन है। मुझे अभी भी नहीं लगता कि ये लड़ाई दोबारा स्टार्ट होगी। ये होगा क्या कि ये नो वार नो पीस, मतलब कि वार और पलट वार होगा। इसका इस्तेमाल अभी जो IRGC है, वो जो ईरान की डिप्लोमेट्स हैं, पॉलिटिशियन, वो सेम पेज पे नहीं है। वो चाहते हैं कि लड़ाई स्टार्ट रहे, मगर उनको ये समझ नहीं आया कि ये जो MOU था ये ईरान के पक्ष में था, ईरान को सब कुछ मिल गया इसके अंदर। इसके अंदर तीन मेन चीज मैं एक बताना चाहूंगा, 3 मेन चीज उनको मिले, उनके जितने भी सैंक्शन लगे थे वो हटके, उनके पास जो $100 बिलियन से ज्यादा पैसा उनका फ्रीज था वो भी सिक्वेंशियल मैनर से हटेगा, $300 बिलियन मिल रहा था। और कहीं ना कहीं MOU जो था, जो हुआ था साइन अपना स्टेट ऑफ हॉर्मुज, वो बहुत पुअरली ड्राफ्टेड था। आर्टिकल 5 जो है वो किसी तरीके से ये कह रहा था कि ये रेगुलेट करेंगे और ईरान ने उसका फायदा उठाया, मगर ये सच्चाई है कि लड़ाई इसलिए नहीं होगी क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता, पब्लिक ओपिनियन
2: लेकिन
4: इसके अगेंस्ट है। मैं एक ही बात सुन, वो इसलिए है क्योंकि वहां पर मिड टर्म इलेक्शन, पॉपुलरिटी डाउन है। क्या ईरान अकेला लड़ेगा? वो एसिमेट्रिक वॉर लड़ाई करेगा, इस बार जो पहले भी की थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया, और दूसरा जो करेगा ये जो खाड़ी के
2: लेकिन
4: देश है
2: लेकिन
4: उनके
2: सर, अब ये बात सिर्फ ईरान और खासतौर पर अमेरिका की नहीं रह गई, अब ये पूरे मिडल ईस्ट की बात हो गई है। आपका दोबारा से रुक करूंगा, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर भी आ रही कि ईरान ने भी पलटवार करते हुए बहरीन पे भी अटैक किया, और बहरीन के गृह मंत्रालय का कहना है कि हवाई हमलों के चलते पूरे देश के इलाकों के अंदर सायरन बजाए गए, सभी निवासियों को अपील की गई थी कि वो नजदीक के सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। देखिए पैनिक अब बहरीन में, मिडिल ईस्ट के कई, कुवैत में, कतर के अंदर, ओमान के अंदर फैलता जा रहा है। ईरान ने अमेरिकी हमलों के जवाब में बहरीन के अमेरिकी ठिकानों पर निशाना बनाते हुए ये अटैक किए गए थे। इसी को लेकर बहरीन में हवाई हमलों का सायरन भी बजाया गया। देखिए इसकी पुष्टि भी बहरीन की तरफ से की गई है। और देखिए इसी बीच पश्चिमी मीडिया ने भी, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स नेवी ने फिर से हॉर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछा रही है। देखिए जिस तरह के शिवाज सर भी बता रहे थे कि इसका फायदा ईरान को मिला, ईरान ने ना सिर्फ अपनी बोट्स की तादाद को बढ़ा दिया है बल्कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दोबारा से कई बारूदी सुरंगें बिछाने शुरू कर दी है, माइनिंग का काम शुरू कर दिया, और इसको लेकर अमेरिका में भी बहुत ज्यादा खलबली है। और ये कहा जा रहा है कि देखिए अगर इसका मतलब, अगर ईरान दोबारा से ये माइंस को बिछा रहा है तो फिर आप मान के चलिए कि ईरान लंबी जंग की तैयारियां कर रहा है। और ये खबरें लगातार मिल रही है कि हॉर्मुज पर अपना वर्चस्व, अपना पकड़ मजबूत करने के लिए एक बार फिर से माइनिंग और ज्यादा बिछा रहा है ईरान। और एक और बड़ा अपडेट आपको बताता है कि जिसमें ईरानी सांसद के स्पीकर गालिबाफ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि अमेरिका को धमकी दी, कि गालिबाफ ने कहा कि एक तरफा समझौते का दौर अब खत्म हो चुका है, जो हमने आपको पहले भी बताया कि हमने अमेरिका से कहा था कि अपनी बात पर कायम रहे या अंजाम भुगते। गालिबाफ ने कहा कि हकीकत अब सामने आ रही है, और देखिए जैसे जैसे 9 जुलाई के बाद, यानी जो सुप्रीम लीडर के, पूर्व सुप्रीम लीडर के सुपुर्द खाक होने के बाद, ना सिर्फ बयानबाजी में तलखी नजर आ रही है बल्कि अब और अग्रेसिव पोस्टर्स मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिखाए जा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान हैं, संजय मेस्टन सर, अगर मैं, क्योंकि वक्त की कमी, अगर मैं जल्दी आपसे पूछूं, ये तो 9 जुलाई तक ये लग ही रहा था कि देखिए अमेरिका 4 जुलाई का वेट कर रहा है और ईरान 9 जुलाई का वेट कर रहा है, लेकिन परिस्थितियां इतनी ज्यादा जल्दी बदलेंगी ये अनुमान नहीं था।
3: देखिए आपने बिल्कुल सही बोला, 4 जुलाई तो एक मुद्दा था ही और 9 जुलाई भी एक मुद्दा था, लेकिन ये जो 6 जुलाई और 9 जुलाई के बीच का जो पीरियड है, मेरे को लगता है कि IRGC को एक नया जज्बा मिला है लोगों की भीड़ देख के, और जो बार बार कॉल हो रहा था कॉल फॉर रिवेंज, डेट टू अमेरिका, मेरे को लगता है ये IRGC ने ये मौका देखते हुए और ये 3 ships पे फायर किया, जिसपे आपको पता है कि एक शिप जो कतार की भी थी, जो LNG टैंकर था, और आज फिर वो फायर किया है अभी 2 ships पे, जिसमें इंडियन सी फेयरर्स की एक की तो शायद अभी अभी तक मिसिंग ही है। तो कहने का मतलब है IRGC का जो जज्बा अभी हो गया, देखिए लड़ाई में एक चीज है, बहुत बैलेंस तरीके से लड़ाई की जाती है, जहां इमोशंस ओवरटेक कर जाते हैं डिसीजन मेकिंग, उसका परिणाम खराब भी होता है। क्योंकि अगर मैं साफ लफ्जों में बोलूं तो ये जितने भी अभी अमेरिकन मिलिट्री बेसिस पे फायर किया गया है उस पर नुकसान क्या हुआ है, लेकिन इनका नुकसान ज्यादा हो रहा है
2: सर, मोराल बूस्टर के तौर पर तो नुकसान हुआ ही है। हमारे साथ, क्योंकि वक्त की कमी, हमारे साथ शिवा सर, शिवा सर, जो मोराल बूस्टर की हम बार बार बात करते हैं वो ईरान का इस समय हाई है, और शायद इसी वजह से कहा जा रहा है कि 14 जुलाई को जब मुस्तफा खमनई पहली बार आएंगे तो निश्चित तौर पर कुछ बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं।
4: बिल्कुल, देखो एक बात तो माननी पड़ेगी सुमित, कि अगर दोबारा राउंड 2 होता है क्या ईरान इसके लिए तैयार है? वो लगता है ईरान ज्यादा तैयार है, क्योंकि उसके मिसाइल रॉकेट ड्रोन का जो भंडार है वो 40% के करीब खत्म हुआ था, और उसने रिकूप कर लिया है जो कि उसके अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज है। और ऐसा लगता है कि अगर दोबारा लड़ाई स्टार्ट होती है तो ईरान का मोराल भी हाई है, उसके जो अब आयतुल्ला अल खमैनी के मर जाने के बाद मुस्तफा खमैनी वो ज्यादा रेडिकल हैं, ये लगाम IRGC के पास आ गई, तो ये होगी। पर मुझे इसलिए लग रहा है कि ये लड़ाई नहीं होगी क्योंकि बातचीत का दौर भी चला हुआ है, ये नहीं कि बातचीत बिल्कुल बंद होगी, ये एक थोड़ा सा। दूसरी बात, आपको यह समझे कि अभी नेवल ब्लॉकेड अगर अमेरिका दोबारा लगा देता है तो फिर ईरान का भी ऑयल नहीं जा पाएगा, तो ईरान को भी यह पता। दूसरा, ईरान
2: का देखिए, लेकिन यह बात तो तय है, आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए एक तरफ तो दोनों के दोनों ऐलान भी करते हैं जंग का, और दूसरी तरफ यह भी बात कहते हैं कि देखिए बातचीत अब भी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप भी अपने एक्स पोस्ट पर एक बात जाहिर कर चुके हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए क्योंकि वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: Talk Sport presents The S Word with Will Gavin and Master Tesfasyon.
7: We're finally giving North American football fans the show they deserve.
8: Fiery fan debate, in-depth analysis, and plenty of fun along the way.
7: We're here Monday to Friday, 8 till 10 Eastern, and every single day of the World Cup.
8: Remember, around here, we use the F Word.
7: Never the S Word.
6: The S Word, available now on TuneIn,
9: wherever you get your podcasts,
6: and on the S Word YouTube channel.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
4: In association with
5: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: The action never stops and neither do we. From breaking updates to match analysis, from big moments to bigger conversation. This is where sports comes alive, fast, sharp, unfiltered, for the fans who want every update, every story, every headline first. Welcome to Sports Today, your destination for everything sports. Press that bell icon and subscribe now.
7: Jai Hind friends, Isaiah, Sona, Masala ya Vistar? 1498 mein kya thi Vasco da Gama ki mancha? Madhumakhi jaise gore jo shahad lekar aa rahe the, Bharat ko dank marna shuru kar diya. और बेवकूफ राजाओं का फायदा उठाकर इस देश को गुलाम बना दिया। लेकिन मीर जाफर और मीर कासिम ने अगर सर झुकाया, तो रानी लक्ष्मीबाई ने सर उठाया और गोरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कैसी थी लड़ाई, कौन थे इसके महानायक, तलवारें चली या भजन चला? अगर बचपन में नहीं समझ में आया, नोटबुक निकाल लीजिए। मैं अवध ओझा जल लेकर आ रहा हूं मास्टर जी इन द न्यूज रूम, सिर्फ ललन टॉप पर।
8: YouTube पर अब देखिए आज तक वर्टिकल।
9: अरे भाई फिर घुमा रहे हैं,
8: छोड़ दीजिए घुमाने की आदत, अब आज तक वर्टिकल।

0: क्या इथेनॉल से नुकसान हो रहा है सर गाड़ियों?
1: मारुति सुजुकी के पास एक भी कंप्लेन नहीं है, टोयोटो के पास एक भी कंप्लेन नहीं है। मुझे बदनाम करने के लिए और इथेनॉल को बदनाम करने के लिए प्रयास है।
0: नए नए एक्सप्रेस वे जो बन रहे हैं उनमें गड्ढे,
1: ये हमारे हाईवे में जितने गड्ढे हैं उसके ऊपर आप कार्यक्रम करिए और दिखा दीजिए।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV, with TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
4: In association with
6: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: आसमान से बरसती आफत और जमीन पर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद, कहीं पहाड़ टूट रहे हैं तो कहीं पानी घरों को निगल रहा, बारिश ने चारों तरफ तबाही का मंजर खड़ा कर दिया है। पहाड़ों पर बारिश अब सिर्फ बरस नहीं रही, कहर बनकर टूट रही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भूस्खलन ने चार धाम यात्रा की रफ्तार रोक दी। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर खांकरा के पास पहाड़ दरक गया और सड़क पर आ गिरे भारी भरकम बोल्डर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में अचानक आई बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए। पानी के तेज बहाव में फंसे करीब 25 लोगों को रेस्क्यू किया गया। उधर मैदानों में भी पानी ने जिंदगी की रफ्तार रोक दी। महाराष्ट्र के पालघर में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया। एक परिवार ने मौत से बचने के लिए घर की खिड़की तोड़ दी और दो मासूम बच्चों समेत 8 घंटे तक छत पर बैठकर रात गुजारी। वहीं हरियाणा की अंबाला में तंगरी नदी का स्तर बढ़ने से लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर जाने को मजबूर हुए। सहारनपुर के सैयद माजरा गांव में भारी बारिश ने कब्रिस्तान को भी अपनी चपेट में ले लिया। लगातार 3 दिनों की मूसलाधार बारिश के बाद पानी का बहाव इतना तेज हुआ कि कब्रिस्तान की मिट्टी धंस गई और कई कब्रें क्षतिग्रस्त हो गईं। इतना ही नहीं, कई लाशें पानी में तैरने लगी। पहाड़ से मैदान तक बारिश ने अपना रौद रूप दिखाया है। कहीं रास्ते बंद हुए, कहीं घर डूबे। बारिश थमने के बाद भी तबाही के ये निशान कई सवाल छोड़ गए हैं कि क्या हम ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए तैयार हैं? ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
2: इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अप।
3: ब्रेक के बाद रणभूमि में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अमेरिका ने ईरान पर हमले की रणनीति में बदलाव किया है। वो सिर्फ सैन्य अहमियत वाले इलाकों पर निशाना नहीं बना रहा, बल्कि आर्थिक तौर पर ईरान की कमर तोड़ने की भी नए नए तरीके अपना रहा। खासतौर से उसके निशाने पर वो पोर्ट सिटी है जिन पर ईरान की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। बंदर आबाद से लेकर चाबहार तक में अमेरिकी हमलों से हुई तबाही इसकी गवाही देती है।

0: अब अमेरिकी हमलों की जद में आए ईरान के तटीय ठिकाने। एक के बाद एक बंदरगाहों पर अमेरिका लगा रहा निशाने। तेज हुआ ईरान की आर्थिक ताकत तोड़ने का अभियान। तेल की लड़ाई होर्मुज से होते हुए ईरान के समुद्री सीमा से लगे तमाम शहरों तक पहुंच गई है और अमेरिका एक के बाद एक बंदरगाहों पर हमले कर रहा है। अभी तक अमेरिकी मिसाइलों के निशाने पर होर्मुज से सटे इलाके ही आमतौर पर आते थे, लेकिन इस हफ्ते अमेरिका ने उन तमाम तटीय इलाकों को बर्बाद करने के लिए बम बरसाए हैं जो ईरान के तेल निर्यात और अर्थव्यवस्था में मजबूत किरदार निभा रहे हैं। अमेरिकी सेना दो मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। एक तरफ वो ईरान के उन सैन्य ठिकानों को बर्बाद कर रही है जहां से खाड़ी देशों में बने अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हमले किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अब उसके निशाने पर ईरान की वो पोर्ट सिटी आ गई है जो उसकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। इनमें से एक है बंदर अब्बास, जो तेल के निर्यात के लिहाज से अहम ठिकाना है। इसके अलावा नेचुरल गैस के लिहाज से अहम कंगन, समुद्री इकोनॉमी के लिहाज से अहम बंदर एदेयर एनर्जी और पेट्रोकेमिकल के लिहाज से अहम असालुये क्रूड ऑन ऑयल पाइपलाइन की वजह से महत्वपूर्ण माने जाने वाला जास्क, हॉर्मुज के करीब होने की वजह से सैन्य अहमियत वाले सिरिक और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर चाबहार पोर्ट। पिछले 24 घंटों में इन सभी पर अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं और कंट्रोल टॉवर से लेकर अहम उपकरणों तक को तबाह किया है। चाबहार पोर्ट तो आर्थिक के साथ साथ सामरिक और कूटनीतिक तौर पर भी इतना अहम है कि भारत तक ने इसमें करोड़ों रुपये का निवेश किया था। इतना ही नहीं, खार्ग को लेकर भी अमेरिका लगातार आक्रामक होता जा रहा है। ईरान के तेल निर्यात का करीब 90% हिस्सा खार्ग के जिम्मे ही है और ये ईरान को आर्थिक तौर पर मजबूत करने में अहम किरदार निभाता रहा है। इसीलिए अमेरिका लगातार इस पर भी हमले कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान के तटीय शहर ही बमबारी का शिकार हो रहे हों। ईरान का दावा है कि उसने ओमान के दुकम पोर्ट पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए इस्तेमाल होने वाले लॉजिस्टिक सपोर्ट सेंटर और ईंधन भरने वाले प्लेटफॉर्म पर भारी हमला किया है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका लगातार दबाव डलवाकर ओमान के पास जहाजों की आवाजाही के लिए एक नया समुद्री मार्ग तैयार करा रहा है। इससे होर्मुज पर ईरान का नियंत्रण कमजोर हो सकता है, लिहाजा ईरान ने इस पर भी कड़ा रुख अपनाकर वहां से गुजरने वाले हर जहाज पर निगाहबानी का फरमान जारी कर दिया है। तटीय शहरों पर बढ़ते हमलों का असर सिर्फ ईरान की पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था पर ही नहीं होगा बल्कि दुनिया भर में तेल सप्लाई, समुद्री व्यापार और पूरे मिडिल ईस्ट की सुरक्षा पर भी हो सकता है। आज तक ब्यूरो।
1: दरअसल हॉर्मुज पर हर कोई अपना नियंत्रण चाहता है। अमेरिका बिना किसी टोलबंदी के यहां से जहाजों की आवाजाही चाहता है, तो ईरान के पास अमेरिका का सामना करने के लिए यह सबसे बड़ा हथियार है। तेल के इस खेल में हालात फिर से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि ईरान ने फिलहाल इसे बंद करने का ऐलान कर दिया है। सबसे बड़ा खतरा तो खार्ग द्वीप पे मंडरा रहा है जहां एक बार फिर से अमेरिका ने हमले किए हैं और ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो ईरान को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए इस पर कब्जा भी कर सकते हैं।

0: हॉर्मुज में हमले एक गलती थी, लेकिन अमेरिका ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है और उसके खिलाफ हटाई गई तेल निर्यात की पाबंदियों को एक बार फिर लगा दिया है, जो अगले हफ्ते से लागू कर दी जाएंगी। हॉर्मुज से शुरू हुई लड़ाई तेजी से खार्क तक पहुंच गई है। हफ्ते भर पहले ही अमेरिका ने यहां एयर स्ट्राइक की और ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया। ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा खार्क से ही जुड़ा है। जब से दोनों देशों के बीच जंग शुरू हुई है, खार्क को अमेरिका के कई हमले झेलने पड़े हैं। अब ये एक बार फिर से अमेरिका के निशाने पर आ गया है।
1: We're not attacking at the highest level. The highest level, the bridges, there, which we can knock down. I would say in one day we knocked down every single bridge in Iran. There's not a thing they can do about it. Their electric manufacturing facilities, right? Their electric plants where they make their electricity in there. We will, if we have to, we'll take them out. I don't want to do that, but if we have to, we'll take them out. They have desalinization plants. We'll take them out if we have to. I hate to do that. That's probably the one I would like not to do least. We attacked Kharg Island last night. We knocked out a piece. I said, don't touch the oil, because maybe we'll take over Kharg Island.
2: ईरान और अमेरिका की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर यह तनातनी पूरी दुनिया के लिए बहुत कीमती या फिर बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर क्या ताजा हालात है, ये आपको समझाने के लिए आपको बड़ी वॉल पे लिए चलता हूं और आपको समझाता हूं कि इस डील के यानी 17 जून के बाद से हालात कैसे बदले या फिर परिस्थितियां वैसे ही है। सबसे पहले आप देख लीजिए, यह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये वो इलाका है जिसकी हम लगातार बात करते हैं, यानी वो छोटी सी गली 35 किलोमीटर की जहां से ज्यादातर पर्शियन गल्फ से शिप निकलकर गल्फ ऑफ ओमान की तरफ जाते हैं और यही को इसको ब्लॉकेट किया हुआ है ईरान ने और यहां पर अमेरिका का ब्लॉकेट है। अब आप देखिए, 17 जून को जब दोनों के बीच में बातचीत हुई थी तब उसके बाद 17 जून से 6 जुलाई तक के आंकड़े 558 यानी 558 जो ऑयल टैंकर्स हैं उनको निकाला गया। 7 और 8 जुलाई को गुजरे सिर्फ पांच जहाज इसलिए क्योंकि 7 जुलाई को ही ईरान के ऊपर अमेरिका ने नए ताबड़तोड़ अटैक्स कर दिए। 80 से ज्यादा शहरों या फिर 80 से ज्यादा जगहों पर अटैक किए गए। अब युद्ध से पहले रोजाना औसतन 130 टैंकर की आवाजाही थी। ये हम आपको 17 जून के बाद के आंकड़े बता रहे हैं क्योंकि उस दिन ही दोनों के बीच में एमओयू साइन हुआ था। लेकिन 7 जुलाई को जब अमेरिका ने पहली बार अटैक करना शुरू किया उसके बाद महज अब तक 5 टैंकर ही निकल पाए हैं। लेकिन आखिरकार हम ये समझना चाहते हैं कि ये क्यों है कि अमेरिका और ईरान के बीच में ये तनातनी तो बनी हुई है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की रणनीति क्या है, ये भी आपको एक स्पेशल ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप मानिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज निकल जाना ईरान के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक या फिर आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहेगा। अगर आप मेरे दूसरी तरफ अगर आप देख रहे हो आपको समझ में आएगा कि हॉर्मुज पर ईरान की रणनीति हॉर्मुज पर नियंत्रण रखने की है, तटीय रूट को गुजरने वाले जहाजों पर सर्वेलेंस करने की, ताकि जो भी रूट हो वो उसके कंट्रोल में हो। अब ट्रांजिट अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन हो, यानी अगर ट्रांजिट अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन होगा तो ईरान को उससे आर्थिक रूप से फायदा होगा। जो भी शिप आएगा जाएगा वो ईरान की परमिशन से जाएगा, इससे पहले वो परमिशन नहीं लेनी पड़ती थी, तो आर्थिक रूप से ईरान को पैसा मिलेगा। अब शुल्क वसूलने का अधिकार सिर्फ ईरान के पास होगा। आपको याद होगा कि अभी मस्कट अराकची गए थे, वहां पर उन्होंने बातचीत की और ओमान के साथ एक कंसेंसस बनाने की कोशिश की कि इस रूट के ऊपर सिर्फ आपके और हमारा अधिकार है, ऐसे में हम दोनों के पास ही ये पैसा या फिर इसका फायदा जाना चाहिए। तो इसके बाद नए मार्ग से ईरान की पकड़ कमजोर होगी, यानी अगर नया मार्ग खुलता है जिसको अमेरिका ने तैयार किया है, अगर वहां से शिप जाते हैं, अगर वहां से बोट जाती है, तो फिर ईरान के लिए यह दिक्कत होगी क्योंकि फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर ईरान के कंट्रोल का कोई फायदा ही नहीं बचेगा। अब हॉर्मुज रूट पर कंट्रोल की कोशिश में अमेरिका भी है और ईरान ने तो वहां पर माइनिंग कर अपने बोट्स को तैनात कर वहां पर अपनी कंट्रोल किया ही हुआ है। अब ये तय रूट से गुजरने वाले इलाकों के ऊपर अब ईरान इतना ज्यादा स्पेसिफिक है कि ईरान नहीं चाहता कि वहां पर कोई दूसरा डेजिग्नेटेड रूट बने और सीधा कंट्रोल अमेरिका के हाथ में रहे या फिर ईरान के हाथ में रहे। अब हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। मिस्टर सर, ये रूट को लेकर भी अब तो ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही डिवाइड हो गया है, एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान का है, एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका का है और अब ईरान नहीं चाहता कि अगर कोई भी पॉसिबिलिटी बने कि वो अमेरिका के कोई भी शिप या फिर कोई भी शिप अमेरिका का डेजिग्नेटेड रूट इस्तेमाल करे, तो ऐसे में ये तनातनी और बढ़ेगी।
3: बिल्कुल सुमित, बहुत बढ़ेगी तनातनी। देखिए, ये सारी जो बातचीत है, ये सब सारी प्रॉब्लम, ये जड़ है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल का, कमांड कंट्रोल जो ईरान पूरा चाहता है। और देखिए, कई लोग बोलते हैं कि ये

0: 28 फरवरी के बाद जो ये बॉम्बिंग हुई है उसके बाद से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लेवरेज बंद हो गई है। मैं उसमें थोड़ा मेरा विचार ये है कि लड़ाई से पहले भी ईरान की लेवरेज थी, सिर्फ ये अनऑफिशियल तौर पे होती थी। आप याद करिए 18 जनवरी की जो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, हमारे 16 इंडियन सी फेयरर्स पकड़े गए थे
1: जी
0: और उससे पहले भी कई पकड़े जाए गए, 700 के आसपास पिछले 3 साल में। ये क्या करते हैं, ये IRGC नेवी उनको रोकती है और फिर वहां पर उनको स्मगलिंग के चार्जेस वगैरह लगाती है। और जो लास्ट जहाज हमारा पकड़ा था 18 जनवरी में, उस पर चार्ज लगाया था जबकि वो लेके आ रहा था, वो वेरी लो ये जो सल्फर फ्यूल ऑयल लेके आ रहा था,
1: जी
0: इतना वो लो ग्रेड वाला, और उस पर चार्ज लगा दिया और उनको पकड़ लिया। इंडियन कंसुलेट वो एक्सेस भी नहीं हमें दे रहे थे। तो कहने का मतलब है ये अनऑफिशियली कई शिप से, कई मर्चेंट शिप से ये ऑलरेडी टोल या चार्ज लेते थे पर वो अनऑफिशियल था। अब वो उसको लीगलाइज और प्रॉपर वो डॉक्यूमेंट करके करना चाहते हैं, और वही
1: बिल्कुल
0: वो
1: बिल्कुल
0: फाइव का ये बात कर रहे हैं कि अमेरिका भी मान गया था। तो ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो कंट्रोल है उस पर
1: सर,
0: लड़ाई, और इसमें
1: माफ कीजिएगा क्योंकि वक्त की कमी है, हमारे साथ शिवाज सर भी हैं। शिवाज सर देखिए, यह जैसा मिस्टर सर भी बता रहे थे कि ये IRGC जानबूझ के करना चाहता है क्योंकि वो कंट्रोल चाहता है, सर्वेलेंस चाहता है, लेकिन इसका आर्थिक फायदा तो चीन जैसे देशों को भी हो रहा है, चीन को इनडायरेक्टली इसका फायदा हो रहा है, तो ऐसे में भारत जैसे देश या दूसरे देशों को इससे परेशानी होना तय है।
2: हम बिल्कुल देखो सुमित, अगर इस लड़ाई से किसी को ज्यादा फायदा था वो चीन को ही था, इसमें कोई शक नहीं। कहीं ना कहीं रूस को भी फायदा था क्योंकि उसका जो ऑयल था वो बिक रहा था। मगर अब जो बात कह रहे हैं कि हो क्या रहा है कि जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसी सोने की चिड़िया मिल गई है ईरान को, वो नहीं छोड़ने की कोशिश करेगा क्योंकि उससे उसको बहुत टोल मिलेगा। अब जो अमेरिका ने बड़े चतुराई से किया है, उसके दो हिस्से हैं, एक तो ईरान की कोस्ट लाइन, एक है ओमान की कोस्ट लाइन, जो साउथ से वहां से डेजिग्नेटेड रूट बना दिया एंट्री और एग्जिट का। इसको ईरान नहीं चाहता क्योंकि अगर ईरान उसको अलाउ कर देगा तो फिर ईरान का तो अस्तित्व हट जाएगा आपके स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसी जगह है जहां ईरान उसका फायदा उठाना चाहता है। और टोल आपने सही बताया, 130 से 150 जो है कमर्शियल शिप जाती है एक दिन में। अगर उसका पैसा कलेक्ट करता है ईरान तो आप देखें कितना पैसा उसको मिलेगा एक दिन में। तो मुझे लगता है अब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टेट ऑफ हॉर्मुज में आ गई, लड़ाई का सब कुछ दालोदाल अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज। जो लड़ाई स्टार्ट हुई थी वो न्यूक्लियर वेपन्स के कारण हुई थी, उसको
1: बिल्कुल
2: लेके था या मिजाइल, अब वो सब भूल गए हैं। अब यही है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को इंटरनेशनल वाटर है, ये खुला होना चाहिए। ईरान कहता है कि Article 5 जो MOU का कहता है हम इसको रेगुलेट करेंगे और हम ही इसको चार्ज
1: सर,
2: करेंगे, ना कि कोई और दूसरा।
1: सारी बात तो इसी बात पर आके टिक गई कि अमेरिका के इन हमलों का फायदा हुआ ना हुआ हो, नुकसान पूरी दुनिया को बहुत हुआ है। शायद अमेरिका इस बात को रियलाइज नहीं कर सकता क्योंकि अमेरिका सिर्फ दूर से बैठकर हाथ सेक रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ ये दोनों के ऊपर यानी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ अपना विश्लेषण साझा करने के लिए। अब बात करते हैं वियतनाम से आई एक बड़े हादसे की खबर को लेकर। दरअसल वियतनाम के फुक्योक द्वीप पर के पास भारतीय पर्यटकों से भरी एक टूरिस्ट बोट पलट गई। हादसे में 15 भारतीयों की मौत हो गई है जबकि 21 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। बोट कुल के ऊपर करीबन कुल 36 लोग सवार थे जिसमें 32 भारतीय और 4 क्रू मेंबर शामिल थे। जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के शवों को सिटी में ले जाया जा रहा है और वे आज शाम तक भारत पहुंच जाएंगे और ची मिहिन में जरूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद शवों को जल्दी भारत भेजा जाएगा। दूतावास और वाणिज्य दूतावास की टीमें वियतनाम के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है जिन्होंने शवों को जल्द से जल्द भारत भेजने की हर तरह की मदद का भरोसा भी दिलाया है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरें उस समय की है जब ये बोट पलटी और उसके बाद कैसे जो छोटी छोटी बोट थी वो लगातार लोगों को बचाती हुई, करीबन 36 लोग इसमें सवार थे, 32 भारतीय और बाकी क्रू मेंबर, इसमें से 32 में से 15 भारतीय पर्यटकों की इसमें मौत हो गई। चलिए आज विराट भूमि में इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
5: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today.
6: taxes and fees excluded from price guarantee.
7: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
6: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
8: You may already think of TuneIn as your go-to audio app, but it's also your go-everywhere audio app. Because TuneIn works on just about every device you already use. Smart speakers? Yep. In your car? Absolutely. Phone or tablet? Yeah, of course. Wherever you are, your audio comes with you. And if you want to go hands-free, just say open TuneIn Live on your Alexa-enabled device and follow the interactive prompts to find the station you're looking for. No tapping, no searching. Just press play with your voice.
9: Sokudo.

टोरंटो में साल साउंड सेंट क्लेयर फेस्टिवल। फेस्टिवल में गोलियों की तड़तड़ाहट, अफरा तफरी का माहौल, चीखते चिल्लाते लोग। तस्वीरें कनाडा के टोरंटो की हैं, जहां शनिवार शाम एक प्रसिद्ध स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से हड़कंप मच गया। मिडटाउन टोरंटो में आयोजित वार्षिक लैटिन सांस्कृतिक उत्सव साल साउंड सेंट क्लेयर के दौरान हुई इस फायरिंग के बाद मौके पर भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। टोरंटो पुलिस के मुताबिक गोलीबारी में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने इलाके को तुरंत अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और लोगों से घटनास्थल से दूर रहने की अपील की गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक संदिग्ध हमलावर अभी फरार है। फिलहाल पुलिस फायरिंग के कारणों, हमलावर की पहचान और घटना के पीछे की वजहों की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़ी और जानकारी जल्द जारी की जाएगी। आज तक ब्यूरो।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस Chogan Perfumes, the French edition for him and her.
2: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.

वियतनाम में छुट्टियों की तस्वीरें आखिर यादें बन गई हैं। समंदर का सफर मौत का सफर बन गया। परिवारों के लिए अब सिर्फ दर्द बचा है। वियतनाम के फुकवोक आइलैंड के पास एक टूरिस्ट बोट पलटी और देखते ही देखते गहरे पानी ने कई जिंदगियां निगल ली। जिस नाव में सवार होकर लोग नए अनुभवों की तलाश में निकले थे, वही नाव कई परिवारों के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा बन गई। वियतनाम से आई ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। समंदर की ऊंची लहरों के बीच पलटी हुई टूरिस्ट बोट और चारों तरफ मदद के लिए जूझते लोग, ये वही नाव थी जिसमें भारत से घूमने पहुंचे पर्यटक सवार थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटक और 4 क्रू मेंबर मौजूद थे। नाव होन में रूट से अनथोई पोर्ट की तरफ जा रही थी, तभी फुकवोक आइलैंड के पास करीब 400 मीटर दूर अचानक हादसा हो गया और देखते ही देखते पूरी नाव समंदर में पलट गई और 15 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे की खबर मिलते ही भारत सरकार भी सक्रिय हो गई। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बताया कि हादसे के बाद हनोई स्थित एम्बेसी और होची मिन्ह सिटी स्थित कॉन्सुलेट में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। दूतावास ने कहा कि भारतीय पर्यटकों की जानकारी जुटाई जा रही है और हर संभव मदद दी जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हादसे पर दुख जताते हुए लिखा, वियतनाम के फुकवोक के पास भारतीय नागरिकों से जुड़े इस दर्दनाक हादसे से बेहद दुखी हूं। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया। पीएम मोदी ने कहा, वियतनाम में भारतीय नागरिकों से जुड़े नाव हादसे की खबर से बेहद दुखी हूं। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। भारतीय दूतावास और अधिकारी हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। हादसे में पीड़ित परिवारों में मातम है। केरल के मछलीपट्टनम में रहने वाले पीड़ित परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वियतनाम नाव हादसे में गेली जयलक्ष्मी की मौत की खबर के बाद परिवार में चीख पुकार मच गई। घर में मौजूद परिजन अब सिर्फ उस पल को याद कर रहे हैं जब एक सफर जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। वहीं केरल के ही रहने वाले एसी थॉमस और लोवेनी थॉमस की मौत की पुष्टि की गई है। केरल सरकार विदेश मंत्रालय के संपर्क में है ताकि मृतकों के पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाया जा सके। एक टूरिस्ट ट्रिप जो यादों का सफर बनने निकली थी, वो अचानक मातम में बदल गई। समंदर की एक लहर ने कई परिवारों से उनके अपने छीन लिए। अब सवाल सिर्फ हादसे का नहीं, सवाल यह भी है कि आखिर ऐसी पर्यटक नावों की सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है। वियतनाम से आई इस त्रासदी ने एक बार फिर समंदर में सुरक्षा इंतजामों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

पंजाब में आपस में ही हाथ आजमाते दिख रहे हैं कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष राजा बडिंग को हटाने पर अड़ी चन्नी गुट। रंधावा ने बताया कॉम्प्रोमाइज लीडर आलाकमान के दरबार में पहुंचा झगड़ा।

0: दोस्त सबूत या मांगो माफी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने लगाया था आरोप, हमारे विधायकों को खरीदने की हो रही है साजिश। बीजेपी ने प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के गिनाए 10 फायदे, कहा इंडो पैसिफिक में भारत बना सबसे बड़ी ताकत, वैश्विक साझेदारियों को मिली नई मजबूती, कांग्रेस ने किया कटाक्ष। ओमान तट के पास कमर्शियल शिप पर बड़ा हमला, 10 भारतीयों को बचाया गया, एक अभी भी लापता, विदेश मंत्रालय ने निंदा की, पूरे मामले पर नई दिल्ली की नजर। अमेरिकी हमलों की नई किश्त के बीच दुनिया के सामने आएंगे मुज्तबा खामेनेई, मंगलवार की सभा में करेंगे शिरकत, अटैक में मारे गए लोगों को देंगे श्रद्धांजलि, यूएस की तरफ से भारी बमबारी जारी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे प्रामाणिक और लोकतांत्रिक नंबर वन शो दंगल। आज का दंगल पंजाब कांग्रेस के उस सियासी संग्राम पर है जिसमें विपक्ष से ज्यादा अपनों के वार हो रहे हैं। कांग्रेस 2027 में पंजाब जीतने का सपना देख रही है, लेकिन पंजाब कांग्रेस में सवाल यह है कि कप्तान कौन होगा। कोई कह रहा है कि समझौतावादी नेता नहीं चाहिए, कोई कह रहा है स्लीपर सेल कांग्रेस में बैठे हैं, और दिलचस्प बात यह है कि आरोप बीजेपी नहीं लगा रहे, विपक्षी दल नहीं लगा रहे, ये सिर्फ उठावल खुद कांग्रेस के नेताओं के बीच में चल रहे। पंजाब कांग्रेस की गुटबाजी की गूंज अब दिल्ली तक पहुंची तो भूपेश बघेल को आनंद फानंद में पंजाब भेजा गया। भूपेश बघेल ने चरणजीत सिंह चन्नी गुट की नाराजगी दूर करने की कोशिशें की, घंटों बैठक हुई, लेकिन ना नाराजगी खत्म हुई ना बयानबाजी। राजनीति में एक बात कही जाती है कि जब अपनों के तीर चलने लगे तो विरोधियों को तलवार निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 2022 में पंजाब की जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया, अब 2027 का चुनाव सामने है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस जनता का भरोसा जीतने की तैयारियां कर रही है या फिर नेताओं के बीच भरोसा बचाने की लड़ाई लड़ रही है। दिलचस्प यह भी है कि एक तरफ कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, अकाली दल पर बड़े बड़े राजनीतिक हमले कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पंजाब में उसके अपने नेता, नेतृत्व, संगठन और नियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि पंजाब में कांग्रेस 2027 की लड़ाई कैसे लड़ेगी। क्या पंजाब में कांग्रेस इस गुटबाजी के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी? आखिर पंजाब कांग्रेस में ये घमासान मचा क्यों है और क्या है कांग्रेस के पास समाधान? बीजेपी, आम आदमी पार्टी को इस मुद्दे से कितना फायदा होगा? आज इन्हीं तमाम सवालों का होगा हिसाब, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट।

0: सुखजिंदर सिंह रंधावा बिल्कुल ठीक कह रहे कि स्लीपर सेल ते कॉम्प्रोमाइज लीडर पंजाब नू बिल्कुल नहीं चाहिए। कोई भी स्लीपर सेल पार्टी दे विच कॉम्प्रोमाइज लीडर नहीं होना चाहिए।
1: स्लीपर सेल समझौतावादी नेता, ये शब्द किसी विरोधी दल के नहीं, ये कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस के नेताओं के लिए बोल रहे हैं। जिस पार्टी ने 2027 में पंजाब जीतने की ख्वाहिश पाल रखी है, वो 2026 में अपने ही कुनबे से हारती दिखाई दे रही है।
0: सुखजिंदर सिंह रंधावा बिल्कुल ठीक कह रहे कि स्लीपर सेल एक कॉम्प्रोमाइज लीडर पंजाब नू बिल्कुल नहीं चाहिए। सो मैं उन्हां दी इस गल नाल बिल्कुल सहमत हाँ। इसे करके किया कि असी दोनों कॉम्प्रोमाइज नहीं सी, इसे करके साड़ी लिहाज 4.5 साल तो लगातार, वैसे तो 25 साल तो है पर लगातार 4.5 साल तो साड़ी लिहाज है।
1: पंजाब कांग्रेस की दीवारों में दरार अब छिपी नहीं है, अब सब कुछ कैमरों के सामने है। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा के बयान को भले ही पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अपने हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन रंधावा कहते हैं कि पंजाब को समझौतावादी नेता नहीं मजबूत नेता चाहिए, यानी सवाल सीधे नेतृत्व पर है।
2: आप चाहते हैं कि राजा बड़िंग
3: प्रेसिडेंट है? नहीं, बड़े राजा बड़िंग प्रेसिडेंट है, उसको आप ही आ जाना चाहिए था। मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मैं उसके साथ ही रहा हूँ, तो उसको देखना चाहिए कि किसकी नाराजगी है।
1: तो क्या पंजाब कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन बीजेपी, आम आदमी पार्टी, अकाली दल नहीं बल्कि उसकी अपनी गुटबाजी है? दरअसल इस विवाद की असली वजह है पंजाब कांग्रेस में खेमेबंदी। पंजाब में एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग है, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर रंधावा और उनके समर्थक। पंजाब कांग्रेस में दरार की वजह ये बताई जा रही है कि जब अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को एक्सटेंशन मिल गया, 1 जुलाई को कांग्रेस ने घोषणा की कि अमरिंदर सिंह राजा वडिंग पंजाब यूनिट के अध्यक्ष बने रहेंगे और जालंधर के सांसद चन्नी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन होंगे। यहीं से पंजाब में कांग्रेस की सियासी जमीन में खटपट का बीज पड़ गया। चन्नी और उनके समर्थक नाराज हो गए। इसी तनातनी के बीच पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने कई दौर की बैठकें की, लेकिन बंद कमरे की बातचीत खुली बगावत को रोक नहीं सकी। बागी नेताओं ने एक बार फिर राजा वडिंग को हटाने की मांग दोहराई, जबकि बघेल सार्वजनिक तौर पर नेतृत्व परिवर्तन से इनकार करते रहे।
4: पंजाब के साथियों ने रखी है, उसको मैं हाई कमांड तक पहुंचा दूंगा। सर,
5: जन्नी जी नाराज नहीं है,
4: कोई नाराज नहीं है, कोई नाराज नहीं है, कोई टिकटॉक बात नहीं हुई है, मैंने अपनी तरफ से कहा।
1: जिस पॉलिटिकल पार्टी की सेना के सेनापति पर ही सवाल उठने लगे, वो कैसे चुनावी मैदान में ताल ठोकेगा? पंजाब की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी अब चुटकी ले रही है।
6: यार ठीक रह गए भी क्या कर लेंगे, वह भगवत मान जी की लहर है, आम आदमी पार्टी की लहर है, 100 सीटें आ रही हैं, तो वो बेचारे सही रह के भी क्या कर लेंगे। इसने ठीक रहा, इस बात ने फोड़ने के लड़े, हम लड़ने की वजह से हार गए, हारना तो उनको है ही।
1: राजनीति में विरोधी हमेशा बाहर नहीं होते, कई बार सबसे बड़ा विपक्ष पार्टी के भीतर बैठा होता है। पंजाब कांग्रेस आज उसी दौर से गुजर रही है। ऐसे में बीजेपी को नया मुद्दा मिल गया है जो पंजाब में अपनी पैठ बनाने की फिराक में है।
7: जो हालात आज कांग्रेस के पंजाब में बने हैं, तो मैं समझता हूँ भी कांग्रेस किसी रेस में रह ही नहीं गई। भूपेश बघेल जी आए, वो हालात ठीक तो क्या करके जाने थे, पंजाब में ऐसे हालात करके भी कांग्रेस वालों को ये बोल दिया भी ये तो अब बन गया है, तो इसको कोई उतार नहीं सकता। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, ये ऑपोजिशन वाले नहीं कह रहे, ये खुद कांग्रेस के लोग ही लीडर जो है ना, वही कह रहे हैं अभी राजा वडिंग जो है ये कॉम्प्रोमाइज करके बैठा हुआ है भगवंत मान के साथ।
1: इस बीच दिल्ली से कांग्रेस नेता उदित राज ने भी पंजाब के कांग्रेसी नेताओं को आईना दिखाया है। उदित राज ने भी पार्टी की सबसे कमजोर नस पर हाथ रख दिया।
8: आपस में लड़ेंगे तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ये बात समझ में आना चाहिए। उत्तराखंड में हम इसी तरीके से सरकार बनाते रह गए, पिछले बार पंजाब में भी ऐसे ही रहा, अभी समय है।
1: 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस खुद को सत्ता का दावेदार बताती है, लेकिन आज तस्वीर यह है कि विपक्ष से पहले उसे अपने ही नेताओं को एक मंच पर लाने की चुनौती है। और जब पार्टी का सबसे बड़ा संघर्ष पार्टी के भीतर हो तो विरोधी दलों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। यही पंजाब कांग्रेस की सबसे बड़ी राजनीतिक विडंबना है। आज तक ब्यूरो।
5: और अब उन सवालों पर डालते हैं नजर जिनके इर्द गिर्द आज की हमारी बहस रहेगी केंद्रित। सवाल नंबर एक, क्या पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व का संकट है या महत्वाकांक्षाओं का ये टकराव? सवाल नंबर दो, 2027 का चुनाव कैसे जीतेगी कांग्रेस पार्टी जब नेता ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं? और सवाल नंबर तीन, क्या कांग्रेस में असहमति लोकतंत्र की निशानी है या अनुशासनहीनता की? खास मेहमान भी हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जुड़े हैं, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जुड़े हैं, हमारे साथ एमएस ग्रेवाल जुड़े हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शिरोमणि अकाली दल, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवाई साहब भी जुड़े हैं और राजनीतिक विश्लेषक रजत सेठी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। शुरुआत आज सुरेंद्र राजपूत जी आपसे कि प्रदेश की जनता आपको लड़ते हुए आपको जूझते हुए देखना चाहती है, लेकिन प्रदेश के मुद्दों के लिए बेरोजगारी महंगाई तमाम तरह के मुद्दे हैं, लेकिन आप लड़ रहे हैं, आप जूझ रहे हैं अपने आप से?
9: ये आपको लगता है राजीव, अभिव्यक्ति की आजादी अगर असलियत में कहीं कोई आप देखते हैं तो वो कांग्रेस में है। हम इस तरीके से नहीं है कि शेखर सुमन ने 4 एपिसोड सरकार के खिलाफ या जनता के पक्ष में क्या कर दिए तो उसके यहां भी ईडी की रेड पड़ गई। हम ईडी वाले नहीं हैं, सीडी वाले नहीं हैं, हम सीबीआई वाले नहीं हैं, हम वो लोग नहीं, हम नरोत्तम मिश्रा नहीं है। असहमति हमारे यहां होती है मतभेदों को सुलझाने के लिए, विवाद जो होता है वो संवाद से के जरिए सुलझ जाता है। हम लोग ऐसे नहीं
5: मतलब
9: है कि बाकी
5: उसमें
9: सीट है
5: अवसरवादी भी कह दिया जाता है, उसमें समझौतावादी भी कह दिया जाता है, मतलब आपके लिए ये मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन है, ये अभिव्यक्ति की आजादी है।
9: हमें मेरी पूरी बात हो जाए भाई, तो आप तो बड़े प्रख्यात एंकर हैं, तो आप अगर बीच में टोकेंगे तो मेरी बात का तारतम्य खत्म हो जाता है।
5: नहीं, मैं पूछ रहा था कि बस अभिव्यक्ति की आजादी आपने से बताया है तो उसमें ये सब जायज स्लीपर सेल कहना, बस मेरा ये सवाल है, इस पर जवाब देते हुए अपनी बात को कंप्लीट करें।
9: नहीं देखिए, हाँ देखिए, तो जैसे बांकीपुर का चुनाव है, उपचुनाव है बिहार में, जो नितिन नवीन इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट खाली है, वहां पर दो दो बार प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को चेंज करने पड़ रहे हैं, मीडिया में सुई पटक सन्नाटा है। नरोत्तम मिश्रा 8-8 किलोमीटर का लंबा 8-8 घंटे का जाम लगवा दे रहा है दतिया में और अपने प्रत्याशी के खिलाफ में, तो वहां पर मीडिया में सुई पटक सन्नाटा है। हमारे यहां पर अगर कोई चीज लोकतांत्रिक तरीके से चल रही है, असहमति भी होती है, ये बात नहीं हम कहते कि असहमति नहीं है, असहमति भी होती है, विवाद भी होता है, विवाद को हम संवाद के जरिए, और जब विवाद होता है गुस्सा गसाई में तमाम छोटी मोटी बातें निकल जाती हैं। आज की डेट में हमारे यहां हमारा फ्रैक्चर्ड हाउस नहीं है, हमारे यहां संवाद के जरिए विवाद का समाधान है और एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिसी है। हमारे यहां भारतीय जनता पार्टी की तरीके से नहीं है कि खाता ना भाई, जो मोदी जी कहे सही, मोदी जी उनकी अमित शाह जी की कठपुतली है, अमित शाह जी मोदी जी की कठपुतली है, ये तो वो सब लोग बताएंगे, लेकिन हां पंजाब में जो कुछ भी है, किसी भी पार्टी के किसी भी धड़े ने, किसी भी पार्टी के किसी भी नेता ने हमारे ये नहीं कहा आकर के कि नहीं साहब हम कांग्रेसी नहीं है। हर आदमी कांग्रेसी है, अपनी असहमति कभी सार्वजनिक रूप से, कभी
5: आपकी ये बात आ गई है, आपने तो कहा कि मीडिया में सुन बटा सन्नाटा था, मुझे मतलब मुझे मालूम है सुरेंद्र जी आप मीडिया देखते हैं और आप आज तक भी देखते हैं, बट शायद आपने कुछ दिनों से आज तक नहीं देखा। हमने बांकीपुर के विषय को भी उठाया, उस पर भी सवाल पूछे, और कल तो नरोत्तम मिश्रा के मसले पर ही कल डिबेट हुई आज तक में 5 बजे की, बहरहाल आपने शायद देखी नहीं होगी, लेकिन आप जिसे आंतरिक असहमति बता रहे हैं उसे सीधा हाईकमान को चुनौती कह रहे हैं कि आपके आलाकमान की बात मानी नहीं जा रही है और उनके विरोध में स्वर बुलंद किए जा रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट है आपके आलाकमान की है जो पंजाब में हो रहा है, जिसे आप आंतरिक असहमति कह रहे हैं। हाँ,
9: हमारे यहां आला कमान तक पहुंचने की सबको इजाजत है। हमारे यहां आला कमान तक पहुंचने की हर शख्स को इजाजत है, अपनी बात कहने की हर शख्स को इजाजत है, इसको आप असहमति को आप अनुशासनहीनता नहीं कह सकते। हमारे यहां ये बात है, राहुल गांधी जी तक सब लोग पहुंचते हैं, खड़गे जी तक सब लोग पहुंचते हैं, आप बता दीजिए ना भारतीय जनता पार्टी में कौन नरेंद्र मोदी जी तक पहुंच पाता है, नरेंद्र मोदी जी तो यहां पर उपचुनाव में बैठे हैं, क्या नाम सेसेल्स में, जहां की आबादी 1,15,000 है, वहां पर जाकर के अपना पता नहीं कौन सा सम्मान ले रहे हैं, जिसका वही क्या नाम वही इंग्लिश ही गलत है। एनीवे वो उनका अपना मामला है, लेकिन
5: मेरे तीन में स्पेसिफिक वर्ड्स आपके सामने रख रहा हूं कि आंतरिक असहमति में इन शब्दों का प्रयोग होता है क्या, कॉम्प्रोमाइज लीडर, स्लीपर सेल, समझौतावादी?
9: ये जब आप असहमत होते हैं तो तमाम तरीके की कुछ बातें ऊपर नीचे हो जाती हैं, ऐसी कोई इसमें कोई बड़ी ऐसी चीज नहीं है। कल मां बहन की गालियां नरोत्तम मिश्रा के समर्थक दे रहे थे आशुतोष तिवारी को, हमारे यहां ये तो नहीं हुआ ना, मां बहन की गालियां दे रहे थे। अब वो अनुशासनहीनता या असहमति है जरा देख लीजिए, पूछ लीजिए, मां बहन की गालियां पूरी की पूरी। दतिया कांग्रेस ने, दतिया भाजपा ने इस्तीफा दे दिया था आपके सामने, हमने तो नहीं कुछ कहा, असहमति है, होती है, नरोत्तम मिश्रा समझा रहा है उनको, खत्म कहानी। लेकिन हमारे यहाँ की चीजों को ऐसे उठा करके देखा जा रहा है।
5: शहजाद पूनावाला, मतलब ये अभिव्यक्ति की आजादी है, सच्चा लोकतंत्र देखना हो तो कांग्रेस पार्टी में देखिए, ये अभिव्यक्ति की आजादी है।
9: मोबाइल दे दो तो।
5: शहजाद पूनावाला,
10: सबसे पहले जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और देखिये ऐसा है कि सुरेंद्र राजपूत कम से कम पार्टी से एक लाइन लेकर आए। राजीव जी, अभी स्टार्टिंग में आपने पूछा तो उन्होंने बोला कि देखिए हमारे यहाँ लोकतंत्र है, वहां पे मोदी जी का डिक्टेटरशिप है, और अंत करते करते उन्होंने बोला कि नरोत्तम मिश्रा के समर्थक जो है वो अपनी बात रख रहे हैं। तो डिक्टेटरशिप है या डेमोक्रेसी? अगर डिक्टेटरशिप होता तो किसी की हैसियत नहीं होती, और अगर डेमोक्रेसी है तो भाई वो तो अपनी बात रखेंगे अपने नेता के लिए, पर नेता क्या बोल रहा है महत्वपूर्ण ये है। चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, चाहे हमारे बांकीपुर के पुराने कैंडिडेट हो, उन्होंने आकर बोला कि देखिए हम लोग अपने व्यक्तिगत कारणों से इस प्रकार से अलग हो रहे हैं। पर इसके उलट अब मैं आपसे पूछा जाता हूँ, आला कमान, भाई आला कमान पहले विदेश से आए भारत तो तब तो आला कमान के पास को पहुंचेगा। दूसरी बात राजीव जी, देखिए मैं मानता हूं कि आप बहुत ही अच्छे अनुभवी पत्रकार है, पर कांग्रेस के प्रति थोड़ा आप इनोसेंट है, यू आर लिटिल इनोसेंट टुवर्ड्स कांग्रेस। मैं आपको बताता हूं क्यों। आपके वैसे गृह प्रदेश में ही आपने देखा है कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस क्या हुआ है, और उदित राज जी ने बताया है उत्तराखंड कांग्रेस का हाल आप जानते ही हैं, परंतु मैं आपको बताता हूं कर्नाटका में कांग्रेस टुकड़े टुकड़ों में है, तमिलनाडु में कांग्रेस टुकड़े टुकड़ों में है, इसी पंजाब में अमरिंदर सिंह और सिद्धू में कांग्रेस टुकड़े टुकड़ों में थी, बगल में राजस्थान पायलट गहलोत कांग्रेस टुकड़ों में है, बगल में हिमाचल प्रतिभा सिंह जी और सुक्खू कांग्रेस टुकड़ों में है, केरलम में थरूर वर्सेस कांग्रेस टुकड़ों में है। जब चन्नी जी नाराज होते हैं तो वो स्टेटमेंट देते हैं, तिवारी जी स्टेटमेंट ट्वीट करते हैं कि केसरा कसरा, मेरे साथ तो क्या हो गया, टैलेंट होना गुनाह हो चुका है, थरूर जी तो आए दिन बोलते हैं। तो मैं देखिए मैं इनोसेंट नहीं हूं आपकी तरह, तो मैं गिफ्ट लेकर सुरेंद्र जी के लिए, ये टेप है सुरेंद्र जी को बोलो ऐसे एक साइड पे राजा ब्रार को लगाना है, दूसरी साइड से भी चिपकता है तो दूसरी साइड पे चन्नी जी को लगाना है, फिर एक साइड पे राजा ब्रार को लगाना है, दूसरी साइड पे वो फिर उनको लगाना है, रंधावा जी को लगाना है जो बोल रहे स्लीपर सेल है, फिर एक साइड से तिवारी जी को लगाना है, दूसरे साइड से राजा ब्रार को लगाना, ऐसे ये टेप जो है ना ये काम आएगा, क्योंकि मुंह पे टेप है आम आदमी पार्टी की सरकार पे, इनके मुंह पे टेप है, ये आम आदमी पार्टी को एक शब्द नहीं बोल पाएंगे, वहां से केजरीवाल इनको मैसेज करेंगे कि मत बोलना सुरेंद्र, तो इसलिए सुरेंद्र राजपूत ऐसे मुंह पे टेप लगा के बैठे हैं। हम लोग जो है
5: आपके सुझाव पर पंजाब रिएक्शन लूंगा, लेकिन शहजाद ये बताएं कि कांग्रेस पे इंटरनल फाइट से मतलब बीजेपी को क्या फायदा होगा? आप जैसे यूपी में कहते हैं ना कांग्रेस के लिए कि वो तीन में नहीं है, वो तेरह, तीन में तेरह में नहीं है, उसी पर अगर आप पंजाब में नहीं, तो अगर फायदा होगा भी इस टूट के तो शिरोमणि अकाली दल को हो जाएगा, दूसरी आम आदमी पार्टी को हो जाएगा, आपको क्या फायदा होगा?
10: राजीव जी, मेरी पार्टी सबसे पहले तो छोटी पार्टी, स्मॉल ब्रदर के रूप में थी, छोटा प्रा है ना, अभी बड़े हम लोग पराजी बड़े हैं, अभी बने हैं, क्योंकि हम अकाली के साथ लड़ते थे तो हमें सीटें ही कुछ नहीं मिलती थी, पर जब पहली बार लड़े अकेले दम पे और पूरी ताकत से, तो जहां 9-10% का वोट था वो 18-19% हो गया है, और अब सोचो कि इस बार लड़ेंगे तो हम लोग तो सीधा सरकार बनाने वाले हैं। बंगाल में भी आप लोग मॉक करते थे, बना दी ना, ओडिशा में भी मॉक करते थे, बना ली ना, हम लोग को नॉर्थ ईस्ट में भी, आसाम में तीसरी बार बना ली ना, पर 10-15 सेकंड और चाहता हूँ इसलिए। एक्चुअली राजीव जी देखिए, अच्छा किया आपने राशिद जी को बुलाया, और रजत जी भी, दोनों बहुत ही सुलझे हुए कमेंटेटर्स एनालिस्ट है, और राशिद जी आपको बताएंगे, वो हो सकता है ऐसे नहीं स्वीटली नहीं दूसरे तरीके से, कि ये दरअसल हमला राहुल गांधी पे है, दिस इज नॉट अटैक ऑन राजा वेडिंग. राजा वेडिंग कौन है भाई? राजा वेडिंग के पीछे है राहुल, और जो हमले कर रहे वो पता है कौन करवा रहा है? प्रियंका दीदी. प्रियंका जी बोल रही है आप जगह मेरे लिए खाली करो राहुल, तुम जाओ. देखो डीकेएस को बैठा दिया कर्नाटका में, वो दीदी का कैंडिडेट है. सतीशन को बैठाया केरलम में, वो दीदी का कैंडिडेट है. दीदी का कैंडिडेट जो है प्रतिभा सिंह है, सुक्कू को बार बार पिन कर रहे हैं.
5: ठीक है, यहाँ पर दूसरे मेहमानों के पास भी जाना है. सुरेंद्र जी, मैं चाहता हूँ सिर्फ 30 सेकंड में आप जवाब दीजिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊँ, क्योंकि आपकी तरफ बहुत सारे कटाक्ष है सुरेंद्र जी से. लेकिन 30 सेकंड सर,
9: अब इस इनके कटाक्षों का नहीं, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं ना, कि जब उनको कुछ नहीं मिला बेचारों को, कि कांग्रेस से भी आए, सब जगह से आए और अब अपना चले गए, तो अब वो राहुल गांधी जी और उसमें जिसमें कोई हैसियत नहीं है जिस आदमी की, वो आदमी अपना इस तरीके की बातें बोले, हमको बोलने हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है. बहुत पहले से शहजाद भाई हमारे यहां से चले गए थे, कुछ पाने की प्रत्याशा में गए थे. इनके एक मिनट देखो आप राजीव भाई, ये गलत, मैं इसके बीच में नहीं बोला. आप पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी की भी टीम है. भारतीय जनता पार्टी ने इंपोर्ट कर लिए उनके साथ राज्यसभा सांसद, मुख्यमंत्री उनका शराब पी करके उसमें आता है और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे टेप लगा रहता है. हमें कुछ नहीं कहना, हमें तो ये कहना है कि जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं, जो जैसे बिट्टू है, बिट्टू गद्दार कांग्रेसी आज की डेट में,
10: क्या बात,
9: तो हम और किसी को कुछ नहीं कहते. लोकतंत्र की असहमति में आज की डेट में,
5: ठीक है,
9: आज की डेट में बीच में मत बोलो शहजाद. अगर मैं आपके बीच में बोला तो आपको परेशानी होगी. आप क्यों तारतम्य तोड़ रहे हो? आप क्यों गद्दार कांग्रेसियों को बचाना चाहते हो? आप भी गद्दार हो क्या? आप तो पुराना आपका हो गया हिसाब. आपको हम कुछ नहीं कहेंगे, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे. दो चीजें मैं बड़ी स्पष्ट कहता हूं राजीव भाई, बहुत स्पष्ट समझ लीजिए कि हमारा हाउस बिल्कुल ठीक है, आप अपने हाउस की चिंता कीजिए ना.
5: ठीक है,
9: नितिन नवीन के यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर जो शख्स को टिकट चेंज करना पड़ जाए, नरोत्तम मिश्रा को, जिस क्या नाम, नरोत्तम मिश्रा जहां पर 8-8 घंटे का जाम लगा दे और मां बहन की गालियां एक दूसरे को दे रहा हो, वो हमें ना समझाए. लोकतंत्र हमने सिखाया है और भारतीय जनता पार्टी के
5: सुरेंद्र जी दूसरे मेहमानों के पास जाना, मैं लौटता हूं सर आपके पास, मैं शहजाद आपके पास भी आऊंगा.
10: एमएस ग्रेवाल, मात्र 10 सेकंड
5: मैं शहजाद आऊंगा आपके. चलो 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड में बोलेगा.
10: ऐसा है, पार्टी का तारतम्य बिगड़ चुका है सुरेंद्र भाई, आप अपना तारतम्य मत बनाइए. और बिट्टू जी बेअंत सिंह के परिवार
9: पार्टी
10: से,
9: के तारतम्य की आप हमारे चिंता मत कीजिए, आप अपने तारतम्य की चिंता कीजिए शहजाद जी. और शहजाद भाई, गद्दारों की गद्दारों से हमें कोई भी किसी भी तरीके
5: की आसानी नहीं है. ठीक है, आप दोनों की बात है, दूसरे मेहमानों के पास भी चलते हैं. एमएस ग्रेवाल साहब, कांग्रेस भले ही मान रही है कि अभी ये कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है, ये आंतरिक असहमति हो सकती है और हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी है, लेकिन फिर भी इस लड़ाई, इस राजनीतिक लड़ाई का फायदा क्या अकाली दल को होगा?
11: मैं एक बात कहना चाहता हूं बहुत स्पष्ट, ये है तो कांग्रेस का इंटरनल मामला है, पर इतना इन्होंने पब्लिक में अपने आप को एक्सपोज कर दिया है, अब ये कुछ कहें अब लोग जानते हैं. क्योंकि एक बात बहुत स्पष्ट है राजीव, जो कांग्रेस में है इतना बड़ा बगावत किसी शह के बिना नहीं हुई. ये शय किसकी है ये टाइम बताएगा. क्योंकि अगर सोचे कि ये कांग्रेस कांग्रेस से लड़ रही है, नहीं, कांग्रेस को कांग्रेस से कौन लड़ा रहा है वो टाइम बताएगा. पर ये पक्का है कि कोई ना कोई शक्ति है जो जिसने ये सिचुएशन क्रिएट करके आमो सामने खड़े कर दिए.
5: एमएस साहब, ये कौन सी शक्ति है? आप तो खुलकर बोलने के लिए जाने जाते हैं, बताइए कौन सी शक्ति है, कौन दे रहा है?
11: शहजाद जी बैठे हैं आपके पास,
5: बीजेपी
11: टेप ले बैठे हैं, क्यों नहीं? देखो अफसोस ये है कि पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स रहने देना चाहिए था. जो लॉ बना है लॉ बना चाहिए. एंटी डिफेक्शन लॉ आज डिफंक्ट लॉ हो गया, डिफेक्शन रूल बन गया है. कोई किसी की कमिटमेंट नहीं, कोई कहाँ जाए कोई कहाँ आए, छोड़ने वाली पार्टी को गाड़े काटते हैं. मैं आपको बिट्टी जी की बात बताता हूँ, हमारे लुधियाना से हैं. जब ये जिमीदारों का खेल हो रहा था तो उन्होंने बीजेपी को छत पर चढ़ के गाली निकाली कि इन्होंने ना हमको घर का छोड़ा, ना किसानों को छोड़ा, ना खेती बाड़ी को छोड़ा. सो जब लोग कमिटमेंट छोड़ जाते हैं उनकी कोई बात नहीं होती, अपॉर्चुनिज्म की भी पॉलिटिक्स खेलते हैं, उसमें सब कुछ पॉसिबल है और उसका ये नतीजा है. और ये भी बात ठीक है कि कांग्रेस में भी पावर सेंटर मोर देन वन है.
5: हाँ.
11: तो जब मोर देन वन सेंटर हो तो फिर हर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है. ये किसी से लुकी नहीं हुई बात कि ये डिफरेंट सेंटर हैं, क्योंकि सोनिया जी जब भी देखते हैं कि हाथ से बात निकलती है तो थोड़े से बेचारी एक्टिव होते हैं, चाहे उनकी सेहत तो उनको इजाजत नहीं देती। पर ये मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकली पंजाब के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, पंजाब नीड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पंजाब नीड पीस, कम्युनल हार्मनी। जब ये लोग लड़ते हैं तो जो पंजाब के दोखी लोग होते हैं, जो पंजाब को आग लगाना चाहते हैं, उनके लिए भी रास्ते खुल जाते हैं। परंतु ये बात पक्की है
5: ठीक है,
11: कांग्रेस के लिए जो डैमेज ये सारे कारनामे ने कर दिया है, ये जितना मर्जी जोर लगा ले वो रिकवर नहीं होगा, क्योंकि फ्रैक्चर जितना मर्जी जुड़ जाए, ये कंसिडर्ड ओपिनियन डॉक्टर्स की कि उधर लकीर जरूर रह जाती है और मिटती नहीं है।
5: ठीक है रशीद साहब, आपको चर्चा का हिस्सा बनाते हुए कि आपको ये वाकई विचारधारा की लड़ाई लग रही है या पद और नेतृत्व की लड़ाई सीधी सीधी सी है?
12: राजीव देखिए, ये गंभीर समस्या है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस ने अभी एक अच्छा प्रदर्शन किया था जब केरल में उसकी जीत भी थी, केरलम में, और जिस तरह से मुख्यमंत्री बनाया गया ऐसा लगा कि जैसे डेमोक्रेटिक कांग्रेस हाईकमांड ने जनता की बात सुनी। फिर कर्नाटक में भी नेतृत्व परिवर्तन हुआ जहां डीके शिव कुमार को बनाया, संगठन के व्यक्ति को दिया गया। तो उस तरीके से पंजाब का जो अभी नजर आ रहा है बैड ऑप्टिक्स है, मतलब देखने में अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि चुनाव में उसका असर होगा, ये अभी हम बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, चुनाव में समय है। एक राजीव, एक सहमति बन गई थी मोटे मोटे तौर पे कि राज्य का जो मुखिया है, कांग्रेस का मुखिया, उसका परिवर्तन होगा, और उस पर एक सुनील कानूगोलू की एक कमेटी की रिपोर्ट भी आई थी, अजय माकन कमेटी की भी रिपोर्ट थी, तमाम चीजें थी। लेकिन जब जो लिस्ट आई तो लिस्ट में जैसे हम कहते हैं चूचू का मुरब्बा की, उसमें जो प्रदेश अध्यक्ष सीएलपी लीडर वो रहे, और फिर और ज्यादा दो लोगों को जिम्मेदारी दी गई, और एक ही काम के लिए दो दो तीन तीन लोग हो गए, और उसमें हमें विद्रोह जैसी कैफियत नजर आती है। और राहुल गांधी का देश से वो बाहर जा सकते हैं, और आज मेरी जानकारी है कि वापस भी आ गए हैं, लेकिन इस समस्या को उन्हें ध्यान देना चाहिएगा, क्योंकि जो संगठन का जो कामकाज देखते हैं वो भी एक गुट के साथ है और एक गुट के विरोधी प्रतीत होते हैं। तो यहाँ बहुत सारी कांग्रेस ने अपने आप को उलझा के रखा है, लेकिन पानी सर से ऊपर नहीं हुआ है। यहाँ अभी मेरे मित्र शहजाद मेरी तरफ से एक बात कह रहे थे कि राहुल गांधी वर्सेस प्रियंका, मुझे नहीं लगता कि वो इशू है या वो समस्या है इस समय। समस्या ये है कि नेतृत्व में एक में चुनाव लड़ना चाहिए कांग्रेस उसका नहीं। दिलचस्प बात यह है कि शहजाद जो मेरे मित्र हैं, मेरे को वो आज जो टेप लेके आए वो पारदर्शी है, कि मतलब आप देख सकते हैं किसी के मुंह पे टेप लगा भी हो तो पता चल जाएगा कि वो बोलने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें तमाम चीजें हैं जो हम उसको एग्जेजरेट कर रहे हैं। ये जैसे हम कहते हैं कि चाय की प्याली में तूफान है जो समझा जा सकता है और समझ जाएगा अगर राहुल गांधी कल परसों कोई मीटिंग वगैरह लेते हैं और उसमें मामला क्लियर हो जाता है, क्योंकि कोई भी देखिए विरोधी नहीं है, मतभेद हुआ है लेकिन उस तरह का सर से पानी ऊपर नहीं हुआ है, और 2021 जैसी स्थिति नहीं है। तो कांग्रेस को फौरन इसका तत्कालीन कदम बढ़ाने चाहिए ताकि अपना घर ठीक ठाक रख सके।
5: ठीक है रजत, क्या आपको लगता है कि अभी भी पानी सर से ऊपर नहीं निकला है या आलाकमान के हाथ से बात निकले, क्योंकि अब तो सीधा सीधा ब्लैकमेलिंग से दिखाई दे रही है कि नेतृत्व तो हमें ही चाहिए?
13: नहीं, मैं राशिद जी की बात सुन रहा था, तो जो आपके चैनल में जो टिकर चल रहे हैं, जिस तरह की बातें कही जा रही हैं दोनों पक्षों से, अगर कोई वही पढ़ लें तो आपको मालूम चलेगा कि ये कोई छोटा मोटा विषय नहीं है कि ये कार्यकर्ता नाराज है कि उसके नेता को उचित पद नहीं मिल रहा है। ये तो बीच से फांक हुई है कांग्रेस की, और वो आदत है, ये कांग्रेस पार्टी का पिछले 10 सालों से जो हम रवैया देख रहे हैं कि ये डीएनए तक घुस गया है। कोई भी प्रदेश हो दो फाड़ में पार्टी बटी रहेगी, सत्ता में आ जाए तो भी बटी रहेगी, सत्ता में नहीं आए तो भी बटी रहेगी। तो मुझे समझ में नहीं आता, और इसका सबसे बड़ा रीजन होता है मॉरल लीडरशिप की और विचारधारा की लीडरशिप की कमी, और ये सबसे ऊपर से ही चीजें चलती है। जब नेता में ही कोई कोर आइडियोलॉजी नहीं होगी तो आप बांधेंगे कैसे लोगों को, वो क्या आइडियोलॉजिकल ग्लू है जो कि लोगों को बांध के एक मिशन की तरफ आगे कर सके। जो दो पक्ष लड़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इनके दोनों में कोई ऐसा विचारों की लड़ाई हो रही है कि हमको पंजाब को किस ऊंचाइयों पर लेके जाना है, इसमें मतभेद है तो आए लड़े? ये तो अपनी कुर्सी के चक्कर में लड़ते हैं और इतना महत्वाकांक्षा केंद्रित होकर लड़ते हैं कि जनता को दिख जाता है। और इसीलिए बार बार कांग्रेस का जो हश्र होता है, इनकी तो सरकार चली गई, इतने स्ट्रांग थे, इनकी पार्टी ने अच्छा काम भी किया था उस समय, लेकिन जब इंटरनल लड़ाइयां होंगी तो अमरिंदर सिंह जी अलग गए, चन्नी जी अलग गए, और दो फांक हो गई और पूरी पार्टी तबाह हो गई। और मुझे लगता है कि ये ट्रेंड जो है हर स्टेट में, ऐसा क्या है कि कांग्रेस पार्टी ही ऐसी अनोखी पार्टी तो नहीं है कि जो कि ऑपोजिशन में बैठी है, ऐसा क्या है कि पूरी पार्टी हर संभव प्रदेश जितने भी हैं भारत भर में हर जगह दो हिस्सों में बटी हुई है? आप कुछ तो इंटरनल एनालिसिस होना चाहिए ना कांग्रेस पार्टी का कि ऐसा क्या होता है या क्या हमारे नेतृत्व में इतनी कमी रह जाती है कि हम लोगों को एक मिशन के अराउंड हम ओरियंट ही नहीं कर पाते, उन लोगों को एक एक पंक्ति में खड़ा ही नहीं कर सकते। तो ये राहुल गांधी को सोचने का विषय है जो कि वो सोचेंगे नहीं,
5: ठीक है
13: उनको लगता है ऐसी चलती हैं पार्टियां।
5: सुरेंद्र राजपूत, मैं चाहता हूं कि इस पर आप रिएक्ट करें, बताएं कि क्यों नहीं एकजुट रख पाते हैं। मतलब आप अपने इतिहास से भी नहीं सीख पाते हैं, मतलब आप पंजाब में ही लड़ाई हुई थी उसका नुकसान हुआ, आप बीजेपी से ही क्यों नहीं सीख लेते कि वहां पर भी, इसमें कोई दोहरा नहीं कि असहमतियां होती हैं लेकिन वो ऐसे सार्वजनिक मंच पर नहीं आ पाती जैसे कांग्रेस में खुले तौर पर दिखती है कि हाँ कुर्सी चाहिए, कुर्सी की लड़ाई।
9: दो चीजें हैं, मैं आपको सारी बातों का सिलसिलेवार, सभी ने मुझसे सवाल किए, राशिद भाई ने अच्छे सवाल किए, रजत जी ने कठोर किए, ग्रेवाल साहब हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट हैं, हम लोगों ने बहुत अपोनेंट्स के साथ तरीके से चुनाव लड़ा है, लेकिन ग्रेवाल जी से मैं पूरी तरीके से नहीं लेकिन आंशिक तरीके से सहमत हूं, अपनी जगह पर है सारी बातें। हम तो कहते हैं कि हाँ हम में है अनबन, हम उसको सुलझा लेंगे। दूसरी बात, अगर दूसरी पार्टियों को तोड़ना कोई कोर विचारधारा, जैसा रजत अभी कह रहे थे हमारे हमारे नेता में विचारधारा नहीं है, अरे भाई गद्दारी कराना भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है क्या? दूसरे के राज्यसभा सांसदों को तोड़ लेना कौन सी विचारधारा है? टीएमसी के लोकसभा सांसदों को तोड़ लेना, विधानसभा के सांसदों को तोड़ करके गद्दारी करा करके अपने गुट में शामिल, ये कौन सी विचारधारा है? इससे तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कम से कम हम आपस में अपनी असहमति कर रहे हैं, और कोर विचारधारा के लिए मैं आपको बधाई दूंगा, आपने इस पर बहस भी करी, लेकिन आप देखिए पंजाब में कोई आदमी ये नहीं कह रहा है कि वो कांग्रेस ही नहीं है। उनको असहमति है कि भाई ये पद चाहिए या ये कद चाहिए। चुनाव के समय हर एक आदमी को अपने अपने लोगों को एडजस्ट भी कराना होता है, और एडजस्ट होंगे, कोई संगठन में एडजस्ट होगा और कोई कहीं होगा। अभी दो दिन में
5: सुरेंद्र
9: आपको
5: जी,
9: सारी
5: एमएस ग्रेवाल साहब ये कह रहे हैं कि ये किसी के शह पर
9: जिस
5: हो रहा है,
9: तरीके से लोकतंत्र,
5: क्या आपको लगता है किसी के शह पर हो रहा है?
9: हाँ, मैं भी वो भी ये महत्वाकांक्षा की सह पर हो रहा है। ग्रेवाल साहब आपने बहुत अच्छी बात कही, हमें आपसे इतनी अच्छी बातों की उम्मीद नहीं थी। आज की डेट में भी अगर लोग पॉलिटिकल डिस्कोर्स को इस तरीके से डिस्कस करते हैं तो मैं आपको बधाई दूंगा। मेरे को सिर्फ 20 सेकंड आप दे दे, 15-20 सेकंड दे दीजिए। आज की डेट में आप मुझे ये बताइए, क्या लोकतंत्र दूसरी की पार्टियों को तोड़ने से चलता है या गद्दारी कराने से चलता है? इस बात, और ये क्या ये कोर है शीर्ष नेतृत्व का जो नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी की कठपुतली बनके कर रहे हैं, या अमित शाह जी नरेंद्र मोदी जी कठपुतली बनके लोकतंत्र के साथ लोग जो गद्दारी कर रहे हैं वो ज्यादा बड़ा इशू है, या हमारा आपस में असहमति रखना ज्यादा बड़ा इशू है? हम तो दो दिन में संभल जाएंगे, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने डेंट पहुंचाया है कि आज की डेट में पता नहीं, जो अभी ग्रेवाल साहब ने कहा कि कौन सी पार्टी कहां चली जा रही है, कौन कहां पर वो हो जा रहा है, गद्दारी को आजकल, निर्लज्जता को आजकल आभूषण बना दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। ऑपरेशन टाइगर,
10: देखिए आपने काफी समय दिया और मैंने सुरेंद्र जी के बीच में नहीं बोला,
12: कोई जवाब
10: नहीं। तो राजीव, मुझे उम्मीद है कि मेरी बात पूरी सुनी जाएगी। राजीव जी, विचारधारा की कमिटमेंट ये होती है कि 4 तारीख को 2 बजे तक डीएमके के साथ भाई तू मेरा भाई तू मेरा भाई, और रात को 8 बजे टीवीके के साथ। कमिटमेंट टू विचारधारा ये होती है कि जिस समाजवादी पार्टी ने कहा कि इमरजेंसी सबसे काला अध्याय था भारतीय लोकतंत्र का, उसी समाजवादी पार्टी को मिलके फिर कभी चिरकुट भी बोलना, छुटवैया भी बोलना और एक दूसरे के साथ गठबंधन करना। कमिटमेंट टू विचारधारा ये होती है कि जिस आम आदमी पार्टी को गाली देते थे कि ये संविधान के खिलाफ है, उनके साथ 24 में गठबंधन किया, और जब संविधान
9: ओम प्रकाश
10: मेरी बात होने दीजिए,
9: माँ बहन की गालियां दी आपको।
10: राजीव जी ऐसे नहीं हो सकता,
9: माँ
10: राजीव
9: बहन की गालियां,
10: 2 मिनट
9: ओम प्रकाश
10: राजीव जी ये ठीक नहीं, राजीव जी ये ठीक नहीं,
9: पहले जो किया था वो क्या,
10: राजीव जी ये ठीक नहीं है। राजीव,
5: मैंने उनको रोका है,
10: मैंने
5: उनको
10: रोका है, मेरा भी तारतम्य है भाई।
5: सुरेंद्र जी प्लीज प्लीज, मैंने आप जब क्या बोल रहे थे तो सारे सारे सारे पैनलिस्ट आपको सुन रहे थे। सुरेंद्र जी प्लीज,
10: राजीव जी मैंने
5: आपके पास आऊंगा ना, मैं समय दूंगा ना सुरेंद्र जी आपको, आपको मैं काउंटर करने का समय दूंगा, सिर्फ सुरेंद्र जी, सिर्फ शहजाद बोलेंगे।
10: राजीव जी, विचारधारा की कमिटमेंट ये होती है कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन, पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का तलाक,
12: और चंडीगढ़ में सिचुएशनशिप जहां पे समर्थन भी लिया पर गठबंधन नहीं किया, ये 24 की बात कर रहा हूं। फिर राजेंद्र पाल गौतम को इंपोर्ट कर लिया आम आदमी पार्टी से, फिर अलका लांबा को इंपोर्ट कर दिया आम आदमी पार्टी से, योगेंद्र यादव इंपोर्ट हो गए आम आदमी पार्टी से, कहां से आई, ये विचारधारा वाले थे क्या? अच्छा दूसरी बात पे मैं आना चाहता हूं। देखिए ऐसा है कि हमारी चिंता कांग्रेस क्या करती है उसमें नहीं है, यह बात सही है। कांग्रेस अगर गलती से सत्ता में आई तो कैसे सरकार चलेगी भाई? 7 दिन के 7 मुख्यमंत्री होंगे। जो चल रहा है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में खटाखट दिख रहा है क्या हो रहा है। कर्नाटका में डीके शिवकुमार को मनाया, 1 हफ्ते में 3 रेजिग्नेशन हो गए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये प्रियंका द्वारा प्रायोजित है, मैं तो अंदर से कांग्रेस ही निकला हूं ना, मुझे तो पता है कांग्रेस का। 10 सेकंड में आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, प्रियंका जी ने सुरेंद्र राजपूत
9: नहीं, नहीं, गद्दार और गद्दार निकले हैं आप, अंदर से कांग्रेस नहीं है। भाई मुझे बताने
12: दीजिए राजीव जी,
9: गद्दार
12: राजीव जी, प्लीज अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं राजीव जी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर सकता हूं
5: नहीं वो हां
9: नहीं कांग्रेस ही आप अंदर
12: से मत, थैंक यू राजीव जी, मैं अपनी बात कंप्लीट करना चाहिए। हां ऐसा है राजीव जी, मेरे पास ये सूचना आई है कि प्रियंका जी और केजरीवाल की फोन पे बात हुई। केजरीवाल ने बोला बहन राहुल को हरा दो, इस बार की सरकार मैं बना लेता हूं आपके समर्थन के साथ, अगली बार आप बना लेना। प्रियंका ने बोला ठीक है, मुझे तो भाई को वैसे हराना है, केरलम में उसकी दाल नहीं पकने दी, कर्नाटका में भी दाल नहीं पकने दी, और उसका मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं, सुरेंद्र राजपूत को इंस्ट्रक्शन दिया गया है प्रियंका कैंप से कि आम आदमी पार्टी को गाली नहीं देना, आम आदमी पार्टी को कुछ मत बोलना, भाजपा को गाली देना,
5: शेजर लेकिन इसका जवाब दीजिए ना कि वो मतलब आजकल इतनी पार्टियां टूट रही हैं और सब कहीं ना कहीं बीजेपी से जाकर मिल जाते हैं, यहां पर भी शक आपकी तरफ है कि ये जो नाराजगी है, ये जो चल रहा है अभी लड़ाई, ये आपने करवाई है?
12: ऐसा है सुनिए, मैं हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूँ, मेरी पार्टी को आप दोष देते हो, ये जो 6 बसपा के विधायक राजस्थान में इन्होंने विलय करवाए, क्या हमारी पार्टी में आए क्या? वो तो कांग्रेस में गए थे गहलोत जी के कैंप में। अच्छा चलिए मुझे बताइए कि अगर हम कर रहे हैं तो नाना पटोले ने शरद पवार जी की पार्टी पे कट्टा रख के बोला शरद पवार जी पार्टी का विलय करवा दो, अधीर रंजन ने कट्टा रख के ममता बनर्जी की पार्टी को बोला ये 60 विधायक हम में विलय करवा दो, फिर सोनिया गांधी के जनपद के द्वार पे आए विलय करवा दो, ये तो ऑपरेशन विलय चला रहे हैं।
5: ठीक है
12: हम तो ऑपरेशन नहीं चला रहे, ये ऑपरेशन विलय चला रहे।
5: हाँ ठीक है सुरेंद्र जी 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा, फिर दूसरे मेहमान के पास जाऊंगा।
12: देखो आम आदमी पार्टी में नहीं बोलेंगे,
9: भारतीय जनता पार्टी मानसिक विक्षिप्तता और मानसिक विक्षिप्तता और वैचारिक दरिद्रता की पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है, आम आदमी पार्टी तो इनका ऑफशूट है, जब चाहते हैं ये तो आज मैं बताऊं आपसे इनकी दाल नहीं गल पाई कांग्रेसियों की वजह से, वरना आप पार्टी को तो ये भारतीय जनता पार्टी भगवंत मान को भाजपा का मुख्यमंत्री बना लेते, जैसे इन्होंने टीएमसी के सारे सांसदों को तोड़ा ऐसे ही आप पार्टी के भी सांसदों को तोड़ते। सच बात यह आप पार्टी के राज्यसभा तो तोड़े ही तोड़े हैं इन्होंने आज की डेट में, जिस तरीके की नहीं है, केजरीवाल से बड़ा भाजपा ही और केजरीवाल से बड़ा संघी कोई नहीं। एक केजरीवाल आपका समर्थक है और दूसरा ओवैसी आपका समर्थक है, हम तो खुले आप बोल रहे हैं केजरीवाल और ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी पूरी की पूरी तरीके से, और भगवंत मान जैसा बेवड़ा आदमी जो लोग बताते हैं आरोप लगाते हैं कि सदन में जाकर के भी शराब पीते हैं, लेकिन हमें बिलो द बेल्ट नहीं जाना, हमें राजनीतिक मर्यादाओं पर रहना है। जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी को बेवजह बीच में घसीट रहे हैं, इससे प्रूफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने शहजाद जी को इसी के लिए रखा है कि भाई तुम सिर्फ कूड़ेदान में कूड़ा इकट्ठा करो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास आज की डेट में मुझे तो उम्मीद थी कि इतनी मेहनत करके राज्यसभा नहीं इसको भो पाई, और प्रियंका गांधी जिस प्रियंका गांधी ने आज की डेट में आपको जो नाम हुआ है जिस परिवार की वजह से, उसी परिवार के बीच में बोलते
12: हैं
9: जाहिलाना हरकत जो करता है।
5: प्रमाण आप दोनों की बात है, एमएस ग्रेवाल साहब ठीक है, मैं लौट रहा हूं, एमएस ग्रेवाल साहब ऐसे ऑपोजिशन जब आपस में ही लड़ता रहेगा तो विपक्ष के मुद्दे तो फिर कहां ही उठ पाएंगे, तो आम आदमी के मुद्दे कहां उठेंगे फिर?
11: देखो बात यह है कि एक बात तो पहले बेसिकली आपको कहना चाहता हूं कि पंजाब की पॉलिटिक्स रेस्ट ऑफ कंट्री से ऑलवेज डिफरेंट है।
5: हाँ।
11: दिल्ली में कांग्रेस थी, पंजाब में अकाली दल सरकार थी, सारे देश में भारतीय जनता पार्टी और पंजाब में नहीं। जो पंजाब की पॉलिटिक्स है डिफरेंट पॉलिटिक्स है, इसमें इसके कई फैक्टर है, और उन फैक्टर्स में ये भी है कि पंजाब पसंद नहीं करता कभी कि उनको बाहर का कोई आके डिक्टेट करे। मैं समझता हूँ कि जो आज पंजाब जिस स्थिति में से गुजर रहा है, पंजाब को चाहिए एक मैच्योर सीजन लीडरशिप जो ऐसे लीडरशिप लड़ रही है। देखो क्या तक ये सच है या नहीं सच है, ये कांग्रेस लीडरशिप आप कहती है कि द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग है चीफ मिनिस्टर के साथ, उसने डराया हुआ है बसों का केस करके, नहीं बोलता ये सुखजिंदर सिंह रंधावा ने प्रेस में तो इतना ही कहा कि कंप्रोमाइज लीडर नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं डिस्ट्रस्ट है आपस में। जब डिस्ट्रस्ट होगा ये नहीं लड़ सकेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ जो मेरे भाई कह रहे हैं कांग्रेस वाले कि ये इंटरनल डेमोक्रेसी है, सॉरी टू से इंटरनल डेमोक्रेसी, इंटरनल डेमोक्रेसी कमरे में बैठ के अपनी विचारधारा प्रकट करती है, बाहर एकता दिखाती है। अब आपका जो भी मैसेज आ रहा है एक दूसरे के पास वो वाया प्रेस जा रहा है, थ्रू मीडिया जा रहा है, ये पंजाब के लिए नहीं अच्छा है और आपको तो नुकसान इसका हो ही गया है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि इसका फायदा कौन लेता है ये पंजाब के लोग बताएंगे, क्योंकि पंजाब चाहता है एक स्टेबल गवर्नमेंट, पंजाब चाहता है जो कम्युनल हार्मनी दे सके, जो गैंगस्टर राज खत्म कर सके, वो चीजें देखेंगे। परंतु जो इन्होंने अब मैस क्रिएट कर दिया है, ये सोचते होंगे 7-8 महीने इलेक्शन में पड़े, ये बहुत थोड़ा समय होता है, इतनी छेती लोगों की मेमोरी फेड नहीं होती जितनी
5: ठीक है
11: दीवार इतने कांग्रेस लीडर्स के में निकल चुकी है और प्रेस में एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, उसके बाद कभी ना सोचो कि ये इलेक्शन इकट्ठे होके लड़ लेंगे।

0: पर क्विक रिएक्शन नहीं होता कांग्रेस पार्टी का। ये अभी सुनील कानूगुलू और दूसरे का अजय माकन जी का नाम ले, तो दोनों एक तो कंसल्टेंट है, पॉलिटिकल कंसल्टेंट, दूसरा आदमी जो है वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं। राहुल गांधी के साथ समस्या क्या है, वो इनसिक्योरिटी से ग्रसित भी रहते हैं, क्योंकि वो परिवार उनका, गांधी नाम हटा दीजिए फिर राहुल क्या है, वो एक आम नागरिक से उनको फिर संघर्ष कर करके धीरे धीरे सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। और ये जड़ जो है परिवारवाद से ही शुरुआत होती है, क्योंकि जब आप इनसिक्योर होते हैं तो आप ऐसे लोगों को लेते हैं जो पॉलिटिकली, जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, कहीं मोहल्ले का चुनाव नहीं लड़ा, और वो पहुंच जाते हैं शिखर तक, डिसीजन मेकिंग के शिखर तक पहुंच जाते हैं। जब पॉलिटिकल सेंस ही नहीं होगी आपके अंदर, तो आप कैसे महत्वाकांक्षाओं को सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी पहली बार बड़ी यूनिकली विपक्ष में बैठी है, भारतीय जनता पार्टी भी बैठी है, जरूर कुछ लोग छिटके होंगे पिछले 30-40 साल में जब भाजपा विपक्ष में थी, बट ऐसा कोई पूरा घर ढह जाए ऐसा स्थिति नहीं आती है जो आज आप मध्य प्रदेश में देख रहे हैं। वहां पर जो कांग्रेस के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह का क्या हाल कर रहे हैं, इतना
1: ठीक है,
0: जिल्लत जो दिग्विजय जी कुछ बुढ़ापे में देखनी पड़ रही है। ये सिस्टमिक प्रॉब्लम इसीलिए आती है क्योंकि केंद्र पे जो आपके व्यक्ति हैं उनके पास मॉरल अथॉरिटी और पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि पारिवारिक
1: ठीक है।
0: अथॉरिटी है उनके
1: मैं
0: पास,
1: शहजाद
0: ये
1: आपका
0: रूट
1: आपका
0: कॉज
1: रिएक्शन
0: है।
1: को फिर सुरेंद्र जी अंतिम में आपके पास ही आऊंगा। 30 सेकंड में, लेकिन शहजाद अपनी बात कंप्लीट किया, समय कम है, 30 सेकंड सर।
2: सबसे पहले राजीव जी, ये आला कमांड नहीं, ये लाला कमांड। लाला कमांड मतलब लाला लैंड में रहने वाला कमांड है। ये लाला लैंड में इसलिए है, ना ये एलआई को साथ रख पा रहे हैं, ना ये परिवार के पार्टी के सदस्यों को साथ में रख पा रहे हैं, ना इनके पास जनमत है, ना इनके पास संगत है, इनके पास केवल आकर गाली दे। अभी दूसरी बात, मैं आपको जो आरोप लगा था कि प्रियंका वाड्रा द्वारा ये स्पॉन्सर्ड रिबेलियन है, मैं इसका प्रमाण देता हूं। प्रियंका जी ने 1 साल में कभी भी अरविंद केजरीवाल को कुछ बोला है? अभी वो कितना बड़ा भगवंत मान जी का केस हो गया, गुरुओं का
1: ठीक
2: अपमान,
1: है
2: उस पे नहीं
1: शहजाद, ठीक
2: बोला।
1: है
2: और प्रियंका जी कौन, 1984
1: ठीक
2: करने
1: है,
2: वाले
1: समय कम
2: लोगों
1: है,
2: की
1: थर्टी
2: बेटी।
1: सेकंड में सुरेंद्र जी जवाब कि ऐसे आपस में लड़ते रहेंगे तो चुनाव कैसे लड़ेंगे?
3: दो चीजें देखिए, रशीद भाई का और हमने ग्रेवाल साहब की बात करी, इस बार मैं शहजाद की कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ एक जो दूसरे पत्रकार रजत जी हैं, मेरे ख्याल से
2: त्रिमूल
3: या तो
2: पांडे
3: उनको चाटुकारिता के वजह से दृष्टि दोष हो गया है, और या फिर वो इतिहास नहीं पढ़ते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञाता है। भारतीय जनता पार्टी, आप कह रहे हैं कि इसमें कोई टूट नहीं हुई, अरे 1977 में भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफशूट था जनसंघ, उससे पहले की, उसने तो सत्ता की लोलुपता में ए से लेकर के जेड तक सारे नेताओं को जनता पार्टी में विलय करा दिया था।
1: जी,
3: इससे बड़ा और क्या प्रमाण होगा अपनी
1: मुझे
3: पार्टी
1: माफी
3: के
1: के साथ
3: प्रति
1: आपको रोकना
3: गद्दारी
1: पड़ेगा,
3: का?
1: समय इतनी ही इजाजत दे रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दंगल में आप रुकने छोड़े से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

0: क्या इथेनॉल से नुकसान हो रहा है सर गाड़ियों?
1: मारुति सुजुकी के पास एक भी कंप्लेन नहीं है, टोयोटा के पास एक भी कंप्लेन नहीं है। मुझे बदनाम करने के लिए और इथेनॉल को बदनाम करने के लिए प्रयास है।
0: नए नए एक्सप्रेसवेज जो बन रहे हैं उनमें गड्ढे,
1: हमारे हाईवे में जितने गड्ढे हैं उसके ऊपर आप कार्यक्रम करिए और दिखा दीजिए।
2: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy, or Wells Fargo for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
3: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
4: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
6: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
4: लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
5: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
8: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
9: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
8: Vimal, bolo zubaan kesri. Hint, bade aaram se.
10: Indian cricket ne, agar koi goat dekha hai, to aaj main unke saamne baitha. वैभव सूर्यवंशी को पारी आप कैसे देखते हैं?
11: ह्यूज टैलेंट विदाउट एनी डाउट, इज एज गुड एज सचिन और विराट कोहली।
10: लेकिन क्रिकेटिंग हलकों में क्या उसी तरह से नाम बज रहा था सचिन तेंदुलकर का जैसे आज वैभव सूर्यवंशी का बज रहा है?
11: आई थिंक वैभव का थोड़ा ज्यादा है,
10: उनका डेब्यू थोड़ा सा डिलेड है,
11: बट आप इतिहास देखिए तो आपको एहसास होगा कभी कभी लेट ना हो जाए।
10: विराट में आपने ऐसा क्या देखा?
11: विराट को देख के मेरे को मैकेनरो याद आते,
10: जॉन मैकेनरो।
11: हाँ, क्योंकि जब तक वो लड़ते नहीं थे वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते थे। थोड़ा सा जो उनका अजीब लगता है कि वो ज्यादा जोशीले हो जाते। आई लव टू प्रूव पीपल रॉन्ग।
12: जय हिंद फ्रेंड्स। ईसाइयत, सोना, मसाला या विस्तार, 1498 में क्या थी वास्को डिगामा की मंशा? मधुमक्खी जैसे गोरे जो शहद लेकर आ रहे थे, भारत को डंक मारना शुरू कर दिया और बेवकूफ राजाओं का फायदा उठाकर इस देश को गुलाम बना दिया। लेकिन मीर जाफर और मीर कासिम ने अगर सर झुकाया तो रानी लक्ष्मीबाई ने सर उठाया और गोरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कैसी थी लड़ाई, कौन थे इसके महानायक, तलवारें चली या भजन चला? अगर बचपन में नहीं समझ में आया, नोटबुक निकाल लीजिए। मैं अवध ओझा जल लेकर आ रहा हूं मास्टर जी इन द न्यूज रूम, सिर्फ ललन टॉप पर।
13: वी मस्ट राइज, वी मस्ट फाइट। दरअसल ईरान की सड़कों पर ऐसे पोस्टर तो आपने देखे होंगे, लेकिन आपको याद होगा कि ये सिंबॉलिक जो हाथ आप देख रहे हैं ये पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई का है। लेकिन अब ये हाथ जो है जिसमें उनकी अंगूठी हमेशा नजर आती थी, जो एक पावर का साइन था, वो अब ईरान में खासतौर पर तेहरान के इन इलाकों में नजर आएगा, आजादी स्क्वेयर पर नजर आएगा। आप देखते रहिए आज तक।

0: सुखजिंदर सिंह रंधावा बिल्कुल ठीक कह रहे कि स्लीपर सेल ते कॉम्प्रोमाइज लीडर पंजाब नू बिल्कुल नहीं चाहिदा। कोई भी स्लीपर सेल पार्टी दे विच कॉम्प्रोमाइज लीडर नहीं होना चाहिदा।
1: स्लीपर सेल समझौतावादी नेता, ये शब्द किसी विरोधी दल के नहीं, ये कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस के नेताओं के लिए बोल रहे हैं। जिस पार्टी ने 2027 में पंजाब जीतने की ख्वाहिश पाल रखी है, वो 2026 में अपने ही कुनबे से हारती दिखाई दे रही है। पंजाब कांग्रेस की दीवारों में दरार अब छिपी नहीं है, अब सब कुछ कैमरों के सामने है। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा के बयान को भले ही पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अपने हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन रंधावा कहते हैं कि पंजाब को समझौतावादी नेता नहीं, मजबूत नेता चाहिए। यानी सवाल सीधे नेतृत्व पर है। तो क्या पंजाब कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन बीजेपी, आम आदमी पार्टी, अकाली दल नहीं, बल्कि उसकी अपनी गुटबाजी है? दरअसल इस विवाद की असली वजह है पंजाब कांग्रेस में खेमेबंदी। पंजाब में एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग है, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर रंधावा और उनके समर्थक। पंजाब कांग्रेस में दरार की वजह ये बताई जा रही है कि जब अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को एक्सटेंशन मिल गया, 1 जुलाई को कांग्रेस ने घोषणा की कि अमरिंदर सिंह राजा वडिंग पंजाब यूनिट के अध्यक्ष बने रहेंगे और जालंधर के सांसद चन्नी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन होंगे। यहीं से पंजाब में कांग्रेस की सियासी जमीन में खटपट का बीज पड़ गया। चन्नी और उनके समर्थक नाराज हो गए। इसी तनातनी के बीच पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने कई दौर की बैठकें की, लेकिन बंद कमरे की बातचीत खुली बगावत को रोक नहीं सकी। बागी नेताओं ने एक बार फिर राजा वडिंग को हटाने की मांग दोहराई, जबकि बघेल सार्वजनिक तौर पर नेतृत्व परिवर्तन से इनकार करते रहे। जिस पॉलिटिकल पार्टी की सेना के सेनापति पर ही सवाल उठने लगे, वो कैसे चुनावी मैदान में ताल ठोकेगा? पंजाब की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी अब चुटकी ले रही है। राजनीति में विरोधी हमेशा बाहर नहीं होते, कई बार सबसे बड़ा विपक्ष पार्टी के भीतर बैठा होता है। पंजाब कांग्रेस आज उसी दौर से गुजर रही है। ऐसे में बीजेपी को नया मुद्दा मिल गया है, जो पंजाब में अपनी बैठ बनाने की फिराक में है। इस बीच दिल्ली से कांग्रेस नेता उदित राज ने भी पंजाब के कांग्रेसी नेताओं को आईना दिखाया है। उदित राज ने भी पार्टी की सबसे कमजोर नस पर हाथ रख दिया। 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस खुद को सत्ता का दावेदार बताती है, लेकिन आज तस्वीर ये है कि विपक्ष से पहले उसे अपने ही नेताओं को एक मंच पर लाने की चुनौती है। और जब पार्टी का सबसे बड़ा संघर्ष पार्टी के भीतर हो, तो विरोधी दलों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। यही पंजाब कांग्रेस की सबसे बड़ी राजनीतिक विडंबना है। आज तक ब्यूरो।

0: अब अमेरिकी हमलों की जद में आए ईरान के तटीय ठिकाने। एक के बाद एक बंदरगाहों पर अमेरिका लगा रहा निशाने। तेज हुआ ईरान की आर्थिक ताकत तोड़ने का अभियान। तेल की लड़ाई हॉर्मुज से होते हुए ईरान के समुद्री सीमा से लगे तमाम शहरों तक पहुंच गई है और अमेरिका एक के बाद एक बंदरगाहों पर हमले कर रहा है। अभी तक अमेरिकी मिसाइलों के निशाने पर हॉर्मुज से सटे इलाके ही आमतौर पर आते थे, लेकिन इस हफ्ते अमेरिका ने उन तमाम तटीय इलाकों को बर्बाद करने के लिए बम बरसाए हैं जो ईरान के तेल निर्यात और अर्थव्यवस्था में मजबूत किरदार निभा रहे हैं। अमेरिकी सेना दो मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। एक तरफ वो ईरान के उन सैन्य ठिकानों को बर्बाद कर रही है जहां से खाड़ी देशों में बने अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हमले किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अब उसके निशाने पर ईरान की वो पोर्ट सिटी आ गई है जो उसकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। इनमें से एक है बंदर अब्बास, जो तेल के निर्यात के लिहाज से अहम ठिकाना है। इसके अलावा नेचुरल गैस के लिहाज से अहम कंगन, समुद्री इकोनॉमी के लिहाज से अहम बंदर एदेयर एनर्जी और पेट्रोकेमिकल के लिहाज से अहम असालुये क्रूड ऑन ऑयल पाइपलाइन की वजह से महत्वपूर्ण माने जाने वाला जास्क, हॉर्मुज के करीब होने की वजह से सैन्य अहमियत वाले सिरिक और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर चाबहार पोर्ट। पिछले 24 घंटों में इन सभी पर अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं और कंट्रोल टॉवर से लेकर अहम उपकरणों तक को तबाह किया है। चाबहार पोर्ट तो आर्थिक के साथ साथ सामरिक और कूटनीतिक तौर पर भी इतना अहम है कि भारत तक ने इसमें करोड़ों रुपए का निवेश किया था। इतना ही नहीं, खार्ग को लेकर भी अमेरिका लगातार आक्रामक होता जा रहा है। ईरान के तेल निर्यात का करीब 90% हिस्सा खार्ग के जिम्मे ही है और ये ईरान को आर्थिक तौर पर मजबूत करने में अहम किरदार निभाता रहा है। इसीलिए अमेरिका लगातार इस पर भी हमले कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान के तटीय शहर ही बमबारी का शिकार हो रहे हों। ईरान का दावा है कि उसने ओमान के दुकम पोर्ट पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए इस्तेमाल होने वाले लॉजिस्टिक सपोर्ट सेंटर और ईंधन भरने वाले प्लेटफॉर्म पर भारी हमला किया है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका लगातार दबाव डलवाकर ओमान के पास जहाजों की आवाजाही के लिए एक नया समुद्री मार्ग तैयार करा रहा है। इससे हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण कमजोर हो सकता है, लिहाजा ईरान ने इस पर भी कड़ा रुख अपनाकर वहां से गुजरने वाले हर जहाज पर निगाहबानी का फरमान जारी कर दिया है। तटीय शहरों पर बढ़ते हमलों का असर सिर्फ ईरान की पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था पर ही नहीं होगा बल्कि दुनिया भर में तेल सप्लाई, समुद्री व्यापार और पूरे मिडिल ईस्ट की सुरक्षा पर भी हो सकता है। आज तक ब्यूरो।
1: दंगल में आज के लिए बस इतना ही। अब आगे देखिए बहसबाजीगर अंजना उनकर्ष के साथ।
2: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach Chogan Perfumes The French Edition for Him and Her

0: में आपस में ही हाथ आजमाते दिख रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजा वर्डिंग को हटाने पर अड़ा चन्ने घुट। रंधावा ने बताया कॉम्प्रोमाइज, लीडर आलाकमान के दरबार पहुंचा झगड़ा। उमर के ऑपरेशन लोटस वाले बैन पर बौखलाई बीजेपी, कहा दो सबूत या मांगो माफी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने लगाया था आरोप, हमारे विधायकों को खरीदने की हो रही है साजिश। बीजेपी ने प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के गिनाए 10 फायदे, कहा इंडो पैसिफिक में भारत बना बड़ी ताकत, वैश्विक साझेदारियों को मिली नई मजबूती। कांग्रेस ने किया कटाक्ष। ओमान तट के पास कमर्शियल शिप पर बड़ा हमला, 10 भारतीयों को बचाया गया, एक अभी भी लापता। विदेश मंत्रालय ने की निंदा, पूरे मामले पर नई दिल्ली की नजर। अमेरिकी हमलों के नए किश्त के बीच दुनिया के सामने मुज्तबा खामेनेई आएंगे, मंगलवार की सभा में करेंगे शिरकत। अटैक में मारे गए लोगों को देंगे श्रद्धांजलि, यूएस की ओर से भयानक बमबारी जारी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

बहुत स्वागत है आपका बहस बाजीगर में। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज की राजनीति पर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनावों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सियासत बहुत गर्म है। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बीच में सियासी जंग छिड़ गई है। दोनों को ऐसा लग रहा है कि जो करना है, ये जो लगभग एक साल बचा है, उसमें कर गुजरना है, ताकि वापसी सत्ता में योगी कर पाए या फिर वापसी सत्ता में अखिलेश यादव कर पाए, यही जंग है। और इसी जंग के कॉन्टेक्स्ट में जब आप इसको समझेंगे तो आप देखेंगे कि ये मुद्दा क्यों सुलग रहा है, क्योंकि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा खूब सुलग रहा है। देखिए, मौजूदा राजनीति में धर्म हो या अन्य मुद्दे हैं, वो अपने अपने तरीके से उठाए जाते हैं। आज विपक्ष चाहता है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा खूब जोर शोर से उठाया जाए, वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि धर्म और ईमान की आप चर्चा करते हैं, तो ऐसे में वक्फ बोर्ड में जो चोरी होती है, लैंड ग्रैब होता है, उस मुद्दे को कोई भी विपक्षी नेता आखिर क्यों नहीं उठाता है। तो सबसे पहले हम आपको मोशन बताएं, उससे पहले तालियों के साथ यहां मौजूद जनता का बहुत बहुत स्वागत है। ये वो हिस्सा है जो नीले गमछे वाले लोग हैं, जो ये मानते हैं कि भाई फर्क नहीं कर रहा है विपक्ष, यानी जो ये मानते हैं कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा और वक्फ बोर्ड में लैंड ग्रैब का मुद्दा, दोनों में विपक्ष कोई भी फर्क नहीं कर रहा, आप यही मानते हैं? तो जोर से हिलाओ एकदम सिर हां के साथ और ताली भी बजा लो अपने लिए। और ये सफेद वाले लोग हैं जो ये मानते हैं कि उठा भी रहा है, नहीं भी उठा रहा है, बीच का रास्ता आपने ढूंढ लिया है, शांति प्रिय लोग हैं, बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र में ऐसे लोगों के लिए भी जगह होनी चाहिए। लेकिन जब आप वोट करने जाते हैं तो किसी एक पर तो बटन दबाना ही पड़ता है, लेकिन नन ऑफ द अबव के लिए भी आपके पास नोटा का भी रहता है। तो तालियों के साथ आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ये है वो हिस्सा जो मानता है कि विपक्ष फर्क करता है, यानी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाता है, लेकिन वक्फ बोर्ड पर जो आरोप लगते हैं उस मुद्दे पर विपक्ष चुप्पी साध लेता, आप यही मानते हैं? तो तालियों के साथ आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का मोशन साफ है, आज का मोशन ये है, चढ़ावा चोरी और वक्फ चोरी, विपक्ष फर्क करता है दोनों मुद्दों पर। लेकिन बहस बाजीगर में हम जजेस को बुलाएं और वक्ताओं को बुलाएं, उससे पहले ये रिपोर्ट।

0: आज की इस बहस का आधार बना है दो धार्मिक मामलों में सियासत के दो अलग अलग नजरिए। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला जैसे ही सामने आया, विपक्ष ने इसे हाथों हाथ लिया। जैसे ही विपक्ष ने घेराबंदी शुरू की, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा पासा फेंका कि पूरी बहस का रुख ही मुड़ गया। योगी ने सीधे विपक्ष की दुखती रग पर हाथ रख दिया। आरोप लगाया कि राम मंदिर पर शोर मचाने वाला विपक्ष वक्फ बोर्ड के भ्रष्टाचार और जमीन कब्जाने के गंभीर आरोपों पर आखिर मौन क्यों धारण कर लेता है। विपक्ष इसे सिर्फ एक डाइवर्जन टैक्टिक यानी राम मंदिर के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश बता रहा है, लेकिन देश की जनता एक कड़वा सच देख रही है। वक्फ बोर्ड पर भ्रष्टाचार और मनमाने तरीके से जमीनें हड़पने के आरोप सालों से लग रहे हैं, पर विपक्ष के रडार पर ये मुद्दा कभी नहीं आता। क्या ये चुप्पी सिर्फ वोट बैंक की मजबूरी है? चोरी तो चोरी होती है, चाहे वो मंदिर के चढ़ावे की हो या वक्त की जमीन की। लेकिन क्या हमारे देश की सियासत घटना का धार्मिक एंगल देखकर अपना चश्मा बदल लेती है? इसीलिए आज हम पूछेंगे कि क्या चढ़ावा चोरी और वक्त चोरी में विपक्ष फर्क करता है।
1: तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए, हमारे तीनों जजेस आ रहे हैं मंच पर। सबसे आगे है विजय त्रिवेदी, वरिष्ठ पत्रकार, सज्जन कुमार साहब वरिष्ठ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और तीन ताल के ताऊ कमलेश किशोर, तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। ताऊ, अब कह रहे हैं कि हो गया, कब तक ये मंदिर का मुद्दा और चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर आप बहस करते रहेंगे? लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विपक्ष भी गदगद हो रहा है कि वाह बहुत अच्छा, इस पर करिए जितने दिन बहस करना है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कोशिश की है कि वो बाजी को पलटे और वो ये कह रहे हैं कि वक्फ चोरी के मुद्दे पर विपक्ष चुप क्यों होता है। तो अब आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं अपने पहले दो वक्ताओं का। तालियों के साथ स्वागत कीजिए आरपी सिंह साहब, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, और ईशान त्यागी, मुझे लगता है डेब्यू कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, बहस बाजी करने बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। अपनी अपनी टीम लीडर्स के तौर पर आप संभाल लें यहाँ पर, और चौथी कुर्सी पर आप बैठ जाएं। आप यहीं बैठेंगे सिंह साहब? अच्छा ही बैठो, तो सीखी कर रहे हो? नहीं नहीं, ठीक है, आपके दो आएंगे और आपके भी दो आएंगे। अब आइए अगले दो वक्ताओं को बुलाते हैं। तो आगे आ रहे मनोज काका, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, यानी अखिलेश यादव की पार्टी का मोर्चा ये संभालेंगे, और हमारे साथ जुड़ रहे विष्णु जैन जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए, वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, और राम मंदिर मामले में हिंदू पक्ष को इन्होंने रिप्रेजेंट भी किया है। तो एक लॉयर के तौर पर सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई इन्होंने लड़ी है और राम मंदिर का सपना पूरा हुआ है। आज जब ये मुद्दा उठ रहा है तो इस पर वो क्या कहते हैं वो बोलेंगे। अब आखिरी दो वक्ताओं को बुलाएं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए मोहम्मद फैज खान, कन्वीनर है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। भाई नेता टाइप एंट्री होती है आपकी हर बार। और तालियों के साथ स्वागत कीजिए मसूद फयाज हाशमी साहब, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा शुरुआत करें, जजेस का कुछ कहना हो कुछ इस टॉपिक पर, ताऊ कुछ खास सुनना चाहते हो आप, कुछ ऐसे दिशा निर्देश की रोजाना की तरह मत बोलिएगा, डिबेट में बोलिएगा, टॉपिक पर रहिएगा।
2: हाँ, वो आग्रह तो रहेगा ही। हाँ। ये पुराना आग्रह है मेरा। हाँ। कि कृपया टॉपिक के आसपास ही रहें, राजनीति के बृहद मैदान में न कूद जाएं। हाँ। फोकस हमेशा इसी पे रहे। और मैं अभी समझना चाहता हूँ कि वक्फ, आपके सवाल में वक्फ चोरी है। तो वो क्या है? हाँ। शायद वो स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि चढ़ावा चोरी तो मुझे स्पष्ट है।
1: हाँ। लैंड ग्रैब हो या कुछ भी हो, ये आपको समझाना है। टॉपिक पर जो वो बोल रहे हैं उस पे आपको अपना क्लैरिटी, एक हिंट मिला है जज से कि टॉपिक पर रहिएगा। तो बहसबाजी करो, आप छियो से बहुत निवेदन है कि रोज वाली जो चीखा चिल्ली उससे बच के टॉपिक पर दमदार बोलिए, डेढ़ मिनट का आपको टाइम मिलता है। त्रिवेदी जी कुछ?
3: ये कह रहा हूँ कि इस सवाल में दोनों बार, दोनों तरफ से ये बात बार बार होती है कि ये मसला धर्म का, आप क्यों बोल रहे हैं? तो ये मसला धर्म का नहीं है, ये मसला चोरी का है।
1: तो मसला करप्शन का है,
3: करप्शन का,
1: भ्रष्टाचार।
3: तो करप्शन पर कौन अलग थोड़ी है, सब लोग सब तरफ से बोले। बार बार हम लोग कहते हैं नहीं इस पर नहीं बोलना चाहिए, क्यों आप क्यों बोल रहे हैं?
4: करप्शन में सिर्फ एक आंख से मत देखो ना।
1: लीजिए सिंह साहब ने जजेस के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। चलिए ठीक है,
3: दोनों भाई
5: इसमें चार पक्ष हैं, एक तो कानूनी पक्ष है, दूसरा व्यक्तिगत और सार्वजनिक नैतिकता की पक्ष है, तीसरा जो धार्मिक आस्था है उसकी बात है, और चौथा राजनीतिक पक्ष है। तो जब भी ये हम लोग अपेक्षित है कि जब भी बोले तो सारे पक्ष एक दूसरे से सरोकार हों, उनमें एक इंटरप्ले हो, ये ना कि एक पक्ष पे बिल्कुल एकांगी तरीके से जोर हो।
1: तो आइए शुरुआत करते हैं। आरपी सिंह और ईशांत त्यागी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ रहे हैं। 90-90 सेकंड का समय दोनों को मिलेगा अपनी बात रखने के लिए। कितने दमदार अंदाज में वो आज बहस बाजीगर के इस मोशन पर बोलते हैं, अपने पक्ष को रखते हैं, इसी पर जजेस भी उनको मार्क करेंगे और जनता भी कन्विंस होगी नहीं होगी। आपके पास ऑप्शन है, नीले गमछे वाले सफेद या लाल ले सकते हैं, लाल वाले सफेद या नीला ले सकते हैं, और सफेद वालों के पास दोनों तरफ का ऑप्शन है, या फिर आप अपने गमछे के साथ रह सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और इस मोशन पर बोलने का। ईशांत त्यागी जी, आपका 90 सेकंड का समय शुरू होता है।
6: देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जब भी वो फंसती है, किसी मुद्दे पे फंस जाती है, तो वो हिंदू मुसलमान करती है। जब भी चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करती है। यहां तक कि जब पहलगाम का हमला हुआ और 26 माताएं बहनें हमारी विधवा हो गई वहां पर, तब भी पाकिस्तान के एजेंडे में फंस के भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुसलमान किया। जिस तरीके से इस मुद्दे पर भी भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करने की वक्फ को लाके कोशिश कर रही है, अपनी चंदा चोरी को छुपाने की कोशिश कर रही है, जिस तरीके से जमीन में धांधलबाजी करी विश्व हिंदू परिषद ने, आरएसएस ने, बीजेपी के लोगों ने, उसमें भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान लाके चोरी कर रही है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि कृपया मुद्दे से भटकिएगा मत, चोरी पर सवाल पूछते रहिएगा। दूसरी बात, धर्म जो है हमारी आस्था का विषय है। मैं क्या पहनूंगा, क्या खाऊंगा, किसके घर जाऊंगा, किसके साथ बात करूंगा, ये मेरा अपना विषय है, मेरा पर्सनल मैटर है। भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के लोग नकली ठेकेदार बने हुए हैं धर्म के, और उनको ये कोई अधिकार नहीं है। प्रभु श्री रामलला को मोदी जी बड़े हैं, उनसे कदम दिखाए गए हैं और उनको उनकी उनकी उंगली पकड़ के उनको मंदिर ले जाने का काम कर रहे हैं। क्या ये हिंदू धर्म का अपमान है कि नहीं है, मुझे ये बताइए। दूसरी बात, मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से नितिन नवीन के रथ के सामने प्रभु हनुमान जी को नचाया गया वहां पर और उनको भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ा दिया गया, क्या ये हिंदू धर्म का अपमान है कि नहीं है। युवा यहां बैठे हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है आज की डेट में, उसके बाद पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा है आज की डेट में, सीबीएसई ओएसएम में धांधली हुई वो सबसे बड़ा मुद्दा है आज की डेट में, E20 पेट्रोल में सरकार धांधलीबाजी कर रही है और गाड़ियां खराब हो रही है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। इन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी चुप है।
1: ओपनिंग बैट्समैन ने इधर से धुआंधार बल्लेबाजी की है। चलिए सिंह साहब, इस विषय पर बोलने का 90 सेकंड का समय आपका शुरू होता है अब।
7: मेरे 90 सेकंड में मैं बोल नहीं रहा सर, एक वीडियो सुना रहा हूँ, सुनना चाहिए सर, उसी से सारा परफेक्ट समय हो जाएगा।
8: काबरी मस्जिद पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, तो नहीं मार सकता, फिर भी मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने काबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की वो गुंबद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके, ये रिकॉर्ड। और इस बात का समाजवादी पार्टी और उसके नेता को न कभी अफसोस था और न रहा है, रहेगा, चाहे उसको मौलाना मुलायम सिंह कहे, चाहे मुल्ला मुलायम सिंह कहे, चाहे हिंदू मारे, चाहे हिंदू थमाने, चाहे हिंदू को देर को, चाहे नदी। लेकिन जिन्हें आप रामलला कहते हैं, क्या मस्जिद में वो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट इस देश में?
7: जिन्हें आप रामलला कहते हैं वो उस मस्जिद में अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट है या नहीं है, ये कह रहे हैं कहां पे? पार्लियामेंट के अंदर रामगोपाल यादव जी जो आज कह रहे हैं 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। मेरा चैलेंज है रामगोपाल यादव जी को, कृपा कर अगर आपके पास साक्ष्य हैं एसआईटी के सामने जाएं, अगर आपको दिक्कत हो रही हो मैं आपके साथ एसआईटी पे चलने को तैयार हूं। अगर आपके पास वकील नहीं है तो देश के अंदर जो सबसे बड़ा वकील हो आप उसको हायर करिए, उसकी फीस मैं दूंगा, साक्ष्य लेकर आइए। अगर केस जीत गए तो फीस मेरे जिम्मे, अगर हार गए तो फीस भी दीजिएगा, डिफेमेशन भी फेस करिएगा। क्योंकि ये राजनीति करने आ गए हैं, ये राजनीति करने आ गए हैं। कभी इनमें से किसी एक ने बोला कि आगरा के वक्फ बोर्ड के अंदर 50 लाख का घोटाला हुआ? 50 लाख का भी?
1: समय समाप्त हो गया आपका। चलिए, जैसे अभी लग रहा है इतना बोलने के बाद भी छूट गया है दोनों का कुछ कुछ। तालियों के साथ स्वागत कीजिए अगले दो वक्ताओं का जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विष्णु जैन और मनोज काका जी। विष्णु जी आइए, मनोज काका जी आइए।
9: देखिए, जो जजों का निवेदन था मैं उसी से शुरू कर रहा हूँ।
1: 90 सेकंड का समय।
9: तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि मंदिर क्यों लूटा और जो अमानतों का अमीन था वो कहाँ छुपा? ये सीधा सीधा सवाल है, इधर उधर बलगराइए मत। अब ये बताइए कि कि चंपत राय ने जो बहुत बड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मर्यादा के साथ और उनके ईमान के साथ और हजारों वर्षों से आ रही भारत के परंपरा के साथ जो धक्का लगा है उसका जिम्मेदार कौन है। चंपत राय का चयन किसी विपक्ष ने नहीं किया था, इस देश के युवाओं ने नहीं किया था, किसी पत्रकार ने नहीं किया था, बल्कि चंपत राय का चयन इस देश के सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कैबिनेट के बैठक करके सारे सदस्यों का, ट्रस्ट के सदस्यों का चयन किया था और उसी में चंपत राय का भी चयन किया था। इसलिए सबसे ज्यादा जो सवाल है वो ट्रस्ट पर है। ट्रस्ट ही सबसे बड़ी भ्रष्ट है, इसलिए भ्रष्ट है कि जो जो रिपोर्ट आई है आपके खुद संस्थान ने छापा है, इंडिया टुडे की मैगजीन ने छापा है, सिर्फ वो 27 मई से 40 दिन में 40 दिन में 70 बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को लूटने वाले चोर चोर, जो गांव में कहावत है कि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, वो अपने लोगों का बचाव कर रहे हैं। 40 दिन में 70 बार भगवान राम को लूटा गया, उनकी उनके मुकुट लूटे गए, उनके खड़ाऊ लूट लिए गए, सोने की ईंट लूट ली गई, सोने चांदी के बहुत सारे गहने और जेवरात लूट लिए गए, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं जो झूठों के सरदार हैं वो जो बात है कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है और दरवाजे पे लिखा हुआ है कि सच बोलो, ये लोग तस्वीर लेके।
1: समय समाप्त हो गया, बहुत अच्छा, मिडिल ऑर्डर ने भी जबरदस्त अच्छा बोला है अपने, तो कभी तो संतोष भी जाहिर कीजिए, इनको भी उतना ही समय मिलेगा। विष्णु जैन जी, इस विषय पर चढ़ावा चोरी, टॉपिक फिर से बता देते हैं अगर कोई भूल रहा है तो, चढ़ावा चोरी और वक्फ चोरी में विपक्ष फर्क करता है, इस पर बोलने का आपका 90 सेकंड का समय शुरू होता है। आप
10: देखिए, मैं तो पेशे से वकील हूं और मैं अपनी बात एक लीगल फ्रेमवर्क में रखूंगा बिना कोई पॉलिटिकल पार्टी के, एक आइडियोलॉजी के। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इस सारी चीज में जो चीज हम मिस कर रहे हैं वो है कि व्यवस्था की बहुत बड़ी कमी है। मैंने स्वयं राम मंदिर के केस में मैं रहा, जैसा कि आपने बताया था, और आज बहुत ज्यादा ग्लानी और दुख मुझे महसूस हो रहा है। और जो बात आप यहां पे हो रही है कि वहां पे चंदा चोरी हुई, उसको मैं जस्टिफाई नहीं करना चाहता हूं ये बोल के कि समाजवादी पार्टी ने क्या किया, इन्होंने क्या कहा, गलती हमारे अंदर है और इसको हमें अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा, नहीं तो ये गलतियां आगे और होती रहेंगी और ऐसी डिबेट चलती रहेंगी। इसका मूल सोल्यूशन क्या है, उस सोल्यूशन पे मैं आना चाहता हूं बिना कोई पार्टी लाइन के। आप इस बात को सोचिए, अगर आज वफ कोई गलत काम कर रहा है, आज मंदिरों में कोई गलत काम हो रहा है, मिस एडमिनिस्ट्रेशन, मेल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, तो उसका मूल कारण है कि जो हमारी कानूनी सेटअप है, जो कानूनी स्ट्रक्चर है, उसके बारे में कोई बात नहीं की जाती है। आज जो मंदिर अधिग्रहण के जितने कानून है वो किस लिस्ट में आते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, उसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। उसके बाद भी आज कर्नाटक में 35,000 मंदिर सरकार के कंट्रोल में, जहां पे मेल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो संतों के कंट्रोल में है, हमारे हिंदू समाज के कंट्रोल में, वहां पे मिसमैनेजमेंट हो रहा है। बहुत सारी ऐसी वफ की जगह है जहां पे वफ को अपार शक्तियां गई हैं, दी गई हैं, जिसकी वजह से मिसमैनेजमेंट हो रहा है। तो इसका सलूशन क्या है? सलूशन ये है, कोई जो लीगल फ्रेमवर्क है उसमें कोई बात ही नहीं करता है। सलूशन ये है कि आपको एक ऐसा सेटअप बनाना पड़ेगा कि आप टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करें और लेस ह्यूमन इंटरवेंशन हो, तब जाके ये चीजें खत्म होंगी।
1: मुझे खुशी इस बात की है कि जब एक वरिष्ठ अधिवक्ता आता है तो वो फिर दलीलों के साथ बात करता है और ये शायद सबके लिए एक वो है। कुछ सवाल आप दोनों का इनसे, और एक एक सवाल मैं तीनों ऑडियंस से भी लूंगी। नहीं, आज तो अति संतुष्ट दिख रहे हैं ये तीनों जजेस।
2: काका जी जो है वो राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता है, तो उन्होंने अच्छा अटैक किया और फोकस्ड रहे, इन्होंने ध्यान उस पे नहीं, उस चोरी पे नहीं दिया जो दूसरा है, क्योंकि ये इनका राजनीतिक पक्ष है और उनको हक है। और विष्णु जी
1: बोलते भी अच्छा है काका,
2: और विष्णु जी जो हैं उन्होंने बेहतरीन सोल्यूशन ओरिएंटेड बात की,
1: मुझे लगता है
2: कोई भी समाधान के बारे में बात ही नहीं
1: बोले तो दोनों तरफ से ताली बजी। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा, कोई सवाल आप लोगों का हो जो पूछना चाहते हैं तीनों पक्ष से? अच्छा,
11: तो मेरा सवाल है कि वक्फ बोर्ड एक ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग लॉ के अंडर फंक्शन करता है, और राम मंदिर के लिए इनफैक्ट अभी कोई वैसा स्पेसिफिक लॉ तो नहीं है हमारे पास। तो अगर राम मंदिर की चोरियों को क्वेश्चन किया जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी पे क्वेश्चन किया जा रहा है, तो वक्फ बोर्ड को तो ऑलरेडी एक लीगल एक्ट गवर्न करता है, तो उस पर और लीगली जांच होनी चाहिए। अगर आप ट्रांसपेरेंसी की बात राम मंदिर से करते हैं तो वहां तो लीगली और जांच होनी चाहिए, इनफैक्ट क्योंकि जब एक गवर्निंग बॉडी है उसके लिए, तो उस पर आपका क्या
1: ठीक है? और इधर से कोई सवाल, नीले गमछे की तरह से कोई प्रश्न नहीं है आज? आज आप लोग सफेद गमछे वाले मुद्रा में आ गए हैं, सफेद वाले में से किसी का आज मुझे लगता है कि बहुत ही संतोषजनक आप पूछे
3: जैन साहब, आपने बहुत अच्छे से बात को रखा और देश भर के मंदिरों की बात की, तो जो देश के बड़े मंदिर है मैं उनको स्टडी कर रहा था, वो सब के सब मोटे तौर पर सरकार के नियंत्रण में है।
5: करेक्ट।
3: केवल जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है वो नहीं है, तो क्या इस ट्रस्ट को भी इस तरह के अधीन होना चाहिए सरकार के नियंत्रण में, और आज की स्थिति में क्या इसे ट्रस्ट की बजाय एक परिवार का संगठन मान के देखते हैं?
10: देखिए मुझे आपने सर बहुत अच्छा सवाल पूछा और आपको मैं नमन करना चाहता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज मैं आप सारे लोगों के सामने ये मुद्दा रखना चाहता हूं कि हमने ये देखा कि अगर मंदिर किसी प्राइवेट बॉडी के कंट्रोल में तो वहां पे भी मिसमैनेजमेंट हो रहा है, अगर मंदिर सरकार के कंट्रोल में है तो वहां पे भी मिसमैनेजमेंट हो रहा है। तो क्या व्यवस्था बनाई जाए जो आदर्श व्यवस्था हो? आज ये जितनी राजनीतिक डिबेट्स हो रही हैं ये डिबेट्स ही खत्म हो जाएंगी अगर आज हमारा एक स्ट्रक्चर एकदम ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता सारे मंदिरों का। उसके लिए क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से जो मैं सोल्यूशन समझ पाता हूं, इसमें सरकार का भी इंटरवेंशन होना चाहिए, इसमें जो प्राइवेट बॉडीज हैं, संत हैं, महात्मा हैं, जो वहां के पुजारी हैं, जो हेरिडिटरी तरह से वहां पे पूजा पाठ करते आ रहे, उनका भी इसमें हस्तक्षेप होना चाहिए। और साथ ही साथ बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवेन होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मंदिर में पैसे नहीं है, बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे डोनेशन है। और एक बात मैं और रखना चाहता हूं, जो लड़ाई है पूरी, इस बात को जरा समझिए, जो पूरी लड़ाई है वो इस बात की है कि जब मंदिरों में पैसा आता है वहां पे लड़ाई होती है, जिन मंदिरों में पैसा नहीं आता उसकी तो बात ही नहीं हो रही है। इसलिए ये सारी बात समझिए, ये मनी ओरिएंटेड है और मनी का मैनेजमेंट कैसे किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बताइए कि जो मंदिरों में पैसा आ रहा है, कितने मंदिरों ने उस पैसों से, उस चंदे से गौशाला बनाई, कितने मंदिरों ने कैंसर हॉस्पिटल बनाए, कितने मंदिरों ने एजुकेशन सेंटर्स बनाए, कितने मंदिरों ने लोगों को भोजन पानी सारी चीजों की व्यवस्था की, करी भी है और भी होनी चाहिए। तो एक ऐसा आज हम आज तक के इस प्रतिष्ठित चैनल पे हम लोग सारे लोग हैं, तो एक पॉजिटिव दिशा में इस पूरी चर्चा को ले जाएं कि हम सारे लोग अपने अपने सजेशंस दें। मैं सुप्रीम कोर्ट जाने वाला हूं इस मामले को लेके, हम सारे लोग अपने सजेशंस दें और एक मॉडल स्ट्रक्चर, एक लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग करके, जुडिशियल ड्राफ्टिंग करके पूरे देश के लिए ऐसे एक मॉडल स्ट्रक्चर खड़ा करें कि आगे आने वाले समय में ऐसा ना हो। सिर्फ और सिर्फ सरकार को मंदिर देना सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट बॉडीज को मंदिर देना सोल्यूशन नहीं है, एक मिक्स्ड स्ट्रक्चर लेके हमें चलना पड़ेगा। मिडिल
1: ऑर्डर ने अपनी अपनी टीम के लिए अच्छी बल्लेबाजी की है, अब फिनिशिंग टच के लिए आ रहे हैं। आइए मोहम्मद फैज खान साहब, आइए मोहम्मद फैज खान साहब आ रहे हैं और मसूद फयाज हाशमी साहब। आप शुरू करना चाहेंगे?
12: चलिए
1: आपका इस विषय पर बोलने का फिर से टॉपिक याद दिला रहे हैं, चढ़ावा चोरी और वक्फ चोरी में विपक्ष फर्क करता है, इस मुद्दे पर बोलने का आपका 90 सेकंड का समय शुरू होता है।
13: हंगामा है क्यों बरपा, डाका तो नहीं डाला, चोरी ही तो की है। हमें मालूम था कि जब से ये चंदा चोरी का मामला आया है तो मुसलमान और मुसलमानों का नाम, वक्फ, ये सब चीजें आएंगी। और मैं बड़ा हैरान था जब आरएसएस के लोग, यहां तक कि भागवत जी कह रहे थे कि पाकिस्तान से हमें बात करनी चाहिए। अब पता चला क्यों करना चाहते थे, ताकि ये सारा का सारा भांडा पाकिस्तान के सिर पे या किसी मुसलमान के सिर पे फोड़ते, काम हो जाता। अभी यहां बात हो रही थी मंदिरों के चोरी की, अंजना जी भी कहा और हमारे प्रिय मित्र ने भी कहा, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एक मंदिर है गोरखनाथ मंदिर, गोरखनाथ मठ, 40 साल से यासीन अंसारी उसके जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वहां कभी कोई चोरी नहीं हुई। ये हमारा पक्ष है। मुझे मालूम था कि मुसलमान आएंगे और मैं मुसलमान हूं, इस वजह से मुझे बहुत संभल के बहुत सहज तरीके से बोलना पड़ेगा, कहीं मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले कि जिसको नेशनल इशू बना लिया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस मुद्दे से तमाम नौजवानों को भटकाना चाहती है। अभी यहां अंजना जी आपके पास उतर के गई और उन्होंने पूछा कि आप सवाल करो, आप सवाल करो, आप सवाल करो, लेकिन मैं दंग रह गया कि किसी नौजवान ने हाथ नहीं उठाया सवाल करने के लिए। क्या हाथ उठाएंगे जब वो देख रहे हैं कि उनकी आस्था लुट चुकी है, उनको बर्बाद किया जा चुका है, उनको धर्म के नाम पे लूटा गया है और तो और उनका चंदा लूट लिया गया, तो वो क्या सवाल करेंगे इस बात। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो टाइम खत्म हो रहा है, कि वक्फ एक्ट को इसमें शामिल किया गया। मैं बताना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड किसी मुसलमान वक्फ बोर्ड पे चुनके नहीं बेचते, वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष और चेयरमैन होते हैं वो वहां की मौजूदा सरकार बनाती है, तो इसकी जिम्मेदारी मुसलमानों पर आयद नहीं होती। अब बाकी बात
1: समय समाप्त हुआ, आपको रिबटल टाइम भी मिलेगा। अब आपका इस विषय पर बोलने का फैज खान साहब, शुरू हो रहा है समय 90 सेकंड का अब।
14: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की,
12: चाहवा चोरी और वक्फ चोरी में विपक्ष फर्क करता है जी, बेशक फर्क करता है। आप देख सकती हैं अंजना जी, विपक्ष के जितने प्रवक्ता है केवल मंदिर के संबंध में चोरी की बात की, वक्फ की चोरी की बात नहीं की, जबकि 58,000 वक्फ प्रॉपर्टियों पर अवैध कब्जा है और 2,00,000 करोड़ से अधिक का घोटाला है। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, ईडन गार्डन हो और दिल्ली का संसद भवन हो, उस पर वक्फ अपना दावा ठोक रहा है लेकिन विपक्ष चुपचाप बैठा हुआ है। यह तो अच्छी बात है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आ गया, नहीं तो आज संसद भवन और ईडन गार्डन सब कुछ पर दावा ठोककर ले चुके होते। तो आप बात कीजिए विषय पर। अंजना जी थोड़ा सा इस बात को विस्तारित करना चाहूंगा, ये वक्फ चोरी पर बात नहीं करते, ये बात इस पर भी नहीं करते कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की वोट चोरी हुई थी 1955 पे, भारत रत्न की भी चोरी हो गई थी और सेना की अस्मिता और सम्मान की भी चोरी हुई थी जब उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया था, और सुनिए शाहबानों के हक की भी चोरी हुई थी और बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है टोपी की भी चोरी हुई थी, लेकिन आपने उस पर कुछ नहीं कहा, केवल मंदिर के चढ़ावा चोरी की आप बात कर रहे हैं। मैं कहना यह चाहूंगा जिन लोगों ने मंदिरों पर चोरी की है उनको सजा मिलेगी, भगवान राम भी सजा देंगे, कानून भी सजा देगा, लेकिन एक तरफा जब आप बात करते हैं तो याद रखिए अब कांग्रेस की बैठक में एक बहुत अच्छी चौपाई पड़ी गई, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी, ये राम जी की लीला है, जो राम भक्त नहीं थे वो भी अब राम भक्त हो चुके हैं।
1: समय समाप्त हुआ आप दोनों का, कोई प्रश्न जो आप लोग करना चाहते हैं इन दोनों से? सज्जन कुमार
14: जी, फैज खान साहब, ये सरदार वल्लभ तो दिसंबर 1950 में गुजर गए थे, तो 55 में वोट चोरी का शायद,
12: भारत रत्न चोरी का 1955 में नेहरू जी के लिए, नेहरू जी द्वारा नेहरू जी को भारत रत्न 1900 सर मेरे से प्रश्न है, 1955 में मैंने भारत रत्न चोरी की बात कही तो फैक्ट चेक अंजना जी करवा ले कि नेहरू जी के लिए नेहरू जी द्वारा नेहरू जी को खुद भारत रत्न 1955 में दिया गया कि नहीं दिया गया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के संदर्भ में वोट चोरी की बात है तो हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए जब वोटिंग हुई तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को अधिक वोट मिले थे, नेहरू जी को अपेक्षाकृत कम वोट मिले थे, फिर भी गांधी जी की एक छोटी सी पर्ची के कारण माननीय प्रधानमंत्री नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बन गए।
2: आपने जो कहा कि मुसलमानों को उसमें लाया जाएगा और बहुत सतर्क होकर बोल रहे हैं, और आपने एक यासीन जी का उदाहरण भी दिया, वो सब ठीक है, पर जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना वो ईमानदार और बेईमान सभी होते हैं।
15: नहीं, मैं वक्फ बोर्ड के बारे में एक बात कहना चाहता था और मैं आपकी टीम का भी और आदरणीय योगी जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो वक्फ बोर्ड ले आए इस मामले में, और मैं बहुत बहुत आभार यहां पे व्यक्त करता हूं क्योंकि वक्फ, ये बात क्लियर हो गई कि जो अपने राम को, अपने भगवान को, अपने मंदिर को, अपनी आस्था को नहीं संभाल पाए वो मुसलमानों के प्रॉपर्टीज को, मुसलमानों की आस्था को, मुसलमानों की
1: तो
15: कैसे संभालेंगे? जो वक्फ के अंदर था कि हिंदू आ सकता है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं आपको जी, बताइए बताइए,
1: वक्फ बोर्ड की फंक्शनिंग से आप संतुष्ट हैं? आपको लगता है
15: चूंकि वक्फ बोर्ड मुसलमान नहीं बनाता, वक्फ बोर्ड ये सरकारें बनाती हैं, स्टेट गवर्नमेंट या वो,
1: यही बात है,
15: किसी चोर को बिठा दिया तो हम क्या करेंगे? हमारे हाथ में दीजिए ना, या तो मुसलमानों को ऑटोनोमस बॉडी होनी चाहिए, मुसलमान चुनके भेजे वक्फ बोर्ड में तो फिर मुसलमान जवाब दे।
1: आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी अपनी जगह पर जाइए, बहुत अच्छा बोला आप दोनों ने, बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। और अब वो घड़ी है जब आप में से कोई भी अगर अपना गमछा बदलना चाहे तो आपके पास ऑप्शन है, आप उठकर अपना गमछा बदल सकते हैं, वापस अपनी ही जगह पर आकर बैठ जाइएगा, बदलना है आपको, बदलिए, जिसको भी बदलना है बदलिए,

0: गमछे वाले भी जा रहे हैं तो इतने संतुष्ट मत रहिए, लाल गमछे वाले भी कई सफेद ले रहे हैं, लेकिन भारी तादाद में नीले गमछे वाले जाकर लाल गमछा ले रहे हैं। वापस अपनी जगह पर ही बैठिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। लेकिन सफेद गमछे में भी दो लोग लाल गमछा लेकर जा रहे हैं, इंटरेस्टिंग है। अब आप लोग अपनी अपनी जगह पर बैठिए तो फिर समझ में आए कि किसने कितना बदला है। हो गया, सबने अपना अपना बदल लिया है जिनको बदलना था। चलिए, क्या ऐसा कोई भी है जिसने बदलकर कह रही हूं, बदलकर नीला गमछा लिया हो? नहीं। क्या ऐसा कोई भी है जिसने बदलकर सफेद गमछा लिया है? एक, दो, तीन, चार, पांच। तो दो इधर के न्यूट्रल, मतलब अलग हो गए हैं, न्यूट्रल हो गए हैं, और तीन इधर के, है ना? आप पहले नीले में थे, नीले गमछे में थे। अब कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बदलकर लाल गमछा लिया है? तो लाल गमछे वाले खूब खुश हो रहे हैं। तो भारी तादाद में ऐसे लोग हैं जो इधर है मामला। अब देखते हैं आगे कैसे जो टीम है ईशान त्यागी जी की वो कन्विंस कर पाती है। अब सेकंड राउंड में चलते हैं, एक एक मिनट का रिबटल टाइम देते हैं। जल्दी जल्दी अपनी बात रखिए। आइए जल्दी से आरपी सिंह साहब और ईशान त्यागी जी, और पहले से सोच लीजिए ताकि कुछ बात छूटे नहीं। जो बोलना है 60 सेकंड के अंदर बोलना है। तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत स्वागत है। अब जो जो कसर पिछली बार रह गई हो इस बार निकाल लीजिए। 60 सेकंड का आपको वक्त मिलेगा, और त्यागी जी अगर आप चाहें आप शुरू कर सकते हैं आज 60 सेकंड का। इस पर रिबटल राउंड में आपका समय शुरू होता है। आप
1: नहीं, मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि मैं
2: बात तो नहीं होगा।
0: नहीं,
1: मैं सब मेरा धर्म सिखाता है कि मैं आदर सम्मान करूं। मैं चाहता हूं आरपी सिंह साहब पहले।
0: ठीक है, आरपी सिंह साहब बोलिए।
2: आप ही शुरू करें सर, शुरू आप ही।
0: वाह, ये सम्मान देखकर तो मेरी आंखें नम हो गई। अब शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। फिर से टाइमर लगा दीजिए,
2: नेक्स्ट को मौका मिलना चाहिए।
0: फिर से टाइमर लगा दीजिए, 60 सेकंड का समय त्यागी जी आपका शुरू होता है।
1: देखिए, अभी यहाँ पे मुस्लिम राष्ट्र मंच के जो कि आरएसएस की एक बॉडी है उसके एक प्रवक्ता बोल रहे थे कि, और विश्व हिंदू परिषद के भी यहाँ पे जो नुमाइंदे वो बोल रहे थे कि इंटरवेंशन होना चाहिए सरकार का। मैं ये कहता हूँ, जो ट्रस्ट बनाया है वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया। प्रधानमंत्री मोदी जी 200 कैमरे लेके शिलान्यास करने गए, निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने गए, प्राण प्रतिष्ठा करने गए, ध्वजारोहण करने गए, सब कुछ करने गए और पूरा वहां पे ढोंग करने का काम किया, और उसके बावजूद अगर ये सब हो रहा है तो ये निंदनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पे चुप नहीं रह सकते, उनकी चुप्पी बहुत सारे सवाल खड़े करती है। अभी ये बोल रहे थे कि लड़ाई किस बात की, लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि राम भक्तों का जो उन्होंने आस्था से चंदा दिया था उसकी बंदरबांट किस तरीके से हो सके, कैसे किसकी जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसा आ जाए। और ये शबरीमाला पे एक बात अभी बोल रहे थे यहाँ पे एक हमारे प्रवक्ता, शबरीमाला पे मैं क्योंकि व्हाट्सएप पढ़ के नहीं आता हूँ, इंडिया टुडे के आर्टिकल पढ़ के आता हूँ। शबरीमाला पे एक आर्टिकल है, कांग्रेस पार्टी ने ही सबसे पहले उस पर सवाल उठाने का काम किया और उस हमारे दबाव के बाद ही एसआईटी की जो जांच है वो हाईकोर्ट ने वहां पर बैठाई शबरीमाला में।
0: समय समाप्त हुआ, चलिए अब रिबटल। अच्छा, ये विष्णु जैन जी की तरफ से मैं भी बोल दूं, आपने गलत उनको कोट किया, वो वीएचपी से जुड़े हुए नहीं है, वो वरिष्ठ अधिवक्ता है और वो कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं मामला। चलिए आपका शुरू करते हैं सिंह साहब, आपका 60 सेकंड का समय रिबटल।
2: दो बातों पे मुझे आपत्ति, कोई बात नहीं, समय की सीमा की इशू नहीं है। दो विषयों पे मुझे आपत्ति। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी ढोंग रहते हैं। प्रधानमंत्री जी आज भी इंडोनेशिया के अंदर, दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा मंदिर, दूसरे नंबर की जो का सबसे बड़ा मंदिर, आज भी वहां पे गए।
0: प्राचीन
2: मंदिर है और कोई 5000 साल पुराना मंदिर माना जाता है, परंतु जो डेटाबेस कहता है 1000 साल पुराना कहता है, परंतु आज भी गए। इसका मतलब वो ढोंग कर रहे हैं। असल में इन्होंने तो कभी मंदिर जाने की सोची नहीं, तो सर चुनाव के दौरान में मंदिर की बात करते हैं और एक जनेऊ पहन लेते हैं और एक ऊपर से जनेऊ भी दिखाते हैं कि मेरा जनेऊ है। हालांकि जनेऊ कभी ऊपर से पहना नहीं जाता, कभी कभी कभी कभी किसी ने देखा किसी के ऊपर से जनेऊ पहनो? जनेऊ हमेशा शरीर के साथ जुड़ना चाहिए, कपड़ों के साथ नहीं। परंतु फिर भी अभी इन्होंने कहा कि मंदिर की बात करते हैं, सब करते हैं। इन्होंने एक शब्द नहीं निकाला जब मैंने कहा कि वहां पर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज में जिस प्रकार से घोटाला रहा, एक शब्द नहीं निकाला इनके मुंह से। कभी इन्होंने एक शब्द नहीं निकाला। मैं अभी इसी में, इन्होंने इंडिया टुडे का रेफर किया, मैं ये अखबार की कटिंग लेकर आया हूँ, हालांकि दूसरे चैनल की मैंने नाम नहीं ले रहा। ये अखबार की कटिंग है जिसमें सबसे बड़ी जो दरगाह है अजमेर शरीफ है वहां पर घोटाला हुआ।
0: नियम सबके लिए बराबर है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अपनी अपनी जगह पर जा सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आइए विष्णु जैन जी और मनोज काका जी जल्दी से आइए। विष्णु जैन जी रिबटल राउंड में, और जो छात्र का भी सवाल है जजेस का रहा है, या आपको अपने ओपोनेंट का कोई जवाब देना है उसके लिए आपको 60 सेकंड का समय मिल रहा है और आपका समय शुरू होता है। आप पहले बोलना चाहते हैं आप? ठीक, विष्णु जी।
3: देखिए अंजना जी, मैं जितने यहाँ पे मेरे युवा साथी आए हैं, आप सारे लोग हैं, मैं आज आप लोगों से एक बहुत ही भावुक अपील करना चाहता हूँ कि इस समय हम सारे लोगों को अपने अंदर झांकने की जरूरत है, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, चाहे वो टेंपल मैनेजमेंट हो। आज हम लोग ज्ञान व्यापी का केस लड़ रहे हैं, भोशाला का केस लड़ रहे हैं, अलग अलग जगह कृष्ण जन्मभूमि की बात कर रहे हैं, पर आप मुझे बताइए, आज मुझे भगत सिंह की बात याद आती है जब उन्होंने कहा था कि हम आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और यहां पे गोरे साहब चले जाएंगे और काले साहब आ जाएंगे, तब क्या होगा। आज मैं आज तक के इस मंच पे कहना चाहता हूं, आज उसी कश्मकश से मेरा दिल और मेरा मन गुजर रहा है कि आज हम लोग मंदिर मुक्ति की बात तो कर रहे हैं, आज हम लोग हर एक चीज की बात कर रहे हैं, पर जब मंदिर मुक्त हो जाएगा, राम मंदिर की ये सबक हम लोग को सिखाता है कि जब मंदिर मुक्त हो जाए उसके बाद जितनी फोर्स से मंदिर मुक्ति की लड़ाई लड़ी गई थी, उतनी ही फोर्स से मंदिर के मैनेजमेंट को सुदृढ़ करने के लिए हम सारे लोगों को लड़ाई लड़नी चाहिए, नहीं तो मंदिर मुक्ति करने का कोई फायदा नहीं।
0: चलिए मनोज काका जी, इस विषय पर आपका बोलने का समय शुरू होता है। समय टाइमर कुछ तो मतलब आप लोग नियम मानिएगा, 7 सेकंड का समय शुरू होता है अब।
4: देखिए, एक तो यह है कि जिस साथी ने कहा कि बहुत सारी चीजें चोरी हुई है, उस साथी को मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़ा जो अधिकार होता है राजनीतिक प्रतिनिधित्व को होता है, और आज मुसलमानों का, मैं नाम लेके कह रहा हूं, अल्पसंख्यकों का, जिस वर्ग से आप आते हैं, जो कीर्तन गा रहे थे, सबसे बड़ा उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी चोरी हुआ है। बीजेपी के 240 सांसदों में से एक भी सांसद अब मुसलमान नहीं है। कब पूछिए कि कब क्या वो देश के नागरिक हैं कि नहीं है। और जब बीजेपी ये बात करती है कि हम सबके विकास के बात करते हैं, तो उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्यों नहीं देती है। और दूसरी जो बात है, धर्म की बात है, साथी ने, अधिवक्ता साथी ने बहुत अच्छी बात कही कि सबका प्रबंधन हो, जो वफ की बात आपने करा उस पर भी कह दे, इन बच्चों को सबको बताइए कि अब बोर्ड का जो गठन होता है वो कोई राजनीतिक दल नहीं करता, सरकार करती है, और आज सरकार में नरेंद्र मोदी हैं और योगी हैं। अगर वफ बोर्ड कहीं कोई बेईमानी करे तो SIT गठित कर दे, और हम तो कह रहे हैं और बढ़ के करें, किसी जज के निगरानी में कर दे, सिटिंग जज के, तब देखा जा। तो करना है नहीं, धार्मिक धांधली बाजी करनी है, और
0: समय समाप्त हुआ।
4: धांधलीबाजी का इस देश में बीजेपी का
0: दुरंधर है। अगर कोई पॉइंट है तो काउंटर कर लीजिए, उनको भी मौका दूंगा।
3: वैसे मैं इस चीज में पढ़ना नहीं चाहता था, पर यहाँ पे बात आ गई तो मैं मनोज जी को बताना चाहता हूँ, कृपया वफ अमेंडमेंट एक्ट 2025 का सेक्शन 3C उठा के देख लें, जिसमें यह था कि अगर वफ ने किसी सरकारी संपत्ति को कब्जा किया है, एकमात्र ऐसा सेक्शन था अंजना जी जो रेट्रोस्पेक्टिव था, कि अगर वफ ने किसी सरकारी संपत्ति को कब्जा किया तो उसको वापस लिया जाए, पर सारे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे कि नहीं साहब जी गलत है, और उस पर
0: अभी भी मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, अभी भी लंबित है, अभी भी डिसीजन
3: नहीं। पढ़ना नहीं चाहता,
4: आप बात ये कह, आप एक विधिवेत्ता होकर के ये कह रहे हैं कि आप देश में सुप्रीम कोर्ट का कोई मायने नहीं है, सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है, तो वो जो निर्णय आएगा सबको कबूल होगा।
3: सुप्रीम कोर्ट का मायने था,
4: ये जो राम मंदिर का निर्माण हुआ, राम मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के घर में हो गया, राम मंदिर का निर्माण कहा हुआ, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने किया
3: था सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं सेक्शन 3 से गलत है,
4: आप
3: वफ अमेंडमेंट एक्ट
4: कहीं अन्य कहीं किसी,
3: आप यहाँ पे अगर SIT बैठानी है तो वफ ने जो सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया
4: बैठाने के लिए SIT
3: बैठाइए, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, आप कभी नहीं जाएंगे।
4: आप ये अपील, ये अपील गवर्नमेंट से करेंगे ना,
0: हम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
4: आप ये कहना चाह रहे,
0: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
5: मनोज जी से सवाल,
0: विष्णु जी आ जाइए, सवाल।
6: मनोज जी ने एक अच्छी बात कही कि भाई जो भी गड़बड़ियां होती हैं उसके लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व जिम्मेदार होता है। बहुत अच्छा सवाल है
4: जी।
6: ये सारा चोरी का मामला आया अयोध्या में
4: जी।
6: अयोध्या नरेश की जो ट्रॉफी लेकर आपके नेता अखिलेश जी बैठे रहते हैं संसद में, क्या वो सांसद साहब ने कभी देखा कि भाई ये चोरी हो रही है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि नहीं है, मैं आपसे केवल जानना चाहता हूँ।
4: सर, बहुत वाजिब सवाल है और हम लोग कम से कम सवालों का स्वागत करते हैं। लगातार हमारी पार्टी ने, हमारे पार्टी के वहाँ के नेता हैं पवन पांडे जी, पूर्व विधायक रहे, लगातार सवाल उठाया, लेकिन ये सरकार, ये वो सरकार है कि
6: विपक्षी, आप मानते सांसद साहब को देखना चाहिए
4: नहीं, सांसद मंदिर, सांसद की जिम्मेदारी, सांसद की जिम्मेदारी निगरानी की जरूर है एक प्रतिनिधि के तौर पर, लेकिन उस मंदिर का वित्तीय देखरेख और प्रबंधन पूरी तरह से ट्रस्ट के हाथ में था, इसलिए ट्रस्ट की जिम्मेदारी है। और उनका एक सांसद के तौर पर जो उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व है, वही राम पथ पे 25 से 27 करोड़ की लाइटें लगी और रात भर में टूट के गिर गई, तो उनका अधिकार था, उन्होंने सवाल उठाया, सरकार ने कोई काम नहीं करा। तो जो सरकार पूरी तरह से ऊपर से नीचे भ्रष्टाचार की जो गंगा बह रही हो, वो किसी विपक्ष के प्रतिनिधि का कोई सवाल पूछ रही, हाँ मुकदमे कर सकती है, हमारे जैसे कार्यकर्ता पर एक दिन सवाल करने में, सर मैं आपको FIR की कॉपी दे दूंगा, चंदौली में एक दिन में 9 FIR हुए हमारे जैसे व्यक्ति पे सवाल पूछने के लिए। तो यह है आज का जहां असहमतियों की कोई कदर ही ना हो सरकार में, उस सरकार से विपक्ष सवाल क्या करेगा। यह सरकार पूरी तरह, हां विपक्ष से सांसद विधायक खरीदने की तैयारी वाली सरकार है। बच्चे आपके गिर जाए, पेपर लीक हो, शिक्षा मंत्री को पता नहीं है, हमारे सैनिक शहीद हो गए, देश के रक्षा मंत्री बेचारे एक साल बाद बताए, हम अपने शहादत तक को भूल जा रहे हैं। कुंभ में लोग मर गए, मुख्यमंत्री ने बताया बस 29 मरे, और मुआवजा कितने लोगों को पहुंचा है, बहुत सारे संस्थानों की रिपोर्ट है, आपके भी संस्थान की, इंडिया टुडे की भी रिपोर्ट है, पूरे देश में मुआवजा 105 लोगों को पहुंचाया गया, वह संत बनते हैं। तो इस तरह जब लोग दोहरे चरित्र के होंगे तो सवालों के सर कोई माने नहीं रहते।
0: आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी अपनी जगह पर जा सकते। आइए फैज खान साहब आइए, और मसूद फयाज हाशमी साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। बस खान जी ताली बजा रहे बच्चे।
5: हाँ तो चालू करिए समय फिर।
0: 60 सेकेंड आप या आप।
7: दीन दयाल बिरज संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बिल्कुल मेरे विपक्षी प्रवक्ता, मैं मुस्लिम हूं और भगवान राम का कीर्तन करता हूं, इससे आपको आपत्ति क्या है? रही बात की परंपरा के मुसलमान से आपको आपत्ति है, क्योंकि जब आपने मुसलमानों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया तो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी पैदा किया, और संघ और आरएसएस की विचारधारा ने जब राजनीतिक प्रतिनिधित्व मुसलमानों को दिया तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आरिफ मोहम्मद खान को पैदा किया। इसलिए हम इस विचारधारा का समर्थन करते हैं, और बार बार आप मोदी जी की तस्वीर दिखा रहे हैं प्रभु रामचंद्र जी के साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपको यह नहीं पता है कि यहाँ पर बाल रूप की भी प्रतिमा पूजा होती है, गुरु रूप की भी होती है, पिता रूप की भी होती है, पुत्र रूप की भी होती है, इसलिए गाया जाता है ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, को बाल रूप की भी यहाँ पर।
0: चलिए समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया। अब आपका हाशमी साहब समय 60 सेकंड का रिबटल का शुरू होता है।
8: देखिए मैं सबसे पहले आरपी सिंह जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने याद दिलाया कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री इंडोनेशिया में हैं, जहां वो कल 1000 साल पुराने मंदिर में गए। इंडोनेशिया के बारे में आप जानते हैं कि वो मुस्लिम कंट्री है, और उन्होंने उस मंदिर को अभी तक बचा के और सजा के रखा हुआ है,

0: हाँ पर, और वहीं 33 फिलहाल आ रहा है, 13% हो गया है नहीं पर, जो कि टीम त्यागी जी के लिए, मनोज काका जी के लिए है और हाशमी साहब के लिए है। तो 71%, 72% ये मानते हैं हाँ, 12%, 14% हो गया नहीं पर, 16% कह नहीं सकते वाले हैं, और आज अच्छी खासी तादाद में सफेद गमछे वाले दिख भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि गमछा भी और वोट भी अलाइन होता हुआ दिख रहा है। 68% हो गया, 68%, आखिरी के 30 सेकंड बचे हैं जिसमें आप अपना वोट डाल सकते हैं। 12% कह रहे हैं नहीं, 20%, यानी नहीं कहने वालों से ज्यादा है कह नहीं सकते, मतलब वो इस पर न्यूट्रल रहना चाहते हैं इस पर। 23% बढ़ रहा है नंबर, 23% लोग कह रहे हैं कि वो इस पर, 24% कह रहे हैं वो कहना नहीं चाहते हैं इस पर, कह नहीं सकते, उनको समझ नहीं आ रहा है कि विपक्ष फर्क करता है नहीं करता है इस मुद्दे पर, वो इस पर नहीं अपनी राय रखना चाहते हैं। वहीं हाँ कहने वाले 65%, 64%, आखिरी के 3, 2, 1, और इसी के साथ समय समाप्त हुआ। टीम आरपी सिंह और विष्णु जैन जी की और मोहम्मद फैज खान साहब की जीत गई है, आप दो तीनों को बहुत बहुत बधाई। तो फिलहाल ये टीम जीत गई है, अब वो घड़ी है जब बहस बाजीगर में तीनों जजेस ये तय करेंगे और हमें बताएंगे कि आप इन छियों में से किसको बना रहे हैं आज का बहस बाजीगर।
1: देखिए, बिल्ले को दूध की रक्षा के लिए अपॉइंट नहीं करना चाहिए ऐसा लोग कहते हैं, पर इसी देश में हम देखते हैं कि कुछ हजार कमाने वाले चार लोग हजारों करोड़ एक वैन में लेकर जगह जगह एटीएम में भरते हैं और एक एक पाई का हिसाब होता है। हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारे ज्वेलर्स के यहाँ सामने करोड़ों की ज्वेलरी रखी होती है और कोई 10-20-15 हजार रुपए वाला आदमी वहां नियुक्त होता है, वो उसकी रक्षा करता है क्योंकि व्यवस्था बनी हुई है। हमारे यहाँ वक्फ बोर्ड बने हैं, टेंपल मैनेजमेंट बोर्ड बने हैं, राम मंदिर के लिए तो भी ट्रस्ट ही बना है। ये देखना पड़ेगा कि व्यवस्था अगर नहीं होगी, सिर्फ बोर्ड होगा, तो जब आदमी बोर्ड होता है तो कुछ ना कुछ अपने मनोरंजन के लिए करता ही है।
0: आज बजाइए ताऊ के लिए जोर से तालियां, बहुत अच्छी बात बोले ताऊ। हाँ,
1: क्योंकि हम समस्या तो समझते हैं, समाधान के बारे में बहुत कम विचार करते हैं, समस्या के बारे में बहुत जोर जोर से नारे लगवाते हैं। आज जो है सिर्फ इसी के लिए श्री विष्णु जैन जी
0: बहुत बहस बात, मुझे लगता है कि सभी को सबका समर्थन होगा इस फैसले पर, क्योंकि विष्णु जी ने आज उस पर हल निकालने की कोशिश की है, और जो चिंता है मंदिरों में भी चढ़ावा चोरी की, उससे वो भागे नहीं। उन्होंने कहा कि मंदिर चोरी में चढ़ावा चोरी हो, वक्फ बोर्ड कुछ ऐसा करता है, कपलेबाजी या चोरी, दोनों पर सख्ती के साथ काम करने की जरूरत है।
2: वो समाधान के लिए पहले जरूरी है ना, समाधान के लिए पहले जरूरी कि आप मान तो लें कि गलती हुई।
0: मेरे लिए ऐसा अचंभा आज तक नहीं हुआ है कि कोई मेरे डिबेट में आकर समाधान बताया।
2: तो
0: कितनी बड़ी बात है,
2: इसीलिए हम तीनों लोगों ने माना कि समस्या पर चर्चा।
0: बहुत बहुत बधाई आपको विष्णु जैन जी, बहुत बहुत बधाई। तो आज के बहस बाजीगर हैं विष्णु जैन जी, तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहस बाजीगर में आज के लिए इतना ही, लेकिन अगले शनिवार आपसे फिर होगी मुलाकात। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: क्या इथेनॉल से नुकसान हो रहा है सर गाड़ियों?
1: मारुति सुजुकी के पास एक भी कंप्लेंट नहीं है, टोयोटो के पास एक भी कंप्लेंट नहीं है। मुझे बदनाम करने के लिए और इथेनॉल को बदनाम करने के लिए प्रयास है।
0: नए नए एक्सप्रेस वे जो बन रहे हैं उनमें गड्ढे,
1: ये हमारे हाईवे में जितने गड्ढे हैं उसके ऊपर आप कार्यक्रम करिए और दिखा दीजिए।
2: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy, or Wells Fargo for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
3: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
4: Less interruption, more listening. With TuneIn Premium, get less ads on all music, news, and sports so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium and start listening now.

0: हुआ जिमी?
1: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
3: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
4: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
5: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद E3HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: 20 साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता, तो फिर सोचना क्या। रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
2: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड, रीजनल और हाइपर लोकल रीच। हर शहर हर कस्बे तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल करें।
3: YouTube पे अब देखिए आज तक वर्टिकल। अरे भाई फिर घुमा रहे हैं, छोड़ दीजिए घुमाने की आदत, आज तक वर्टिकल।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आप लोगों के कोट अनकोट पाप गिनवाए हैं, ये कह के कि आपके समय में जो नॉन बीजेपी सरकार पहले रही है उस समय में हनुमानगढ़ी के मंदिर के सीढ़ियों पे नमाज पढ़वाया गया। क्या जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा अलाउ करेंगे?
5: कैसे नमाज पढ़ सकता है कोई आदमी वहां? ये एजेंडा जो है ये तमाम चीजों से ध्यान भटकाने का है। कैसे नमाज पढ़ सकता है? हम तो कह रहे हैं कि आप सड़क पे नमाज ना पढ़े, चूंकि सड़क सरकार की और सरकार मना कर रही है तो आपकी नमाज जायज नहीं होगी। मैं तो बार बार बोलता हूं, जिस प्रॉपर्टी का ओनर अगर उसको इजाजत नहीं देता तो वहां नमाज ही नहीं हो सकती। मस्जिद के अंदर अगर एक इंच जगह भी गलत है तो उस मस्जिद में नमाज नहीं होगी। तो ये बेकार की बातें हैं, ये मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। पहले बताइए कि प्राथमिक विद्यालय कितने बंद हुए इस उत्तर प्रदेश के अंदर? 8,500 गांव है उत्तर प्रदेश के अंदर, 8,500 न्याय पंचायत। उत्तर प्रदेश के अंदर कितने बंद हो गए स्कूल देख लीजिए आप। अगर आंकड़ा उठाएंगे तो वो भयावहता को बता देगा कि देश की शिक्षा व्यवस्था कहां जा रही है। शिक्षा व्यवस्था के अंदर आपने ऐसे लोगों को बैठा दिया जो सिर्फ नफरत बांटते हैं।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर
2: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
3: Jack, come home. It's supper time.
2: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
4: Hey, Jack, could you play that one song with the words?
2: Jack FM, playing what we want.
5: We are over, Jimmy.
6: Hey, life में scratches तो आएंगे. गाड़ी के scratches को तो Cosmo PPF संभाल लेगा. आप अपना देख लो.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: बीजेपी के लोग किसी भी सीमा तक झूठा प्रचार कर सकते हैं।
3: समाजवादी पार्टी के लोगों को तो ठेके पट्टे से ही फुर्सत नहीं है।
4: अयोध्या में चढ़ावा चोरी क्या हुई? उत्तर प्रदेश में बीजेपी की चुनावी राजनीति के पौबारा हो गए। महीने भर में कांग्रेस और समाजवादियों ने जितनी बार राम का नाम नहीं लिया होगा उतनी बार वक्त बाबर कब्रिस्तान हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुआंधार रैलियां और कार्यक्रम कर रहे हैं। सैकड़ों करोड़ की योजनाओं की सौगात जिले जिले दी जा रही है और इसके साथ ही विपक्ष पर मुस्लिम परस्त, मुगल परस्त, मौका परस्त होने की सियासी बौछार चल रही है। एक तरफ समूचा विपक्ष राम मंदिर में चोरी को लेकर हमलावर था तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ में घोटालों का मुद्दा उठाया और अब उसी लाइन को यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने और आगे बढ़ा दिया।
5: उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है इस समय वर्तमान में रिक्त है। आने वाले दिनों में जब सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन होगा तो जो वक्फ अधिनियम संशोधन अधिनियम के अनुसार जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश में भी उस अधिनियम के माध्यम से वक्फ के बोर्ड का गठन होगा जिसमें पिछड़े मुसलमानों को रखा जाएगा, मुस्लिम महिलाओं को रखा जाएगा, ऐसे हमारे हिंदू भाई समाज के दो भाइयों को रखा जाएगा। जो भी उस प्रावधान में जो भी गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार ही आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड के फॉर्मेशन होगा।
4: अगर ऐसा होता है तो एमपी के बाद उत्तर प्रदेश देश का दूसरा राज्य होगा जो वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान सदस्य रखेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में मौजूदा शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का कहना है कानून संसद से बना हुआ है तो उसका पालन अनिवार्य है, लेकिन सुन्नी समुदाय के मौलानाओं का कहना है वक्फ संशोधन कानून के कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है और मामला कोर्ट में लंबित, लिहाजा अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे यूपी में फिलहाल दो वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड। दोनों बोर्ड की संरचनाएं कुछ ऐसी कि दोनों बोर्ड में 11-11 सदस्य होते हैं जिसमें अध्यक्ष के अलावा मुस्लिम सांसद, मुस्लिम विधायक, मुस्लिम विधान परिषद सदस्य, इस्लामिक विद्वान और मतवल्लियों के प्रतिनिधि होते हैं। इसके अलावा सरकारी अधिकारी सीईओ होता है। यानी अभी की व्यवस्था में गैर मुस्लिम सदस्य वक्फ बोर्ड में नहीं होते, लेकिन वक्फ संशोधन बिल के बाद, नई व्यवस्था के बाद वक्फ बोर्ड में कम से कम दो गैर मुस्लिम सदस्य अनिवार्य हैं। इसके अलावा दो मुस्लिम महिला सदस्य, पसमानदा प्रतिनिधि, सांसद, विधायक, बार काउंसिल के सदस्यों में से एक एक का सीधे मनोनयन होगा। यानी पहले चुनाव होता था, उन्हें अब मनोनीत किया जाएगा। यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड इसी साल 15 मार्च को भंग हुआ है। 6 महीने के अंदर इसका पुनर्गठन जरूरी है, यानी चुनाव से ठीक पहले सितंबर 2026 तक यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन होगा जिसमें यूपी सरकार हिंदू समुदाय के दो सदस्यों को रखने की तैयारी कर चुकी है। दरअसल इसी हफ्ते मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी राज्य वक्फ बोर्ड का ऐलान किया है जिसमें 10 सदस्यों में 2 सदस्य हिंदू हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में से लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई। संतोष शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।

0: भारतीय घरों के किचन में जब तक आलू प्याज और टमाटर का तड़का ना लगे तब तक खाने का असली स्वाद ही नहीं आता। हर आम आदमी की थाली इन तीनों खास सब्जियों के बिना अधूरी मानी जाती है, लेकिन इन दिनों देश के आम परिवारों का ये सबसे पसंदीदा स्वाद लगातार कड़वा होता जा रहा है। महंगाई का एक नया झटका सीधे जनता की रसोई पर लगा है, जिसने हर घर के बजट को पूरी तरह बिगाड़ दिया है। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की मार के बाद रोज खाई जाने वाली सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक महीने में टमाटर के औसत खुदरा दाम करीब 18% तक बढ़ चुके हैं। वहीं प्याज की कीमतों में 11% और आलू के दाम में 1.3% का उछाल आया है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में तो टमाटर 50% तक महंगा हो गया है। दिल्ली और NCR के बाजारों में भी सब्जियों की कीमतें तेजी से ऊपर जा रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक आलू, प्याज और टमाटर आम आदमी के खर्च से जुड़े सूचकांक का 2.25% हिस्सा होते हैं। इसीलिए जब इनके दाम बढ़ते हैं तो पूरी थाली महंगी हो जाती है। आंकड़ों के मुताबिक टमाटर और LPG की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से आम थाली महंगी हो गई है, जिससे शाकाहारी थाली की कीमत में 5% तक की तेजी दर्ज की गई है और नॉनवेज थाली भी करीब 7% तक महंगी हो गई है। महंगाई के इस दौर में सबसे बड़ा सवाल है कि अचानक खाने पीने की चीजें इतनी महंगी क्यों हो गई हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह मौसम का मिजाज है, जिसने किसानों से लेकर आम खरीदारों तक सबको परेशान कर दिया है। व्यापारियों और जानकारों के मुताबिक इस साल अप्रैल से जून के बीच पड़ी भयंकर गर्मी ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। अत्यधिक तापमान की वजह से खेतों में ही टमाटर की फसल पूरी तरह झुलस गई। इसके साथ ही कई राज्यों में हुई बेमौसम बारिश की वजह से सब्जियों की पैदावार 10-20% तक कम हुई है। तेज धूप और गर्मी की वजह से ट्रकों में लोड होकर आने वाली सब्जियां रास्ते में ही जल्दी पककर खराब हो रही हैं। माल ढुलाई में आ रही इन दिक्कतों की वजह से मंडियों तक सही समय पर फ्रेश स्टॉक नहीं पहुंच पा रहा है। सप्लाई घटने और डिमांड बढ़ने से रिटेल मार्केट में आलू, प्याज और टमाटर के दाम दोगुने तक हो गए हैं। यानी भीषण गर्मी, बेमौसम बारिश और ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कतों ने मिलकर आम आदमी की रसोई का पूरा गणित बिगाड़ दिया है। आने वाले दिनों में नई फसल आने के बाद ही इन कीमतों से राहत मिलने की उम्मीद की जा सकती है। आज तक ब्यूरो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

नमस्कार, मैं हूं राजीव ढौंडियाल। शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक के इस खास शो में। अगले आधे घंटे में दिन भर की सभी बड़ी खबरें होंगी। हम खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस। पंजाब में आपस में ही हाथ आजमाते दिख रहे हैं कांग्रेसी प्रदेश अध्यक्ष। राजा वडिंग को हटाने पर अड़ा चन्ने गुट। रंधावा ने बताया कॉम्प्रोमाइज लीडर। आलाकमान के दरबार में पहुंचा झगड़ा। उमर के ऑपरेशन लूटर्स वाले बैन पर बौखलाई बीजेपी। कहा सबूत दो या मांगो माफी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने लगाया था आरोप, हमारे विधायकों को खरीदने की हो रही है साजिश। बीजेपी ने प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के गिनाए 10 फायदे। कहा इंडो पैसिफिक में भारत बना सबसे बड़ी ताकत। वैश्विक साझेदारियों को मिली नई मजबूती। कांग्रेस ने किया कटाक्ष। ओमान तट के पास कमर्शियल शिप पर बड़ा हमला। 10 भारतीयों को बचाया गया, एक अभी भी लापता। विदेश मंत्रालय ने घटना की निंदा की। पूरे मामले पर नई दिल्ली की नजर। अमेरिकी हमलों की नई किश्त के बीच दुनिया के सामने आएंगे मुज्तबा खामेनेई। मंगलवार की सभा में करेंगे शिरकत। अटैक में मारे गए लोगों को देंगे श्रद्धांजलि। यूएस की ओर से भयानक बमबारी जारी है। शो की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कई अहम खुलासे हुए हैं जो आपको जानने चाहिए। आरोपियों ने बताया है कि वो चढ़ावे की चोरी सिर्फ इवनिंग, सिर्फ शाम की शिफ्ट में करते थे। वहीं एक अहम खबर यह भी है कि ट्रस्ट ने सीईओ की नियुक्ति की कोशिशें तेज कर दी है। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि टिन्नू यादव और सुभाष यादव से अयोध्या पुलिस पूछताछ की तैयारी कर रही है।

0: राम मंदिर के प्रांगण में मौजूद जिस कमरे में चढ़ावे की गिनती होती थी वहां दो पालियों में काउंटिंग की जाती थी। चढ़ावे की गिनती के लिए पहली शिफ्ट सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक होती थी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक की थी। चढ़ावा चोरी की वारदात दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक की शिफ्ट में ही हुई, यानी चोरी दूसरी पाली में हुई। दरअसल सभी आरोपी उसी 2 से 9 वाली शिफ्ट में काम करते थे। दरअसल शाम के शिफ्ट में चोरी करना आरोपियों के लिए ज्यादा आसान था। काउंटिंग के दूसरे शिफ्ट में चढ़ावा चोरी का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने 4 आरोपियों से पूछताछ की। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 40 दिन में 70 बार चोरी की गई। सबसे ज्यादा 50 से अधिक बार चोरी अविनाश शुक्ला ने ही की थी। वो एक दिन में 2 बार चढ़ावा चोरी करता था। जिन 40 दिनों का रिकॉर्ड पुलिस ने खंगाला है उसमें से 5 दिन ऐसे भी रहे जब एक ही दिन में चढ़ावा चोरों ने 3-3 बार चोरी की।
1: सेकंड शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक होती थी और ये वो वक्त होता था जब कैश लेकर बाहर निकलते समय न सिर्फ निगरानी कम होती थी बल्कि इनके लिए कैश लेकर निकलना भी आसान हो जाता था।
0: पुलिस की जांच में ये सच सामने आने के बाद ही राम मंदिर ट्रस्ट ने चढ़ावे की गिनती अब सिर्फ एक ही शिफ्ट में करने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत अब सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चढ़ावे की गिनती शुरू कर दी गई है। तमाम खुलासों के बीच अयोध्या पुलिस रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव से भी पूछताछ की तैयारी में है। संतोष कुमार शर्मा, अयोध्या आज तक।
2: एक तरफ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर जांच चल रही है तो दूसरी ओर इस पर सियासत भी जबरदस्त तरीके से हो रही है। अरविंद केजरीवाल जब से राम मंदिर दर्शन करके लौटे हैं तब से वो हिंदुत्व का राग गा रहे हैं और अब बीजेपी की ओर से अरविंद केजरीवाल का एक पोस्टर जारी किया गया है जिसमें केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया गया है।
3: दिल्ली बीजेपी ने यह नया पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया गया है। इस पोस्टर को जारी करने के साथ ही बीजेपी ने लिखा है कि जो लोग भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण से खुश नहीं हैं, जिन्होंने मंदिरों और गुरुद्वारों के बाहर शराब की दुकानें खुलवाई, जिनकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही है, जो राम मंदिर की जगह अस्पताल बनवाना चाहते थे, जिन्होंने बजरंगबली का मजाक उड़ाया, जिनके शासन में इमामों को तो वेतन बांटा गया लेकिन पुजारियों को कभी कुछ नहीं दिया।
4: आज केजरीवाल जी को फिर राम याद आए हैं। ये राजनीतिक हिंदू हैं, आज फिर इनकी नौटंकी प्रारंभ हो गई है।
5: अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं और ये हम पहली बार नहीं बोल रहे। जब जब चुनाव आते हैं अरविंद केजरीवाल के जो कर्म होते हैं वो प्रूफ कर देते हैं कि वो चुनावी हिंदू हैं। आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसको लेके हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे। ये सब दिखाता है कि चूंकि वहां उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं इसलिए आज अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग चुनावी हिंदू बनकर हिंदू बनने का एक स्वांग रच रहा है।
3: दरअसल अरविंद केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़े हैं। एक तरफ उन्होंने घोषणा की है कि अमृतसर में वो माता सीता और लवकुश का मंदिर बनवाएंगे, दूसरी तरफ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर वो मुखर है।
6: सारे प्रयास किए जा रहे हैं चोरों को बचाने के, डकैतों को बचाने के, जमीनों के जो घोटाला हुआ उस पर तो जांच ही नहीं चल रही, नन मंदिर निर्माण में जो कमीशन खोरी हुई उस पर तो जांच ही नहीं चल रही।
3: लेकिन बीजेपी को ये रास नहीं आ रहा है। अब तेरा हिंदुत्व और मेरा हिंदुत्व की जंग शुरू हो गई है। आज तक ब्यूरो।
2: पंजाब कांग्रेस में जबरदस्त कोहरा मचा हुआ है। भूपेश बघेल 5 दिन के दौरे पर पहुंचे थे लेकिन छठवें दिन छत्तीसगढ़ लौटे। लगभग 92 नेताओं के साथ मैराथन बैठकों की लेकिन नतीजा ये कि उनके वापस लौटते ही चन्नी और बडिंग गुट के नेता फिर से बयानी जंग के अखाड़े में आ डटे।
0: स्लीपर सेल, समझौतावादी नेता, ये शब्द किसी विरोधी दल के नहीं, ये कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस के नेताओं के लिए बोल रहे हैं। जिस पार्टी ने 2027 में पंजाब जीतने की ख्वाहिश पाल रखी है वो 2026 में अपने ही कुनबे से हारती दिखाई दे रही है।
7: सुखजिंदर सिंह रंधावा बिल्कुल ठीक कह रहे कि स्लीपर सेल एक कॉम्प्रोमाइज लीडर पंजाब नू बिल्कुल नहीं चाहिए।
0: पंजाब कांग्रेस की दीवारों में दरार अब छिपी नहीं है अब सब कुछ कैमरों के सामने है। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा के बयान को भले ही पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अपने हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन रंधावा कहते हैं कि पंजाब को समझौतावादी नेता नहीं मजबूत नेता चाहिए, यानी सवाल सीधे नेतृत्व पर है।
8: आप चाहते हैं कि राजा बड़िंग
9: भी नहीं, बड़े राजा बड़िंग प्रेसिडेंट है, उसको आप ही आ जाना चाहिए था। मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मैं उसके साथ ही रहा हूं, तो उसको देखना चाहिए कि किसकी नाराजगी है।
0: तो क्या पंजाब कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन बीजेपी, आम आदमी पार्टी, अकाली दल नहीं बल्कि उसकी अपनी गुटबाजी है? दरअसल इस विवाद की असली वजह है पंजाब कांग्रेस में खेमेबंदी। पंजाब में एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग है, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर रंधावा और उनके समर्थक। पंजाब कांग्रेस में दरार की वजह ये बताई जा रही है कि जब अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को एक्सटेंशन मिल गया। इसी तनातनी के बीच पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने कई दौर की बैठकें की, लेकिन बंद कमरे की बातचीत खुली बगावत को रोक नहीं सकी। बागी नेताओं ने एक बार फिर राजा वडिंग को हटाने की मांग दोहराई, जबकि बघेल सार्वजनिक तौर पर नेतृत्व परिवर्तन से इनकार करते रहे। जिस पॉलिटिकल पार्टी की सेना के सेनापति पर ही सवाल उठने लगे, वो कैसे चुनावी मैदान में ताल ठोकेगा? पंजाब की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी अब चुटकी ले रही है।
10: यार ठीक रह गए भी क्या कर लेंगे, मां भगवत मान जी की लहर है।
0: इस बीच दिल्ली से कांग्रेस नेता उदित राज ने भी पंजाब के कांग्रेसी नेताओं को आईना दिखाया है। उदित राज ने भी पार्टी की सबसे कमजोर नस पर हाथ रख दिया।
11: आपस में लड़ेंगे तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ये बात समझ में आना चाहिए। उत्तराखंड में हम इसी तरीके से सरकार बनाते रह गए।
0: 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस खुद को सत्ता का दावेदार बताती है, लेकिन आज तस्वीर ये है कि विपक्ष से पहले उसे अपने ही नेताओं को एक मंच पर लाने की चुनौती है, और जब पार्टी का सबसे बड़ा संघर्ष पार्टी के भीतर हो तो विरोधी दलों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। यही पंजाब कांग्रेस की सबसे बड़ी राजनीतिक विडंबना है। आज तक ब्यूरो।
2: अगली खबर जम्मू कश्मीर से है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य का दर्जा मांगते हुए बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्रंप का जिक्र करके तंज भी किया है।
12: असेंबली से नहीं मिलेगा, ठीक, फिर हमने सड़कों पर बात करना शुरू किया, फिर कहते थे अब आपको जम्मू कश्मीर में बात करके ये मिलेगा नहीं, ठीक, अब हम जंतर मंतर जा रहे हैं, अब ये हमें कहते ना जंतर मंतर से आपको रियासत का दर्जा नहीं मिलेगा। खुदारा फिर ये बीजेपी वाले बताएं ना मुझे, क्या ट्रंप के पास जाना पड़ेगा व्हाइट हाउस में अमेरिका रियासत का दर्जा लेने के लिए? अगर मुझे अपने मुल्क के राजधानी में जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा की बहाली नहीं मिलेगी तो कहिए हम लोग टिकट करेंगे, हम अमेरिका जाके ट्रंप साहब के घर के बाहर एहतजाज करके वहां से स्टेटहुड मांग लेंगे, दे दीजिए।
2: अब बात पटना के बांकीपुर के चुनावी संग्राम की। बांकीपुर में 30 जुलाई को उपचुनाव होने हैं, 3 अगस्त को इसके परिणाम भी आएंगे, मगर बांकीपुर के इस चुनावी संग्राम में मुकाबला त्रिकोणीय है। सभी दल यहां पर अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन सबकी नजर इसी सीट पर चुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर पर है।

0: कहने को तो बांकीपुर में उपचुनाव होना है, मगर यहाँ की सियासी सरगर्मियाँ जबरदस्त तरीके से बढ़ी हुई हैं। मुकाबला त्रिकोणीय है। बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने ताल ठोकी है। उनके सामने अब बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार और आरजेडी के प्रत्याशी रेखा गुप्ता हैं। मगर बीजेपी मान के चल रही है कि बांकीपुर में पीके की हार तय है।
1: अब उनके पार्टी से कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था ये बाय इलेक्शन में बांकीपुर से, अपने कच्छा पिन के उतर गए क्योंकि कोई उम्मीदवार ही नहीं आ रहा था। अब ये जाएंगे तो जवाब देंगे, जवाब तो लोग देख रहे हैं, झूठ की खेती बार बार नहीं चलता।
0: बीजेपी के इस भरोसे के पीछे वो आंकड़े हैं जिनमें 3 दशक से बांकीपुर पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है। यहाँ बड़ी तादाद में वैश्य मतदाता हैं और वही बीजेपी की ताकत है, इसीलिए बीजेपी के सहयोगी दल भी भरोसे से भरे हुए हैं।
2: अरे उनको इस बात की समझ हो गई है कि यहाँ रह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि जनता एनडीए के साथ।
0: बांकीपुर में नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन है। कुल 11 प्रत्याशियों ने अब तक नामांकन दाखिल किया है, जिसमें लालू प्रसाद नाम के एक निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं। मगर कांग्रेस ने अब तक अपने किसी प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा है। अलबत्ता कांग्रेस कह रही है कि बांकीपुर से इस बार बीजेपी हारेगी।
3: पहली बार वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है सम्राट जी के नेतृत्व में, और उनकी परीक्षा हो रही है। एक तो पहले उन्होंने ऐसा प्रत्याशी बनाया जो जिसपे करप्शन के चार्जेस थे, जिसके पिताजी पे करप्शन के चार्जेस थे, फिर जिनको अभी बदला उन पे भी कई तरह की कंट्रोवर्सीज हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी।
0: बांकीपुर का रण दिलचस्प है। देखना होगा कि पहली बार चुनावी रण में उतरे पीके क्या बीजेपी के गढ़ को फतह कर पाएंगे। आज तक ब्यूरो।
4: अब आपको हादसे की हैरान करने वाली तस्वीरें दिखाते हैं, जहां सूरत में अचानक चलते चलते एक कार आग का गोला बन गया और चंद ही मिनटों में कार खाक हो गई।
0: सड़क पर खड़ी एक कार धधक रही है। आग इतनी भयानक है कि इसे बुझाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। भयानक आग खौफनाक है। दमकल कर्मी इस पर पानी की बौछार कर रहे हैं, मगर आग भयानक है। काफी देर बाद आखिरकार कार की आग बुझाई गई, मगर तब तक कार पूरी तरह से राख हो चुकी थी। तस्वीरें सूरत की हैं। सूरत के वेसू इलाके में चलती कार में अचानक आग लगी। ये घटना ओमेगा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने बीआरटीएस बस स्टैंड के पास हुई, जिससे थोड़ी देर के लिए मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया था। अच्छी बात यह रही कि वक्त रहते कार में सवार लोग बाहर निकल आए थे, इसीलिए कोई हताहत नहीं हुआ। हाँ, कार जरूर राख हो गई। कार में आग किस वजह से लगी इसका पता भी नहीं चला है। संजय सिंह राठौड़, सूरत आज तक।
4: अब आपको हैरान करने वाली एक और तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर कोटद्वार से आई है, जहां हाथियों का झुंड रिहायशी इलाके में आ गया। हाथियों का झुंड लोगों के घरों में घुस गया।

0: जंगल में हाथियों को टहलते हुए आपने बहुत बार देखा होगा। पहली बार रिहायशी इलाके में हाथियों को टहलते हुए देखिए, देखिए कितने आराम से ये हाथी इस मकान में प्रवेश कर रहे हैं। सामने से आ रहे इस हाथी के साथ बाईं ओर से प्रवेश कर रहे इस दूसरे हाथी को भी देखिए। इन दोनों के साथ एक तीसरा हाथी भी है, ये हाथी का बच्चा है। ये तीनों हाथी इस घर में प्रवेश कर गए हैं। अब आगे की तस्वीरें देखिए, ये छोटा हाथी घर की छत तक पहुंच गया है। छत पर रखी पानी की टंकी से ये पानी पी रहा है। दूसरा हाथी यहाँ इस कमरे में प्रवेश कर गया। ये तीनों हाथी इस घर में लगातार चहलकदमी कर रहे हैं और हाथियों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो रही हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड में कोटद्वार के वार्ड नंबर 1 के ग्रास्टनगंज की हैं। बताया जा रहा है कि इन हाथियों ने 5 से 6 घरों में जमकर तोड़फोड़ की है। पीड़ितों का आरोप है कि उन्होंने बार बार वन विभाग को शिकायतें दी हैं, मगर कार्रवाई नहीं हुई। अब लोग दहशत में हैं।
1: हाथी तो कभी कल तो 4-5 थे, अब तो 2 आदमी से क्या होगा। जरा स्टाफ बढ़ाओ,
2: यहाँ पे 35
1: स्टाफ बढ़ाओ, इसलिए स्टाफ के पास तुम टॉर्च दो, वो बंदूक दो, जिससे कि वो बंदूक वो हाथी भाग जाएंगे। नहीं तो हमको तो बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत रात 3 बजे 3:30 बजे सोए।
3: परसों भी अंदर आया था हाथी, मतलब पूरा तोड़ के गया, वॉश बेसिन वगैरह, टंकी, मेरी खिड़की पूरी तोड़ दी उसने, पल्ले बाहर निकाल के रख दिए। तो मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बोला है कि आओ। तो सर एक बात मुझे समझ नहीं आती, अगर इनके फॉरेस्ट गार्ड आते हैं, जो भी यहाँ पे है वो चौकी पे वो आते हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास कुछ, उनको आके हम करें क्या? न उनके पास कोई एयर गन वगैरह है कि वो हाथी भगाएं। सर डंडे से तो हाथी नहीं भागेगा ना। अभी पिछली बार फॉरेस्ट गार्ड आया था तो वो डंडे से वो पीछे भाग रहा था हाथी के, उसको भगाने के लिए हाथी ने उसको ही दौड़ा दिया। उसका रविंदर नाम है भैया का, उनका ही फोन टूट गया।
0: लोग खौफजदा हैं और मांग कर रहे हैं कि इन हाथियों से मुक्ति दिलाया जाए, कोई ऐसा कदम उठाया जाए कि हाथी रिहायशी इलाके में न आए। विकास, कोटद्वार, आज तक।
4: अब एक बड़ी खबर आपको देते हैं, ट्विशा शर्मा मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको देते हैं। दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट एम्स ने सीबीआई को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक एम्स के इस रिपोर्ट में कहा गया है कि फंदे के लिए इस्तेमाल किए गए जिम्नास्टिक बेल्ट पर स्किन टिश्यूज मिले हैं, जो शरीर पर मिले हुए चोट के निशानों से बिल्कुल मेल खाते हैं। ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। सीबीआई को दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी है और इसमें यह बड़ा खुलासा किया गया है। कथित फंदे के रूप में इस्तेमाल की गई वो मेटल रिंग वाली जिम्नास्टिक बेल्ट पर स्किन टिश्यू मिले हैं और ये टिश्यू त्विशा की गर्दन के चोट के निशानों से बिल्कुल मेल खा रहे हैं। और अब बात करते हैं वियतनाम से आए हुए एक बड़े हादसे की। वियतनाम के फुकोक द्वीप के पास में भारतीय पर्यटकों से भरी एक टूरिस्ट बोट पलट गई। हादसे में 15 भारतीयों की जान चली गई जबकि 21 लोगों को इसमें बचा लिया गया। बोट पर कुल 36 लोग सवार थे जिसमें 32 भारतीय और 4 क्रू मेंबर्स इसमें शामिल थे। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।
5: वियतनाम में छुट्टियों की तस्वीरें आखिर यादें बन गई हैं। समंदर का सफर मौत का सफर बन गया। परिवारों के लिए अब सिर्फ दर्द बचा है। वियतनाम के फुकवोक आइलैंड के पास एक टूरिस्ट बोट पलटी और देखते ही देखते गहरे पानी ने कई जिंदगियां निगल ली। जिस नाव में सवार होकर लोग नए अनुभवों की तलाश में निकले थे, वही नाव कई परिवारों के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा बन गई। वियतनाम से आई ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। समंदर की ऊंची लहरों के बीच पलटी हुई टूरिस्ट बोट और चारों तरफ मदद के लिए जूझते लोग। ये वही नाव थी जिसमें भारत से घूमने पहुंचे पर्यटक सवार थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटक और 4 क्रू मेंबर मौजूद थे। नाव होनमेर रूट से अनथोई पोर्ट की तरफ जा रही थी, तभी फुकवोक आइलैंड के पास करीब 400 मीटर दूर अचानक हादसा हो गया और देखते ही देखते पूरी नाव समंदर में पलट गई और 15 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे की खबर मिलते ही भारत सरकार भी सक्रिय हो गई। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बताया कि हादसे के बाद हनोई स्थित एम्बेसी और होची मिन्ह सिटी स्थित कॉन्सुलेट में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। दूतावास ने कहा कि भारतीय पर्यटकों की जानकारी जुटाई जा रही है और हर संभव मदद दी जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हादसे पर दुख जताते हुए लिखा, वियतनाम के फुकुओक के पास भारतीय नागरिकों से जुड़े इस दर्दनाक हादसे से बेहद दुखी हूँ। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया। पीएम मोदी ने कहा, वियतनाम में भारतीय नागरिकों से जुड़े नाव हादसे की खबर से बेहद दुखी हूँ। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूँ। भारतीय दूतावास और अधिकारी हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। हादसे में पीड़ित परिवारों में मातम है। केरल के मछलीपट्टनम में रहने वाले पीड़ित परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वियतनाम नाव हादसे में गेली जयलक्ष्मी की मौत की खबर के बाद परिवार में चीख पुकार मच गई। घर में मौजूद परिजन अब सिर्फ उस पल को याद कर रहे हैं जब एक सफर जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। वहीं केरल के ही रहने वाले एसी थॉमस और लोवेनी थॉमस की मौत की पुष्टि की गई है। केरल सरकार विदेश मंत्रालय के संपर्क में है ताकि मृतकों के पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाया जा सके। एक टूरिस्ट ट्रिप जो यादों का सफर बनने निकली थी वो अचानक मातम में बदल गई। समंदर की एक लहर ने कई परिवारों से उनके अपने छीन लिए। अब सवाल सिर्फ हादसे का नहीं, सवाल ये भी है कि आखिर ऐसी पर्यटक नावों की सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है। वियतनाम से आई इस त्रासदी ने एक बार फिर समंदर में सुरक्षा इंतजामों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
4: अब बात कनाडा के टोरंटो में हुई फायरिंग की। टोरंटो में एक स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान गोलीबारी से हड़कंप मच गया। इस हमले में दो लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग इसमें घायल हैं। पुलिस ने इसे एक एक्टिव शूटर केस बताया है और आरोपी की तलाश में जुटी है।
6: टोरंटो में सालसाउंड सेंट क्लेयर फेस्टिवल। फेस्टिवल में गोलियों की तड़तड़ाहट, अफरा तफरी का माहौल, चीखते चिल्लाते लोग। तस्वीरें कनाडा के टोरंटो की हैं, जहां शनिवार शाम एक प्रसिद्ध स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से हड़कंप मच गया। मिड टाउन टोरंटो में आयोजित वार्षिक लैटिन सांस्कृतिक उत्सव सालसाउंड सेंट क्लेयर के दौरान हुई इस फायरिंग के बाद मौके पर भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। टोरंटो पुलिस के मुताबिक गोलीबारी में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई जबकि चार लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने इलाके को तुरंत अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और लोगों से घटनास्थल से दूर रहने की अपील की गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक संदिग्ध हमलावर अभी फरार है। फिलहाल पुलिस फायरिंग के कारणों, हमलावर की पहचान और घटना के पीछे की वजहों की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़ी और जानकारी जल्द जारी की जाएगी। आज तक पेरो।
4: अब बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप की। स्विट्जरलैंड के खिलाफ अर्जेंटीना 3-1 की स्कोर लाइन बेशक एक तरफा लग रही हो, लेकिन जिस किसी ने भी ये मैच देखा होगा वो ये जानता है कि मेसी की वर्ल्ड चैंपियन टीम किस तरह जीत के लिए आखिरी पल तक जूझती रही। इस वर्ल्ड कप में ये पहला मैच था जिसमें मेसी एक भी गोल करने में नाकाम रहे।

0: स्विट्जरलैंड के खिलाफ एक्स्ट्रा टाइम में जीता वर्ल्ड चैंपियन। अब सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ दिखेगा अर्जेंटीना का दम। दुनिया भर की नजरें मेसी पर थी और कमाल स्विट्जरलैंड करता जा रहा था। गेंद पर नियंत्रण से लेकर विरोधी गोल पोस्ट पर आक्रमण करने तक स्विट्जरलैंड ने मौजूदा चैंपियन के खेमे में शुरू से ही खलबली मचा दी थी। हालांकि 10वें मिनट में एलिस मैक एलिस्टर ने गोल कर अर्जेंटीना को 1-0 की बढ़त दिला दी, लेकिन दूसरे हाफ में स्विट्जरलैंड ने जबरदस्त वापसी की और डैन एंडोए के इस शानदार गोल से स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया और फिर अर्जेंटीना 90 मिनट तक बढ़त बनाने में नाकाम रही। एक्स्ट्रा टाइम में स्विट्जरलैंड 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रहा था और इसका फायदा मिला जूलियन अल्वारेज को, जिन्होंने 112वें मिनट में गोल दागकर बढ़त बनाई। फिर जब लंबी सीटी बजने ही वाली थी कि आखिरी पलों में मार्टिनेज ने गोल दाग दिया। मेसी को कई मौके मिले लेकिन वो गोल नहीं कर पाए। इस वर्ल्ड कप में फिलहाल वो 8 गोल के साथ फ्रांस के एम्बापे के साथ गोल्डन बूट के दावेदारों में शामिल है। अर्जेंटीना का सामना अब सेमीफाइनल में इंग्लैंड से होगा। आज तक ब्यूरो।
1: ये थी खबरें 7 तक, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत। ट्यून इन हाउ टू, अ ब्रीफ लुक एट ऑल द स्पेशल फंक्शंस एंड थिंग्स यू माइट नॉट नो वी हैव।
5: ट्यून इन इज योर एमवीपी फॉर एवरीथिंग स्पोर्ट्स ऑडियो, विद लाइव स्पोर्ट्स एंड अ फुल लाइनअप ऑफ पॉडकास्ट्स एंड स्पोर्ट्स टॉक शोस, यू'ल गेट ऑल द स्पोर्ट्स एक्शन यू'ल एवर नीड। गेट अपडेट्स ऑन योर फेवरेट स्पोर्ट्स टीम्स एंड अलर्ट्स व्हेन दे प्ले, जस्ट फॉलो योर फेवरेट टीम्स ऑन ट्यून इन एंड यू'ल रिसीव नोटिफिकेशंस। Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
2: अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
6: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 products, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
2: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार। देश के हीरो की पहली पसंद।
3: वी आर ओवर जिमी।
4: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
5: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
8: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
9: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
10: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
11: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
10: Vimal, bolo zubaan kesri. Hint, bade aaram se.
12: Share bazaar, jahan kuch log seekhte reh jate hain aur kuch itihas likh jate hain. Aakhir, bada paisa banta kaise hai? कौन सी सोच, कौन सी रणनीति और कैसा नजरिया किसी को बनाता है बाजार का असली खिलाड़ी? इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आ रही है बिजटेक की नई पॉडकास्ट सीरीज मनी मेकर्स। यहां मुलाकात होगी बाजार के उन दिग्गजों से, उन मार्केट लेजेंड से जिन्होंने सिर्फ मार्केट को देखा नहीं बल्कि बड़े उतार चढ़ाव दिए हैं, मौके पहचाने हैं और दौलत बनाई है। जानेंगे उनकी जर्नी, बड़े फैसले, निवेश की सीख और बड़ा पैसा बनाने की सोच। मनी मेकर्स, बाजार के बड़े नाम, बड़ी सीख, सिर्फ बिस्तक पर।
13: जय हिंद फ्रेंड्स। ईसाइत, सोना, मसाला या विस्तार, 1498 में क्या थी वास्को डिगामा की मंशा? मधुमक्खी जैसे गोरे जो शहद लेकर आ रहे थे, भारत को डंक मारना शुरू कर दिया और बेवकूफ राजाओं का फायदा उठाकर इस देश को गुलाम बना दिया। लेकिन मीर जाफर और मीर कासिम ने अगर सर झुकाया तो रानी लक्ष्मीबाई ने सर उठाया और गोरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कैसी थी लड़ाई, कौन थे इसके महानायक? तलवारें चली या भजन चला? अगर बचपन में नहीं समझ में आया, नोटबुक निकाल लीजिए। मैं अवध ओझा जल लेकर आ रहा हूं मास्टर जी इन द न्यूज रूम, सिर्फ ललन टॉप पर।
14: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
15: मीडिया 50,000 युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
16: इस मांग को आगे बढ़ाया, उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
14: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम,

वियतनाम में छुट्टियों की तस्वीरें आखिर यादें बन गई हैं। समंदर का सफर मौत का सफर बन गया। परिवारों के लिए अब सिर्फ दर्द बचा है। वियतनाम के फुकवोक आइलैंड के पास एक टूरिस्ट बोट पलटी और देखते ही देखते गहरे पानी ने कई जिंदगियां निगल ली। जिस नाव में सवार होकर लोग नए अनुभवों की तलाश में निकले थे, वही नाव कई परिवारों के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा बन गई। वियतनाम से आई ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। समंदर की ऊंची लहरों के बीच पलटी हुई टूरिस्ट बोट और चारों तरफ मदद के लिए जूझते लोग, ये वही नाव थी जिसमें भारत से घूमने पहुंचे पर्यटक सवार थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटक और 4 क्रू मेंबर मौजूद थे। नाव होन में रूट से अनथोई पोर्ट की तरफ जा रही थी, तभी फुकवोक आइलैंड के पास करीब 400 मीटर दूर अचानक हादसा हो गया और देखते ही देखते पूरी नाव समंदर में पलट गई और 15 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे की खबर मिलते ही भारत सरकार भी सक्रिय हो गई। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बताया कि हादसे के बाद हनोई स्थित एम्बेसी और हो ची मिन्ह सिटी स्थित कॉन्सुलेट में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। दूतावास ने कहा कि भारतीय पर्यटकों की जानकारी जुटाई जा रही है और हर संभव मदद दी जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हादसे पर दुख जताते हुए लिखा, वियतनाम के फुकवोक के पास भारतीय नागरिकों से जुड़े इस दर्दनाक हादसे से बेहद दुखी हूँ। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया। पीएम मोदी ने कहा, वियतनाम में भारतीय नागरिकों से जुड़े नाव हादसे की खबर से बेहद दुखी हूँ। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूँ। भारतीय दूतावास और अधिकारी हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। हादसे में पीड़ित परिवारों में मातम है। केरल के मछलीपट्टनम में रहने वाले पीड़ित परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वियतनाम नाव हादसे में गेली जयलक्ष्मी की मौत की खबर के बाद परिवार में चीख पुकार मच गई। घर में मौजूद परिजन अब सिर्फ उस पल को याद कर रहे हैं जब एक सफर जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। वहीं केरल के ही रहने वाले एसी थॉमस और लोवेनी थॉमस की मौत की पुष्टि की गई है। केरल सरकार विदेश मंत्रालय के संपर्क में है ताकि मृतकों के पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाया जा सके। एक टूरिस्ट ट्रिप जो यादों का सफर बनने निकली थी, वो अचानक मातम में बदल गई। समंदर की एक लहर ने कई परिवारों से उनके अपने छीन लिए। अब सवाल सिर्फ हादसे का नहीं, सवाल ये भी है कि आखिर ऐसी पर्यटक नावों की सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है। वियतनाम से आई इस त्रासदी ने एक बार फिर समंदर में सुरक्षा इंतजामों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध इतना भीषण हो गया है कि एक हफ्ते के अंदर ईरान के कई शहरों में ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक किए गए हैं। अमेरिका ने ईरान के कई बंदरगाहों पर बम बरसाए हैं, जिसके जवाब में ईरान ने कतर, बहरीन समेत कई खाड़ी देशों में उसके मिलिट्री बेसिस को नुकसान पहुंचाया है। दोनों ही देशों के बीच में युद्ध विराम पूरी तरह से टूट चुका है, खत्म हो गया है, और अब तो दोनों ही देशों के नेता इसका ऐलान तक कर चुके हैं। पिछले 24 घंटों के भीतर 5 से ज्यादा देशों में बमबारी होने से महायुद्ध के और तेज होने के आसार बन गए हैं।

0: टूटा युद्ध विराम, शुरू हो गया भयंकर घमासान। ईरान के कई शहरों पर अमेरिका के विनाशकारी प्रहार, ईरान ने कई खाड़ी देशों पर बरसाए बम, हॉर्मुज पर ईरान की तालाबंदी, कीमतों में फिर लगेगी आग। आखिर जिसका डर था वही हुआ, धीरे धीरे टूटता युद्ध विराम अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। एक के बाद एक मिसाइल छोड़ी जा रही है, कई शहरों में सायरन की आवाज गूंज रही है जो हमलों का संदेश देने के साथ साथ युद्ध फिर से शुरू होने का ऐलान कर रही है। अमेरिकी मिसाइलों ने हफ्ते भर में तीसरी बार ईरान पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। ड्रोन और मिसाइलों के जखीरे ने एक बार फिर तबाही का तांडव मचाना शुरू कर दिया है। अमेरिका का दावा है कि इस बार करीब 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इनमें मिसाइल और ड्रोन साइट, नेवी के ठिकाने, गोला बारूद भंडार, संचार नेटवर्क और तटीय निगरानी केंद्र शामिल हैं। जिन ईरानी शहरों को निशाना बनाया गया उनमें न्यूक्लियर सिटी बुशहर समेत असालुये, बंदर एतेयर, जास और चाबहार के सैन्य ठिकाने शामिल हैं। अमेरिका हॉर्मुज में लगातार हो रहे हमलों से गुस्से में है और उसने पहले ही ईरान को ताबड़तोड़ हमलों की चेतावनी दी थी। पिछले तीन दिनों में ईरान के 300 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। खैर, ईरान को भी जवाब देना ही था, लिहाजा उसने भी कई खाड़ी देशों में बने अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों के जरिए बम बरसाने शुरू कर दिए। कतर में अमेरिका के अलुदीद एयरबेस पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से हुए हमले में जंगी जहाजों के मेंटेनेंस और रिपेयर सेंटर के साथ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया है। कतर में ईरानी हमले को नाकाम करने के दौरान मलबा गिरने से 3 लोग घायल हो गए। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने भी मिसाइलों का मोर्चा मध्य पूर्व की ओर खोल दिया है। कतर के अलावा जॉर्डन, कुवैत, बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी ईरान ने निशाना बनाया है। साथ ही यूएई पर भी ईरान की ओर से मिसाइल दागी गई है। बहरीन में लगातार सायरन बज रहे हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी जा रही है। ईरान अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले करने के साथ साथ बयानों में भी आक्रामक होता जा रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई ने अपने पिता अली खामेनेई की मौत का बदला लेने का ऐलान कर दिया है, जिससे अमेरिका और ईरान के बीच घमासान और तेज होने की आशंका बढ़ गई है। अमेरिका के साथ बातों मुलाकातों के दौर में ईरान की ओर से अहम किरदार निभाने वाले मोहम्मद बागेर गालिबाफ के सुर भी तल्ख हो गए। उन्होंने लिखा कि एक तरफा समझौतों का दौर खत्म हो चुका है, हमने पहले ही कहा था, या तो अपना वादा निभाइए या फिर इसकी कीमत चुकाइए, अब हकीकत सामने है। गालिबाफ ने अपने पोस्ट के साथ समझौते की तस्वीर भी साझा की है, जिसमें हॉर्मुज को दोबारा खोलने और वहां व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी ईरान की बताई गई है। खैर, अमेरिका तो जो नुकसान ईरान का कर रहा है वो दुनिया देख ही रही है, लेकिन ईरान के जबरदस्त पलटवार से ट्रंप के बार बार किए जा रहे इन दावों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने ईरानी की पूरी सैन्य ताकत का खात्मा कर दिया है।
1: I think the third regime is more reasonable, but we'll find out. But we've destroyed their, as you know, completely destroyed. 150. They had 159 ships. Every single ship is at the bottom of the sea. We've completely

0: अभी तक अमेरिकी मिसाइलों के निशाने पर हॉर्मुज से सटे इलाके ही आमतौर पर आते थे, लेकिन इस हफ्ते अमेरिका ने उन तमाम तटीय इलाकों को बर्बाद करने के लिए बम बरसाए हैं जो ईरान के तेल निर्यात और अर्थव्यवस्था में मजबूत किरदार निभा रहे हैं। अमेरिकी सेना दो मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। एक तरफ वो ईरान के उन सैन्य ठिकानों को बर्बाद कर रही है जहां से खाड़ी देशों में बने अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हमले किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अब उसके निशाने पर ईरान की वो पोर्ट सिटी आ गई है जो उसकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। इनमें से एक है बंदर अब्बास, जो तेल के निर्यात के लिहाज से अहम ठिकाना है। इसके अलावा नेचुरल गैस के लिहाज से अहम कंगन, समुद्री इकोनॉमी के लिहाज से अहम बंदर देयर एनर्जी और पेट्रोकेमिकल के लिहाज से अहम असालुये क्रूड ऑन ऑयल पाइपलाइन की वजह से महत्वपूर्ण माने जाने वाला जास्क, हॉर्मुज के करीब होने की वजह से सैन्य अहमियत वाले सिरिक और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर चाबहार पोर्ट। पिछले 24 घंटों में इन सभी पर अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं और कंट्रोल टॉवर से लेकर अहम उपकरणों तक को तबाह किया है। चाबहार पोर्ट तो आर्थिक के साथ साथ सामरिक और कूटनीतिक तौर पर भी इतना अहम है कि भारत तक ने इसमें करोड़ों रुपये का निवेश किया था। इतना ही नहीं, खार्ग को लेकर भी अमेरिका लगातार आक्रामक होता जा रहा है। ईरान के तेल निर्यात का करीब 90% हिस्सा खार्ग के जिम्मे ही है और ये ईरान को आर्थिक तौर पर मजबूत करने में अहम किरदार निभाता रहा है। इसीलिए अमेरिका लगातार इस पर भी हमले कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान के तटीय शहर ही बमबारी का शिकार हो रहे हों। ईरान का दावा है कि उसने ओमान के दुकम पोर्ट पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए इस्तेमाल होने वाले लॉजिस्टिक सपोर्ट सेंटर और ईंधन भरने वाले प्लेटफॉर्म पर भारी हमला किया है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका लगातार दबाव डलवाकर ओमान के पास जहाजों की आवाजाही के लिए एक नया समुद्री मार्ग तैयार करा रहा है। इससे होर्मुज पर ईरान का नियंत्रण कमजोर हो सकता है, लिहाजा ईरान ने इस पर भी कड़ा रुख अपनाकर वहां से गुजरने वाले हर जहाज पर निगाहबानी का फरमान जारी कर दिया है। तटीय शहरों पर बढ़ते हमलों का असर सिर्फ ईरान की पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था पर ही नहीं होगा बल्कि दुनिया भर में तेल सप्लाई, समुद्री व्यापार और पूरे मिडिल ईस्ट की सुरक्षा पर भी हो सकता है। आज तक ब्यूरो।
1: बीती रात अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर हमले का दावा किया है। हम आपको एलईडी बॉल पर सीधा दिखाते हैं कि आखिर ईरान के किन किन खास इलाकों पर अमेरिका की तरफ से बमबारी का दावा किया गया है। एक दो नहीं, 140 ठिकानों पर अमेरिका की तरफ से दावा है कि हमने ईरान के निशाना बनाया है, हमने उनको जो है टारगेट किया है। इसमें क्या क्या है? ईरानी मिसाइल और ड्रोन अड्डे शामिल हैं, नौसैनिक क्षमता वाले बेसिस शामिल हैं जिनको अमेरिका की तरफ से हिट करने का दावा है, नौसैनिक क्षमता को कमजोर करने का प्रयास है, गोला बारूद भंडारण केंद्र जहां पर संभाल कर रखा हुआ था उस भंडारण केंद्र को भी अमेरिका की तरफ से दावा किया कि हमने टारगेट किया। इसके साथ साथ जो उनका कम्युनिकेशन नेटवर्क है, संचार नेटवर्क है, उस पर भी अमेरिका की तरफ से अटैक का दावा है। साथ ही तटीय निगरानी केंद्र जो कि ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन केंद्रों पर भी अमेरिका की तरफ से हमले का दावा किया गया है। कुछ और महत्वपूर्ण केंद्रों पर भी हमला अमेरिका की तरफ से दावा किया गया कि हमने किया है। इसके साथ साथ वो जगह भी हम आपको दिखा देते हैं, ईरान के जो समुद्री शहरों पर खासतौर पर हमला किया गया। इसमें केशम द्वीप बड़ा इंपॉर्टेंट, आप बार बार सुनते होंगे, बुशहर है, अबू मूसा द्वीप है, इसमें सिरिक है, इसमें जास्क द्वीप है, कुनास्क है, कुनार्क है और बंदर अब्बास और चाबहार है। ये सब बड़े फेमस नाम है इन जगहों पर जो कि बहुत स्ट्रेटेजिक लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट और आर्थिक दृष्टि से भी ईरान के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, यानी कि उसकी आर्थिकी की कमर तोड़ने का प्रयास एक बार फिर से अमेरिका की तरफ से किया गया। ये वो तटीय शहर है जिनको निशाना बनाया गया और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर हर कोई अब ऐसा लग रहा है कि अपना नियंत्रण चाहता है। अमेरिका बिना किसी टोल बंदी के यहां से अपने जहाजों की आवाजाही चाहता है। ईरान के पास शक्ति है इस समय, ईरान उसको अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाह रहा है और 17 जून से 6 जुलाई तक 558 जहाजों की निकासी हुई है। ये 17 जून को अमेरिका और ईरान में डील हुई, उसके बाद से हुआ है। 7 और 8 जुलाई को यहां से सिर्फ 5 जहाज गुजरे। तो ये आलम है कि अब एक बार फिर से युद्ध में ये वापस जा चुके हैं क्योंकि सीज फायर खत्म करने की बात तो दोनों ही तरफ से कर दी गए हैं। अब वक्त हो चला है विशेष में छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: वी आर ओवर जिमी।
2: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
3: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
4: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
5: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
8: दतिया में टिकट को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा ऐसा फूटा कि वो अपनी ही सरकार की पुलिस से भिड़ गए। मध्य प्रदेश के दतिया में 30 जुलाई को उपचुनाव है। बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। दतिया से आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाने की घोषणा होते ही नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। नेशनल हाईवे पर जाम लग गया, घंटों तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही, पुलिस पर पथराव हुए और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।
9: मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए, पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं, ऐसा कोई कार्य न करे।
8: आखिर दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्यों कटा? बताया जा रहा है कि दिल्ली के स्तर पर कराए गए सर्वे में नरोत्तम मिश्रा की स्थिति उम्मीद के मुताबिक मजबूत नहीं पाई गई। 2023 में बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिया था, लेकिन वो विधानसभा का चुनाव हार गए। केंद्रीय नेतृत्व ने स्थानीय संगठन और भविष्य की राजनीति स्वीकारता का भी आकलन कराया। इसमें नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी फिट बैठे, जिसके बाद उन्हें दतिया से टिकट दिया गया। बीजेपी ने एक ब्राह्मण नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर दूसरे ब्राह्मण आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है। इससे जातिगत और सामाजिक संतुलन बरकरार है। उधर पार्टी का संदेश साफ है कि बीजेपी हाईकमान फिलहाल झुकने के मूड में नहीं है।
10: पार्टी इस प्रकार के सोच समझ के निर्णय लेती है और इसलिए हम डंके की चोट जीतेंगे और नरोत्तम जी भी काम करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं नरोत्तम जी को जानता हूँ व्यक्तिगत।
9: नरोत्तम जी मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता, तो उनको कट्टू साइज तो करनी था, कर दिया।
8: दतिया में अब लड़ाई बीजेपी के सामने अपनों से है, जहां अभी तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। भोपाल से रवीश पाल के साथ आज तक ब्यूरो।

0: ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
1: ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ, ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਨੇਤਾ, ये शब्द किसी विरोधी दल के नहीं, ये कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस के नेताओं के लिए बोल रहे हैं। जिस पार्टी ने 2027 में पंजाब जीतने की ख्वाहिश पाल रखी है, वो 2026 में अपने ही कुनबे से हारती दिखाई दे रही है। पंजाब कांग्रेस की दीवारों में दरार अब छिपी नहीं है, अब सब कुछ कैमरों के सामने है। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा के बयान को भले ही पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अपने हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन रंधावा कहते हैं कि पंजाब को समझौतावादी नेता नहीं, मजबूत नेता चाहिए। यानी सवाल सीधे नेतृत्व पर है। तो क्या पंजाब कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन बीजेपी, आम आदमी पार्टी, अकाली दल नहीं, बल्कि उसकी अपनी गुटबाजी है? दरअसल इस विवाद की असली वजह है पंजाब कांग्रेस में खेमेबंदी। पंजाब में एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग है, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर रंधावा और उनके समर्थक। पंजाब कांग्रेस में दरार की वजह ये बताई जा रही है कि जब अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को एक्सटेंशन मिल गया, 1 जुलाई को कांग्रेस ने घोषणा की कि अमरिंदर सिंह राजा वडिंग पंजाब यूनिट के अध्यक्ष बने रहेंगे और जालंधर के सांसद चन्नी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन होंगे। यहीं से पंजाब में कांग्रेस की सियासी जमीन में खटपट का बीज पड़ गया। चन्नी और उनके समर्थक नाराज हो गए। इसी तनातनी के बीच पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने कई दौर की बैठकें की, लेकिन बंद कमरे की बातचीत खुली बगावत को रोक नहीं सकी। बागी नेताओं ने एक बार फिर राजा वडिंग को हटाने की मांग दोहराई, जबकि बघेल सार्वजनिक तौर पर नेतृत्व परिवर्तन से इनकार करते रहे। जिस पॉलिटिकल पार्टी की सेना के सेनापति पर ही सवाल उठने लगे, वो कैसे चुनावी मैदान में ताल ठोकेगा? पंजाब की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी अब चुटकी ले रही है। राजनीति में विरोधी हमेशा बाहर नहीं होते, कई बार सबसे बड़ा विपक्ष पार्टी के भीतर बैठा होता है। पंजाब कांग्रेस आज उसी दौर से गुजर रही है। ऐसे में बीजेपी को नया मुद्दा मिल गया है, जो पंजाब में अपनी पैठ बनाने की फिराक में है। इस बीच दिल्ली से कांग्रेस नेता उदित राज ने भी पंजाब के कांग्रेसी नेताओं को आईना दिखाया है। उदित राज ने भी पार्टी की सबसे कमजोर नस पर हाथ रख दिया। 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस खुद को सत्ता का दावेदार बताती है, लेकिन आज तस्वीर ये है कि विपक्ष से पहले उसे अपने ही नेताओं को एक मंच पर लाने की चुनौती है। और जब पार्टी का सबसे बड़ा संघर्ष पार्टी के भीतर हो, तो विरोधी दलों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। यही पंजाब कांग्रेस की सबसे बड़ी राजनीतिक विडंबना है। आज तक ब्यूरो।
2: क्या कुछ नहीं सीखा आपने? तुम्हारा नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और आज जहां आपके पैसों की लालच नहीं चली, जहां आपकी मिनिस्ट्रियों की लालच नहीं चली, वहां आप बंद कमरे में मेरे एमएलए को कह रहे हो आओ हमारे साथ, आप जब आओगे तो हम आपको रियासत देंगे। अल्लाह गवाह है, अगर मेरे जम्मू के एक एमएलए ने मुझे कमरे में आके ये बात नहीं कही हो। सुप्रीम कोर्ट का बीजेपी का एक अहदेदार, सुप्रीम कोर्ट का वकील, बीजेपी का अहदेदार मेरे एक जम्मू के एमएलए को बंद कमरे में कहता है, हम 20 से 30 करोड़ एक मिनिस्ट्री और रियासत का दर्जा, आप हमारे साथ चलो। हमको लगता है कि इन लोगों का ईमान इतना सस्ता है। देखिए यहां स्टेज पे एक भी आपको नजर नहीं आएगा जो 20 करोड़ में क्या 100 करोड़ में अपनी ईमान बेचने के लिए जा रहा है।
3: कि जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार की अक्षमता, अकर्मण्यता और कुशासन को छिपाने के लिए और इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार का अनर्गल आरोप जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी ने लगाया है। हम इसकी कठोर निंदा करते हैं और यही बात हम उनसे कहते हैं कि या तो वे इस विषय का साक्ष्य रखें अथवा वो अपने बयान के लिए माफी मांगें।

0: विशेष में अभी के लिए इतना ही, लेकिन अब आगे देखिए योगी का धर्म युद्ध श्वेता सिंह के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
1: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: पंजाब में आपस में ही हाथ आजमाते दिख रहे हैं कांग्रेसी प्रदेश अध्यक्ष राजा बड़िंग को हटाने पर अड़ा चन्नी गुट रंधावा ने बताया कॉम्प्रोमाइज लीडर आलाकमान के दरबार पहुंचा झगड़ा। उमर के ऑपरेशन लोटस वाले बैन पर बौखलाई बीजेपी, कहा सबूत दो या मांगो माफी। जम्मू कश्मीर के सीएम ने लगाया था आरोप हमारे विधायकों को खरीदने की हो रही है साजिश। बीजेपी ने प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के गिनाए 10 फायदे, कहा इंडो पैसिफिक में भारत बना बड़ी ताकत, वैश्विक साझेदारियों को मिली मजबूती, कांग्रेस का कटाक्ष। त्रिशा केस में एम्स ने सीबीआई को सौंपी दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सूत्रों से खबर फंदे के लिए इस्तेमाल बेल्ट में मिले स्किन टिश्यू, चोट के निशान से हुए मैच। अमेरिकी हमलों के बीच नई दुनिया के सामने अब मुश्तबा खामेनी आएंगे, मंगलवार की सभा में करेंगे शिरकत, अटैक में मारे गए लोगों को देंगे श्रद्धांजलि, यूएस की तरफ से भयानक बमबारी जारी है।
1: नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं, आप देख रहे हैं आज तक। अयोध्या जहां श्रीराम जन्मभूमि मंदिर बनने के बाद जब 48 दिन में 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे तो इसे दुनिया की धार्मिक राजधानी कहा जाने लगा। 2019 तक जहां आने वालों की संख्या कुछ हजार रहती थी, 2024 से वहां आस्था के साथ रोज पहुंचने वालों की संख्या हजारों के आंकड़ों से लाख के पार चली गई। ये आंकड़े बताते हैं कि अयोध्या, श्रीराम और राम मंदिर में आस्था की ताकत कितनी बड़ी है। और तब चढ़ावा विवाद से जहां विपक्ष सवाल आस्था के अपमान का उठाने लगा, तब अयोध्या के मुद्दे पर सबसे बड़ा मोर्चा संभालने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उतरते हैं, जो जांच की आंच में आरोपियों को सजा दिलाने की बात भी करते हैं और अयोध्या पर विपक्ष का इतिहास भी याद दिलाते हैं ताकि अयोध्या की आस्था को कहीं से कोई चुनौती न दे सके।
2: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में कार्यक्रम के बाद वहां मौजूद कुछ बच्चों का अन्नप्राशन कराते हैं। इससे पहले कुशीनगर पहुंचने पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों कई मां अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का अन्नप्राशन कराती हैं। पिछले महीने भी जब मुख्यमंत्री अयोध्या के दौरे पर आते हैं तो कई बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार योगी आदित्यनाथ के हाथों होता है। क्या केवल मुख्यमंत्री होने के नाते योगी के हाथों यूपी की बहुत सी माएं चाहती हैं कि उनके बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार हो, जिसे हिंदू धर्म के 16 सबसे महत्वपूर्ण संस्कारों में से एक माना जाता है। वो संस्कार जहां बच्चे को पहली बार माँ के दूध के अलावा ठोस आहार जैसे खीर खिलाने की परंपरा रही है। क्या उसे इसलिए योगी आदित्यनाथ से माएं कराती हैं क्योंकि उन्हें योगी में कुशल प्रशासक के साथ संत की छवि दिखती है। इसको लेकर एक बार खुद मुख्यमंत्री बता चुके हैं,
3: मैं किसी गांव में जाता हूं, किसी कार्यक्रम में जाता हूं, दो चार माताएं खड़ी रहती हैं कि मेरे बच्चे का अन्नप्राशन करा दीजिए और मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए, वह बच्चा अपनी मां की गोद में रोता होगा, अपने पिता की गोद में रोता होगा, अपने दादा दादी के गोद में रोता होगा, लेकिन जैसे मेरे गोद में आता है वो हंसने लगता है। तो लोग कहते हैं सब क्या है, मैं कहता हूं देखो वो कह रहा है कि अब मैं सुरक्षित हूं।
2: इसीलिए अब सवाल आता है, जहां बच्चे मुख्यमंत्री के मुताबिक खुद को उनकी गोद में सुरक्षित महसूस करते हैं, वहां अयोध्या के रण को लेकर योगी आदित्यनाथ ने विश्वास को अखंडित रखने और आस्था को रत्ती भर आंच न आने देने का अब प्रण ले लिया है।
4: इतना बड़ा जो घोटाला बोले या उसको कोई और रूप देखे,
5: इनका तो इतिहास राम भक्तों के खून से सना हुआ है।
6: भारतीय जनता पार्टी ने संविधान, श्रद्धा और आस्था से खिलवाड़ किया।
7: मंदिरों के नाम पर आने वाले पैसे को हजम कर जाते थे।
8: बीजेपी के लोग किसी भी सीमा तक झूठा प्रचार कर सकते हैं।
7: पहले मंदिरों के नाम पर आने वाला पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर खर्च हो जाता था।
8: इस बार भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलने जा रहा है और न वोट मिलने जा रहा है।
7: हर राम भक्त को, हर भारत के आस्थावान नागरिक को इसके प्रति सचेत होना होगा।
2: टेंट वाले रामलला के वक्त जिनके गुरु महंत अवैद्यनाथ राम मंदिर आंदोलन के अगुवा रहे, उन्हीं के शिष्य योगी आदित्यनाथ भव्य राम मंदिर निर्माण तक के कार सेवक बने। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ 2027 के चुनाव से पहले इस वक्त एक नई कार सेवा में जुट चुके। कार सेवा अयोध्या की आस्था पर होते सियासी हमलों को रोकने की।
9: पिछले एक महीने से हम सबके पावन धाम अयोध्या को बदनाम करने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कैसे मुहिम चला रखी है, कैसे एक एक को टारगेट किया जा रहा है, कैसे अयोध्या को टारगेट किया जा रहा है, कैसे राम जन्मभूमि को बदनाम किया जा रहा है, कैसे आस्था पर प्रहार करने का कार्य एक कांग्रेस समाजवादी पार्टी और एक कथित सेकुलर दलों के द्वारा देश के अंदर एक नेगेटिव वातावरण बनाने का कुत्सित प्रयास हो रहा है।
2: कार सेवा अयोध्या के नाम पर विश्वास को खंडित करने वाली राजनीति को रोकने की।
7: केवल 6 लोग इसमें चोरी करते हुए पाए गए, कुल 6 लोग, 2 लोग उसमें साजिश का पार्ट थे, यानी कुल 8 लोग। कार्रवाई हो गई। फिर इसमें पूरे ट्रस्ट को बदनाम करने, पूरी अयोध्या पर उंगली उठाने, प्रभु श्री राम की विरासत को अपमानित करने का औचित्य कहां से होता था। लेकिन लगता है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भारत की पूरी आस्था को आहत करने और उस पर प्रहार करने का ठेका ले लिया।
2: जिस राम मंदिर को 2024 में प्राण प्रतिष्ठा के वक्त ही दुनिया की धार्मिक राजधानी कहकर चर्चा की जाने लगी, इस वक्त उसी अयोध्या को लेकर मुख्यमंत्री मानते हैं कि वोट के लिए बदनाम करने वाली राजनीति हो रही है। निशाने पर अखिलेश यादव हैं, जो सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि अयोध्या के मंदिर से चढ़ावा, चंदा, दान चोरी का समाचार पूरे विश्व में फैल चुका है। दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले सनातनी बीजेपी के कृत्यों से हो रही बदनामी की वजह से शर्मसार। फिर एक AI से बना वीडियो जारी करके अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि क्या फिर से चले गए वनवास। इससे भी पहले इस तीसरी पोस्ट को देखिए, जिसमें लिखा गया कि अयोध्या महापापियों के लिए कुरुक्षेत्र साबित होगी।
10: जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने मर्यादा मर्यादा को इन्होंने तोड़ मरोड़ करके अपने स्वार्थ में न जाने क्या क्या किया है।
2: ऐसे बयानों के बीच जब सवाल विपक्ष मर्यादा, राम, अयोध्या और आस्था की करता है, तो योगी आदित्यनाथ तीनों काल याद कराकर अखिलेश यादव को जवाब देते हैं। भूतकाल याद करा के योगी बताते हैं कि राम भक्तों पर गोली किसने चलवाई थी, राम के अस्तित्व पर कौन सवाल उठाता था, कब्रिस्तान की दीवारों की चिंता किसको ज्यादा होती थी, हनुमानगढ़ी में नमाज किसने कराई थी, कांवड़ यात्रा कौन रुकवाता था और कौन दुर्गा पूजा नहीं होने देता था। वर्तमान काल में अयोध्या का विकास योगी याद दिलाते हैं, तो भविष्य काल की चुनौती देकर कहते हैं कि राम जन्मभूमि की बात करने वाले क्या कृष्ण जन्मभूमि का नाम लेंगे, क्या अखिलेश यादव कांवड़ लेकर चलते दिखेंगे।
7: हिंदुओं का अपमान होता था, इनका तो इतिहास राम भक्तों के खून से सना हुआ है। इन्होंने भारत की विरासत का अपमान किया है, भारत की आस्था को सदैव अपमानित करने का कार्य किया है। याद करिए कैसे लोग, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, कैसे दंगे होते थे।
2: विपक्ष को जवाब देते मुख्यमंत्री के बयानों को अगर एक तरफ रखकर भी देखें, तो जो अयोध्या अभी आस्था, जांच और सियासत के त्रिकोण के बीच में खड़ी कर दी गई, उस अयोध्या में आने वालों को किस पर विश्वास है, विपक्ष की तरफ से लगाए जाते सनातनियों के आहत होने वाले दावों पर या फिर योगी की तरफ से आस्था को डिगने नहीं देने वाले भरोसे पर इसे अयोध्या की जुबानी ही आज आपको सुनना जरूरी है।
11: कि हमारे आस्था पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमें पता है कि संतों ने बहुत ही संघर्ष किया इस मंदिर को बनाने के लिए, और योगी जी मुख्यमंत्री से पहले एक संत है हमारी नजरों में, तो कोई संत नहीं चाहेगा कि मंदिर के कमेटी और ट्रस्ट में ऐसी कोई चीजें हों। और जहां तक हमें पूरा विश्वास है योगी जी पे, हमें पूरा सुनिश्चित है कि ट्रस्ट चंदा चोरी करने वाले ट्रस्टी उस पर पूरी कार्रवाई होगी।
12: अनंत विश्वास है, और ये विश्वास तब से है जब यहाँ पर राम मंदिर का शुरुआत नहीं हुआ था, और विपक्ष भी उस चीज पे सपोर्ट नहीं कर रहा था कि राम मंदिर बन जाए। माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने मंदिर को बनवाने में पूर्ण सहयोग किया है।
13: अगर चंदा चोरी हुई है तो उसका इंसाफ होगा, और एक एक कण कण का हिसाब करेंगे योगी आदित्य हमारे महाराज जी। आस्था अपनी जगह है, हम जो आस्था कर रहे हैं वो जब मंदिर नहीं बना था तब भी हमारी आस्था थी, तब भी हम लोग आते थे, आज मंदिर बन गया है तब भी हम लोग आते हैं।
14: योगी जी पे हमें पूरा विश्वास है। यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी मतलब यहाँ पे मंदिर तोड़े गए, सारी चीजें थी जो आस्था पे था, तो आस्था से जो जिन लोगों को विश्वास था, इतना बड़ा अपराध हुआ मतलब मंदिर तोड़ करके, तब तो लोगों की आस्था यहाँ पे जुड़ी हुई थी, अब तो उससे ज्यादा भी आस्था जुड़ रही है।
15: देश के एक एक हिंदुओं के कणकण में राम बसते हैं, तो चंदा चोरी का जो मुद्दा है, जो मामला है, वो भगवान राम की आस्था से नहीं जुड़ा। क्या कोई चोरी करके ले जाएगा, सब तो राम का है, और जो राम का है वो तो कणकण में है। तो इसलिए आज भी आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से ही नहीं, पूरे देश विदेश से श्रद्धालु आज भी राम लला के दर्शन करें। एक एक नाखून के बराबर कोई आस्था पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है।
1: 10 जून से लेकर अब तक एक महीने के करीब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग औसत हर दूसरे दिन और अब तो लगातार रोज दो काम कर रहे हैं, पहला विकास की सौगात देना और दूसरा अयोध्या पर विपक्ष को करारा जवाब देना। शुरुआत 90 के दशक में कार सेवकों पर चली गोली की याद दिलाकर किया, फिर याद कराया कैसे कब्रिस्तान की दीवारों की चिंता वाली राजनीति 2017 से पहले होती थी, फिर कांवड़ यात्रा रोके जाने से लेकर वक्फ के घोटालों पर विपक्षी चुप्पी पर घेरने लगे। एक एक करके योगी अपने तर्कश से वो हर तीर निकाल रहे हैं जिसके निशाने पर अखिलेश हैं, जिस तीर की दिशा तुष्टिकरण पर घेरती है।
16: 11 जुलाई कुशीनगर,
17: समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, बहनों और भाइयों, इन्होंने इतना माहौल खराब करके रखा हुआ था। मंदिरों के नाम पर आने वाले पैसे को हजम कर जाते थे, मंदिरों पे कब्जा करवाते थे, लोग मंदिरों पे कब्जा करवाते थे, और अब कब्जा नहीं, अब उन मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है, और पहले मंदिरों के नाम पर आने वाला पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर खर्च हो जाता था।
16: 10 जुलाई बस्ती,
17: याद करिए, इसी कांवड़ यात्रा को समाजवादी पार्टी की सरकार ने रोक लगा दी थी। ये कहते थे कांवड़ यात्रा नहीं होनी चाहिए, आप जब अयोध्या धाम में दर्शन करने के लिए जाते हैं आपकी कांवड़ यात्रा निकलती है, तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कांवड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
16: राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी से विपक्ष भले ही हमलावर हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ इस बात को सुनिश्चित करने में जुटे हैं कि न तो कार्रवाई में ढील हो, न ही विपक्ष इस मुद्दे पर आस्था को चोट पहुंचा सके।
17: अब उनको माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने हनुमानगढ़ी के पवित्र धाम की सीढ़ियों पे किया था, उस पाप के लिए माफी मांगनी चाहिए। राम भक्तों पर गोली चलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। जय श्री राम बोलने पर, परशुरामपुर के दंगों पर और इन सभी घटनाओं पर जिसमें निर्दोष हिंदू प्रताड़ित हुआ था, उन सभी घटनाओं के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए इस समाज से जिसकी आस्था आहत होती थी।
16: राम मंदिर के मुद्दे से ही बीजेपी की राजनीति परवान चढ़ी, विपक्ष ने अब उसी राम मंदिर पर बीजेपी को चित करने का हथियार बनाना चाहा, अखिलेश को लेकर सवाल है, क्या वो इस मुद्दे को चुनाव तक गर्म रख पाएंगे। वहीं योगी की चुनौती ये कि वो इस पर कैसे विपक्ष को आगे न बढ़ने दें।
7: जब सत्ता में समाजवादी पार्टी थी या कांग्रेस थी तब उनके द्वारा विकास नहीं होता था, तब विकास नहीं होता था, हिंदुओं का अपमान होता था, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने की जो शरारत कांग्रेस ने प्रारंभ से की। और समाजवादी पार्टी के बारे में तो कहना ही क्या है, इनका तो इतिहास राम भक्तों के खून से सना हुआ है।
16: अगले साल उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, वहां कौन सा मुद्दा चलेगा इसमें अभी काफी समय बचा है। लेकिन एक बात साफ है कि अयोध्या के मौजूदा मुद्दे पर विपक्ष भले सोचे कि हिंदू वोट बांट लेंगे, लेकिन अब बीजेपी ने हिंदू वोट को ही मजबूत रखने की रणनीति बना ली।
9: समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि अयोध्या में जो घटना घटित हुई आस्था आहत हुई। अरे आस्था तो उसकी आहत हुई होगी जिसके मन में आस्था सचमुच थी। तुम कब से राम भक्त हो गए? अरे राम द्रोही जैसा आचरण जिन लोगों का रहा हो, जिन्होंने राम भक्तों पर लाठियां और गोलियां चलाई हो, जिन्होंने राम श्री राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़े किए हो, ये कौन सी आस्था की बात करते हैं।
16: 7 जून को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सबसे पहले आरोप लगाया। इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने एक तरफ तेजी से जांच और दूसरी तरफ विपक्षी नैरेटिव को ध्वस्त करने की रफ्तार तय की। 13 जून को आजमगढ़, 14 जून को गोरखपुर, 20 जून को ललितपुर, 22 जून को अलीगढ़, 26 जून को देवरिया, 27 जून को नोएडा ग्रेटर नोएडा, 28 जून को हाथरस, 29 जून को पीलीभीत, फिर मुरादाबाद, 30 जून को रामपुर, 1 जुलाई को सहारनपुर, 7 जुलाई को प्रतापगढ़, 7 जुलाई को ही सुल्तानपुर, 8 जुलाई को वाराणसी, 8 और 9 जुलाई को बांदा चित्रकूट, 10 जुलाई को अयोध्या और बस्ती, 11 जुलाई को गोरखपुर में रैली करके मुख्यमंत्री योगी ने अयोध्या के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का इतिहास याद कराना ही नहीं, उसे जनता के मन में स्थापित कराना शुरू कर दिया है।
9: इस कुटिल चाल को का को देख करके अब गिरगिट भी शर्माने लग गया होगा कि चलो मुझसे भी तेज रंग बदलने वाली कोई एक नई प्रजाति आ गई है, वो समाजवादी पार्टी के रूप में या कांग्रेस के रूप में, जो कितनी तेजी के साथ रंग बदलती। कल तक एक बाबरी ढांचे के लिए आंसू बहा रहे थे, आज राम भक्तों की भावनाओं को आहत करने के लिए किस प्रकार के वक्तव्य देकर के अयोध्या धाम को बदनाम कर रहे हैं।
16: तो योगी आदित्यनाथ नोएडा से गोरखपुर तक और हाथरस से अयोध्या तक में रैलियां करके दो बातों पर जोर दे रहे हैं। पहली बात ये कि चढ़ावा चोरी के आरोपी बचेंगे नहीं, और दूसरी बात ये कि राम मंदिर की विरोधी रही समाजवादी पार्टी आस्था की बात ना करे।
7: हमारे प्रभु को काल्पनिक बोलने वाले लोग किस मुंह से आज अयोध्या में आस्था की बात कर रहे हैं, किस मुंह से कर रहे हैं। देश का राम भक्त कहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज अयोध्या में आस्था के नाम पर अयोध्या को बदनाम करने, राम की विरासत को बदनाम करने की साजिश और एक ठेका लगता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने ले लिया है।
5: वंदे वंदे।
16: बांदा में योगी आदित्यनाथ की रैली लीजिए, जहां समाजवादी राज में कब्रिस्तान की चारदीवारी वाला मुद्दा योगी आदित्यनाथ ने उठाया, तो उसके अगले दिन अयोध्या में हनुमानगढ़ी में नमाज वाला 23 साल पुराना प्रकरण याद दिला दिया। इस तरह उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ अपने अंदाज में हिंदुत्व को फ्रंट लाइन का मुद्दा बना रहे हैं।
7: क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था?
16: तो चाहे रैली ग्रेटर नोएडा की हो या फिर रामपुर की या देवरिया की, योगी आदित्यनाथ अपनी हर रैली में याद दिलाना नहीं भूलते कि समाजवादी पार्टी की सरकार में हिंदुओं का अपमान होता था, मंदिरों पर अवैध कब्जे होते थे, मंदिरों के पैसे से कब्रिस्तान की चार दीवारी बनती थी, राम भक्तों पर गोली चलवाई जाती थी, हनुमानगढ़ी में सीढ़ियों पर नमाज करवाई जाती थी और राम मंदिर बनाने का विरोध किया जाता था।
9: वे इसलिए विरोध कर रहे हैं वे नहीं कर पाए थे, इसलिए बुरा लग रहा है कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर क्यों हो गया। अब यही अंतर है, आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया, राम भक्तों पर गोलियां चलाए, अयोध्या के नाम पे पहचान का संकट खड़ा किया। ये डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया।
16: इस तरह विपक्ष की राम मंदिर पर कटघरे में सरकार को डालने की कोशिश ने क्या योगी को ही हिंदुत्व की वो पिच दे दी, जहां आक्रामक होकर बल्लेबाजी योगी करने लगे।
9: एक लंबे समय तक हमारी अयोध्या उपेक्षित रही, न सड़क, न बिजली, न पानी। आज अयोध्या आप देखते होंगे, हमारी अयोध्या तीनों लोकों से न्यारी है। अयोध्या वैभवशाली है।
16: मुख्यमंत्री सख्त कार्रवाई के लिए पहचान रखते आए हैं, इसीलिए अयोध्या के मामले में भी आरोपियों की गिरफ्तारी हो, उनके घर बुलडोजर चलाने की नोटिस लगे, आरोपियों से कैश और बाकी चीजों को बरामद कराया जाए, एक एक चीज की जांच का फ्री हैंड मुख्यमंत्री ने दे रखा है। योगी इस बात को जनता के मन में एकदम स्थापित कर देना चाहते हैं कि राम से द्रोह करने वाले न आरोपी बचेंगे, न राम से द्रोह करने वाली राजनीति उत्तर प्रदेश में चल पाएगी।
1: उत्तर प्रदेश का राजनीतिक इतिहास याद करने पर पता चलता है कि 2012 तक 30% वोट लाने पर भी सत्ता हासिल हो जाती थी, लेकिन 2017 में बीजेपी जब बहुमत पाती है तो यह आंकड़ा बदल जाता है, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक वोट का बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ एकजुट होता है, और तब उत्तर प्रदेश दलित प्लस मुस्लिम प्लस हिंदू वोट का थोड़ा हिस्सा या फिर मुस्लिम प्लस यादव प्लस हिंदू वोट का कुछ हिस्सा वाली राजनीति सत्ता नहीं दिला पाती है। क्या यही वजह है कि अब सनातन वाली सियासत की राह पर अखिलेश यादव चलने लगते हैं?
11: आस्था में कोई फर्क नहीं है जी, जैसे आस्था आस्था वही है।
18: आस्था पे कोई जो है फर्क नहीं हम लोगों के, हमें राम पे विश्वास है, उनके दरबार में कोई दिक्कत नहीं है, और हम लोगों की आस्था यथायत है, हमें राम से मतलब है, और ये सब समस्याएं जो हैं ये होती रहती हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। हमें जितना विश्वास राम जी पे है उतना ही योगी आदित्यनाथ पे है।
19: कोई फर्क आस्था पे कोई फर्क नहीं, अयोध्या पे कोई फर्क है, न राम पे फर्क है, न हिंदू सब एक हो रहा है, सनातनी और जुड़ रहे हैं, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
20: योगी आदित्यनाथ जी महाराज की धरती है, रामलला की धरती है, पूरा पूर्ण विश्वास है, और विश्वास ही नहीं अटूट विश्वास है।
21: सनातन धर्मावलंबियों की श्रद्धा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने वाली है, और हम सनातन धर्मावलंबी जो है उस अटूट श्रद्धा के साथ यहाँ पर आते हैं, उस श्रद्धा के साथ यहाँ से जाते हैं।
16: तो क्या अयोध्या के विवाद में विपक्ष की तमाम कोशिश के बावजूद योगी आदित्यनाथ के साथ हिंदू वोट एकजुट है और वो हिंदू वोट बंटने वाला नहीं है? जहां 2027 का चुनाव हार्ड हिंदुत्व वर्सेस सॉफ्ट हिंदुत्व की पिच पर आटिका, जिसकी जमीन अयोध्या के विवाद से तय हुई। इस वक्त अखिलेश यादव जब कहते हैं जो सनातन है वही समाजवाद है, तब योगी आदित्यनाथ का जवाब आता है, हनुमानगढ़ी में समाजवादियों ने नमाज कराई थी। अखिलेश यादव कहते हैं पराजय काल विपरीत बुद्धि, योगी आदित्यनाथ कहते हैं राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले आस्था की बात ना करें। अखिलेश यादव कहते हैं चढ़ावा चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं, योगी आदित्यनाथ का जवाब है बाबर को समाजवादी अपना आदर्श मानते। भगवा वेशधारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हिंदू और हिंदुत्व पर बढ़कर और चढ़कर बोलना चलना तो लंबे वक्त से राजनीति में देखा गया, लेकिन क्या इस वक्त बहुसंख्यक वोट साधने के लिए अखिलेश यादव सनातन वाली सटीक राह पर चल पड़े हैं? जो शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के चरणों में बैठकर कहते हैं जो सनातन है वही समाजवाद।
22: सनातन धर्म ही समाजवाद है,
23: जो सनातन है वही समाजवादी।
22: अध्ययन किया गया होता हमारे शास्त्र में आज भी समाजवादी ढांचा है उसका पूर्ण,
23: हम सब
22: उसको उस रूप में परिभाषित नहीं किया।
16: क्या यही अखिलेश यादव का वो दांव जिसे वो अयोध्या चढ़ावा चोरी विवाद के बाद पकड़ कर चलना चाहते हैं, ताकि जब मुख्यमंत्री उन्हें 90 के दशक में समाजवादी पार्टी के राज में अयोध्या में कार सेवकों पर चली गोली पर घेरे तो वो सनातन की धार बना सके?
9: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया, राम भक्तों पर गोलियां चलाए, अयोध्या के नाम पे पहचान का संकट खड़ा किया।
0: पूरे दुनिया के सनातनी चिंतित हैं कि जिस तरीके से व्यवहार, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिन्होंने मर्यादा
3: यार आप लोग
0: उस मर्यादा को इन्होंने तोड़ मरोड़ करके अपने स्वार्थ में न जाने क्या क्या किया है।
16: शुक्रवार को एक बार फिर योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचते हैं। चढ़ावा कांड के बीच ये दूसरा अयोध्या दौरा रहा। इस बार बीकापुर में 200 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात देने के साथ मुख्यमंत्री ने एक बार फिर अखिलेश यादव की तरफ से उठाए जाते सवालों पर इतिहास याद कराया है।
9: आज जो अयोध्या का विरोध समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, वे इसलिए विरोध कर रहे हैं, वे नहीं कर पाए थे इसलिए बुरा लग रहा है कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर क्यों हो गया, उनको यही बुरा लग रहा है। अयोध्या में रेन बसेरा निषाद राज के नाम पर हो गए, निषाद राज गुहा के नाम पर, उनको यही बुरा लगता है।
16: 19 जून को जब पहली बार योगी आदित्यनाथ चढ़ावा विवाद के बीच में अयोध्या पहुंचे, तब राम मंदिर में दर्शन करके भरोसा पूरे देश को दिलाया कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। तब से अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। लगातार छापेमारी करके चढ़ावे की रकम और चुराए गए चढ़ावे से खरीदी गई संपत्ति का पता चल रहा है। चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो चुका है, राम मंदिर ट्रस्ट से ये अलग हो चुके। इस वक्त SIT की 15 दिन वाली दूसरे राउंड की जांच जारी। इन सब के बीच सवाल आता है, क्या 19% मुस्लिम और 10% यादव यानी 29% वोट का सीधे 85% हिस्सा तक पाने वाली समाजवादी पार्टी अब बाकी 70% बहुसंख्यक वोट में पहले से पाते हिस्से को बढ़ाने के लिए सनातन की राह पर मजबूती से चलने लगी है?
9: आज भगवान राम की भक्ति की दुहाई कौन दे रहा है? 2017 के पहले जो जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, उन राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, आपके वोट बैंक की ताकत है।
16: लखनऊ में तो पार्टी दफ्तर के बाहर समाजवादी पार्टी ने पोस्टर तक लगा लिया, सनातन ही समाजवाद है। और इसी सनातन के चक्कर में मुख्यमंत्री रोज रैली में समाजवादियों के पुराने पन्ने पलटते हैं, मुख्यमंत्री याद दिलाते हैं। कांवड़ यात्रा रुकवाने वाले समाजवादी नेता अब लगता है जल्द कांवड़ उठाकर चलते दिखेंगे।
9: आपको देखते हुए आप जब अयोध्या धाम में दर्शन करने के लिए जाते हैं, आपकी कांवड़ यात्रा निकलती है, तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कांवड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो भी जाए पुष्प वर्षा करें।
16: असल में 2014 से 2022 के बीच के 4 चुनाव में 29% मुस्लिम और यादव वोट का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी पाई, पर न सत्ता मिली न बीजेपी से ज्यादा सीट। लेकिन 2024 में जब कुर्मी कोयरी अन्य ओबीसी और गैर जाटो वोट भी पहले के मुकाबले समाजवादी पार्टी का बढ़ जाता है, तो अचानक सीटें यूपी में समाजवादी पार्टी को बीजेपी से ज्यादा मिलती है। इसीलिए सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़कर बहुसंख्यक वर्ग को लुभाने की राह पर चलते अखिलेश यादव नजर आते हैं। पिछले महीने डिंपल यादव परिवार समेत काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दरबार में दर्शन पूजन करने पहुंची। इस दौरान बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। अखिलेश का परिवार गंगा घाट पर भी दिखा, जहां मां गंगा की आरती और पूजन किया। तब सनातन की राह पर सॉफ्टली बढ़ते समाजवादियों की सियासत की तुलना कालनेमी से आक्रामक होकर मुख्यमंत्री करते हैं।
9: प्रभु राम तो जग नियंता है, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं,
17: वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। भगवान राम की भक्ति तो हनुमान जी के अंदर इतनी ताकत पैदा कर देती है कि अगर लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे श्री हनुमान जी के साथ कोई कालनेमी छल छद्म से धोखा दे करके उन्हें इससे वंचित करने का कुत्सित प्रयास करता है, राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी का सहायक हो जाती है।
1: अयोध्या में कहा जाता है कि राम मंदिर दर्शन से पहले हनुमान गढ़ी में दर्शन पूजन करना चाहिए। यह परंपरा बताती है कि हनुमान गढ़ी का कितना बड़ा महत्व है। इसी हनुमान गढ़ी से जुड़ा एक किस्सा मुख्यमंत्री अब याद कराते हैं। किस्सा 2003 का, जब मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही दिन बाद अयोध्या में इफ्तार की दावत और नमाज होती है। दावा है कि वो नमाज अयोध्या की हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों के पास कराए जाने की तैयारी थी, लेकिन फिर क्या हुआ? क्या वो किस्सा आज की राजनीति में विपक्ष को बैकफुट पर ला सकता है?
16: राम भक्तों पर गोली और हनुमानगढ़ी में इफ्तार, इस वक्त अयोध्या से जुड़े इन दो इतिहास को याद कराकर मुख्यमंत्री सीधे विपक्ष को घेरते हैं। आज आपको इन दोनों के इतिहास तक लेकर चलें। सबसे पहले 30 अक्टूबर 1990 की याद दिलाते हैं, जब राम मंदिर आंदोलन के कार्यसेवकों पर गोली चली। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने इस घटना पर जो कुछ कहा था उसे सुनिए।
3: 11 लाख की भीड़ इकट्ठी कर दी अयोध्या में आके,
4: क्या सेक्युलर
3: तो है? मैंने सब कहा था, ये मंदिर मस्जिद का सवाल नहीं, देशी एकता का सवाल है। और देशी एकता के लिए हमारी सरकार की पुलिस को गोली चलानी।
16: इसी के साथ दूसरा इतिहास जिसे 10 जुलाई से अब मुखर होकर मुख्यमंत्री याद करा रहे हैं, वो हनुमानगढ़ी में इफ्तार कराए जाने और नमाज पढ़ाए जाने के दावे से जुड़ा है। क्या हनुमानगढ़ी में समाजवादी पार्टी के राज में नमाज कराई गई, और क्या हनुमानगढ़ी में नमाज कराने के लिए गणेश जी की तस्वीर को ढक तक दिया गया था?
17: जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था ये?
16: अयोध्या में हनुमानगढ़ी के दर्शन को हनुमान जी की आज्ञा या अनुमति लेना कहा जाता है। यह माना जाता है कि यह जरूरी है, क्योंकि मान्यता है कि भगवान राम ने हनुमान जी को अयोध्या का कोतवाल नियुक्त किया, और बिना उनकी आज्ञा के रामलला के दर्शन पूरे नहीं माने जाते। यही वजह है कि प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, जब भी अयोध्या पहुंचे तो पहले हनुमानगढ़ी का दर्शन करते हैं और फिर रामलला के दर्शन जन्मभूमि मंदिर में करते हैं। अब चढ़ावा विवाद बनाम झूठी आस्था के बीच होती सियासत में मुख्यमंत्री ने जब हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर समाजवादी राज में नमाज कराने का किस्सा बताया, तो आइए जानते हैं कि यह मामला कब का है और क्या है। बात साल 2003 की है, जब मायावती की सरकार गिरने के बाद 29 अगस्त 2003 को मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते। उस समय उत्तर प्रदेश, खासकर अयोध्या में राम मंदिर को लेकर माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ था। जानकार बताते हैं कि तत्कालीन मुलायम सिंह की सरकार के सामने कानून व्यवस्था को संभालने के साथ अपने कोर वोटर को भी भरोसा दिलाने की चुनौती थी। यहीं से शुरुआत हुई एक सॉफ्ट काउंटर, जिसके मुख्य केंद्र बने हनुमानगढ़ी के तत्कालीन महंत ज्ञानदास। उस समय वो हनुमानगढ़ी के सबसे ताकतवर संतों में से एक थे और विश्व हिंदू परिषद की हार्ड हिंदुत्व की राजनीति के विरोधी भी। महंत ज्ञानदास को मुलायम सिंह यादव का करीबी कहा जाता था, और तब कहा जाता है कि साल 2003 में महंत ज्ञानदास की उदारवादी छवि और उनके रसूख का इस्तेमाल करके अयोध्या का माहौल शांत करने और वीएचपी के आंदोलन को कमजोर करने की राजनीतिक योजना बनाई गई। ये तारीख थी 20 नवंबर 2003 और तब रमजान का महीना चल रहा था। इसी दौरान महंत ज्ञानदास ने सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे के नाम पर एक पहल की। उन्होंने हनुमानगढ़ी के 52 बीघे के विशाल परिसर के भीतर अपने आधिकारिक निवास पर मुस्लिम समुदाय के लिए एक रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। अयोध्या के बड़े मुस्लिम चेहरे इसमें शामिल हुए। जिसमें बाबरी मस्जिद के तत्कालीन पक्षकार हाशिम अंसारी और मुस्लिम नेता सादिक अली उर्फ बाबू टेलर भी थे। इसके अलावा करीब 500 मुसलमान इस रोजा इफ्तार के लिए पहुंचे। इस बारे में हमने यूपी के पूर्व डीजीपी और बीजेपी से राज्यसभा के सांसद ब्रिजलाल से बात की। उन्होंने कुछ दिनों पहले ये नमाज वाला किस्सा सबको बताना शुरू किया है।
4: बीएसपी गवर्नमेंट गिर गई थी और 29 अगस्त 2003 को माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बन चुके थे। 26 अक्टूबर से 24 नवंबर तक रमजान का महीना था। उस समय एसएसपी फैजाबाद थे राजू सबरवाल और यहाँ के वीएन राय साहब थे आईजी जोन लखनऊ। और उस समय ये हुआ, दबाव डाला गया कि हनुमानगढ़ी के ठीक सामने जहाँ सीढ़ियाँ शुरू होती हैं वहाँ पर रोजा इफ्तार होगा, नमाज पढ़ी जाएगी। मैं आईजी लॉ एंड ऑर्डर था प्रदेश का, मैं लगातार अपने एसएसपी राजू सबरवाल के संपर्क में था। उसके बाद वो मना किया गया कि नहीं हो सकता, क्योंकि वो सीधे माननीय मुलायम सिंह जी के टच में थे और एक पराकाष्ठा थी, एक संदेश देना था कि हनुमानगढ़ी के सामने नमाज पढ़ाई गई और वहाँ पर रोजा इफ्तार हुआ।
16: अभी बीजेपी से राज्यसभा के सांसद ब्रिजलाल के मुताबिक 2003 में तब लखनऊ जोन के तत्कालीन आईजी सरकार को खुश करने के लिए हनुमानगढ़ी मंदिर के नियमों को ताक पर रखने के लिए तैयार थे। ब्रिजलाल के मुताबिक तत्कालीन आईजी देश भर में बड़ा संदेश देने के नाम पर हनुमानगढ़ी की छत या मंदिर के ठीक सामने मुख्य सड़क पर सार्वजनिक रूप से नमाज कराना चाहते थे, लेकिन फैजाबाद के तत्कालीन एसएसपी ने इस कथित दबाव के आगे झुकने से मना कर दिया और उनका तर्क था कि हनुमानगढ़ी के मुख्य परिसर या सार्वजनिक सड़क पर ऐसी नई परंपरा की शुरुआत से हिंदू संगठन भड़केंगे, माहौल बिगड़ेगा। अब इस वीडियो पर गौर करिएगा, जब सड़क पर अनुमति नहीं मिली तो ये कार्यक्रम हनुमानगढ़ी परिसर में ही महंत ज्ञानदास के घर के अंदर शिफ्ट हुआ। वहीं देखिए ये 2003 में महंत ज्ञानदास की तरफ से उनके घर के अहाते में नमाज कराई जाती है। और तब गौर से 2003 के इस वीडियो में देखिए, जिसमें नमाज के दौरान दीवारों पर बने देवी देवताओं के चित्र और धार्मिक प्रतीक ढके गए, जो इस तस्वीर में साफ नजर आते हैं।
6: हनुमानगढ़ी नहीं, हनुमानगढ़ी के पीछे उनका जो मकान है, वो अपने मकान में बुला करके मुसलमानों के रोजा इफ्तार के समय था, क्या था, उसी समय उन्होंने बुला करके भोजन कराए, नमाज पढ़वाए। तो इस पर हम लोगों ने विरोध किया। पहले तो जानकारी नहीं भाई, अगला साल, एक साल उसके बाद में दूसरे साल जब कराने तैयार किए तो पहले हम लोगों ने खड़ा हो गए, पेपर में निकाले कि हम इस साल भी पढ़वाएंगे, तब हम लोग कोर्ट में गए।
16: हनुमानगढ़ी की उज्जैनिया पट्टी के महंत धर्मदास की तरफ से बाद में ये मामला कोर्ट पहुंचता है और मंदिर परिसर में इफ्तार पर रोक लग गई। लेकिन अब सनातन पर होती सियासत में अयोध्या को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाने वाली समाजवादी पार्टी को मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ी की घटना याद दिलाकर घेर दिया है।
8: ये लोग राम के विरोधी है और हनुमान के विरोधी है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी धरती पर आए थे, उनके सामने जो है हनुमान जी को नचाया जा रहा है। वो हनुमान जी को राम जी को जानने वाले कौन लोग हैं? आस्था के नाम पर चंदा सोना, चंदा की चोरी करना इनका काम है। हनुमान जी का नाम उन्होंने कब लिया, कब की बात बता रहे हैं आप? हनुमान जी के विषय में उन्होंने कब रामायण हनुमान चालीसा बातें कही?
10: अब उनको माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने
17: हनुमानगढ़ी के पवित्र धाम की सीढ़ियों पे किया था, उस पाप के लिए माफी मांगनी चाहिए। राम भक्तों पर गोली चलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। जय श्री राम बोलने पर, परशुरामपुर के दंगों पर और इन सभी घटनाओं पर जिसमें निर्दोष हिंदू प्रताड़ित हुआ था, उन सभी घटनाओं के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए इस समाज से जिसकी आस्था आहत होती थी।
1: 2017 का उपचुनाव गोरखपुर या फूलपुर का हो या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव, चुनौती मिलने पर कमबैक बहुत तेजी से करने की महारत योगी आदित्यनाथ के पास बताई जाती है। ऐसे में जब 2027 के चुनाव से केवल 8 महीने पहले अयोध्या का मुद्दा विपक्ष पाकर सोचता है कि वो बाजी पलट सकता है, तो मुख्यमंत्री ने उसी बाजी पर दो दो हाथ करके समाजवादी पार्टी को हिंदुत्व के दांव में फंसा दिया।
24: मैं फिर कह देना चाहता हूँ, होई वही जो राम रची राखा,
0: ये है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज, जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो है खुद किसी के सहारे के लाचार। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम।
16: बात साल 2024 की है, जब लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश में नंबर वन पार्टी बनकर सबको चौंका दिया, लेकिन बीजेपी को तो बड़ा झटका फैजाबाद में लगा।
2: अयोध्या से कौन हारा? पार्टी का नाम लो। अयोध्या से कौन हारा? बीजेपी हार गई। तो भाई दिल क्यों नहीं चोरी किया आपने? इसका मतलब आप गलत थे ना कहीं।
16: अयोध्या वाली फैजाबाद सीट राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद समाजवादी पार्टी के पास चली गई। इसके बाद अखिलेश यादव ने इस नतीजे को बीजेपी की वैचारिक हार से जोड़ना शुरू कर दिया, निशाना साधने लगे, सीधे मुख्यमंत्री पर तंज कसने लगे।
0: हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, हजूरे आला आज तक खामोश बैठे हैं इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने।
16: अवधेश प्रसाद सीधे मुख्यमंत्री का नाम लेते थे, अखिलेश यादव तंज कसते थे। तो इस तरह साल 2024 में मुख्यमंत्री योगी के सामने अपना पीडीए का फॉर्मूला हिट करा लेने से अखिलेश यादव के हौसले बुलंद थे।
0: और लाखों दिए जलाए पर खुद को रोशनी में न ला पाए। लाखों दिए जलाए पर खुद को रोशनी में न ला पाए, इसे कहते हैं सच में चिराग तले अंधेरा होना।
16: हिंदू वोट बंटने से लोगों को लगा कि बीजेपी वापसी कैसे करेगी, लेकिन योगी ने बीजेपी के लिए सब मुमकिन कर दिया। कठिन सीटों पर बीजेपी का कमल खिलाया, जिसमें पिछले साल मिल्कीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव है जहां से अवधेश प्रसाद ही विधायक हुआ करते थे। दो साल पहले कुंदरकी और कटहरी विधानसभा सीट भी इसी जीत में शामिल है। वहीं इससे भी पीछे जाएं तो साल 2022 में रामपुर लोकसभा सीट का उपचुनाव रहा हो, रामपुर की विधानसभा सीट हो, आजमगढ़ की विधानसभा सीट हो, ये सब जीतकर योगी आदित्यनाथ ने बताया है कि कठिन सीटों को कैसे

0: मिल्कीपुर जीत करके कोई संदेश देना चाहते हैं। अयोध्या की हार मिल्कीपुर की जीत बराबर नहीं कर सकती है। अयोध्या की हार हमेशा हमेशा के लिए अयोध्या की हार रहेगी, वो बदला नहीं हो सकता मिल्कीपुर की जीत।
1: कुशल रणनीति, मुफीद प्रत्याशी, काम और छवि से मुश्किल सीटों का मिथक टूटा। योगी ने खुद इन सीटों की कमान संभाली, लेकिन अब सवाल 2027 के चुनाव से जुड़ा है, जहां अयोध्या पर घेर कर विपक्ष हिंदू वोट तोड़ना चाहता है, लेकिन योगी जानते हैं ऐसे में जवाब कैसे देना है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित कर दिया है तो धर्म से ज्यादा उन्हें धन से प्यार है, धर्म से ज्यादा उन्हें धन से प्यार है, और सनातन परंपरा को इतनी बड़ी ठेस पहुंचाना कोई कल्पना नहीं कर सकता था।
2: समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, बहनों और भाइयों, इन्होंने इतना माहौल खराब करके रखा हुआ था। दुर्गा पूजा के समय दुर्गा पूजा नहीं रखने देते थे, जन्माष्टमी के समय बैन कर देते थे आयोजन पे, मंदिरों पे कब्जा करवाते थे, लोग मंदिरों पे कब्जा करवाते थे, और अब कब्जा नहीं, अब उन मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है।
1: योगी के लिए हिंदू तो उनकी असल पहचान है, जिनके बुलडोजर मॉडल की चर्चा होती है। सख्त कानून व्यवस्था योगी के लिए वोट साधने का सबसे बड़ा हथियार है। भ्रष्टाचार पर भी योगी का दामन साफ सुथरा है, इसके दम पर ही वो 2022 में बीजेपी के लिए बहुत उपयोगी साबित हो चुके हैं।
3: आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी।
1: 2017 और 2022 के बाद बीजेपी यूपी में लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर 2029 के लिए माहौल को मजबूत करना चाहती, लेकिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला चुनौती बना है। इस हालात में योगी का रोल और अहमियत बीजेपी के लिए पिछले सभी चुनावों से ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि फैजाबाद लोकसभा सीट हारने के कुछ महीनों बाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट जीतने का हुनर योगी के पास है। इसीलिए अगले साल चुनाव को लेकर योगी की अहमियत बीजेपी के लिए पहले से भी ज्यादा है, क्योंकि वापसी का करिश्मा योगी आदित्यनाथ को आता है।
4: अवध जो 1857 की क्रांति का केंद्र रह चुका है, अवध जो हिंदुत्व की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है, अवध जो गांधी परिवार का भी गढ़ रहा, वो अवध हिंदू बहुसंख्यक वोट की सियासत की धुरी है, जहां हिंदू वोट ही ज्यादातर हार जीत का फैसला करते हैं। उस अवध में अयोध्या है। इसी अवध में राम मंदिर बनने के बाद भी बीजेपी 2 साल पहले जीत नहीं पाई, लेकिन अब अयोध्या किसके साथ है?
2: अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कावड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो भी जाएं पुष्प वर्षा करें। अब उनको माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने हनुमानगढ़ी के पवित्र धाम की सीढ़ियों पे किया था, उस पाप के लिए माफी मांगनी चाहिए। राम भक्तों पर गोली चलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार समाजवादी पार्टी को इसीलिए घेरने में जुटे हैं, क्योंकि विपक्ष को अब लगने लगा कि हिंदू वोट बटेगा तो फायदा उनको मिलेगा, क्योंकि हिंदू वोट का ज्यादातर हिस्सा अब तक बीजेपी ही पाती आई।
0: मर्यादा का पहला नाम प्रभु श्री राम और दूसरा नाम संविधान। आस्था मर्यादा और श्रद्धा से खिलवाड़ की है, और अब संविधान और लोकतंत्र से भी सरकार खिलवाड़ करने की तैयारी कर रही है।
1: ये सब कुछ इसलिए क्योंकि अवध पर सबकी नजर है। जहां सीट का सियासी गणित देखेंगे तो सब साफ हो जाता है। जिस अवध में 118 विधानसभा सीट है, वहां बीजेपी की बड़ी बढ़त रही है, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी अवध के इस इलाके में आधा हो गई, सहयोगी जीरो हो गए। समाजवादी पार्टी विधानसभा सीटवार देखें तो 74% बढ़ गए। सहयोगी कांग्रेस हीरो हो गई, जीरो से सीधे 22 सीटों पर बढ़त दिखी। 2022 में एनडीए अवध के विधानसभा क्षेत्रों में 87 सीट जीतती है। 2024 में लेकिन सिर्फ 42 सीट पर एनडीए बीजेपी आगे रही। समाजवादी पार्टी का गठबंधन 2022 में 31 विधानसभा सीट जीत पाया था, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान 76

0: विधानसभा सीटों पर आगे दिखने लगा। क्या यही वजह है कि जब विपक्ष हिंदू वोट की चिंता में डूबा दिखने लगा तो मुख्यमंत्री को कहना पड़ा, भरोसा रखिए कोई दोषी बचेगा नहीं।
1: वे विभाजन की अपनी सारी की सारी मेहनत का कहीं ना कहीं ठीकड़ा अब फोड़ करके भारत की आस्था पर प्रहार करने का कार्य कर रहे हैं।
2: इस बार भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलने जा रहा है, न भारतीय जनता पार्टी को दान मिलने जा रहा है, न चढ़ावा मिलने जा रहा है और न वोट मिलने जा रहा है।
0: ये राम मंदिर आंदोलन ही रहा जिसने बीजेपी को पहली बार बहुमत दिलाकर सत्ता तक लखनऊ में पहुंचाया था। 1991 यानी रथ यात्रा और कार सेवा की शुरुआत के साथ 221 सीट बीजेपी उत्तर प्रदेश में जीतती है जब राम लहर थी। फिर इसके अगले साल 1992 में बाबरी मस्जिद गिर जाती, लेकिन उसके बाद 1993 में बीजेपी 177 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी सरकार नहीं बना पाती। 1996 में 174 सीट बीजेपी यूपी में जीतती। 2002 आने तक जातिगत समीकरण इतने बदल जाते हैं कि यूपी में बीजेपी की सीट घटकर 88 हो जाती। 2007 में 51, 2012 में 47, लेकिन फिर 2017 से हिंदुत्व की नई बयार चलती, 312 सीट बीजेपी जीतती। 2022 में राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो चुका था लेकिन बहुमत के बावजूद सीटें घटी थी, 255 सीट बीजेपी जीती। अब 2027 में क्या राम मंदिर का चढ़ावा विवाद संकट ना पैदा करे, इसलिए मुख्यमंत्री जनता को भरोसा भी दे रहे हैं और विपक्ष को जवाब भी।
1: हर एक पौराणिक स्थल को और विरासत से जुड़े हुए स्थलों के पुनरुद्धार का कार्य हो रहा है, इसको बाधा बन करके इनको रोकने की उनकी चिढ़ थी। जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अब अपने अनुसार फिर वे वही झूठ का सहारा लेकर के कुछ ना कुछ तो बोलेंगे।
3: जो दूसरों पे झूठे इल्जाम लगा, इस बार उनकी सच्ची चोरी भगवान ने खोल, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती।
4: अयोध्या ने 500 वर्षों का इंतजार किया तब राम मंदिर मिला। सदियों का संघर्ष जिस आस्था को डिगा नहीं पाया उसे चढ़ावे का विवाद भी हिला नहीं सकता। ये सियासी बात नहीं, अयोध्या का सत्य है। बस इसी सत्य के इर्द गिर्द अभी सियासत है।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: क्या इथेनॉल से नुकसान हो रहा है सर गाड़ियों?
8: मारुति सुजुकी के पास एक भी कंप्लेंट नहीं है, टोयोटा के पास एक भी कंप्लेंट नहीं है। मुझे बदनाम करने के लिए और इथेनॉल को बदनाम करने के लिए प्रयास है।
7: नए नए एक्सप्रेस वे जो बन रहे हैं उनमें गड्ढे,
8: ये हमारे हाईवे में जितने गड्ढे हैं उसके ऊपर आप कार्यक्रम करिए और दिखा दीजिए।
9: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
10: Tune in is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
11: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: वी आर ओवर जिमी।
4: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
5: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
6: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
9: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
10: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
11: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: वी आर ओवर जिमी।
2: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

राम मंदिर के प्रांगण में मौजूद जिस कमरे में चढ़ावे की गिनती होती थी, वहां दो पालियों में काउंटिंग का काम होता था। दो शिफ्ट में अलग अलग स्टाफ थे, सभी की जिम्मेदारियां बटी हुई थी, सभी उसी हिसाब से अपनी भूमिका निभाते थे। उसी भूमिका में चढ़ावा चोरों का भी हिसाब किताब तय था। चढ़ावे की गिनती के लिए पहली शिफ्ट सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक होती थी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक थी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि चोरी की वारदात सिर्फ दूसरी शिफ्ट में ही हुई, यानी चढ़ावा चोरी की वारदात दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक की शिफ्ट में ही हुई। इससे एक बात यह भी साफ होता है कि चढ़ावा चोरी के सभी आरोपी उसी 2 से 9 वाली शिफ्ट में काम करते थे। दरअसल शाम की शिफ्ट में चोरी करना आरोपियों के लिए ज्यादा आसान था। काउंटिंग की दूसरी शिफ्ट में चढ़ावा चोरी का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने 4 आरोपियों अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे से कड़ी पूछताछ की। हाल ही में पुलिस ने रिमांड लेकर इनसे सवाल जवाब किए। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 40 दिन में 70 बार चोरी की गई। सबसे ज्यादा 50 से अधिक बार चोरी अविनाश शुक्ला ने ही की थी। वो एक दिन में 2 बार चढ़ावा चोरी करता था। खुलासा यह भी हुआ कि अनुकल्प मिश्रा और अविनाश शुक्ला हर बार चोरी में एक दूसरे की मदद करते थे। जिन 40 दिनों का रिकॉर्ड पुलिस ने खंगाला है, उसमें से 5 दिन ऐसे भी रहे जब एक ही दिन में चढ़ावा चोरों ने 3-3 बार चोरी की। पुलिस की जांच में यह सच सामने आने के बाद ही राम मंदिर ट्रस्ट ने चढ़ावे की गिनती अब सिर्फ एक ही शिफ्ट में करने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत अब सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चढ़ावे की गिनती शुरू कर दी गई है। इस फैसले के बाद काउंटिंग में लगे कुछ स्टाफ ने काम छोड़ दिया है। तमाम खुलासों के बीच अयोध्या पुलिस रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव से फिर पूछताछ की तैयारी में है। पुलिस ने दोनों की 7 दिनों की कस्टडी मांगी है। पुलिस की याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई की उम्मीद है। संतोष कुमार शर्मा, अयोध्या आज तक।

0: जितनी कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही है, गाड़ियां खराब हो रही हैं, रबर वो गल जाता है, क्या ये सही है?
1: ये पॉलिटिकल मुझे बदनाम करने के लिए और इथेनॉल को बदनाम करने के लिए एक प्रयास है।
0: नए नए एक्सप्रेसवेज जो बन रहे हैं उनमें गड्ढे, उनको नुकसान।
1: मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि हमारे हाईवे में जितने गड्ढे हैं उसके ऊपर आप कार्यक्रम करिए और दिखा दीजिए।
0: ने चाहे ने एक कॉन्ट्रैक्टर का टर्मिनेट किया है,
1: एक में हजारों जो मिलता है उसके ऊपर एक्शन, किसी को छोड़कर।
0: देश के दो सबसे महत्वपूर्ण शहर में शामिल, देश की राजधानी और साथ में देश की आर्थिक राजधानी, दिल्ली और मुंबई की हम बात कर रहे हैं। और ये दो शहर ऐसे हैं जिसमें अगर हम जो पारंपरिक यातायात का सबसे डिपेंडेबल साधन यानी कि रेलवे, उससे अगर हम एक सामान्य ट्रेन से आए तो 18 से 20 घंटे का समय लगता है, और राजधानी अगर हो तो लगभग 16 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन अब पूरे उस परिवहन की परिभाषा को बदलता हुआ एक ऐसा एक्सप्रेसवे दिल्ली और मुंबई के बीच, जिसकी चर्चा बहुत होती थी और नितिन गडकरी जी से हम लोग ये सवाल भी पूछते थे कि क्या वाकई संभव है कि दिल्ली और मुंबई 12 घंटे में, और अब जब हम उसके उस सिरे पर खड़े हैं जहां से दिल्ली में, चाहे ईस्ट दिल्ली हम लें या फिर दक्षिण दिल्ली लें, सबसे कुछ रास्ते हैं जो चढ़ जाते हैं इस पर आकर, ये संभव हो रहा है अब कुछ महीनों में?
1: देखिए, अभी तो हम दिल्ली मुंबई हाईवे पर नहीं लगे हैं, पर आप ये जो रोड के ऊपर खड़े उसके नीचे वाला एरिया जो है, और एक कालिंदी कुंज वगैरह, ये पहले इस एरिया में मैं पब्लिक मीटिंग के लिए आया था और तब मैंने देखा वहां से चलना मुश्किल था,
0: काफी इंक्रोचमेंट,
1: वाकई इंक्रोचमेंट थी, ये थी गंदगी थी, नाले थे। अब उस एरिया के ऊपर से ये एलिवेटेड रोड है, ये स्टेट ऑफ आर्ट डिजाइन है, ये जो ब्रिज बना हुआ है
0: जी।
1: ऐसे बहुत अच्छा डिजाइन है। अब यहीं से दिल्ली से निकलकर डायरेक्ट इस रोड से चढ़कर, ये भी रोड तो डायरेक्ट हमारा ये जो जेवर एयरपोर्ट पे भी जाएगा,
0: जेवर एयरपोर्ट भी जाएगा
1: तुरंत, ये जेवर एयरपोर्ट का रोड है, और बीच में से पलट कर फिर हम लोग दिल्ली मुंबई हाईवे को कनेक्ट हो जाएंगे।
0: अच्छा, तो अभी अभी जिस एरिया में हम दिल्ली के हैं, ये रोड अभी अभी खुला नहीं है कुछ दिन के लिए?
1: ये अभी प्रधानमंत्री जी का डेट मांगी है
0: और
1: तुरंत मिलने के बाद ये पूरा हुआ है और करीब 10,000 करोड़ का रोड हमने बनाया है, और बहुत सुंदर है। दिल्ली में हम 1,60,000 करोड़ के काम कर रहे हैं। अभी तो हमने वसंत विहार की टनल भी मंजूर की है 8-9 हजार करोड़ की, और हम दिल्ली को बहुत कठिन काम है ट्रैफिक जाम से मुक्त करना, पर दिल्ली से ट्रैफिक जाम और पोल्यूशन से मुक्त करना ये हमारी कोशिश है और हम लोग इसके लिए कोशिश कर रहे हैं।
0: ये उसका एक बड़ा प्रयास, क्योंकि नीचे हम वाकई
1: अब देखें ये पूरा गंदगी का नाला है, ये पुराना एरिया है, वो शाहीन बाग वगैरह जो एरिया था वो नीचे में था
0: जी।
1: और देखो ये किस प्रकार से कितने बड़े समस्या ये काम करते समय, पर हमारे प्लास्टिक पड़ा हुआ है केड़ कचरा से, अब ये पूरा एरिया इंक्रोचमेंट है, झोपड़पट्टी है। हमने यहाँ से ऊपर में आकर देखो ये क्रेन कैसे डाली है, कैसे बनाया, बेस बनाया और नाले में घुसकर ये काम किया हुआ है, यानी आप नीचे जाके देखिए आप कि किस कितना कठिनाई में ये काम किया हुआ है, और ये नाले में हमने ऐसे ब्रिज तैयार किए।
0: तो हम अब एक्सप्रेसवे की तरफ चलते हैं।
1: चले
0: जी, तो इस मैप के हिसाब से यहाँ पर सर रेड वाला है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे।
1: अभी अभी हम लोग ये
2: सर हम लोग यहाँ से एंटर किए, ये दिल्ली का रिंग रोड है जो आपका डीएनडी है, वो यहाँ से ये हाईवे आया फरीदाबाद को बाईपास करते हुए, वो ये सोना पे ज्वाइन कर लेगा, ये गुड़गावा है, गुड़गावा सोना रोड है, ये एक्सप्रेस वे यहाँ शुरू होता है, यहाँ मिल जाएंगे सोना भी हम एक्सप्रेस वे,
1: और
2: तो ये जयपुर
1: इधर से
2: जेवर
0: एयरपोर्ट का
1: ये बदलपुर,
0: मतलब सारी डिस्टेंसेस कम हो जाएंगे,
1: एकदम
2: सिग्नल फ्री है,
1: और ये जो लोग अंदर घुसते थे दिल्ली के ये सब लोग अभी इधर आएंगे नहीं, आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी, दिल्ली का ट्रैफिक काफी कम हो जाएगा, 30-40%
0: सर आप बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं दिल्ली का ट्रैफिक कम करने का,
1: पर आप बता दिल्ली पेरिफेरल रोड बना,
0: जितने
1: ट्रक जाते थे अभी बाहर चले गए, कम तो हुआ, अगर ये नहीं होते तो ये बात अलग है, कम होने के बाद और नया बढ़ा,
3: इसके कारण इफेक्ट जितना आता है लोगों को नहीं आ रहा है।
0: एक तो वो कम हुआ, दूसरा मुझे लगता है कि जो दिल्ली के आसपास जो शहर है उनसे दूरी कम हुई, जयपुर हो गया, देहरादून हो गया।
3: दिल्ली देहरादून दो घंटे, जयपुर सवा दो घंटे में।
0: हाँ।
3: ये तो बदल एकदम हो गया। अब एग्जिस्टिंग दिल्ली जयपुर रोड का भी ट्रैफिक ज्यादा कम नहीं हुआ, इसका मतलब ट्रैफिक बढ़ा भी बहुत।
0: ट्रैफिक बढ़ा भी है, पर सर 1,00,000 करोड़ इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की,
3: दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे की कीमत 1,00,000 करोड़ की, अब ज्यादा हो जाएगी, 1,10,000 करोड़ से ज्यादा।
0: उस हिसाब का रिटर्न्स क्या, अगर एक आम आदमी सोचे, देखिए सरकार की बात एक होती है, एक होता है आम इंसान सोच रहा है कि
3: देखिए ये रिटर्न के हिसाब से नहीं गिनना चाहिए।
0: हाँ।
3: जैसे उदाहरण के लिए अभी एक रिपोर्ट आया IIM बेंगलोर, IIT कानपुर और IIT चेन्नई का, ये एक समय हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट GDP के हिसाब से 16% आती थी।
0: अच्छा।
3: और चाइना की 8%।
0: हाँ।
3: और अमेरिका और यूरोपियन कंट्री की ये 12% की, और अभी ये रिपोर्ट ऐसा आया है कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 6% कम हुई है, तो ये एकदम 10% पे आई 6 महीने पहले।
0: हाँ।
3: अभी तो मुझे लगता है वो 9 पे आई होगी, सिंगल डिजिट पे। तो हम इंटरनेशनल मार्केट में हमारे आयात निर्यात में हम लोग अगर 6% कॉस्ट कम हो जाएगी तो उतना कॉम्पिटिटिव होंगे, तो मुझे लगता है एक प्रकार से हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, नई इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस और टूरिज्म बढ़ेगा। सिंपल उदाहरण बताता हूँ, यहाँ से बद्रीनाथ केदारनाथ का दिल्ली से हमने भी रोड बना दी, तो 3 गुना ट्रैफिक पर्यटकों का बढ़ा, कितना टन का बढ़ा। अब वो सरकार को कंट्रोल करना पड़ा, ये ज्यादा लोग बताइए। अच्छा, टूरिज्म जब आता है तो 49% एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए खर्चा होता, इससे रोजगार निर्माण होता है।
0: तो सर अगर मैं एक ट्रक लेकर मान लीजिए मैं जा रही हूँ दिल्ली से मुंबई, तो डीजल के हिसाब से, वक्त के हिसाब से, पैसों के हिसाब से मेरी कितनी परसेंटेज मेरी बचत होगी?
3: देखो तो पहली बात तो एक ट्रक दिल्ली से मुंबई जाने के लिए अभी 48 घंटे लग
0: ट्रक को,
3: अब वो ट्रक जाएगा 18 से 20 घंटे, तो उसके करीब 28 घंटे बच गए, तो वो एक महीने में अगर 4 ट्रिप करता होगा तो 7 ट्रिप करेगा, तो एक ही ट्रक की 7 ट्रिप होगी तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। दूसरा, जो चलते समय उतनी मशीन कम चलेगी तो फ्यूल भी बचेगी, और फ्यूल बचेगी, कॉस्ट बचेगी, टाइम बचेगा, रिटर्न ज्यादा मिलेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर, और उसके कारण ही लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी।
0: सर फ्यूल की बात आपने की है तो मैं उस फ्यूल की बात करना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ आपसे, जिसके साथ मतलब आपने जब इथेनॉल के बारे में बात करना शुरू किया था, मैं भी समझ सकती हूँ कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को ये चीजें देखनी है, लेकिन आप बहुत पैशनेटली उसके बारे में बताते भी थे। आज जो जितनी कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही है कि गाड़ियां खराब हो रही हैं, कोई कह रहा है उसका रबर का इस्तेमाल जहां होता है वो गल जाता है, क्या ये सही है या फिर केवल एक डर है, क्या है? क्योंकि कुछ
3: पहली तो बात ऐसी है कि मैं केवल इथेनॉल की बात नहीं करता
0: जी, ऑल्टरनेटिव फ्यूल
3: और बायोफ्यूल की बात करता, इलेक्ट्रिक भी मैंने शुरू की
0: जी,
3: और हाइड्रोजन की भी बात करता हूँ, मिथेनॉल, CNG, मैं ये सब अल्टरनेटिव बायोफ्यूल की इसलिए बात करता हूँ कि हमारे देश में 22,00,000 करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है, जो हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट का 87% है। आत्मनिर्भर भारत बने, हमें इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े, और इसका फायदा युवाओं के लिए रोजगार निर्माण हो, और इसका फायदा किसान, अन्नदाता, ऊर्जादाता, ईंधनदाता, हवाई ईंधनदाता, बिटुमिन दाता, हाइड्रोजन दाता बने, ताकि गांव गरीब मजदूर किसान को फायदा मिले, इसलिए मैं बात 2004 से कर रहा हूँ। रही बात इसमें फ्यूल कैसा यूज करना, किसको ऐड करना, ये सब पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अधिकार में आता है। मेरी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में ये जो ऑटोमोबाइल इंजिन है इसके स्टैंडर्ड फ्यूल के हिसाब से तय करना और उसके बारे में रेगुलेशन करके नियम करना, ये मेरे अधिकार में आता है। तो फ्यूल ऐड करना नहीं करना ये होता है, इसका टेंडर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री निकालती है, रेट कैबिनेट में तय होता है। और ये भी आरोप किया गया कि मैं इसके, तो मैं इथेनॉल शुरू होने के पहले ही मैंने शुगर फैक्ट्री शुरू की थी, अब तो मैं देखता नहीं, मेरे लड़के देखते हैं, और टोटल 1500 करोड़ लीटर जो इथेनॉल खरीदी किया जाता है और 550 इंडस्ट्री है। कोई चावल से बनाता, कोई मक्के से बनाता, कोई शुगर केन जूस से बनाता, कोई मोलास। उसमें हमारा शेयर 0.07% यानी 1500 लीटर में 1,70,000 तो अल्कोहल बनाता हूँ, फिर बॉटलिंग प्लांट, तो हम लोग नहीं के बराबर। तो इसका बेनिफिट कोई हमको मिलने का कोई विषय नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम अल्कोहल अपना यूज कर रहे हैं।
4: पर क्या इथेनॉल से नुकसान हो रहा है सर गाड़ियों?
3: पहली बात मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ,
4: हाँ।
3: क्या आपके नजरों में, आप भी पेट्रोल गाड़ी यूज करती है, अब 20% आपके गाड़ी में भी इथेनॉल है, आपको कोई तकलीफ हुई?
4: अभी तक तो नहीं।
3: आपके पेट्रोल की गाड़ी जिसकी इथेनॉल के कारण बिगड़ी हुई है, ऐसे दो लोगों के नाम बता सकती हैं मुझे?
4: अपना पर्सनल जान पहचान के?
3: हाँ, कोई भी बताओ, जो भी देश का बताओ, कुछ भी बताओ, है कोई?
4: नहीं, यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं।
3: मैं आपको बताता हूँ, ये पेट्रोल की गाड़ियां, इसमें जो गाड़ियां जा रही है, ये जो फ्लेक्स इंजन है, इसमें 40% शेयर मारुति सुजुकी का है। उनके पास एक भी कंप्लेंट नहीं आया, टोयोटो के पास एक भी कंप्लेंट नहीं आया, अभी कोई टाटा महिंद्रा किसी के पास कोई कंप्लेंट नहीं आया। दूसरी बात, इसका इंश्योरेंस कवर है, गारंटी कंपनी दे रही है, कोई गारंटी में फर्क नहीं पड़ा। हाँ, एक बात जरूर है कि गाड़ी का मेंटेनेंस होते रहता है, 2-4 तास कोई पार्ट्स लगता है, कोई निकलता है। अभी एक पटना में घटना हुई, ये टोयोटो कंपनी पर आरोप लगाया, वो इनोवा गाड़ी थी, वो खराब हुई वगैरह, तो उनने कहा गाड़ी दो हमको, हम चेक करना है। बोले नहीं देता, तो उन्होंने कहा नहीं देंगे तो हम पब्लिक डिक्लेयर करेंगे। फिर उसने गाड़ी दी, चेक किया तो उसमें पानी एडल्ट्रेशन किया हुआ मिला।
4: सर कोई खुद से थोड़ी मिलाएगा, मतलब
3: आप ही बता। कि फिर बाद में उसका टेस्टिंग हुआ,
4: हाँ।
3: अब FIR दर्ज की उसके खिलाफ। अभी ये क्या है कि ये पॉलिटिकल एक मुझे बदनाम करने के लिए और इथेनॉल को बदनाम करने के लिए एक प्रयास है, और मैं तो आह्वान करता हूँ। मैंने कल ही कहा कि जिसमें की गाड़ी पेट्रोल की इथेनॉल डाली खराब हुई है, वो एक तकरार तुरंत डीलर के पास करे, और एक तकरार हमारी मिनिस्ट्री ने नियम तैयार की है इसके बारे में, हमें तकरार करें, हम इंक्वायरी करेंगे, आपको राहत देंगे।
4: आपको लग रहा है सेफ है इथेनॉल? हाँ।
3: देखिए, अमेरिका में इथेनॉल है,
4: हाँ।
3: ये थाईलैंड में है, ये जापान में है, ये जर्मनी में है, ये ब्राजील में है, ये हिंदुस्तान में है,
4: हाँ।
3: स्वीडन में है, ये 11 देशों में इथेनॉल यूज होता है। अब जिस देश में अपना खुद का पेट्रोल डीजल सस्ता अवेलेबल है, वो यूज करने का कोई कारण?
4: पर सर ये भी समझाइए ना, क्या ये सचमुच में पायलट प्रोजेक्ट है, क्या अभी कोशिश हो रही है, या ये
3: पायलट प्रोजेक्ट नहीं है, ये कोई इसको भी सेंटर पे किया गया। कोई भी गाड़ी आज मेरे मन में आया और मैंने डाल दिया इथेनॉल, ऐसा नहीं होता। 4-4 साल इसके एक्सपेरिमेंट हो गया,

0: तो सर इसमें मतलब अगर हम बाकी रोड से कंपेयर करें, एक्सप्रेसवे से कंपेयर करें, तो इसमें कौन सी एक ऐसी चीज है, कोई नई टेक्नोलॉजी या ऐसी चीज जो इसे बाकियों से अलग और एक तरीके से।
1: आपने जो लोहे का ब्रिज देखा ना,
0: हाँ,
1: वो अपने आप में बहुत बड़े साइज का अच्छा डिजाइन किया हुआ है। वैसे हमारे हर प्रोजेक्ट में भी हम लोग जो जितनी नई नई टेक्नोलॉजी है उसको स्वीकार कर रहे हैं। वैसे इसमें एक टेक्नोलॉजी अभी आई नहीं है, ये दो पियर है ना, इसके बीच में हमारे यहाँ केवल 30 मीटर डिस्टेंस होता है।
0: अच्छा।
1: अभी हमने एक मलेशिया से और सिंगापुर से एक टेक्नोलॉजी लाई है कि ये 120 मीटर हो जाएगा डिस्टेंस।
0: अच्छा।
1: और एक ही पिलर के बीच में ऊपर का बीम स्टील फाइबर में कास्ट होगा।
0: हाँ।
1: और अभी हम 50,000 करोड़ के 5 ऐसे ब्रिज बना रहे हैं।
0: हाँ।
1: नीचे में कोना में,
0: हाँ,
1: नीचे में रोड, ऊपर में एक ही पिलर पर ब्रिज,
0: हाँ,
1: उसके ऊपर में ब्रिज, उसके ऊपर में मेट्रो।
0: अच्छा।
1: 4 फ्लोर 3 फ्लोर के 50,000 अभी मंजूर हो गए। अब मैं भूमि पूजन के लिए भी जाने वाला हूँ,
0: हाँ,
1: मुख्यमंत्री जी का टाइम है।
0: और ये जो हम इस एक्सप्रेसवे की खासकर बात करते हैं, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार अलाउड रहेगी इस पर।
1: हाँ, हाँ।
0: सर सेफ्टी को लेकर कोई इशू नहीं होगा?
1: अभी तो फॉरेन में 200-225 किलोमीटर तक अलाउड।
0: हाँ।
1: वैसे हमारे यहाँ भी स्पीड और बढ़ सकती है, पर हमने हमारे यहाँ के ट्रैफिक डिसिप्लिन और लोगों का अप्रोच देखते हुए हमने 120 तक सीमित किया।
0: अच्छा, 120 पे सेफ रहेगा इस
1: सेफ
0: हाईवे पर। अच्छा।
1: और हमने उधर पेंच में भी बनाया, नागपुर जबलपुर सुंदर बनाया। हम लोग इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को तरफ ध्यान देते हैं, पेड़ को ट्रांसप्लांट करते हैं, वाइल्ड लाइफ को लिए सुविधा करके देते हैं। और हमने इकोलॉजी एनवायरनमेंट को प्रभी हम बाम्बू के क्रैश बैरियर बना रहे हैं। हम डांबर में हम बिटुमिन में प्लास्टिक और रबर डालकर वो मिक्स तैयार करने की कोशिश करते हैं, बायो बिटुमिन। ये परल ही है ना, राइस स्ट्रॉ, इससे बायो बिटुमिन बनेगा, वो हम यूज करने की बात कर रहे हैं।
0: तर मगर एनवायरनमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट की बात करते हैं तो भारत दुनिया के देशों में रैंक कर रहा है अभी।
1: हम बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत जल्दी हम दुनिया के आगे जाएंगे। यही तो बायो फ्यूल अल्टरनेटिव फ्यूल की बात है।
0: हाँ।
1: अगर आगे जाना होगा तो प्रदूषण को कम करना पड़ेगा, और इसलिए फॉसिल फ्यूल को कम करना है। पूरी दुनिया फॉसिल फ्यूल को कम कर रही है, और वही तो पर्यावरण की रक्षा करने के लिए आवश्यक है। दिल्ली में इतना एयर पोल्यूशन है, ये पंजाब और हरियाणा में 280 लाख टन परली जला देते हैं। ये पंजाब और हरियाणा का ऑफिशियल डाटा है। अब वो परली से बायो सीएनजी बनेगा, हवाई ईंधन बनेगा, इथेनॉल बनेगा, और परली का भाव 2,500 रुपये टन हो गया। तो हमने वेस्ट में वैल्यू क्रिएट की। हमने गाजीपुर टेकड़ी की 7 मीटर हाइट कम थी, वो पूरा कचरा हमने सेग्रीगेट करके रोड में डाला। अब दिल्ली के मैं 2027 तक हमने निर्धार किया है कि हम लीगेसी वेस्ट देश की समाप्त कर रहे हैं।
0: बारिश इतनी तेज हो रही है, आपने ये भी कहा कि आपको टारगेट कर रहे हैं लोग, एक और चीज को लेकर बहुत ज्यादा टारगेटिंग हो रही है, वो ये है जो नए नए एक्सप्रेस वेज जो बन रहे हैं उनमें गड्ढे, उनको नुकसान।
1: मैं आपको प्रार्थना करता हूँ
0: जी,
1: ये हमारे हाईवे में जितने गड्ढे हैं उसके ऊपर आप कार्यक्रम करिए और दिखा दीजिए। देखो गड्ढे नहीं है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, हेवी ट्रैफिक के बाद 2 साल 3 साल 4 साल कभी ना कभी प्रॉब्लम आते हैं, पर आप मुझे बताइए आज जो लोग ही आपको फीडबैक देंगे इतना रोड अच्छा है, हमें 2 घंटा 3 घंटा नीचे हमारे बच गए, तो कमियाँ है और कमियाँ हम इम्प्रूव ही कर रहे हैं। और अभी हमारे पास एक एक्सरे मशीन जैसा है कि हम कॉन्ट्रैक्टर का, ऑफिसर का और रोड का एक्सरे निकाल के अब हम सब निकाल सकते हैं कि भाई गड़बड़ क्या है, राइडर क्वालिटी कैसी है, एक्सपांशन जॉइंट कैसे है, ये कंस्ट्रक्शन कैसा हुआ है, यहाँ पेड़ लगे हैं तो कौन से है, कौन सी स्पेसीज है, हम सबका। मैं अभी पिछले महीने में पूरा महीना मैंने 1,950 प्रोजेक्ट का रिव्यू लिया, कल भी मैंने करीब 23 एक्सप्रेस हाईवे का रिव्यू लिया अधिकारी कॉन्ट्रैक्टर सबके साथ। तो मैं ये नहीं कहता कि कहीं कमी हो सकती है, चलना ही है।
0: और आप लोग एक्शन लेते हैं क्योंकि एनएचआई ने एक कॉन्ट्रैक्टर का टर्मिनेट किया है, बताया
1: एक में हजारों जो मिलता उसके ऊपर एक्शन। तो मैं पहले कहता था कि अमेरिका से अच्छे रोड बनाए नहीं रहे, और अब हम हाईवे नेटवर्क, नेशनल हाईवे नेटवर्क में वर्ल्ड में नंबर 1 पर पहुंचा। और मुझे अमेरिका से आए हुए लोग कहते हैं कि तुम ये अमेरिका के जैसे रास्ते की क्या बात कर रहे हो, तुम गलत बोल रहे हो। तो बोला क्या हुआ, तो बोले हमारे रास्ते अमेरिका से भी अच्छे बने। इसका मतलब हमारे यहाँ कोई गलती नहीं है सर, कई गड्ढे मिल सकते हैं, हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं।
0: सर कई कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब ये इतना लंबा स्ट्रेच है, इसमें कई कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं, आप लोग कैसे सुनिश्चित करेंगे कि सोशल मीडिया के जरिए नहीं बल्कि खुद से ये जानकारी हो कि ये खराब है?
1: हमारे इसमें है, ये BOT हाइब्रिड एनुटी सब प्रोजेक्ट में 10-10 साल तक उस रोड को मेंटेन करने की गारंटी, डिफेक्ट लायबिलिटी उनके पास है, कुछ होगा तो उनके जिम्मेदार, जो बैंक गारंटी हमारे पास पड़ी है, हम जब्त करेंगे।
0: यहाँ जो नुकसान अगर दिखा है वो भरेंगे?
1: हाँ बिल्कुल, उनका उनकी जिम्मेदारी है, बाद में इनका हम रेटिंग कर रहे हैं अभी।
0: हाँ।
1: बड़े बड़े कंपनियों को काम दिया है।
0: हाँ।
1: और खराब काम करेंगे तो इनको सिस्टम से निकाल देंगे, ब्लैकलिस्टेड कर देंगे।
0: अच्छा
1: हाँ,
0: तो क्वालिटी कंट्रोल दुरुस्त,
1: क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं जी।
0: कितने समय तक वो आपके लिए प्रासंगिक रहेगी वो डिजाइन? जरूरतें बदलती हैं, उस हिसाब से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को अगर मैं समझना चाहूँ।
1: देखिए प्रॉब्लम एक है।
0: हाँ।
1: कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन रिसर्च रोज बदलता है।
0: हाँ।
1: और सरकार में नई बात को एक्सेप्ट करने के लिए बड़े रिलेक्टेंट रहते हैं, क्योंकि कल कुछ कम ज्यादा हुआ तो क्या होगा। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि नए प्रयोग करेंगे तो 10 में से 4 प्रयोग में कुछ अड़चन आ सकती है, तुरंत मीडिया उसको इलाज से, तो कोई करने के लिए तैयार नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
0: हम उम्मीद करते हैं कि बारिश थोड़ी रुके और हम अगले जो आपका रिव्यू पॉइंट है वहां पर हम रुके। तो ये एक्सप्रेसवे पूरा खुलने का इंतजार सबको है। हम इस समय एक ऐसी रेस्ट एरिया में रुके हैं, बारिश बहुत हो रही है इसलिए शेड है, लेकिन ऐसी बहुत सारी जगह मिल जाती हैं। यहाँ पर EV के रिचार्ज का पॉइंट भी है और जो अब एक नॉर्म हो चुका है। लेकिन नितिन जी, अगर हम ये सोचें कि ये कब तक आपका टारगेट है, कब तक बिना किसी डाइवर्जन के, बिना इस पे से उतरे?
1: अभी तो लगभग ये बड़ौदा के आगे तक पूरा हो गया
0: जी,
1: केवल मुंबई के भी एक पैकेज में और इधर गुजरात में 2 पैकेज में प्रॉब्लम है।
0: हाँ।
1: वो कॉन्ट्रेक्टर फेल हो गया, हमने टर्मिनेट कर दिया।
0: अच्छा।
1: वही है, बाकी 3 पैकेज छोड़कर बाकी लोग लगभग 80% काम पूरा हो।
0: आज जिस तरह के इंस्पेक्शन के लिए आप निकले, रिव्यू के लिए निकले, ऐसे आप निकलते रहते हैं?
1: निकलते रहता हूँ, क्योंकि आपको एक बात बताता हूँ कि हम जब लोग प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं तो मैं आज बहुत सी बातें मैं समझ गया हूँ, कुछ बातें आपके सामने बोल सकता हूँ, कुछ नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं इसमें सब बातें समझ गया हूँ। अब मैं इसके ऊपर वर्क करके फिर जब पूछूंगा क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्या हुआ, तो इसका जब पता चलता है अधिकारी और कॉन्ट्रेक्टर को।
0: हाँ।
1: तो अवेयरनेस बढ़ता है। अभी ये जो हमने मशीन है, अभी जो मैं देखने लग ले जाऊंगा, ये एक्सरे मशीन है रोड का।
0: हाँ।
1: मुझे कहाँ गड्ढा है, कहाँ स्लोप है, कहाँ राइडिंग क्वालिटी खराब है।
0: हाँ।
1: या प्लांटेशन कितना हुआ है, स्ट्रक्चर्स कहाँ है, रोड पर कौन खड़ा, एवरीथिंग मेरे पास आ जाएगा। AI का उपयोग किया
0: उस एक मशीन के साथ,
1: और AI ये भी बताएगा कि अगले 2 महीने के बाद रोड खराब होने वाला है क्या, उसमें प्रॉब्लम क्या है, ये भी आ जाएगा।
0: अच्छा।
1: हाँ।
0: और इतना महंगा रोड, टोल के लिए भी उतनी ही जेब खाली करनी होगी?
1: नहीं, अभी तो हमने सस्ता कर दिया ना।
0: हाँ।
1: 3,000 रुपए में 200 टोल फ्री है, तो 15 रुपए में आ गए टोल, तो लगभग तो कोई प्राइस ही नहीं उसका।
0: अच्छा।
1: जो 150 रुपए भरते थे।
0: हाँ।
1: वो 15 रुपए में आ गया, तो कार वालों के लिए नहीं है, और बाकी ट्रक वालों के लिए तो उनका सेविंग भी है ना, फ्यूल का सेविंग है, टाइम का सेविंग है, उसमें उनका फायदा भी है।
0: चलिए नितिन जी, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये एक्सप्रेसवे लोगों के लिए खुल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा हिस्सा हमें दिखाने के लिए, इसका पार्क हमें बनाने के लिए। बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसें, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: आज से 23 साल पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में अयोध्या के हनुमानगढ़ी परिसर में रोजा इफ्तार और नमाज हुई, ये सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आरोपों के बाद खड़ा हुआ। बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश के DGP रहे ब्रजलाल ने यहां तक कहा कि 2003 में समाजवादी पार्टी के करीबी पुलिस अधिकारी ने हनुमानगढ़ी की छत पर नमाज पढ़ाने की कोशिश की थी। आज आपको इसका पूरा सच तस्वीरों के साथ बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ये पहली बार नहीं है जब योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे पर खुलकर बोले हैं। जिस वक्त हनुमानगढ़ी में रोजा इफ्तार की कोशिश हुई। उस वक्त योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद थे और उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया था, यहां तक कि उन्होंने हनुमानगढ़ी में इसके विरोध में रैली भी की थी। लेकिन सवाल यह है कि आज योगी आदित्यनाथ को इतिहास की परतें खोलने की जरूरत क्यों महसूस हुई। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब तक हिंदुत्व की पिच पर बैकफुट पर खेलने वाला विपक्ष खुद को सबसे बड़ा सनातनी साबित करने की होड़ में जुटा हुआ है। कभी मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोप झेलने वाली समाजवादी पार्टी अब जो सनातन है वही समाजवाद है के नारे लगा रही है। इसके जवाब में योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए इतिहास का पन्ना खोल दिया। उन्होंने वर्तमान के दावों को 2003 के हनुमानगढ़ी इफ्तार विवाद के आईने में खड़ा कर समाजवादी पार्टी को बेनकाब करने की कोशिश की है और कहा कि इन लोगों ने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप किया था।
5: जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था?
4: आज हम इतिहास को खंगालते हुए इन आरोपों का पूरा सच आपको बताएंगे। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। पूरा घटनाक्रम साल 2003 का है, जब मायावती की सरकार गिरने के बाद 29 अगस्त 2003 को मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। इससे ठीक एक हफ्ते पहले 22 अगस्त 2003 को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट को सौंप दी थी, जिसमें बताया गया कि विवादित ढांचे के नीचे 12वीं सदी के प्राचीन मंदिर के अवशेष और स्तंभ मौजूद थे। उस समय उत्तर प्रदेश, खासकर अयोध्या में राम मंदिर को लेकर माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ था। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में 17 अक्टूबर को संकल्प दिवस और कार सेवा का बड़ा आह्वान किया था, जिसकी वजह से अयोध्या में माहौल तनावपूर्ण था। सरकार के सामने कानून व्यवस्था को संभालने के साथ अपने कोर वोटर को भी भरोसा दिलाने की चुनौती थी। यहीं से शुरुआत हुई एक सॉफ्ट काउंटर की, जिसके मुख्य केंद्र बने हनुमानगढ़ी के तत्कालीन महंत ज्ञानदास। उस समय वो हनुमानगढ़ी के सबसे ताकतवर संतों में से एक थे और विश्व हिंदू परिषद की उग्र हिंदुत्व की राजनीति के धुर विरोधी थे। महंत ज्ञानदास मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाते थे। पिछले साल का उनका बयान भी चर्चाओं में रहा था, जब उन्होंने कहा था कि दुनिया में मुलायम सिंह से अच्छा नेता कोई नहीं। 2003 में महंत ज्ञानदास की उदारवादी छवि और उनके रसूख का इस्तेमाल करके अयोध्या का माहौल शांत करने और वीएचपी के आंदोलन को कुंद करने के लिए योजना बनाई गई। ये तारीख थी 20 नवंबर 2003 की और तब मुसलमानों का पवित्र महीना रमजान चल रहा था। उस दौरान महंत ज्ञानदास ने सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे के नाम पर एक जोरदार पहल की। उन्होंने हनुमानगढ़ी के 52 बीघे के विशाल परिसर के भीतर स्थित अपने आधिकारिक निवास पर मुस्लिम समुदाय के लिए एक भव्य रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इस ऐतिहासिक लेकिन विवादित इफ्तार में अयोध्या के बड़े मुस्लिम चेहरे शामिल हुए। इसमें बाबरी मस्जिद के तत्कालीन पक्षकार हाशिम अंसारी और मुस्लिम नेता सादिक अली उर्फ बाबू टेलर भी थे। इसके अलावा करीब 500 मुसलमान इस रोजा इफ्तार के लिए पहुंचे। आरोप है कि इस दौरान लखनऊ जोन के तत्कालीन आईजी सरकार को खुश करने के लिए हनुमानगढ़ी मंदिर के नियमों को ताक पर रखने के लिए तैयार थे। वो देश भर में बड़ा संदेश देने के लिए इस आयोजन को हनुमानगढ़ी की छत पर या मंदिर के ठीक सामने मुख्य सड़क पर सार्वजनिक रूप से करवाना चाहते थे। लेकिन जमीन पर सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे फैजाबाद के तत्कालीन एसएसपी ने इस कथित दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उनका तर्क था कि हनुमानगढ़ी के मुख्य परिसर या सार्वजनिक सड़क पर ऐसी नई परंपरा की शुरुआत से हिंदू संगठन भड़क सकते हैं और अयोध्या में माहौल बिगड़ सकता है। जब सड़क पर अनुमति नहीं मिली तो यह कार्यक्रम हनुमानगढ़ी परिसर में ही महंत ज्ञानदास के घर के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन रोजा इफ्तार के बाद नमाज के लिए ज्यादा जगह की जरूरत महसूस हुई तो महंत ज्ञानदास के आवास की बाहरी सीढ़ियों पर चटाई बिछाई जाने लगी। ये सीढ़ियां हनुमानगढ़ी मंदिर के मुख्य रास्ते से भी सटती थी। तब सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए उन्हें तुरंत वहां से हटवा दिया ताकि कोई कानूनी या धार्मिक मर्यादा न टूटे, जिसके बाद आवास के अंदर ही नमाज हुई और इसके लिए दीवारों पर बने देवी देवताओं के चित्र और धार्मिक प्रतीक भी ढक दिए गए, जो तस्वीरों में साफ नजर आता है। हनुमानगढ़ी परिसर में हुई इस रोजा इफ्तार और नमाज का दूसरे हिंदू संतों और संगठनों ने जोरदार विरोध किया। हनुमानगढ़ी के ही महंत धर्मदास और महंत मधुसूदन दास ने विश्व हिंदू परिषद के समर्थन से फैजाबाद की सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका तर्क था कि मंदिर के उपनियमों के अनुसार 52 बीघे के इस पवित्र परिसर के भीतर किसी भी गैर सनातन धार्मिक गतिविधि या नमाज की अनुमति नहीं दी जा सकती। उस वक्त गोरखपुर के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ ने भी हनुमानगढ़ी में रोजा इफ्तार का जोरदार विरोध किया था और इसके विरोध में रैली भी की थी, जिसका दावा महंत धर्मदास ने भी किया है। 2005 में जब रमजान के दौरान तीसरे साल भी हनुमानगढ़ी में इफ्तार की तैयारी चल रही थी, तब विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर के बाहर 10 दिनों का उग्र धरना शुरू कर दिया। इसी बीच 1 अक्टूबर 2005 को कोर्ट ने यहां रोजा इफ्तार पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसकी वजह से 2005 में हनुमानगढ़ी में इफ्तार नहीं हो सका और विश्व हिंदू परिषद और तमाम संतों ने हनुमानगढ़ी में घी के दिए जलाकर दिवाली से पहले दीपावली मनाई। लेकिन जनवरी 2006 में कोर्ट ने महंत धर्मदास की मुख्य याचिका को ही खारिज कर दिया और पूर्व में लगाए गए स्टे को हटा लिया, यानी कानूनी रूप से इफ्तार के आयोजन को गलत नहीं माना गया। हालांकि अदालत से हरी झंडी मिलने के बाद भी 2006 के बाद हनुमानगढ़ी में फिर कभी इफ्तार नहीं हुआ। इसके पीछे आंतरिक दबाव और कानून व्यवस्था से जुड़ी वजह रही, क्योंकि अखाड़ों के भीतर महंत ज्ञानदास का तीव्र विरोध शुरू हो गया था। उन्हें अखाड़े से निष्कासित करने की भी चेतावनी दी गई। एक दूसरे मामले को लेकर महंत ज्ञानदास और महंत धर्मदास के समर्थकों में झड़प भी हुई थी। चौतरफा घिरे महंत ज्ञानदास ने आखिरकार हनुमानगढ़ी में रोजा इफ्तार से तौबा कर ली। अब आपको प्रधानमंत्री मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के बारे में बताएंगे, जहां उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। क्रिकेट के मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया कट्टर प्रतिद्वंद्वी हैं, लेकिन कूटनीति की पिच पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज एक साथ उतरे तो दोनों के बीच बेहतरीन तालमेल के साथ लंबी साझेदारी की रणनीति नजर आई। इस दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के समझौतों के ऐलान के चौके छक्के तो लगे ही, दोनों देशों ने कूटनीति के हर क्षेत्र में कीर्तिमान बना दिए। दुनिया के कई देशों में भारतीय समुदाय के साथ संवाद के बड़े आयोजनों को संबोधित कर चुके पीएम मोदी ने एक रिकॉर्ड मेलबर्न में भी बनाया, जहां उन्हें सुनने के लिए मार्वल स्टेडियम 30,000 भारत वंशियों से खचाखच भरा था।
6: इक्कीसवीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। पिछले 12 वर्षों में भारत के 2 दर्जन से अधिक शहरों में मेट्रो नेटवर्क पहुंच चुका है। घर में दूध ऑस्ट्रेलिया वाला आता है, लेकिन चाय भारत वाली बनती है। हम दोनों देशों की साझेदारी को एक और सेक्टर मजबूती देता है, ये सेक्टर है स्पोर्ट्स, खेलकूद। मुझे पूरा विश्वास है स्पोर्ट्स के क्षेत्र भी ऑस्ट्रेलिया और भारत की पार्टनरशिप का और विस्तार होके रहेगा।

अब आपको साल 2010 की वो घटना बताते हैं जब अखबारों की हेडलाइंस थी कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को यूरेनियम देने से इनकार कर दिया। और अब आप दूसरी तस्वीर देखिए जो प्रधानमंत्री मोदी के मौजूदा दौरे से जुड़ी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का मीडिया भारत के साथ यूरेनियम डील की तारीफ प्रधानमंत्री मोदी को रॉकस्टार बताते हुए कर रहा है। ये वो ऐतिहासिक डील है जो आने वाले दशकों में भारत की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकती है। भारत को करीब 2 दशक से यूरेनियम की निर्बाध सप्लाई का इंतजार था, अब उससे अनिश्चितता के बादल छटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम सप्लाई को लेकर एक ऐसी महाडील पर मुहर लग चुकी है जो भारत को ऊर्जा के क्षेत्र की बड़ी चिंताओं को खत्म कर सकती है। वास्तव में आने वाला वक्त उसका होगा जिसके पास क्लीन एनर्जी की चाबी होगी, और इस चाबी का सबसे बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया के पास है। दुनिया के कुल यूरेनियम भंडार का करीब 28% हिस्सा अकेले ऑस्ट्रेलिया की धरती के नीचे दबा है। आंकड़ों में कहें तो लगभग 17 लाख टन यूरेनियम। दूर दूर तक कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया के इस आंकड़े के आसपास भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में साल 1954 से ही यूरेनियम का खनन हो रहा है। मौजूदा वक्त में वहां 3 बड़ी खदानें एक्टिव हैं। भारत के लिए यूरेनियम पाने का यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है। इस कहानी की शुरुआत साल 2005 में हुई थी जब भारत अमेरिका के बीच सिविल न्यूक्लियर डील की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसके तहत भारत बिजली बनाने के लिए दुनिया से परमाणु ईंधन यानी यूरेनियम खरीद सकता था, लेकिन सवाल यह था कि यह परमाणु ईंधन आएगा कहां से। 2014 में ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम सप्लाई को लेकर सहमति तो बनी, लेकिन दोस्ती के बड़े बड़े वादों और मजबूत इरादों के बाद भी ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम की वास्तविक सप्लाई शुरू करने से हिचकता रहा। यानी 12 साल बाद भी ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम सप्लाई शुरू नहीं हो पाई। असल में ऑस्ट्रेलिया परमाणु अप्रसार संधि को लेकर बेहद सख्त है। वो आश्वस्त होना चाहता था कि उसके यूरेनियम का इस्तेमाल सिर्फ शांतिपूर्ण बिजली उत्पादन के लिए हो, न कि हथियारों के लिए। लेकिन कड़े कूटनीतिक प्रयासों और परमाणु सुरक्षा और शांति विधेयक पारित होने के बाद ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम मिलने का रास्ता पूरी तरह खुल गया। अब समझिए कि भारत को यूरेनियम की इतनी प्रचंड जरूरत क्यों है। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। हमारी ऊर्जा जरूरतें अब सिर्फ घरों में पंखे और लाइट जलाने तक सीमित नहीं है। भारत आज AI, सुपर कंप्यूटर और डेटा सेंटर्स का हब बन रहा है। इन आधुनिक उद्योगों को 24 घंटे बिना 1 सेकंड के कट के भारी मात्रा में बिजली चाहिए होती है। अब तक भारत अपनी 70% से ज्यादा बिजली के लिए कोयले पर निर्भर रहा है, लेकिन पर्यावरण को बचाना है और कार्बन इमिशंस को जीरो करना है तो हमें कोयले से पीछा छुड़ाना होगा। सोलर और विंड एनर्जी क्लीन एनर्जी है, लेकिन वो मौसम पर भी निर्भर करते हैं। ऐसे में न्यूक्लियर एनर्जी एकमात्र ऐसा जरिया है जो बिना प्रदूषण फैलाए लगातार और भारी मात्रा में बिजली दे सकता है। ऑस्ट्रेलिया से आने वाला ये यूरेनियम भारत के मौजूदा और भविष्य में बनने वाले दर्जनों परमाणु संयंत्रों के लिए संजीवनी का काम करेगा। अभी भारत में 7 अलग अलग जगहों पर 24 एटॉमिक पावर स्टेशन काम कर रहे हैं जो देश को परमाणु ऊर्जा से बिजली सप्लाई कर रहे हैं। 2014 में न्यूक्लियर पावर से बिजली उत्पादन की क्षमता 4.7 GW थी, जो 2025 में 84% बढ़कर 8.4 GW हो चुकी है। लेकिन इसके बाद भी कुल बिजली उत्पादन में परमाणु बिजली की हिस्सेदारी 3% के आसपास ही रही है। 2031-32 तक परमाणु ऊर्जा से 22.38 GW बिजली उत्पादन का अनुमान है, और भारत ने 2047 तक परमाणु ऊर्जा 100 GW बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है, और ये यूरेनियम की निर्बाध आपूर्ति से ही संभव हो पाएगा। जब भारत अपने 70% से ज्यादा बिजली उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर है, तब यह समझना भी बहुत जरूरी है कि सिर्फ 1 ग्राम यूरेनियम से उतनी ही बिजली पैदा की जा सकती है जितनी 2000 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाले कोयले को जलाने से मिलती है। यानी एक छोटी सी यूरेनियम की गोली एक मिडिल क्लास फैमिली को सालों तक बिजली दे सकती है। यही वजह है कि इसे दुनिया का सबसे कीमती ईंधन माना जाता है। इसीलिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ यह समझौता 2 देशों के बीच व्यापार का सौदा नहीं है,
बल्कि यह भारत की एनर्जी सिक्योरिटी की गारंटी है। 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए जिस असीमित और स्वच्छ शक्ति की जरूरत है, आज उसका रास्ता साफ हो गया है। अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूजीलैंड दौरे के बारे में हम बताएंगे। पूरे 40 साल के लंबे इंतजार के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड की धरती पर पहुंचा है। आखिरी बार 1986 में राजीव गांधी न्यूजीलैंड गए थे। सोचिए, जब 1986 में राजीव गांधी न्यूजीलैंड गए थे, तब वहां भारतीयों की आबादी केवल 20,000 थी, लेकिन आज वहां करीब 3,00,000 भारतवंशी हैं, जो न्यूजीलैंड की कुल आबादी का 6% है। आपको जानकर हैरानी होगी कि न्यूजीलैंड की इकोनॉमी में इन भारतीयों का योगदान 6 साल पहले $10 अरब था, जो आज $37 अरब हो चुका है, यानी 6 साल में करीब 4 गुना तरक्की। इस बात को न्यूजीलैंड भी समझता है और भारत भी। तमाम लोग न्यूजीलैंड से सिर्फ क्रिकेट का कनेक्शन समझते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला मैच क्रिकेट का नहीं बल्कि हॉकी का हुआ था। यह मैच 1926 में हुआ था, जिसे 100 साल पूरे हो रहे हैं। पीएम मोदी का यह पूरा दौरा एक बहुत ही सॉलिड प्लानिंग के तहत हुआ। ऑस्ट्रेलिया में तो उन्होंने डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, यूरेनियम से जुड़े समझौते किए। न्यूजीलैंड में वो भारतीय किसानों और खेती की बेहतरी के लिए खास समझौते करेंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है और उसकी तरक्की में सबसे बड़ा योगदान खेती के सफल और आधुनिक तरीकों का है। सोचिए, भारत में खेत से निकलकर मंडियों तक पहुंचते पहुंचते करीब 30% फसल सड़ जाती है या बर्बाद हो जाती है, जिसका सीधा नुकसान किसान झेलता है। लेकिन न्यूजीलैंड की तकनीक ऐसी है कि वहां यह नुकसान केवल 6% है। पीएम मोदी न्यूजीलैंड से वही जादुई कोल्ड स्टोरेज, कल्टीवेशन तकनीक और फसल को बीमारी से बचाने की दवाई भारत लाने वाले हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड कृषि मामलों में बहुत आगे माना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक और मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने न्यूजीलैंड से ही डेयरी शिक्षा प्राप्त की थी। उन्हें अमूल का आइडिया न्यूजीलैंड से ही मिला था। उन्होंने न्यूजीलैंड के कम्युनिटी डेयरी मॉडल फोंटेरा से ही सीखकर दूध का साम्राज्य खड़ा किया था। न्यूजीलैंड दूध, फल और कैश क्रॉप्स का राजा है। वहां की तकनीक और तरीके भारत के किसानों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। यानी प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा सीधे किसानों के हित से जुड़ा है। इस दौरान भारत ने बहुत स्मार्ट कूटनीति खेली है। भारत ने पहले ही ऑस्ट्रेलिया से ट्रेड डील कर ली। इसे देखकर न्यूजीलैंड को लगा कि भारत का बड़ा बाजार हाथ से निकल जाएगा। इसके बाद पिछले साल न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भारत आए, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की प्रक्रिया शुरू की। अब वहां चुनाव होने वाले हैं, तो लक्सन चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर इस डील को और बड़ा कर लिया जाए। इसीलिए पीएम मोदी के न्यूजीलैंड पहुंचते ही उन्होंने 57% एक्सपोर्ट पहले दिन से ही हो जाएंगे टैरिफ फ्री करने का ऐलान कर दिया। हालांकि इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा विलन है चीन। न्यूजीलैंड की आबादी है केवल 54,00,000, जो भारत के एक बड़े शहर जितनी है, और यह छोटा सा देश पूरी तरह से व्यापार के लिए चीन पर निर्भर हो गया, जिससे दिक्कतें होने लगी। तब न्यूजीलैंड को समझ आया कि एक पर निर्भर होना ठीक नहीं है, और न्यूजीलैंड ने भारत का हाथ थामना भी जरूरी समझा। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के जरिए भारत सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से ही हाथ नहीं मिला रहा, बल्कि इंडो पैसिफिक रीजन के उन 18 देशों को साथ लेकर चल रहा है जो चीन की दादागिरी से तंग आ चुके हैं। इसीलिए यह दौरा चीन को घेरने और हमारे किसानों की जेब भरने की रणनीति से जुड़ा हुआ है। और न्यूजीलैंड जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर पहुंचे थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मेलबर्न में होना हमेशा खास होता है और भारत ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट संबंध बेहद गहरे हैं। यहां बात सिर्फ मुलाकातों की नहीं है, बल्कि पीएम मोदी ने इस दौरे में क्रिकेट डिप्लोमेसी का वो बड़ा छक्का भी जड़ा, जिसकी गूंज बरसों तक सुनाई देगी। आज जिस फटाफट क्रिकेट यानी टी20

हमारी अगली रिपोर्ट पारिवारिक संबंधों के एक ऐसे पहलू पर है जिसकी चर्चा खुले मंचों पर अक्सर नहीं होती। दरअसल ये चर्चा एक सवाल के तौर पर उठती है। सवाल ये कि क्या हमारे देश के पुरुष नो मीन्स नो का मतलब समझते हैं। हालांकि ये सवाल पुरुषों से नहीं बल्कि महिलाओं से पूछा जाना चाहिए। इंडिया टुडे के ग्रॉस डोमेस्टिक बिहेवियर सर्वे में हमने यही किया। हमने इसी तरह के कुछ अनछुए सवालों को देश की महिलाओं के सामने रखा। हमें इन सवालों के जो जवाब मिले वो हमारे भारतीय समाज का सच है। सबसे पहले तो हमारे लिए ये जानना जरूरी था कि समाज की कितनी महिलाएं संबंधों में कंसेंट यानी सहमति का असली मतलब समझती हैं। इस सवाल का जो जवाब हमें मिला उससे पता चलता है कि महिलाओं के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। हमारे देश की 62.5% उच्च शिक्षित महिलाएं संबंधों में सहमति का मतलब कम पढ़ी लिखी महिलाओं की तुलना में बेहतर समझती हैं। यानी महिलाएं जितना शिक्षित हो रही हैं वो अपने अधिकारों के प्रति और संबंधों में ना कहने को लेकर जागरूक होती हैं। इसके बाद सर्वे में एक बड़ा सवाल पूछा गया। महिलाओं से पूछा गया किसी काम को करने का उनका मन नहीं होता तो वो अपने पार्टनर को ना कैसे कहती हैं। इसके जवाब में 56% महिलाओं ने बताया कि वो सीधे ना कह देती हैं। 21% ने कहा कि उन्हें ना कहने में दिक्कत आती है और वो बहाने बनाती हैं। 20% महिलाओं ने कहा वो चाह कर भी ना नहीं कह पाती। यानी महिलाओं में अपनी इच्छा के प्रति जागरूकता तो आई है लेकिन अभी भी कुछ महिलाओं में ना कहने को लेकर हिचक है। लेकिन सर्वे में एक और बात पता चली है। देश की 79% महिलाएं किसी भी तरह की परिस्थितियों में नो मीन्स नो के विचार का समर्थन करती हैं। यानी वो मानती हैं कि महिलाओं की ना का सम्मान होना चाहिए। इसीलिए हमारा अगला सवाल यही था कि संबंधों में महिलाओं द्वारा ना कहने पर उनके साथी उन्हें कितना समझते हैं, यानी पुरुष नो मीन्स नो को कितना सम्मान देते हैं। 56% महिलाओं ने कहा कि उनके साथी ना कहने पर तुरंत समझ जाते हैं और फैसले को पूरा सम्मान देते हैं। 13% महिलाओं ने कहा कि उनके साथी उनकी ना सुनने के बाद विचार बदलने का दबाव डालते हैं। 12% महिलाओं ने कहा कि ना सुनने के बाद उनके पार्टनर उन पर ज्यादती का आरोप लगाते हैं और नाराज हो जाते हैं। 10% महिलाओं ने कहा कि उन्हें अपने साथी को मना करने की या किसी तरह सीमा तय करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब ऐसे में एक सवाल और खड़ा होता है कि क्या भारतीय समाज में महिलाओं की सहमति और इच्छाओं को सम्मान दिया जाता है। हमारा अगला सवाल यही था। सर्वे में महिलाओं से पूछा गया कि क्या भारतीय समाज में उनकी सहमति और इच्छाओं को सम्मान मिलता है। 29% महिलाओं ने इस सवाल का जवाब हां में दिया। 47% महिलाओं ने कहा ऐसा कभी कभी होता है। 21% महिलाओं ने सीधे सीधे इनकार किया। उनका मानना था कि भारतीय समाज में महिलाओं की सहमति और इच्छा को सम्मान नहीं दिया जाता। माना जाता है कि कई बार महिलाओं की इच्छाओं और सहमति को स्वीकार करना उनके परिवार के पुरुषों के लिए भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इस सर्वे में महिलाओं से पूछा कि क्या भारतीय पुरुष जैसे पिता, भाई, पति या अन्य परिजन महिलाओं की सहमति के अधिकार को समझते या उसका सम्मान करते हैं। 62% महिलाओं ने इसका जवाब हां में दिया और 26% महिलाओं ने कहा कुछ समझते हैं कुछ नहीं। केवल 7% ने जवाब ना में दिया। यानी भारतीय समाज में एक बड़ा बदलाव तो आ रहा है जिसमें महिलाओं की इच्छाओं का सम्मान किया जाता है। हालांकि अभी भी महिलाओं और पुरुषों में इस तरह की सहमति और इच्छाओं को लेकर कुछ संकोच है लेकिन स्थिति फिर भी बेहतर हुई है। भारत के कॉलेजों में रैगिंग पर पूर्ण प्रतिबंध है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद देश भर के कॉलेजों के लिए रैगिंग के खिलाफ कड़ा कानून है। कॉलेजों में रैगिंग के खिलाफ समाज में जरूरी जागरूकता भी दिखाई पड़ती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूलों में 4th, 5th, या 8th तक की छोटी क्लासेस में भी क्लासरूम बुली यानी किसी बच्चे को किसी साथी बच्चे से परेशान किया जाना देश के लिए एक गंभीर समस्या हो सकती है? क्या क्लासरूम बुली पर टीचर्स, स्कूल प्रशासन, अभिभावकों और सरकार को और ज्यादा संवेदनशील और सतर्क होने की जरूरत नहीं है? यह सवाल जयपुर के बहुचर्चित अमायरा खुदकुशी केस के नए तथ्यों से सामने आया है। क्लास 4 में पढ़ने वाली 9 साल की अमायरा ने 1 नवंबर 2025 को जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल की 4th मंजिल से छलांग लगा दी थी। इस मामले में पुलिस चार्ज

0: चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। पुलिस की जांच में घटना वाले दिन क्लासरूम में क्या हुआ इसका सिलसिलेवार ब्यौरा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने यह साबित करने की कोशिश की कि क्लासरूम में अमायरा और दूसरे बच्चों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इस दौरान अमायरा ने अपनी बात क्लास में मौजूद टीचर पुनीता शर्मा को बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अमायरा की बात पर तवज्जो नहीं दिया। इसी के बाद बच्ची क्लासरूम में तेजी से निकली और फिर चौथे मंजिल पर चली गई। पुलिस से हासिल इसी सीसीटीवी और जांच के इसी पहलू के आधार पर अमायरा के परिवार ने एक वीडियो जारी किया है। परिवार द्वारा जारी सीसीटीवी वीडियो पर वॉइस ओवर है, जिसे पुलिस की जांच के निष्कर्ष के आधार पर अमायरा के परिवार ने तैयार किया है। आप भी उसी वीडियो के आधार पर तैयार हमारी ये रिपोर्ट देखिए।
1: अमायरा सबसे पहले क्लासरूम में आती है और बिल्कुल सामान्य दिखती है। कुछ देर बाद उसकी फ्रेंड क्लासरूम में आती है। अमायरा उससे मिलती है। दोनों के बीच एक नॉर्मल स्कूल इंटरेक्शन जैसा दृश्य दिखाई देता है। इसके बाद अमायरा डांस क्लास में जाती है। वो बाकी बच्चों के साथ एक्टिविटी में शामिल होती है। वो पार्टिसिपेट करती है, डांस करती है और पूरे समय एक नॉर्मल एक्टिव चाइल्ड की तरह दिखाई देती है। फिर अमायरा वापस क्लासरूम में आती है। ये वही डिजिटल स्लेट है जो क्लासरूम में अलाउड नहीं होनी चाहिए थी। क्लासरूम के अंदर टीचर की मौजूदगी में बच्चे उसे निकालते हैं और उस पर कुछ लिखते दिखाई देते हैं। फिर वही डिजिटल स्लेट बार बार अमायरा को दिखाई जाती है। यहीं से अमायरा की बॉडी लैंग्वेज बदलनी शुरू होती है। जो बच्ची कुछ देर पहले नॉर्मल थी, वही अब असहज दिखाई देने लगती है। जिस डिजिटल स्लेट पर बार बार कुछ लिखकर उसे दिखाया जा रहा था, जिस वजह से वो परेशान और एम्बेरस दिखाई दे रही थी, इस समय अमायरा की बॉडी लैंग्वेज साफ दिखाती है कि वो हेल्प चाहती है। वो चाहती है कि टीचर इस बात को रोके, लेकिन तभी अमायरा के आगे बैठा बच्चा भी टीचर के पास आ जाता है। वो अमायरा की तरफ इशारा करता है और क्लास टीचर से कुछ कहता दिखाई देता है। अब जिस बच्ची ने खुद कंप्लेन करने के लिए टीचर के पास कदम बढ़ाया था, उसी मोमेंट में बात फिर उसके ऊपर घूमती हुई दिखाई देती है। क्लास टीचर कुछ बच्चों के पास जाती हैं। वो बच्चों से बात करती दिखाई देती हैं और उसी दौरान अमायरा की तरफ इशारा करके कुछ कहती हुई नजर आती हैं। यही वो मोमेंट है जहां अमायरा की बॉडी लैंग्वेज सबसे ज्यादा हिला देने वाली दिखाई देती है। और फिर अमायरा एक आखिरी बार क्लास टीचर के पास जाती है, लेकिन टीचर की बॉडी लैंग्वेज स्ट्रिक्ट दिखाई देती है, जैसे अमायरा को फिर किसी सीरियस कॉन्सिक्वेंस या एक्शन जैसी बात से डराया जा रहा हो। और फिर बातचीत के बीच ही अमायरा अचानक क्लास से बाहर निकल जाती है और अब वही 9 साल की बच्ची स्कूल बिल्डिंग में अकेली भाग रही है, लेकिन कोई फ्लोर अटेंडेंट उसे रोकता हुआ नहीं दिखता। कोई टीचर तुरंत उसके पीछे जाती हुई दिखाई नहीं देती। क्लासरूम में एंटी बुलिंग रिस्पॉन्स नहीं दिखा, काउंसलिंग सपोर्ट नहीं दिखा
2: और पुलिस अभी तक ये साफ नहीं कर पाई कि क्लासरूम के अंदर अमायरा से ऐसा क्या कहा गया
1: जिसने एक 9 साल की बच्ची को इतना डरा दिया कि वो इतना गंभीर कदम उठा बैठी।
0: आप सोचिए, अगर अमायरा मामले में पुलिस की जांच का यह पहलू सही है तो कितनी गंभीर बात है। 2017 में टीचर फाउंडेशन और विप्रो अप्लाइंग थॉट इन स्कूल्स नाम की संस्था ने 5 साल के शोध के बाद एक रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट के अनुसार क्लास 4 से क्लास 8 के 42% बच्चे और क्लास 9 से क्लास 12 के 36% बच्चे स्कूल में दूसरे साथी बच्चों से परेशान किए जाने के शिकार होते हैं। डराया जाना, तंग किया जाना, अपमानित किया जाना, मजाक उड़ाया जाना और लड़ाई झगड़े इसका हिस्सा है। स्कूल में जो बच्चे दूसरे बच्चों की प्रताड़ना करते हैं वो भी उतने ही वल्नरेबल हैं, क्योंकि उन्हें भी शायद इतनी समझ नहीं होती। पर सवाल है कि स्कूलों में इस समस्या से निजात पाने का उपाय क्या है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का सेक्शन 75 साफ कहता है कि बच्चों की जिस पर जिम्मेदारी है या जिसका नियंत्रण है, वो अगर खुद बच्चों की प्रताड़ना करता है या प्रताड़ना को नजरअंदाज करता है, उसे 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। अमायरा के मामले में क्लास में मौजूद टीचर पुनीता शर्मा के ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो अमायरा का पक्ष सुनती और उसे साथी बच्चों से बचाती, लेकिन पुलिस चार्जशीट के अनुसार उनकी तरफ से ऐसा नहीं किया गया। पुलिस चार्जशीट में पुनीता शर्मा के खिलाफ जेजे एक्ट के तहत आरोप दाखिल किए गए हैं, लेकिन अमायरा का परिवार चार्जशीट में स्कूल की प्रिंसिपल इंदु दुबे और स्कूल चेयरमैन सौरभ मोदी पर जेजे एक्ट में केस दर्ज नहीं करने पर सवाल उठा रहा है। आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
6: Terms apply. Visit wellsfargo.com/depositdisclosures for fees and details.
7: Hey, music lovers. Ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going. So you get more of today's hits. More country roads. Classic rock. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.
8: जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है, सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का, और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं।
9: भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना, ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। PNB, मेरा अपना बैंक।
10: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
11: वी आर ओवर जिमी।
12: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
3: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
4: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से।
5: तो सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना।
3: मतलब
5: पंजाब नेशनल बैंक, जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, OTT सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे।
6: वाओ दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ।
5: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। PNB, मेरा अपना बैंक।
2: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार। देश के हीरो की पहली पसंद।

0: हुआ जिमी?
1: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
3: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
2: Vimal, bolo zubaan kesri. Hint, bade aaram se.
4: Puchhiye, lekin kahin na kahin, bhajpa ko is baat ka ilm ho gaya hai ki is baar janta bhajpa ke virodhi nahi. जो भाजपा के समर्थक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो नेता हैं, उनको जो जिन्होंने वोट दिया है, उनका बिल्कुल मत है, क्लियर है कि सम्राट चौधरी जैसे व्यक्ति को, के चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को आप बिहार का मुख्यमंत्री नहीं थोप सकते हैं। आपको जिस समाज का भी मुख्यमंत्री बनाना है बनाइए, कुशवाहा समाज का मुख्यमंत्री बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी अच्छे व्यक्ति को बनाइए, चरित्रवान व्यक्ति को बनाइए, पढ़े लिखे व्यक्ति को बनाइए, ताकि बिहार का तरक्की हो। बिहार के लोग, बिहार के बच्चे सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। आपको वोट दिया है बिहार के लोगों ने, 202 विधायक जिताया है, तो आपकी जिम्मेवारी है कि सबसे अच्छे व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व दीजिए ताकि बिहार का विकास हो सके।
5: हाँ, उनके प्रत्याशी हार के डर से नामांकन के बाद भी नाम वापस ले रहे हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में इतना अंतरकला है, इतना द्वंद है, वो डिसीजन कर ही नहीं पाते, तो उनका प्रत्याशी कौन जीत सकता है।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

आपस में ही हाथ आजमाते दिख रहे हैं कांग्रेसी प्रदेश अध्यक्ष। आज वर्डिंग को हटाने पर अड़ा चन्नी गुट रंधावा ने बताया कॉम्प्रोमाइज लीडर, आपात आला कमान के दरबार पहुंचा झगड़ा। उमर के ऑपरेशन लोटस वाले बैन पर बौखलाई बीजेपी, कहा दो सबूत ये मांगो माफी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने लगाया था आरोप, हमारे विधायकों को खरीदने की हो रही साजिश। बीजेपी ने प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के गिनाए 10 फायदे, कहा इंडो पैसिफिक में भारत बनी बड़ा ताकत बनी और वैश्विक साझेदारियों को मिली नई मजबूती, कांग्रेस ने किया कटाक्ष। ट्विशा केस में एम्स ने सीबीआई को सौंपी दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सूत्रों से खबर, फंदे के लिए इस्तेमाल बेल्ट पर मिले स्किन टिश्यू, चोट के निशान से हुए मैच। अमेरिकी हमलों की नई किश्त के बीच दुनिया के सामने आएंगे मुज्तबा खामेनेई, मंगलवार की सभा में करेंगे शिरकत, अटैक में मारे गए लोगों को देंगे श्रद्धांजलि, यूएस की तरफ से भयानक बमबारी जारी।

0: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.5% इलाका यानी 4 करोड़ हेक्टेयर से अधिक हिस्सा हर साल बाढ़ की चपेट में आता है, जिसमें औसतन 1600 लोगों की मौत होती है। लेकिन इसमें से भारत के शहरी इलाकों में हर साल 70% से अधिक शहरों में मानसून के दौरान बाढ़ या गंभीर जल भराव की समस्या आती है। और आज हम इसी शहरी बाढ़ यानी अर्बन फ्लडिंग की बात करेंगे। ये कितनी खतरनाक है, कितनी तबाही लेकर आती है, इसका कारण क्या है और इससे कैसे निपटा जा सकता है। सिर्फ देश नहीं बल्कि दुनिया के कई ताकतवर देश इस बाढ़ के आगे बेबस हो जाते हैं। आज हम आपको देश भर के अलग अलग हिस्सों में मौसम का हाल भी दिखाएंगे और साथ ही अर्बन फ्लडिंग के हर पहलू की बात करेंगे।
1: इंसान ने कंक्रीट के शहर जीत लिए, कुदरत ने एक बारिश में उनका गुरूर बहा दिया।
2: पूरे घर का घर बर्बाद, अभी क्या देगा गवर्नमेंट? 2000-5000 देगा, उससे इनका घर का पूरा सामान आ जाएगा।
3: हर साल का प्रॉब्लम है, एक साल का प्रॉब्लम नहीं है।
4: तो ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना चाहिए, बेसिकली प्रॉब्लम वहीं से, सब नाले वगैरह नहरों हो गए, पानी वहीं पे स्टक हो जाता है।
1: इमारतें आसमान छू रही हैं, लेकिन बादलों का इरादा कुछ और है। इंसान नक्शों पर शहर बसा रहा है, कुदरत अपने रास्ते खुद चुन रही है। इंसान नदियों को बांध रहा है, लेकिन पानी ने याद दिला दिया कि रास्ता वही तय करता है। तकनीक बहुत ताकतवर है, लेकिन प्रकृति का गुस्सा एक कठिन परीक्षा है। इंसान विकास की रफ्तार में प्रकृति के नियम भूला तो कुदरत उन्हें अपने तरीके से याद दिलाती है। ये इंसान और कुदरत की लड़ाई नहीं, बल्कि उस भ्रम का टूटना है कि इंसान कुदरत से बड़ा है। कुदरत हर बार जीतने नहीं आती, लेकिन जब वो अपना संतुलन वापस लेने निकलती है तो सबसे ताकतवर शहर भी उसके सामने बेबस दिखाई देते हैं।
0: इस वक्त मानसून देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ और बर्बादी का डबल अटैक लेकर आया है। पहाड़ी इलाके हों या मैदानी इलाके, तबाही का मंजर हर जगह दिख रहा है। छोटे शहर अगर सैलाब में डूबे हैं तो बड़े शहर भी लगातार बाढ़ के खतरे में हैं। पूरे देश में बारिश कैसी तबाही लेकर आई है, देखिए।
1: मानसून राहत नहीं बल्कि पहाड़ों पर आफत बनकर बरस रहा है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं सड़कें टूट रही हैं, तो कहीं नदियां खतरे के निशान के पार बह रही हैं। लगातार बारिश ने हिमाचल से लेकर उत्तराखंड और भारत के पूर्वी हिस्से तक जनजीवन बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। मौसम विभाग ने अभी और भारी बारिश की चेतावनी दी है। रात के अंधेरे में पहाड़ से मौत बनकर उतरा पानी, मलबे के सैलाब ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। गाड़ियां पत्थरों के नीचे दब गई, घरों में कीचड़ और चट्टाने घुस गई। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ठठरी कस्बे की हैं, जहां कुछ ही मिनटों की बारिश ने पूरी बस्ती का नक्शा बदल दिया। बादल फटने के बाद लगातार हुई मूसलाधार बारिश के बाद ठठरी इलाके में अचानक फ्लैश फ्लड आ गया। पहाड़ियों से तेज रफ्तार के साथ मलबा, बड़े बड़े पत्थर और चट्टाने नीचे उतरी, जिसने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपनी चपेट में ले लिया। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की हैं, जहां एक बार फिर भूस्खलन ने लोगों की नींद उड़ा दी है।
5: रात को 3 से 4 बजे के करीब ये सामने वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ये गिरा है। यहां पे अब जाने के लिए भी लोगों के लिए रास्ता नहीं रहा।
1: चारों तरफ पानी ही पानी, नदी उफान पर और बीच में फंसे सैकड़ों लोग। जान जोखिम में डालकर पुलिस और राहत दल लोगों तक पहुंचे और उन्हें सुरक्षित जगहों पर लेकर गए। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर की हैं, जहां लगातार बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। भारी बारिश के बाद मेंढर, अड़ी कस्बे और सगलैंड इलाके से गुजरने वाली नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। देखते ही देखते नदी नाले उफान पर आ गए और पानी निचले इलाकों में बने घरों और खेतों तक पहुंच गया। उत्तराखंड में भी बारिश लगातार मुश्किलें बढ़ा रही है। टिहरी गढ़वाल में तीसरे दिन भी बारिश का सिलसिला जारी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से टिहरी झील का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। झील और नदी किनारे रहने वाले लोगों में डर का माहौल है। उधर बद्रीनाथ धाम में भी लगातार तीसरे दिन बारिश जारी है। बारिश का असर अब अलकनंदा नदी पर साफ दिखाई दे रहा है। नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और तेज बहाव लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। रुद्रप्रयाग में बारिश ने चार धाम यात्रा की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर खांखरा के पास पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरक गया। भारी बोल्डर सड़क पर गिरने से हाईवे बंद हो गया। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई और यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। बारिश के मौसम में पहाड़ों की यात्रा एक बार फिर चुनौती बन गई है। तबाही की ये तस्वीरें नेशनल हाईवे 10 की हैं। ये वही हाईवे है जो सिक्किम की लाइफलाइन है, बंगाल के सिलीगुड़ी से शुरू होकर गंगटोक तक जाता है। लेकिन मानसून की बारिश के चलते हुए भूस्खलन से हाईवे प्रभावित है। पहाड़ों पर बारिश अभी थमी नहीं है, नदियां अब भी उफान पर हैं और पहाड़ों पर मानसून राहत नहीं, आफत बनकर बरस रहा है। वही हालत मैदानी इलाकों की भी है। ये सड़क नहीं सैलाब है, चारों तरफ सिर्फ पानी। घरों की पहली मंजिल तक बाढ़ और छतों बालकनियों पर खड़े लोग, जिन्हें इंतजार है कि कब पानी कम हो तो घर से बाहर निकलें। ये तस्वीरें गुजरात के सूरत की हैं, जहां ताप्ती नदी के किनारे बसा आधुनिक शहर कुछ घंटों में पानी में तैरता नजर आया। कई इलाकों में हालात इतने खराब हो गए कि सड़कों पर गाड़ियों की जगह एनडीआरएफ की नावें उतर गईं। राहत बचाव दल ने नावों के जरिए घरों में फंसे लोगों तक पहुंचकर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया।
6: अभी एक महीना दो महीने भी नहीं हुआ बनाया हुआ, अब टूट गया। पानी का इतना बहाव था ना, रोड भी नहीं रहा। अब तो
7: फोर व्हीलर की बात छोड़िए, एक ट्रक नहीं आ सकता, इतना मूंड बराबर पानी उधर रोड पर भरा हुआ, मेन रोड पे। और वहाँ जो दुकानें हैं तो उनके चावल, उनके सारे सामान पूरे डूब चुके हैं।
1: जहां नाव नहीं पहुंच सकी, वहां जेसीबी राहत का सबसे बड़ा सहारा बने। रस्सियों के सहारे बालकनी तक राहत सामग्री पहुंचाई गई। उधर सूरत का एक बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बाढ़ के पानी में डूब गया।
8: एक 200 दुकान अंदर घर का हो चुकी है, तो समझ लो कि एक दुकान में किसी का 1 करोड़ का माल था, किसी का 50 लाख का था। आप एवरेज भी लगाओगे तो 200 से 250 करोड़ का नुकसान है।
9: दुकान के अंदर से 2 रुपया भी नहीं निकल पे, गाड़ी भी पार्किंग में पड़ा है अंदर पूरे। आप अंदर जाके चेक करो, 200 दुकान है, सब सामान तो 10 रुपया भी, कोई गाड़ी का चाबी भी कोई नहीं निकल पाई, ऐसा हालत हो गया। आधा घंटे में पानी पूरा भर गया।
1: ये सिर्फ लैंडस्लाइड नहीं बल्कि कुछ ही सेकंड में आई तबाही है। पहाड़ से मिट्टी, पत्थर और मलबे का सैलाब नीचे उतरता है और रास्ते में जो भी आता है उसे अपने साथ बहा ले जाता है। सड़क पर खड़ा भारी भरकम टैंकर भी इस मलबे के सामने खिलौना बन जाता है। ये खौफनाक सीसीटीवी तस्वीरें केरल के वायनाड की हैं। वायनाड की एक निर्माणाधीन साइट पर भारी बारिश के बाद अचानक लैंडस्लाइड हुई। देखते ही देखते मिट्टी और मलबे का तेज बहाव सड़क तक पहुंच गया। वहां मौजूद लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। कई लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागे, लेकिन मलबे की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो उन्हें अपनी चपेट में लेता चला गया। सीसीटीवी में दिख रहा है कि भारी टैंकर कई सौ मीटर तक बह गया। जहां तक नजर जाएगी वहां सिर्फ मगरमच्छ ही मगरमच्छ दिखाई देंगे। एक दो नहीं, दस नहीं, बल्कि दर्जनों मगरमच्छ एक साथ नदी किनारे नजर आ रहे हैं। ऐसा नजारा कम ही देखने को मिलता है। ये तस्वीरें गुजरात के वडोदरा की हैं, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। वडोदरा के पादरा तालुका के कोटवाड़ा गांव के पास बहने वाली विश्वामित्री नदी में मगरमच्छों का बड़ा झुंड दिखाई दिया है। मॉनसून के दौरान नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ बड़ी संख्या में मगरमच्छ किनारे आ गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि बारिश के मौसम में मगरमच्छों की गतिविधियां बढ़ जाती हैं, इसीलिए जरा सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है।
0: गुरुग्राम, मुंबई, सूरत, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में हर मॉनसून के दौरान जल भराव अब आम तस्वीर बन चुकी है, लेकिन इस जल भराव की जिम्मेदार पूरी तरह से बारिश है ये कहना गलत है। दरअसल शहरी बाढ़ को प्राकृतिक नहीं बल्कि इंसानी गलतियों से पैदा हुई एक आपदा माना जा सकता है, और बहुत हद तक इस समस्या की जड़ में शहरों की प्लानिंग भी छिपी हुई।
1: दुनिया के बड़े से बड़े शहर क्यों बारिश के आगे छोटे साबित हो रहे हैं? परफेक्ट प्लानिंग के लिए मशहूर देशों की प्लानिंग फेल क्यों हो रही है? चीन में तबाही की भयानक तस्वीरें क्या बता रही हैं? अनियोजित प्लानिंग का नतीजा या कुदरत का क्रोध? भारत के मेट्रोपॉलिटन शहर बाढ़ के आगे बेबस क्यों हो रहे हैं? दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम, सूरत जैसे बड़े नाम सैलाब के आगे मजबूर क्यों हैं? क्या सिर्फ भारी बारिश ही शहरी बाढ़ की वजह है? शहरों में बढ़ती बाढ़ को केवल बेलगाम शहरीकरण या सिर्फ कुदरत का कहर कहकर समझा नहीं जा सकता। सच ये है कि आज की अर्बन फ्लडिंग इन दोनों का मिला जुला नतीजा है। भारत में अनियोजित निर्माण, नालों पर अतिक्रमण, कंक्रीट का बढ़ता जंगल और कमजोर ड्रेनेज व्यवस्था बारिश के पानी को निकलने नहीं देते, इसलिए थोड़ी देर की तेज बारिश भी शहरों को डुबो देती है। लेकिन दूसरी ओर चीन जैसे अपेक्षाकृत बेहतर नियोजित देश के शहर भी हाल के वर्षों में बार बार जलमग्न हुए हैं। दुनिया के सबसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कई चीनी शहर भी बार बार जलमग्न क्यों हो जाते हैं? दरअसल जब बारिश की तीव्रता किसी भी शहर के डिजाइन मानकों और ड्रेनेज क्षमता से अधिक हो जाती है तो आधुनिक बुनियादी ढांचा भी जवाब दे देता है। यानी आज की अर्बन फ्लडिंग केवल विकास की अव्यवस्था की कहानी नहीं बल्कि बदलती जलवायु और पुराने शहरी ढांचे के बीच बढ़ते असंतुलन की भी कहानी है। चलिए थोड़ा विस्तार से समझते हैं। दरअसल बाढ़ तीन तरीके की होती है। पहली, फ्लूवियल, जब भारी बारिश या बर्फ पिघलने से नदियां, झीले या नाले अपने किनारों से बाहर बहने लगते हैं और आसपास के इलाकों में पानी भर जाता है। फ्लूवियल, जब बहुत कम समय में तेज बारिश होती है और पानी निकलने की व्यवस्था जवाब दे देती है। इसके दो रूप, तटीय बाढ़, चक्रवात, तूफान या सुनामी के दौरान समुद्र का पानी तटीय इलाकों में घुस जाता है। शहरी बाढ़ फ्लूवियल फ्लडिंग की श्रेणी में आती है। इसके भी दो हिस्से होते हैं, सरफेस वाटर फ्लड, जिसमें नालियां और ड्रेनेज सिस्टम पानी निकाल नहीं पाते जिससे सड़कों और इमारतों में जल भराव हो जाता है। दूसरा, फ्लैश फ्लड, जब बादल फटने या बांध टूटने जैसी घटनाओं से अचानक तेज रफ्तार में आने वाली बाढ़ सबसे ज्यादा जानलेवा होती है। सबसे पहले इन आंकड़ों पर ध्यान दीजिए कि कैसे शहरी निर्माण बढ़ने से प्राकृतिक इलाके खत्म होते जा रहे हैं। बेंगलुरु में 1973 से 2010 के बीच पक्के निर्माण वाला क्षेत्र 632% बढ़ा, जबकि वहां के कुदरती जलाशय 79% घट गए। चेन्नई में पल्लीकरनई दलदल 2011 तक अपने मूल क्षेत्र के सिर्फ 12% तक सिमट गया। मुंबई में मैंग्रोव और तटीय वेटलैंड खत्म होने से समुद्र में पानी की निकासी क्षमता घट गई। हैदराबाद में झीलों और प्राकृतिक नालों पर अतिक्रमण से हर साल जल भराव होने लगा। कोलकाता में वेटलैंड और ऐतिहासिक नहरों पर रियल एस्टेट का दबाव बढ़ने लगा। हर केस में एक बात कॉमन है, वो पानी जिसे पहले मिट्टी सोख लिया करती थी वो अब पक्के निर्माण में तेजी से बह जाता है, जो ड्रेनेज सिस्टम के बस की भी बाहर की बात हो जाती है। दरअसल भारत के अधिकांश शहर प्लूवियल फ्लडिंग से प्रभावित होते हैं, यानी इतनी तेज बारिश होती है कि सड़कें और ड्रेनेज सिस्टम पानी निकाल ही नहीं पाते। पहले शहरों में तालाब, झीलें, दलदली क्षेत्र और बाढ़ के मैदान एक प्राकृतिक स्पंज की तरह काम करते थे। ये बारिश के पानी को धीरे धीरे जमीन में पहुंचाते थे, लेकिन तेज शहरीकरण और विकास ने इन प्राकृतिक पानी के निकायों को खत्म कर दिया।
10: आज की डेट में क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसकी वजह से ये नहीं पता लगता है कब कितनी बारिश आ जाएगी, क्योंकि जिस बारिश के लिए आप आज की डेट में डिजाइन करोगे कल बारिश का पता नहीं कि उतनी आएगी और उससे ज्यादा आएगी। जब एकदम से बारिश आती है तो सारा का सारा पानी बाहर रोड के ऊपर आ जाता है और डिस्पोज ऑफ भी नहीं होता है। तो सबसे पहले तो आपको प्लान ग्रोथ करनी पड़ेगी सिटीज की, और आपका ड्रेनेज सिस्टम को अच्छी तरह से डिजाइन करना पड़ेगा और उसको मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मेंटेन नहीं करेंगे तो उसका फायदा नहीं होगा।
1: शहरों में बाढ़ कितनी गंभीर होगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि शहर की योजना कैसे बनाई गई है। अनियोजित विकास ने जमीन की पानी सोखने की क्षमता खत्म कर दी, ड्रेनेज सिस्टम फेल हो जाते हैं। इसका भी एक बड़ा कारण है, अधिकांश शहरों का ड्रेनेज सिस्टम अंग्रेजों के समय का बना हुआ है। इसे आज की आबादी और कंक्रीट वाले शहरों के हिसाब से कभी अपग्रेड ही नहीं किया गया। गाद, कूड़ा और मलबा नालों को जाम कर देता है। ऊपर से कम समय में ज्यादा बारिश होने से समस्या और बढ़ गई है। शहरी बाढ़ का कारण सरकारी व्यवस्थाएं भी है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सामंजस्य की कमी है। सड़कें पहले बन जाती हैं, सीवर लाइनें बाद में बिछती हैं, यानी बनी बनाई सड़क को तोड़ दिया जाता है। जल निकासी, नगर निगम, विकास प्राधिकरण, जल बोर्ड, आपदा प्रबंधन जैसे कई एजेंसियां अलग अलग काम करती हैं। ड्रेनेज सुधार, भूमि का इस्तेमाल और पर्यावरण संरक्षण को साथ जोड़कर योजना नहीं बनाई जाती।
10: अर्बन फ्लडिंग के कारण क्या क्या हो सकते हैं, ये तो आज की डेट में बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मेजर जो कारण है उसमें सबसे पहला कारण तो है अनप्लान्ड ग्रोथ ऑफ द सिटीज, क्योंकि आज की डेट में इंडिया में जितने भी सिटीज हो रहे हैं उनकी प्रॉपरली कोई प्लानिंग नहीं होती, एक्सटर्नल डेवलपमेंट नहीं होता, ड्रेनेज सिस्टम वर्कआउट किया हुआ नहीं होता, पानी का डिस्पोजल कोई सिस्टम वर्कआउट नहीं किया होता, ना ही कोई बीच में वाटर बॉडीज हैं जहाँ पर पानी को डिस्पोज ऑफ किया जा सके और उनका प्रॉपरली यूटिलाइज किया जा सके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी लागू ना करना एक बहुत बड़ा कारण है।
1: खर्च की प्राथमिकताएं भी अलग अलग है। शहर फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे और मेट्रो जैसी दिखने वाली परियोजनाओं पर ज्यादा खर्च करते हैं, जबकि नालों की सफाई और ड्रेनेज सुधार जैसे जरूरी लेकिन कम दिखाई देने वाले कामों पर कम ध्यान दिया जाता है। कई जगह नालों की सफाई बाढ़ आने के बाद शुरू होती है, पहले नहीं।
0: अर्बन फ्लडिंग यानी शहरी बाढ़ का समाधान क्या हो सकता है, किस तरह की प्लानिंग की जाए कि शहरों को हर साल होने वाली इस समस्या से निजात मिल सके। दरअसल इलाज कामयाब तभी होता है जब मर्ज का सही कारण पता लगे, लेकिन जब तैयारियों में ही कमी हो तो फिर इलाज कैसे हो। कई बातें ऐसी भी सामने आती हैं कि अक्सर कई शहरों के पास मोहल्ला स्तर के फ्लड मैप नहीं होते, स्थानीय वर्षा का पर्याप्त रिकॉर्ड नहीं होता, ड्रेनेज नेटवर्क का डिजिटल डेटा अधूरा होता है। यही कारण है कि बाढ़ का सही अनुमान लगाना भी मुश्किल हो जाता है।
1: जिस रफ्तार से भारत में विकास के लिए निर्माण कार्य हो रहे हैं उससे ये तो तय है कि आने वाले वर्षों में करोड़ों लोग शहरों में बसेंगे, यानी झीलें, दलदल और फ्लड प्लेन्स कंक्रीट में बदलते रहेंगे। ऐसे में शहरी बाढ़ का खतरा लगातार बना रहेगा। भारत के शहरों का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वो प्रकृति के साथ विकास करते हैं या उसके खिलाफ। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अर्बन फ्लडिंग से शहरों को कैसे बचाया जा सकता है। सबसे पहले तो प्राकृतिक जल स्रोतों को बचाना होगा, तालाब, झील, वेटलैंड्स और शहरी जंगलों को बचाना होगा, ताकि बारिश का पानी जमीन में समाए न कि पक्के निर्माण से बह जाए। लोगों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर जागरूक करना होगा। घरों और इमारतों की छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक लगाए जाए। ऐसा होने से सड़कों पर जमा होने वाला पानी काफी कम हो सकता है। नालों की क्षमता बढ़ानी होगी, उनकी नियमित सफाई करनी होगी और उनको चौड़ा करना होगा, ताकि वो ज्यादा पानी तेजी से निकाल सके।
10: सिस्टम को अच्छे से डिजाइन किया जाए, सिस्टम को दुरुस्त किया जाए, उसको प्रॉपरली डिस्पोजल किया जाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपल्सरीली लागू किया जाए और बरसात का सीजन आने से पहले उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया जाए, जिसकी वजह से आपका फ्लडिंग कम से कम हो। क्योंकि आज की डेट में क्या हो रहा है कि बरसात आने से बाद में देखते हैं कि फ्लडिंग हो गया, उसके पहले उसको मेंटेन ही नहीं किया जाता किसी भी सिस्टम को, ना ही उसका कोई डिस्पोजल किया जाता है।
1: कॉलोनियों और पार्कों में छोटे छोटे जल रोकने वाले वाटर शेड भी एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। ये बारिश का पानी रोकेंगे, भूजल बढ़ाएंगे और बाढ़ का खतरा भी कम करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि बारिश के पानी का उपयोग किया जाए, जमा किया गया पानी पीने योग्य बनाने के बाद दूसरे जरूरी कामों में प्रयोग में लाया जाए।
0: वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद बड़े शहरों में थोड़ी सी आंधी बारिश से क्यों गिर जाते हैं बड़े बड़े पेड़, बस इस ब्रेक के बाद देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
13: दिस इज द साउंड ऑफ लूसी स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ हर स्पेंडिंग। You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
14: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
15: Diehard music fan? Qello Concerts brings you thousands of full-length concert films and behind-the-scenes music documentaries. From today's icons to yesterday's legends, we have it all. Qello Concerts by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
4: वी आर ओवर जिमी।
5: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
6: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
7: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
10: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
11: जय हिंद फ्रेंड्स। ईसाइत, सोना, मसाला या विस्तार, 1498 में क्या थी वास्को डिगामा की मंशा? मधुमक्खी जैसे गोरे जो शहद लेकर आ रहे थे, भारत को डंक मारना शुरू कर दिया और बेवकूफ राजाओं का फायदा उठाकर इस देश को गुलाम बना दिया। लेकिन मीर जाफर और मीर कासिम ने अगर सर झुकाया तो रानी लक्ष्मीबाई ने सर उठाया और गोरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कैसी थी लड़ाई, कौन थे इसके महानायक? तलवारें चली या भजन चला? अगर बचपन में नहीं समझ में आया, नोटबुक निकाल लीजिए। मैं अवध ओझा जल लेकर आ रहा हूं मास्टर जी इन द न्यूज रूम, सिर्फ ललन टॉप पर।
12: वो हॉस्पिटल है, तकरीबन 470 जो पेशेंट थे पाकिस्तानी बॉम्बिंग में मारे गए। जो वो पेशेंट्स थे उनके रहने की जो व्यवस्था वहां पे थी, पूरे कंपाउंड में जो है प्लान्ड बॉम्बिंग हुई और कोई यहाँ का कोना हिस्सा नहीं है जो बचा। सब कुछ तबाह हो गया। मीर फरीद, काबुल आज तक।

हॉर्मुज रूट को लेकर फिर ऐसा तनाव भड़का कि ईरान के कई शहर, कई सैन्य ठिकाने अमेरिका के टारगेट पर आ गए। ईरान के 140 ठिकानों पर अमेरिका ने भीषण हमले किए। अमेरिका ने ईरान के मिसाइल अड्डों पर हमला किया, ईरान के ड्रोन अड्डों को तबाह किया, ईरानी गोला बारूद भंडार को निशाने पर लिया, ईरान के संचार नेटवर्क पर मिसाइलें बरसाईं, साथ ही तटीय निगरानी केंद्रों को भी टारगेट पर लिया। यानी हॉर्मुज रूट पर जहाज पर हुए IRGC के हमले के बाद अब अमेरिका की ओर से ये सबसे बड़ा प्रहार किया गया है, जिसका सीधा मकसद हॉर्मुज पर ईरान के दबदबे को कमजोर करना है, और अमेरिका ने इस कोशिश में भारी बम बारूद बरसाना शुरू कर दिया है। क्योंकि ईरान पर हुए ताजा हमले के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड की ओर से दावा किया गया कि पिछले 3 दिनों में ईरान के 300 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं, ताकि हॉर्मुज रूट पर व्यापारिक जहाजों पर ईरान की क्षमता को कमजोर किया जा सके। साथ ही अमेरिकी सेना ने यह दावा भी किया कि अब तक उसने 800 से ज्यादा व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट पार कराने में मदद की है, जिनमें करीब 40 करोड़ बैरल तेल ले जा रहे जहाज भी शामिल थे। उधर अमेरिका के इस बड़े और ताजा हमलों ने ईरान का गुस्सा भी भड़का दिया। ईरान की ओर से मध्य पूर्व के कई देशों में अमेरिका सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसने कतर स्थित अल उदीद एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इस हमले में लड़ाकू विमानों के मेंटेनेंस और रिपेयर सेंटर के साथ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी निशाना बनाया गया। साथ ही दावा ओमान के दुख्म पोर्ट पर भी हमले का है। IRGC की ओर से कहा गया कि अमेरिकी विमान वाहक पोतों में इस्तेमाल होने वाले लॉजिस्टिक सपोर्ट सेंटर और ईंधन भरने वाले प्लेटफॉर्म पर बड़ा हमला किया गया और इस अमेरिकी ठिकाने को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। जाहिर है कि जिस ताकत से अमेरिका ने हमला किया, ईरान का जवाब वैसा ही खतरनाक रहा। इस तनाव के बीच सवाल उठ रहा है कि क्या हॉर्मुज को लेकर फिर छिड़ती जंग के बीच फिर से रूट पूरी तरह से ब्लॉक होगा? क्या एक बार फिर दुनिया के सामने तेल गैस का संकट खड़ा होगा? क्योंकि ईरान का रुख साफ है कि वो किसी भी कीमत पर हॉर्मुज पर अपने अधिकार को कम करने को तैयार नहीं। ईरान की ओर से साफ कहा है कि हॉर्मुज पर उसका नियंत्रण जारी रहेगा। उधर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के साफ संकेत ईरान के शीर्ष वार्ताकार और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ की सोशल मीडिया पोस्ट में भी दिखा। उन्होंने लिखा कि एक तरफा समझौतों का दौर खत्म हो चुका है, हमने पहले ही कहा था, या तो अपना वादा निभाइए या फिर इसकी कीमत चुकाइए। अब हकीकत सामने है। साफ है कि मध्य पूर्व में जंग अब नए मोड़ पर पहुंचती जा रही है। अमेरिका के हमले और ईरान के जवाब के बाद स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

में ही हाथ आजमाते दिख रहे हैं कांग्रेसी प्रदेश अध्यक्ष। आज वर्डिंग को हटाने पर अड़ा चन्नी गुट रंधावा ने बताया कॉम्प्रोमाइज लीडर, आपात आला कमान के दरबार पहुंचा झगड़ा। उमर के ऑपरेशन लोटस वाले बैन पर बौखलाई बीजेपी, कहा दो सबूत ये मांगो माफी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने लगाया था आरोप, हमारे विधायकों को खरीदने की हो रही साजिश। बीजेपी ने प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के गिनाए 10 फायदे, कहा इंडो पैसिफिक में भारत बनी बड़ा ताकत बनी और वैश्विक साझेदारियों को मिली नई मजबूती, कांग्रेस ने किया कटाक्ष। ट्विशा केस में एम्स ने सीबीआई को सौंपी दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सूत्रों से खबर। फंदे के लिए इस्तेमाल बेल्ट पर मिले स्किन टिश्यू, चोट के निशान से हुए मैच। अमेरिकी हमलों की नई किश्त के बीच दुनिया के सामने आएंगे मुज्तबा खामेनेई, मंगलवार की सभा में करेंगे शिरकत, अटैक में मारे गए लोगों को देंगे श्रद्धांजलि। यूएस की तरफ से भयानक बमबारी जारी।

0: दुनिया के कई शहरों ने साबित किया है कि सही प्लानिंग, आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम और प्राकृतिक जलाशयों को बचाकर अर्बन फ्लडिंग पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। भारत में भी कुछ शहरों ने ऐसे प्रयोग शुरू किए हैं जिनके नतीजे उम्मीद जगाते हैं, और सवाल यही है कि क्या बाकी शहर इन सफल मॉडल से सबक लेंगे या हर मॉनसून में डूबने की नई कहानी लिखते रहेंगे। कौन से हैं भारत के ये शहर और उन्होंने बाढ़ से बचने के क्या तरीके अपनाए हैं, आइए जानते हैं।
1: अब सवाल यह है कि क्या हमारे सामने देश में ऐसे कोई उदाहरण हैं जहां शहरी बाढ़ से बचाव किया गया है? तो इसका जवाब है हाँ। देश में स्पंज सिटी का सबसे अच्छा उदाहरण है कोलकाता। ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स प्राकृतिक रूप से शहर के सीवेज का बड़ा हिस्सा साफ करती हैं। यही पानी मछली पालन और सब्जी की खेती में भी उपयोग होता है, यानी एक ही व्यवस्था बाढ़ नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण और आजीविका तीनों का समाधान देती है। महाराष्ट्र के नाग दरवाड़ी की सफलता भी छोटी नहीं है। ये छोटा सा गांव रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जल विहीन से जल संपन्न बन गया है। बेंगलुरु में वाटर टेबल के स्तर को बढ़ाने के लिए 150 झीलों के जीर्णोद्धार का एक बड़ा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। बेंगलुरु विकास प्राधिकरण ने जून 2020 में बेलंदूर और वर्थुर झीलों में गाद निकालने का काम शुरू किया था। बेंगलोर जल उपचार और सीवरेज बोर्ड 26 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाने पर काम कर रहा है। इसके अलावा विदेशों में भी कई प्रयोग हुए हैं जो अपने आप में एक मिसाल है। हांगकांग ने मौजूदा नालियों को अपग्रेड किया है। 1,00,000 क्यूबिक मीटर की क्षमता वाले भूमिगत टैंक्स बनाए हैं जो बारिश के पानी को स्टोर करते हैं। चीन स्पंज सिटी कार्यक्रम लागू करने वाला है। सिंगापुर में बाढ़ की निगरानी के लिए सेंसर का उपयोग किया जा रहा है। दरअसल अर्बन फ्लडिंग कोई प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि गलत शहरी प्लानिंग का नतीजा है। अगर शहरों को सिर्फ कंक्रीट का जंगल बनाने के बजाय पानी के प्राकृतिक रास्तों के साथ विकसित किया जाए तो हर मानसून में डूबते शहरों की तस्वीर बदली जा सकती है। सवाल ये नहीं कि बारिश कितनी होगी बल्कि ये है कि शहर उस बारिश के लिए कितने तैयार हैं, क्योंकि आने वाले समय में सबसे स्मार्ट शहर वही होगा जो पानी को निकालने का नहीं पानी के साथ जीने की कला सीखने का।
0: मुंबई में इस मॉनसून सिर्फ बारिश नहीं बल्कि खतरा बरस रहा है। मुंबई में आंधी तूफान में गिरते पेड़ लोगों की जान ले रहे हैं। सवाल सिर्फ मौसम का नहीं सिस्टम का भी है। क्या हादसे तेज हवाओं की वजह से हो रहे हैं या फिर लापरवाही की जड़ें ज्यादा गहरी? मुंबई में रोजाना पेड़ गिर रहे हैं और अब तक कई लोगों की मौत तक हो चुकी है।

0: मुंबई सपनों का शहर, लेकिन इस वक्त इस शहर में सबसे बड़ा डर पानी नहीं, पेड़ है। जी हाँ, जो पेड़ जिंदगी देते हैं वही अब जान ले रहे हैं। बारिश शुरू हुई नहीं कि मुंबई में पेड़ गिरने का सिलसिला भी शुरू हो गया। हालात ऐसे हैं कि लोग जल भराव से नहीं, गिरते पेड़ों से डर रहे हैं।
1: हमारा मैनेजर ने 8 दिन पहले कंप्लेंट किया था, बीएमसी वाला आया, वो कंप्लेंट लिख के अपना इसका और आम का पेड़ का वो लिख के लेके गया। उसके बाद में वो लोग कुछ आया नहीं। अभी 4 गाड़ी को नुकसान हो गया है। मैं 10 गाड़ी को पहले निकाल चुका था क्योंकि मैं इधर ही खड़ा था, फिर मैं खाना खाने गया, फिर 2 गाड़ी लग गया, फिर वो हो गया उन लोगों का काम।
2: कल ही गए, अभी ऑफिस जा रहे थे, जस्ट रिसेंटली आए अंधेरी स्टेशन जाने के लिए, जस्ट अभी तुरंत झाड़ गिरा हुआ है।
3: अचानक से उन्हीं के सर के
2: ऊपर से गिरा, 2 लोग साथ में थे बट एक कलीग के ऊपर झाड़ गिरा, तो उसको अभी हॉस्पिटल लेके गए।
0: ऑफिस जाने वाले लोग हों, स्कूल का बच्चा हो या सड़क किनारे खड़ा कोई राहगीर, किसी को नहीं पता कि अगला पेड़ कब, कहां और किसके ऊपर गिर जाएगा।
3: अचानक से ये देखिए, एक पेड़ का जो वो वाला हिस्सा है वो अचानक से, दरअसल तेज बारिश हो रही थी, हवा भी बहुत तेज चल रही थी और अचानक से जो शक 3 लोग हैं ये जा रहे थे, अचानक से उनके ऊपर ये पेड़ गिर गया, उनके ठीक सर पे लिखा लगा और तुरंत वो बेहोश हो गए और उन्हें अब पुलिस जो है यहाँ पे, उन्होंने तुरंत से अपनी गाड़ी निकाली और उनको अस्पताल की तरफ लेके गए हैं।
0: सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि मुंबई में पेड़ों की देखभाल की जिम्मेदारी भी उसी बीएमसी के पास है जो देश की सबसे अमीर नगर निगम कहलाती है।
4: मॉर्निंग में 10 बजे तक आंधी आई, बहुत जोर की आंधी और बारिश दोनों आई, तो ये पेड़ के एक बीच की फांदी थी जो कि बहुत ही मजबूत फांदी थी और अंकल जी जो क्या नाम था उनका, यूनिस भाई, वो बाइक से आए और दुकान का सामान रखने के लिए सेटर वेटर वो बाइक से उतर ही रहे थे और फांदी डायरेक्ट उनके मुंह पे जाके गिरी और मुंह पे गिरने के वजह से वो डायरेक्ट नीचे जमीन पे गिर गए और तुरंत फिर हमने उठाया गया उनको, रिक्शे में डाला गया, वो सिटी में गए तो सिटी वाला मना कर दिया, तो फिर फौजिया में लेके गए, फौजिया में लेके जाने पे उनको मृत घोषित, हाँ घोषित कर दिया गया मृत।
5: फोन आया बोला ऐसा हादसा हुआ है, तो जब मेरे को पता चला कि फौजिया में लेके गए उसकी बॉडी, अपनी जगह पे ही खत्म हो गए थे।
0: अगर बारिश से पहले कमजोर पेड़ों की पहचान हो जाती, अगर समय पर छटाई हो जाती तो खतरे वाले पेड़ों को सुरक्षित किया जा सकता था। माटुंगा हो, अंधेरी हो, कुरला हो या गोरेगांव, हर इलाके में पेड़ गिर रहे हैं। अंधेरी सबवे में पेड़ का बड़ा हिस्सा एक शख्स पर गिर गया और वो अस्पताल पहुंच गया। मुंबई में 1 जुलाई से अब तक 1696 पेड़ गिर चुके हैं, यानी हर दिन औसतन 212 पेड़, सिर्फ एक हफ्ते में 3 लोगों की मौत। अब सवाल है, आखिर बारिश के मौसम में पेड़ इतने क्यों गिर रहे हैं? क्या सिर्फ बारिश इसकी वजह है? आखिर जिम्मेदार कौन है?
6: मैं पत्रकार हूं।

0: आफत ने ऐसी तबाही मचाई कि लोग संभल नहीं पाए। जिन रास्तों पर कुछ देर पहले आवाजाही हो रही थी, वहां सिर्फ मलबा और तेज बहता पानी दिखाई दे रहा था। पानी अपने साथ जो भी रास्ते में मिला उसे बहा कर ले गया। सड़कें टूट गईं, पुल बह गए, गाड़ियां खिलौनों की तरह नदी में समा गईं, कई जगह बिजली के खंभे गिर गए और खेत, दुकानें और मकान देखते ही देखते मलबे में बदल गए। लोगों के पास अपनी जान बचाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। नदी किनारे बने बड़े बड़े मकान कुछ ही मिनटों में ढह गए। जम्मू कश्मीर के डोडा की ये तस्वीरें देखी। दो दिन पहले यहाँ बादल फटने के बाद अचानक नदी का जलस्तर कई गुना बढ़ गया। पानी इतनी तेजी से आया कि लोगों को संभलने या सुरक्षित जगह पहुंचने का मौका नहीं मिला। देखते ही देखते पूरा इलाका बाढ़ और मलबे की चपेट में आ गया।
1: रात को कोई 12 एक बजे के दरमियान आया ऊपर से फ्लड, और हम उठे, जब ज्यादा बारिश आई तो हम उठे, तो उस हमारा हमसाई उस तरफ उधर से उतरे हम रोड में, और पूरी रात हमने रोड में काटी है। ये पहले खाली मेरा नहीं, जितनी बस्ती में नुकसान हुआ है मकानों का, इनकी भरपाई होनी चाहिए, इनकी मदद होनी चाहिए। बस
2: हमें बिजली नहीं है, कल से पूरे बाजार में बिजली चल रही है, क्योंकि उस जगह पे साइडों पे कोई नुकसान बिजली को हुआ ही नहीं है, उधर ही ठीक कर रहे हैं। जहाँ पे नुकसान हुआ उधर कोई ठीक कर ही नहीं रहा। इधर पानी का नुकसान हुआ, सारी पाइपें आप दिखा दीजिए, पाइपें पूरी डैमेज हुई हैं, इनको कोई ठीक नहीं कर रहा है जहाँ से पानी चल रहा है।
3: अपर रीचेज में मोस्ट ऑफली क्लाउड बर्स्ट की वजह से हैवी वॉल्यूम में जो डेब्रिस बोल्डर्स वगैरह आए हैं, तो वो सारा मलबा जो हमारे ठाठी मार्केट में, ये पूरा लगभग आधे किलोमीटर के स्ट्रेच में ये पूरा मलबा फैला हुआ है।
0: लेकिन आखिर बादल फटने की घटना होती क्या है, और जब बादल फटता है तो कुछ ही मिनटों में इतनी बड़ी तबाही कैसे आ जाती है? जब किसी छोटे से इलाके में बहुत कम समय के भीतर बेहद तेज बारिश होती है तो उसे क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटना कहा जाता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक कुछ ही मिनटों में इतनी ज्यादा बारिश हो जाती है कि जमीन उस पानी को सोख नहीं पाती। नतीजा ये होता है कि पानी तेज रफ्तार से नीचे की ओर बहता है और अपने साथ मिट्टी, पत्थर, पेड़ और मलबा भी ले आता है। यही वजह है कि अचानक बाढ़ और भारी तबाही देखने को मिलती है।
4: बस जो है एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है जो कि मासेस में यूज होती है, और मीटरोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में बात करें उसको हम लोग बोलते हैं हाई इंटेंसिटी रेनफॉल। दैट मीन्स कि एक घंटे में कितनी बारिश हुई है, और उसके लिए जो है मानक जो तय किया गया है वो है 10 सेंटीमीटर बारिश यदि एक घंटे में हो जाती है, तो उस फिनोमेना को क्लाउड बर्स्ट कहते हैं।
0: जानकारों का मानना है कि पहले बादल फटने की घटनाएं ज्यादातर ऊंचे पहाड़ी इलाकों तक सीमित रहती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में संख्या बढ़ी है। अब ऐसे इलाके भी इसकी चपेट में आने लगे हैं जहां आबादी ज्यादा है और निर्माण भी बड़े पैमाने पर हुआ है। यही कारण है कि अब जान माल का नुकसान पहले की तुलना में कहीं ज्यादा हो रहा है। जब जमीन या बादलों के नीचे की गर्म और नम हवा तेजी से ऊपर उठती है तो वो गिरती हुई बारिश की बूंदों को भी अपने साथ ऊपर ले जाती है। इससे बारिश लगातार नीचे नहीं गिर पाती और बादलों के भीतर नई बूंदें बनती रहती हैं, जबकि पुरानी बूंदें भी ऊपर की ओर धकेली जाती हैं। नतीजतन बादलों में पानी की मात्रा लगातार बढ़ती जाती है। एक समय बाद बहुत कम समय में अत्यधिक बारिश हो जाती है, जिसे क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। क्लाउड बर्स्ट के परिणाम खतरनाक होते हैं। ये अपने साथ फ्लैश फ्लड, भूस्खलन, तेज बहने वाला मलबा और जमीन धंसने की घटनाएं लाते हैं। सवाल ये भी उठते हैं कि क्या क्लाउड बर्स्ट की भविष्यवाणी की जा सकती है? पहले से पता लगाया जा सके तो नुकसान से बचा जा सकता है, लेकिन क्या ये मुमकिन है? विशेषज्ञों का मानना है कि क्लाउड बर्स्ट बहुत कम समय में विकसित होने वाली स्थानीय घटना है, इसलिए इसकी सटीक भविष्यवाणी करना अभी बेहद कठिन है। इसके लिए बहुत हाई रेजोल्यूशन डॉपलर रेडार नेटवर्क की आवश्यकता होती है, जिसे स्थापित करना महंगा है। मौसम वैज्ञानिक केवल कुछ समय पहले ही उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जहां अत्यधिक वर्षा की आशंका बन रही है। सवाल यह भी है कि आखिर ऐसी घटनाएं बढ़ क्यों रही हैं? वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके पीछे

0: के कई वजह हैं, लेकिन कुछ कारण सबसे ज्यादा अहम माने जाते हैं। जलवायु परिवर्तन, जिससे मौसम का पैटर्न तेजी से बदल रहा है। बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। तेजी से बढ़ता शहरीकरण और कंक्रीट का फैलाव, जिससे स्थानीय तापमान बढ़ रहा है। जंगलों पर बढ़ता दबाव, खेती और निर्माण के लिए लगातार हो रहा अतिक्रमण।
1: यदि आपके पास अच्छे रडार हैं, जो उस एरिया में उस एरिया को कवर कर सकते हैं, सैटेलाइट पिक्चर आपको जो है ऊपर से बताएगी कि कहाँ काला घना बादल बना हुआ है, बादल बने वो बता दे, इंडिकेशन कर देगी। अब वो एग्जैक्ट लोकेशन उसकी कहाँ है और किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, उसकी हाइट कितनी है, वो सब पता चलता है हमें रेडार से। तो ये सब करने के लिए आपके पास बहुत कम समय होता है, और जब तक आप ये तय कर पाते हैं कि तो ये इस डायरेक्शन में, इस मतलब डिस्ट्रिक्ट में, इस ब्लॉक के ऊपर, इस पर्टिकुलर जगह पे गिरा सकता है पानी, तो आपके पास मात्र रह जाएंगे 10 या 15 मिनट।
0: जानकार मानते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं को पूरी तरह रोकना संभव नहीं है, लेकिन उनके असर को जरूर कम किया जा सकता है। अगर भविष्य में ऐसी तबाही से बचना है, तो विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना ही सबसे बड़ी जरूरत है।
2: हमारी इस पेशकश में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
5: दिस इज द साउंड ऑफ लूसी स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ हर स्पेंडिंग। यू सी, इवन दो शी इज बाइंग अ न्यू पेयर ऑफ जींस, शी नोज दैट इट फिट्स विदइन हर मंथली बजट बिकॉज़ वेल्स फार्गो विल सेंड एन अलर्ट इफ हर बैलेंस ड्रॉप्स बिलो हर सेट अमाउंट। यप, नथिंग गेट्स पास्ट लूसी और वेल्स फार्गो फॉर दैट मैटर। However you make money work, Wells Fargo can work with that.
6: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
7: If you love podcasts, you never want to be without your favorite shows. That's where TuneIn comes in. Here's a quick tip. You can listen anytime, even without the internet. Just open a podcast, tap the three dots next to an episode, and hit download. Simple as that. Now you're free to listen wherever you are. On a flight, underground, or totally offline. Your downloads are always waiting on your library page. From true crime to lifestyle to health and science, TuneIn makes it easy to take your podcasts anywhere. Sokudo.
8: We are over, Jimmy.
9: Hey, life mein scratches to aayenge. Gaadi ke scratches ko to Cosmo PPF samal lega. Aap apna dekh lo.

राम मंदिर के प्रांगण में मौजूद जिस कमरे में चढ़ावे की गिनती होती थी, वहां दो पालियों में काउंटिंग का काम होता था। दो शिफ्ट में अलग अलग स्टाफ थे, सभी की जिम्मेदारियां बटी हुई थी, सभी उसी हिसाब से अपनी भूमिका निभाते थे। उसी भूमिका में चढ़ावा चोरों का भी हिसाब किताब तय था। चढ़ावे की गिनती के लिए पहली शिफ्ट सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक होती थी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक थी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि चोरी की वारदात सिर्फ दूसरी शिफ्ट में ही हुई, यानी चढ़ावा चोरी की वारदात दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक की शिफ्ट में ही हुई। इससे एक बात यह भी साफ होता है कि चढ़ावा चोरी के सभी आरोपी उसी 2 से 9 वाली शिफ्ट में काम करते थे। दरअसल शाम की शिफ्ट में चोरी करना आरोपियों के लिए ज्यादा आसान था। काउंटिंग की दूसरी शिफ्ट में चढ़ावा चोरी का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने 4 आरोपियों अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे से कड़ी पूछताछ की। हाल ही में पुलिस ने रिमांड लेकर इनसे सवाल जवाब किए। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 40 दिन में 70 बार चोरी की गई। सबसे ज्यादा 50 से अधिक बार चोरी अविनाश शुक्ला ने ही की थी। वो एक दिन में 2 बार चढ़ावा चोरी करता था। खुलासा यह भी हुआ कि अनुकल्प मिश्रा और अविनाश शुक्ला हर बार चोरी में एक दूसरे की मदद करते थे। जिन 40 दिनों का रिकॉर्ड पुलिस ने खंगाला है, उसमें से 5 दिन ऐसे भी रहे जब एक ही दिन में चढ़ावा चोरों ने 3-3 बार चोरी की। पुलिस की जांच में यह सच सामने आने के बाद ही राम मंदिर ट्रस्ट ने चढ़ावे की गिनती अब सिर्फ एक ही शिफ्ट में करने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत अब सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चढ़ावे की गिनती शुरू कर दी गई है। इस फैसले के बाद काउंटिंग में लगे कुछ स्टाफ ने काम छोड़ दिया है। तमाम खुलासों के बीच अयोध्या पुलिस रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव से फिर पूछताछ की तैयारी में है। पुलिस ने दोनों की 7 दिनों की कस्टडी मांगी है। पुलिस की याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई की उम्मीद है। संतोष कुमार शर्मा, अयोध्या आज तक।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: listening to your favorite station just got even easier. With Google Assistant and TuneIn, your go-to station is just a voice away.
1: You're listening to CNBC.
2: This is 80s hits, exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
3: Keep it on smooth jazz.
4: This is Roots Reggae,
5: exclusively on TuneIn.
6: This is Classic Hip Hop,
7: exclusively on TuneIn.
0: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn, and you're instantly connected. The shows, music, and news you love, anytime you want.
8: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे. गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा. आप अपना देख लो.
9: प्रभु रामलला के भव्य मंदिर के रोड़े अटकाने में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की भूमिका दुनिया जानती है. ये केवल तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स के तहत अयोध्या धाम पर लगातार हमले कर रहे हैं. इन्हें प्रदेश जनता कभी माफ नहीं करेगी. हमारी सरकार का स्टैंड है. ट्रस्ट ने FIR कराई है और ट्रस्ट के ही कहने पर FIR हुई. सरकार निष्पक्ष जांच कर रही है और जो भी दोषी होगा उसे सजा अवश्य मिलेगी.
10: कब से चल रहा है, हो सकता है जो उजागर हुआ हो वो बहुत कम मात्रा पता पड़ी है, लेकिन पूरा और लोग तो कह रहे हैं जमीन जब खरीदी गई थी उससे बहुत अहितकर हुआ था. अब आरोप लगेंगे तो एक बार चोरी पकड़ी जाती है तो शक बहुत दूर तक जाता है. तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को इस तरह का बयान देना चाहिए. हालांकि बोलते बहुत कम है. मैं तो इतना कह रहा हूँ कि जो SIT की जांच है इससे कुछ निकलेगा नहीं. लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में अगर जांच होगी तो वह ऊपर तक नाम आएंगे. उसका जनता पर विश्वास दिलाकर खुद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि हम जांच को अंतिम छोर तक लेकर जाएंगे.
11: उन्होंने कहा था राम, उन्होंने कहा था किलेदार जी ने बंसी के लीडर में कि सिद्धि विनायक को धोके और वाप उठते थे खोके. अब ये मेरा नहीं बोलना, मैंने नहीं बोला है. ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसका दाखिला मैंने दिया है. अभी राम रक्षा तो मैंने बता दिया कि ये तमाम करोड़ों राम भक्तों की एक आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है. जो हुआ है उसकी जांच शुरू है और उसमें कोई भी नहीं छूटेगा. आपको पता है ते मोदी जी की भूमिका क्या है. ना मैं खाऊंगा ना मैं किसको खाने दूंगा. चोरी तो करने की दिली को मजदूर की बात है. इसलिए मोदी जी और योगी जी जिन्होंने इसमें गलत काम किया होगा उनको जेल में बिल्कुल जेल के सलाखों के पीछे अंदर डाल देंगे. ये विश्वास है. ये करोड़ों करोड़ों राम भक्तों का ये संवेदना का विषय है, ये श्रद्धा का विषय है.
12: देखो सिद्धि विनायक ट्रस्ट ये हमारे दिल के बहुत करीब है. ये मंदिर हमारे लोगों ने वहाँ इतना अच्छा काम किया है, गरीब लोगों को इतनी सहायता दी है. आपको मालूम है जाकर देखिए आप. और हमारे अभी भी वहाँ लोग है, वो अभी जो उनका नया न्यास बना है वो राम मंदिर ट्रस्ट जैसा है. लूटने वाले लोग बैठे, उनके चोरी को हम नियंत्रित कर रहे हैं आज भी. इसलिए उनका वो गुस्सा है इतना शिंदे का. हम उनको चोरी नहीं करने दे रहे सिद्धिविनायक मंदिर में.
0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर. पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक. एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com.

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: आपस में ही हाथ आजमाते दिख रहे हैं। कांग्रेसी प्रदेश अध्यक्ष अजय वडिंग को हटाने पर अड़ा चन्नी गुड रंधावा ने बताया कॉम्प्रोमाइज लीडर, आपात आलाकमान के दरबार पहुंचा झगड़ा। उमर के ऑपरेशन लोटस वाले बैन पर बौखलाई बीजेपी, कहा दो सबूत, ये मांगो माफी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने लगाया था आरोप, हमारे विधायकों को खरीदने की हो रही साजिश। बीजेपी ने प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के गिनाए 10 फायदे कहा, इंडो पैसिफिक में भारत बनी बड़ा ताकत बनी और वैश्विक साझेदारियों को मिली नई मजबूती, कांग्रेस ने किया कटाक्ष। ट्विशा केस में एम्स ने सीबीआई को सौंपी दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सूत्रों से खबर, फंदे के लिए इस्तेमाल बेल्ट पर मिले स्किन टिश्यू, चोट के निशान से हुए मैच। अमेरिकी हमलों की नई किश्त के बीच दुनिया के सामने आएंगे मुज्तबा खामिनई, मंगलवार की सभा में करेंगे शिरकत, अटैक में मारे गए लोगों को देंगे श्रद्धांजलि, यूएस की तरफ से भयानक बमबारी जारी।
1: आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम कहानियां विद शम्स। 24 साल की एक लड़की जो कानून की पढ़ाई पढ़ रही, LLB कर रही है, एक खबर आती है कि एक अदद सरकारी नौकरी पाने के लिए उसने अपनी मां का कत्ल कर दिया। इस बात पर ही यकीन करने को मन नहीं कर रहा, जिसने भी सुना उसी का, कि कैसे हो सकता है, जिस मां ने कोख से जन्म दिया, जिस मां की गोद में उसने पहली बार दुनिया देखी, आंखें खोली, उसी मां को वो अपने हाथों से कैसे मार सकती है। अभी ये सदमा और ये शक जो यकीन में बदलता, जिस पर यकीन भी नहीं हो रहा था, तभी दूसरी खबर आ जाती है 48 घंटे के अंदर कि इस बेटी ने अपनी मां को मारने से एक साल पहले अपने पिता का भी कत्ल किया था। यानी 24 साल की एक बेटी एक साल के अंदर पहले अपने बाप और फिर मां दोनों को मार डाल देती है। कैसे यकीन करे कोई, एक बेटी अपने मां बाप का कत्ल कर दे, किस लिए, एक अदद सरकारी नौकरी पाने के लिए और मां बाप की प्रॉपर्टी अपने नाम करने के लिए, और उम्र क्या 24 साल, मतलब सब कुछ सामने है पर यकीन करने का मन नहीं करता। आयुषी की कहानी चर्चा में, सुर्खियों में, इसलिए कि एक पढ़ी लिखी एक अमीर खानदान की लड़की और अपनी मां का कत्ल करती है, वो भी सुपारी देकर, 7 लाख रुपए का बजट रखती है मां के कत्ल के लिए, और अब खुलासा होता है कि उसने सिर्फ मां नहीं अपने बाप को भी मारा। पहले मैं आपको मिलाना चाहता हूं राकेश शर्मा से। राकेश शर्मा आयुषी के मामा है, यानी उस नीरज शर्मा के भाई जिनकी 3 जुलाई को आयुषी ने, जो उनकी मां थी, कत्ल किया था। वो क्या कह रहे हैं सुनिए इसके बाद आगे की कहानी।
2: पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे तो निश्चित रूप से ये बात सामने आएगी कि मेरे जीजाजी की मृत्यु में भी इन आयुषी और बलराम का 100% हाथ होगा।
1: तो एक मामा कह रहे हैं कि उनकी भांजी ने सिर्फ अपनी मां का नहीं बल्कि अपने बाप का भी कत्ल किया है। जयपुर की आयुषी, उसी की कहानी है ये। कहानी का पहला पार्ट तो ये था कि 3 जुलाई को जयपुर में एक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो जाती है। बाद में पता चलता है उनका नाम नीरज शर्मा है और वो लखनऊ हाईकोर्ट में LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क थी। लेकिन फिर जब मामा को शक होता और वो कहते हैं कि एक्सीडेंट की जांच कराओ, जब जांच होती है तो CCTV कैमरे और बाकी चीजों से पता चलता है कि एक रोड एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक प्लान मर्डर है। और उससे भी खौफनाक सच ये आता है कि यह मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि खुद एक बेटी ने कराया था। ये वही तस्वीर है नीरज शर्मा की, उस रोड एक्सीडेंट की, जिसमें एक तेज रफ्तार मोटर कार नीरज शर्मा को कुचलते हुए, उड़ाते हुए आगे बढ़ रही है। किस लिए? इसलिए कि आयुषी चाहती थी कि राजस्थान हाईकोर्ट में उनकी मां को जो सरकारी नौकरी मिली है उनके पिता की मौत के बाद, वो उसे मिले। कहानी अब तक यहीं तक थी, लेकिन पिता की मौत के बाद मां को नौकरी मिली और फिर मां का कत्ल हुआ, तो पिता की कहानी क्या थी? जिन मामा ने शक जताया था कि रोड एक्सीडेंट में नीरज शर्मा की मौत नहीं हुई है बल्कि उनकी भांजी इसके पीछे है, क्योंकि उन्हें अपनी भांजी पर शक था, उन्हीं मामा ने आयुषी के, पुलिस को एक लेटर लिखा। यह है उस लेटर की कॉपी। इसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि अब उन्हें यकीन है कि एक साल पहले उनके जीजा यानी आयुषी के पिता की जो मौत हुई वह एक नेचुरल डेथ नहीं थी, बल्कि शर्त या 100% आयुषी ने कत्ल किया था। यह कंप्लेन लेटर उन्होंने जयपुर पुलिस को दिया। अब इस कंप्लेन लेटर के हिसाब से पूरी कहानी क्या है? तो पूरी कहानी यह है कि आयुषी के पिता लखनऊ हाई कोर्ट में LDC हुआ करते थे, विजय शर्मा नाम था आयुषी के पिता का। 2024 में अचानक विजय शर्मा की तबीयत खराब हुई। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि ब्रेन हेमरेज हुआ है। जयपुर के नामी अस्पताल सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया। वहां उनका इलाज चला, धीरे धीरे वक्त बीता और विजय शर्मा ठीक हो गए। ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई, वो घर लौट आए। अब वो घर पर अभी बेड रेस्ट पर हैं कि पूरी तरह ठीक हो जाएं, फिर कोर्ट जाना शुरू करें। सब कुछ ठीक नॉर्मल हो रहा था फैमिली में, लेकिन तभी एक रोज अचानक आयुषी अपने कजन, अपने ताऊ के बेटे बलराम के साथ अपने पिता को घर से उठाती है, गाड़ी में बिठाती है और ले जाती है। मां पूछती है कि बेटा कहाँ जा रहे हो? कहती मां सरकारी अस्पताल में इलाज हुआ, पापा अभी भी बेड रेस्ट पर हैं, इन्हें किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाकर लाती हूं, जल्दी ठीक हो जाएंगे। मां ने कहा ठीक। अब उस घर की दिक्कत यह थी कि मां साथ नहीं जा सकती थी, क्योंकि उस घर में एक बेटा भी था, आयुषी का छोटा भाई, जो मानसिक रूप से बीमार और 2400 घंटे एक अटेंडेंट उसके लिए जरूरी था। तो मां हमेशा उसके पास रहती थी। आयुषी अपने पिता को ले जाती है और यह बात है दिसंबर 2025 में वो अपने कजन के साथ ले गई। उसके बाद एक दो दिन, कई दिन बीते, मां ने पूछा कि पापा कहाँ हैं? दिखा दिया तो घर ले आओ। कहती नहीं, अभी पापा हॉस्पिटल में है, डॉक्टर उनका चेकअप कर रहे हैं। मां पूछती है कौन से हॉस्पिटल, वो कहती है कि आप परेशान मत हो। फिर एक रोज नाम भी बता देती है कि दिल्ली रोड पर एक निम्स हॉस्पिटल है, वहाँ है, बहुत दूर है, आप कहाँ होगे, छोटे भाई को भी आपको देखना है। माँ को लगा बच्ची सही कह रही है, वहाँ नहीं जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, 3 महीने बीत जाते हैं और 3 महीने तक आयुषी के पिता किस हॉस्पिटल में कहाँ है, किस हाल में है, किसी को नहीं मालूम। जब भी माँ पूछती आयुषी बहाना कर देती। 3 महीने बाद जब माँ परेशान, उधर मामा भी पूछे, मामा को भी उनकी बहन यही बताए कि वो कह रही है हॉस्पिटल में है। जब 3 महीने हो गए तो पानी सर से ऊपर था, माँ ने पूछा कि अब बताओ कहाँ है, मुझे उन्हें देखना है। तब एक दिन आयुषी ने कहा कि वो शहर के एक हॉस्पिटल में और ICU में। बहन चूंकि बेटे को छोड़कर अकेले जा नहीं सकती, तो उन्होंने अपने भाई राकेश को फोन किया। उन्होंने कहा कि अभी अभी आयुषी ने बताया है कि तुम्हारे जीजा जी फलाने हॉस्पिटल में एडमिट है, ICU में, देखने चलो। किसी तरह से एक रिलेटिव को घर पर छोड़ते हैं और नीरज और उनका भाई हॉस्पिटल पहुंचता है। उस हॉस्पिटल में जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहां देखते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर कहता है कि अभी कुछ दिन पहले इस हॉस्पिटल में लेकर आपकी बेटी आई है, इनके दोनों फेफड़े में पानी है, 90% ऑर्गन फेल हो चुका है। यह सुनकर भाई बहन घबरा जाते हैं। नीरज को लगता है कि उनके पति को ये कैसे, तबीयत खराब हुई थी, सवाई मानसिंह में इलाज चला, ठीक हो गए, घर लौट आए, उसके बाद बेटी अचानक जब वो ठीक होकर घर लौटे तो कहती है नहीं दोबारा इलाज कराएंगे और ले जाती है। 3 महीने कहाँ रखती है, कुछ खबर नहीं, और 3 महीने बाद वो इस अस्पताल का पता देती है और वो पहुँचती हैं और डॉक्टर ये कह रहा है कि फेफड़े में पानी है, 90% ऑर्गन फेल है, बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। नीरज शर्मा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसके बाद बेटी आती है, कहती है डॉक्टर ने जवाब दे दिया, कुछ हो नहीं सकता, तो अब एक काम करते हैं, घर ले चलते हैं। 21 अप्रैल 2025, यही वो तारीख थी, आयुषी जबरन अब इस बार हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के अपने पिता को घर ले आती है। घर लाती है, कुछ घंटे बीतते हैं और यही तारीख आखिरी तारीख बन जाती है विजय शर्मा की जिंदगी की। 21 अप्रैल 2025 को घर में उनकी मौत हो जाती है। चूंकि मामा और माँ के सामने डॉक्टर ने कहा था 90% ऑर्गन फेल है, हालात क्रिटिकल हैं, तो उन्हें कुछ इससे पहले की सोचते समझते इधर मौत हुई, उधर आयुषी कहती है चलो गांव ले जाते हैं और अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसी दिन आनन फानन में बॉडी को गांव ले जाया जाता है और वहां अंतिम संस्कार कर दिया जाता है बिना पोस्टमार्टम कराए। अंतिम संस्कार हो गया, परिवार में गम का माहौल है, लेकिन माँ परेशान भी और सोच रही है हुआ क्या, जब पति घर ठीक होकर आ गए तो बेटी जबरन फिर क्यों ले गई और कहाँ रखा, कोई जवाब नहीं दे रही है। उधर मामा को भी हाव भाव ठीक नजर नहीं आ रहे, मामा को शक हो रहा है, लेकिन मामा यह सोच भी नहीं पा रहे कि एक बेटी अपने बाप को मार सकती है। फिर अचानक ये हुआ कि इधर पिता का अंतिम संस्कार हुआ, हफ्ता भी नहीं बीता, आयुषी अचानक एक दिन अपने माँ और मामा से कहती है कि अब पापा तो रहे नहीं, तो अनुकंपा पर जो उनकी नौकरी है राजस्थान हाईकोर्ट में LDC की, उसका फॉर्म मैं जमा कर रही हूं और पापा की जगह वो नौकरी मैं करूंगी। माँ कहती है बेटा भर लो, वो फॉर्म भी भर देती है। तभी मामा बीच में आते हैं और कहते हैं, अपनी बहन को समझाते हैं कि तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, बच्चा है तुम्हारे साथ जो अभी मानसिक हालत जिसकी ठीक नहीं है, ताउम्र जब तक ये जिंदा है तुम्हें ही देखभाल करना है, आयुषी के रंग रंग ठीक नजर नहीं आ रहे हैं, कल को उसने तुम्हें छोड़ दिया, एक नौकरी का सहारा होगा तो कम से कम सब घर सही से चलेगा, और आयुषी का क्या है, उसको अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ, कानून की पढ़ाई पढ़वा रहे थे, वो खुद ही एक दिन LLB भी करेगी, फिर अच्छी वकील बन सकती है, कोर्ट में एग्जाम दे सकती है, जज भी बन सकती है। तो ये कहकर नीरज शर्मा को समझाया और नीरज ने अब अपना फॉर्म भर दिया, और चूंकि कानून है कि पति की मौत के बाद जो पहली नौकरी का ऑफर जाता है वो सबसे करीबी पत्नी अगर उस लायक है तो उसे मिलता है, तो यह नीरज ज्यादा मजबूत दावेदार थी बनिस्बत आयुषी के। तो नीरज शर्मा को आसानी से उनके पति की मौत के बाद उनकी जगह नौकरी मिल गई। इधर जैसे ही फॉर्म भरा और नौकरी की बात आई, आयुषी का रंग ढंग सब कुछ बदल गया। वो अपनी मां से खूब लड़ी कि पापा की जगह मुझे ये सरकारी नौकरी आसानी से मिल रही थी, आपने यह हक छीन लिया। माँ ने समझाया, बेटा तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है, तुझे बता कहाँ पढ़ना है, कैसी पढ़ाई करनी है, सब कुछ खर्च करूंगी, तू अपनी काबिलियत से अपने बलबूते पर पढ़ाई कर, सरकारी नौकरी पा। पर वो मानी नहीं, उसने कहा ठीक है माँ, आपने नौकरी कर ली, एक काम करो, आप नौकरी करो और जो प्रॉपर्टी है जयपुर में 2 मकान है और एक आगरा एक्सप्रेस हाईवे के पास 5 बीघा जमीन है, वो मेरे नाम कर दो। माँ ने कहा तुम कैसी बात कर रही हो। वो गुस्सा हो गई, उसने कहा ठीक है, आपने सब कुछ छीन लिया, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। जयपुर में 2 मकान थे विजय शर्मा के, जो नया मकान था वो छोड़कर वो पुराने मकान में चली गई। उस मकान के बराबर में उसके ताऊ रहते थे और ताऊ का परिवार जो आयुषी के सबसे करीबी थे, और उसी ताऊ का बेटा था बलराम जिससे सबसे ज्यादा उसकी बनती थी। अब वो उस घर में चली गई, इधर नीरज नौकरी करने लगी, लेकिन मन में बदले की भावना थी, किसी भी कीमत पर वो सोचती थी कि ये नौकरी मुझे वापस मिल जाए। पिता की जगह वो उसको वो मौका मिला, लेकिन माँ ने वो नौकरी ले ली। फिर उसे ख्याल आया कि अगर माँ भी मर जाए तो फिर तो ये नौकरी उसकी पक्की है, क्योंकि और कोई बचा नहीं परिवार में, एक छोटा भाई है वो इस काबिल भी नहीं है, मानसिक रूप से बीमार भी है तो दावेदार भी नहीं है, और दूसरा अगर माँ मर गई तो फिर वो सारी प्रॉपर्टी भी उसकी, वो ज़मीन उसके, वो मकान उसके, क्योंकि भाई तो इस काबिल ही नहीं है। बस यहीं उसको ये धुन सवार हुआ, उसने अपने ताऊ से बात की और कहा कि अगर मेरी माँ को मारने में आप मदद करोगे तो आपको 5 बीघा जमीन जो हाईवे पर है वो मैं आपको दे दूंगी, मुझे बदले में सिर्फ ये 2 घर जयपुर के और सरकारी नौकरी चाहिए जो माँ कर रही है। कुल प्रॉपर्टी की कीमत करीब 14 करोड़ रुपए थी, ताऊ को और क्या चाहिए। ताऊ के बेटा बलराम से छंती थी, बलराम राजी। आयुषी ने कहा प्लान करो। फिर लोगों ने 4 सुपारी केलर ढूंढे किराए के, बट फिर ये हुआ कि कत्ल ऐसा हो जो हादसा लगे, तो फिर ये किया गया कि चलो रोड एक्सीडेंट में मौत दिखाते हैं। फिर उन्होंने गाड़ी खरीदी, किराए के कातिलों को पैसे दिए कुचलने के लिए, फिर रैकी की, एक बार बच गई, फिर दोबारा 3 जुलाई को नसीब ने साथ नहीं दिया और उस गाड़ी ने उड़ा दिया। वो तो एक CCTV कैमरे की तस्वीर थी, यही तस्वीर जिसमें एक गाड़ी जो गाड़ी है टक्कर मारते हुए दिखाई दे रही है। जिसने ये केस खोला, और ये तब भी नहीं खुलता। ये वही मामा थे जिन्होंने जब अपनी उनकी बहन की मौत हुई और फिर उसी गांव में जहां एक साल पहले उनके पति की लाश पहुंची थी, अंतिम संस्कार करते वक्त उन्होंने फिर से देखा अपनी भांजी आयुषी की तरफ और उन्हें एहसास हुआ कि एक साल पहले भी उसके तेवर, उसके चेहरे पर हाव भाव कुछ वैसे ही थे, ठीक नहीं लग रहा था उन्हें। तब उन्होंने अपने एक जानकार पुलिस से कहा, क्योंकि मामा भी राजस्थान हाईकोर्ट में काम करते हैं, कि साहब एक बार इस एक्सीडेंट की जांच करवा लीजिए। और पुलिस ने बात सुनी और जांच करवाई। अगर मामा ना कहते तो ये सच्चाई सामने नहीं आती कि ये कत्ल था या रोड एक्सीडेंट। और पुलिस ने जब जांच की तो फिर सीसीटीवी कैमरे ने सारा राज खोल दिया, क्योंकि जिस गाड़ी से टक्कर मारी गई वो 100 मीटर दूर पहले से ही पार्क थी। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल पर एक लड़का घंटों से रेकी कर रहा था। फिर हादसे के बाद वो बिना महिला को देखे आगे बढ़ता है, दूर एक और मोटरसाइकिल उसका साथी उस पर बैठता है। जिस गाड़ी से टक्कर मारी गई स्कॉर्पियो से, वो आगे टूटी फूटी हालत में सड़क किनारे खड़ी थी। उसी गाड़ी के नंबर प्लेट से उसके मालिक का पता चलता है, फिर उस मालिक के जरिए पता चलता है कि आयुषी के ताऊ ने उसे 35,000 रुपये किराए पर लिया था। फिर पुलिस ताऊ तक पहुंचती है, ताऊ के जरिए उन 4 हथियारों तक पहुंचती है। फिर बेटे का नाम आता है और उसी के साथ वो नाम आता जिसने हर एक को चौंका दिया, आयुषी, जिसने अपनी माँ को मारने के लिए 7,00,000 रुपये का बजट रखा था। अब यहां तक सब ठीक था। जैसी आयुषी गिरफ्तार होती है और आयुषी अपना जुर्म कबूल करती है, अचानक मामा एक साल पहले की आयुषी के बारे में याद करना शुरू कर देते हैं। तब भी उन्हें शक था कि उनका जीजा जो बिल्कुल अस्पताल में ठीक ठाक होकर घर लौट आया, 3 महीने के लिए वो गायब कर दिया जाता है और खुद उसकी बेटी उठाकर ले जाती है उसी बलराम के साथ, जिस बलराम पर अब उसकी मां के कत्ल में उसके साथ शामिल होने का इल्जाम है। तो उन 3 महीनों में उन्होंने क्या किया, अब उन्हें डाउट हुआ। इन 3 महीनों में उन्होंने जरूर उनके साथ कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसी दवाएं दी, कुछ ऐसा स्लो पॉइजन दिया कि धीरे धीरे सारे ऑर्गन फेल हो गए और घर वालों को बताया तक नहीं। क्योंकि फिर बाद में जब उन्होंने चेक किया डॉक्टर से मौत के बाद अपनी तरफ से, मामा ने तब भी तफ्तीश की, तो पता चला कि जो इलाज के लिए कहा गया था, जो दवाएं देने के लिए कहा गया था, वो दिया ही नहीं जा रहा था। उन्हें शक हुआ आयुषी को देखकर, और बहन की मौत के बाद जब यह खुलासा हुआ कि आयुषी ने ही कत्ल कराया, उन्हें यकीन हो गया कि आयुषी की मां की तरह ही आयुषी ने अपने बाप को भी मारा होगा। और इसी के बाद उन्होंने एक कंप्लेंट लिखी, जयपुर पुलिस पहुंचे और पुलिस को जाकर वो कंप्लेंट दी। कंप्लेंट के साथ साथ उन्होंने बात की, पूरी बातचीत जो मामा ने कही मैं चाहता हूं आप सुने पूरी बातचीत, अभी तक आपने सिर्फ आधी सुनी।
2: तो जो मेरे जीजाजी थे दिसंबर 24 तक वो अस्पताल में भर्ती रहे थे। भर्ती होने के बाद में उनको प्राइवेट जगह पे बलराम और आयुषी मेरी भांजी ने रखा था और उसके बारे में किसी भी व्यक्ति को जानकारी नहीं दी थी। 9 अप्रैल 2025 को जरिए मैसेज के द्वारा मुझे पता लगा जो मेरी भांजी ने भेजा था। तब मैं जाके हॉस्पिटल में मिला, डॉक्टर से संपर्क किया, तो डॉक्टर से पूछा मैं क्या वर्तमान में क्या पोजीशन है, तो उन्होंने कहा कि भाई अभी तो देखो होप देना मुश्किल है आपके लिए, 90% आपके जियाजी का दोनों फेफड़ों में पानी भरा हुआ है, लीवर पूरा 90% डैमेज है, हार्ट का जो स्थिति है वो 90% ब्लॉक है। तो होप तो हम नहीं दे सकते, लेकिन हम डॉक्टर हैं, अंतिम समय तक हम प्रयास करेंगे, जो हमारा कर्म है हम हमारा करेंगे। उस दिन से लेके जब मैंने बच्ची संपर्क किया तो उसके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। तो 3 महीने के ड्यूरेशन में जब निवेक हॉस्पिटल में वो अच्छी रिकवर हो गए थे, तो 3-3.5 महीने जो इन्होंने अंडरग्राउंड रखा है, कहाँ रखा है, क्यों रखा है, ये संदेह के घेरे में, और अचानक आकर के उनको भर्ती करा देना, ये कहीं ना कहीं अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे तो निश्चित रूप से ये बात सामने आएगी कि मेरे जीजाजी की मृत्यु में भी इन आयुषी और बलराम का 100% हाथ होगा, क्योंकि सारा लालच प्रॉपर्टी का शुरू से ही चल रहा है।
1: तो साल भर पहले हुई मौत और साल भर बाद हादसे में हुई मौत, दोनों का अंजाम कुछ और निकला। क्योंकि जिस तरीके के बयान दर्ज किए गए हैं और शुरुआती जो पूछताछ हुई है उसमें पुलिस ये मानकर चल रही है कि आयुषी के माँ बाप दोनों की मौत नेचुरल नहीं थी, न पिता की मौत बीमारी से हुई, न माँ की मौत हादसे में हुई, ये दोनों कत्ल था और कातिल कोई और नहीं, अपनी बेटी। एक अदद सरकारी नौकरी, और 14 करोड़ की टोटल प्रॉपर्टी के लिए, मतलब इसे क्या कहेंगे हम? सोच से परे की चीज है कि 24 साल की एक लड़की इस उम्र में अपने हाथों से अपने मां बाप को मार डालती है। अभी पता नहीं और क्या क्या खुलासा होगा। हालांकि जब पूछा गया पुलिस स्टेशन में, जब उससे पूछताछ इंट्रोगेशन हो रही, तो उसने कहा कभी तुमने भाई को भी मारने के बारे में सोचा? तब आयुषी ने जवाब दिया था कि मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूं, लेकिन उसी भाई की वजह से मेरा बचपन ठीक से नहीं गुजरा। उसने कहा कि चूंकि भाई एक स्पेशल चाइल्ड था, तो मेरी माँ हमेशा भाई को ज्यादा देखभाल करती, भाई की ज्यादा केयर करती, मुझे इग्नोर करती, और बचपन से मुझे लगा कि मुझे शायद इग्नोर किया जा रहा है, इसलिए मुझे अपनी माँ से चिढ़ती। फिर जब माँ ने मेरी जगह नौकरी कर ली, मैं फॉर्म भर चुकी थी, तो मुझे यकीन हो गया कि मेरी माँ मेरी दुश्मन और इसीलिए मार दिया। ये उस वक्त तक की बात है जब तक सिर्फ माँ की कत्ल के लिए पूछताछ हो रही थी। अब पिता के कत्ल की बात जब सामने आई है, नए सिरे से पुलिस पूछताछ कर रही है, इसमें जो कुछ भी आगे सामने आएगा आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन ऐसी कहानियां झकझोर देती हैं क्योंकि ये सोच से परे की चीज है। माँ बाप बच्चों के लिए पूरी दुनिया होते हैं, और इस दुनिया को कोई बच्चा अपने हाथों से उजाड़ दे, कहने के लिए बचता क्या? तो इस कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले संडे रात 9 बजे क्राइम कहानियां विद शम्स में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
4: आप अपना देख लो,

0: अब आपको एक हैरान कर देने वाली तस्वीर दिखाते हैं, जहां सूरत में अचानक चलते चलते एक कार आग का गोला बन गई। चंद मिनटों ही में कार ये जलकर राख हो गई।
1: सड़क पर खड़ी एक कार धधक रही है। आग इतनी भयानक है कि इसे बुझाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। भयानक आग खौफनाक है। दमकल कर्मी इस पर पानी की बौछार कर रहे हैं, मगर आग भयानक है। काफी देर बाद आखिरकार कार की आग बुझाई गई, मगर तब तक कार पूरी तरह से राख हो चुकी थी। तस्वीरें सूरत की हैं। सूरत के वेसू इलाके में चलती कार में अचानक आग लगी। ये घटना ओमेगा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने बीआरटीएस बस स्टैंड के पास हुई, जिससे थोड़ी देर के लिए मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया था। अच्छी बात ये रही कि वक्त रहते कार में सवार लोग बाहर निकल आए थे, इसीलिए कोई हताहत नहीं हुआ। हाँ, कार जरूर राख हो गई। कार में आग किस वजह से लगी इसका पता भी नहीं चला है। संजय सिंह राठौड़, सूरत आज तक।
0: अब एक और हैरान करने वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं, और ये तस्वीर उत्तराखंड के कोटद्वार से आई है, जहां हाथियों का झुंड रिहायशी इलाके में आ गया। हाथियों का ये झुंड लोगों के घरों में भी जा घुसा।

0: जंगल में हाथियों को टहलते हुए आपने बहुत बार देखा होगा। पहली बार रिहायशी इलाके में हाथियों को टहलते हुए देखिए, देखिए कितने आराम से ये हाथी इस मकान में प्रवेश कर रहे हैं। सामने से आ रहे इस हाथी के साथ बाईं ओर से प्रवेश कर रहे इस दूसरे हाथी को भी देखिए, इन दोनों के साथ एक तीसरा हाथी भी है, ये हाथी का बच्चा है। ये तीनों हाथी इस घर में प्रवेश कर गए हैं। अब आगे की तस्वीरें देखिए, ये छोटा हाथी घर की छत तक पहुंच गया है। छत पर रखी पानी की टंकी से ये पानी पी रहा है। दूसरा हाथी यहाँ इस कमरे में प्रवेश कर गया। ये तीनों हाथी इस घर में लगातार चहलकदमी कर रहे हैं और हाथियों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो रही हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड में कोटद्वार के वार्ड नंबर 1 के ग्रास्टनगंज की हैं। बताया जा रहा है कि इन हाथियों ने 5 से 6 घरों में जमकर तोड़फोड़ की है। पीड़ितों का आरोप है कि उन्होंने बार बार वन विभाग को शिकायतें दी है मगर कार्रवाई नहीं हुई। अब लोग दहशत में हैं।
1: हाथी तो कभी कल तो 4-5 थे, अब तो 2 आदमी से क्या होगा। जरा स्टाफ बढ़ाओ,
2: यहाँ पे 35
1: स्टाफ बढ़ाओ, इसलिए स्टाफ के पास तुम टॉर्च दो, वो बंदूक दो, जिससे कि वो बंदूक वो हाथी भाग जाएंगे। नहीं तो हमको तो बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत पर हम रात 3 बजे 3:30 बजे सोए।
3: परसों भी अंदर आया था हाथी, मतलब पूरा तोड़ के गया, वॉश बेसिन वगैरह, टंकी, मेरी खिड़की पूरी तोड़ दी उसने, पल्ले बाहर निकाल के रख दिए। तो मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बोला है कि आओ। तो सर एक बात मुझे समझ नहीं आती, अगर इनके फॉरेस्ट गार्ड आते हैं, जो भी यहाँ पे है वो चौकी पे वो आते हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास कुछ, उनको आके हम करें क्या? न उनके पास कोई एयर गन वगैरह है कि वो हाथी भगाएं। सर डंडे से तो हाथी नहीं भागेगा ना। अभी पिछली बार फॉरेस्ट गार्ड आया था तो वो डंडे से वो पीछे भाग रहा था हाथी के, उसको भगाने के लिए हाथी ने उसको ही दौड़ा दिया। उसका रविंदर नाम है भैया का, उनका ही फोन टूट गया।
0: लोग खौफ ज्यादा हैं और मांग कर रहे हैं कि इन हाथियों से मुक्ति दिलाया जाए, कोई ऐसा कदम उठाया जाए कि हाथी रिहायशी इलाके में ना आए। विकास, कोटद्वार, आज तक।
4: अब बात वियतनाम से, एक बड़े हादसे की। वियतनाम के फुकोक द्वीप के पास में भारतीय पर्यटकों से भरी एक टूरिस्ट बोट पलट गई। हादसे में 15 भारतीयों की मौत हो गई, 21 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। बोट पर उस समय कुल 36 लोग सवार थे जिसमें 32 भारतीय और 4 क्रू मेंबर्स थे।
5: वियतनाम में छुट्टियों की तस्वीरें आखिर यादें बन गई। समंदर का सफर मौत का सफर बन गया, परिवारों के लिए अब सिर्फ दर्द बचा है। वियतनाम के फुकवोक आइलैंड के पास एक टूरिस्ट बोट पलटी और देखते ही देखते गहरे पानी ने कई जिंदगियां निगल ली। जिस नाव में सवार होकर लोग नए अनुभवों की तलाश में निकले थे, वही नाव कई परिवारों के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा बन गई। वियतनाम से आई ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। समंदर की ऊंची लहरों के बीच पलटी हुई टूरिस्ट बोट और चारों तरफ मदद के लिए जूझते लोग। ये वही नाव थी जिसमें भारत से घूमने पहुंचे पर्यटक सवार थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटक और 4 क्रू मेंबर मौजूद थे। नाव होन में रूट से अनथोई पोर्ट की तरफ जा रही थी, तभी फुकवोक आइलैंड के पास करीब 400 मीटर दूर अचानक हादसा हो गया और देखते ही देखते पूरी नाव समंदर में पलट गई और 15 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे की खबर मिलते ही भारत सरकार भी सक्रिय हो गई। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बताया कि हादसे के बाद हनोई स्थित एम्बेसी और होची मिन्ह सिटी स्थित कॉन्सुलेट में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। दूतावास ने कहा कि भारतीय पर्यटकों की जानकारी जुटाई जा रही है और हर संभव मदद दी जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हादसे पर दुख जताते हुए लिखा, वियतनाम के फुकवोक के पास भारतीय नागरिकों से जुड़े इस दर्दनाक हादसे से बेहद दुखी हूं। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया। पीएम मोदी ने कहा, वियतनाम में भारतीय नागरिकों से जुड़े नाव हादसे की खबर से बेहद दुखी हूं। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। भारतीय दूतावास और अधिकारी हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। हादसे में पीड़ित परिवारों में मातम है। केरल के मछलीपट्टनम में रहने वाले पीड़ित परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वियतनाम नाव हादसे में गेली जयलक्ष्मी की मौत की खबर के बाद परिवार में चीख पुकार मच गई। घर में मौजूद परिजन अब सिर्फ उस पल को याद कर रहे हैं जब एक सफर जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। वहीं केरल के ही रहने वाले एसी थॉमस और लोवेनी थॉमस की मौत की पुष्टि की गई है। केरल सरकार विदेश मंत्रालय के संपर्क में है ताकि मृतकों के पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाया जा सके। एक टूरिस्ट ट्रिप जो यादों का सफर बनने निकली थी वो अचानक मातम में बदल गई। समंदर की एक लहर ने कई परिवारों से उनके अपने छीन लिए। अब सवाल सिर्फ हादसे का नहीं, सवाल ये भी है कि आखिर ऐसी पर्यटक नावों की सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है। वियतनाम से आई इस त्रासदी ने एक बार फिर समंदर में सुरक्षा इंतजामों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
4: वक्त तो चला, अब छोटे से ब्रेक का, कुछ और खबरों के साथ होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो।
1: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। अमेरिका ईरान में फिर से जोरदार जंग छिड़ गए हैं और बड़ी खबर आपको देते हैं। अमेरिका ने थोड़ी देर पहले ही ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने ईरान की मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला किया है। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास भी IRGC के बोट को अमेरिका ने निशाना बनाया। ईरान पर जबरदस्त हमला अमेरिका की तरफ से, ईरानी मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम पर यूएस की तरफ से हमला और ईरानी सैन्य ठिकानों को एक बार फिर से अमेरिका की तरफ से टारगेट किया गया है। तो जो जंग थम गई थी, जहां डील हो गई थी, वहां एक बार फिर से महायुद्ध रिटर्न्स इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक बार फिर से हमले शुरू हो गए। यूएस का ये ईरान पर बड़ा हमला और ईरान के कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स पर ये अमेरिका की तरफ से हमला किया गया है और दूसरी तरफ ईरान भी खामोश नहीं बैठा है। लेकिन अमेरिका और ईरान में जो जंग है वो फिर से बढ़ गई है। बड़ी मुश्किल से दोनों के बीच में सहमति बन पाई थी, डील हो पाई थी, लेकिन एक बार फिर से ये युद्ध भड़कता हुआ और तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। अमेरिका ही हमला नहीं कर रहा बल्कि ईरान की तरफ से भी ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। ईरान की तरफ से भी दावा किया गया है, IRGC की तरफ से दावा किया गया है कि हमने अमेरिका के इंपॉर्टेंट बेसिस को टारगेट किया है, हमने अमेरिकी ठिकानों को तबाह किया है। IRGC की तरफ से ये बहुत बड़ा दावा किया गया है अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने का और बाकायदा IRGC अपने हमलों के संबंध में वीडियो भी जारी कर रहा है। उन वीडियो के जरिए बता रहा है कि हमने इन इन अमेरिकी साइट्स पर हमला बोला है, खासतौर पर खाड़ी देशों में, अलग अलग देशों में जो अमेरिका के बेसिस हैं उन पर हमला किया गया है, ड्रोन से और दूसरे तरीकों से उनको तबाह किया गया है। उसके विजुअल्स भी कुछ IRGC की तरफ से जारी किए गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध इतना भीषण हो गया है कि एक हफ्ते के अंदर ईरान के कई शहरों में ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक्स की गए हैं। अमेरिका ने ईरान के कई बंदरगाहों पर बम बरसाए हैं, जिसके जवाब में ईरान ने कतर, बहरीन समेत कई खाड़ी देशों में उसके मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचा है। दोनों ही देशों के बीच में युद्ध विराम पूरी तरह से खत्म हो चुका है और अब तो इन दोनों देशों के ही नेता इसका बाकायदा ऐलान कर चुके हैं। बीते 24 घंटों के भीतर 5 से ज्यादा देशों में बमबारी होने से महायुद्ध के और भीषण होने के आसार बन गए हैं।

0: टूटा युद्ध विराम, शुरू हो गया भयंकर घमासान। ईरान के कई शहरों पर अमेरिका के विनाशकारी प्रहार, ईरान ने कई खाड़ी देशों पर बरसाए बम, हॉर्मुज पर ईरान की तालाबंदी, कीमतों में फिर लगेगी आग। आखिर जिसका डर था वही हुआ, धीरे धीरे टूटता युद्ध विराम अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। एक के बाद एक मिसाइल छोड़ी जा रही है, कई शहरों में सायरन की आवाज गूंज रही है, जो हमलों का संदेश देने के साथ साथ युद्ध फिर से शुरू होने का ऐलान कर रही है। अमेरिकी मिसाइलों ने हफ्ते भर में तीसरी बार ईरान पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। ड्रोन और मिसाइलों के जखीरे ने एक बार फिर तबाही का तांडव मचाना शुरू कर दिया है। अमेरिका का दावा है कि इस बार करीब 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इनमें मिसाइल और ड्रोन साइट, नेवी के ठिकाने, गोला बारूद भंडार, संचार नेटवर्क और तटीय निगरानी केंद्र शामिल हैं। जिन ईरानी शहरों को निशाना बनाया गया उनमें न्यूक्लियर सिटी बुशहर समेत असालुये, बंदर एतेयर, जास और चाबहार के सैन्य ठिकाने शामिल हैं। अमेरिका हॉर्मुज में लगातार हो रहे हमलों से गुस्से में है और उसने पहले ही ईरान को ताबड़तोड़ हमलों की चेतावनी दी थी। पिछले तीन दिनों में ईरान के 300 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। खैर, ईरान को भी जवाब देना ही था, लिहाजा उसने भी कई खाड़ी देशों में बने अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों के जरिए बम बरसाने शुरू कर दिए। कतर में अमेरिका के अलुदीद एयरबेस पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से हुए हमले में जंगी जहाजों के मेंटेनेंस और रिपेयर सेंटर के साथ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया है। कतर में ईरानी हमले को नाकाम करने के दौरान मलबा गिरने से 3 लोग घायल हो गए। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने भी मिसाइलों का मोर्चा मध्य पूर्व की ओर खोल दिया है। कतर के अलावा जॉर्डन, कुवैत, बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी ईरान ने निशाना बनाया है। साथ ही यूएई पर भी ईरान की ओर से मिसाइल दागी गई है। बहरीन में लगातार सायरन बज रहे हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी जा रही है। ईरान अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले करने के साथ साथ बयानों में भी आक्रामक होता जा रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई ने अपने पिता अली खामेनेई की मौत का बदला लेने का ऐलान कर दिया है, जिससे अमेरिका और ईरान के बीच घमासान और तेज होने की आशंका बढ़ गई है। अमेरिका के साथ बातों मुलाकातों के दौर में ईरान की ओर से अहम किरदार निभाने वाले मोहम्मद बागेर गालिबाग के सुर भी तल्ख हो गए। उन्होंने लिखा कि एक तरफा समझौतों का दौर खत्म हो चुका है, हमने पहले ही कहा था, या तो अपना वादा निभाइए या फिर इसकी कीमत चुकाइए, अब हकीकत सामने है। गालिबाग ने अपने पोस्ट के साथ समझौते की तस्वीर भी साझा की है, जिसमें हॉर्मुज को दोबारा खोलने और वहां व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी ईरान की बताई गई है। खैर, अमेरिका तो जो नुकसान ईरान का कर रहा है वो दुनिया देख ही रही है, लेकिन ईरान के जबरदस्त पलटवार से ट्रंप के बार बार किए जा रहे इन दावों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने ईरानी की पूरी सैन्य ताकत का खात्मा कर दिया है।
1: I think the third regime is more reasonable, but we'll find out. But we've destroyed their, as you know, completely destroyed 150. They had 159 ships. Every single ship is at the bottom of the sea. We've completely destroyed. They don't have one airplane. They don't have radar.
0: सीज़फ़ायर के दौरान ईरान ने अपने एंटी-मिसाइल सिस्टम को दुरुस्त किया और मिसाइल लॉन्चर्स को मजबूत किया। ईरान की ये तैयारी खाड़ी देशों पर किए गए हमलों में साफ दिखाई दे रही है। तांडव की इन तस्वीरों से इतना तो साफ है कि महायुद्ध पार्ट 2 और विनाशकारी होने जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
2: महायुद्ध रिटर्न्स की खबरों पर हम आगे बढ़े, उससे पहले एक बड़ी खबर आपको देते हैं। युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार नए सुप्रीम लीडर ईरान के मुज्तबा खामेनेई किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। ईरानी मीडिया फास न्यूज ने खबर दी है कि मुज्तबा खामेनेई 14 जुलाई को तेहरान में आयोजित होने वाले श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक सर्वोच्च नेता मंगलवार को तेहरान के मोसिल्ला में शहीद इमाम मुजाहिद की याद में एक समारोह में शामिल होंगे। मुज्तबा खामिनेई के कार्यालय ने इस संबंध में बयान भी जारी किया है। यह आपको बता दें कि अपने पिता आयतुल्ला अली खामिनेई के जनाजे में भी मुज्तबा खामिनेई शामिल नहीं हुए थे। अमेरिका ने ईरान पर हमले की रणनीति में बदलाव किया है। वो सिर्फ सैन्य अहमियत वाले इलाकों को ही निशाना अब नहीं बना रहा, बल्कि आर्थिक तौर पर ईरान की कमर तोड़ने की हर संभव प्रयास कर रहा। खासतौर से उसके निशाने पर वो पोर्ट सिटी है जिस पर ईरान की अर्थव्यवस्था टिके हुए है। बंदर अब्बास से लेकर चाबहार तक में अमेरिकी हमलों से तबाही हुई है और जगह जगह इसके निशान दिखाई दे रहे हैं।

अब अमेरिकी हमलों की जद में आए ईरान के तटीय ठिकाने। एक के बाद एक बंदरगाहों पर अमेरिका लगा रहा निशाने। तेज हुआ ईरान की आर्थिक ताकत तोड़ने का अभियान। तेल की लड़ाई होर्मुज से होते हुए ईरान के समुद्री सीमा से लगे तमाम शहरों तक पहुंच गई है और अमेरिका एक के बाद एक बंदरगाहों पर हमले कर रहा है। अभी तक अमेरिकी मिसाइलों के निशाने पर होर्मुज से सटे इलाके ही आमतौर पर आते थे, लेकिन इस हफ्ते अमेरिका ने उन तमाम तटीय इलाकों को बर्बाद करने के लिए बम बरसाए हैं जो ईरान के तेल निर्यात और अर्थव्यवस्था में मजबूत किरदार निभा रहे हैं। अमेरिकी सेना दो मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। एक तरफ वो ईरान के उन सैन्य ठिकानों को बर्बाद कर रही है जहां से खाड़ी देशों में बने अमेरिका के

0: फीसदी हिस्सा खार्क के जिम्मे ही है और ये ईरान को आर्थिक तौर पर मजबूत करने में अहम किरदार निभाता रहा है। इसीलिए अमेरिका लगातार इस पर भी हमले कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान के तटीय शहर ही बमबारी का शिकार हो रहे हों। ईरान का दावा है कि उसने ओमान के दुकम पोर्ट पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए इस्तेमाल होने वाले लॉजिस्टिक सपोर्ट सेंटर और ईंधन भरने वाले प्लेटफॉर्म पर भारी हमला किया है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका लगातार दबाव डलवाकर ओमान के पास जहाजों की आवाजाही के लिए एक नया समुद्री मार्ग तैयार करा रहा है। इससे होर्मुज पर ईरान का नियंत्रण कमजोर हो सकता है, लिहाजा ईरान ने इस पर भी कड़ा रुख अपनाकर वहां से गुजरने वाले हर जहाज पर निगाहबानी का फरमान जारी कर दिया है। तटीय शहरों पर बढ़ते हमलों का असर सिर्फ ईरान की पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था पर ही नहीं होगा बल्कि दुनिया भर में तेल सप्लाई, समुद्री व्यापार और पूरे मिडिल ईस्ट की सुरक्षा पर भी हो सकता है। आज तक ब्यूरो।
1: और आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि पिछले 5 दिनों में अमेरिका ने ईरान में कितनी बार और किस किस ठिकाने पर हमला बोला है, कितनी तबाही मचाई है। अब बीते 5 दिनों में 3 हमले हुए हैं और ठिकाने कितने, 310। इसमें ईरान के 80 ठिकानों पर अमेरिका ने बमबारी की है, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, रडार साइट पर सीधा अटैक रहा है। 7 जुलाई 2026 को हमला हुआ। इसके साथ साथ IRGC के 60 से ज्यादा स्पीड बोट भी अमेरिका के निशाने पर रहे हैं। 9 जुलाई को ईरान के 90 ठिकानों पर अमेरिका की तरफ से अटैक हुआ, 90 ठिकानों पर। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट ठिकाने हैं, जैसे बुशहर, चाबहार, बंदर अब्बास पर मिसाइल से हमला किया गया, मतलब न्यूक्लियर साइट के साथ साथ जो आर्थिकी का तंत्र है उसको टारगेट करने का प्रयास किया गया ईरान के। और 14 लोगों के मारे जाने की खबर भी है। 12 जुलाई को ईरान के 140 ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया और ये सब बहुत महत्वपूर्ण ठिकाने हैं, बिल्कुल प्रिसाइज अटैक अमेरिका बता रहा है। तो कुल 140 ठिकानों पर ईरान के हमला किया गया, जिसमें ईरानी मिसाइल और ड्रोन अड्डे शामिल है। इनको अमेरिका ने चुन चुन कर निशाने पर दिया। इसके साथ साथ नौसैनिक क्षमता को कम करने का प्रयास हुआ, क्योंकि बेस पर, नौसैनिक बेस पर भी हमला किया। इसके साथ साथ वो स्टोरेज, गोला बारूद भंडारण केंद्र, उस पर भी हमला किया गया। जो संचार नेटवर्क है ईरान का, उस पर भी अमेरिका ने इस बार हमला किया है। तटीय निगरानी केंद्र, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इस समय ईरान के लिए है, उस पर भी अमेरिका की तरफ से हमला किया गया है। अब ये वो जगह हम आपको बता रहे हैं कि जहां पर अमेरिका की तरफ से हमले हुए हैं, ये वो केशम द्वीप, बुशहर, अबू मूसा द्वीप, सिरिक, जास्क द्वीप, चाबहार, इसके साथ साथ कोनारक, बंदर अब्बास, ये इंपॉर्टेंट जगह है, समुद्री शहर ये ईरान के, जो कि उसका अर्थतंत्र का एक अहम हिस्सा है, वहां पर हमले हुए। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हर कोई अपना नियंत्रण चाहता है। अमेरिका बिना किसी टोलबंदी के यहां से जहाजों की आवाजाही चाहता है। तो ईरान के पास में अमेरिका का सामना करने के लिए यह सबसे बड़ा हथियार है। तेल के इस खेल से हालात फिर से बिगड़ने लगे हैं, क्योंकि ईरान ने फिलहाल इसे बंद करने का ऐलान कर दिया है। सबसे बड़ा खतरा तो खार्ग पर मंडरा रहा है, जहां पर एक बार फिर अमेरिका ने हमला किया है और ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो ईरान को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए इस पर कब्जा भी कर सकते हैं।

हॉर्मुज में हाहाकार से फिर बढ़ेगा घमासान। जहाजों पर बमबारी से बढ़ रहा कोहराम। हॉर्मुज को न खोलने का खामियाजा भुगतेगा तेहरान। क्या अमेरिका के सामने अपनी गलती मान रहा ईरान? हॉर्मुज की शांत लहरों में बमों की बारिश के बाद से एक बार फिर सुनामी दिखने लगी है। दो दिन में तीन जहाजों पर ईरान की बमबारी के बाद से सीज फायर की पूरी तस्वीर ही बदल गई है। एक बार फिर हॉर्मुज का पेच ही अमेरिका और ईरान के बीच फंस गया है और आशंका तो इस बात की लगातार बढ़ रही है कि तेल के खेल की वजह से ही महायुद्ध का पार्ट टू शुरू होने वाला है। ईरान ने हॉर्मुज से गुजर रहे इन तीन कमर्शियल जहाजों

0: पर हमला किया था। इससे ट्रंप का पारा इतना चढ़ा कि दोनों ओर से हमलों की एक नई लहर से ईरान के कई शहरों के अलावा बहरीन और कतर तक में बर्बादी का मंजर दिखाई देने लगा। हॉर्मुज में इस हफ्ते जो हमले हुए हैं, क्या ईरान ने इसे अपनी गलती मानी है? CBS न्यूज ने यह दावा किया है। इसमें अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि ईरानी अफसरों ने निजी तौर पर ट्रंप के सलाहकारों से कहा कि हॉर्मुज में जहाजों पर अटैक गलती थी और ये हमले कट्टरपंथियों के एक ऐसे गुट ने किए जो बातचीत को नाकाम करना चाहते हैं। ईरान बेशक कितना ही कह ले कि हॉर्मुज में हमले एक गलती थे, लेकिन अमेरिका ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है और उसके खिलाफ हटाई गई तेल निर्यात की पाबंदियों को एक बार फिर लगा दिया है, जो अगले हफ्ते से लागू कर दी जाएंगी। हॉर्मुज से शुरू हुई लड़ाई तेजी से खार्क तक पहुंच गई है। हफ्ते भर पहले ही अमेरिका ने यहां एयर स्ट्राइक की और ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया। ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा खार्क से ही जुड़ा है। जब से दोनों देशों के बीच जंग शुरू हुई है, खार्क को अमेरिका के कई हमले झेलने पड़े हैं। अब ये एक बार फिर से अमेरिका के निशाने पर आ गया है।
1: We're not attacking at the highest level. The highest level, the bridges, there, which we can knock down. I would say in one day we knocked down every single bridge in Iran. There's not a thing they can do about it. Their electric manufacturing facilities, right? Their electric plants where they make their electricity in there. We will, if we have to, we'll take them out. I don't want to do that, but if we have to, we'll take them out. They have desalinization plants. We'll take them out if we have to. I hate to do that. That's probably the one I would like not to do least. We attacked Kharg Island last night. We knocked out a piece. I said, don't touch the oil, because maybe we'll take over Kharg Island. You know, we may take over Kharg Island.
0: वैसे अमेरिका ने ईरान को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि ईरान कमर्शियल जहाजों के लिए हॉर्मुज को खोले और जहाजों पर हमले पूरी तरह बंद करे, साथ ही सार्वजनिक तौर पर इसका ऐलान करे। अमेरिका ने दो टूक चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने ऐसा नहीं किया तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। ये चेतावनी ऐसे वक्त पर दी गई है जब अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हवाई हमले कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो
2: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ताजा हालात कैसे हैं? अमेरिका ईरान में डील साइन होने के बाद कितने जहाज वहां से गुजरे हैं वो भी आपको बताते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक बार फिर से ईरान का पूरी तरह से नियंत्रण है। 17 जून से 6 जुलाई तक यहां से 558 जहाजों की निकासी हुई और 17 जून को आपको बता दें कि अमेरिका ईरान में डील हुई है। तो 7 से 8 जुलाई की बात करें तो यहां से सिर्फ 5 जहाज ही गुजरे। युद्ध से पहले रोजाना औसतन यहां पर 130 टैंकरों की आवाजाही हो रही थी। ये युद्ध से पहले का हाल था और अब फिर से एक बार फिर ईरान की तरफ से इस पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया है। हालांकि अमेरिका अब भी दावा कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खुला हुआ है, जबकि ये जो आंकड़े हैं ये बता रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो अमेरिका दावा कर रहा है। अब ईरान की क्या रणनीति है हॉर्मुज को लेकर? वो है कि तय रूट से ही जो जहाज हैं वो गुजरे, तय रूट के अलावा कहीं भी नहीं। ट्रांजिट अथॉरिटी में पहले रजिस्ट्रेशन भी हो, ये कुछ ईरान की शर्तें भी हैं। साथ साथ शुल्क वसूलने का अधिकार भी ईरान चाहता है कि उसे मिले और वो इस मार्ग का उपयोग अपने जो है आर्थिकी को बढ़ाने के लिए करना चाह रहा है। ओमान ने भी इसका आपको बता दें कि नया समुद्री मार्ग शुरू किया जो वैकल्पिक रूट है, उसका भी विरोध कर रहा है ईरान। नए मार्ग से ईरान की पकड़ चूंकि स्वाभाविक है कि कमजोर होगी और दूसरे शिप्स उधर से जाने का प्रयास करेंगे। ईरान की ताकत कम करने की कोशिश में पूरी तरह से यूएस दिखाई दे रहा है और हॉर्मुज पर कंट्रोल की कोशिशों में यूएस है। वो तो अभी यही कह रहा है कि हॉर्मुज खुला हुआ है। अमेरिका की तरफ से बहुत बयानबाजी हो रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी पीछे नहीं हट रहा है। उसने भी दो टूक कहा है, अमेरिकी सेनाओं को डील की शर्तों का पालन करना ही होगा। ये अमेरिका को ईरान की तरफ से दो टूक है। हॉर्मुज से गैर कानूनी रास्ता बनाने की कोशिशों ने सुरक्षा को कमजोर किया है। ईरान ने सैनिक हॉर्मुज में हमारे अधिकारों की रक्षा में तैनात किए हैं। सशस्त्र बलों के लिए टारगेट लिस्ट अपडेट हो रहा है, यह भी ईरान की तरफ से कह दिया गया है। तो अमेरिका पर ही उसने आरोप भी लगाया कि वो डील की शर्तों को एक तरीके से नहीं मान रहा है और ये शर्तें एक तरफा मानने वाली नहीं है। वक्त हो चला अब छोटे से ब्रेक का, कुछ और खबरों के साथ होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place right here on TuneIn. Play your favorite stations like Que Buena.
4: La Que Buena.
3: ESPN Radio.
5: We know LeBron has to be the best player on the planet to
3: get The Daily.
6: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
3: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
7: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
2: चढ़ावा चोरी मामले में कई अहम खुलासे हुए। आरोपियों ने बताया कि वो चढ़ावा की चोरी सिर्फ इवनिंग शिफ्ट में किया करते थे। वहीं एक अहम खबर यह भी है कि ट्रस्ट ने सीईओ की नियुक्ति की कोशिशें तेज कर दी हैं। और तीसरी बड़ी खबर है कि टिन्नू यादव और सुभाष यादव से अयोध्या पुलिस ने पूछताछ की तैयारियां की हैं।

0: राम मंदिर के प्रांगण में मौजूद जिस कमरे में चढ़ावे की गिनती होती थी वहां दो पालियों में काउंटिंग की जाती थी। चढ़ावे की गिनती के लिए पहली शिफ्ट सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक होती थी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक की थी। चढ़ावा चोरी की वारदात दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक की शिफ्ट में ही हुई, यानी चोरी दूसरी पाली में हुई। दरअसल सभी आरोपी उसी 2 से 9 वाली शिफ्ट में काम करते थे। दरअसल शाम के शिफ्ट में चोरी करना आरोपियों के लिए ज्यादा आसान था। काउंटिंग के दूसरे शिफ्ट में चढ़ावा चोरी का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने 4 आरोपियों से पूछताछ की। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 40 दिन में 70 बार चोरी की गई। सबसे ज्यादा 50 से अधिक बार चोरी अविनाश शुक्ला ने ही की थी। वो एक दिन में 2 बार चढ़ावा चोरी करता था। जिन 40 दिनों का रिकॉर्ड पुलिस ने खंगाला है उसमें से 5 दिन ऐसे भी रहे जब एक ही दिन में चढ़ावा चोरों ने 3-3 बार चोरी की।
1: सेकंड शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक होती थी और ये वो वक्त होता था जब कैश लेकर बाहर निकलते समय न सिर्फ निगरानी कम होती थी बल्कि इनके लिए कैश लेकर निकलना भी आसान हो जाता था।
0: पुलिस की जांच में ये सच सामने आने के बाद ही राम मंदिर ट्रस्ट ने चढ़ावे की गिनती अब सिर्फ एक ही शिफ्ट में करने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत अब सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चढ़ावे की गिनती शुरू कर दी गई है। तमाम खुलासों के बीच अयोध्या पुलिस राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव से भी पूछताछ की तैयारी में है। संतोष कुमार शर्मा, अयोध्या आज तक।
2: एक तरफ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर जांच चल रही है तो दूसरी ओर इस पर सियासत जबरदस्त तरीके से हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जब से राम मंदिर दर्शन करके लौटे हैं तब से वो हिंदुत्व का राग अलाप रहे हैं। बीजेपी की ओर से अरविंद केजरीवाल का एक पोस्टर जारी किया गया जिसमें अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया गया।
3: दिल्ली बीजेपी ने ये नया पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया गया है। इस पोस्टर को जारी करने के साथ ही बीजेपी ने लिखा है कि जो लोग भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण से खुश नहीं हैं, जिन्होंने मंदिरों और गुरुद्वारों के बाहर शराब की दुकानें खुलवाई, जिनकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही है, जो राम मंदिर की जगह अस्पताल बनवाना चाहते थे, जिन्होंने बजरंग बली का मजाक उड़ाया, जिनके शासन में इमामों को तो वेतन बांटा गया लेकिन पुजारियों को कभी कुछ नहीं दिया।
4: आज केजरीवाल जी को फिर राम याद आए हैं। ये राजनीतिक हिंदू हैं, आज फिर इनकी नौटंकी प्रारंभ हो गई है।
5: अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं और ये हम पहली बार नहीं बोल रहे। जब जब चुनाव आते हैं अरविंद केजरीवाल के जो कर्म होते हैं वो प्रूफ कर देते हैं कि वो चुनावी हिंदू हैं। आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसको लेके हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे। ये सब दिखाता है कि चूंकि वहां उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं इसलिए आज अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग चुनावी हिंदू बनकर हिंदू बनने का एक सॉन्ग रच रहा है।
3: दरअसल अरविंद केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़े हैं। एक तरफ उन्होंने घोषणा की है कि अमृतसर में वो माता सीता और लवकुश का मंदिर बनवाएंगे, दूसरी तरफ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर वो मुखर है।
6: सारे प्रयास किए जा रहे हैं चोरों को बचाने के, डकैतों को बचाने के, जमीनों के जो घोटाला हुआ उस पर तो जांच ही नहीं चल रही, मंदिर निर्माण में जो कमीशन खोरी हुई इस पर तो जांच ही नहीं चल रही।
3: लेकिन बीजेपी को ये रास नहीं आ रहा है। अब तेरा हिंदुत्व और मेरा हिंदुत्व की जंग शुरू हो गई है। आज तक ब्यूरो।
2: वक्त हो चला अब छोटे से ब्रेक का, कुछ और खबरों के साथ होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: दिस इज द साउंड ऑफ लूसी स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ हर स्पेंडिंग। यू सी, इवन दो शी इज बाइंग अ न्यू पेयर ऑफ जींस, शी नोज दैट इट फिट्स विद इन हर मंथली बजट। Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
9: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
10: Tune in's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
11: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
7: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.

पंजाब में आपस में हाथ आजमाते दिख रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजवर्णी को हटाने पर अड़ी चन्नी गुट। रंधावा ने बताया कॉम्प्रोमाइज लीडर। आला कमान के दरबार में पहुंचा झगड़ा। उमर के ऑपरेशन लोटस वाले बयान पर बौखलाई बीजेपी। कहा दो सबूत या मांगो माफी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने लगाया था आरोप, हमारे विधायकों को खरीदने की हो रही है साजिश। बीजेपी ने प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के गिनाए 10 फायदे। कहा इंडो पैसिफिक में भारत बना बड़ी ताकत। वैश्विक साझेदारियों को मिली नई मजबूती। कांग्रेस का कटाक्ष। ट्विशा केस में एम्स ने सीबीआई को सौंपी दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सूत्रों से खबर, फंदे के लिए इस्तेमाल, बेल्ट पर मिले स्किन टिश्यू। चोट के निशान से हुए मैच। अमेरिकी हमलों की नई किश्त के बीच में दुनिया के सामने आएंगे मुज्तबा खामेनेई। मंगलवार की सभा में करेंगे शिरकत। अटैक में मारे गए लोगों को देंगे श्रद्धांजलि। यूएस की तरफ से जारी है भयानक बमबारी।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। अब तक की जांच में खुलासा, 40 दिन में 70 बार चोरी हुई, सबसे ज्यादा चोरी अविनाश शुक्ला ने की, बदल दिया गया काउंटिंग सिस्टम। चढ़ावा चोरी के खिलाफ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का सुंदरकांड, देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। केजरीवाल पर बीजेपी का निशाना बनाया, बताया चुनावी हिंदू, कहा चुनाव करीब आते ही इनको भगवान राम की याद आती है। अयोध्या राम मंदिर में दान की चोरी पर संघ ने जताया, तो कहा कि भविष्य में ना हो ऐसा, एसआईटी जांच पर भरोसा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान, मंदिर के नए सीईओ की शक्ति और जिम्मेदारियां पूरी तरह से मंदिर ट्रस्ट तय करेगा, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। शिवसेना यूपीटी के विधायक आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान, कहा कि हम भगवान राम को बीजेपी से बचा रहे, बीजेपी अब बाबर जनता पार्टी बन गई। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने विपक्ष को बताया औरंगजेब की औलाद, पूछा कि हज और मस्जिद में चंदे में गड़बड़ी पर विपक्ष चुप क्यों है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बीच में अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, पुलिस कंट्रोल रूम के मुताबिक 21 जून से 3 जुलाई के बीच में पिछले साल की तुलना में ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। उत्तराखंड सरकार ने बद्रीनाथ मंदिर समिति के सीईओ को दिया निर्देश, दान चोरी के मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो। नागौर में 146 दिन की जांच में बुटाडी धाम मंदिर समिति पर 22 करोड़ के गबन का खुलासा, 11 पदाधिकारियों पर एफआईआर की सिफारिश। ज्ञानवापी विवाद विशेष लोक अदालत में भेजा गया, सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत से समाधान पर दिया जोर, 21 से 23 अगस्त को विशेष लोक अदालत। मानसून सत्र से पहले 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक होगी, 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र प्रारंभ। बीजेपी ने गिनाई पीएम मोदी के विदेश दौरे की उपलब्धियां, बताया 10 बड़े फायदे, इंडो पैसिफिक में भारत की ताकत बढ़ी है। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया का दौरा कर राष्ट्राध्यक्षों से भेंट की, खास तोहफे गिफ्ट पर उत्तराखंड, कश्मीर, ओडिशा की झलक भी दिखाई। न्यूजीलैंड के नेता प्रतिपक्ष को पीएम मोदी की तरफ से दिए गए गिफ्ट पर यूपी के मुख्यमंत्री ने जताई खुशी, कहा लखनऊ की विश्वविख्यात हस्तशिल्प जरी जरदोजी की वॉल हैंगिंग कुशल शिल्पकारों की साधना। बाबा रामदेव का बयान, हिंदू राष्ट्र किसी को डरने की जरूरत नहीं, धर्म बदलने से पूर्वज बदलते नहीं। झांसी में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को बताया नमाजवादी पार्टी का, 2014 से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साफ हो रही है। आजमगढ़ में ओम प्रकाश राजभर के समर्थकों की जुटी भीड़, राजभर ने महारैली में अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा कि बरसों तक एसपी ने प्रजापति समाज के अधिकारों की अनदेखी की। मणिपुर संकट को लेकर कांग्रेस ने केंद्र को फिर से घेरा, कहा कि पीएम जवाबदेही के बजाय अपनी छवि पर ध्यान दे रहे हैं। महाराष्ट्र में यूसीसी को लेकर बने 7 सदस्यीय कमेटी पर एआईएमआईएम का बयान, यूसीसी को बताया असंवैधानिक, कहा कि बनाई गई कमेटी में एक भी मुस्लिम नहीं है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले नरोत्तम मिश्रा, दतिया में हुए विरोध प्रदर्शन पर सफाई दी। उमर के ऑपरेशन लोटस वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा कि दो सबूत या मांगो माफी, उमर अब्दुल्ला ने अपने विधायकों को बीजेपी से 30 करोड़ रुपए तक ऑफर देने का आरोप लगाया था। नया वोटर बनने के लिए चुनाव आयोग ने बदला नियम, फॉर्म 6 में जुड़ा नया कॉलम, एसआईआर की भी देनी होगी जानकारी। नीट पेपर लीक मामले में सभी 13 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 24 जुलाई तक बढ़ाई गई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली के राउंड सेवन कोर्ट में पेश किया गया। विशा शर्मा मौत केस में दिल्ली एम्स ने सीबीआई को सौंपी फॉरेंसिक रिपोर्ट, जिम्नास्टिक बेल्ट पर स्किन टिश्यू के निशान, बेल्ट का इस्तेमाल फंदे के रूप में हुआ था। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सम्राट सरकार का बड़ा कदम, आज पटना में हेली एयर टूरिज्म सेवा का शुभारंभ करेंगे। मानसी सहरसा रेलखंड में दोहरीकरण की मंजूरी के बाद से सांसद दिनेश चंद्र यादव का अभिनंदन, मधेपुरा से जेडीयू सांसद की, स्थानीय लोगों ने जमकर की तारीफ। नासिक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अशोका हेल्थ सिटी का किया उद्घाटन, लगभग 9 लाख वर्ग फुट में बनकर तैयार हुआ है। पुणे में केतन हत्याकांड में परिवार का छलका दर्द, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दर्द भरा पत्र लिखा, इंसाफ की मांग। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में बनेगा यूपी का पहला डबल डेकर फ्लाई ओवर, ग्रेटर नोएडा से गाजियाबाद का सफर होगा आसान, जाम से भी मिलेगी मुक्ति। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, जंगल से नक्सलियों के छुपाए हुए हथियार जब्त। यूपी में एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत रविवार को 35 करोड़ पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण के साथ हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना मकसद। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में पुलिस बदमाशों में मुठभेड़ में 4 शातिर लुटेरे दबोचे गए, सोसाइटी में विला में लूट का खुलासा। असम के बोंगाई गांव में 6 करोड़ से ज्यादा के रुपए की ड्रग्स आके हवाले की गई, 2024 से रखी हुई थी ड्रग्स। बिहार के मोतिहारी में स्वास्थ्य विभाग की खुली पोल, पताही सीएचसी में ऑक्सीजन की कमी से एक मरीज की मौत। मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कार्यक्रम में सुरक्षा घेरा तोड़कर घुसा युवक, खुद को राष्ट्रीय एथलीट बताया, दरोगा पर फर्जी केस का आरोप लगाया। पटना के दस सर्कुलर रोड बंगले में गेट
हरे से अब गेरुवे रंग के हो गए हैं। यहीं पर पहले लालू यादव राबड़ी देवी रहते थे और अब बीजेपी के मंत्री नंद किशोर रहेंगे। बिहार के लखीसराय में नीट फर्जीवाड़े मामले में 30 लोगों को भेजा गया जेल। 21 जून को नीट की दोबारा परीक्षा के दौरान पुलिस ने किया था गिरफ्तार। लॉरेंस गैंग से जुड़े 3 शूटर दिल्ली से गिरफ्तार। दिल्ली में हत्या की रच रहे थे साजिश। नोएडा में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा गया। 4 आरोपी पकड़े गए। सूरत में चलती बीआरटीएस बस के नीचे धंसी सड़क। 15 फीट गहरे गड्ढे में फंसा टायर। ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। पालघर में ड्रोन में कैद हुआ ऐतिहासिक तांदुलवाड़ी गढ़ के तबाही का मंजर। भारी भूस्खलन के चलते पहाड़ का बहुत बड़ा हिस्सा गिरा। दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंडस्लाइड, दबे कई वाहन। और आज तक 9 जुलाई को लापरवाही को लेकर प्रशासन को अलर्ट भी किया था। देहरादून मसूरी मार्ग पर भूस्खलन से घंटों प्रभावित हुआ ट्रैफिक। पर्यटक स्थानीय लोग परेशान। बिहार के रोहतास में मानसर कुंड जलप्रपात पर्यटकों के लिए 1 हफ्ते के लिए बंद। कचरा और गंदगी के बाद वन विभाग का फैसला। गुरुग्राम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने गर्लफ्रेंड को चाकू से गोदा, फिर ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। दिल्ली के अलीपुर में बड़ा हादसा। पानी से भरे हुए गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत। राजस्थान के डूंगरपुर में दर्दनाक हादसा। नदी में नहाने गए 4 बच्चों की डूबकर हुई मौत। यूपी के ललितपुर में पुलिस के सामने 2 गुटों में मारपीट और पत्थरबाजी। 6 लोग घायल। उधम सिंह नगर के दामका में किनारे चली गोलियां और आपसी विवाद में युवक घायल, दोनों पक्ष फरार। दिल्ली पुलिस ने सुलझाई गुत्थी। एक शख्स को चाकू से गोदकर मारने वाले 5 नाबालिग गिरफ्तार। दिल्ली के राजौरी गार्डन में तेज रफ्तार कार की चपेट में आया एक शख्स, जान चले गई। वाराणसी के तेलिया नाला इलाके में गेस्ट हाउस संचालक ने एक शख्स को पीटा। 3 साथियों के साथ वारदात को दिया अंजाम। FIR। भोपाल में बैरागढ़ इलाके में स्कॉर्पियो ने बुजुर्ग को मारी टक्कर। मौके पर ही साइकिल सवार बुजुर्ग की मौत। हरिद्वार में सप्तऋषि क्षेत्र में ऑटो की ई रिक्शा से टक्कर, कई यात्री इसमें घायल। बिहार के वैशाली में महिला सिपाही और उसकी बहन को अगवा करके दुष्कर्म करने का आरोप। आरोपी से पहले से ही महिला होमगार्ड सिपाही का प्रेम प्रसंग था। पटना में थार चालक से पुलिस कर्मियों को कुचलने की कोशिश की गई। ट्रैफिक पुलिस ने थार चालक को घेर कर पकड़ लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में पेंशन भोगी के खाते में अचानक आए 759 करोड़। बैलेंस चेक करते ही उसके होश उड़े। 10 मिनट के बाद खाते में बैलेंस फिर 0। बिहार के समस्तीपुर में 200 साल पुरानी अष्टधातु की मूर्ति की चोरी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। बिहार के रोहतास में 50 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद। पुलिस ने छत्तीसगढ़ का एक ट्रक भी किया जब्त। पटना में नशे में पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल। मेडिकल जांच पुष्टि के बाद भेजा गया जेल। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवक युवती के साथ भीड़ ने की मारपीट, वीडियो वायरल। गुजरात के पाटन में नकली विदेशी शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार। राजकोट में ब्रांडेड मसालों के नाम पर सेहत से खिलवाड़। फूड एंड ड्रग्स विभाग ने कार्रवाई की। 42 लाख रुपए के संदिग्ध मिलावटी मसाले जब्त। सोनीपत में बैटरी चोरी करने के शक में बच्चे को करंट देकर 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। पुलिस कर रही है जांच। एमपी के सागर में मवेशी लेने के लिए गए 2 मासूमों की मौत। तालाब में डूबने से शिवम लवकुश की जान। सूरत में 6 महीने पहले पिता की हत्या के बाद से अब पुत्र की भी हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने वाला घायल। जालना में जाफराबाद तहसील में शमशान घाट तक पक्की सड़क ही नहीं है। ट्रैक्टर में रखकर नाले के रास्ते शमशान घाट तक शव ले जाने को मजबूर है। चंडीगढ़ में 3 मर्सिडीज ने 2 लोगों को रौंदा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चश्मदीदों के मुताबिक कोई नाबालिग चला रहा था। ओडिशा के सुंदरगढ़ में छत्तीसगढ़ की नाबालिग से गैंगरेप। शौच के दौरान अगवा करके 7 युवकों ने दरिंदगी की, जंगल में छोड़कर फरार हो गए। कोटद्वार में घर में घुसा हाथियों का झुंड, सीसीटीवी में कैद। दहशत में स्थानीय लोग और वन विभाग बेखबर। केदारनाथ यात्रा ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। 14 लाख के पार पहुंचा श्रद्धालुओं का आंकड़ा। सोमनाथ यात्रा के लिए चमोली से 40 श्रद्धालुओं का दल रवाना। सरकार की निःशुल्क पहल का उत्साह। पुरी की गुंडीचा मंदिर में रथ यात्रा की तैयारियों का अंतिम रूप दिया गया। मंदिर के जीर्णोद्धार और ढांचागत मरम्मत का काम तेजी से। फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची अर्जेंटीना स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराकर बनाई जगह। वियतनाम में 15 भारतीयों की मौत पर एक्शन। पुलिस ने बोट कैप्टन को हिरासत में लिया। ओमान तट के पास कमर्शियल शिप पर बड़ा हादसा। 11 भारतीय थे सवार, 1 लापता। अमेरिका ने ईरान में लगभग 140 ठिकानों पर हमला किया। युद्ध मंत्री बोले कि ईरान को चुकानी होगी कीमत। अमेरिकी एयर स्ट्राइक में ईरानी नेवी ऑफिसर की मौत। 4 दिन में 19 सैन्य कर्मियों के मारे जाने का दावा।
ईरान ने अमेरिका पर फिर किया पलटवार, अमेरिकी हमलों के दौरान खुर्माबाद इलाके में आई आईआरजीसी ने एक क्रूज मिसाइल को मार गिराया। ईरान में आयतुल्ला अली खामेनेई की श्रद्धांजलि सभा में मौजूद रहेंगे मुज्तबा खामेनेई। ईरानी मीडिया के हवाले से यह खबर। ईरान अमेरिका तनाव के बीच ट्रंप का बड़ा दावा, कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला हुआ है। इसराइल में 27 अक्टूबर को होंगे चुनाव, नेतन्याहू गठबंधन का ऐलान। बांग्लादेश में भारी बारिश के साथ लैंडस्लाइड, कम से कम 51 लोगों की मौत। कनाडा के टोरंटो में स्ट्रीट फेस्टिवल में अंधाधुंध फायरिंग, दो लोगों की मौत।

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि क्यों दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स की जान संकट में बताई जा रही है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। उनकी जान पर इस वक्त सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के जनाजे में उमड़ी लाखों की भीड़ ने ट्रंप को खत्म करने की कसम खाई है। तेहरान से लेकर मशहद बाकायदा ट्रंप की हत्या की कस्में खाई और खिलवाई जा रही है। इसी बीच इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने अमेरिकी CIA को एक बेहद खतरनाक इनपुट दिया है, जिसके अनुसार ईरान डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की एक बहुत बड़ी और नई साजिश रच रहा है। इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के परिसर में नमाज हुई थी। आज उत्तर प्रदेश की सियासत में ये सवाल जोर शोर से गूंज रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक दावे ने 23 साल पुराने पन्नों को खोल कर रख दिया है, जिसमें आरोप है कि साल 2003 में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाई गई थी। आज आपको ऐतिहासिक तस्वीरों और दस्तावेजों के जरिए बताएंगे कि आखिर इस दावे का सच क्या है और क्या हमारे देश के पुरुष महिलाओं की ना का मतलब समझते हैं। इंडिया टुडे के ग्रॉस डोमेस्टिक बिहेवियर सर्वे में जब यही सवाल देश की महिलाओं के सामने रखा गया तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। सर्वे के अनुसार करीब 25% पुरुष अब भी ना सुनने के बाद महिलाओं पर अपनी मर्जी थोपते हैं या नाराज हो जाते हैं। आखिर में वो खबर जो हर माता पिता को देखनी चाहिए, डराना, धमकाना, मजाक उड़ाना, जिसे हम बच्चों की आपसी लड़ाई कहकर नजरअंदाज कर देते हैं, वो क्लासरूम बुलिंग आज हमारे बच्चों की जान ले रही है। जयपुर का अमायरा खुदकुशी केस इसका वो खौफनाक सच है जिसने स्कूल प्रशासन, टीचर्स और पेरेंट्स की संवेदनशीलता पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अगर बच्चे की किसी बात को आप हल्के में लेते हैं तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। क्या आज से 23 साल पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में अयोध्या के हनुमानगढ़ी परिसर में रोजा इफ्तार और नमाज हुई? ये सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आरोपों के बाद खड़ा हुआ। बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश के DGP रहे ब्रजलाल ने यहां तक कहा कि 2003 में समाजवादी पार्टी के करीबी पुलिस अधिकारी ने हनुमानगढ़ी की छत पर नमाज पढ़ाने की कोशिश की थी। आज आपको इसका पूरा सच तस्वीरों के साथ बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ये पहली बार नहीं है जब योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे पर खुलकर बोले हैं। जिस वक्त हनुमानगढ़ी में रोजा इफ्तार की कोशिश हुई, उस वक्त योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद थे और उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया था। यहां तक कि उन्होंने हनुमानगढ़ी में इसके विरोध में रैली भी की थी। लेकिन सवाल यह है कि आज योगी आदित्यनाथ को इतिहास की परतें खोलने की जरूरत क्यों महसूस हुई? दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब तक हिंदुत्व की पिच पर बैकफुट पर खेलने वाला विपक्ष खुद को सबसे बड़ा सनातनी साबित करने की होड़ में जुटा हुआ है। कभी मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोप झेलने वाली समाजवादी पार्टी अब जो सनातन है वही समाजवाद है के नारे लगा रही है। इसके जवाब में योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए इतिहास का पन्ना खोल दिया। उन्होंने वर्तमान के दावों को 2003 के हनुमानगढ़ी इफ्तार विवाद के आईने में खड़ा कर समाजवादी पार्टी को बेनकाब करने की कोशिश की है और कहा कि इन लोगों ने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप किया था।
1: जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था?
0: आज हम इतिहास को खंगालते हुए इन आरोपों का पूरा सच आपको बताएंगे। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। पूरा घटनाक्रम साल 2003 का है, जब मायावती की सरकार गिरने के बाद 29 अगस्त 2003 को मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। इससे ठीक एक हफ्ते पहले 22 अगस्त 2003 को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट को सौंप दी थी, जिसमें बताया गया कि विवादित ढांचे के नीचे 12वीं सदी के प्राचीन मंदिर के अवशेष और स्तंभ मौजूद थे। उस समय उत्तर प्रदेश, खासकर अयोध्या में राम मंदिर को लेकर माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ था। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में 17 अक्टूबर को संकल्प दिवस और कार सेवा का बड़ा आह्वान किया था, जिसकी वजह से अयोध्या में माहौल तनावपूर्ण था। सरकार के सामने कानून व्यवस्था को संभालने के साथ अपने कोर वोटर को भी भरोसा दिलाने की चुनौती थी। यहीं से शुरुआत हुई एक सॉफ्ट काउंटर की, जिसके मुख्य केंद्र बने हनुमानगढ़ी के तत्कालीन महंत ज्ञानदास। उस समय वो हनुमानगढ़ी के सबसे ताकतवर संतों में से एक थे और विश्व हिंदू परिषद की उग्र हिंदुत्व की राजनीति के धुर विरोधी थे। महंत ज्ञानदास मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाते थे। पिछले साल का उनका बयान भी चर्चाओं में रहा था, जब उन्होंने कहा था कि दुनिया में मुलायम सिंह से अच्छा नेता कोई नहीं। 2003 में महंत ज्ञानदास की उदारवादी छवि और उनके रसूख का इस्तेमाल करके अयोध्या का माहौल शांत करने और वीएचपी के आंदोलन को कुंद करने के लिए योजना बनाई गई। ये तारीख थी 20 नवंबर 2003 की और तब मुसलमानों का पवित्र महीना रमजान चल रहा था। उस दौरान महंत ज्ञानदास ने सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे के नाम पर एक जोरदार पहल की। उन्होंने हनुमानगढ़ी के 52 बीघे के विशाल परिसर के भीतर स्थित अपने आधिकारिक निवास पर मुस्लिम समुदाय के लिए एक भव्य रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इस ऐतिहासिक लेकिन विवादित इफ्तार में अयोध्या के बड़े मुस्लिम चेहरे शामिल हुए। इसमें बाबरी मस्जिद के तत्कालीन पक्षकार हाशिम अंसारी और मुस्लिम नेता सादिक अली उर्फ बाबू टेलर भी थे। इसके अलावा करीब 500 मुसलमान इस रोजा इफ्तार के लिए पहुंचे। आरोप है कि इस दौरान लखनऊ जोन के तत्कालीन आईजी सरकार को खुश करने के लिए हनुमानगढ़ी मंदिर के नियमों को ताक पर रखने के लिए तैयार थे। वो देश भर में बड़ा संदेश देने के लिए इस आयोजन को हनुमानगढ़ी की छत पर या मंदिर के ठीक सामने मुख्य सड़क पर सार्वजनिक रूप से करवाना चाहते थे, लेकिन जमीन पर सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे फैजाबाद के तत्कालीन एसएसपी ने इस कथित दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उनका तर्क था कि हनुमानगढ़ी के मुख्य परिसर या सार्वजनिक सड़क पर ऐसी नई परंपरा की शुरुआत से हिंदू संगठन भड़क सकते हैं और अयोध्या में माहौल बिगड़ सकता है। जब सड़क पर अनुमति नहीं मिली तो यह कार्यक्रम हनुमानगढ़ी परिसर में ही महंत ज्ञानदास के घर के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन रोजा इफ्तार के बाद नमाज के लिए ज्यादा जगह की जरूरत महसूस हुई तो महंत ज्ञानदास के आवास की बाहरी सीढ़ियों पर चटाई बिछाई जाने लगी। ये सीढ़ियां हनुमानगढ़ी मंदिर के मुख्य रास्ते से भी सटती थी। तब सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए उन्हें तुरंत वहां से हटवा दिया, ताकि कोई कानूनी या धार्मिक मर्यादा न टूटे। जिसके बाद आवास के अंदर ही नमाज हुई और इसके लिए दीवारों पर बने देवी देवताओं के चित्र और धार्मिक प्रतीक भी ढक दिए गए, जो तस्वीरों में साफ नजर आता है। हनुमानगढ़ी परिसर में हुई इस रोजा इफ्तार और नमाज का दूसरे हिंदू संतों और संगठनों ने जोरदार विरोध किया। हनुमानगढ़ी के ही महंत धर्मदास और महंत मधुसूदन दास ने विश्व हिंदू परिषद के समर्थन से फैजाबाद की सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका तर्क था कि मंदिर के उपनियमों के अनुसार 52 बीघे के इस पवित्र परिसर के भीतर किसी भी गैर सनातन धार्मिक गतिविधि या नमाज की अनुमति नहीं दी जा सकती। उस वक्त गोरखपुर के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ ने भी हनुमानगढ़ी में रोजा इफ्तार का जोरदार विरोध किया था और इसके विरोध में रैली भी की थी, जिसका दावा महंत धर्मदास ने भी किया है। 2005 में जब रमजान के दौरान तीसरे साल भी हनुमानगढ़ी में इफ्तार की तैयारी चल रही थी, तब विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर के बाहर 10 दिनों का उग्र धरना शुरू कर दिया। इसी बीच 1 अक्टूबर 2005 को कोर्ट ने यहां रोजा इफ्तार पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसकी वजह से 2005 में हनुमानगढ़ी में इफ्तार नहीं हो सका और विश्व हिंदू परिषद और तमाम संतों ने हनुमानगढ़ी में घी के दिए जलाकर दिवाली से पहले दीपावली मनाई। लेकिन जनवरी 2006 में कोर्ट ने महंत धर्मदास की मुख्य याचिका को ही खारिज कर दिया और पूर्व में लगाए गए स्टे को हटा लिया, यानी कानूनी रूप से इफ्तार के आयोजन को गलत नहीं माना गया। हालांकि अदालत से हरी झंडी मिलने के बाद भी 2006 के बाद हनुमानगढ़ी में फिर कभी इफ्तार नहीं हुआ। इसके पीछे आंतरिक दबाव और कानून व्यवस्था से जुड़ी वजह रही, क्योंकि अखाड़ों के भीतर महंत ज्ञानदास का तीव्र विरोध शुरू हो गया था। उन्हें अखाड़े से निष्कासित करने की भी चेतावनी दी गई। एक दूसरे मामले को लेकर महंत ज्ञानदास और महंत धर्मदास के समर्थकों में झड़प भी हुई थी। चौतरफा घिरे महंत ज्ञानदास ने आखिरकार हनुमानगढ़ी में रोजा इफ्तार से तौबा कर ली।
2: हनुमानगढ़ी के पीछे उनका जो मकान है, वो अपने मकान में बुला करके मुसलमानों के रोजा इफ्तार के समय था, क्या था, उसी समय उन्होंने बुला करके भोजन कराए, नमाज पढ़वाए। तब हम लोग कोर्ट में गए और वहां पर हनुमान जी के दया से आपके पक्ष में आर्डर भेजा कि हनुमानगढ़ी एरिया में, जितना दूर में हनुमानगढ़ी के एरिया है, उसमें कोई भी अवैधानिक का नाम है हिंदू परंपरा के विरुद्ध में कोई कार्य नहीं किया जा सकता है, करता है तो उसको रोका जाए और दंड दिया जाए। लेकिन इन लोगों को कोई दंड नहीं किया गया, माफी मांग लिए कि हमसे गलती हो गया, वो इसको छोड़ दिए।
0: अब आपको प्रधानमंत्री मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के बारे में बताएंगे, जहां उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। क्रिकेट के मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया कट्टर प्रतिद्वंद्वी हैं, लेकिन कूटनीति की पिच पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज एक साथ उतरे, तो दोनों के बीच बेहतरीन तालमेल के साथ लंबी साझेदारी की रणनीति नजर आई। इस दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के समझौतों के ऐलान के चौके छक्के तो लगे ही, दोनों देशों ने कूटनीति के हर क्षेत्र में कीर्तिमान बना दिए। दुनिया के कई देशों में भारतीय समुदाय के साथ संवाद के बड़े आयोजनों को संबोधित कर चुके पीएम मोदी ने एक रिकॉर्ड मेलबर्न में भी बनाया, जहां उन्हें सुनने के लिए मार्वल स्टेडियम 30,000 भारतवंशियों से खचाखच भरा था।
3: इक्कीसवीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। पिछले 12 वर्षों में भारत के 2 दर्जन से अधिक शहरों में मेट्रो नेटवर्क पहुंच चुका है। घर में दूध ऑस्ट्रेलिया वाला आता है, लेकिन चाय भारत वाली बनती है। हम दोनों देशों की साझेदारी को एक और सेक्टर मजबूती देता है, ये सेक्टर है स्पोर्ट्स, खेलकूद। मुझे पूरा विश्वास है स्पोर्ट्स के क्षेत्र भी ऑस्ट्रेलिया और भारत की पार्टनरशिप का और विस्तार होके रहेगा।

अब आपको साल 2010 की वो घटना बताते हैं जब अखबारों की हेडलाइंस थी कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को यूरेनियम देने से इनकार कर दिया। और अब आप दूसरी तस्वीर देखिए जो प्रधानमंत्री मोदी के मौजूदा दौरे से जुड़ी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का मीडिया भारत के साथ यूरेनियम डील की तारीफ प्रधानमंत्री मोदी को रॉकस्टार बताते हुए कर रहा है। ये वो ऐतिहासिक डील है जो आने वाले दशकों में भारत की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकती है। भारत को करीब 2 दशक से यूरेनियम की निर्बाध सप्लाई का इंतजार था, अब उससे अनिश्चितता के बादल छंटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम सप्लाई को लेकर एक ऐसी महाडील पर मुहर लग चुकी है जो भारत को ऊर्जा के क्षेत्र की बड़ी चिंताओं को खत्म कर सकती है। वास्तव में आने वाला वक्त उसका होगा जिसके पास क्लीन एनर्जी की चाबी होगी, और इस चाबी का सबसे बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया के पास है। दुनिया के कुल यूरेनियम भंडार का करीब 28% हिस्सा अकेले ऑस्ट्रेलिया की धरती के नीचे दबा है। आंकड़ों में कहें तो लगभग 17 लाख टन यूरेनियम। दूर दूर तक कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया के इस आंकड़े के आसपास भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में साल 1954 से ही यूरेनियम का खनन हो रहा है। मौजूदा वक्त में वहां 3 बड़ी खदानें एक्टिव हैं। भारत के लिए यूरेनियम पाने का यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है। इस कहानी की शुरुआत साल 2005 में हुई थी जब भारत अमेरिका के बीच सिविल न्यूक्लियर डील की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसके तहत भारत बिजली बनाने के लिए दुनिया से परमाणु ईंधन यानी यूरेनियम खरीद सकता था, लेकिन सवाल यह था कि यह परमाणु ईंधन आएगा कहां से। 2014 में ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम सप्लाई को लेकर सहमति तो बनी, लेकिन दोस्ती के बड़े बड़े वादों और मजबूत इरादों के बाद भी ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम की वास्तविक सप्लाई शुरू करने से हिचकता रहा। यानी 12 साल बाद भी ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम सप्लाई शुरू नहीं हो पाई। असल में ऑस्ट्रेलिया परमाणु अप्रसार संधि को लेकर बेहद सख्त है। वो आश्वस्त होना चाहता था कि उसके यूरेनियम का इस्तेमाल सिर्फ शांतिपूर्ण बिजली उत्पादन के लिए हो, न कि हथियारों के लिए। लेकिन कड़े कूटनीतिक प्रयासों और परमाणु सुरक्षा और शांति विधेयक पारित होने के बाद ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम मिलने का रास्ता पूरी तरह खुल गया। अब समझिए कि भारत को यूरेनियम की इतनी प्रचंड जरूरत क्यों है। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। हमारी ऊर्जा जरूरतें अब सिर्फ घरों में पंखे और लाइट जलाने तक सीमित नहीं है। भारत आज AI, सुपर कंप्यूटर और डेटा सेंटर्स का हब बन रहा है। इन आधुनिक उद्योगों को 24 घंटे बिना 1 सेकंड के कट के भारी मात्रा में बिजली चाहिए होती है। अब तक भारत अपनी 70% से ज्यादा बिजली के लिए कोयले पर निर्भर रहा है, लेकिन पर्यावरण को बचाना है और कार्बन एमिशंस को जीरो करना है तो हमें कोयले से पीछा छुड़ाना होगा। सोलर और विंड एनर्जी क्लीन एनर्जी है, लेकिन वो मौसम पर भी निर्भर करते हैं। ऐसे में न्यूक्लियर एनर्जी एकमात्र ऐसा जरिया है जो बिना प्रदूषण फैलाए लगातार और भारी मात्रा में बिजली दे सकता है। ऑस्ट्रेलिया से आने वाला ये यूरेनियम भारत के मौजूदा और भविष्य में बनने वाले दर्जनों परमाणु संयंत्रों के लिए संजीवनी का काम करेगा। अभी भारत में 7 अलग अलग जगहों पर 24 एटॉमिक पावर स्टेशन काम कर रहे हैं जो देश को परमाणु ऊर्जा से बिजली सप्लाई कर रहे हैं। 2014 में न्यूक्लियर पावर से बिजली उत्पादन की क्षमता 4.7 गीगावाट थी, जो 2025 में 84% बढ़कर 8.4 गीगावाट हो चुकी है। लेकिन इसके बाद भी कुल बिजली उत्पादन में परमाणु बिजली की हिस्सेदारी 3% के आसपास ही रही है। 2031-32 तक परमाणु ऊर्जा से 22.38 गीगावाट बिजली उत्पादन का अनुमान है, और भारत ने 2047 तक परमाणु ऊर्जा 100 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है, और ये यूरेनियम की निर्बाध आपूर्ति से ही संभव हो पाएगा। जब भारत अपने 70% से ज्यादा बिजली उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर है, तब यह समझना भी बहुत जरूरी है कि सिर्फ 1 ग्राम यूरेनियम से उतनी ही बिजली पैदा की जा सकती है जितनी 2000 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाले कोयले को जलाने से मिलती है। यानी एक छोटी सी यूरेनियम की गोली एक मिडिल क्लास फैमिली को सालों तक बिजली दे सकती है। यही वजह है कि इसे दुनिया का सबसे कीमती ईंधन माना जाता है। इसीलिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ यह समझौता 2 देशों के बीच व्यापार का सौदा नहीं है,
बल्कि यह भारत की एनर्जी सिक्योरिटी की गारंटी है 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए। जिस असीमित और स्वच्छ शक्ति की जरूरत है, आज उसका रास्ता साफ हो गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ समझौता यूरेनियम या व्यापार की औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह अंतरिक्ष के असीम विस्तार से समुन्दर की अतल गहराई तक और क्रिटिकल मिनरल्स से लेकर डिफेंस सप्लाई चेन तक फैली एक ऐसी रणनीतिक दीवार है जिसे भेद पाना चीन जैसे विस्तारवादी ताकत के लिए मुमकिन नहीं होगा। आज इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र जियोपॉलिटिक्स का सबसे संवेदनशील अखाड़ा है। एक तरफ है चीन जो समुन्दर में अपनी दादागिरी के दम पर नए नियम लिखना चाहता है, दूसरी तरफ है भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जो नियमों के आधार पर इंटरनेशनल ऑर्डर के पैरोकार है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के समझौते से जुड़े बयानों में भले ही चीन का नाम सीधे तौर पर न लिया गया हो, लेकिन बैकग्राउंड में अदृश्य किरदार के रूप में ड्रैगन का खतरा साफ महसूस किया जा सकता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की जुगलबंदी इसी खतरे का मुकम्मल जवाब है। हिंद महासागर के मुहाने पर भारत है तो प्रशांत महासागर के द्वार पर ऑस्ट्रेलिया। दोनों देशों के लिए समुद्री सुरक्षा का सवाल है। समुद्र में चीनी नौसेना के आक्रामक रुख के अलावा एक और बड़ा संकट है, वो है चीन के जासूसी और फिशिंग ट्रॉलर्स। चीन के ये फिशिंग ट्रॉलर्स साधारण नावें नहीं है, बल्कि ये चलती फिरती समुद्र की फैक्ट्रियां हैं। हजारों टन वजनी ये जहाज समुद्र से भारी मात्रा में मछलियां अवैध रूप से निकाल लेते हैं। इनमें वहीं पर प्रोसेसिंग, पैकिंग, सप्लाई का पूरा सिस्टम होता है। चीन की इस आर्थिक दादागिरी की वजह से समुद्र में मछलियों के पनपने का चक्र टूट रहा है, स्थानीय मछुआरों के लिए आजीविका का संकट खड़ा हो रहा है और छोटे देश चीन से डिब्बा बंद मछली खरीदने पर मजबूर भी हो रहे हैं। यानी चीन अपने लोगों का पेट भरने के लिए दूसरों की रोजी रोटी छीन रहा है। इसी का मुकाबला करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप और मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस पर काम कर रहे हैं। अब दोनों देश रियल टाइम डेटा शेयर करेंगे कि समुद्र में कौन सी सबमरीन घूम रही है, कितने जहाज आ रहे हैं, किस देश के हैं। इसके जरिए समुद्र में होने वाली चीनी चालाकियों पर भी सख्त निगरानी रखी जाएगी। चीन की घेराबंदी के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया अकेले नहीं है, बल्कि वो क्वाड को और मजबूत कर रहे हैं। वही क्वाड जिसको लेकर कई लोग कहने लगे थे कि यह खत्म हो रहा है, लेकिन अब भारत उसे मजबूत कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया मुलाकातों का कैलेंडर इसकी गवाही दे देता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, जापान की प्रधानमंत्री से उन्होंने दो बार भेंट की, एक बार फ्रांस में, फिर वो भारत दौरे पर आई और अब ऑस्ट्रेलिया में अल्बनीज के साथ रणनीतिक मंथन हुआ। यानी करीब 3 हफ्तों में क्वाड के सभी शीर्ष नेताओं से मुलाकात। इन मुलाकातों से पहले भारत ने क्वाड विदेश मंत्रियों की सफल मेजबानी भी की थी। भारत सिर्फ क्वाड तक सीमित नहीं है, बल्कि वो हिंद महासागर के पड़ोसियों के बीच तालमेल की धुरी भी बन रहा है। ये देखना दिलचस्प है कि पीएम मोदी इंडोनेशिया के रास्ते ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जो ये भी दिखाता है कि चीन को काउंटर करने के लिए भारत एक मजबूत स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल बना रहा है। तभी तो प्रधानमंत्री मोदी के जकार्ता दौरे में इंडोनेशिया ने भारत से ब्रह्मोस और अस्त्र जैसी मिसाइल खरीद का फैसला किया है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया भी भारत के साथ रक्षा साझेदारी बढ़ा रहा है। इतना ही नहीं, भारत इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर रणनीतिक संवाद का त्रिकोण बना रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाएं अब सिर्फ शांतिकाल के अभ्यास नहीं कर रही हैं, बल्कि वास्तविक युद्ध जैसे हालात के लिए खुद को तैयार कर रही है। समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों और हवाई पट्टियों का इस्तेमाल कर सकेंगे। भारतीय लड़ाकू विमान और नौसैनिक जहाज ऑस्ट्रेलिया के रणनीतिक ठिकानों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मकसद दोनों देशों के हथियार, टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन सिस्टम को एक दूसरे के अनुकूल बनाना है, ताकि युद्ध की स्थिति में दोनों सेनाएं बिना किसी रुकावट के मिलकर काम कर सकें। भारत और ऑस्ट्रेलिया का समझौता हथियारों की खरीद और बिक्री तक सीमित नहीं है। युद्ध की स्थिति में हथियारों और कल पुर्जों की कमी न हो, इसके लिए दोनों देशों की रक्षा कंपनियां मिलकर जॉइंट प्रोडक्शन और मजबूत डिफेंस सप्लाई चेन का निर्माण करेंगी। आज के दौर में जंग सिर्फ बारूद से नहीं, टेक्नोलॉजी से जीती जाती है। स्मार्टफोन, सेमीकंडक्टर, रक्षा उपकरण और ईवी, इन सब के लिए लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ,
मिनरल्स की जरूरत है। फिलहाल क्रिटिकल मिनरल्स के 70% बाजार पर चीन का कब्जा है, इसे तोड़ना बेहद जरूरी है। लिथियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया दुनिया में सबसे आगे है, वो रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में संपन्न देशों में है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ क्रिटिकल मिनरल्स समझौता भारत में भविष्य की इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर है। यह सीधे तौर पर चीन की सप्लाई चेन ब्लैकमेलिंग को खत्म करने की दवाई भी है। समुंदर और जमीन के बीच तीसरा मोर्चा है डिजिटल दुनिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने तय किया है कि अब दोनों देश साइबर क्राइम और हैकर्स से निपटने के लिए हाथ मिलाएंगे। इतना ही नहीं, पहलगाम के आतंकी हमले का घाव झेलने वाला भारत और बॉन्डाई बीच आतंकी हमले से घायल ऑस्ट्रेलिया मिलकर न केवल आतंकवाद और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ेंगे, बल्कि ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए भी दोनों देशों की खुफिया एजेंसियां रियल टाइम इनपुट साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज की मुलाकात के दौरान एक बेहद महत्वपूर्ण और रणनीतिक ऐलान हुआ। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एल्बनीज ने घोषणा की है कि भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन यानी गगनयान को सफल बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया अपने स्ट्रेटेजिक आइलैंड कोकोस कीलिंग आइलैंड पर एक टेम्पररी स्पेस ट्रैकिंग टर्मिनल बनाने जा रहा है। जब भारत का गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर पृथ्वी के चक्कर काटेगा तो हिंद महासागर के ऊपर से गुजरते समय भारत से उसका सीधा संपर्क टूटने का खतरा रहता है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया का कोकोस कीलिंग आइलैंड्स ठीक उसी रूट के नीचे आता है। वहां बनने वाला ये ट्रैकिंग स्टेशन इसरो के वैज्ञानिकों को गगनयान के क्रू मॉड्यूल पर हर पल पैनी नजर रखने और पल पल का डेटा सीधे बेंगलुरु कंट्रोल सेंटर भेजने में मदद करेगा। इसकी अहमियत को इस बात से भी समझा जा सकता है कि ये कोकोस कीलिंग आइलैंड्स भारत के स्पेस पोर्ट श्रीहरिकोटा से 2800 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है, यानी ठीक ऐसी जगह पर जहां से लॉन्च के बाद अंतरिक्ष यान बंगाल की खाड़ी के ऊपर उठने के बाद अपने प्रक्षेपण मार्ग पर होता है और उसकी निगरानी सबसे महत्वपूर्ण होती है। गगनयान मिशन के लिए यह और भी जरूरी है क्योंकि इसके साथ भारत अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने वाला है। यह घोषणा ऐसे वक्त में हुई है जब इसरो ने गगनयान मिशन के लिए एक और मील का पत्थर छू लिया है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में वायुसेना के IL-76 मालवाहक विमान की मदद से 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई से गगनयान के मुख्य पैराशूट का सफल ड्रॉप टेस्ट किया गया। ये वही पैराशूट सिस्टम है जो अंतरिक्ष से लौटते वक्त हमारे अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करेगा। अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूजीलैंड दौरे के बारे में हम बताएंगे। पूरे 40 साल के लंबे इंतजार के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड की धरती पर पहुंचा है। आखिरी बार 1986 में राजीव गांधी न्यूजीलैंड गए थे। सोचिए, जब 1986 में राजीव गांधी न्यूजीलैंड गए थे तब वहां भारतीयों की आबादी केवल 20,000 थी, लेकिन आज वहां करीब 3 लाख भारतवंशी हैं जो न्यूजीलैंड की कुल आबादी का 6% है। आपको जानकर हैरानी होगी कि न्यूजीलैंड की इकोनॉमी में इन भारतीयों का योगदान 6 साल पहले $10 अरब था, जो आज $37 अरब हो चुका है, यानी 6 साल में करीब 4 गुना तरक्की। इस बात को न्यूजीलैंड भी समझता है और भारत भी। तमाम लोग न्यूजीलैंड से सिर्फ क्रिकेट का कनेक्शन समझते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला मैच क्रिकेट का नहीं बल्कि हॉकी का हुआ था। यह मैच 1926 में हुआ था, जिसे 100 साल पूरे हो रहे हैं। पीएम मोदी का यह पूरा दौरा एक बहुत ही सॉलिड प्लानिंग के तहत हुआ। ऑस्ट्रेलिया में तो उन्होंने डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, यूरेनियम से जुड़े समझौते किए। न्यूजीलैंड में वो भारतीय किसानों और खेती की बेहतरी के लिए खास समझौते करेंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है और उसकी तरक्की में सबसे बड़ा योगदान खेती के सफल और आधुनिक तरीकों का है। सोचिए, भारत में खेत से निकलकर मंडियों तक पहुंचते पहुंचते

माना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक और मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने न्यूजीलैंड से ही डेयरी शिक्षा प्राप्त की थी। उन्हें अमूल का आइडिया न्यूजीलैंड से ही मिला था। उन्होंने न्यूजीलैंड के कम्युनिटी डेयरी मॉडल फोंटेरा से ही सीखकर दूध का साम्राज्य खड़ा किया था। न्यूजीलैंड दूध, फल और कैश क्रॉप्स का राजा है। वहां की तकनीक और तरीके भारत के किसानों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। यानी प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा सीधे किसानों के हित से जुड़ा है। इस दौरान भारत ने बहुत स्मार्ट कूटनीति खेली है। भारत ने पहले ही ऑस्ट्रेलिया से ट्रेड डील कर ली। इसे देखकर न्यूजीलैंड को लगा कि भारत का बड़ा बाजार हाथ से निकल जाएगा। इसके बाद पिछले साल न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भारत आए, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की प्रक्रिया शुरू की। अब वहां चुनाव होने वाले हैं तो लक्सन चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर इस डील को और बड़ा कर लिया जाए। इसीलिए पीएम मोदी के न्यूजीलैंड पहुंचते ही उन्होंने 57% एक्सपोर्ट पहले दिन से ही हो जाएंगे टैरिफ फ्री करने का ऐलान कर दिया। हालांकि इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा विलन है चीन। न्यूजीलैंड की आबादी है केवल 54 लाख, जो भारत के एक बड़े शहर जितनी है, और यह छोटा सा देश पूरी तरह से व्यापार के लिए चीन पर निर्भर हो गया, जिससे दिक्कतें होने लगी। तब न्यूजीलैंड को समझ आया कि एक पर निर्भर होना ठीक नहीं है और न्यूजीलैंड ने भारत का हाथ थामना भी जरूरी समझा। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के जरिए भारत सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से ही हाथ नहीं मिला रहा, बल्कि इंडो पैसिफिक रीजन के उन 18 देशों को साथ लेकर चल रहा है जो चीन की दादागिरी से तंग आ चुके हैं। इसीलिए यह दौरा चीन को घेरने और हमारे किसानों की जेब भरने की रणनीति से जुड़ा हुआ है। और न्यूजीलैंड जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर पहुंचे थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मेलबर्न में होना हमेशा खास होता है और भारत ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट संबंध बेहद गहरे हैं। यहां बात सिर्फ मुलाकातों की नहीं है, बल्कि पीएम मोदी ने इस दौरे में क्रिकेट डिप्लोमेसी का वो बड़ा छक्का भी जड़ा जिसकी गूंज बरसों तक सुनाई देगी। आज जिस फटाफट क्रिकेट यानी T20 को देखकर पूरी दुनिया झूम उठती है, उसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। 2003 में पहली बार इंग्लैंड के काउंटी क्रिकेट में 2020 का जन्म हुआ, लेकिन इस फॉर्मेट को असली ग्लैमर और लीग का रूप दिया ऑस्ट्रेलिया ने जब वहां 2005-06 में KFC 2020 बिग बैश शुरू हुआ। सिर्फ 6 राज्यों की 6 टीमें और 6 जनवरी 2006 को पहला मैच खेला गया और देखते ही देखते यह टूर्नामेंट सुपर हिट हो गया था। फिर आया सितंबर 2007 का वो महीना, जोहानिसबर्ग में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर पहला T20 विश्व कप जीत लिया। इस मैच को दुनिया भर में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने टीवी पर देखा। इस वर्ल्ड कप के दौरान ही BCCI ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL का ऐलान कर दिया। क्रिकेट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो पुराना बिग बैश लीग था, उसी से प्रेरणा लेकर IPL का विशाल ढांचा तैयार किया गया था और अब इतिहास का पहिया घूमकर वापस वहीं आ गया है। जिस लीग से प्रेरणा लेकर भारत ने IPL शुरू किया, आज उसी बिग बैश लीग का ओपनिंग मैच भारत में होगा और इसके लिए चेन्नई के चिपॉक मैदान को चुना गया है। हालांकि इस साल दिसंबर के महीने में चेन्नई के मैदान पर चौके छक्कों की बरसात होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी की इस मेलबर्न यात्रा ने खेल की बिसात पर एक ऐसा मोहरा चला है जिसने क्रिकेट और कूटनीति दोनों को साथ ला दिया है।

0: डोमेस्टिक बिहेवियर सर्वे में हमने यही किया, हमने इसी तरह के कुछ अनछुए सवालों को देश की महिलाओं के सामने रखा। हमें इन सवालों के जो जवाब मिले वो हमारे भारतीय समाज का सच है। सबसे पहले तो हमारे लिए ये जानना जरूरी था कि समाज की कितनी महिलाएं संबंधों में कंसेंट यानी सहमति का असली मतलब समझती हैं। इस सवाल का जो जवाब हमें मिला उससे पता चलता है कि महिलाओं के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। हमारे देश की 62.5% उच्च शिक्षित महिलाएं संबंधों में सहमति का मतलब कम पढ़ी लिखी महिलाओं की तुलना में बेहतर समझती हैं, यानी महिलाएं जितना शिक्षित हो रही हैं वो अपने अधिकारों के प्रति और संबंधों में ना कहने को लेकर जागरूक होती हैं। इसके बाद सर्वे में एक बड़ा सवाल पूछा गया, महिलाओं से पूछा गया किसी काम को करने का उनका मन नहीं होता तो वो अपने पार्टनर को ना कैसे कहती हैं। इसके जवाब में 56% महिलाओं ने बताया कि वो सीधे ना कह देती हैं। 21% ने कहा कि उन्हें ना कहने में दिक्कत आती है और वो बहाने बनाती हैं। 20% महिलाओं ने कहा वो चाह कर भी ना नहीं कह पाती हैं। यानी महिलाओं में अपनी इच्छा के प्रति जागरूकता तो आई है लेकिन अभी भी कुछ महिलाओं में ना कहने को लेकर हिचक है। लेकिन सर्वे में एक और बात पता चली है, देश की 79% महिलाएं किसी भी तरह की परिस्थितियों में नो मीन्स नो के विचार का समर्थन करती हैं, यानी वो मानती हैं कि महिलाओं की ना का सम्मान होना चाहिए। इसीलिए हमारा अगला सवाल यही था कि संबंधों में महिलाओं द्वारा ना कहने पर उनके साथी उन्हें कितना समझते हैं, यानी पुरुष नो मीन्स नो को कितना सम्मान देते हैं। 56% महिलाओं ने कहा कि उनके साथी ना कहने पर तुरंत समझ जाते हैं और फैसले को पूरा सम्मान देते हैं। 13% महिलाओं ने कहा कि उनके साथी उनकी ना सुनने के बाद विचार बदलने का दबाव डालते हैं। 12% महिलाओं ने कहा कि ना सुनने के बाद उनके पार्टनर उन पर ज्यादती का आरोप लगाते हैं और नाराज हो जाते हैं। 10% महिलाओं ने कहा कि उन्हें अपने साथी को मना करने की या किसी तरह सीमा तय करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब ऐसे में एक सवाल और खड़ा होता है कि क्या भारतीय समाज में महिलाओं की सहमति और इच्छाओं को सम्मान दिया जाता है। हमारा अगला सवाल यही था, सर्वे में महिलाओं से पूछा गया कि क्या भारतीय समाज में उनकी सहमति और इच्छाओं को सम्मान मिलता है। 29% महिलाओं ने इस सवाल का जवाब हां में दिया। 47% महिलाओं ने कहा ऐसा कभी कभी होता है। 21% महिलाओं ने सीधे सीधे इनकार किया, उनका मानना था कि भारतीय समाज में महिलाओं की सहमति और इच्छा को सम्मान नहीं दिया जाता। माना जाता है कि कई बार महिलाओं की इच्छाओं और सहमति को स्वीकार करना उनके परिवार के पुरुषों के लिए भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इस सर्वे में महिलाओं से पूछा कि क्या भारतीय पुरुष जैसे पिता, भाई, पति या अन्य परिजन महिलाओं की सहमति के अधिकार को समझते या उसका सम्मान करते हैं। 62% महिलाओं ने इसका जवाब हां में दिया और 26% महिलाओं ने कहा कुछ समझते हैं कुछ नहीं। केवल 7% ने जवाब ना में दिया। यानी भारतीय समाज में एक बड़ा बदलाव तो आ रहा है जिसमें महिलाओं की इच्छाओं का सम्मान किया जाता है, हालांकि अभी भी महिलाओं और पुरुषों में इस तरह की सहमति और इच्छाओं को लेकर कुछ संकोच है, लेकिन स्थिति फिर भी बेहतर हुई है। भारत के कॉलेजों में रैगिंग पर पूर्ण प्रतिबंध है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद देशभर के कॉलेजों के लिए रैगिंग के खिलाफ कड़ा कानून है। कॉलेजों में रैगिंग के खिलाफ समाज में जरूरी जागरूकता भी दिखाई पड़ती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूलों में 4th, 5th, या 8th तक की छोटी क्लासेस में भी क्लासरूम बुली यानी किसी बच्चे को किसी साथी बच्चे से परेशान किया जाना देश के लिए एक गंभीर समस्या हो सकती है? क्या क्लासरूम बुली पर टीचर्स, स्कूल प्रशासन, अभिभावकों और सरकार को और ज्यादा संवेदनशील और सतर्क होने की जरूरत नहीं है? यह सवाल जयपुर के बहुचर्चित अमायरा खुदकुशी केस के नए तथ्यों से सामने आया है। क्लास 4 में पढ़ने वाली 9 साल की अमायरा ने 1 नवंबर 2025 को जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल की 4th मंजिल से छलांग लगा दी थी। इस मामले में पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। पुलिस की जांच में घटना वाले दिन क्लासरूम में क्या हुआ इसका सिलसिलेवार ब्यौरा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने यह साबित करने की कोशिश की कि क्लासरूम में अमायरा और दूसरे बच्चों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इस दौरान अमायरा ने अपनी बात क्लास में मौजूद टीचर पुनीता शर्मा को बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अमायरा की बात पर तवज्जो नहीं दिया। इसी के बाद बच्ची क्लासरूम में तेजी से निकली और फिर 4th मंजिल पर चली गई। पुलिस से हासिल इसी सीसीटीवी और जांच के इसी पहलू के आधार पर अमायरा के परिवार ने एक वीडियो जारी किया है। परिवार द्वारा जारी सीसीटीवी वीडियो पर वॉइस ओवर है जिसे पुलिस की जांच के निष्कर्ष के आधार पर अमायरा के परिवार ने तैयार किया है। आप भी उसी वीडियो के आधार पर तैयार हमारी ये रिपोर्ट देखिए।
1: अमायरा सबसे पहले क्लासरूम में आती है और बिल्कुल सामान्य दिखती है। कुछ देर बाद उसकी फ्रेंड क्लासरूम में आती है। अमायरा उससे मिलती है। दोनों के बीच एक नॉर्मल स्कूल इंटरेक्शन जैसा दृश्य दिखाई देता है। इसके बाद अमायरा डांस क्लास में जाती है। वो बाकी बच्चों के साथ एक्टिविटी में शामिल होती है। वो पार्टिसिपेट करती है, डांस करती है और पूरे समय एक नॉर्मल एक्टिव चाइल्ड की तरह दिखाई देती है। फिर अमायरा वापस क्लासरूम में आती है। ये वही डिजिटल स्लेट है जो क्लासरूम में अलाउड नहीं होनी चाहिए थी। क्लासरूम के अंदर टीचर की मौजूदगी में बच्चे उसे निकालते हैं और उस पर कुछ लिखते दिखाई देते हैं। फिर वही डिजिटल स्लेट बार बार अमायरा को दिखाई जाती है। यहीं से अमायरा की बॉडी लैंग्वेज बदलनी शुरू होती है। जो बच्ची कुछ देर पहले नॉर्मल थी वही अब असहज दिखाई देने लगती है। जिस डिजिटल स्लेट पर बार बार कुछ लिखकर उसे दिखाया जा रहा था, जिस वजह से वो परेशान और एम्बेरस दिखाई दे रही थी, इस समय अमायरा की बॉडी लैंग्वेज साफ दिखाती है कि वो हेल्प चाहती है। वो चाहती है कि टीचर इस बात को रोके। लेकिन तभी अमायरा के आगे बैठा बच्चा भी टीचर के पास आ जाता है। वो अमायरा की तरफ इशारा करता है और क्लास टीचर से कुछ कहता दिखाई देता है। अब जिस बच्ची ने खुद कंप्लेन करने के लिए टीचर के पास कदम बढ़ाया था, उसी मोमेंट में बात फिर उसके ऊपर घूमती हुई दिखाई देती है। क्लास टीचर कुछ बच्चों के पास जाती हैं। वो बच्चों से बात करती दिखाई देती हैं और उसी दौरान अमायरा की तरफ इशारा करके कुछ कहती हुई नजर आती हैं। यही वो मोमेंट है जहां अमायरा की बॉडी लैंग्वेज सबसे ज्यादा हिला देने वाली दिखाई देती है। और फिर अमायरा एक आखिरी बार क्लास टीचर के पास जाती है, लेकिन टीचर की बॉडी लैंग्वेज स्ट्रिक्ट दिखाई देती है, जैसे अमायरा को फिर किसी सीरियस कॉन्सिक्वेंस या एक्शन जैसी बात से डराया जा रहा हो। और फिर बातचीत के बीच ही अमायरा अचानक क्लास से बाहर निकल जाती है। और अब वही 9 साल की बच्ची स्कूल बिल्डिंग में अकेली भाग रही है, लेकिन कोई फ्लोर अटेंडेंट उसे रोकता हुआ नहीं दिखता। कोई टीचर तुरंत उसके पीछे जाती हुई दिखाई नहीं देती। क्लासरूम में एंटी बुलिंग रिस्पॉन्स नहीं दिखा, काउंसलिंग सपोर्ट नहीं दिखा,
2: और पुलिस अभी तक ये साफ नहीं कर पाई कि क्लासरूम के अंदर अमायरा से ऐसा क्या कहा गया
1: जिसने एक 9 साल की बच्ची को इतना डरा दिया कि वो इतना गंभीर कदम उठा बैठी।
0: आप सोचिए, अगर अमायरा मामले में पुलिस की जांच का यह पहलू सही है तो कितनी गंभीर बात है। 2017 में टीचर फाउंडेशन और विप्रो अप्लाइंग थॉट इन स्कूल्स नाम की संस्था ने 5 साल के शोध के बाद एक रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट के अनुसार क्लास 4 से क्लास 8 के 42% बच्चे और क्लास 9 से क्लास 12 के 36% बच्चे स्कूल में दूसरे साथी बच्चों से परेशान किए जाने के शिकार होते हैं। डराया जाना, तंग किया जाना, अपमानित किया जाना, मजाक उड़ाया जाना और लड़ाई झगड़े इसका हिस्सा है। स्कूल में जो बच्चे दूसरे बच्चों की प्रताड़ना करते हैं वो भी उतने ही वल्नरेबल हैं, क्योंकि उन्हें भी शायद इतनी समझ नहीं होती। पर सवाल है कि स्कूलों में इस समस्या से निजात पाने का उपाय क्या है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का सेक्शन 75 साफ कहता है कि बच्चों की जिस पर जिम्मेदारी है या जिसका नियंत्रण है, वो अगर खुद बच्चों की प्रताड़ना करता है या प्रताड़ना को नजरअंदाज करता है, उसे 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। अमायरा के मामले में क्लास में मौजूद टीचर पुनीता शर्मा के ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो अमायरा का पक्ष सुनती और उसे साथी बच्चों से बचाती, लेकिन पुलिस चार्जशीट के अनुसार उनकी तरफ से ऐसा नहीं किया गया। पुलिस चार्जशीट में पुनीता शर्मा के खिलाफ जेजे एक्ट के तहत आरोप दाखिल किए गए हैं, लेकिन अमायरा का परिवार चार्जशीट में स्कूल की प्रिंसिपल इंदु दुबे और स्कूल चेयरमैन सौरभ मोदी पर जेजे एक्ट में केस दर्ज नहीं करने पर सवाल उठा रहा है।
3: अभी भी सही सेक्शंस नहीं लगे हैं। जेजे 75 लगा है जो कि पुनीता शर्मा क्लास टीचर पे लगा है सिर्फ, वो इंदु दुबे और सौरभ मोदी पे नहीं लगा। अबेटमेंट टू सुसाइड लगना चाहिए बिल्कुल। आप वीडियो देखेंगे, आप देख पाएंगे कि उसको किस तरीके से स्कूल में प्रताड़ित किया गया है। वो एकदम खुश स्टेट ऑफ माइंड में आपको डांस करते हुए दिखेगी। और उससे उसकी कैसी हालत कर दी कि वो जाके चौथी मंजिल से कूद गई।
0: अमायरा के परिवार ने नीरजा मोदी स्कूल के खिलाफ कार्रवाई के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में एक अलग केस दाखिल किया है। राजस्थान हाईकोर्ट में नीरजा मोदी स्कूल पर सीबीएसई जांच रिकॉर्ड रखा गया है। 2024 से 2026 तक इस स्कूल में 102 नई टीचर भर्तियों में सिर्फ 17 ऐसे टीचर्स की भर्ती हुई जिनके पास जरूरी योग्यता थी, जबकि 85 टीचर्स के पास जरूरी योग्यता नहीं थी। प्राइमरी टीचर कैटेगरी में सभी 52 टीचर्स की योग्यता मानकों के अनुसार नहीं थी। यहां हम साफ करना चाहते हैं कि यह मसला किसी एक खास स्कूल का नहीं है, सवाल है व्यवस्था का, जहां बच्चों को बुली होने से बचाने का इंतजाम नहीं है। इसकी बड़ी वजह क्वालिफाइड शिक्षकों की कमी साफ नजर आती है। खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के असैसिनेशन की एक बड़ी साजिश चल रही है और इस साजिश का सूत्रधार ईरान है। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने डोनाल्ड ट्रंप के दुश्मनों की संख्या 10-20 नहीं बल्कि करोड़ों में कर दी है। वैसे इस वक्त जो हालात हैं उसमें ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश के आरोप लगना हैरानी की बात नहीं है। कल ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को ईरानी शहर मशहद के इमाम रजा कॉम्प्लेक्स में सुपुर्दे खाक किया गया। सबको लग रहा था कि अली खामेनेई के अंतिम क्रिया की सारी जिम्मेदारियां मुज्तबा खामेनेई निभाएंगे और शायद वो पहली बार दुनिया के सामने आएंगे, लेकिन अमेरिका और इसराइल के हमलों के डर से ऐसा नहीं हुआ। कल अली खामेनेई के दूसरे बेटे सैयद मुस्तफा खामेनेई ने सारी जिम्मेदारियां निभाई। अली खामेनेई के इस अंतिम क्रिया कार्यक्रम में लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे, सबकी आंखों में नमी थी और दिलों में अमेरिका और इसराइल के प्रति गुस्सा था। सबको पता है ईरान वॉर के पहले ही दिन यानी 28 फरवरी को अमेरिका इसराइल हमले में अली खामेनेई मारे गए थे और इस बात का दर्द आज तक ईरानियों के दिलों को सता रहा है। इस दर्द को हाल ही में आए एक वीडियो ने ज्वालामुखी में बदल दिया। ये वीडियो उस जगह का था जहां पर हुए हमले में अली खामेनेई मारे गए थे। इस वीडियो में इमारत की हाल दिख रहा था। वीडियो से लगा कि हमला इतना भयानक रहा होगा कि लोगों के बचने की उम्मीद न के बराबर थी। कल आंखों में आंसू लिए ईरान के लोगों ने अपने पूर्व सुप्रीम लीडर के अंतिम दर्शन किए और केवल आप ही नहीं अमेरिकी राष्ट्रपति भी इस बात से हैरान होंगे कि अली खामेनेई के 6 दिनों के अंतिम विदाई कार्यक्रम में 4,30,00,000 लोग शामिल हुए थे। इनमें 3,30,00,000 लोग ईरान के नागरिक थे और 1,00,00,000 लोग इराक में उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। यानी देखा जाए तो ईरान का हर 3 में से 1 नागरिक अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में शामिल हुआ। अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में जुड़ने वाली भीड़ को देखकर डोनाल्ड ट्रंप बहुत हैरान हुए थे। एक्सियोस को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्हें लगा था कि ईरान के लोग खामेनेई से नफरत करते हैं। इसी इंटरव्यू में उन्होंने बाद में यह भी कहा कि हो सकता है कि ईरान के लोगों के ये आंसू नकली हों, लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा होगा कि शायद ऐसा नहीं है।

हमारी अगली रिपोर्ट पारिवारिक संबंधों के एक ऐसे पहलू पर है जिसकी चर्चा खुले मंचों पर अक्सर नहीं होती। दरअसल ये चर्चा एक सवाल के तौर पर उठती है। सवाल ये कि क्या हमारे देश के पुरुष नो मीन्स नो का मतलब समझते हैं। हालांकि ये सवाल पुरुषों से नहीं बल्कि महिलाओं से पूछा जाना चाहिए। इंडिया टुडे के ग्रॉस

अपने धार्मिक नेता को खोने का दुख गुस्से का चरम रूप था और यह गुस्सा अमेरिका और इजराइल के नेताओं के ऊपर था। मशहद ही नहीं, अली खामनेई की अंतिम यात्रा का कारवां जहां जहां पहुंचा वहां लोगों ने डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल के नारे लगाए। कई पोस्टर्स में वी विल किल ट्रंप या किल बीबी लिखा हुआ था। बीबी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का निकनेम है। यानी ईरान के लोग अपने धार्मिक नेता की मौत का बदला अमेरिका और इजराइल के नेताओं की मौत से लेना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले अली खामनेई की अंतिम विदाई यात्रा के दौरान तेहरान में ईरान की आम जनता को डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करने के लिए भड़काया जा रहा था। ये एक तरह की शपथ दिलाने जैसा था। तेहरान में इस्लामिक कविताएं लिखने वाले मोहम्मद रसूली ने लाखों लोगों की भीड़ से डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करने का आह्वान किया था। सिर्फ यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कस्में खाई और खिलवाई गई थी।

0: आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कई अहम खुलासे हुए। आरोपियों ने बताया कि वो चढ़ावा की चोरी सिर्फ इवनिंग शिफ्ट में किया करते थे। वहीं एक अहम खबर यह भी है कि ट्रस्ट ने सीईओ की नियुक्ति की कोशिशें तेज कर दी हैं। और तीसरी बड़ी खबर है कि टिन्नू यादव और सुभाष यादव से अयोध्या पुलिस ने पूछताछ की तैयारियां की हैं।

0: राम मंदिर के प्रांगण में मौजूद जिस कमरे में चढ़ावे की गिनती होती थी वहां दो पालियों में काउंटिंग की जाती थी। चढ़ावे की गिनती के लिए पहली शिफ्ट सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक होती थी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक की थी। चढ़ावा चोरी की वारदात दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक की शिफ्ट में ही हुई, यानी चोरी दूसरी पाली में हुई। दरअसल सभी आरोपी उसी 2 से 9 वाली शिफ्ट में काम करते थे। दरअसल शाम के शिफ्ट में चोरी करना आरोपियों के लिए ज्यादा आसान था। काउंटिंग की दूसरी शिफ्ट में चढ़ावा चोरी का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने 4 आरोपियों से पूछताछ की। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 40 दिन में 70 बार चोरी की गई। सबसे ज्यादा 50 से अधिक बार चोरी अविनाश शुक्ला ने ही की थी। वो एक दिन में 2 बार चढ़ावा चोरी करता था। जिन 40 दिनों का रिकॉर्ड पुलिस ने खंगाला है उसमें से 5 दिन ऐसे भी रहे जब एक ही दिन में चढ़ावा चोरों ने 3-3 बार चोरी की।
1: सेकंड शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक होती थी और ये वो वक्त होता था जब कैश लेकर बाहर निकलते समय न सिर्फ निगरानी कम होती थी बल्कि इनके लिए कैश लेकर निकलना भी आसान हो जाता था।
0: पुलिस की जांच में ये सच सामने आने के बाद ही राम मंदिर ट्रस्ट ने चढ़ावे की गिनती अब सिर्फ एक ही शिफ्ट में करने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत अब सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चढ़ावे की गिनती शुरू कर दी गई है। तमाम खुलासों के बीच अयोध्या पुलिस राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव से भी पूछताछ की तैयारी में है। संतोष कुमार शर्मा, अयोध्या आज तक।
2: एक तरफ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर जांच चल रही है तो दूसरी ओर इस पर सियासत जबरदस्त तरीके से हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जब से राम मंदिर दर्शन करके लौटे हैं तब से वो हिंदुत्व का राग अलाप रहे हैं। बीजेपी की ओर से अरविंद केजरीवाल का भी एक पोस्टर जारी किया गया जिसमें अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया गया।
3: दिल्ली बीजेपी ने यह नया पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया गया है। इस पोस्टर को जारी करने के साथ ही बीजेपी ने लिखा है कि जो लोग भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण से खुश नहीं हैं, जिन्होंने मंदिरों और गुरुद्वारों के बाहर शराब की दुकानें खुलवाई, जिनकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही है, जो राम मंदिर की जगह अस्पताल बनवाना चाहते थे, जिन्होंने बजरंग बली का मजाक उड़ाया, जिनके शासन में इमामों को तो वेतन बांटा गया लेकिन पुजारियों को कभी कुछ नहीं दिया।
4: आज केजरीवाल जी को फिर राम याद आए हैं। ये राजनीतिक हिंदू हैं, आज फिर इनकी नौटंकी प्रारंभ हो गई है।
5: अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं और ये हम पहली बार नहीं बोल रहे। जब जब चुनाव आते हैं अरविंद केजरीवाल के जो कर्म होते हैं वो प्रूफ कर देते हैं कि वो चुनावी हिंदू हैं। आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसको लेके हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे। ये सब दिखाता है कि चूंकि वहां उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं इसलिए आज अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग चुनावी हिंदू बनकर हिंदू बनने का एक स्वांग रच रहा है।
3: दरअसल अरविंद केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़े हैं। एक तरफ उन्होंने घोषणा की है कि अमृतसर में वो माता सीता और लवकुश का मंदिर बनवाएंगे, दूसरी तरफ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर वो मुखर है।
6: सारे प्रयास किए जा रहे हैं चोरों को बचाने के, डकैतों को बचाने के, जमीनों के जो घोटाला हुआ उस पर तो जांच ही नहीं चल रही, मंदिर निर्माण में जो कमीशन खोली हुई उस पर तो जांच ही नहीं चल रही।
3: लेकिन बीजेपी को ये रास नहीं आ रहा है। अब तेरा हिंदुत्व और मेरा हिंदुत्व की जंग शुरू हो गई है। आज तक ब्यूरो।
2: पंजाब कांग्रेस में जबरदस्त कोहराम मचा हुआ है। भूपेश बघेल 5 दिन के दौरे पर पहुंचे थे लेकिन छठवें दिन छत्तीसगढ़ लौटे। करीब 92 नेताओं के साथ मैराथन बैठक की लेकिन नतीजा वही कि उनके वापस लौटते ही चन्नी और बडिंग गुट के नेता फिर से बयाने जंग के अखाड़े में आ डटे।
0: स्लीपर सेल, समझौतावादी नेता, ये शब्द किसी विरोधी दल के नहीं, ये कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस के नेताओं के लिए बोल रहे हैं। जिस पार्टी ने 2027 में पंजाब जीतने की ख्वाहिश पाल रखी है वो 2026 में अपने ही कुनबे से हारती दिखाई दे रही है।
7: सुखजिंदर सिंह रंधावा बिल्कुल ठीक कह रहे कि स्लीपर सेल एक कॉम्प्रोमाइज लीडर पंजाब नू बिल्कुल नहीं चाहिए।
0: पंजाब कांग्रेस की दीवारों में दरार अब छिपी नहीं है, अब सब कुछ कैमरों के सामने है। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा के बयान को भले ही पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अपने हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन रंधावा कहते हैं कि पंजाब को समझौतावादी नेता नहीं मजबूत नेता चाहिए, यानी सवाल सीधे नेतृत्व पर है।
8: आप चाहते हैं कि राजा बड़िंग
9: नहीं, नहीं, बड़े राजा बड़िंग प्रेसिडेंट है, उसको आप ही आ जाना चाहिए था। मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मैं उसके साथ ही रहा हूँ, तो उसको देखना चाहिए कि किसकी नाराजगी है।
0: तो क्या पंजाब कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन बीजेपी, आम आदमी पार्टी, अकाली दल नहीं बल्कि उसकी अपनी गुटबाजी है? दरअसल इस विवाद की असली वजह है पंजाब कांग्रेस में खेमेबंदी। पंजाब में एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग है, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर रंधावा और उनके समर्थक। पंजाब कांग्रेस में दरार की वजह ये बताई जा रही है कि जब अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को एक्सटेंशन मिल गया। इसी तनातनी के बीच पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने कई दौर की बैठकें की, लेकिन बंद कमरे की बातचीत खुली बगावत को रोक नहीं सकी। बागी नेताओं ने एक बार फिर राजा वडिंग को हटाने की मांग दोहराई, जबकि बघेल सार्वजनिक तौर पर नेतृत्व परिवर्तन से इनकार करते रहे। जिस पॉलिटिकल पार्टी की सेना के सेनापति पर ही सवाल उठने लगे, वो कैसे चुनावी मैदान में ताल ठोकेगा? पंजाब की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी अब चुटकी ले रही है।
10: या ठीक रह गए भी क्या कर लेंगे, भगवत मान जी की लहर है।
0: इस बीच दिल्ली से कांग्रेस नेता उदित राज ने भी पंजाब के कांग्रेसी नेताओं को आईना दिखाया है। उदित राज ने भी पार्टी की सबसे कमजोर नस पर हाथ रख दिया।
11: आपस में लड़ेंगे तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ये बात समझ में आना चाहिए। उत्तराखंड में हम इसी तरीके से सरकार बनाते रह गए।
0: 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस खुद को सत्ता का दावेदार बताती है, लेकिन आज तस्वीर ये है कि विपक्ष से पहले उसे अपने ही नेताओं को एक मंच पर लाने की चुनौती है, और जब पार्टी का सबसे बड़ा संघर्ष पार्टी के भीतर हो तो विरोधी दलों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। यही पंजाब कांग्रेस की सबसे बड़ी राजनीतिक विडंबना है। आज तक ब्यूरो।
2: बात अब जम्मू कश्मीर की, जहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य का दर्जा मांगते हुए बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरा, और साथ ही साथ ट्रंप का जिक्र करके उन्होंने तंज कसा है।
12: असेंबली से नहीं मिलेगा, ठीक, फिर हमने सड़कों पर बात करना शुरू किया, फिर कहते थे अब आपको जम्मू कश्मीर में बात करके ये मिलेगा नहीं, ठीक, अब हम जंतर मंतर जा रहे हैं, अब ये हमें कहते ना जंतर मंतर से आपको रियासत का दर्जा नहीं मिलेगा। खुदारा फिर ये बीजेपी वाले बताए ना मुझे, क्या ट्रंप के पास जाना पड़ेगा व्हाइट हाउस में अमेरिका रियासत का दर्जा लेने के लिए? अगर मुझे अपने मुल्क के राजधानी में जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा की बहाली नहीं मिलेगी तो कहिए हम लोग टिकट करेंगे, हम अमेरिका जाके ट्रंप साहब के घर के बाहर एहतजाज करके वहां से स्टेटहुड मांग लेंगे, दे दीजिए।
2: बादल पटना के बांकीपुर के चुनावी संग्राम की, बांकीपुर में 30 जुलाई को उपचुनाव होना है, 3 अगस्त को रिजल्ट आएगा, मगर बांकीपुर के इस उपचुनाव में संग्राम में मुकाबला त्रिकोणीय है। सभी दल यहां पर अपनी जीत के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन सबकी निगाह इस सीट पर चुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर पर है।

0: कहने को तो बांकीपुर में उपचुनाव होना है, मगर यहाँ की सियासी सरगर्मियाँ जबरदस्त तरीके से बढ़ी हुई हैं। मुकाबला त्रिकोणीय है। बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने ताल ठोकी है। उनके सामने अब बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार और आरजेडी के प्रत्याशी रेखा गुप्ता हैं। मगर बीजेपी मान के चल रही है कि बांकीपुर में पीके की हार तय है।
1: अब उनके पार्टी से कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था ये बाय इलेक्शन में बांकीपुर से, अपने कच्छा पिन के उतर गए क्योंकि कोई उम्मीदवार ही नहीं आ रहा था। अब ये जाएंगे तो जवाब देंगे, जवाब तो लोग देख रहे हैं, झूठ की खेती बार बार नहीं चलता।
0: बीजेपी के इस भरोसे के पीछे वो आंकड़े हैं जिनमें 3 दशक से बांकीपुर पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है। यहाँ बड़ी तादाद में कायस्थ मतदाता हैं और वही बीजेपी की ताकत है, इसीलिए बीजेपी के सहयोगी दल भी भरोसे से भरे हुए हैं।
2: अरे उनको इस बात की समझ हो गई है कि यहाँ रहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि जनता एनडीए के साथ।
0: बांकीपुर में नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन है। कुल 11 प्रत्याशियों ने अब तक नामांकन दाखिल किया है, जिसमें लालू प्रसाद नाम के एक निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं। मगर कांग्रेस ने अब तक अपने किसी प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा है। अलबत्ता कांग्रेस कह रही है कि बांकीपुर से इस बार बीजेपी हारेगी।
3: पहली बार वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है सम्राट जी के नेतृत्व में, और उनकी परीक्षा हो रही है। एक तो पहले उन्होंने ऐसा प्रत्याशी बनाया जो जिसपे करप्शन के चार्जेस थे, जिसके पिताजी पे करप्शन के चार्जेस थे, फिर जिनको अभी बदला उन पे भी कई तरह की कंट्रोवर्सीज हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी।
0: बांकीपुर का रण दिलचस्प है। देखना होगा कि पहली बार चुनावी रण में उतरे पीके क्या बीजेपी के गढ़ को फतह कर पाएंगे। आज तक ब्यूरो।
4: अब आपको एक हैरान कर देने वाली तस्वीर दिखाते, जहां सूरत में अचानक चलते चलते एक कार आग का गोला बन गई। चंद मिनटों ही में कार ये जलकर राख हो गई।
0: सड़क पर खड़ी एक कार धधक रही है। आग इतनी भयानक है कि इसे बुझाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। भयानक आग खौफनाक है। दमकल कर्मी इस पर पानी की बौछार कर रहे हैं, मगर आग भयानक है। काफी देर बाद आखिरकार कार की आग बुझाई गई, मगर तब तक कार पूरी तरह से राख हो चुकी थी। तस्वीरें सूरत की हैं। सूरत के वेसू इलाके में चलती कार में अचानक आग लगी। ये घटना ओमेगा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने बीआरटीएस बस स्टैंड के पास हुई, जिससे थोड़ी देर के लिए मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया था। अच्छी बात यह रही कि वक्त रहते कार में सवार लोग बाहर निकल आए थे, इसीलिए कोई हताहत नहीं हुआ। हाँ, कार जरूर राख हो गई। कार में आग किस वजह से लगी इसका पता भी नहीं चला है। संजय सिंह राठौड़, सूरत आज तक।
4: अब एक और हैरान करने वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं, और ये तस्वीर उत्तराखंड के कोटद्वार से आई है, जहां हाथियों का झुंड रिहायशी इलाके में आ गया। हाथियों का ये झुंड लोगों के घरों में भी जा घुसा।

0: जंगल में हाथियों को टहलते हुए आपने बहुत बार देखा होगा। पहली बार रिहायशी इलाके में हाथियों को टहलते हुए देखिए, देखिए कितने आराम से ये हाथी इस मकान में प्रवेश कर रहे हैं। सामने से आ रहे इस हाथी के साथ बाईं ओर से प्रवेश कर रहे इस दूसरे हाथी को भी देखिए। इन दोनों के साथ एक तीसरा हाथी भी है, ये हाथी का बच्चा है। ये तीनों हाथी इस घर में प्रवेश कर गए हैं। अब आगे की तस्वीरें देखिए, ये छोटा हाथी घर की छत तक पहुंच गया है। छत पर रखी पानी की टंकी से ये पानी पी रहा है। दूसरा हाथी यहाँ इस कमरे में प्रवेश कर गया। ये तीनों हाथी इस घर में लगातार चहलकदमी कर रहे हैं और हाथियों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो रही हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड में कोटद्वार के वार्ड नंबर 1 के ग्रास्टनगंज की हैं। बताया जा रहा है कि इन हाथियों ने 5 से 6 घरों में जमकर तोड़फोड़ की है। पीड़ितों का आरोप है कि उन्होंने बार बार वन विभाग को शिकायतें दी है मगर कार्रवाई नहीं हुई। अब लोग दहशत में हैं।
1: हाथी तो कभी कल तो 4-5 थे, अब तो 2 आदमी से क्या होगा। जरा स्टाफ बढ़ाओ,
2: यहाँ पे 35
1: स्टाफ बढ़ाओ, इसलिए स्टाफ के पास तुम टॉर्च दो, वो बंदूक दो, जिससे कि वो बंदूक वो हाथी भाग जाएंगे। नहीं तो हमको तो बहुत दिक्कत हो रही है। हम रात भर 3 बजे 3:30 बजे सोए।
3: परसों भी अंदर आया था हाथी, मतलब पूरा तोड़ के गया, वॉश बेसिन वगैरह, टंकी, मेरी खिड़की पूरी तोड़ दी उसने, पल्ले बाहर निकाल के रख दिए। तो मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बोला है कि आओ। तो सर एक बात मुझे समझ नहीं आती, अगर इनके फॉरेस्ट गार्ड आते हैं, जो भी यहाँ पे है वो चौकी पे वो आते हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास कुछ, उनको आके हम करें क्या? ना उनके पास कोई एयर गन वगैरह है कि वो हाथी भगाएं। सर डंडे से तो हाथी नहीं भागेगा ना। अभी पिछली बार फॉरेस्ट गार्ड आया था तो वो डंडे से वो पीछे भाग रहा था हाथी के, उसको भगाने के लिए हाथी ने उसको ही दौड़ा दिया। उसका रविंदर नाम है भैया का, उनका ही फोन टूट गया।
0: लोग खौफजदा हैं और मांग कर रहे हैं कि इन हाथियों से मुक्ति दिलाया जाए, कोई ऐसा कदम उठाया जाए कि हाथी रिहायशी इलाके में ना आए। विकास, कोटद्वार, आज तक।
4: अब बात वियतनाम से, एक बड़े हादसे के। वियतनाम के फुकोक द्वीप के पास में भारतीय पर्यटकों से भरी एक टूरिस्ट बोट पलट गई। हादसे में 15 भारतीयों की मौत हो गई, 21 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। बोट पर उस समय कुल 36 लोग सवार थे जिसमें 32 भारतीय और 4 क्रू मेंबर्स थे।
5: वियतनाम में छुट्टियों की तस्वीरें आखिर यादें बन गई हैं। समंदर का सफर मौत का सफर बन गया। परिवारों के लिए अब सिर्फ दर्द बचा है। वियतनाम के फुकवोक आइलैंड के पास एक टूरिस्ट बोट पलटी और देखते ही देखते गहरे पानी ने कई जिंदगियां निगल ली। जिस नाव में सवार होकर लोग नए अनुभवों की तलाश में निकले थे, वही नाव कई परिवारों के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा बन गई। वियतनाम से आई ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। समंदर की ऊंची लहरों के बीच पलटी हुई टूरिस्ट बोट और चारों तरफ मदद के लिए जूझते लोग। ये वही नाव थी जिसमें भारत से घूमने पहुंचे पर्यटक सवार थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटक और 4 क्रू मेंबर मौजूद थे। नाव होन में रूट से अनथोई पोर्ट की तरफ जा रही थी, तभी फुकवोक आइलैंड के पास करीब 400 मीटर दूर अचानक हादसा हो गया और देखते ही देखते पूरी नाव समंदर में पलट गई और 15 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे की खबर मिलते ही भारत सरकार भी सक्रिय हो गई। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बताया कि हादसे के बाद हनोई स्थित एम्बेसी और होची मिन्ह सिटी स्थित कॉन्सुलेट में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। दूतावास ने कहा कि भारतीय पर्यटकों की जानकारी जुटाई जा रही है और हर संभव मदद दी जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हादसे पर दुख जताते हुए लिखा, वियतनाम के फुकवोक के पास भारतीय नागरिकों से जुड़े इस दर्दनाक हादसे से बेहद दुखी हूं। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया। पीएम मोदी ने कहा, वियतनाम में भारतीय नागरिकों से जुड़े नाव हादसे की खबर से बेहद दुखी हूं। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। भारतीय दूतावास और अधिकारी हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। हादसे में पीड़ित परिवारों में मातम है। केरल के मछलीपट्टनम में रहने वाले पीड़ित परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वियतनाम नाव हादसे में गेली जयलक्ष्मी की मौत की खबर के बाद परिवार में चीख पुकार मच गई। घर में मौजूद परिजन अब सिर्फ उस पल को याद कर रहे हैं जब एक सफर जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। वहीं केरल के ही रहने वाले एसी थॉमस और लोवेनी थॉमस की मौत की पुष्टि की गई है। केरल सरकार विदेश मंत्रालय के संपर्क में है ताकि मृतकों के पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाया जा सके। एक टूरिस्ट ट्रिप जो यादों का सफर बनने निकली थी वो अचानक मातम में बदल गई। समंदर की एक लहर ने कई परिवारों से उनके अपने छीन लिए। अब सवाल सिर्फ हादसे का नहीं, सवाल यह भी है कि आखिर ऐसी पर्यटक नावों की सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है। वियतनाम से आई इस त्रासदी ने एक बार फिर समंदर में सुरक्षा इंतजामों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
4: अब आज कनाडा के टोरंटो में हुई फायरिंग की टोरंटो में एक स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान गोलीबारी से हड़कंप मचा। हमले में दो लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग इसमें घायल हुए हैं। पुलिस ने इसे एक्टिव शूटर केस बताया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है।
6: टोरंटो में साल साउंड सेंट क्लेयर फेस्टिवल। फेस्टिवल में गोलियों की तड़ताहट, अफरा तफरी का माहौल, चीखते चिल्लाते लोग। तस्वीरें कनाडा के टोरंटो की हैं, जहां शनिवार शाम एक प्रसिद्ध स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से हड़कंप मच गया। मिड टाउन टोरंटो में आयोजित वार्षिक लैटिन सांस्कृतिक उत्सव साल साउंड सेंट क्लेयर के दौरान हुई इस फायरिंग के बाद मौके पर भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। टोरंटो पुलिस के मुताबिक गोलीबारी में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई जबकि चार लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने इलाके को तुरंत अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और लोगों से घटनास्थल से दूर रहने की अपील की गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक संदिग्ध हमलावर अभी फरार है। फिलहाल पुलिस फायरिंग के कारणों, हमलावर की पहचान और घटना के पीछे की वजहों की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़ी और जानकारी जल्द जारी की जाएगी। आज तक ब्यूरो।
4: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध इतना भीषण हो गया है कि एक हफ्ते के अंदर ईरान के कई शहरों में ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की गए हैं। अमेरिका ने ईरान के कई बंदरगाहों पर बम बरसाए जिसके जवाब में ईरान ने कतर, बहरीन समेत कई खाड़ी देशों में उसके मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचाया है।

0: टूटा युद्ध विराम, शुरू हो गया भयंकर घमासान। ईरान के कई शहरों पर अमेरिका के विनाशकारी प्रहार, ईरान ने कई खाड़ी देशों पर बरसाए बम, हॉर्मुज पर ईरान की तालाबंदी, कीमतों में फिर लगेगी आग। आखिर जिसका डर था वही हुआ, धीरे धीरे टूटता युद्ध विराम अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। एक के बाद एक मिसाइल छोड़ी जा रही है। कई शहरों में सायरन की आवाज गूंज रही है, जो हमलों का संदेश देने के साथ साथ युद्ध फिर से शुरू होने का ऐलान कर रही है। अमेरिकी मिसाइलों ने हफ्ते भर में तीसरी बार ईरान पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। ड्रोन और मिसाइलों के जखीरे ने एक बार फिर तबाही का तांडव मचाना शुरू कर दिया है। अमेरिका का दावा है कि इस बार करीब 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इनमें मिसाइल और ड्रोन साइट, नेवी के ठिकाने, गोला बारूद भंडार, संचार नेटवर्क और तटीय निगरानी केंद्र शामिल हैं। जिन ईरानी शहरों को निशाना बनाया गया उनमें न्यूक्लियर सिटी बुशहर समेत असालुये, बंदर एदेयर, जास्क और चाबहार के सैन्य ठिकाने शामिल हैं। अमेरिका हॉर्मुज में लगातार हो रहे हमलों से गुस्से में है और उसने पहले ही ईरान को ताबड़तोड़ हमलों की चेतावनी दी थी। पिछले तीन दिनों में ईरान के 300 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। खैर, ईरान को भी जवाब देना ही था, लिहाजा उसने भी कई खाड़ी देशों में बने अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों के जरिए बम बरसाने शुरू कर दिए। कतर में अमेरिका के अलुदीद एयरबेस पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से हुए हमले में जंगी जहाजों के मेंटेनेंस और रिपेयर सेंटर के साथ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया है। कतर में ईरानी हमले को नाकाम करने के दौरान मलबा गिरने से 3 लोग घायल हो गए। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने भी मिसाइलों का मोर्चा मध्य पूर्व की ओर खोल दिया है। कतर के अलावा जॉर्डन, कुवैत, बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी ईरान ने निशाना बनाया है। साथ ही यूएई पर भी ईरान की ओर से मिसाइल दागी गई है। बहरीन में लगातार सायरन बज रहे हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी जा रही है। ईरान अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले करने के साथ साथ बयानों में भी आक्रामक होता जा रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई ने अपने पिता अली खामेनेई की मौत का बदला लेने का ऐलान कर दिया है, जिससे अमेरिका और ईरान के बीच घमासान और तेज होने की आशंका बढ़ गई है। अमेरिका के साथ बातों मुलाकातों के दौर में ईरान की ओर से अहम किरदार निभाने वाले मोहम्मद बागेर गालिबाफ के सुर भी तल्ख हो गए हैं। उन्होंने लिखा कि एक तरफा समझौतों का दौर खत्म हो चुका है। हमने पहले ही कहा था, या तो अपना वादा निभाइए या फिर इसकी कीमत चुकाइए। अब हकीकत सामने है। गालिबाफ ने अपने पोस्ट के साथ समझौते की तस्वीर भी साझा की है, जिसमें हॉर्मुज को दोबारा खोलने और वहां व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी ईरान की बताई गई है। खैर, अमेरिका तो जो नुकसान ईरान का कर रहा है वो दुनिया देख ही रही है, लेकिन ईरान के जबरदस्त पलटवार से ट्रंप के बार बार किए जा रहे इन दावों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने ईरानी की पूरी सैन्य ताकत का खात्मा कर दिया है।
1: I think the third regime is more reasonable, but we'll find out. But we've destroyed their, as you know, completely destroyed 150. They had 159 ships. Every single ship is at the bottom of the sea. We've completely destroyed. They don't have one airplane. They don't have radar.
0: सीज़फ़ायर के दौरान ईरान ने अपने एंटी-मिसाइल सिस्टम को दुरुस्त किया और मिसाइल लॉन्चर्स को मजबूत किया। ईरान की ये तैयारी खाड़ी देशों पर किए गए हमलों में साफ दिखाई दे रही है। तांडव की इन तस्वीरों से इतना तो साफ है कि महायुद्ध पार्ट 2 और विनाशकारी होने जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
2: वक्त हो चला अब छोटे से ब्रेक का, कुछ और खबरों के साथ होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

पंजाब में आपस में हाथ आजमाते दिख रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजन वर्णी को हटाने पर अड़ी चन्नी गुट। रंधावा ने बताया कॉम्प्रोमाइज लीडर, आला कमान के दरबार में पहुंचा झगड़ा। उमर के ऑपरेशन लोटस वाले बयान पर बौखलाई बीजेपी, कहा दो सबूत या मांगो माफी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने लगाया था आरोप, हमारे विधायकों को खरीदने की हो रही है साजिश। बीजेपी ने प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के गिनाए 10 फायदे, कहा इंडो पैसिफिक में भारत बना बड़ी ताकत, वैश्विक साझेदारियों को मिली नई मजबूती, कांग्रेस का कटाक्ष। ट्विशा केस में एम्स ने सीबीआई को सौंपी दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सूत्रों से खबर फंदे के लिए इस्तेमाल, बेल्ट पर मिले स्किन टिश्यू, चोट के निशान से हुए मैच। अमेरिकी हमलों की नई किश्त के बीच में दुनिया के सामने आएंगे मुज्तबा खामेनेई, मंगलवार की सभा में करेंगे शिरकत, अटैक में मारे गए लोगों को देंगे श्रद्धांजलि, यूएस की तरफ से जारी है भयानक बमबारी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कई अहम खुलासे हुए। आरोपियों ने बताया कि वो चढ़ावा की चोरी सिर्फ इवनिंग शिफ्ट में किया करते थे। वहीं एक अहम खबर यह भी है कि ट्रस्ट ने सीईओ की नियुक्ति की कोशिशें तेज कर दी हैं। और तीसरी बड़ी खबर है कि टिन्नू यादव और सुभाष यादव से अयोध्या पुलिस ने पूछताछ की तैयारियां की हैं।

0: राम मंदिर के प्रांगण में मौजूद जिस कमरे में चढ़ावे की गिनती होती थी वहां दो पालियों में काउंटिंग की जाती थी। चढ़ावे की गिनती के लिए पहली शिफ्ट सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक होती थी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक की थी। चढ़ावा चोरी की वारदात दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक की शिफ्ट में ही हुई, यानी चोरी दूसरी पाली में हुई। दरअसल सभी आरोपी उसी 2 से 9 वाली शिफ्ट में काम करते थे। दरअसल शाम के शिफ्ट में चोरी करना आरोपियों के लिए ज्यादा आसान था। काउंटिंग की दूसरी शिफ्ट में चढ़ावा चोरी का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने 4 आरोपियों से पूछताछ की। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 40 दिन में 70 बार चोरी की गई। सबसे ज्यादा 50 से अधिक बार चोरी अविनाश शुक्ला ने ही की थी। वो एक दिन में 2 बार चढ़ावा चोरी करता था। जिन 40 दिनों का रिकॉर्ड पुलिस ने खंगाला है उसमें से 5 दिन ऐसे भी रहे जब एक ही दिन में चढ़ावा चोरों ने 3-3 बार चोरी की।
1: सेकंड शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक होती थी और ये वो वक्त होता था जब कैश लेकर बाहर निकलते समय न सिर्फ निगरानी कम होती थी बल्कि इनके लिए कैश लेकर निकलना भी आसान हो जाता था।
0: पुलिस की जांच में ये सच सामने आने के बाद ही राम मंदिर ट्रस्ट ने चढ़ावे की गिनती अब सिर्फ एक ही शिफ्ट में करने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत अब सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चढ़ावे की गिनती शुरू कर दी गई है। तमाम खुलासों के बीच अयोध्या पुलिस रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव से भी पूछताछ की तैयारी में है। संतोष कुमार शर्मा, अयोध्या आज तक।
2: एक तरफ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर जांच चल रही है तो दूसरी ओर इस पर सियासत जबरदस्त तरीके से हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जब से राम मंदिर दर्शन करके लौटे हैं तब से वो हिंदुत्व का राग अलाप रहे हैं। बीजेपी की ओर से अरविंद केजरीवाल का भी एक पोस्टर जारी किया गया जिसमें अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया गया।
3: दिल्ली बीजेपी ने यह नया पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया गया है। इस पोस्टर को जारी करने के साथ ही बीजेपी ने लिखा है कि जो लोग भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण से खुश नहीं हैं, जिन्होंने मंदिरों और गुरुद्वारों के बाहर शराब की दुकानें खुलवाई, जिनकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही है, जो राम मंदिर की जगह अस्पताल बनवाना चाहते थे, जिन्होंने बजरंगबली का मजाक उड़ाया, जिनके शासन में इमामों को तो वेतन बांटा गया लेकिन पुजारियों को कभी कुछ नहीं दिया।
4: आज केजरीवाल जी को फिर राम याद आए। ये राजनीतिक हिंदू है, आज फिर इनकी नौटंकी प्रारंभ हो गई है।
5: अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं और ये हम पहली बार नहीं बोल रहे। जब जब चुनाव आते हैं अरविंद केजरीवाल के जो कर्म होते हैं वो प्रूफ कर देते हैं कि वो चुनावी हिंदू हैं। आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसको लेके हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे। ये सब दिखाता है कि चूंकि वहां उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं इसलिए आज अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग चुनावी हिंदू बनकर हिंदू बनने का एक स्वांग रच रहा है।
3: दरअसल अरविंद केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़े हैं। एक तरफ उन्होंने घोषणा की है कि अमृतसर में वो माता सीता और लवकुश का मंदिर बनवाएंगे, दूसरी तरफ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर वो मुखर है।
6: सारे प्रयास किए जा रहे हैं चोरों को बचाने के, डकैतों को बचाने के, जमीनों के जो घोटाला हुआ उस पर तो जांच ही नहीं चल रही, मंदिर निर्माण में जो कमीशन खोरी हुई उस पर तो जांच ही नहीं चल रही।
3: लेकिन बीजेपी को ये रास नहीं आ रहा है। अब तेरा हिंदुत्व और मेरा हिंदुत्व की जंग शुरू हो गई है। आज तक ब्यूरो।
2: पंजाब कांग्रेस में जबरदस्त कोहराम मचा हुआ है। भूपेश बघेल 5 दिन के दौरे पर पहुंचे थे लेकिन छठवें दिन छत्तीसगढ़ लौटे। करीब 92 नेताओं के साथ मैराथन बैठक की लेकिन नतीजा वही कि उनके वापस लौटते ही चन्नी और बडिंग गुट के नेता फिर से बयाने जंग के अखाड़े में आ डटे।
0: स्लीपर सेल, समझौतावादी नेता, ये शब्द किसी विरोधी दल के नहीं, ये कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस के नेताओं के लिए बोल रहे हैं। जिस पार्टी ने 2027 में पंजाब जीतने की ख्वाहिश पाल रखी है वो 2026 में अपने ही कुनबे से हारती दिखाई दे रही है।
7: सुखजिंदर सिंह रंधावा बिल्कुल ठीक कह रहे कि स्लीपर सेल एक कॉम्प्रोमाइज लीडर पंजाब नु बिल्कुल नहीं चाहिए।
0: पंजाब कांग्रेस की दीवारों में दरार अब छिपी नहीं है, अब सब कुछ कैमरों के सामने है। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा के बयान को भले ही पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अपने हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन रंधावा कहते हैं कि पंजाब को समझौतावादी नेता नहीं मजबूत नेता चाहिए, यानी सवाल सीधे नेतृत्व पर है।
8: आप चाहते हैं कि राजा बड़िंग
9: नहीं, नहीं बड़े राजा बड़िंग प्रेसिडेंट है, उसको आप ही आ जाना चाहिए था। मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मैं उसके साथ ही रहा हूं, तो उसको दिखाना चाहिए कि किसकी नाराजगी है।
0: तो क्या पंजाब कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन बीजेपी, आम आदमी पार्टी, अकाली दल नहीं बल्कि उसकी अपनी गुटबाजी है? दरअसल इस विवाद की असली वजह है पंजाब कांग्रेस में खेमेबंदी। पंजाब में एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग है, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर रंधावा और उनके समर्थक। पंजाब कांग्रेस में दरार की वजह ये बताई जा रही है कि जब अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को एक्सटेंशन मिल गया। इसी तनातनी के बीच पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने कई दौर की बैठकें की, लेकिन बंद कमरे की बातचीत खुली बगावत को रोक नहीं सकी। बागी नेताओं ने एक बार फिर राजा वडिंग को हटाने की मांग दोहराई, जबकि बघेल सार्वजनिक तौर पर नेतृत्व परिवर्तन से इनकार करते रहे। जिस पॉलिटिकल पार्टी की सेना के सेनापति पर ही सवाल उठने लगे, वो कैसे चुनावी मैदान में ताल ठोकेगा? पंजाब की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी अब चुटकी ले रही है।
10: यार ठीक रहेंगे भी क्या कर लेंगे, वह भगवत मान जी की लहर है।
0: इस बीच दिल्ली से कांग्रेस नेता उदित राज ने भी पंजाब के कांग्रेसी नेताओं को आईना दिखाया है। उदित राज ने भी पार्टी की सबसे कमजोर नस पर हाथ रख दिया।
11: आपस में लड़ेंगे तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ये बात समझ में आना चाहिए। उत्तराखंड में हम इसी तरीके से सरकार बनाते रह गए।
0: 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस खुद को सत्ता का दावेदार बताती है, लेकिन आज तस्वीर ये है कि विपक्ष से पहले उसे अपने ही नेताओं को एक मंच पर लाने की चुनौती है, और जब पार्टी का सबसे बड़ा संघर्ष पार्टी के भीतर हो तो विरोधी दलों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। यही पंजाब कांग्रेस की सबसे बड़ी राजनीतिक विडंबना है। आज तक ब्यूरो।
2: बात अब जम्मू कश्मीर की, जहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य का दर्जा मांगते हुए बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरा, और साथ ही साथ ट्रंप का जिक्र करके उन्होंने तंज कसा है।
12: असेंबली से नहीं मिलेगा, ठीक, फिर हमने सड़कों पर बात करना शुरू किया, फिर कहते थे अब आपको जम्मू कश्मीर में बात करके ये मिलेगा नहीं, ठीक, अब हम जंतर मंतर जा रहे हैं, अब ये हमें कहते ना जंतर मंतर से आपको रियासत का दर्जा नहीं मिलेगा, खुदारा फिर ये बीजेपी वाले बताए ना मुझे क्या ट्रंप के पास जाना पड़ेगा व्हाइट हाउस में अमेरिका रियासत का दर्जा लेने के लिए। अगर मुझे अपने मुल्क के राजधानी में जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा की बहाली नहीं मिलेगी तो कहिए हम लोग टिकट करेंगे, हम अमेरिका जाके ट्रंप साहब के घर के बाहर एहतजाज करके वहां से स्टेटहुड मांग लेंगे, दे दीजिए।
2: बाद पटना के बांकीपुर के चुनावी संग्राम की, बांकीपुर में 30 जुलाई को उपचुनाव होना है, 3 अगस्त को रिजल्ट आएगा, मगर बांकीपुर के इस उपचुनाव में संग्राम में मुकाबला त्रिकोणीय है। सभी दल यहां पर अपनी जीत के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन सबकी निगाह इस सीट पर चुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर पर है।

0: कहने को तो बांकीपुर में उपचुनाव होना है, मगर यहाँ की सियासी सरगर्मियाँ जबरदस्त तरीके से बढ़ी हुई हैं। मुकाबला त्रिकोणीय है। बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने ताल ठोकी है। उनके सामने अब बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार और आरजेडी के प्रत्याशी रेखा गुप्ता हैं। मगर बीजेपी मान के चल रही है कि बांकीपुर में पीके की हार तय है।
1: अब उनके पार्टी से कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था ये बाय इलेक्शन में बांकीपुर से, अपने कच्छा पिन के उतर गए क्योंकि कोई उम्मीदवार ही नहीं आ रहा था। अब ये जाएंगे तो जवाब देंगे, जवाब तो लोग देख रहे हैं, झूठ की खेती बार बार नहीं चलता।
0: बीजेपी के इस भरोसे के पीछे वो आंकड़े हैं जिनमें 3 दशक से बांकीपुर पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है। यहाँ बड़ी तादाद में कायस्थ मतदाता हैं और वही बीजेपी की ताकत हैं। इसीलिए बीजेपी के सहयोगी दल भी भरोसे से भरे हुए हैं।
2: अरे उनको इस बात की समझ हो गई है कि यहाँ रहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि जनता एनडीए के साथ।
0: बांकीपुर में नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन है। कुल 11 प्रत्याशियों ने अब तक नामांकन दाखिल किया है, जिसमें लालू प्रसाद नाम के एक निर्दलीय प्रत्याशी भी है। मगर कांग्रेस ने अब तक अपने किसी प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा है। अलबत्ता कांग्रेस कह रही है कि बांकीपुर से इस बार बीजेपी हारेगी।
3: पहली बार वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है सम्राट जी के नेतृत्व में, और उनकी परीक्षा हो रही है। एक तो पहले उन्होंने ऐसा प्रत्याशी बनाया जो जिसपे करप्शन के चार्जेस थे, जिसके पिताजी पे करप्शन के चार्जेस थे, फिर जिनको अभी बदला उन पे भी कई तरह की कंट्रोवर्सीज हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी।
0: बांकीपुर का रण दिलचस्प है। देखना होगा कि पहली बार चुनावी रण में उतरे पीके क्या बीजेपी के गढ़ को फतह कर पाएंगे। आज तक ब्यूरो।
4: अब आपको एक हैरान कर देने वाली तस्वीर दिखाते हैं, जहां सूरत में अचानक चलते चलते एक कार आग का गोला बन गई। चंद मिनटों ही में कार ये जलकर राख हो गई।

0: दमकल कर्मी इस पर पानी की बौछार कर रहे हैं, मगर आग भयानक है। काफी देर बाद आखिरकार कार की आग बुझाई गई, मगर तब तक कार पूरी तरह से राख हो चुकी थी। तस्वीरें सूरत की हैं। सूरत के वेसू इलाके में चलती कार में अचानक आग लगी। ये घटना ओमेगा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने बीआरटीएस बस स्टैंड के पास हुई, जिससे थोड़ी देर के लिए मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया था। अच्छी बात ये रही कि वक्त रहते कार में सवार लोग बाहर निकल आए थे, इसीलिए कोई हताहत नहीं हुआ। हाँ, कार जरूर राख हो गई। कार में आग किस वजह से लगी इसका पता भी नहीं चला है। संजय सिंह राठौड़, सूरत आज तक।
1: अब एक और हैरान करने वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं, और ये तस्वीर उत्तराखंड के कोटद्वार से आई है, जहां हाथियों का झुंड रिहायशी इलाके में आ गया। हाथियों का ये झुंड लोगों के घरों में भी जा घुसा।

0: जंगल में हाथियों को टहलते हुए आपने बहुत बार देखा होगा। पहली बार रिहायशी इलाके में हाथियों को टहलते हुए देखिए, देखिए कितने आराम से ये हाथी इस मकान में प्रवेश कर रहे हैं। सामने से आ रहे इस हाथी के साथ बाईं ओर से प्रवेश कर रहे इस दूसरे हाथी को भी देखिए। इन दोनों के साथ एक तीसरा हाथी भी है, ये हाथी का बच्चा है। ये तीनों हाथी इस घर में प्रवेश कर गए हैं। अब आगे की तस्वीरें देखिए, ये छोटा हाथी घर की छत तक पहुंच गया है। छत पर रखी पानी की टंकी से ये पानी पी रहा है। दूसरा हाथी यहाँ इस कमरे में प्रवेश कर गया। ये तीनों हाथी इस घर में लगातार चहलकदमी कर रहे हैं और हाथियों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो रही हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड में कोटद्वार के वार्ड नंबर 1 के ग्रास्टनगंज की हैं। बताया जा रहा है कि इन हाथियों ने 5 से 6 घरों में जमकर तोड़फोड़ की है। पीड़ितों का आरोप है कि उन्होंने बार बार वन विभाग को शिकायतें दी है मगर कार्रवाई नहीं हुई। अब लोग दहशत में हैं।
1: हाथी तो कभी कल तो 4-5 थे, तो 2 आदमी से क्या होगा। जरा स्टाफ बढ़ाओ,
2: यहाँ पे 35
1: स्टाफ बढ़ाओ, इसलिए स्टाफ के पास तुम टॉर्च दो, वो बंदूक दो, जिससे कि वो बंदूक वो हाथी भाग जाएंगे। नहीं तो हमको तो बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत। हम रात भर 3 बजे 3:30 बजे सोए।
3: परसों भी अंदर आया था हाथी, मतलब पूरा तोड़ के गया, वॉश बेसिन वगैरह, टंकी, मेरी खिड़की पूरी तोड़ दी उसने, पल्ले बाहर निकाल के रख दिए। तो मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बोला है कि आओ। तो सर एक बात मुझे समझ नहीं आती, अगर इनके फॉरेस्ट गार्ड आते हैं, जो भी यहाँ पे है वो चौकी पे वो आते हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास कुछ, उनको आके हम करें क्या? न उनके पास कोई एयर गन वगैरह है कि वो हाथी भगाए। सर डंडे से तो हाथी नहीं भागेगा ना। अभी पिछली बारी फॉरेस्ट गार्ड आया था तो वो डंडे से, वो पीछे भाग रहा था हाथी के, उसको भगाने के लिए हाथी ने उसको ही दौड़ा दिया। उसका रविंदर नाम है भैया का, उनका ही फोन टूट गया।
0: लोग खौफजदा हैं और मांग कर रहे हैं कि इन हाथियों से मुक्ति दिलाया जाए, कोई ऐसा कदम उठाया जाए कि हाथी रिहायशी इलाके में ना आए। विकास, कोटद्वार, आज तक।
4: अब बात कनाडा के टोरंटो में हुई फायरिंग की। टोरंटो में एक स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान गोलीबारी से हड़कंप मचा। हमले में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग इसमें घायल हुए हैं। पुलिस ने इसे एक्टिव शूटर केस बताया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है।
5: टोरंटो में साल्सा ऑन सेंट क्लेयर फेस्टिवल। फेस्टिवल में गोलियों की तड़ताहट, अफरा तफरी का माहौल, चीखते चिल्लाते लोग। तस्वीरें कनाडा के टोरंटो की हैं, जहां शनिवार शाम एक प्रसिद्ध स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से हड़कंप मच गया। मिड टाउन टोरंटो में आयोजित वार्षिक लैटिन सांस्कृतिक उत्सव साल्सा ऑन सेंट क्लेयर के दौरान हुई इस फायरिंग के बाद मौके पर भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। टोरंटो पुलिस के मुताबिक गोलीबारी में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने इलाके को तुरंत अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और लोगों से घटनास्थल से दूर रहने की अपील की गई है। शुरुआती जानकारी

0: मुताबिक संदिग्ध हमलावर अभी फरार है। फिलहाल पुलिस फायरिंग के कारणों, हमलावर की पहचान और घटना के पीछे की वजहों की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़ी और जानकारी जल्द जारी की जाएगी। आज तक ब्यूरो।
1: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध इतना भीषण हो गया है कि एक हफ्ते के अंदर ईरान के कई शहरों में ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की गए हैं। अमेरिका ने ईरान के कई बंदरगाहों पर बम बरसाए हैं, जिसके जवाब में ईरान ने कतर, बहरीन समेत कई खाड़ी देशों में उसके मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचाया है।

0: टूटा युद्ध विराम, शुरू हो गया भयंकर घमासान। ईरान के कई शहरों पर अमेरिका के विनाशकारी प्रहार। ईरान ने कई खाड़ी देशों पर बरसाए बम। हॉर्मुज पर ईरान की तालाबंदी, कीमतों में फिर लगेगी आग। आखिर जिसका डर था वही हुआ। धीरे धीरे टूटता युद्ध विराम अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। एक के बाद एक मिसाइल छोड़ी जा रही है। कई शहरों में सायरन की आवाज गूंज रही है, जो हमलों का संदेश देने के साथ साथ युद्ध फिर से शुरू होने का ऐलान कर रही है। अमेरिकी मिसाइलों ने हफ्ते भर में तीसरी बार ईरान पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। ड्रोन और मिसाइलों के जखीरे ने एक बार फिर तबाही का तांडव मचाना शुरू कर दिया है। अमेरिका का दावा है कि इस बार करीब 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इनमें मिसाइल और ड्रोन साइट, नेवी के ठिकाने, गोला बारूद भंडार, संचार नेटवर्क और तटीय निगरानी केंद्र शामिल हैं। जिन ईरानी शहरों को निशाना बनाया गया उनमें न्यूक्लियर सिटी बुशहर समेत असालुये, बंदर एतेयर, जास और चाबहार के सैन्य ठिकाने शामिल हैं। अमेरिका हॉर्मुज में लगातार हो रहे हमलों से गुस्से में है और उसने पहले ही ईरान को ताबड़तोड़ हमलों की चेतावनी दी थी। पिछले तीन दिनों में ईरान के 300 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। खैर, ईरान को भी जवाब देना ही था, लिहाजा उसने भी कई खाड़ी देशों में बने अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों के जरिए बम बरसाने शुरू कर दिए। कतर में अमेरिका के अलुदीद एयरबेस पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से हुए हमले में जंगी जहाजों के मेंटेनेंस और रिपेयर सेंटर के साथ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया है। कतर में ईरानी हमले को नाकाम करने के दौरान मलबा गिरने से 3 लोग घायल हो गए। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने भी मिसाइलों का मोर्चा मध्य पूर्व की ओर खोल दिया है। कतर के अलावा जॉर्डन, कुवैत, बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी ईरान ने निशाना बनाया है। साथ ही यूएई पर भी ईरान की ओर से मिसाइल दागी गई है। बहरीन में लगातार सायरन बज रहे हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी जा रही है। ईरान अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले करने के साथ साथ बयानों में भी आक्रामक होता जा रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई ने अपने पिता अली खामेनेई की मौत का बदला लेने का ऐलान कर दिया है, जिससे अमेरिका और ईरान के बीच घमासान और तेज होने की आशंका बढ़ गई। अमेरिका के साथ बातों मुलाकातों के दौर में ईरान की ओर से अहम किरदार निभाने वाले मोहम्मद बागेर गालिबाफ के सुर भी तल्ख हो गए। उन्होंने लिखा कि एक तरफा समझौतों का दौर खत्म हो चुका है। हमने पहले ही कहा था, या तो अपना वादा निभाइए या फिर इसकी कीमत चुकाइए। अब हकीकत सामने है। गालिबाफ ने अपने पोस्ट के साथ समझौते की तस्वीर भी साझा की है, जिसमें हॉर्मुज को दोबारा खोलने और वहां व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी ईरान की बताई गई है। खैर, अमेरिका तो जो नुकसान ईरान का कर रहा है वो दुनिया देख ही रही है, लेकिन ईरान के जबरदस्त पलटवार से ट्रंप के बार बार किए जा रहे इन दावों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने ईरानी की पूरी सैन्य ताकत का खात्मा कर दिया है।
1: Destroyed there, as you know, completely destroyed. 150. They had 159 ships. Every single ship is at the bottom of the sea. We've completely destroyed. They don't have one airplane. They don't have radar.
0: Ceasefire के दौरान ईरान ने अपने anti-missile system को दुरुस्त किया और missile launchers को मजबूत किया। ईरान की ये तैयारी खाड़ी देशों पर किए गए हमलों में साफ दिखाई दे रही है। तांडव की इन तस्वीरों से इतना तो साफ है कि महायुद्ध पार्ट 2 और विनाशकारी होने जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
2: हॉर्मुज में हर कोई अपना नियंत्रण चाहता है। अमेरिका बिना किसी टोल बंदी के यहां से जहाजों की आवाजाही चाहता है, लेकिन ईरान के पास अमेरिका का सामना करने के लिए सबसे बड़ा हथियार है। तेल के इस खेल से हालात फिर से बिगड़ने लगे हैं, क्योंकि ईरान ने फिलहाल इसे बंद करने का ऐलान कर दिया है।

0: हॉर्मुज में हाहाकार से फिर बढ़ेगा घमासान। जहाजों पर बमबारी से बढ़ रहा कोहराम। हॉर्मुज को न खोलने का खामियाजा भुगतेगा तेहरान। क्या अमेरिका के सामने अपनी गलती मान रहा ईरान? हॉर्मुज की शांत लहरों में बमों की बारिश के बाद से एक बार फिर सुनामी दिखने लगी है। दो दिन में तीन जहाजों पर ईरान की बमबारी के बाद से सीज फायर की पूरी तस्वीर ही बदल गई है। एक बार फिर हॉर्मुज का पेच ही अमेरिका और ईरान के बीच फंस गया है और आशंका तो इस बात की लगातार बढ़ रही है कि तेल के खेल की वजह से ही महायुद्ध का पार्ट टू शुरू होने वाला है। ईरान ने हॉर्मुज से गुजर रहे इन तीन कमर्शियल जहाजों पर हमला किया था। इससे ट्रंप का पारा इतना चढ़ा कि दोनों ओर से हमलों की एक नई लहर से ईरान के कई शहरों के अलावा बहरीन और कतर तक में बर्बादी का मंजर दिखाई देने लगा। हॉर्मुज में इस हफ्ते जो हमले हुए हैं, क्या ईरान ने इसे अपनी गलती मानी है? CBS न्यूज ने यह दावा किया है। इसमें अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि ईरानी अफसरों ने निजी तौर पर ट्रंप के सलाहकारों से कहा कि हॉर्मुज में जहाजों पर अटैक गलती थी और ये हमले कट्टरपंथियों के एक ऐसे गुट ने किए जो बातचीत को नाकाम करना चाहते हैं। ईरान बेशक कितना ही कह ले कि हॉर्मुज में हमले एक गलती थे, लेकिन अमेरिका ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है और उसके खिलाफ हटाई गई तेल निर्यात की पाबंदियों को एक बार फिर लगा दिया है जो अगले हफ्ते से लागू कर दी जाएंगी। हॉर्मुज से शुरू हुई लड़ाई तेजी से खार्क तक पहुंच गई है। हफ्ते भर पहले ही अमेरिका ने यहां एयर स्ट्राइक की और ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया। ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा खार्क से ही जुड़ा है। जब से दोनों देशों के बीच जंग शुरू हुई है, खार्क को अमेरिका के कई हमले झेलने पड़े हैं। अब ये एक बार फिर से अमेरिका के निशाने पर आ गया है।
1: Which we can knock down. I would say in one day we knocked down every single bridge in Iran. There's not a thing they can do about it. Their electric manufacturing facilities, right? Their electric plants where they make their electricity there. We will, if we have to, we'll take them out. I don't want to do that, but if we have to, we'll take them out. They have desalinization plants. We'll take them out if we have to. I hate to do that. That's probably the one I would like not to do least. We attacked Kharg Island last night. We knocked out a piece. I said, don't touch the oil because maybe we'll take over Kharg Island. You know, we may take over Kharg Island.
0: वैसे अमेरिका ने ईरान को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि ईरान कमर्शियल जहाजों के लिए हॉर्मुज को खोले और जहाजों पर हमले पूरी तरह बंद करे, साथ ही सार्वजनिक तौर पर इसका ऐलान करे। अमेरिका ने दो टूक चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने ऐसा नहीं किया तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। ये चेतावनी ऐसे वक्त पर दी गई है जब अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हवाई हमले कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
2: वक्त हो चला अब छोटे से ब्रेक का, कुछ और खबरों के साथ होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

पंजाब में आपस में हाथ आजमाते दिख रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजवर्धनी को हटाने पर अड़ी चन्नी गुट। रंधावा ने बताया कॉम्प्रोमाइज लीडर। आला कमान के दरबार में पहुंचा झगड़ा। उमर के ऑपरेशन लोटस वाले बयान पर बौखलाई बीजेपी। कहा दो सबूत या मांगो माफी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने लगाया था आरोप, हमारे विधायकों को खरीदने की हो रही है साजिश। बीजेपी ने प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के गिनाए 10 फायदे। कहा इंडो पैसिफिक में भारत बना बड़ी ताकत। वैश्विक साझेदारियों को मिली नई मजबूती। कांग्रेस का कटाक्ष। ट्विशा केस में एम्स ने सीबीआई को सौंपी दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सूत्रों से खबर, फंदे के लिए इस्तेमाल, बेल्ट पर मिले स्किन टिश्यू, चोट के निशान से हुए मैच। अमेरिकी हमलों की नई किश्त के बीच में दुनिया के सामने आएंगे मुज्तबा खामेनेई। मंगलवार की सभा में करेंगे शिरकत। अटैक में मारे गए लोगों को देंगे श्रद्धांजलि। यूएस की तरफ से जारी है भयानक बमबारी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कई अहम खुलासे हुए। आरोपियों ने बताया कि वो चढ़ावा की चोरी सिर्फ इवनिंग शिफ्ट में किया करते थे। वहीं एक अहम खबर यह भी है कि ट्रस्ट ने सीईओ की नियुक्ति की कोशिशें तेज कर दी हैं। और तीसरी बड़ी खबर है कि टिन्नू यादव और सुभाष यादव से अयोध्या पुलिस ने पूछताछ की तैयारियां की हैं।

0: राम मंदिर के प्रांगण में मौजूद जिस कमरे में चढ़ावे की गिनती होती थी वहां दो पालियों में काउंटिंग की जाती थी। चढ़ावे की गिनती के लिए पहली शिफ्ट सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक होती थी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक की थी। चढ़ावा चोरी की वारदात दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक की शिफ्ट में ही हुई, यानी चोरी दूसरी पाली में हुई। दरअसल सभी आरोपी उसी 2 से 9 वाली शिफ्ट में काम करते थे। दरअसल शाम के शिफ्ट में चोरी करना आरोपियों के लिए ज्यादा आसान था। काउंटिंग के दूसरी शिफ्ट में चढ़ावा चोरी का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने 4 आरोपियों से पूछताछ की। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 40 दिन में 70 बार चोरी की गई। सबसे ज्यादा 50 से अधिक बार चोरी अविनाश शुक्ला ने ही की थी। वो एक दिन में 2 बार चढ़ावा चोरी करता था। जिन 40 दिनों का रिकॉर्ड पुलिस ने खंगाला है उसमें से 5 दिन ऐसे भी रहे जब एक ही दिन में चढ़ावा चोरों ने 3-3 बार चोरी की।
1: सेकंड शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक होती थी और ये वो वक्त होता था जब कैश लेकर बाहर निकलते समय न सिर्फ निगरानी कम होती थी बल्कि इनके लिए कैश लेकर निकलना भी आसान हो जाता था।
0: पुलिस की जांच में ये सच सामने आने के बाद ही राम मंदिर ट्रस्ट ने चढ़ावे की गिनती अब सिर्फ एक ही शिफ्ट में करने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत अब सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चढ़ावे की गिनती शुरू कर दी गई है। तमाम खुलासों के बीच अयोध्या पुलिस राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव से भी पूछताछ की तैयारी में है। संतोष कुमार शर्मा, अयोध्या आज तक।
2: एक तरफ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर जांच चल रही है तो दूसरी ओर इस पर सियासत जबरदस्त तरीके से हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जब से राम मंदिर दर्शन करके लौटे हैं तब से वो हिंदुत्व का राग अलाप रहे हैं। बीजेपी की ओर से अरविंद केजरीवाल का भी एक पोस्टर जारी किया गया जिसमें अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया गया।
3: दिल्ली बीजेपी ने यह नया पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया गया है। इस पोस्टर को जारी करने के साथ ही बीजेपी ने लिखा है कि जो लोग भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण से खुश नहीं हैं, जिन्होंने मंदिरों और गुरुद्वारों के बाहर शराब की दुकानें खुलवाई, जिनकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही है, जो राम मंदिर की जगह अस्पताल बनवाना चाहते थे, जिन्होंने बजरंग बली का मजाक उड़ाया, जिनके शासन में इमामों को तो वेतन बांटा गया लेकिन पुजारियों को कभी कुछ नहीं दिया।
4: आज केजरीवाल जी को फिर राम याद आए हैं। ये राजनीतिक हिंदू हैं। आज फिर इनकी नौटंकी प्रारंभ हो गई है।
5: अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं और ये हम पहली बार नहीं बोल रहे। जब जब चुनाव आते हैं अरविंद केजरीवाल के जो कर्म होते हैं वो प्रूफ कर देते हैं कि वो चुनावी हिंदू हैं। आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसको लेके हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे। ये सब दिखाता है कि चूंकि वहां उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं इसलिए आज अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग चुनावी हिंदू बनकर हिंदू बनने का एक सॉन्ग रच रहा है।
3: दरअसल अरविंद केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़े हैं। एक तरफ उन्होंने घोषणा की है कि अमृतसर में वो माता सीता और लवकुश का मंदिर बनवाएंगे, दूसरी तरफ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर वो मुखर है।
6: सारे प्रयास किए जा रहे हैं चोरों को बचाने के, डकैतों को बचाने के, जमीनों के जो घोटाला हुआ उस पर तो जांच ही नहीं चल रही, मंदिर निर्माण में जो कमीशन खोली हुई उस पर तो जांच ही नहीं चल रही।
3: लेकिन बीजेपी को ये रास नहीं आ रहा है। अब तेरा हिंदुत्व और मेरा हिंदुत्व की जंग शुरू हो गई है। आज तक ब्यूरो।
2: बात अब जम्मू कश्मीर की, जहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य का दर्जा मांगते हुए बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरा और साथ ही साथ ट्रंप का जिक्र करके उन्होंने तंज कसा है।
7: असेंबली से नहीं मिलेगा, ठीक, फिर हमने सड़कों पर बात करना शुरू किया, फिर कहते थे अब आपको जम्मू कश्मीर में बात करके ये मिलेगा नहीं, ठीक, अब हम जंतर मंतर जा रहे हैं, अब ये हमें कहते ना जंतर मंतर से आपको रियासत का दर्जा नहीं मिलेगा, खुदारा फिर ये बीजेपी वाले बताए ना मुझे क्या ट्रंप के पास जाना पड़ेगा व्हाइट हाउस में अमेरिका रियासत का दर्जा लेने के लिए। अगर मुझे अपने मुल्क के राजधानी में जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा की बहाली नहीं मिलेगी तो कहिए हम लोग टिकट करेंगे, हम अमेरिका जाके ट्रंप साहब के घर के बाहर एहतजाज करके वहां से स्टेटहुड मांग लेंगे, दे दीजिए।
2: बाद पटना के बांकीपुर के चुनावी संग्राम की बांकीपुर में 30 जुलाई को उपचुनाव होना है, 3 अगस्त को रिजल्ट आएगा। मगर बांकीपुर के इस उपचुनाव में संग्राम में मुकाबला त्रिकोणीय है। सभी दल यहां पर अपनी जीत के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन सबकी निगाह इस सीट पर चुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर पर है।

0: कहने को तो बांकीपुर में उपचुनाव होना है, मगर यहाँ की सियासी सरगर्मियाँ जबरदस्त तरीके से बढ़ी हुई हैं। मुकाबला त्रिकोणीय है। बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने ताल ठोकी है। उनके सामने अब बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार और आरजेडी के प्रत्याशी रेखा गुप्ता हैं। मगर बीजेपी मान के चल रही है कि बांकीपुर में पीके की हार तय है।
1: अब उनके पार्टी से कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था ये बाय इलेक्शन में बांकीपुर से, अपने कच्छा पिन के उतर गए क्योंकि कोई उम्मीदवार ही नहीं आ रहा था। अब ये जाएंगे तो जवाब देंगे, जवाब तो लोग देख रहे हैं, झूठ की खेती बार बार नहीं चलता।
0: बीजेपी के इस भरोसे के पीछे वो आंकड़े हैं जिनमें 3 दशक से बांकीपुर पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है। यहाँ बड़ी तादाद में कायस्थ मतदाता हैं और वही बीजेपी की ताकत है, इसीलिए बीजेपी के सहयोगी दल भी भरोसे से भरे हुए हैं।
2: अरे उनको इस बात की समझ हो गई है कि यहाँ रहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि जनता एनडीए के साथ।
0: बांकीपुर में नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन है। कुल 11 प्रत्याशियों ने अब तक नामांकन दाखिल किया है, जिसमें लालू प्रसाद नाम के एक निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं। मगर कांग्रेस ने अब तक अपने किसी प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा है। अलबत्ता कांग्रेस कह रही है कि बांकीपुर से इस बार बीजेपी हारेगी।
3: पहली बार वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है सम्राट जी के नेतृत्व में, और उनकी परीक्षा हो रही है। एक तो पहले उन्होंने ऐसा प्रत्याशी बनाया जो जिसपे करप्शन के चार्जेस थे, जिसके पिताजी पे करप्शन के चार्जेस थे, फिर जिनको अभी बदला उनपे भी कई तरह की कंट्रोवर्सीज हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी।
0: बांकीपुर का रण दिलचस्प है। देखना होगा कि पहली बार चुनावी रण में उतरे पीके क्या बीजेपी के गढ़ को फतह कर पाएंगे। आज तक ब्यूरो।
4: अब आपको एक हैरान कर देने वाली तस्वीर दिखाते हैं, जहां सूरत में अचानक चलते चलते एक कार आग का गोला बन गई। चंद मिनटों ही में कार ये जलकर राख हो गई।
0: सड़क पर खड़ी एक कार धधक रही है। आग इतनी भयानक है कि इसे बुझाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। भयानक आग खौफनाक है। दमकल कर्मी इस पर पानी की बौछार कर रहे हैं, मगर आग भयानक है। काफी देर बाद आखिरकार कार की आग बुझाई गई, मगर तब तक कार पूरी तरह से राख हो चुकी थी। तस्वीरें सूरत की हैं। सूरत के वेसू इलाके में चलती कार में अचानक आग लगी। ये घटना ओमेगा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने बीआरटीएस बस स्टैंड के पास हुई, जिससे थोड़ी देर के लिए मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया था। अच्छी बात ये रही कि वक्त रहते कार में सवार लोग बाहर निकल आए थे, इसीलिए कोई हताहत नहीं हुआ। हाँ, कार जरूर राख हो गई। कार में आग किस वजह से लगी इसका पता अभी नहीं चला है। संजय सिंह राठौड़, सूरत आज तक।
4: अब एक और हैरान करने वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं, और ये तस्वीर उत्तराखंड के कोटद्वार से आई है, जहां हाथियों का झुंड रिहायशी इलाके में आ गया। हाथियों का ये झुंड लोगों के घरों में भी जा घुसा।

0: जंगल में हाथियों को टहलते हुए आपने बहुत बार देखा होगा। पहली बार रिहायशी इलाके में हाथियों को टहलते हुए देखिए, देखिए कितने आराम से ये हाथी इस मकान में प्रवेश कर रहे हैं। सामने से आ रहे इस हाथी के साथ बाईं ओर से प्रवेश कर रहे इस दूसरे हाथी को भी देखिए। इन दोनों के साथ एक तीसरा हाथी भी है, ये हाथी का बच्चा है। ये तीनों हाथी इस घर में प्रवेश कर गए हैं। अब आगे की तस्वीरें देखिए, ये छोटा हाथी घर की छत तक पहुंच गया है। छत पर रखी पानी की टंकी से ये पानी पी रहा है। दूसरा हाथी यहाँ इस कमरे में प्रवेश कर गया। ये तीनों हाथी इस घर में लगातार चहलकदमी कर रहे हैं और हाथियों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो रही हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड में कोटद्वार के वार्ड नंबर 1 के ग्रास्टनगंज की हैं। बताया जा रहा है कि इन हाथियों ने 5 से 6 घरों में जमकर तोड़फोड़ की है। पीड़ितों का आरोप है कि उन्होंने बार बार वन विभाग को शिकायतें दी है मगर कार्रवाई नहीं हुई। अब लोग दहशत में है।
1: हाथी तो कभी कल तो 4-5 थे, अब तो 2 आदमी से क्या होगा। जरा स्टाफ बढ़ाओ,
2: यहाँ पे 35
1: स्टाफ बढ़ाओ, इसलिए स्टाफ के पास तुम टॉर्च दो, वो बंदूक दो, जिससे कि वो बंदूक वो हाथी भाग जाएंगे। नहीं तो हमको तो बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत। हम रात भर 3 बजे 3:30 बजे सोए।
3: परसों भी अंदर आया था हाथी, मतलब पूरा तोड़ के गया, वॉश बेसिन वगैरह, टंकी, मेरी खिड़की पूरी तोड़ दी उसने, पल्ले बाहर निकाल के रख दिए। तो मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बोला है कि आओ। तो सर एक बात मुझे समझ नहीं आती, अगर इनके फॉरेस्ट गार्ड आते हैं, जो भी यहाँ पे है वो चौकी पे वो आते हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास कुछ, उनको आके हम करें क्या? न उनके पास कोई एयर गन वगैरह है कि वो हाथी भगाएं। सर डंडे से तो हाथी नहीं भागेगा ना। अभी पिछली बार फॉरेस्ट गार्ड आया था तो वो डंडे से वो पीछे भाग रहा था हाथी के, उसको भगाने के लिए हाथी ने उसको ही दौड़ा दिया। उसका रविंदर नाम है भैया का, उनका ही फोन टूट गया।
0: लोग खौफ ज्यादा हैं और मांग कर रहे हैं कि इन हाथियों से मुक्ति दिलाया जाए, कोई ऐसा कदम उठाया जाए कि हाथी रिहायशी इलाके में ना आए। विकास, कोटद्वार, आज तक।
4: अब बात वियतनाम से, एक बड़े हादसे के। वियतनाम के फुकोक द्वीप के पास में भारतीय पर्यटकों से भरी एक टूरिस्ट बोट पलट गई। हादसे में 15 भारतीयों की मौत हो गई, 21 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। बोट पर उस समय कुल 36 लोग सवार थे जिसमें 32 भारतीय और 4 क्रू मेंबर्स थे।
5: वियतनाम में छुट्टियों की तस्वीरें आखिर यादें बन गई हैं। समंदर का सफर मौत का सफर बन गया। परिवारों के लिए अब सिर्फ दर्द बचा है। वियतनाम के फुकवोक आइलैंड के पास एक टूरिस्ट बोट पलटी और देखते ही देखते गहरे पानी ने कई जिंदगियां निगल ली। जिस नाव में सवार होकर लोग नए अनुभवों की तलाश में निकले थे, वही नाव कई परिवारों के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा बन गई। वियतनाम से आई ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। समंदर की ऊंची लहरों के बीच पलटी हुई टूरिस्ट बोट और चारों तरफ मदद के लिए जूझते लोग। ये वही नाव थी जिसमें भारत से घूमने पहुंचे पर्यटक सवार थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटक और 4 क्रू मेंबर मौजूद थे। नाव होन में रूट से अनथोई पोर्ट की तरफ जा रही थी, तभी फुकवोक आइलैंड के पास करीब 400 मीटर दूर अचानक हादसा हो गया और देखते ही देखते पूरी नाव समंदर में पलट गई और 15 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे की खबर मिलते ही भारत सरकार भी सक्रिय हो गई। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बताया कि हादसे के बाद हनोई स्थित एम्बेसी और होची मिन्ह सिटी स्थित कॉन्सुलेट में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। दूतावास ने कहा कि भारतीय पर्यटकों की जानकारी जुटाई जा रही है और हर संभव मदद दी जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हादसे पर दुख जताते हुए लिखा, वियतनाम के फुकवोक के पास भारतीय नागरिकों से जुड़े इस दर्दनाक हादसे से बेहद दुखी हूं। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया। पीएम मोदी ने कहा, वियतनाम में भारतीय नागरिकों से जुड़े नाव हादसे की खबर से बेहद दुखी हूं। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। भारतीय दूतावास और अधिकारी हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। हादसे में पीड़ित परिवारों में मातम है। केरल के मछलीपट्टनम में रहने वाले पीड़ित परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वियतनाम नाव हादसे में गेली जयलक्ष्मी की मौत की खबर के बाद परिवार में चीख पुकार मच गई। घर में मौजूद परिजन अब सिर्फ उस पल को याद कर रहे हैं जब एक सफर जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। वहीं केरल के ही रहने वाले एसी थॉमस और लोवेनी थॉमस की मौत की पुष्टि की गई है। केरल सरकार विदेश मंत्रालय के संपर्क में है ताकि मृतकों के पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाया जा सके। एक टूरिस्ट ट्रिप जो यादों का सफर बनने निकली थी वो अचानक मातम में बदल गई। समंदर की एक लहर ने कई परिवारों से उनके अपने छीन लिए। अब सवाल सिर्फ हादसे का नहीं, सवाल यह भी है कि आखिर ऐसी पर्यटक नावों की सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है। वियतनाम से आई इस त्रासदी ने एक बार फिर समंदर में सुरक्षा इंतजामों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
4: अब बात कनाडा के टोरंटो में हुई फायरिंग की। टोरंटो में एक स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान गोलीबारी से हड़कंप मचा। हमले में दो लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग इसमें घायल हुए हैं। पुलिस ने इसे एक्टिव शूटर केस बताया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है।
6: टोरंटो में सालसाउन सेंट क्लेयर फेस्टिवल में गोलियों की तड़ताहट, अफरा तफरी का माहौल, चीखते चिल्लाते लोग। तस्वीरें कनाडा के टोरंटो की हैं, जहां शनिवार शाम एक प्रसिद्ध स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से हड़कंप मच गया। मिडटाउन टोरंटो में आयोजित वार्षिक लैटिन सांस्कृतिक उत्सव सालसाउन सेंट क्लेयर के दौरान हुई इस फायरिंग के बाद मौके पर भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। टोरंटो पुलिस के मुताबिक गोलीबारी में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई जबकि चार लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने इलाके को तुरंत अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और लोगों से घटनास्थल से दूर रहने की अपील की गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक संदिग्ध हमलावर अभी फरार है। फिलहाल पुलिस फायरिंग के कारणों, हमलावर की पहचान और घटना के पीछे की वजहों की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़ी और जानकारी जल्द जारी की जाएगी। आज तक ब्यूरो।
4: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध इतना भीषण हो गया है कि एक हफ्ते के अंदर ईरान के कई शहरों में ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की गए हैं। अमेरिका ने ईरान के कई बंदरगाहों पर बम बरसाए जिसके जवाब में ईरान ने कतर, बहरीन समेत कई खाड़ी देशों में उसके मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचाया है।

0: टूटा युद्ध विराम, शुरू हो गया भयंकर घमासान। ईरान के कई शहरों पर अमेरिका के विनाशकारी प्रहार, ईरान ने कई खाड़ी देशों पर बरसाए बम, हॉर्मुज पर ईरान की तालाबंदी, कीमतों में फिर लगेगी आग। आखिर जिसका डर था वही हुआ, धीरे धीरे टूटता युद्ध विराम अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। एक के बाद एक मिसाइल छोड़ी जा रही है। कई शहरों में सायरन की आवाज गूंज रही है, जो हमलों का संदेश देने के साथ साथ युद्ध फिर से शुरू होने का ऐलान कर रही है। अमेरिकी मिसाइलों ने हफ्ते भर में तीसरी बार ईरान पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। ड्रोन और मिसाइलों के जखीरे ने एक बार फिर तबाही का तांडव मचाना शुरू कर दिया है। अमेरिका का दावा है कि इस बार करीब 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इनमें मिसाइल और ड्रोन साइट, नेवी के ठिकाने, गोला बारूद भंडार, संचार नेटवर्क और तटीय निगरानी केंद्र शामिल हैं। जिन ईरानी शहरों को निशाना बनाया गया उनमें न्यूक्लियर सिटी बुशहर समेत असालुये, बंदर ए देयर, जास्क और चाबहार के सैन्य ठिकाने शामिल हैं। अमेरिका हॉर्मुज में लगातार हो रहे हमलों से गुस्से में है और उसने पहले ही ईरान को ताबड़तोड़ हमलों की चेतावनी दी थी। पिछले तीन दिनों में ईरान के 300 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। खैर, ईरान को भी जवाब देना ही था, लिहाजा उसने भी कई खाड़ी देशों में बने अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों के जरिए बम बरसाने शुरू कर दिए। कतर में अमेरिका के अलुदीद एयरबेस पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से हुए हमले में जंगी जहाजों के मेंटेनेंस और रिपेयर सेंटर के साथ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया है। कतर में ईरानी हमले को नाकाम करने के दौरान मलबा गिरने से 3 लोग घायल हो गए। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने भी मिसाइलों का मोर्चा मध्य पूर्व की ओर खोल दिया है। कतर के अलावा जॉर्डन, कुवैत, बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी ईरान ने निशाना बनाया है। साथ ही यूएई पर भी ईरान की ओर से मिसाइल दागी गई है। बहरीन में लगातार सायरन बज रहे हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी जा रही है। ईरान अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले करने के साथ साथ बयानों में भी आक्रामक होता जा रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई ने अपने पिता अली खामेनेई की मौत का बदला लेने का ऐलान कर दिया है, जिससे अमेरिका और ईरान के बीच घमासान और तेज होने की आशंका बढ़ गई
1: है।
0: अमेरिका के साथ बातों मुलाकातों के दौर में ईरान की ओर से अहम किरदार निभाने वाले मोहम्मद बागेर गालिबाफ के सुर भी तल्ख हो गए। उन्होंने लिखा कि एक तरफा समझौतों का दौर खत्म हो चुका है। हमने पहले ही कहा था, या तो अपना वादा निभाइए या फिर इसकी कीमत चुकाइए। अब हकीकत सामने है। गालिबाफ ने अपने पोस्ट के साथ समझौते की तस्वीर भी साझा की है, जिसमें हॉर्मुज को दोबारा खोलने और वहां व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी ईरान की बताई गई है। खैर, अमेरिका तो जो नुकसान ईरान का कर रहा है वो दुनिया देख ही रही है, लेकिन ईरान के जबरदस्त पलटवार से ट्रंप के बार बार किए जा रहे इन दावों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने ईरानी की पूरी सैन्य ताकत का खात्मा कर दिया है।
2: I think the third regime is more reasonable, but we'll find out. But we've destroyed their, as you know, completely destroyed 150. They had 159 ships. Every single ship is at the bottom of the sea. We've completely destroyed. They don't have one airplane. They don't have radar.
0: सीज़फ़ायर के दौरान ईरान ने अपने एंटी-मिसाइल सिस्टम को दुरुस्त किया और मिसाइल लॉन्चर्स को मजबूत किया। ईरान की ये तैयारी खाड़ी देशों पर किए गए हमलों में साफ दिखाई दे रही है। तांडव की इन तस्वीरों से इतना तो साफ है कि महायुद्ध पार्ट 2 और विनाशकारी होने जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
3: हॉर्मुज में हर कोई अपना नियंत्रण चाहता है। अमेरिका बिना किसी टोलबंदी के यहां से जहाजों की आवाजाही चाहता है, लेकिन ईरान के पास अमेरिका का सामना करने के लिए सबसे बड़ा हथियार है। तेल के इस खेल से हालात फिर से बिगड़ने लगे हैं, क्योंकि ईरान ने फिलहाल इसे बंद करने का ऐलान कर दिया है।

0: हॉर्मुज में हाहाकार से फिर बढ़ेगा घमासान। जहाजों पर बमबारी से बढ़ रहा कोहराम। हॉर्मुज को न खोलने का खामियाजा भुगतेगा तेहरान। क्या अमेरिका के सामने अपनी गलती मान रहा ईरान? हॉर्मुज की शांत लहरों में बमों की बारिश के बाद से एक बार फिर सुनामी दिखने लगी है। दो दिन में तीन जहाजों पर ईरान की बमबारी के बाद से सीज फायर की पूरी तस्वीर ही बदल गई है। एक बार फिर हॉर्मुज का पेच ही अमेरिका और ईरान के बीच फंस गया है और आशंका तो इस बात की लगातार बढ़ रही है कि तेल के खेल की वजह से ही महायुद्ध का पार्ट टू शुरू होने वाला है। ईरान ने हॉर्मुज से गुजर रहे इन तीन कमर्शियल जहाजों पर हमला किया था। इससे ट्रंप का पारा इतना चढ़ा कि दोनों ओर से हमलों की एक नई लहर से ईरान के कई शहरों के अलावा बहरीन और कतर तक में बर्बादी का मंजर दिखाई देने लगा। हॉर्मुज में इस हफ्ते जो हमले हुए हैं, क्या ईरान ने इसे अपनी गलती मानी है? CBS न्यूज ने यह दावा किया है। इसमें अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि ईरानी अफसरों ने निजी तौर पर ट्रंप के सलाहकारों से कहा कि हॉर्मुज में जहाजों पर अटैक गलती थी और ये हमले कट्टरपंथियों के एक ऐसे गुट ने किए जो बातचीत को नाकाम करना चाहते हैं। ईरान बेशक कितना ही कह ले कि हॉर्मुज में हमले एक गलती थे, लेकिन अमेरिका ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है और उसके खिलाफ हटाई गई तेल निर्यात की पाबंदियों को एक बार फिर लगा दिया है जो अगले हफ्ते से लागू कर दी जाएंगी। हॉर्मुज से शुरू हुई लड़ाई तेजी से खार्क तक पहुंच गई है। हफ्ते भर पहले ही अमेरिका ने यहां एयर स्ट्राइक की और ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया। ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा खार्क से ही जुड़ा है। जब से दोनों देशों के बीच जंग शुरू हुई है, खार्क को अमेरिका के कई हमले झेलने पड़े हैं। अब ये एक बार फिर से अमेरिका के निशाने पर आ गया है।
1: We're not attacking at the highest level. The highest level, the bridges, there, which we can knock down. I would say in one day we knock down every single bridge in Iran. There's not a thing they can do about it. Their electric manufacturing facilities, right? Their electric plants where they make their electricity there. We will. If we have to, we'll take them out. I don't want to do that, but if we have to, we'll take them out. They have desalinization plants. We'll take them out if we have to. I hate to do that. That's probably the one I would like not to do least. We attacked Kerg Island last night. We knocked out a piece. I said, don't touch the oil, because maybe we'll take over Kerg Island. You know, we may take over Kerg Island.
0: वैसे अमेरिका ने ईरान को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि ईरान कमर्शियल जहाजों के लिए हॉर्मुज को खोले और जहाजों पर हमले पूरी तरह बंद करे, साथ ही सार्वजनिक तौर पर इसका ऐलान करे। अमेरिका ने दो टूक चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने ऐसा नहीं किया तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। ये चेतावनी ऐसे वक्त पर दी गई है जब अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हवाई हमले कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
2: वक्त तो चला, अब छोटे से ब्रेक का, कुछ और खबरों के साथ होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

पंजाब में आपस में हाथ आजमाते दिख रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजवर्णी को हटाने पर अड़ी चन्नी गुट। रंधावा ने बताया कॉम्प्रोमाइज लीडर आला कमान के दरबार में पहुंचा झगड़ा। उमर के ऑपरेशन लोटस वाले बयान पर बौखलाई बीजेपी, कहा दो सबूत या मांगो माफी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने लगाया था आरोप, हमारे विधायकों को खरीदने की हो रही है साजिश। बीजेपी ने प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के गिनाए 10 फायदे, कहा इंडो पैसिफिक में भारत बना बड़ी ताकत। वैश्विक साझेदारियों को मिली नई मजबूती, कांग्रेस का कटाक्ष। ट्विशा केस में एम्स ने सीबीआई को सौंपी दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सूत्रों से खबर फंदे के लिए इस्तेमाल, बेल्ट पर मिले स्किन टिश्यू, चोट के निशान से हुए मैच। अमेरिकी हमलों की नई किश्त के बीच में दुनिया के सामने आएंगे मुज्तबा खामेनेई, मंगलवार की सभा में करेंगे शिरकत, अटैक में मारे गए लोगों को देंगे श्रद्धांजलि, यूएस की तरफ से जारी है भयानक बमबारी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कई अहम खुलासे हुए। आरोपियों ने बताया कि वो चढ़ावा की चोरी सिर्फ इवनिंग शिफ्ट में किया करते थे। वहीं एक अहम खबर यह भी है कि ट्रस्ट ने सीईओ की नियुक्ति की कोशिशें तेज कर दी हैं। और तीसरी बड़ी खबर है कि टिन्नू यादव और सुभाष यादव से अयोध्या पुलिस ने पूछताछ की तैयारियां की हैं।

0: राम मंदिर के प्रांगण में मौजूद जिस कमरे में चढ़ावे की गिनती होती थी वहां दो पालियों में काउंटिंग की जाती थी। चढ़ावे की गिनती के लिए पहली शिफ्ट सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक होती थी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक की थी। चढ़ावा चोरी की वारदात दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक की शिफ्ट में ही हुई, यानी चोरी दूसरी पाली में हुई। दरअसल सभी आरोपी उसी 2 से 9 वाली शिफ्ट में काम करते थे। दरअसल शाम के शिफ्ट में चोरी करना आरोपियों के लिए ज्यादा आसान था। काउंटिंग के दूसरे शिफ्ट में चढ़ावा चोरी का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने 4 आरोपियों से पूछताछ की। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 40 दिन में 70 बार चोरी की गई। सबसे ज्यादा 50 से अधिक बार चोरी अविनाश शुक्ला ने ही की थी। वो एक दिन में 2 बार चढ़ावा चोरी करता था। जिन 40 दिनों का रिकॉर्ड पुलिस ने खंगाला है उसमें से 5 दिन ऐसे भी रहे जब एक ही दिन में चढ़ावा चोरों ने 3-3 बार चोरी की।
1: सेकंड शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक होती थी और ये वो वक्त होता था जब कैश लेकर बाहर निकलते समय न सिर्फ निगरानी कम होती थी बल्कि इनके लिए कैश लेकर निकलना भी आसान हो जाता था।
0: पुलिस की जांच में ये सच सामने आने के बाद ही राम मंदिर ट्रस्ट ने चढ़ावे की गिनती अब सिर्फ एक ही शिफ्ट में करने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत अब सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चढ़ावे की गिनती शुरू कर दी गई है। तमाम खुलासों के बीच अयोध्या पुलिस राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव से भी पूछताछ की तैयारी में है। संतोष कुमार शर्मा, अयोध्या आज तक।
2: एक तरफ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर जांच चल रही है तो दूसरी ओर इस पर सियासत जबरदस्त तरीके से हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जब से राम मंदिर दर्शन करके लौटे हैं तब से वो हिंदुत्व का राग अलाप रहे हैं। बीजेपी की ओर से अरविंद केजरीवाल का भी एक पोस्टर जारी किया गया जिसमें अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया गया।
3: दिल्ली बीजेपी ने यह नया पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया गया है। इस पोस्टर को जारी करने के साथ ही बीजेपी ने लिखा है कि जो लोग भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण से खुश नहीं हैं, जिन्होंने मंदिरों और गुरुद्वारों के बाहर शराब की दुकानें खुलवाई, जिनकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही है, जो राम मंदिर की जगह अस्पताल बनवाना चाहते थे, जिन्होंने बजरंग बली का मजाक उड़ाया, जिनके शासन में इमामों को तो वेतन बांटा गया लेकिन पुजारियों को कभी कुछ नहीं दिया।
4: आज केजरीवाल जी को फिर राम याद आए हैं, ये राजनीतिक हिंदू हैं, आज फिर इनकी नौटंकी प्रारंभ हो गई है।
5: अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं और ये हम पहली बार नहीं बोल रहे। जब जब चुनाव आते हैं अरविंद केजरीवाल के जो कर्म होते हैं वो प्रूफ कर देते हैं कि वो चुनावी हिंदू हैं। आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसको लेके हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे। ये सब दिखाता है कि चूंकि वहां उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं इसलिए आज अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग चुनावी हिंदू बनकर हिंदू बनने का एक स्वांग रच रहा है।
3: दरअसल अरविंद केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़े हैं। एक तरफ उन्होंने घोषणा की है कि अमृतसर में वो माता सीता और लवकुश का मंदिर बनवाएंगे, दूसरी तरफ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर वो मुखर है।
6: सारे प्रयास किए जा रहे हैं चोरों को बचाने के, डकैतों को बचाने के, जमीनों के जो घोटाला हुआ उस पर तो जांच ही नहीं चल रही, मंदिर निर्माण में जो कमीशन खोली हुई उस पर तो जांच ही नहीं चल रही।
3: लेकिन बीजेपी को ये रास नहीं आ रहा है। अब तेरा हिंदुत्व और मेरा हिंदुत्व की जंग शुरू हो गई है। आज तक ब्यूरो।
2: बाद अब जम्मू कश्मीर के जहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य का दर्जा मांगते हुए बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरा और साथ ही साथ ट्रंप का जिक्र करके उन्होंने तंज कसा है।
7: असेंबली से नहीं मिलेगा ठीक, फिर हमने सड़कों पर बात करना शुरू किया, फिर कहते थे अब आपको जम्मू कश्मीर में बात करके ये मिलेगा नहीं ठीक, अब हम जंतर मंतर जा रहे हैं, अब ये हमें कहते ना जंतर मंतर से आपको रियासत का दर्जा नहीं मिलेगा। खुदारा फिर ये बीजेपी वाले बताए ना मुझे क्या ट्रंप के पास जाना पड़ेगा व्हाइट हाउस में अमेरिका रियासत का दर्जा लेने के लिए। अगर मुझे अपने मुल्क के राजधानी में जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा की बहाली नहीं मिलेगी तो कहिए हम लोग टिकट करेंगे, हम अमेरिका जाके ट्रंप साहब के घर के बाहर एहतजाज करके वहां से स्टेटहुड मांग लेंगे, दे दीजिए।
2: बाद पटना के बांकीपुर के चुनावी संग्राम की बांकीपुर में 30 जुलाई को उपचुनाव होना है, 3 अगस्त को रिजल्ट आएगा, मगर बांकीपुर के इस उपचुनाव में संग्राम में मुकाबला त्रिकोणीय है। सभी दल यहां पर अपनी जीत के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन सबकी निगाह इस सीट पर चुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर पर है।

0: कहने को तो बांकीपुर में उपचुनाव होना है, मगर यहाँ की सियासी सरगर्मियाँ जबरदस्त तरीके से बढ़ी हुई हैं। मुकाबला त्रिकोणीय है। बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने ताल ठोकी है। उनके सामने अब बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार और आरजेडी के प्रत्याशी रेखा गुप्ता हैं। मगर बीजेपी मान के चल रही है कि बांकीपुर में पीके की हार तय है।
1: अब उनके पार्टी से कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था ये बाय इलेक्शन में बांकीपुर से, अपने कच्छा पिन के उतर गए क्योंकि कोई उम्मीदवार ही नहीं आ रहा था। अब ये जाएंगे तो जवाब देंगे, जवाब तो लोग देख रहे हैं, झूठ की खेती बार बार नहीं चलता।
0: बीजेपी के इस भरोसे के पीछे वो आंकड़े हैं जिनमें 3 दशक से बांकीपुर पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है। यहाँ बड़ी तादाद में कायस्थ मतदाता हैं और वही बीजेपी की ताकत है, इसीलिए बीजेपी के सहयोगी दल भी भरोसे से भरे हुए हैं।
2: अरे उनको इस बात की समझ हो गई है कि यहाँ रहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि जनता एनडीए के साथ।
0: बांकीपुर में नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन है। कुल 11 प्रत्याशियों ने अब तक नामांकन दाखिल किया है, जिसमें लालू प्रसाद नाम के एक निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं। मगर कांग्रेस ने अब तक अपने किसी प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा है। अलबत्ता कांग्रेस कह रही है कि बांकीपुर से इस बार बीजेपी हारेगी।
3: पहली बार वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है सम्राट जी के नेतृत्व में, और उनकी परीक्षा हो रही है। एक तो पहले उन्होंने ऐसा प्रत्याशी बनाया जो जिसपे करप्शन के चार्जेस थे, जिसके पिताजी पे करप्शन के चार्जेस थे, फिर जिनको अभी बदला उन पे भी कई तरह की कंट्रोवर्सीज हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी।
0: बांकीपुर का रण दिलचस्प है। देखना होगा कि पहली बार चुनावी रण में उतरे पीके क्या बीजेपी के गढ़ को फतह कर पाएंगे। आज तक ब्यूरो।
4: अब आपको एक हैरान कर देने वाली तस्वीर दिखाते, जहां सूरत में अचानक चलते चलते एक कार आग का गोला बन गई। चंद मिनटों ही में कार ये जलकर राख हो गई।
0: सड़क पर खड़ी एक कार धधक रही है। आग इतनी भयानक है कि इसे बुझाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। भयानक आग खौफनाक है। दमकल कर्मी इस पर पानी की बौछार कर रहे हैं, मगर आग भयानक है। काफी देर बाद आखिरकार कार की आग बुझाई गई, मगर तब तक कार पूरी तरह से राख हो चुकी थी। तस्वीरें सूरत की हैं। सूरत के वेसू इलाके में चलती कार में अचानक आग लगी। ये घटना ओमेगा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने बीआरटीएस बस स्टैंड के पास हुई, जिससे थोड़ी देर के लिए मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया था। अच्छी बात यह रही कि वक्त रहते कार में सवार लोग बाहर निकल आए थे, इसीलिए कोई हताहत नहीं हुआ। हाँ, कार जरूर राख हो गई। कार में आग किस वजह से लगी इसका पता भी नहीं चला है। संजय सिंह राठौड़, सूरत आज तक।
4: अब एक और हैरान करने वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं, और ये तस्वीर उत्तराखंड के कोटद्वार से आई है, जहां हाथियों का झुंड रिहायशी इलाके में आ गया। हाथियों का ये झुंड लोगों के घरों में भी जा घुसा।

0: जंगल में हाथियों को टहलते हुए आपने बहुत बार देखा होगा। पहली बार रिहायशी इलाके में हाथियों को टहलते हुए देखिए, देखिए कितने आराम से ये हाथी इस मकान में प्रवेश कर रहे हैं। सामने से आ रहे इस हाथी के साथ बाईं ओर से प्रवेश कर रहे इस दूसरे हाथी को भी देखिए। इन दोनों के साथ एक तीसरा हाथी भी है, ये हाथी का बच्चा है। ये तीनों हाथी इस घर में प्रवेश कर गए हैं। अब आगे की तस्वीरें देखिए, ये छोटा हाथी घर की छत तक पहुंच गया है। छत पर रखी पानी की टंकी से ये पानी पी रहा है। दूसरा हाथी यहाँ इस कमरे में प्रवेश कर गया। ये तीनों हाथी इस घर में लगातार चहलकदमी कर रहे हैं और हाथियों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो रही हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड में कोटद्वार के वार्ड नंबर 1 के ग्रास्टनगंज की हैं। बताया जा रहा है कि इन हाथियों ने 5 से 6 घरों में जमकर तोड़फोड़ की है। पीड़ितों का आरोप है कि उन्होंने बार बार वन विभाग को शिकायतें दी है मगर कार्रवाई नहीं हुई। अब लोग दहशत में हैं।
1: हाथी तो कभी कल तो 4-5 थे, तो 2 आदमी से क्या होगा। जरा स्टाफ बढ़ाओ, स्टाफ बढ़ाओ, इसलिए स्टाफ के पास तुम टॉर्च दो, वो बंदूक दो, जिससे कि वो बंदूक वो हाथी भाग जाएंगे। नहीं तो हमको तो बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत। हम रात भर 3 बजे 3:30 बजे सोए।
2: परसों भी अंदर आया था हाथी, मतलब पूरा तोड़ के गया, वॉश बेसिन वगैरह, टंकी, मेरी खिड़की पूरी तोड़ दी उसने, पल्ले बाहर निकाल के रख दिए। तो मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बोला है कि आओ। तो सर एक बात मुझे समझ नहीं आती, अगर इनके फॉरेस्ट गार्ड आते हैं, जो भी यहाँ पे है वो चौकी पे वो आते हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास कुछ, उनको आके हम करें क्या? न उनके पास कोई एयर गन वगैरह है कि वो हाथी भगाए। सर डंडे से तो हाथी नहीं भागेगा ना। अभी पिछली बारी फॉरेस्ट गार्ड आया था तो वो डंडे से, वो पीछे भाग रहा था हाथी के, उसको भगाने के लिए हाथी ने उसको ही दौड़ा दिया। उसका रविंदर नाम है भैया का, उनका ही फोन टूट गया।
0: लोग खौफजदा हैं और मांग कर रहे हैं कि इन हाथियों से मुक्ति दिलाया जाए, कोई ऐसा कदम उठाया जाए कि हाथी रिहायशी इलाके में ना आए। विकास, कोटद्वार, आज तक।
3: अब बात वियतनाम से आए एक बड़े हादसे की। वियतनाम के फुकोक द्वीप के पास में भारतीय पर्यटकों से भरी एक टूरिस्ट बोट पलट गई। हादसे में 15 भारतीयों की मौत हो गई, 21 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। बोट पर उस समय कुल 36 लोग सवार थे, जिसमें 32 भारतीय और 4 क्रू मेंबर्स थे।
4: वियतनाम में छुट्टियों की तस्वीरें आखिर यादें बन गई। समंदर का सफर मौत का सफर बन गया। परिवारों के लिए अब सिर्फ दर्द बचा है। वियतनाम के फुकवोक आइलैंड के पास एक टूरिस्ट बोट पलटी और देखते ही देखते गहरे पानी ने कई जिंदगियां निगल ली। जिस नाव में सवार होकर लोग नए अनुभवों की तलाश में निकले थे, वही नाव कई परिवारों के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा बन गई। वियतनाम से आई ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। समंदर की ऊंची लहरों के बीच पलटी हुई टूरिस्ट बोट और चारों तरफ मदद के लिए जूझते लोग। ये वही नाव थी जिसमें भारत से घूमने पहुंचे पर्यटक सवार थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटक और 4 क्रू मेंबर मौजूद थे। नाव होनमे रूट से अनथोई पोर्ट की तरफ जा रही थी, तभी फुकवोक आइलैंड के पास करीब 400 मीटर दूर अचानक हादसा हो गया और देखते ही देखते पूरी नाव समंदर में पलट गई और 15 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे की खबर मिलते ही भारत सरकार भी सक्रिय हो गई। वियतनाम में भारतीय

0: की जानकारी जुटाई जा रही है और हर संभव मदद दी जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हादसे पर दुख जताते हुए लिखा, वियतनाम के फुकुओक के पास भारतीय नागरिकों से जुड़े इस दर्दनाक हादसे से बेहद दुखी हूं। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया। पीएम मोदी ने कहा, वियतनाम में भारतीय नागरिकों से जुड़े नाव हादसे की खबर से बेहद दुखी हूं। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। भारतीय दूतावास और अधिकारी हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। हादसे में पीड़ित परिवारों में मातम है। केरल के मछलीपट्टनम में रहने वाले पीड़ित परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वियतनाम नाव हादसे में गेली जयलक्ष्मी की मौत की खबर के बाद परिवार में चीख पुकार मच गई। घर में मौजूद परिजन अब सिर्फ उस पल को याद कर रहे हैं जब एक सफर जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। वहीं केरल के ही रहने वाले एसी थॉमस और लोवेनी थॉमस की मौत की पुष्टि की गई है। केरल सरकार विदेश मंत्रालय के संपर्क में है ताकि मृतकों के पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाया जा सके। एक टूरिस्ट ट्रिप जो यादों का सफर बनने निकली थी वो अचानक मातम में बदल गई। समंदर की एक लहर ने कई परिवारों से उनके अपने छीन लिए। अब सवाल सिर्फ हादसे का नहीं, सवाल यह भी है कि आखिर ऐसी पर्यटक नावों की सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है। वियतनाम से आई इस त्रासदी ने एक बार फिर समंदर में सुरक्षा इंतजामों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: अब आज कनाडा के टोरंटो में हुई फायरिंग की, टोरंटो में एक स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान गोलीबारी से हड़कंप मचा। हमले में दो लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग इसमें घायल हुए हैं। पुलिस ने इसे एक्टिव शूटर केस बताया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है।
2: टोरंटो में साल साउंड सेंट क्लेयर फेस्टिवल में गोलियों की तड़ताहट, अफरा तफरी का माहौल, चीखते चिल्लाते लोग। तस्वीरें कनाडा के टोरंटो की हैं, जहां शनिवार शाम एक प्रसिद्ध स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से हड़कंप मच गया। मिड टाउन टोरंटो में आयोजित वार्षिक लैटिन सांस्कृतिक उत्सव साल साउंड सेंट क्लेयर के दौरान हुई इस फायरिंग के बाद मौके पर भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। टोरंटो पुलिस के मुताबिक गोलीबारी में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई जबकि चार लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने इलाके को तुरंत अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और लोगों से घटनास्थल से दूर रहने की अपील की गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक संदिग्ध हमलावर अभी फरार है। फिलहाल पुलिस फायरिंग के कारणों, हमलावर की पहचान और घटना के पीछे की वजहों की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़ी और जानकारी जल्द जारी की जाएगी। आज तक टेरो।
1: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध इतना भीषण हो गया है कि एक हफ्ते के अंदर ईरान के कई शहरों में ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की गए हैं। अमेरिका ने ईरान के कई बंदरगाहों पर बम बरसाए जिसके जवाब में ईरान ने कतर, बहरीन समेत कई खाड़ी देशों में उसके मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचाया है।

टूटा युद्ध विराम, शुरू हो गया भयंकर घमासान। ईरान के कई शहरों पर अमेरिका के विनाशकारी प्रहार, ईरान ने कई खाड़ी देशों पर बरसाए बम, हॉर्मुज पर ईरान की तालाबंदी, कीमतों में फिर लगेगी आग। आखिर जिसका डर था वही हुआ, धीरे धीरे टूटता युद्ध विराम अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। एक के बाद एक मिसाइल छोड़ी जा रही है। कई शहरों में सायरन की आवाज गूंज रही है, जो हमलों का संदेश देने के साथ साथ युद्ध फिर से शुरू होने का ऐलान कर रही है।

0: अमेरिकी मिसाइलों ने हफ्ते भर में तीसरी बार ईरान पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक किए। ड्रोन और मिसाइलों के जखीरे ने एक बार फिर तबाही का तांडव मचाना शुरू कर दिया है। अमेरिका का दावा है कि इस बार करीब 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इनमें मिसाइल और ड्रोन साइट, नेवी के ठिकाने, गोला बारूद भंडार, संचार नेटवर्क और तटीय निगरानी केंद्र शामिल हैं। जिन ईरानी शहरों को निशाना बनाया गया उनमें न्यूक्लियर सिटी बुशहर समेत असालुये, बंदर एतेयर, जास्क और चाबहार के सैन्य ठिकाने शामिल हैं। अमेरिका हॉर्मुज में लगातार हो रहे हमलों से गुस्से में है और उसने पहले ही ईरान को ताबड़तोड़ हमलों की चेतावनी दी थी। पिछले तीन दिनों में ईरान के 300 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। खैर, ईरान को भी जवाब देना ही था, लिहाजा उसने भी कई खाड़ी देशों में बने अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों के जरिए बम बरसाने शुरू कर दिए। कतर में अमेरिका के अलुदीद एयरबेस पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से हुए हमले में जंगी जहाजों के मेंटेनेंस और रिपेयर सेंटर के साथ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया है। कतर में ईरानी हमले को नाकाम करने के दौरान मलबा गिरने से 3 लोग घायल हो गए। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने भी मिसाइलों का मोर्चा मध्य पूर्व की ओर खोल दिया है। कतर के अलावा जॉर्डन, कुवैत, बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी ईरान ने निशाना बनाया है। साथ ही यूएई पर भी ईरान की ओर से मिसाइल दागी गई है। बहरीन में लगातार सायरन बज रहे हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी जा रही है। ईरान अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले करने के साथ साथ बयानों में भी आक्रामक होता जा रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई ने अपने पिता अली खामेनेई की मौत का बदला लेने का ऐलान कर दिया है, जिससे अमेरिका और ईरान के बीच घमासान और तेज होने की आशंका बढ़ गई है। अमेरिका के साथ बातों मुलाकातों के दौर में ईरान की ओर से अहम किरदार निभाने वाले मोहम्मद बागेर गालिबाफ के सुर भी तल्ख हो गए। उन्होंने लिखा कि एक तरफा समझौतों का दौर खत्म हो चुका है। हमने पहले ही कहा था, या तो अपना वादा निभाइए या फिर इसकी कीमत चुकाइए। अब हकीकत सामने है। गालिबाफ ने अपने पोस्ट के साथ समझौते की तस्वीर भी साझा की है, जिसमें हॉर्मुज को दोबारा खोलने और वहां व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी ईरान की बताई गई है। खैर, अमेरिका तो जो नुकसान ईरान का कर रहा है वो दुनिया देख ही रही है, लेकिन ईरान के जबरदस्त पलटवार से ट्रंप के बार बार किए जा रहे इन दावों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने ईरानी की पूरी सैन्य ताकत का खात्मा कर दिया है।
1: Destroyed there, as you know, completely destroyed. 150. They had 159 ships. Every single ship is at the bottom of the sea. We've completely destroyed. They don't have one airplane. They don't have radar.
0: Ceasefire के दौरान ईरान ने अपने anti-missile system को दुरुस्त किया और missile launchers को मजबूत किया। ईरान की ये तैयारी खाड़ी देशों पर किए गए हमलों में साफ दिखाई दे रही है। तांडव की इन तस्वीरों से इतना तो साफ है कि महायुद्ध पार्ट 2 और विनाशकारी होने जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
2: हॉर्मुज में हर कोई अपना नियंत्रण चाहता है। अमेरिका बिना किसी टोल बंदी के यहां से जहाजों की आवाजाही चाहता है, लेकिन ईरान के पास अमेरिका का सामना करने के लिए सबसे बड़ा हथियार है। तेल के इस खेल से हालात फिर से बिगड़ने लगे हैं, क्योंकि ईरान ने फिलहाल इसे बंद करने का ऐलान कर दिया है।

0: होर्मुज में हाहाकार से फिर बढ़ेगा घमासान। जहाजों पर बमबारी से बढ़ रहा कोहराम। होर्मुज को न खोलने का खामियाजा भुगतेगा तेहरान। क्या अमेरिका के सामने अपनी गलती मान रहा ईरान? होर्मुज की शांत लहरों में बमों की बारिश के बाद से एक बार फिर सुनामी दिखने लगी है। दो दिन में तीन जहाजों पर ईरान की बमबारी के बाद से सीज फायर की पूरी तस्वीर ही बदल गई है। एक बार फिर होर्मुज का पेच ही अमेरिका और ईरान के बीच फंस गया है और आशंका तो इस बात की लगातार बढ़ रही है कि तेल के खेल की वजह से ही महायुद्ध का पार्ट टू शुरू होने वाला है। ईरान ने होर्मुज से गुजर रहे इन तीन कमर्शियल जहाजों पर हमला किया था। इससे ट्रंप का पारा इतना चढ़ा कि दोनों ओर से हमलों की एक नई लहर से ईरान के कई शहरों के अलावा बहरीन और कतर तक में बर्बादी का मंजर दिखाई देने लगा। होर्मुज में इस हफ्ते जो हमले हुए हैं, क्या ईरान ने इसे अपनी गलती मानी है? CBS न्यूज ने यह दावा किया है। इसमें अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि ईरानी अफसरों ने निजी तौर पर ट्रंप के सलाहकारों से कहा कि होर्मुज में जहाजों पर अटैक गलती थी और ये हमले कट्टरपंथियों के एक ऐसे गुट ने किए जो बातचीत को नाकाम करना चाहते हैं। ईरान बेशक कितना ही कह ले कि होर्मुज में हमले एक गलती थे, लेकिन अमेरिका ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है और उसके खिलाफ हटाई गई तेल निर्यात की पाबंदियों को एक बार फिर लगा दिया है जो अगले हफ्ते से लागू कर दी जाएंगी। होर्मुज से शुरू हुई लड़ाई तेजी से खार्क तक पहुंच गई है। हफ्ते भर पहले ही अमेरिका ने यहां एयर स्ट्राइक की और ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया। ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा खार्क से ही जुड़ा है। जब से दोनों देशों के बीच जंग शुरू हुई है, खार्क को अमेरिका के कई हमले झेलने पड़े हैं। अब ये एक बार फिर से अमेरिका के निशाने पर आ गया है।
1: Which we can knock down. I would say in one day we knock down every single bridge in Iran. There's not a thing they can do about it. Their electric manufacturing facilities, right? Their electric plants where they make their electricity there. We'll take them out. I don't want to do that, but if we have to, we'll take them out. They have desalinization plants. We'll take them out if we have to. I hate to do that. That's probably the one I would like not to do least. We attacked Kharg Island last night. We knocked out a piece. I said, don't touch the oil because maybe we'll take over Kharg Island. You know, we may take over Kharg Island.
0: वैसे अमेरिका ने ईरान को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि ईरान कमर्शियल जहाजों के लिए होर्मुज को खोले और जहाजों पर हमले पूरी तरह बंद करे, साथ ही सार्वजनिक तौर पर इसका ऐलान करे। अमेरिका ने दो टूक चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने ऐसा नहीं किया तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। ये चेतावनी ऐसे वक्त पर दी गई है जब अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हवाई हमले कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
2: वक्त हो चला अब छोटे से ब्रेक का, कुछ और खबरों के साथ होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

पंजाब में आपस में हाथ आजमाते दिख रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजवर्धनी को हटाने पर अड़ी चन्नी गुट। रंधावा ने बताया कॉम्प्रोमाइज लीडर, आला कमान के दरबार में पहुंचा झगड़ा। उमर के ऑपरेशन लोटस वाले बयान पर बौखलाई बीजेपी, कहा दो सबूत या मांगो माफी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने लगाया था आरोप, हमारे विधायकों को खरीदने की हो रही है साजिश। बीजेपी ने प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के गिनाए 10 फायदे, कहा इंडो पैसिफिक में भारत बना बड़ी ताकत, वैश्विक साझेदारियों को मिली नई मजबूती, कांग्रेस का कटाक्ष। ट्विशा केस में एम्स ने सीबीआई को सौंपी दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सूत्रों से खबर फंदे के लिए इस्तेमाल, बेल्ट पर मिले स्किन टिश्यू, चोट के निशान से हुए मैच। अमेरिकी हमलों की नई किश्त के बीच में दुनिया के सामने आएंगे मुज्तबा खामेनेई, मंगलवार की सभा में करेंगे शिरकत, अटैक में मारे गए लोगों को देंगे श्रद्धांजलि, यूएस की तरफ से जारी है भयानक बमबारी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कई अहम खुलासे हुए। आरोपियों ने बताया कि वो चढ़ावा की चोरी सिर्फ इवनिंग शिफ्ट में किया करते थे। वहीं एक अहम खबर यह भी है कि ट्रस्ट ने सीईओ की नियुक्ति की कोशिशें तेज कर दी हैं। और तीसरी बड़ी खबर है कि टिन्नू यादव और सुभाष यादव से अयोध्या पुलिस ने पूछताछ की तैयारियां की हैं।

0: राम मंदिर के प्रांगण में मौजूद जिस कमरे में चढ़ावे की गिनती होती थी वहां दो पालियों में काउंटिंग की जाती थी। चढ़ावे की गिनती के लिए पहली शिफ्ट सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक होती थी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक की थी। चढ़ावा चोरी की वारदात दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक की शिफ्ट में ही हुई, यानी चोरी दूसरी पाली में हुई। दरअसल सभी आरोपी उसी 2 से 9 वाली शिफ्ट में काम करते थे। दरअसल शाम के शिफ्ट में चोरी करना आरोपियों के लिए ज्यादा आसान था। काउंटिंग के दूसरे शिफ्ट में चढ़ावा चोरी का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने 4 आरोपियों से पूछताछ की। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 40 दिन में 70 बार चोरी की गई। सबसे ज्यादा 50 से अधिक बार चोरी अविनाश शुक्ला ने ही की थी। वो एक दिन में 2 बार चढ़ावा चोरी करता था। जिन 40 दिनों का रिकॉर्ड पुलिस ने खंगाला है उसमें से 5 दिन ऐसे भी रहे जब एक ही दिन में चढ़ावा चोरों ने 3-3 बार चोरी की।
1: सेकंड शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक होती थी और ये वो वक्त होता था जब कैश लेकर बाहर निकलते समय न सिर्फ निगरानी कम होती थी बल्कि इनके लिए कैश लेकर निकलना भी आसान हो जाता था।
0: पुलिस की जांच में ये सच सामने आने के बाद ही राम मंदिर ट्रस्ट ने चढ़ावे की गिनती अब सिर्फ एक ही शिफ्ट में करने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत अब सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चढ़ावे की गिनती शुरू कर दी गई है। तमाम खुलासों के बीच अयोध्या पुलिस राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव से भी पूछताछ की तैयारी में है। संतोष कुमार शर्मा, अयोध्या आज तक।
2: एक तरफ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर जांच चल रही है तो दूसरी ओर इस पर सियासत जबरदस्त तरीके से हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जब से राम मंदिर दर्शन करके लौटे हैं तब से वो हिंदुत्व का राग अलाप रहे हैं। बीजेपी की ओर से अरविंद केजरीवाल का भी एक पोस्टर जारी किया गया जिसमें अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया गया।
3: दिल्ली बीजेपी ने यह नया पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया गया है। इस पोस्टर को जारी करने के साथ ही बीजेपी ने लिखा है कि जो लोग भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण से खुश नहीं हैं, जिन्होंने मंदिरों और गुरुद्वारों के बाहर शराब की दुकानें खुलवाई, जिनकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही है, जो राम मंदिर की जगह अस्पताल बनवाना चाहते थे, जिन्होंने बजरंग बली का मजाक उड़ाया, जिनके शासन में इमामों को तो वेतन बांटा गया लेकिन पुजारियों को कभी कुछ नहीं दिया।
4: आज केजरीवाल जी को फिर राम याद आए हैं। ये राजनीतिक हिंदू हैं। आज फिर इनकी नौटंकी प्रारंभ हो गई है।
5: अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं और ये हम पहली बार नहीं बोल रहे। जब जब चुनाव आते हैं अरविंद केजरीवाल के जो कर्म होते हैं वो प्रूफ कर देते हैं कि वो चुनावी हिंदू हैं। आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसको लेके हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे। ये सब दिखाता है कि चूंकि वहां उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं इसलिए आज अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग चुनावी हिंदू बनकर हिंदू बनने का एक सॉन्ग रच रहा है।
3: दरअसल अरविंद केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़े हैं। एक तरफ उन्होंने घोषणा की है कि अमृतसर में वो माता सीता और लवकुश का मंदिर बनवाएंगे, दूसरी तरफ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर वो मुखर है।
6: सारे प्रयास किए जा रहे हैं चोरों को बचाने के, डकैतों को बचाने के, जमीनों के जो घोटाला हुआ उस पर तो जांच ही नहीं चल रही, मंदिर निर्माण में जो कमीशन खोली हुई उस पर तो जांच ही नहीं चल रही।
3: लेकिन बीजेपी को ये रास नहीं आ रहा है। अब तेरा हिंदुत्व और मेरा हिंदुत्व की जंग शुरू हो गई है। आज तक ब्यूरो।
2: बात अब जम्मू कश्मीर की, जहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य का दर्जा मांगते हुए बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरा और साथ ही साथ ट्रंप का जिक्र करके उन्होंने तंज कसा है।
7: असेंबली से नहीं मिलेगा, ठीक, फिर हमने सड़कों पर बात करना शुरू किया, फिर कहते थे अब आपको जम्मू कश्मीर में बात करके ये मिलेगा नहीं, ठीक, अब हम जंतर मंतर जा रहे हैं, अब ये हमें कहते ना जंतर मंतर से आपको रियासत का दर्जा नहीं मिलेगा। खुदारा फिर ये बीजेपी वाले बताएं ना मुझे, क्या ट्रंप के पास जाना पड़ेगा व्हाइट हाउस में अमेरिका रियासत का दर्जा लेने के लिए? अगर मुझे अपने मुल्क के राजधानी में जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा की बहाली नहीं मिलेगी तो कहिए हम लोग टिकट करेंगे, हम अमेरिका जाके ट्रंप साहब के घर के बाहर एहतजाज करके वहां से स्टेटहुड मांग लेंगे, दे दीजिए।
2: बाद पटना के बांकीपुर के चुनावी संग्राम की बांकीपुर में 30 जुलाई को उपचुनाव होना है, 3 अगस्त को रिजल्ट आएगा। मगर बांकीपुर के इस उपचुनाव में संग्राम में मुकाबला त्रिकोणीय है। सभी दल यहां पर अपनी जीत के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन सबकी निगाह इस सीट पर चुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर पर है।

0: कहने को तो बांकीपुर में उपचुनाव होना है, मगर यहाँ की सियासी सरगर्मियाँ जबरदस्त तरीके से बढ़ी हुई हैं। मुकाबला त्रिकोणीय है। बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने ताल ठोकी है। उनके सामने अब बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार और आरजेडी के प्रत्याशी रेखा गुप्ता हैं। मगर बीजेपी मान के चल रही है कि बांकीपुर में पीके की हार तय है।
1: अब उनके पार्टी से कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था ये बाय इलेक्शन में बांकीपुर से, अपने कच्छा पिन के उतर गए क्योंकि कोई उम्मीदवार ही नहीं आ रहा था। अब ये जाएंगे तो जवाब देंगे, जवाब तो लोग देख रहे हैं, झूठ की खेती बार बार नहीं चलता।
0: बीजेपी के इस भरोसे के पीछे वो आंकड़े हैं जिनमें 3 दशक से बांकीपुर पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है। यहाँ बड़ी तादाद में कायस्थ मतदाता हैं और वही बीजेपी की ताकत है, इसीलिए बीजेपी के सहयोगी दल भी भरोसे से भरे हुए हैं।
2: अरे उनको इस बात की समझ हो गई है कि यहाँ रहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि जनता एनडीए के साथ।
0: बांकीपुर में नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन है। कुल 11 प्रत्याशियों ने अब तक नामांकन दाखिल किया है, जिसमें लालू प्रसाद नाम के एक निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं। मगर कांग्रेस ने अब तक अपने किसी प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा है। अलबत्ता कांग्रेस कह रही है कि बांकीपुर से इस बार बीजेपी हारेगी।
3: पहली बार वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है सम्राट जी के नेतृत्व में, और उनकी परीक्षा हो रही है। एक तो पहले उन्होंने ऐसा प्रत्याशी बनाया जो जिसपे करप्शन के चार्जेस थे, जिसके पिताजी पे करप्शन के चार्जेस थे, फिर जिनको अभी बदला उनपे भी कई तरह की कंट्रोवर्सीज हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी।
0: बांकीपुर का रण दिलचस्प है। देखना होगा कि पहली बार चुनावी रण में उतरे पीके क्या बीजेपी के गढ़ को फतह कर पाएंगे। आज तक ब्यूरो।
4: अब आपको एक हैरान कर देने वाली तस्वीर दिखाते हैं, जहां सूरत में अचानक चलते चलते एक कार आग का गोला बन गई। चंद मिनटों ही में कार ये जलकर राख हो गई।
0: सड़क पर खड़ी एक कार धधक रही है। आग इतनी भयानक है कि इसे बुझाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। भयानक आग खौफनाक है। दमकल कर्मी इस पर पानी की बौछार कर रहे हैं, मगर आग भयानक है। काफी देर बाद आखिरकार कार की आग बुझाई गई, मगर तब तक कार पूरी तरह से राख हो चुकी थी। तस्वीरें सूरत की हैं। सूरत के वेसू इलाके में चलती कार में अचानक आग लगी। ये घटना ओमेगा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने बीआरटीएस बस स्टैंड के पास हुई, जिससे थोड़ी देर के लिए मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया था। अच्छी बात ये रही कि वक्त रहते कार में सवार लोग बाहर निकल आए थे, इसीलिए कोई हताहत नहीं हुआ। हाँ, कार जरूर राख हो गई। कार में आग किस वजह से लगी इसका पता अभी नहीं चला है। संजय सिंह राठौड़, सूरत आज तक।
4: अब एक और हैरान करने वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं, और ये तस्वीर उत्तराखंड के कोटद्वार से आई है, जहां हाथियों का झुंड रिहायशी इलाके में आ गया। हाथियों का ये झुंड लोगों के घरों में भी जा घुसा।

0: जंगल में हाथियों को टहलते हुए आपने बहुत बार देखा होगा। पहली बार रिहायशी इलाके में हाथियों को टहलते हुए देखिए, देखिए कितने आराम से ये हाथी इस मकान में प्रवेश कर रहे हैं। सामने से आ रहे इस हाथी के साथ बाईं ओर से प्रवेश कर रहे इस दूसरे हाथी को भी देखिए। इन दोनों के साथ एक तीसरा हाथी भी है, ये हाथी का बच्चा है। ये तीनों हाथी इस घर में प्रवेश कर गए हैं। अब आगे की तस्वीरें देखिए, ये छोटा हाथी घर की छत तक पहुंच गया है। छत पर रखी पानी की टंकी से ये पानी पी रहा है। दूसरा हाथी यहाँ इस कमरे में प्रवेश कर गया। ये तीनों हाथी इस घर में लगातार चहलकदमी कर रहे हैं और हाथियों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो रही हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड में कोटद्वार के वार्ड नंबर 1 के ग्रास्टनगंज की हैं। बताया जा रहा है कि इन हाथियों ने 5 से 6 घरों में जमकर तोड़फोड़ की है। पीड़ितों का आरोप है कि उन्होंने बार बार वन विभाग को शिकायतें दी है मगर कार्रवाई नहीं हुई। अब लोग दहशत में हैं।
1: हाथी तो कभी कल तो 4-5 थे, अब तो 2 आदमी से क्या होगा। जरा स्टाफ बढ़ाओ,
2: यहाँ पे 35
1: स्टाफ बढ़ाओ, इसलिए स्टाफ के पास तुम टॉर्च दो, वो बंदूक दो, जिससे कि वो बंदूक वो हाथी भाग जाएंगे। नहीं तो हमको तो बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत पर हम रात भर 3 बजे 3:30 बजे सोए।
3: परसों भी अंदर आया था हाथी, मतलब पूरा तोड़ के गया, वॉश बेसिन वगैरह, टंकी, मेरी खिड़की पूरी तोड़ दी उसने, पल्ले बाहर निकाल के रख दिए। तो मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बोला है कि आओ। तो सर एक बात मुझे समझ नहीं आती, अगर इनके फॉरेस्ट गार्ड आते हैं, जो भी यहाँ पे है वो चौकी पे वो आते हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास कुछ, उनको आके हम करें क्या? न उनके पास कोई एयर गन वगैरह है कि वो हाथी भगाएं। सर डंडे से तो हाथी नहीं भागेगा ना। अभी पिछली बार फॉरेस्ट गार्ड आया था तो वो डंडे से वो पीछे भाग रहा था हाथी के, उसको भगाने के लिए हाथी ने उसको ही दौड़ा दिया। उसका रविंदर नाम है भैया का, उनका ही फोन टूट गया।
0: लोग खौफजदा हैं और मांग कर रहे हैं कि इन हाथियों से मुक्ति दिलाया जाए, कोई ऐसा कदम उठाया जाए कि हाथी रिहायशी इलाके में ना आए। विकास, कोटद्वार, आज तक।
4: अब बात वियतनाम से, एक बड़े हादसे के। वियतनाम के फुकोक द्वीप के पास में भारतीय पर्यटकों से भरी एक टूरिस्ट बोट पलट गई। हादसे में 15 भारतीयों की मौत हो गई, 21 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। बोट पर उस समय कुल 36 लोग सवार थे जिसमें 32 भारतीय और 4 क्रू मेंबर्स थे।
5: वियतनाम में छुट्टियों की तस्वीरें आखिर यादें बन गई हैं। समंदर का सफर मौत का सफर बन गया। परिवारों के लिए अब सिर्फ दर्द बचा है। वियतनाम के फुकवोक आइलैंड के पास एक टूरिस्ट बोट पलटी और देखते ही देखते गहरे पानी ने कई जिंदगियां निगल ली। जिस नाव में सवार होकर लोग नए अनुभवों की तलाश में निकले थे, वही नाव कई परिवारों के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा बन गई। वियतनाम से आई ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। समंदर की ऊंची लहरों के बीच पलटी हुई टूरिस्ट बोट और चारों तरफ मदद के लिए जूझते लोग। ये वही नाव थी जिसमें भारत से घूमने पहुंचे पर्यटक सवार थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटक और 4 क्रू मेंबर मौजूद थे। नाव होन में रूट से अनथोई पोर्ट की तरफ जा रही थी, तभी फुकवोक आइलैंड के पास करीब 400 मीटर दूर अचानक हादसा हो गया और देखते ही देखते पूरी नाव समंदर में पलट गई और 15 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे की खबर मिलते ही भारत सरकार भी सक्रिय हो गई। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बताया कि हादसे के बाद हनोई स्थित एम्बेसी और होची मिन्ह सिटी स्थित कॉन्सुलेट में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। दूतावास ने कहा कि भारतीय पर्यटकों की जानकारी जुटाई जा रही है और हर संभव मदद दी जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हादसे पर दुख जताते हुए लिखा, वियतनाम के फुकवोक के पास भारतीय नागरिकों से जुड़े इस दर्दनाक हादसे से बेहद दुखी हूं। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया। पीएम मोदी ने कहा, वियतनाम में भारतीय नागरिकों से जुड़े नाव हादसे की खबर से बेहद दुखी हूं। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। भारतीय दूतावास और अधिकारी हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। हादसे में पीड़ित परिवारों में मातम है। केरल के मछलीपट्टनम में रहने वाले पीड़ित परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वियतनाम नाव हादसे में गेली जयलक्ष्मी की मौत की खबर के बाद परिवार में चीख पुकार मच गई। घर में मौजूद परिजन अब सिर्फ उस पल को याद कर रहे हैं जब एक सफर जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। वहीं केरल के ही रहने वाले एसी थॉमस और लोवेनी थॉमस की मौत की पुष्टि की गई है। केरल सरकार विदेश मंत्रालय के संपर्क में है ताकि मृतकों के पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाया जा सके। एक टूरिस्ट ट्रिप जो यादों का सफर बनने निकली थी वो अचानक मातम में बदल गई। समंदर की एक लहर ने कई परिवारों से उनके अपने छीन लिए। अब सवाल सिर्फ हादसे का नहीं, सवाल यह भी है कि आखिर ऐसी पर्यटक नावों की सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है। वियतनाम से आई इस त्रासदी ने एक बार फिर समंदर में सुरक्षा इंतजामों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
4: अब बात कनाडा के टोरंटो में हुई फायरिंग की। टोरंटो में एक स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान गोलीबारी से हड़कंप मचा। हमले में दो लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग इसमें घायल हुए हैं। पुलिस ने इसे एक्टिव शूटर केस बताया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है।
6: टोरंटो में सालसाउन सेंट क्लेयर फेस्टिवल में गोलियों की तड़ताहट, अफरा तफरी का माहौल, चीखते चिल्लाते लोग। तस्वीरें कनाडा के टोरंटो की हैं, जहां शनिवार शाम एक प्रसिद्ध स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से हड़कंप मच गया। मिड टाउन टोरंटो में आयोजित वार्षिक लैटिन सांस्कृतिक उत्सव सालसाउन सेंट क्लेयर के दौरान हुई इस फायरिंग के बाद मौके पर भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। टोरंटो पुलिस के मुताबिक गोलीबारी में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई जबकि चार लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने इलाके को तुरंत अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और लोगों से घटनास्थल से दूर रहने की अपील की गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक संदिग्ध हमलावर अभी फरार है। फिलहाल पुलिस फायरिंग के कारणों, हमलावर की पहचान और घटना के पीछे की वजहों की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़ी और जानकारी जल्द जारी की जाएगी। आज तक ब्यूरो।
4: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध इतना भीषण हो गया है कि एक हफ्ते के अंदर ईरान के कई शहरों में ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की गए हैं। अमेरिका ने ईरान के कई बंदरगाहों पर बम बरसाए जिसके जवाब में ईरान ने कतर, बहरीन समेत कई खाड़ी देशों में उसके मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचाया है।

0: टूटा युद्ध विराम, शुरू हो गया भयंकर घमासान। ईरान के कई शहरों पर अमेरिका के विनाशकारी प्रहार, ईरान ने कई खाड़ी देशों पर बरसाए बम, हॉर्मुज पर ईरान की तालाबंदी, कीमतों में फिर लगेगी आग। आखिर जिसका डर था वही हुआ, धीरे धीरे टूटता युद्ध विराम अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। एक के बाद एक मिसाइल छोड़ी जा रही है। कई शहरों में सायरन की आवाज गूंज रही है, जो हमलों का संदेश देने के साथ साथ युद्ध फिर से शुरू होने का ऐलान कर रही है। अमेरिकी मिसाइलों ने हफ्ते भर में तीसरी बार ईरान पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। ड्रोन और मिसाइलों के जखीरे ने एक बार फिर तबाही का तांडव मचाना शुरू कर दिया है। अमेरिका का दावा है कि इस बार करीब 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इनमें मिसाइल और ड्रोन साइट, नेवी के ठिकाने, गोला बारूद भंडार, संचार नेटवर्क और तटीय निगरानी केंद्र शामिल हैं। जिन ईरानी शहरों को निशाना बनाया गया उनमें न्यूक्लियर सिटी बुशहर समेत असालुये, बंदर एतेयर, जास्क और चाबहार के सैन्य ठिकाने शामिल हैं। अमेरिका हॉर्मुज में लगातार हो रहे हमलों से गुस्से में है और उसने पहले ही ईरान को ताबड़तोड़ हमलों की चेतावनी दी थी। पिछले तीन दिनों में ईरान के 300 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। खैर, ईरान को भी जवाब देना ही था, लिहाजा उसने भी कई खाड़ी देशों में बने अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों के जरिए बम बरसाने शुरू कर दिए। कतर में अमेरिका के अलुदीद एयरबेस पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से हुए हमले में जंगी जहाजों के मेंटेनेंस और रिपेयर सेंटर के साथ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया है। कतर में ईरानी हमले को नाकाम करने के दौरान मलबा गिरने से 3 लोग घायल हो गए। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने भी मिसाइलों का मोर्चा मध्य पूर्व की ओर खोल दिया है। कतर के अलावा जॉर्डन, कुवैत, बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी ईरान ने निशाना बनाया है। साथ ही यूएई पर भी ईरान की ओर से मिसाइल दागी गई है। बहरीन में लगातार सायरन बज रहे हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी जा रही है। ईरान अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले करने के साथ साथ बयानों में भी आक्रामक होता जा रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई ने अपने पिता अली खामेनेई की मौत का बदला लेने का ऐलान कर दिया है, जिससे अमेरिका और ईरान के बीच घमासान और तेज होने की आशंका बढ़ गई
1: है।
0: अमेरिका के साथ बातों मुलाकातों के दौर में ईरान की ओर से अहम किरदार निभाने वाले मोहम्मद बागेर गालिबाफ के सुर भी तल्ख हो गए। उन्होंने लिखा कि एक तरफा समझौतों का दौर खत्म हो चुका है। हमने पहले ही कहा था, या तो अपना वादा निभाइए या फिर इसकी कीमत चुकाइए। अब हकीकत सामने है। गालिबाफ ने अपने पोस्ट के साथ समझौते की तस्वीर भी साझा की है, जिसमें हॉर्मुज को दोबारा खोलने और वहां व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी ईरान की बताई गई है। खैर, अमेरिका तो जो नुकसान ईरान का कर रहा है वो दुनिया देख ही रही है, लेकिन ईरान के जबरदस्त पलटवार से ट्रंप के बार बार किए जा रहे इन दावों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने ईरानी की पूरी सैन्य ताकत का खात्मा कर दिया है।
2: I think the third regime is more reasonable, but we'll find out. But we've destroyed their, as you know, completely destroyed 150. They had 159 ships. Every single ship is at the bottom of the sea. We've completely destroyed. They don't have one airplane. They don't have radar.
0: सीज़फ़ायर के दौरान ईरान ने अपने एंटी-मिसाइल सिस्टम को दुरुस्त किया और मिसाइल लॉन्चर्स को मजबूत किया। ईरान की ये तैयारी खाड़ी देशों पर किए गए हमलों में साफ दिखाई दे रही है। तांडव की इन तस्वीरों से इतना तो साफ है कि महायुद्ध पार्ट 2 और विनाशकारी होने जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
3: हॉर्मुज में हर कोई अपना नियंत्रण चाहता है। अमेरिका बिना किसी टोलबंदी के यहां से जहाजों की आवाजाही चाहता है, लेकिन ईरान के पास अमेरिका का सामना करने के लिए सबसे बड़ा हथियार है। तेल के इस खेल से हालात फिर से बिगड़ने लगे हैं, क्योंकि ईरान ने फिलहाल इसे बंद करने का ऐलान कर दिया है।

0: हॉर्मुज में हाहाकार से फिर बढ़ेगा घमासान। जहाजों पर बमबारी से बढ़ रहा कोहराम। हॉर्मुज को न खोलने का खामियाजा भुगतेगा तेहरान। क्या अमेरिका के सामने अपनी गलती मान रहा ईरान? हॉर्मुज की शांत लहरों में बमों की बारिश के बाद से एक बार फिर सुनामी दिखने लगी है। दो दिन में तीन जहाजों पर ईरान की बमबारी के बाद से सीज फायर की पूरी तस्वीर ही बदल गई है। एक बार फिर हॉर्मुज का पेच ही अमेरिका और ईरान के बीच फंस गया है और आशंका तो इस बात की लगातार बढ़ रही है कि तेल के खेल की वजह से ही महायुद्ध का पार्ट टू शुरू होने वाला है। ईरान ने हॉर्मुज से गुजर रहे इन तीन कमर्शियल जहाजों पर हमला किया था। इससे ट्रंप का पारा इतना चढ़ा कि दोनों ओर से हमलों की एक नई लहर से ईरान के कई शहरों के अलावा बहरीन और कतर तक में बर्बादी का मंजर दिखाई देने लगा। हॉर्मुज में इस हफ्ते जो हमले हुए हैं, क्या ईरान ने इसे अपनी गलती मानी है? CBS न्यूज ने यह दावा किया है। इसमें अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि ईरानी अफसरों ने निजी तौर पर ट्रंप के सलाहकारों से कहा कि हॉर्मुज में जहाजों पर अटैक गलती थी और ये हमले कट्टरपंथियों के एक ऐसे गुट ने किए जो बातचीत को नाकाम करना चाहते हैं। ईरान बेशक कितना ही कह ले कि हॉर्मुज में हमले एक गलती थे, लेकिन अमेरिका ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है और उसके खिलाफ हटाई गई तेल निर्यात की पाबंदियों को एक बार फिर लगा दिया है जो अगले हफ्ते से लागू कर दी जाएंगी। हॉर्मुज से शुरू हुई लड़ाई तेजी से खार्क तक पहुंच गई है। हफ्ते भर पहले ही अमेरिका ने यहां एयर स्ट्राइक की और ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया। ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा खार्क से ही जुड़ा है। जब से दोनों देशों के बीच जंग शुरू हुई है, खार्क को अमेरिका के कई हमले झेलने पड़े हैं। अब ये एक बार फिर से अमेरिका के निशाने पर आ गया है।
1: We're not attacking at the highest level. The highest level, the bridges, there, which we can knock down. I would say in one day we knock down every single bridge in Iran. There's not a thing they can do about it. Their electric manufacturing facilities, right? Their electric plants where they make their electricity there. We will. If we have to, we'll take them out. I don't want to do that, but if we have to, we'll take them out. They have desalinization plants. We'll take them out if we have to. I hate to do that. That's probably the one I would like not to do least. We attacked Kerg Island last night. We knocked out a piece. I said, don't touch the oil, because maybe we'll take over Kerg Island. You know, we may take over Kerg Island.
0: वैसे अमेरिका ने ईरान को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि ईरान कमर्शियल जहाजों के लिए हॉर्मुज को खोले और जहाजों पर हमले पूरी तरह बंद करे, साथ ही सार्वजनिक तौर पर इसका ऐलान करे। अमेरिका ने दो टूक चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने ऐसा नहीं किया तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। ये चेतावनी ऐसे वक्त पर दी गई है जब अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हवाई हमले कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
2: वक्त तो चला, अब छोटे से ब्रेक का, कुछ और खबरों के साथ होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

पंजाब में आपस में हाथ आजमाते दिख रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजवर्णी को हटाने पर अड़ी चन्नी गुट। रंधावा ने बताया कॉम्प्रोमाइज लीडर आला कमान के दरबार में पहुंचा झगड़ा। उमर के ऑपरेशन लोटस वाले बयान पर बौखलाई बीजेपी, कहा दो सबूत या मांगो माफी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने लगाया था आरोप, हमारे विधायकों को खरीदने की हो रही है साजिश। बीजेपी ने प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के गिनाए 10 फायदे, कहा इंडो पैसिफिक में भारत बना बड़ी ताकत, वैश्विक साझेदारियों को मिली नई मजबूती, कांग्रेस का कटाक्ष। ट्विशा केस में एम्स, अमेरिके हमलों की नई किश्त के बीच में दुनिया के सामने आएंगे मुज्तबा खामेनेई, मंगलवार की सभा में करेंगे शिरकत, अटैक में मारे गए लोगों को देंगे श्रद्धांजलि, यूएस की तरफ से जारी है भयानक बमबारी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कई अहम खुलासे हुए। आरोपियों ने बताया कि वो चढ़ावा की चोरी सिर्फ इवनिंग शिफ्ट में किया करते थे। वहीं एक अहम खबर यह भी है कि ट्रस्ट ने सीईओ की नियुक्ति की कोशिशें तेज कर दी हैं। और तीसरी बड़ी खबर है कि टिन्नू यादव और सुभाष यादव से अयोध्या पुलिस ने पूछताछ की तैयारियां की हैं।

0: राम मंदिर के प्रांगण में मौजूद जिस कमरे में चढ़ावे की गिनती होती थी वहां दो पालियों में काउंटिंग की जाती थी। चढ़ावे की गिनती के लिए पहली शिफ्ट सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक होती थी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक की थी। चढ़ावा चोरी की वारदात दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक की शिफ्ट में ही हुई, यानी चोरी दूसरी पाली में हुई। दरअसल सभी आरोपी उसी 2 से 9 वाली शिफ्ट में काम करते थे। दरअसल शाम के शिफ्ट में चोरी करना आरोपियों के लिए ज्यादा आसान था। काउंटिंग की दूसरी शिफ्ट में चढ़ावा चोरी का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने 4 आरोपियों से पूछताछ की। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 40 दिन में 70 बार चोरी की गई। सबसे ज्यादा 50 से अधिक बार चोरी अविनाश शुक्ला ने ही की थी। वो एक दिन में 2 बार चढ़ावा चोरी करता था। जिन 40 दिनों का रिकॉर्ड पुलिस ने खंगाला है उसमें से 5 दिन ऐसे भी रहे जब एक ही दिन में चढ़ावा चोरों ने 3-3 बार चोरी की।
1: सेकंड शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक होती थी और ये वो वक्त होता था जब कैश लेकर बाहर निकलते समय न सिर्फ निगरानी कम होती थी बल्कि इनके लिए कैश लेकर निकलना भी आसान हो जाता था।
0: पुलिस की जांच में ये सच सामने आने के बाद ही राम मंदिर ट्रस्ट ने चढ़ावे की गिनती अब सिर्फ एक ही शिफ्ट में करने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत अब सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चढ़ावे की गिनती शुरू कर दी गई है। तमाम खुलासों के बीच अयोध्या पुलिस रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव से भी पूछताछ की तैयारी में है। संतोष कुमार शर्मा, अयोध्या आज तक।
2: एक तरफ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर जांच चल रही है तो दूसरी ओर इस पर सियासत जबरदस्त तरीके से हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जब से राम मंदिर दर्शन करके लौटे हैं तब से वो हिंदुत्व का राग अलाप रहे हैं। बीजेपी की ओर से अरविंद केजरीवाल का भी एक पोस्टर जारी किया गया जिसमें अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया गया।
3: दिल्ली बीजेपी ने यह नया पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया गया है। इस पोस्टर को जारी करने के साथ ही बीजेपी ने लिखा है कि जो लोग भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण से खुश नहीं हैं, जिन्होंने मंदिरों और गुरुद्वारों के बाहर शराब की दुकानें खुलवाई, जिनकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही है, जो राम मंदिर की जगह अस्पताल बनवाना चाहते थे, जिन्होंने बजरंग बली का मजाक उड़ाया, जिनके शासन में इमामों को तो वेतन बांटा गया लेकिन पुजारियों को कभी कुछ नहीं दिया।
4: आज केजरीवाल जी को फिर राम याद आए हैं। ये राजनीतिक हिंदू हैं, आज फिर इनकी नौटंकी प्रारंभ हो गई है।
5: अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं और ये हम पहली बार नहीं बोल रहे। जब जब चुनाव आते हैं अरविंद केजरीवाल के जो कर्म होते हैं वो प्रूफ कर देते हैं कि वो चुनावी हिंदू हैं। आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसको लेके हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे। ये सब दिखाता है कि चूंकि वहां उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं इसलिए आज अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग चुनावी हिंदू बनकर हिंदू बनने का एक सॉन्ग रच रहा है।
3: दरअसल अरविंद केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़े हैं। एक तरफ उन्होंने घोषणा की है कि अमृतसर में वो माता सीता और लवकुश का मंदिर बनवाएंगे, दूसरी तरफ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर वो मुखर है।
6: सारे प्रयास किए जा रहे हैं चोरों को बचाने के, डकैतों को बचाने के, जमीनों के जो घोटाला हुआ उस पर तो जांच ही नहीं चल रही, मंदिर निर्माण में जो कमीशन खोरी हुई उस पर तो जांच ही नहीं चल रही।
3: लेकिन बीजेपी को ये रास नहीं आ रहा है। अब तेरा हिंदुत्व और मेरा हिंदुत्व की जंग शुरू हो गई है। आज तक ब्यूरो।
2: बात अब जम्मू कश्मीर की जहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य का दर्जा मांगते हुए बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरा और साथ ही साथ ट्रंप का जिक्र करके उन्होंने तंज कसा है।
7: असेंबली से नहीं मिलेगा ठीक, फिर हमने सड़कों पर बात करना शुरू किया, फिर कहते थे अब आपको जम्मू कश्मीर में बात करके ये मिलेगा नहीं ठीक, अब हम जंतर मंतर जा रहे हैं, अब ये हमें कहते ना जंतर मंतर से आपको रियासत का दर्जा नहीं मिलेगा। खुदारा फिर ये बीजेपी वाले बताएं ना मुझे, क्या ट्रंप के पास जाना पड़ेगा व्हाइट हाउस में अमेरिका रियासत का दर्जा लेने के लिए? अगर मुझे अपने मुल्क के राजधानी में जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा की बहाली नहीं मिलेगी तो कहिए हम लोग टिकट करेंगे, हम अमेरिका जाके ट्रंप साहब के घर के बाहर एहतजाज करके वहां से स्टेटहुड मांग लेंगे, दे दीजिए।
2: बाद में पटना के बांकीपुर के चुनावी संग्राम की बांकीपुर में 30 जुलाई को उपचुनाव होना है, 3 अगस्त को रिजल्ट आएगा। मगर बांकीपुर के इस उपचुनाव में संग्राम में मुकाबला त्रिकोणीय है, सभी दल यहां पर अपनी जीत के दावे तो कर रहे हैं लेकिन सबकी निगाह इस सीट पर चुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर पर है।

0: कहने को तो बांकीपुर में उपचुनाव होना है, मगर यहाँ की सियासी सरगर्मियाँ जबरदस्त तरीके से बढ़ी हुई हैं। मुकाबला त्रिकोणीय है। बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने ताल ठोकी है। उनके सामने अब बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार और आरजेडी के प्रत्याशी रेखा गुप्ता हैं। मगर बीजेपी मान के चल रही है कि बांकीपुर में पीके की हार तय है।
1: अब उनके पार्टी से कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था ये बाय इलेक्शन में बांकीपुर से, अपने कच्छा पिन के उतर गए क्योंकि कोई उम्मीदवार ही नहीं आ रहा था। अब ये जाएंगे तो जवाब देंगे, जवाब तो लोग देख रहे हैं, झूठ की खेती बार बार नहीं चलता।
0: बीजेपी के इस भरोसे के पीछे वो आंकड़े हैं जिनमें 3 दशक से बांकीपुर पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है। यहाँ बड़ी तादाद में कायस्थ मतदाता हैं और वही बीजेपी की ताकत हैं। इसीलिए बीजेपी के सहयोगी दल भी भरोसे से भरे हुए हैं।
2: अरे उनको इस बात की समझ हो गई है कि यहाँ रहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि जनता एनडीए के साथ।
0: बांकीपुर में नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन है। कुल 11 प्रत्याशियों ने अब तक नामांकन दाखिल किया है, जिसमें लालू प्रसाद नाम के एक निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं। मगर कांग्रेस ने अब तक अपने किसी प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा है। अलबत्ता कांग्रेस कह रही है कि बांकीपुर से इस बार बीजेपी हारेगी।
3: पहली बार वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है सम्राट जी के नेतृत्व में, और उनकी परीक्षा हो रही है। एक तो पहले उन्होंने ऐसा प्रत्याशी बनाया जो जिसपे करप्शन के चार्जेस थे, जिसके पिताजी पे करप्शन के चार्जेस थे, फिर जिनको अभी बदला उन पे भी कई तरह की कंट्रोवर्सीज हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी।
0: बांकीपुर का रण दिलचस्प है। देखना होगा कि पहली बार चुनावी रण में उतरे पीके क्या बीजेपी के गढ़ को फतह कर पाएंगे। आज तक ब्यूरो।
4: अब आपको एक हैरान कर देने वाली तस्वीर दिखाते, जहां सूरत में अचानक चलते चलते एक कार आग का गोला बन गई। चंद मिनटों ही में कार ये जलकर राख हो गई।
0: सड़क पर खड़ी एक कार धधक रही है। आग इतनी भयानक है कि इसे बुझाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। भयानक आग खौफनाक है। दमकल कर्मी इस पर पानी की बौछार कर रहे हैं, मगर आग भयानक है। काफी देर बाद आखिरकार कार की आग बुझाई गई, मगर तब तक कार पूरी तरह से राख हो चुकी थी। तस्वीरें सूरत की हैं। सूरत के वेसू इलाके में चलती कार में अचानक आग लगी। ये घटना ओमेगा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने बीआरटीएस बस स्टैंड के पास हुई, जिससे थोड़ी देर के लिए मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया था। अच्छी बात यह रही कि वक्त रहते कार में सवार लोग बाहर निकल आए थे, इसीलिए कोई हताहत नहीं हुआ। हाँ, कार जरूर राख हो गई। कार में आग किस वजह से लगी इसका पता भी नहीं चला है। संजय सिंह राठौड़, सूरत आज तक।
4: अब एक और हैरान करने वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं, और ये तस्वीर उत्तराखंड के कोटद्वार से आई है, जहां हाथियों का झुंड रिहायशी इलाके में आ गया। हाथियों का ये झुंड लोगों के घरों में भी जा घुसा।

0: जंगल में हाथियों को टहलते हुए आपने बहुत बार देखा होगा। पहली बार रिहायशी इलाके में हाथियों को टहलते हुए देखिए, देखिए कितने आराम से ये हाथी इस मकान में प्रवेश कर रहे हैं। सामने से आ रहे इस हाथी के साथ बाईं ओर से प्रवेश कर रहे इस दूसरे हाथी को भी देखिए, इन दोनों के साथ एक तीसरा हाथी भी है। ये हाथी का बच्चा है। ये तीनों हाथी इस घर में प्रवेश कर गए हैं। अब आगे की तस्वीरें देखिए, ये छोटा हाथी घर की छत तक पहुंच गया है। छत पर रखी पानी की टंकी से ये पानी पी रहा है। दूसरा हाथी यहाँ इस कमरे में प्रवेश कर गया। ये तीनों हाथी इस घर में लगातार चहलकदमी कर रहे हैं और हाथियों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो रही हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड में कोटद्वार के वार्ड नंबर 1 के ग्रास्टनगंज की हैं। बताया जा रहा है कि इन हाथियों ने 5 से 6 घरों में जमकर तोड़फोड़ की है। पीड़ितों का आरोप है कि उन्होंने बार बार वन विभाग को शिकायतें दी है मगर कार्रवाई नहीं हुई। अब लोग दहशत में है।
1: हाथी तो कभी कल तो 4-5 थे, तो 2 आदमी से क्या होगा। जरा स्टाफ बढ़ाओ, स्टाफ बढ़ाओ, इसलिए स्टाफ के पास तुम टॉर्च दो, वो बंदूक दो, जिससे कि वो बंदूक वो हाथी भाग जाएंगे। नहीं तो हमको तो बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत। हम रात 3 बजे 3:30 बजे सोए।
2: परसों भी अंदर आया था हाथी, मतलब पूरा तोड़ के गया, वॉश बेसिन वगैरह, टंकी, मेरी खिड़की पूरी तोड़ दी उसने, पल्ले बाहर निकाल के रख दिए। तो मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बोला है कि आओ। तो सर एक बात मुझे समझ नहीं आती, अगर इनके फॉरेस्ट गार्ड आते हैं, जो भी यहाँ पे है वो चौकी पे वो आते हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास कुछ, उनको आके हम करें क्या? न उनके पास कोई एयर गन वगैरह है कि वो हाथी भगाए। सर डंडे से तो हाथी नहीं भागेगा ना। अभी पिछली बारी फॉरेस्ट गार्ड आया था तो वो डंडे से, वो पीछे भाग रहा था हाथी के, उसको भगाने के लिए हाथी ने उसको ही दौड़ा दिया। उसका रविंदर नाम है भैया का, उनका ही फोन टूट गया।
0: लोग खौफजदा हैं और मांग कर रहे हैं कि इन हाथियों से मुक्ति दिलाया जाए, कोई ऐसा कदम उठाया जाए कि हाथी रिहायशी इलाके में ना आए। विकास, कोटद्वार, आज तक।
3: अब बात वियतनाम से आए एक बड़े हादसे की। वियतनाम के फुकोक द्वीप के पास में भारतीय पर्यटकों से भरी एक टूरिस्ट बोट पलट गई। हादसे में 15 भारतीयों की मौत हो गई, 21 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। बोट पर उस समय कुल 36 लोग सवार थे, जिसमें 32 भारतीय और 4 क्रू मेंबर्स थे।
4: वियतनाम में छुट्टियों की तस्वीरें आखिर यादें बन गई। समंदर का सफर मौत का सफर बन गया। परिवारों के लिए अब सिर्फ दर्द बचा है। वियतनाम के फुकवोक आइलैंड के पास एक टूरिस्ट बोट पलटी और देखते ही देखते गहरे पानी ने कई जिंदगियां निगल ली। जिस नाव में सवार होकर लोग नए अनुभवों की तलाश में निकले थे, वही नाव कई परिवारों के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा बन गई। वियतनाम से आई ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। समंदर की ऊंची लहरों के बीच पलटी हुई टूरिस्ट बोट और चारों तरफ मदद के लिए जूझते लोग। ये वही नाव थी जिसमें भारत से घूमने पहुंचे पर्यटक सवार थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटक और 4 क्रू मेंबर मौजूद थे। नाव होनमे रूट से अनथोई पोर्ट की तरफ जा रही थी, तभी फुकवोक आइलैंड के पास करीब 400 मीटर दूर अचानक हादसा हो गया और देखते ही देखते पूरी नाव समंदर में पलट गई और 15 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे की खबर मिलते ही भारत सरकार भी सक्रिय हो गई। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बताया कि हादसे के बाद हनोई स्थित एम्बेसी और होची मिन्ह सिटी स्थित कॉन्सुलेट में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। दूतावास ने कहा कि भारतीय पर्यटकों की जानकारी जुटाई जा रही है और हर संभव मदद दी जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हादसे पर दुख जताते हुए लिखा, वियतनाम के फुकवोक के पास भारतीय नागरिकों से जुड़े इस दर्दनाक हादसे से बेहद दुखी हूं। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया। पीएम मोदी ने कहा, वियतनाम में भारतीय नागरिकों से जुड़े नाव हादसे की खबर से बेहद दुखी हूं। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। भारतीय दूतावास और अधिकारी हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। हादसे में पीड़ित परिवारों में मातम है। केरल के मछलीपट्टनम में रहने वाले पीड़ित परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वियतनाम नाव हादसे में गेली जयलक्ष्मी की मौत की खबर के बाद परिवार में चीख पुकार मच गई। घर में मौजूद परिजन अब सिर्फ उस पल को याद कर रहे हैं जब एक सफर जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। वहीं केरल के ही रहने वाले एसी थॉमस और लोवेनी थॉमस की मौत की पुष्टि की गई है। केरल सरकार विदेश मंत्रालय के संपर्क में है ताकि मृतकों के पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाया जा सके। एक टूरिस्ट ट्रिप जो यादों का सफर बनने निकली थी वो अचानक मातम में बदल गई

0: अब सवाल सिर्फ हादसे का नहीं, सवाल ये भी है कि आखिर ऐसी पर्यटक नावों की सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है। वियतनाम से आई इस त्रासदी ने एक बार फिर समंदर में सुरक्षा इंतजामों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: अब आज कनाडा के टोरंटो में हुई फायरिंग की, टोरंटो में एक स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान गोलीबारी से हड़कंप मचा। हमले में दो लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग इसमें घायल हुए हैं। पुलिस ने इसे एक्टिव शूटर केस बताया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है।
2: टोरंटो में सालसाउन सेंट क्लेयर फेस्टिवल में गोलियों की तड़ताहट, अफरा तफरी का माहौल, चीखते चिल्लाते लोग। तस्वीरें कनाडा के टोरंटो की हैं, जहां शनिवार शाम एक प्रसिद्ध स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से हड़कंप मच गया। मिड टाउन टोरंटो में आयोजित वार्षिक लैटिन सांस्कृतिक उत्सव सालसाउन सेंट क्लेयर के दौरान हुई इस फायरिंग के बाद मौके पर भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। टोरंटो पुलिस के मुताबिक गोलीबारी में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई जबकि चार लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने इलाके को तुरंत अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और लोगों से घटनास्थल से दूर रहने की अपील की गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक संदिग्ध हमलावर अभी फरार है। फिलहाल पुलिस फायरिंग के कारणों, हमलावर की पहचान और घटना के पीछे की वजहों की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़ी और जानकारी जल्द जारी की जाएगी। आज तक ब्यूरो।
1: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध इतना भीषण हो गया है कि एक हफ्ते के अंदर ईरान के कई शहरों में ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की गए हैं। अमेरिका ने ईरान के कई बंदरगाहों पर बम बरसाए जिसके जवाब में ईरान ने कतर, बहरीन समेत कई खाड़ी देशों में उसके मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचाया है।

टूटा युद्ध विराम, शुरू हो गया भयंकर घमासान। ईरान के कई शहरों पर अमेरिका के विनाशकारी प्रहार, ईरान ने कई खाड़ी देशों पर बरसाए बम, हॉर्मुज पर ईरान की तालाबंदी, कीमतों में फिर लगेगी आग। आखिर जिसका डर था वही हुआ, धीरे धीरे टूटता युद्ध विराम अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। एक के बाद एक मिसाइल छोड़ी जा रही है, कई शहरों में सायरन की आवाज गूंज रही है, जो हमलों का संदेश देने के साथ साथ युद्ध फिर से शुरू होने का ऐलान कर रही है। अमेरिकी मिसाइलों ने हफ्ते भर में तीसरी बार ईरान पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक किए। ड्रोन और मिसाइलों के जखीरे ने एक बार फिर तबाही का तांडव मचाना शुरू कर दिया है। अमेरिका का दावा है कि इस बार करीब 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इनमें मिसाइल और ड्रोन साइट, नेवी के ठिकाने, गोला बारूद भंडार, संचार नेटवर्क और तटीय निगरानी केंद्र शामिल हैं। जिन ईरानी शहरों को निशाना बनाया गया उनमें न्यूक्लियर सिटी बुशहर समेत असालुये, बंदर एतेयर, जास्क और चाबहार के सैन्य ठिकाने शामिल हैं। अमेरिका हॉर्मुज में लगातार हो रहे हमलों से गुस्से में है और उसने पहले ही ईरान को ताबड़तोड़ हमलों की चेतावनी दी थी। पिछले तीन दिनों में ईरान के 300 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। खैर, ईरान को भी जवाब देना ही था, लिहाजा उसने भी कई खाड़ी देशों में बने अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों के जरिए बम बरसाने शुरू कर दिए। कतर में अमेरिका के अलुदीद एयरबेस पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से हुए हमले में जंगी जहाजों के मेंटेनेंस और रिपेयर सेंटर के साथ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया है। कतर में ईरानी हमले को नाकाम करने के दौरान मलबा गिरने से 3 लोग घायल हो गए। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने

0: भी मिसाइलों का मोर्चा मध्य पूर्व की ओर खोल दिया है। कतर के अलावा जॉर्डन, कुवैत, बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी ईरान ने निशाना बनाया है। साथ ही यूएई पर भी ईरान की ओर से मिसाइल दागी गई है। बहरीन में लगातार सायरन बज रहे हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी जा रही है। ईरान अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले करने के साथ साथ बयानों में भी आक्रामक होता जा रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई ने अपने पिता अली खामेनेई की मौत का बदला लेने का ऐलान कर दिया है, जिससे अमेरिका और ईरान के बीच घमासान और तेज होने की आशंका बढ़ गई। अमेरिका के साथ बातों मुलाकातों के दौर में ईरान की ओर से अहम किरदार निभाने वाले मोहम्मद बागेर गालिबाफ के सुर भी तल्ख हो गए। उन्होंने लिखा कि एक तरफा समझौतों का दौर खत्म हो चुका है। हमने पहले ही कहा था, या तो अपना वादा निभाइए या फिर इसकी कीमत चुकाइए। अब हकीकत सामने है। गालिबाफ ने अपने पोस्ट के साथ समझौते की तस्वीर भी साझा की है, जिसमें हॉर्मुज को दोबारा खोलने और वहां व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी ईरान की बताई गई है। खैर, अमेरिका तो जो नुकसान ईरान का कर रहा है वो दुनिया देख ही रही है, लेकिन ईरान के जबरदस्त पलटवार से ट्रंप के बार बार किए जा रहे इन दावों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने ईरानी की पूरी सैन्य ताकत का खात्मा कर दिया है।
1: Destroyed there, as you know, completely destroyed. 150. They had 159 ships. Every single ship is at the bottom of the sea. We've completely destroyed. They don't have one airplane. They don't have radar.
0: Ceasefire के दौरान ईरान ने अपने anti-missile system को दुरुस्त किया और missile launchers को मजबूत किया। ईरान की ये तैयारी खाड़ी देशों पर किए गए हमलों में साफ दिखाई दे रही है। तांडव की इन तस्वीरों से इतना तो साफ है कि महायुद्ध पार्ट 2 और विनाशकारी होने जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
2: हॉर्मुज में हर कोई अपना नियंत्रण चाहता है। अमेरिका बिना किसी टोल बंदी के यहां से जहाजों की आवाजाही चाहता है, लेकिन ईरान के पास अमेरिका का सामना करने के लिए सबसे बड़ा हथियार है। तेल के इस खेल से हालात फिर से बिगड़ने लगे हैं, क्योंकि ईरान ने फिलहाल इसे बंद करने का ऐलान कर दिया है।

0: हॉर्मुज में हाहाकार से फिर बढ़ेगा घमासान। जहाजों पर बमबारी से बढ़ रहा कोहराम। हॉर्मुज को न खोलने का खामियाजा भुगतेगा तेहरान। क्या अमेरिका के सामने अपनी गलती मान रहा ईरान? हॉर्मुज की शांत लहरों में बमों की बारिश के बाद से एक बार फिर सुनामी दिखने लगी है। दो दिन में तीन जहाजों पर ईरान की बमबारी के बाद से सीज फायर की पूरी तस्वीर ही बदल गई है। एक बार फिर हॉर्मुज का पेच ही अमेरिका और ईरान के बीच फंस गया है और आशंका तो इस बात की लगातार बढ़ रही है कि तेल के खेल की वजह से ही महायुद्ध का पार्ट टू शुरू होने वाला है। ईरान ने हॉर्मुज से गुजर रहे इन तीन कमर्शियल जहाजों पर हमला किया था। इससे ट्रंप का पारा इतना चढ़ा कि दोनों ओर से हमलों की एक नई लहर से ईरान के कई शहरों के अलावा बहरीन और कतर तक में बर्बादी का मंजर दिखाई देने लगा। हॉर्मुज में इस हफ्ते जो हमले हुए हैं, क्या ईरान ने इसे अपनी गलती मानी है? CBS न्यूज ने यह दावा किया है। इसमें अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि ईरानी अफसरों ने निजी तौर पर ट्रंप के सलाहकारों से कहा कि हॉर्मुज में जहाजों पर अटैक गलती थी और ये हमले कट्टरपंथियों के एक ऐसे गुट ने किए जो बातचीत को नाकाम करना चाहते हैं। ईरान बेशक कितना ही कह ले कि हॉर्मुज में हमले एक गलती थे, लेकिन अमेरिका ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है और उसके खिलाफ हटाई गई तेल निर्यात की पाबंदियों को एक बार फिर लगा दिया है जो अगले हफ्ते से लागू कर दी जाएंगी। हॉर्मुज से शुरू हुई लड़ाई तेजी से खार्क तक पहुंच गई है। हफ्ते भर पहले ही अमेरिका ने यहां एयर स्ट्राइक की और ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया। ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा खार्क से ही जुड़ा है। जब से दोनों देशों के बीच जंग शुरू हुई है, खार्क को अमेरिका के कई हमले झेलने पड़े हैं। अब ये एक बार फिर से अमेरिका के निशाने पर आ गया है।
1: We're not attacking at the highest level. The highest level, the bridges, there, which we can knock down. I would say in one day we knock down every single bridge in Iran. There's not a thing they can do about it. Their electric manufacturing facilities, right? Their electric plants where they make their electricity there. We'll take them out. I don't want to do that, but if we have to, we'll take them out. They have desalinization plants. We'll take them out if we have to. I hate to do that. That's probably the one I would like not to do least. We attacked Kerch Island last night. We knocked out a piece. I said, don't touch the oil, because maybe we'll take over Kerch Island. You know, we may take over Kerch Island.
0: वैसे अमेरिका ने ईरान को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि ईरान कमर्शियल जहाजों के लिए हॉर्मुज को खोले और जहाजों पर हमले पूरी तरह बंद करे, साथ ही सार्वजनिक तौर पर इसका ऐलान करे। अमेरिका ने दो टूक चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने ऐसा नहीं किया तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। ये चेतावनी ऐसे वक्त पर दी गई है जब अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हवाई हमले कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
2: वक्त तो चला, अब छोटे से ब्रेक का, कुछ और खबरों के साथ होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

पंजाब में आपस में हाथ आजमाते दिख रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजवर्णी को हटाने पर अड़ी चन्नी गुट। रंधावा ने बताया कॉम्प्रोमाइज लीडर। आला कमान के दरबार में पहुंचा झगड़ा। उमर के ऑपरेशन लोटस वाले बयान पर बौखलाई बीजेपी। कहा दो सबूत या मांगो माफी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने लगाया था आरोप, हमारे विधायकों को खरीदने की हो रही है साजिश। बीजेपी ने प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के गिनाए 10 फायदे। कहा इंडो पैसिफिक में भारत बना बड़ी ताकत। वैश्विक साझेदारियों को मिली नई मजबूती। कांग्रेस का कटाक्ष। ट्विशा केस में एम्स ने सीबीआई को सौंपी दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सूत्रों से खबर, फंदे के लिए इस्तेमाल, बेल्ट पर मिले स्किन टिश्यू। चोट के निशान से हुए मैच। अमेरिकी हमलों की नई किश्त के बीच में दुनिया के सामने आएंगे मुज्तबा खामेनेई। मंगलवार की सभा में करेंगे शिरकत। अटैक में मारे गए लोगों को देंगे श्रद्धांजलि। यूएस की तरफ से जारी है भयानक बमबारी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कई अहम खुलासे हुए। आरोपियों ने बताया कि वो चढ़ावा की चोरी सिर्फ इवनिंग शिफ्ट में किया करते थे। वहीं एक अहम खबर यह भी है कि ट्रस्ट ने सीईओ की नियुक्ति की कोशिशें तेज कर दी हैं। और तीसरी बड़ी खबर है कि टिन्नू यादव और सुभाष यादव से अयोध्या पुलिस ने पूछताछ की तैयारियां की हैं।

0: राम मंदिर के प्रांगण में मौजूद जिस कमरे में चढ़ावे की गिनती होती थी वहां दो पालियों में काउंटिंग की जाती थी। चढ़ावे की गिनती के लिए पहली शिफ्ट सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक होती थी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक की थी। चढ़ावा चोरी की वारदात दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक की शिफ्ट में ही हुई, यानी चोरी दूसरी पाली में हुई। दरअसल सभी आरोपी उसी 2 से 9 वाली शिफ्ट में काम करते थे। दरअसल शाम के शिफ्ट में चोरी करना आरोपियों के लिए ज्यादा आसान था। काउंटिंग के दूसरे शिफ्ट में चढ़ावा चोरी का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने 4 आरोपियों से पूछताछ की। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 40 दिन में 70 बार चोरी की गई। सबसे ज्यादा 50 से अधिक बार चोरी अविनाश शुक्ला ने ही की थी। वो एक दिन में 2 बार चढ़ावा चोरी करता था। जिन 40 दिनों का रिकॉर्ड पुलिस ने खंगाला है उसमें से 5 दिन ऐसे भी रहे जब एक ही दिन में चढ़ावा चोरों ने 3-3 बार चोरी की।
1: सेकंड शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक होती थी और ये वो वक्त होता था जब कैश लेकर बाहर निकलते समय न सिर्फ निगरानी कम होती थी बल्कि इनके लिए कैश लेकर निकलना भी आसान हो जाता था।
0: पुलिस की जांच में ये सच सामने आने के बाद ही राम मंदिर ट्रस्ट ने चढ़ावे की गिनती अब सिर्फ एक ही शिफ्ट में करने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत अब सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चढ़ावे की गिनती शुरू कर दी गई है। तमाम खुलासों के बीच अयोध्या पुलिस रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव से भी पूछताछ की तैयारी में है। संतोष कुमार शर्मा, अयोध्या आज तक।
2: एक तरफ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर जांच चल रही है तो दूसरी ओर इस पर सियासत जबरदस्त तरीके से हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जब से राम मंदिर दर्शन करके लौटे हैं तब से वो हिंदुत्व का राग अलाप रहे हैं। बीजेपी की ओर से अरविंद केजरीवाल का भी एक पोस्टर जारी किया गया जिसमें अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया गया।
3: दिल्ली बीजेपी ने यह नया पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया गया है। इस पोस्टर को जारी करने के साथ ही बीजेपी ने लिखा है कि जो लोग भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण से खुश नहीं हैं, जिन्होंने मंदिरों और गुरुद्वारों के बाहर शराब की दुकानें खुलवाई, जिनकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही है, जो राम मंदिर की जगह अस्पताल बनवाना चाहते थे, जिन्होंने बजरंग बली का मजाक उड़ाया, जिनके शासन में इमामों को तो वेतन बांटा गया लेकिन पुजारियों को कभी कुछ नहीं दिया।
4: आज केजरीवाल जी को फिर राम याद आए हैं। ये राजनीतिक हिंदू हैं, आज फिर इनकी नौटंकी प्रारंभ हो गई है।
5: अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं और ये हम पहली बार नहीं बोल रहे। जब जब चुनाव आते हैं अरविंद केजरीवाल के जो कर्म होते हैं वो प्रूफ कर देते हैं कि वो चुनावी हिंदू हैं। आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसको लेके हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे। ये सब दिखाता है कि चूंकि वहां उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं इसलिए आज अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग चुनावी हिंदू बनकर हिंदू बनने का एक स्वांग रच रहा है।
3: दरअसल अरविंद केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़े हैं। एक तरफ उन्होंने घोषणा की है कि अमृतसर में वो माता सीता और लवकुश का मंदिर बनवाएंगे, दूसरी तरफ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर वो मुखर हैं।
6: सारे प्रयास किए जा रहे हैं चोरों को बचाने के, डकैतों को बचाने के, जमीनों के जो घोटाला हुआ उस पर तो जांच ही नहीं चल रही, मंदिर निर्माण में जो कमीशन खोली हुई उस पर तो जांच ही नहीं चल रही।
3: लेकिन बीजेपी को ये रास नहीं आ रहा है। अब तेरा हिंदुत्व और मेरा हिंदुत्व की जंग शुरू हो गई है। आज तक ब्यूरो।
2: बात अब जम्मू कश्मीर की, जहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य का दर्जा मांगते हुए बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरा और साथ ही साथ ट्रंप का जिक्र करके उन्होंने तंज कसा है।
7: असेंबली से नहीं मिलेगा ठीक, फिर हमने सड़कों पर बात करना शुरू किया, फिर कहते थे अब आपको जम्मू कश्मीर में बात करके ये मिलेगा नहीं ठीक, अब हम जंतर मंतर जा रहे हैं, अब ये हमें कहते ना जंतर मंतर से आपको रियासत का दर्जा नहीं मिलेगा, खुदारा फिर ये बीजेपी वाले बताए ना मुझे क्या ट्रंप के पास जाना पड़ेगा व्हाइट हाउस में अमेरिका रियासत का दर्जा लेने के लिए। अगर मुझे अपने मुल्क के राजधानी में जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा की बहाली नहीं मिलेगी तो कहिए, हम लोग टिकट करेंगे, हम अमेरिका जाके ट्रंप साहब के घर के बाहर एहतजाज करके वहां से स्टेटहुड मांग लेंगे, दे दीजिए।
2: बाद पटना के बांकीपुर के चुनावी संग्राम की बांकीपुर में 30 जुलाई को उपचुनाव होना है, 3 अगस्त को रिजल्ट आएगा, मगर बांकीपुर के इस उपचुनाव में संग्राम में मुकाबला त्रिकोणीय है। सभी दल यहां पर अपनी जीत के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन सबकी निगाह इस सीट पर चुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर पर है।

0: कहने को तो बांकीपुर में उपचुनाव होना है, मगर यहाँ की सियासी सरगर्मियाँ जबरदस्त तरीके से बढ़ी हुई हैं। मुकाबला त्रिकोणीय है। बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने ताल ठोकी है। उनके सामने अब बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार और आरजेडी के प्रत्याशी रेखा गुप्ता हैं। मगर बीजेपी मान के चल रही है कि बांकीपुर में पीके की हार तय है।
1: अब उनके पार्टी से कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था ये बाय इलेक्शन में बांकीपुर से, अपने कच्छा पिन के उतर गए क्योंकि कोई उम्मीदवार ही नहीं आ रहा था। अब ये जाएंगे तो जवाब देंगे, जवाब तो लोग देख रहे हैं, झूठ की खेती बार बार नहीं चलता।
0: बीजेपी के इस भरोसे के पीछे वो आंकड़े हैं जिनमें 3 दशक से बांकीपुर पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है। यहाँ बड़ी तादाद में कायस्थ मतदाता हैं और वही बीजेपी की ताकत है, इसीलिए बीजेपी के सहयोगी दल भी भरोसे से भरे हुए हैं।
2: अरे उनको इस बात की समझ हो गई है कि यहाँ रहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि जनता एनडीए के साथ।
0: बांकीपुर में नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन है। कुल 11 प्रत्याशियों ने अब तक नामांकन दाखिल किया है, जिसमें लालू प्रसाद नाम के एक निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं। मगर कांग्रेस ने अब तक अपने किसी प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा है। अलबत्ता कांग्रेस कह रही है कि बांकीपुर से इस बार बीजेपी हारेगी।
3: पहली बार वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है सम्राट जी के नेतृत्व में, और उनकी परीक्षा हो रही है। एक तो पहले उन्होंने ऐसा प्रत्याशी बनाया जो जिसपे करप्शन के चार्जेस थे, जिसके पिताजी पे करप्शन के चार्जेस थे, फिर जिनको अभी बदला उन पे भी कई तरह की कंट्रोवर्सीज हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी।
0: बांकीपुर का रण दिलचस्प है। देखना होगा कि पहली बार चुनावी रण में उतरे पीके क्या बीजेपी के गढ़ को फतह कर पाएंगे। आज तक ब्यूरो।
4: अब आपको एक हैरान कर देने वाली तस्वीर दिखाते हैं, जहां सूरत में अचानक चलते चलते एक कार आग का गोला बन गई। चंद मिनटों ही में कार ये जलकर राख हो गई।
0: सड़क पर खड़ी एक कार धधक रही है। आग इतनी भयानक है कि इसे बुझाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। भयानक आग खौफनाक है। दमकल कर्मी इस पर पानी की बौछार कर रहे हैं, मगर आग भयानक है। काफी देर बाद आखिरकार कार की आग बुझाई गई, मगर तब तक कार पूरी तरह से राख हो चुकी थी। तस्वीरें सूरत की हैं। सूरत के वेसु इलाके में चलती कार में अचानक आग लगी। ये घटना ओमेगा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने बीआरटीएस बस स्टैंड के पास हुई, जिससे थोड़ी देर के लिए मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया था। अच्छी बात ये रही कि वक्त रहते कार में सवार लोग बाहर निकल आए थे, इसीलिए कोई हताहत नहीं हुआ। हाँ, कार जरूर राख हो गई। कार में आग किस वजह से लगी इसका पता भी नहीं चला है। संजय सिंह राठौड़, सूरत आज तक।
4: अब एक और हैरान करने वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं, और ये तस्वीर उत्तराखंड के कोटद्वार से आई है, जहां हाथियों का झुंड रिहायशी इलाके में आ गया। हाथियों का ये झुंड लोगों के घरों में भी जा घुसा।

0: जंगल में हाथियों को टहलते हुए आपने बहुत बार देखा होगा। पहली बार रिहायशी इलाके में हाथियों को टहलते हुए देखिए, देखिए कितने आराम से ये हाथी इस मकान में प्रवेश कर रहे हैं। सामने से आ रहे इस हाथी के साथ बाईं ओर से प्रवेश कर रहे इस दूसरे हाथी को भी देखिए। इन दोनों के साथ एक तीसरा हाथी भी है, ये हाथी का बच्चा है। ये तीनों हाथी इस घर में प्रवेश कर गए हैं। अब आगे की तस्वीरें देखिए, ये छोटा हाथी घर की छत तक पहुंच गया है। छत पर रखी पानी की टंकी से ये पानी पी रहा है। दूसरा हाथी यहाँ इस कमरे में प्रवेश कर गया। ये तीनों हाथी इस घर में लगातार चहलकदमी कर रहे हैं और हाथियों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो रही हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड में कोटद्वार के वार्ड नंबर 1 के ग्रास्टनगंज की हैं। बताया जा रहा है कि इन हाथियों ने 5 से 6 घरों में जमकर तोड़फोड़ की है। पीड़ितों का आरोप है कि उन्होंने बार बार वन विभाग को शिकायतें दी हैं, मगर कार्रवाई नहीं हुई। अब लोग दहशत में हैं।
1: हाथी तो कभी कल तो 4-5 थे, अब तो 2 आदमी से क्या होगा। जरा स्टाफ बढ़ाओ, स्टाफ बढ़ाओ, इसलिए स्टाफ के पास तुम टॉर्च दो, वो बंदूक दो, जिससे कि वो बंदूक वो हाथी भाग जाएंगे। नहीं तो हमको तो बहुत दिक्कत हो रही है। पर हम रात 3 बजे 3:30 बजे सोए।
2: परसों भी अंदर आया था हाथी, मतलब पूरा तोड़ के गया, वॉश बेसिन वगैरह, टंकी, मेरी खिड़की पूरी तोड़ दी उसने, पल्ले बाहर निकाल के रख दिए। तो मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बोला है कि आओ। तो सर एक बात मुझे समझ नहीं आती, अगर इनके फॉरेस्ट गार्ड आते हैं, जो भी यहाँ पे है वो चौकी पे वो आते हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास कुछ, उनको आके हम करें क्या? ना उनके पास कोई एयर गन वगैरह है कि वो हाथी भगाएं। सर डंडे से तो हाथी नहीं भागेगा ना। अभी पिछली बारी फॉरेस्ट गार्ड आया था तो वो डंडे से वो पीछे भाग रहा था हाथी के, उसको भगाने के लिए हाथी ने उसको ही दौड़ा दिया। उसका रविंदर नाम है भैया का, उनका ही फोन टूट गया।
0: लोग खौफ ज़दा हैं और मांग कर रहे हैं कि इन हाथियों से मुक्ति दिलाया जाए, कोई ऐसा कदम उठाया जाए कि हाथी रिहायशी इलाके में ना आए। विकास, कोटद्वार, आज तक।
3: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कई अहम खुलासे हुए। आरोपियों ने बताया कि वो चढ़ावा की चोरी सिर्फ इवनिंग शिफ्ट में किया करते थे। वहीं एक अहम खबर यह भी है कि ट्रस्ट ने सीईओ की नियुक्ति की कोशिशें तेज कर दी हैं। और तीसरी बड़ी खबर है कि टिन्नू यादव और सुभाष यादव से अयोध्या पुलिस ने पूछताछ की तैयारियां की हैं।

0: राम मंदिर के प्रांगण में मौजूद जिस कमरे में चढ़ावे की गिनती होती थी वहां दो पालियों में काउंटिंग की जाती थी। चढ़ावे की गिनती के लिए पहली शिफ्ट सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक होती थी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक की थी। चढ़ावा चोरी की वारदात दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक की शिफ्ट में ही हुई, यानी चोरी दूसरी पाली में हुई। दरअसल सभी आरोपी उसी 2 से 9 वाली शिफ्ट में काम करते थे। दरअसल शाम के शिफ्ट में चोरी करना आरोपियों के लिए ज्यादा आसान था। काउंटिंग के दूसरे शिफ्ट में चढ़ावा चोरी का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने 4 आरोपियों से पूछताछ की। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 40 दिन में 70 बार चोरी की गई। सबसे ज्यादा 50 से अधिक बार चोरी अविनाश शुक्ला ने ही की थी। वो एक दिन में 2 बार चढ़ावा चोरी करता था। जिन 40 दिनों का रिकॉर्ड पुलिस ने खंगाला है उसमें से 5 दिन ऐसे भी रहे जब एक ही दिन में चढ़ावा चोरों ने 3-3 बार चोरी की।
1: सेकंड शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक होती थी और ये वो वक्त होता था जब कैश लेकर बाहर निकलते समय न सिर्फ निगरानी कम होती थी बल्कि इनके लिए कैश लेकर निकलना भी आसान हो जाता था।
0: पुलिस की जांच में ये सच सामने आने के बाद ही राम मंदिर ट्रस्ट ने चढ़ावे की गिनती अब सिर्फ एक ही शिफ्ट में करने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत अब सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चढ़ावे की गिनती शुरू कर दी गई है। तमाम खुलासों के बीच अयोध्या पुलिस राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव से भी पूछताछ की तैयारी में है। संतोष कुमार शर्मा, अयोध्या आज तक।
2: अब बात वियतनाम से आए एक बड़े हादसे की। वियतनाम के फुकोक द्वीप के पास में भारतीय पर्यटकों से भरी एक टूरिस्ट बोट पलट गई। हादसे में 15 भारतीयों की मौत हो गई, 21 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। बोट पर उस समय कुल 36 लोग सवार थे जिसमें 32 भारतीय और 4 क्रू मेंबर्स थे।
3: वियतनाम में छुट्टियों की तस्वीरें आखिर यादें बन गई हैं। समंदर का सफर मौत का सफर बन गया। परिवारों के लिए अब सिर्फ दर्द बचा है। वियतनाम के फुकवोक आइलैंड के पास एक टूरिस्ट बोट पलटी और देखते ही देखते गहरे पानी ने कई जिंदगियां निगल ली। जिस नाव में सवार होकर लोग नए अनुभवों की तलाश में निकले थे वही नाव कई परिवारों के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा बन गई। वियतनाम से आई ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। समंदर की ऊंची लहरों के बीच पलटी हुई टूरिस्ट बोट और चारों तरफ मदद के लिए जूझते लोग। ये वही नाव थी जिसमें भारत से घूमने पहुंचे पर्यटक सवार थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटक और 4 क्रू मेंबर मौजूद थे। नाव होनमे रूट से अनथोई पोर्ट की तरफ जा रही थी तभी फुकवोक आइलैंड के पास करीब 400 मीटर दूर अचानक हादसा हो गया और देखते ही देखते पूरी नाव समंदर में पलट गई और 15 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे की खबर मिलते ही भारत सरकार भी सक्रिय हो गई। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बताया कि हादसे के बाद हनोई स्थित एम्बेसी और होची मिन्ह सिटी स्थित कॉन्सुलेट में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। दूतावास ने कहा कि भारतीय पर्यटकों की जानकारी जुटाई जा रही है और हर संभव मदद दी जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हादसे पर दुख जताते हुए लिखा, वियतनाम के फुकवोक के पास भारतीय नागरिकों से जुड़े इस दर्दनाक हादसे से बेहद दुखी हूं। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया। पीएम मोदी ने कहा, वियतनाम में भारतीय नागरिकों से जुड़े नाव हादसे की खबर से बेहद दुखी हूं। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। भारतीय दूतावास और अधिकारी हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। हादसे में पीड़ित परिवारों में मातम है। केरल के मछलीपट्टनम में रहने वाले पीड़ित परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वियतनाम नाव हादसे में गेली जयलक्ष्मी की मौत की खबर के बाद परिवार में चीख पुकार मच गई। घर में मौजूद परिजन अब सिर्फ उस पल को याद कर रहे हैं जब एक सफर जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। वहीं केरल के ही रहने वाले एसी थॉमस और लोवेनी थॉमस की मौत की पुष्टि की गई है। केरल सरकार विदेश मंत्रालय के संपर्क में है ताकि मृतकों के पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाया जा सके। एक टूरिस्ट ट्रिप जो यादों का सफर बनने निकली थी वो अचानक मातम में बदल गई। समंदर की एक लहर ने कई परिवारों से उनके अपने छीन लिए। अब सवाल सिर्फ हादसे का नहीं, सवाल ये भी है कि आखिर ऐसी पर्यटक नावों की सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है। वियतनाम से आई इस त्रासदी ने एक बार फिर समंदर में सुरक्षा इंतजामों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
2: अब बात कनाडा के टोरंटो में हुई फायरिंग की। टोरंटो में एक स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान गोलीबारी से हड़कंप मचा। हमले में दो लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग इसमें घायल हुए हैं। पुलिस ने इसे एक्टिव शूटर केस बताया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है।
4: टोरंटो में सालसाउन सेंट क्लेयर फेस्टिवल। फेस्टिवल में गोलियों की तड़ताहट, अफरा तफरी का माहौल, चीखते चिल्लाते लोग। तस्वीरें कनाडा के टोरंटो की हैं, जहां शनिवार शाम एक प्रसिद्ध स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से हड़कंप मच गया। मिड टाउन टोरंटो में आयोजित वार्षिक लैटिन सांस्कृतिक उत्सव सालसाउन सेंट क्लेयर के दौरान हुई इस फायरिंग के बाद मौके पर भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। टोरंटो पुलिस के मुताबिक गोलीबारी में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई जबकि चार लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने इलाके को तुरंत अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और लोगों से घटनास्थल से दूर रहने की अपील की गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक संदिग्ध हमलावर अभी फरार है। फिलहाल पुलिस फायरिंग के कारणों, हमलावर की पहचान और घटना के पीछे की वजहों की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़ी और जानकारी जल्द जारी की जाएगी। आज तक ब्यूरो।
2: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध इतना भीषण हो गया है कि एक हफ्ते के अंदर ईरान के कई शहरों में ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की गए हैं। अमेरिका ने ईरान के कई बंदरगाहों पर बम बरसाए, जिसके जवाब में ईरान ने कतर, बहरीन समेत कई खाड़ी देशों में उसके मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचाया है।

0: टूटा युद्ध विराम, शुरू हो गया भयंकर घमासान। ईरान के कई शहरों पर अमेरिका के विनाशकारी प्रहार। ईरान ने कई खाड़ी देशों पर बरसाए बम। हॉर्मुज पर ईरान की तालाबंदी, कीमतों में फिर लगेगी आग। आखिर जिसका डर था वही हुआ। धीरे धीरे टूटता युद्ध विराम अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। एक के बाद एक मिसाइल छोड़ी जा रही है। कई शहरों में सायरन की आवाज गूंज रही है, जो हमलों का संदेश देने के साथ साथ युद्ध फिर से शुरू होने का ऐलान कर रही है। अमेरिकी मिसाइलों ने हफ्ते भर में तीसरी बार ईरान पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। ड्रोन और मिसाइलों के जखीरे ने एक बार फिर तबाही का तांडव मचाना शुरू कर दिया है। अमेरिका का दावा है कि इस बार करीब 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इनमें मिसाइल और ड्रोन साइट, नेवी के ठिकाने, गोला बारूद भंडार, संचार नेटवर्क और तटीय निगरानी केंद्र शामिल हैं। जिन ईरानी शहरों को निशाना बनाया गया उनमें न्यूक्लियर सिटी बुशहर समेत असालुये, बंदर एतेयर, जास और चाबहार के सैन्य ठिकाने शामिल हैं। अमेरिका हॉर्मुज में लगातार हो रहे हमलों से गुस्से में है और उसने पहले ही ईरान को ताबड़तोड़ हमलों की चेतावनी दी थी। पिछले तीन दिनों में ईरान के 300 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। खैर, ईरान को भी जवाब देना ही था, लिहाजा उसने भी कई खाड़ी देशों में बने अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों के जरिए बम बरसाने शुरू कर दिए। कतर में अमेरिका के अलुदीद एयरबेस पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से हुए हमले में जंगी जहाजों के मेंटेनेंस और रिपेयर सेंटर के साथ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया है। कतर में ईरानी हमले को नाकाम करने के दौरान मलबा गिरने से 3 लोग घायल हो गए। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने भी मिसाइलों का मोर्चा मध्य पूर्व की ओर खोल दिया है। कतर के अलावा जॉर्डन, कुवैत, बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी ईरान ने निशाना बनाया है। साथ ही यूएई पर भी ईरान की ओर से मिसाइल दागी गई है। बहरीन में लगातार सायरन बज रहे हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी जा रही है। ईरान अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले करने के साथ साथ बयानों में भी आक्रामक होता जा रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई ने अपने पिता अली खामेनेई की मौत का बदला लेने का ऐलान कर दिया है, जिससे अमेरिका और ईरान के बीच घमासान और तेज होने की आशंका बढ़ गई है। अमेरिका के साथ बातों मुलाकातों के दौर में ईरान की ओर से अहम किरदार निभाने वाले मोहम्मद बागेर गालिबाफ के सुर भी तल्ख हो गए। उन्होंने लिखा कि एक तरफा समझौतों का दौर खत्म हो चुका है। हमने पहले ही कहा था, या तो अपना वादा निभाइए या फिर इसकी कीमत चुकाइए। अब हकीकत सामने है। गालिबाफ ने अपने पोस्ट के साथ समझौते की तस्वीर भी साझा की है, जिसमें हॉर्मुज को दोबारा खोलने और वहां व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी ईरान की बताई गई है। खैर, अमेरिका तो जो नुकसान ईरान का कर रहा है वो दुनिया देख ही रही है, लेकिन ईरान के जबरदस्त पलटवार से ट्रंप के बार बार किए जा रहे इन दावों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने ईरानी की पूरी सैन्य ताकत का खात्मा कर दिया है।
1: And I think the third regime is more reasonable, but we'll find out. But we've destroyed their, as you know, completely destroyed. 150. They had 159 ships. Every single ship is at the bottom of the sea. We've completely destroyed. They don't have one airplane. They don't have radar.
0: सीज़फ़ायर के दौरान ईरान ने अपने एंटी-मिसाइल सिस्टम को दुरुस्त किया और मिसाइल लॉन्चर्स को मजबूत किया। ईरान की यह तैयारी खाड़ी देशों पर किए गए हमलों में साफ दिखाई दे रही है। तांडव की इन तस्वीरों से इतना तो साफ है कि महायुद्ध पार्ट 2 और विनाशकारी होने जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
2: हॉर्मुज में हर कोई अपना नियंत्रण चाहता है। अमेरिका बिना किसी टोल बंदी के यहां से जहाजों की आवाजाही चाहता है, लेकिन ईरान के पास अमेरिका का सामना करने के लिए सबसे बड़ा हथियार है। तेल के इस खेल से हालात फिर से बिगड़ने लगे हैं, क्योंकि ईरान ने फिलहाल इसे बंद करने का ऐलान कर दिया है।

0: हॉर्मुज में हाहाकार से फिर बढ़ेगा घमासान। जहाजों पर बमबारी से बढ़ रहा कोहराम। हॉर्मुज को न खोलने का खामियाजा भुगतेगा तेहरान। क्या अमेरिका के सामने अपनी गलती मान रहा ईरान? हॉर्मुज की शांत लहरों में बमों की बारिश के बाद से एक बार फिर सुनामी दिखने लगी है। दो दिन में तीन जहाजों पर ईरान की बमबारी के बाद से सीज फायर की पूरी तस्वीर ही बदल गई है। एक बार फिर हॉर्मुज का पेच ही अमेरिका और ईरान के बीच फंस गया है और आशंका तो इस बात की लगातार बढ़ रही है कि तेल के खेल की वजह से ही महायुद्ध का पार्ट टू शुरू होने वाला है। ईरान ने हॉर्मुज से गुजर रहे इन तीन कमर्शियल जहाजों पर हमला किया था। इससे ट्रंप का पारा इतना चढ़ा कि दोनों ओर से हमलों की एक नई लहर से ईरान के कई शहरों के अलावा बहरीन और कतर तक में बर्बादी का मंजर दिखाई देने लगा। हॉर्मुज में इस हफ्ते जो हमले हुए हैं, क्या ईरान ने इसे अपनी गलती मानी है? CBS न्यूज ने यह दावा किया है। इसमें अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि ईरानी अफसरों ने निजी तौर पर ट्रंप के सलाहकारों से कहा कि हॉर्मुज में जहाजों पर अटैक गलती थी और ये हमले कट्टरपंथियों के एक ऐसे गुट ने किए जो बातचीत को नाकाम करना चाहते हैं। ईरान बेशक कितना ही कह ले कि हॉर्मुज में हमले एक गलती थे, लेकिन अमेरिका ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है और उसके खिलाफ हटाई गई तेल निर्यात की पाबंदियों को एक बार फिर लगा दिया है जो अगले हफ्ते से लागू कर दी जाएंगी। हॉर्मुज से शुरू हुई लड़ाई तेजी से खार्क तक पहुंच गई है। हफ्ते भर पहले ही अमेरिका ने यहां एयर स्ट्राइक की और ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया। ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा खार्क से ही जुड़ा है। जब से दोनों देशों के बीच जंग शुरू हुई है, खार्क को अमेरिका के कई हमले झेलने पड़े हैं। अब ये एक बार फिर से अमेरिका के निशाने पर आ गया है।
1: We're not attacking at the highest level. The highest level, the bridges, there, which we can knock down. I would say in one day we knocked down every single bridge in Iran. There's not a thing they can do about it. Their electric manufacturing facilities, right? Their electric plants where they make their electricity there. We'll take them out. I don't want to do that, but if we have to, we'll take them out. They have desalinization plants. We'll take them out if we have to. I hate to do that. That's probably the one I would like not to do least. We attacked Kharg Island last night. We knocked out a piece. I said, don't touch the oil because maybe we'll take over Kharg Island. You know, we may take over Kharg Island.
0: वैसे अमेरिका ने ईरान को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि ईरान कमर्शियल जहाजों के लिए हॉर्मुज को खोले और जहाजों पर हमले पूरी तरह बंद करे, साथ ही सार्वजनिक तौर पर इसका ऐलान करे। अमेरिका ने दो टूक चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने ऐसा नहीं किया तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। ये चेतावनी ऐसे वक्त पर दी गई है जब अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हवाई हमले कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
2: वक्त तो चला, अब छोटे से ब्रेक का, कुछ और खबरों के साथ होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

पंजाब में आपस में हाथ आजमाते दिख रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजवर्णी को हटाने पर अड़ी चन्नी गुट। रंधावा ने बताया कॉम्प्रोमाइज लीडर। आला कमान के दरबार में पहुंचा झगड़ा। उमर के ऑपरेशन लोटस वाले बयान पर बौखलाई बीजेपी। कहा दो सबूत या मांगो माफी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने लगाया था आरोप, हमारे विधायकों को खरीदने की हो रही है साजिश। बीजेपी ने प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के गिनाए 10 फायदे। कहा इंडो पैसिफिक में भारत बना बड़ी ताकत। वैश्विक साझेदारियों को मिली नई मजबूती। कांग्रेस का कटाक्ष। ट्विशा केस में एम्स ने सीबीआई को सौंपी दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सूत्रों से खबर, फंदे के लिए इस्तेमाल, बेल्ट पर मिले स्किन टिश्यू। चोट के निशान से हुए मैच। अमेरिकी हमलों की नई किश्त के बीच में दुनिया के सामने आएंगे मुज्तबा खामेनेई। मंगलवार की सभा में करेंगे शिरकत। अटैक में मारे गए लोगों को देंगे श्रद्धांजलि। यूएस की तरफ से जारी है भयानक बमबारी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कई अहम खुलासे हुए। आरोपियों ने बताया कि वो चढ़ावा की चोरी सिर्फ इवनिंग शिफ्ट में किया करते थे। वहीं एक अहम खबर यह भी है कि ट्रस्ट ने सीईओ की नियुक्ति की कोशिशें तेज कर दी हैं। और तीसरी बड़ी खबर है कि टिन्नू यादव और सुभाष यादव से अयोध्या पुलिस ने पूछताछ की तैयारियां की हैं।

0: राम मंदिर के प्रांगण में मौजूद जिस कमरे में चढ़ावे की गिनती होती थी वहां दो पालियों में काउंटिंग की जाती थी। चढ़ावे की गिनती के लिए पहली शिफ्ट सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक होती थी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक की थी। चढ़ावा चोरी की वारदात दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक की शिफ्ट में ही हुई, यानी चोरी दूसरी पाली में हुई। दरअसल सभी आरोपी उसी 2 से 9 वाली शिफ्ट में काम करते थे। दरअसल शाम के शिफ्ट में चोरी करना आरोपियों के लिए ज्यादा आसान था। काउंटिंग की दूसरी शिफ्ट में चढ़ावा चोरी का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने 4 आरोपियों से पूछताछ की। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 40 दिन में 70 बार चोरी की गई। सबसे ज्यादा 50 से अधिक बार चोरी अविनाश शुक्ला ने ही की थी। वो एक दिन में 2 बार चढ़ावा चोरी करता था। जिन 40 दिनों का रिकॉर्ड पुलिस ने खंगाला है उसमें से 5 दिन ऐसे भी रहे जब एक ही दिन में चढ़ावा चोरों ने 3-3 बार चोरी की।
1: सेकंड शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक होती थी और ये वो वक्त होता था जब कैश लेकर बाहर निकलते समय न सिर्फ निगरानी कम होती थी बल्कि इनके लिए कैश लेकर निकलना भी आसान हो जाता था।
0: पुलिस की जांच में ये सच सामने आने के बाद ही राम मंदिर ट्रस्ट ने चढ़ावे की गिनती अब सिर्फ एक ही शिफ्ट में करने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत अब सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चढ़ावे की गिनती शुरू कर दी गई है। तमाम खुलासों के बीच अयोध्या पुलिस राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव से भी पूछताछ की तैयारी में है। संतोष कुमार शर्मा, अयोध्या आज तक।
2: एक तरफ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर जांच चल रही है तो दूसरी ओर इस पर सियासत जबरदस्त तरीके से हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जब से राम मंदिर दर्शन करके लौटे हैं तब से वो हिंदुत्व का राग अलाप रहे हैं। बीजेपी की ओर से अरविंद केजरीवाल का भी एक पोस्टर जारी किया गया जिसमें अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया गया।
3: दिल्ली बीजेपी ने ये नया पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया गया है। इस पोस्टर को जारी करने के साथ ही बीजेपी ने लिखा है कि जो लोग भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण से खुश नहीं हैं, जिन्होंने मंदिरों और गुरुद्वारों के बाहर शराब की दुकानें खुलवाई, जिनकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही है, जो राम मंदिर की जगह अस्पताल बनवाना चाहते थे, जिन्होंने बजरंग बली का मजाक उड़ाया, जिनके शासन में इमामों को तो वेतन बांटा गया लेकिन पुजारियों को कभी कुछ नहीं दिया।
4: आज केजरीवाल जी को फिर राम याद आए हैं। ये राजनीतिक हिंदू हैं, आज फिर इनकी नौटंकी प्रारंभ हो गई है।
5: अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं और ये हम पहली बार नहीं बोल रहे। जब जब चुनाव आते हैं अरविंद केजरीवाल के जो कर्म होते हैं वो प्रूफ कर देते हैं कि वो चुनावी हिंदू हैं। आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसको लेके हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे। ये सब दिखाता है कि चूंकि वहां उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं इसलिए आज अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग चुनावी हिंदू बनकर हिंदू बनने का एक सॉन्ग रच रहा है।
3: दरअसल अरविंद केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़े हैं। एक तरफ उन्होंने घोषणा की है कि अमृतसर में वो माता सीता और लवकुश का मंदिर बनवाएंगे, दूसरी तरफ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर वो मुखर है।
6: सारे प्रयास किए जा रहे हैं चोरों को बचाने के, डकैतों को बचाने के, जमीनों के जो घोटाला हुआ उसपे तो जांच ही नहीं चल रही, मंदिर निर्माण में जो कमीशन खोली हुई उसपे तो जांच ही नहीं चल रही।
3: लेकिन बीजेपी को ये रास नहीं आ रहा है। अब तेरा हिंदुत्व और मेरा हिंदुत्व की जंग शुरू हो गई है। आज तक ब्यूरो।
2: पंजाब कांग्रेस में जबरदस्त कोहरा मचा हुआ है। भूपेश बघेल 5 दिन के दौरे पर पहुंचे थे लेकिन छठवें दिन छत्तीसगढ़ लौटे। करीब 92 नेताओं के साथ मैराथन बैठक की लेकिन नतीजा वही कि उनके वापस लौटते ही चन्नी और बडिंग गुट के नेता फिर से बयाने जंग के अखाड़े में आ डटे।
0: स्लीपर सेल, समझौतावादी नेता, ये शब्द किसी विरोधी दल के नहीं, ये कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस के नेताओं के लिए बोल रहे हैं। जिस पार्टी ने 2027 में पंजाब जीतने की ख्वाहिश पाल रखी है वो 2026 में अपने ही कुनबे से हारती दिखाई दे रही है।
7: सुखजिंदर सिंह रंधावा बिल्कुल ठीक कह रहे कि स्लीपर सेल एक कॉम्प्रोमाइज लीडर पंजाब नु बिल्कुल नहीं चाहिए।
0: पंजाब कांग्रेस की दीवारों में दरार अब छिपी नहीं है। अब सब कुछ कैमरों के सामने है। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा के बयान को भले ही पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अपने हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन रंधावा कहते हैं कि पंजाब को समझौतावादी नेता नहीं मजबूत नेता चाहिए, यानी सवाल सीधे नेतृत्व पर है।
8: राजा बड़िंग प्रेसिडेंट है, उसको आप ही आ जाना चाहिए था। मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मैं उसके साथ ही रहा हूँ, तो उसको दिखाना चाहिए कि किसकी नाराजगी है।
0: तो क्या पंजाब कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन बीजेपी, आम आदमी पार्टी, अकाली दल नहीं बल्कि उसकी अपनी गुटबाजी है? दरअसल इस विवाद की असली वजह है पंजाब कांग्रेस में खेमेबंदी। पंजाब में एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग है, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर रंधावा और उनके समर्थक। पंजाब कांग्रेस में दरार की वजह ये बताई जा रही है कि जब अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को एक्सटेंशन मिल गया। इसी तनातनी के बीच पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने कई दौर की बैठकें की, लेकिन बंद कमरे की बातचीत खुली बगावत को रोक नहीं सकी। बागी नेताओं ने एक बार फिर राजा वडिंग को हटाने की मांग दोहराई, जबकि बघेल सार्वजनिक तौर पर नेतृत्व परिवर्तन से इनकार करते रहे। जिस पॉलिटिकल पार्टी की सेना के सेनापति पर ही सवाल उठने लगे, वो कैसे चुनावी मैदान में ताल ठोकेगा? पंजाब की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी अब चुटकी ले रही है।
9: यार ठीक रह गए भी क्या कर लेंगे, वह भगवत मान जी की लहर है।
0: इस बीच दिल्ली से कांग्रेस नेता उदित राज ने भी पंजाब के कांग्रेसी नेताओं को आईना दिखाया है। उदित राज ने भी पार्टी की सबसे कमजोर नस पर हाथ रख दिया।
10: आपस में लड़ेंगे तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ये बात समझ में आना चाहिए। उत्तराखंड में हम इसी तरीके से सरकार बनाते रह गए।
0: 2027 के
2: बाद अब जम्मू कश्मीर की, जहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य का दर्जा मांगते हुए बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरा और साथ ही साथ ट्रंप का जिक्र करके उन्होंने तंज कसा है।
11: असेंबली से नहीं मिलेगा, ठीक, फिर हमने सड़कों पर बात करना शुरू किया, फिर कहते थे अब आपको जम्मू कश्मीर में बात करके ये मिलेगा नहीं, ठीक, अब हम जंतर मंतर जा रहे हैं, अब ये हमें कहते ना जंतर मंतर से आपको रियासत का दर्जा नहीं मिलेगा। खुदारा फिर ये बीजेपी वाले बताएं ना मुझे, क्या ट्रंप के पास जाना पड़ेगा व्हाइट हाउस में अमेरिका रियासत का दर्जा लेने के लिए? अगर मुझे अपने मुल्क के राजधानी में जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा की बहाली नहीं मिलेगी तो कहिए हम लोग टिकट करेंगे, हम अमेरिका जाके ट्रंप साहब के घर के बाहर एहतजाज करके वहां से स्टेटहुड मांग लेंगे, दे दीजिए।
2: बाद में पटना के बांकीपुर के चुनावी संग्राम की, बांकीपुर में 30 जुलाई को उपचुनाव होना है, 3 अगस्त को रिजल्ट आएगा, मगर बांकीपुर के इस उपचुनाव में संग्राम में मुकाबला त्रिकोणीय है। सभी दल यहां पर अपनी जीत के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन सबकी निगाह इस सीट पर चुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर पर है।

0: कहने को तो बांकीपुर में उपचुनाव होना है, मगर यहाँ की सियासी सरगर्मियाँ जबरदस्त तरीके से बढ़ी हुई हैं। मुकाबला त्रिकोणीय है। बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने ताल ठोकी है। उनके सामने अब बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार और आरजेडी के प्रत्याशी रेखा गुप्ता हैं। मगर बीजेपी मान के चल रही है कि बांकीपुर में पीके की हार तय है।
1: अब उनके पार्टी से कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था ये बाय इलेक्शन में बांकीपुर से, अपने कच्छा पिन के उतर गए क्योंकि कोई उम्मीदवार ही नहीं आ रहा था। अब ये जाएंगे तो जवाब देंगे, जवाब तो लोग देख रहे हैं, झूठ की खेती बार बार नहीं चलता।
0: बीजेपी के इस भरोसे के पीछे वो आंकड़े हैं जिनमें 3 दशक से बांकीपुर पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है। यहाँ बड़ी तादाद में कायस्थ मतदाता हैं और वही बीजेपी की ताकत है, इसीलिए बीजेपी के सहयोगी दल भी भरोसे से भरे हुए हैं।
2: अरे उनको इस बात की समझ हो गई है कि यहाँ रहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि जनता एनडीए के साथ।
0: बांकीपुर में नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन है। कुल 11 प्रत्याशियों ने अब तक नामांकन दाखिल किया है, जिसमें लालू प्रसाद नाम के एक निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं। मगर कांग्रेस ने अब तक अपने किसी प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा है। अलबत्ता कांग्रेस कह रही है कि बांकीपुर से इस बार बीजेपी हारेगी।
3: पहली बार वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है सम्राट जी के नेतृत्व में, और उनकी परीक्षा हो रही है। एक तो पहले उन्होंने ऐसा प्रत्याशी बनाया जो जिसपे करप्शन के चार्जेस थे, जिसके पिताजी पे करप्शन के चार्जेस थे, फिर जिनको अभी बदला उन पे भी कई तरह की कंट्रोवर्सीज हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी।
0: बांकीपुर का रण दिलचस्प है। देखना होगा कि पहली बार चुनावी रण में उतरे पीके क्या बीजेपी के गढ़ को फतह कर पाएंगे। आज तक ब्यूरो।
4: अब आपको एक हैरान कर देने वाली तस्वीर दिखाते हैं, जहां सूरत में अचानक चलते चलते एक कार आग का गोला बन गई। चंद मिनटों ही में कार ये जलकर राख हो गई।
0: सड़क पर खड़ी एक कार धधक रही है। आग इतनी भयानक है कि इसे बुझाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। भयानक आग खौफनाक है। दमकल कर्मी इस पर पानी की बौछार कर रहे हैं, मगर आग भयानक है। काफी देर बाद आखिरकार कार की आग बुझाई गई, मगर तब तक कार पूरी तरह से राख हो चुकी थी। तस्वीरें सूरत की हैं। सूरत के वेसू इलाके में चलती कार में अचानक आग लगी। ये घटना ओमेगा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने बीआरटीएस बस स्टैंड के पास हुई, जिससे थोड़ी देर के लिए मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया था। अच्छी बात यह रही कि वक्त रहते कार में सवार लोग बाहर निकल आए थे, इसीलिए कोई हताहत नहीं हुआ। हाँ, कार जरूर राख हो गई। कार में आग किस वजह से लगी इसका पता भी नहीं चला है। संजय सिंह राठौड़, सूरत आज तक।
4: अब एक और हैरान करने वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं, और ये तस्वीर उत्तराखंड के कोटद्वार से आई है, जहां हाथियों का झुंड रिहायशी इलाके में आ गया। हाथियों का ये झुंड लोगों के घरों में भी जा घुसा।

0: जंगल में हाथियों को टहलते हुए आपने बहुत बार देखा होगा। पहली बार रिहायशी इलाके में हाथियों को टहलते हुए देखिए, देखिए कितने आराम से ये हाथी इस मकान में प्रवेश कर रहे हैं। सामने से आ रहे इस हाथी के साथ बाईं ओर से प्रवेश कर रहे इस दूसरे हाथी को भी देखिए। इन दोनों के साथ एक तीसरा हाथी भी है, ये हाथी का बच्चा है। ये तीनों हाथी इस घर में प्रवेश कर गए हैं। अब आगे की तस्वीरें देखिए, ये छोटा हाथी घर की छत तक पहुंच गया है। छत पर रखी पानी की टंकी से ये पानी पी रहा है। दूसरा हाथी यहाँ इस कमरे में प्रवेश कर गया। ये तीनों हाथी इस घर में लगातार चहलकदमी कर रहे हैं और हाथियों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो रही हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड में कोटद्वार के वार्ड नंबर 1 के ग्रास्टनगंज की हैं। बताया जा रहा है कि इन हाथियों ने 5 से 6 घरों में जमकर तोड़फोड़ की है। पीड़ितों का आरोप है कि उन्होंने बार बार वन विभाग को शिकायतें दी है मगर कार्रवाई नहीं हुई। अब लोग दहशत में हैं।
1: हाथी तो कभी कल तो 4-5 थे, अब तो 2 आदमी से क्या होगा। जरा स्टाफ बढ़ाओ,
2: यहाँ पे 35
1: स्टाफ बढ़ाओ, इसलिए स्टाफ के पास तुम टॉर्च दो, वो बंदूक दो, जिससे कि वो बंदूक वो हाथी भाग जाएंगे। नहीं तो हमको तो बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत पर हम रात भर 3 बजे 3:30 बजे सोए।
3: परसों भी अंदर आया था हाथी, मतलब पूरा तोड़ के गया, वॉश बेसिन वगैरह, टंकी, मेरी खिड़की पूरी तोड़ दी उसने, पल्ले बाहर निकाल के रख दिए। तो मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बोला है कि आओ। तो सर एक बात मुझे समझ नहीं आती, अगर इनके फॉरेस्ट गार्ड आते हैं, जो भी यहाँ पे है वो चौकी पे वो आते हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास कुछ, उनको आके हम करें क्या? ना उनके पास कोई एयर गन वगैरह है कि वो हाथी भगाएं। सर डंडे से तो हाथी नहीं भागेगा ना। अभी पिछली बार फॉरेस्ट गार्ड आया था तो वो डंडे से वो पीछे भाग रहा था हाथी के, उसको भगाने के लिए हाथी ने उसको ही दौड़ा दिया। उसका रविंदर नाम है भैया का, उनका ही फोन टूट गया।
0: लोग खौफजदा हैं और मांग कर रहे हैं कि इन हाथियों से मुक्ति दिलाया जाए, कोई ऐसा कदम उठाया जाए कि हाथी रिहायशी इलाके में ना आए। विकास, कोटद्वार, आज तक।
4: अब बात वियतनाम से, एक बड़े

0: लोग सवार थे जिसमें 32 भारतीय और 4 क्रू मेंबर्स थे।
1: वियतनाम में छुट्टियों की तस्वीरें आखिर यादें बन गई हैं। समंदर का सफर मौत का सफर बन गया। परिवारों के लिए अब सिर्फ दर्द बचा है। वियतनाम के फुकवोक आइलैंड के पास एक टूरिस्ट बोट पलटी और देखते ही देखते गहरे पानी ने कई जिंदगियां निगल ली। जिस नाव में सवार होकर लोग नए अनुभवों की तलाश में निकले थे, वही नाव कई परिवारों के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा बन गई। वियतनाम से आई ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। समंदर की ऊंची लहरों के बीच पलटी हुई टूरिस्ट बोट और चारों तरफ मदद के लिए जूझते लोग। ये वही नाव थी जिसमें भारत से घूमने पहुंचे पर्यटक सवार थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटक और 4 क्रू मेंबर मौजूद थे। नाव होनमेर रूट से अनथोई पोर्ट की तरफ जा रही थी, तभी फुकवोक आइलैंड के पास करीब 400 मीटर दूर अचानक हादसा हो गया और देखते ही देखते पूरी नाव समंदर में पलट गई और 15 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे की खबर मिलते ही भारत सरकार भी सक्रिय हो गई। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बताया कि हादसे के बाद हनोई स्थित एम्बेसी और होची मिन्ह सिटी स्थित कॉन्सुलेट में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। दूतावास ने कहा कि भारतीय पर्यटकों की जानकारी जुटाई जा रही है और हर संभव मदद दी जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हादसे पर दुख जताते हुए लिखा, वियतनाम के फुकवोक के पास भारतीय नागरिकों से जुड़े इस दर्दनाक हादसे से बेहद दुखी हूं। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया। पीएम मोदी ने कहा, वियतनाम में भारतीय नागरिकों से जुड़े नाव हादसे की खबर से बेहद दुखी हूं। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। भारतीय दूतावास और अधिकारी हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। हादसे में पीड़ित परिवारों में मातम है। केरल के मछलीपट्टनम में रहने वाले पीड़ित परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वियतनाम नाव हादसे में गेली जयलक्ष्मी की मौत की खबर के बाद परिवार में चीख पुकार मच गई। घर में मौजूद परिजन अब सिर्फ उस पल को याद कर रहे हैं जब एक सफर जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। वहीं केरल के ही रहने वाले एसी थॉमस और लोवेनी थॉमस की मौत की पुष्टि की गई है। केरल सरकार विदेश मंत्रालय के संपर्क में है ताकि मृतकों के पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाया जा सके। एक टूरिस्ट ट्रिप जो यादों का सफर बनने निकली थी, वो अचानक मातम में बदल गई। समंदर की एक लहर ने कई परिवारों से उनके अपने छीन लिए। अब सवाल सिर्फ हादसे का नहीं, सवाल ये भी है कि आखिर ऐसी पर्यटक नावों की सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है। वियतनाम से आई इस त्रासदी ने एक बार फिर समंदर में सुरक्षा इंतजामों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: अब आज कनाडा के टोरंटो में हुई फायरिंग की, टोरंटो में एक स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान गोलीबारी से हड़कंप मचा। हमले में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग इसमें घायल हुए हैं। पुलिस ने इसे एक्टिव शूटर केस बताया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है।
2: टोरंटो में साल्सा ऑन सेंट क्लेयर फेस्टिवल में गोलियों की तड़ताहट, अफरा तफरी का माहौल, चीखते चिल्लाते लोग। तस्वीरें कनाडा के टोरंटो की हैं, जहां शनिवार शाम एक प्रसिद्ध स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से हड़कंप मच गया। मिड टाउन टोरंटो में आयोजित वार्षिक लैटिन सांस्कृतिक उत्सव साल्सा ऑन सेंट क्लेयर के दौरान हुई इस फायरिंग के बाद मौके पर भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। टोरंटो पुलिस के मुताबिक गोलीबारी में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने इलाके को तुरंत अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और लोगों से घटनास्थल से दूर रहने की अपील की गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक संदिग्ध हमलावर अभी फरार है। फिलहाल पुलिस फायरिंग के कारणों, हमलावर की पहचान और घटना के पीछे की

0: वजहों की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़ी और जानकारी जल्द जारी की जाएगी। आज तक ब्यूरो।
1: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध इतना भीषण हो गया है कि एक हफ्ते के अंदर ईरान के कई शहरों में ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की गए हैं। अमेरिका ने ईरान के कई बंदरगाहों पर बम बरसाए, जिसके जवाब में ईरान ने कतर, बहरीन समेत कई खाड़ी देशों में उसके मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचाया है।

0: टूटा युद्ध विराम, शुरू हो गया भयंकर घमासान। ईरान के कई शहरों पर अमेरिका के विनाशकारी प्रहार, ईरान ने कई खाड़ी देशों पर बरसाए बम, हॉर्मुज पर ईरान की तालाबंदी, कीमतों में फिर लगेगी आग। आखिर जिसका डर था वही हुआ, धीरे धीरे टूटता युद्ध विराम अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। एक के बाद एक मिसाइल छोड़ी जा रही है, कई शहरों में सायरन की आवाज गूंज रही है, जो हमलों का संदेश देने के साथ साथ युद्ध फिर से शुरू होने का ऐलान कर रही है। अमेरिकी मिसाइलों ने हफ्ते भर में तीसरी बार ईरान पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। ड्रोन और मिसाइलों के जखीरे ने एक बार फिर तबाही का तांडव मचाना शुरू कर दिया है। अमेरिका का दावा है कि इस बार करीब 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इनमें मिसाइल और ड्रोन साइट, नेवी के ठिकाने, गोला बारूद भंडार, संचार नेटवर्क और तटीय निगरानी केंद्र शामिल हैं। जिन ईरानी शहरों को निशाना बनाया गया उनमें न्यूक्लियर सिटी बुशहर समेत असालुये, बंदर एतेयर, जास्क और चाबहार के सैन्य ठिकाने शामिल हैं। अमेरिका हॉर्मुज में लगातार हो रहे हमलों से गुस्से में है और उसने पहले ही ईरान को ताबड़तोड़ हमलों की चेतावनी दी थी। पिछले तीन दिनों में ईरान के 300 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। खैर, ईरान को भी जवाब देना ही था, लिहाजा उसने भी कई खाड़ी देशों में बने अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों के जरिए बम बरसाने शुरू कर दिए। कतर में अमेरिका के अलुदीद एयरबेस पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से हुए हमले में जंगी जहाजों के मेंटेनेंस और रिपेयर सेंटर के साथ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया है। कतर में ईरानी हमले को नाकाम करने के दौरान मलबा गिरने से 3 लोग घायल हो गए। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने भी मिसाइलों का मोर्चा मध्य पूर्व की ओर खोल दिया है। कतर के अलावा जॉर्डन, कुवैत, बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी ईरान ने निशाना बनाया है। साथ ही यूएई पर भी ईरान की ओर से मिसाइल दागी गई है। बहरीन में लगातार सायरन बज रहे हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी जा रही है। ईरान अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले करने के साथ साथ बयानों में भी आक्रामक होता जा रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई ने अपने पिता अली खामेनेई की मौत का बदला लेने का ऐलान कर दिया है, जिससे अमेरिका और ईरान के बीच घमासान और तेज होने की आशंका बढ़ गई है। अमेरिका के साथ बातों मुलाकातों के दौर में ईरान की ओर से अहम किरदार निभाने वाले मोहम्मद बागेर गालिबाग के सुर भी तल्ख हो गए। उन्होंने लिखा कि एक तरफा समझौतों का दौर खत्म हो चुका है, हमने पहले ही कहा था, या तो अपना वादा निभाइए या फिर इसकी कीमत चुकाइए। अब हकीकत सामने है। गालिबाग ने अपने पोस्ट के साथ समझौते की तस्वीर भी साझा की है, जिसमें हॉर्मुज को दोबारा खोलने और वहां व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी ईरान की बताई गई है। खैर, अमेरिका तो जो नुकसान ईरान का कर रहा है वो दुनिया देख ही रही है, लेकिन ईरान के जबरदस्त पलटवार से ट्रंप के बार बार किए जा रहे इन दावों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने ईरानी की पूरी सैन्य ताकत का खात्मा कर दिया है।
1: And I think the third regime is more reasonable, but we'll find out. But we've destroyed their, as you know, completely destroyed, 150. They had 159 ships. Every single ship is at the bottom of the sea. We've completely destroyed. They don't have one airplane. They don't have radar.
0: सीज़फ़ायर के दौरान ईरान ने अपने एंटी मिसाइल सिस्टम को दुरुस्त किया और मिसाइल लॉन्चर्स को मजबूत किया। ईरान की यह तैयारी खाड़ी देशों पर किए गए हमलों में साफ दिखाई दे रही है। तांडव की इन तस्वीरों से इतना तो साफ है कि महायुद्ध पार्ट 2 और विनाशकारी होने जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
2: हॉर्मुज में हर कोई अपना नियंत्रण चाहता है, अमेरिका बिना किसी टोलबंदी के यहां से जहाजों की आवाजाही चाहता है, लेकिन ईरान के पास अमेरिका का सामना करने के लिए सबसे बड़ा हथियार है। तेल के इस खेल से हालात फिर से बिगड़ने लगे हैं, क्योंकि ईरान ने फिलहाल इसे बंद करने का ऐलान कर दिया है।

0: हॉर्मुज में हाहाकार से फिर बढ़ेगा घमासान। जहाजों पर बमबारी से बढ़ रहा कोहराम। हॉर्मुज को न खोलने का खामियाजा भुगतेगा तेहरान। क्या अमेरिका के सामने अपनी गलती मान रहा ईरान? हॉर्मुज की शांत लहरों में बमों की बारिश के बाद से एक बार फिर सुनामी दिखने लगी है। दो दिन में तीन जहाजों पर ईरान की बमबारी के बाद से सीज फायर की पूरी तस्वीर ही बदल गई है। एक बार फिर हॉर्मुज का पेच ही अमेरिका और ईरान के बीच फंस गया है और आशंका तो इस बात की लगातार बढ़ रही है कि तेल के खेल की वजह से ही महायुद्ध का पार्ट टू शुरू होने वाला है। ईरान ने हॉर्मुज से गुजर रहे इन तीन कमर्शियल जहाजों पर हमला किया था। इससे ट्रंप का पारा इतना चढ़ा कि दोनों ओर से हमलों की एक नई लहर से ईरान के कई शहरों के अलावा बहरीन और कतर तक में बर्बादी का मंजर दिखाई देने लगा। हॉर्मुज में इस हफ्ते जो हमले हुए हैं, क्या ईरान ने इसे अपनी गलती मानी है? CBS न्यूज ने यह दावा किया है। इसमें अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि ईरानी अफसरों ने निजी तौर पर ट्रंप के सलाहकारों से कहा कि हॉर्मुज में जहाजों पर अटैक गलती थी और ये हमले कट्टरपंथियों के एक ऐसे गुट ने किए जो बातचीत को नाकाम करना चाहते हैं। ईरान बेशक कितना ही कह ले कि हॉर्मुज में हमले एक गलती थे, लेकिन अमेरिका ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है और उसके खिलाफ हटाई गई तेल निर्यात की पाबंदियों को एक बार फिर लगा दिया है जो अगले हफ्ते से लागू कर दी जाएंगी। हॉर्मुज से शुरू हुई लड़ाई तेजी से खार्क तक पहुंच गई है। हफ्ते भर पहले ही अमेरिका ने यहां एयर स्ट्राइक की और ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया। ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा खार्क से ही जुड़ा है। जब से दोनों देशों के बीच जंग शुरू हुई है, खार्क को अमेरिका के कई हमले झेलने पड़े हैं। अब ये एक बार फिर से अमेरिका के निशाने पर आ गया है।
1: Which we can knock down. I would say in one day we knock down every single bridge in Iran. There's not a thing they can do about it. Their electric manufacturing facilities, right? Their electric plants where they make their electricity there. We'll take them out. I don't want to do that, but if we have to, we'll take them out. They have desalinization plants. We'll take them out if we have to. I hate to do that. That's probably the one I would like not to do least. We attacked Kharg Island last night. We knocked out a piece. I said, don't touch the oil because maybe we'll take over Kharg Island. You know, we may take over Kharg Island.
0: वैसे अमेरिका ने ईरान को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि ईरान कमर्शियल जहाजों के लिए हॉर्मुज को खोले और जहाजों पर हमले पूरी तरह बंद करे, साथ ही सार्वजनिक तौर पर इसका ऐलान करे। अमेरिका ने दो टूक चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने ऐसा नहीं किया तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। ये चेतावनी ऐसे वक्त पर दी गई है जब अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हवाई हमले कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
2: वक्त हो चला अब छोटे से ब्रेक का, कुछ और खबरों के साथ होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

पंजाब में आपस में हाथ आजमाते दिख रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजवर्णी को हटाने पर अड़ी चन्नी गुट। रंधावा ने बताया कॉम्प्रोमाइज लीडर आला कमान के दरबार में पहुंचा झगड़ा। उमर के ऑपरेशन लोटस वाले बयान पर बौखलाई बीजेपी, कहा दो सबूत या मांगो माफी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने लगाया था आरोप, हमारे विधायकों को खरीदने की हो रही है साजिश। बीजेपी ने प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के गिनाए 10 फायदे, कहा इंडो पैसिफिक में भारत बना बड़ी ताकत, वैश्विक साझेदारियों को मिली नई मजबूती, कांग्रेस का कटाक्ष। ट्विशा केस में एम्स ने सीबीआई को सौंपी दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सूत्रों से खबर फंदे के लिए इस्तेमाल, बेल्ट पर मिले स्किन टिश्यू, चोट के निशान से हुए मैच। अमेरिकी हमलों की नई किश्त के बीच में दुनिया के सामने आएंगे मुज्तबा खामेनेई, मंगलवार की सभा में करेंगे शिरकत, अटैक में मारे गए लोगों को देंगे श्रद्धांजलि, यूएस की तरफ से जारी है भयानक बमबारी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कई अहम खुलासे हुए। आरोपियों ने बताया कि वो चढ़ावा की चोरी सिर्फ इवनिंग शिफ्ट में किया करते थे। वहीं एक अहम खबर यह भी है कि ट्रस्ट ने सीईओ की नियुक्ति की कोशिशें तेज कर दी हैं। और तीसरी बड़ी खबर है कि टिन्नू यादव और सुभाष यादव से अयोध्या पुलिस ने पूछताछ की तैयारियां की हैं।

0: राम मंदिर के प्रांगण में मौजूद जिस कमरे में चढ़ावे की गिनती होती थी वहां दो पालियों में काउंटिंग की जाती थी। चढ़ावे की गिनती के लिए पहली शिफ्ट सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक होती थी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक की थी। चढ़ावा चोरी की वारदात दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक की शिफ्ट में ही हुई, यानी चोरी दूसरी पाली में हुई। दरअसल सभी आरोपी उसी 2 से 9 वाली शिफ्ट में काम करते थे। दरअसल शाम के शिफ्ट में चोरी करना आरोपियों के लिए ज्यादा आसान था। काउंटिंग के दूसरे शिफ्ट में चढ़ावा चोरी का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने 4 आरोपियों से पूछताछ की। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 40 दिन में 70 बार चोरी की गई। सबसे ज्यादा 50 से अधिक बार चोरी अविनाश शुक्ला ने ही की थी। वो एक दिन में 2 बार चढ़ावा चोरी करता था। जिन 40 दिनों का रिकॉर्ड पुलिस ने खंगाला है उसमें से 5 दिन ऐसे भी रहे जब एक ही दिन में चढ़ावा चोरों ने 3-3 बार चोरी की।
1: सेकंड शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक होती थी और ये वो वक्त होता था जब कैश लेकर बाहर निकलते समय न सिर्फ निगरानी कम होती थी बल्कि इनके लिए कैश लेकर निकलना भी आसान हो जाता था।
0: पुलिस की जांच में ये सच सामने आने के बाद ही राम मंदिर ट्रस्ट ने चढ़ावे की गिनती अब सिर्फ एक ही शिफ्ट में करने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत अब सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चढ़ावे की गिनती शुरू कर दी गई है। तमाम खुलासों के बीच अयोध्या पुलिस रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव से भी पूछताछ की तैयारी में है। संतोष कुमार शर्मा, अयोध्या आज तक।
2: एक तरफ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर जांच चल रही है तो दूसरी ओर इस पर सियासत जबरदस्त तरीके से हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जब से राम मंदिर दर्शन करके लौटे हैं तब से वो हिंदुत्व का राग अलाप रहे हैं। बीजेपी की ओर से अरविंद केजरीवाल का भी एक पोस्टर जारी किया गया जिसमें अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया गया।
3: दिल्ली बीजेपी ने यह नया पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया गया है। इस पोस्टर को जारी करने के साथ ही बीजेपी ने लिखा है कि जो लोग भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण से खुश नहीं हैं, जिन्होंने मंदिरों और गुरुद्वारों के बाहर शराब की दुकानें खुलवाई, जिनकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही है, जो राम मंदिर की जगह अस्पताल बनवाना चाहते थे, जिन्होंने बजरंगबली का मजाक उड़ाया, जिनके शासन में इमामों को तो वेतन बांटा गया लेकिन पुजारियों को कभी कुछ नहीं दिया।
4: आज केजरीवाल जी को फिर राम याद आए हैं। ये राजनीतिक हिंदू हैं, आज फिर इनकी नौटंकी प्रारंभ हो गई है।
5: अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं और ये हम पहली बार नहीं बोल रहे। जब जब चुनाव आते हैं अरविंद केजरीवाल के जो कर्म होते हैं वो प्रूफ कर देते हैं कि वो चुनावी हिंदू हैं। आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसको लेके हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे। ये सब दिखाता है कि चूंकि वहां उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं इसलिए आज अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग चुनावी हिंदू बनकर हिंदू बनने का एक स्वांग रच रहा है।
3: दरअसल अरविंद केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़े हैं। एक तरफ उन्होंने घोषणा की है कि अमृतसर में वो माता सीता और लवकुश का मंदिर बनवाएंगे, दूसरी तरफ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर वो मुखर है।
6: सारे प्रयास किए जा रहे हैं चोरों को बचाने के, डकैतों को बचाने के, जमीनों के जो घोटाला हुआ उस पर तो जांच ही नहीं चल रही, मंदिर निर्माण में जो कमीशन खोरी हुई उस पर तो जांच ही नहीं चल रही।
3: लेकिन बीजेपी को ये रास नहीं आ रहा है। अब तेरा हिंदुत्व और मेरा हिंदुत्व की जंग शुरू हो गई है। आज तक ब्यूरो।
2: बात अब जम्मू कश्मीर की, जहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य का दर्जा मांगते हुए बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरा और साथ ही साथ ट्रंप का जिक्र करके उन्होंने तंज कसा है।
7: असेंबली से नहीं मिलेगा, ठीक, फिर हमने सड़कों पर बात करना शुरू किया, फिर कहते थे अब आपको जम्मू कश्मीर में बात करके ये मिलेगा नहीं, ठीक, अब हम जंतर मंतर जा रहे हैं, अब ये हमें कहते हैं ना जंतर मंतर से आपको रियासत का दर्जा नहीं मिलेगा। खुदारा फिर ये बीजेपी वाले बताएं ना मुझे, क्या ट्रंप के पास जाना पड़ेगा व्हाइट हाउस में अमेरिका रियासत का दर्जा लेने के लिए? अगर मुझे अपने मुल्क के राजधानी में जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा की बहाली नहीं मिलेगी तो कहिए, हम लोग टिकट करेंगे, हम अमेरिका जाके ट्रंप साहब के घर के बाहर एहतजाज करके वहां से स्टेटहुड मांग लेंगे, दे दीजिए।
2: बाद में पटना के बांकीपुर के चुनावी संग्राम की बांकीपुर में 30 जुलाई को उपचुनाव होना है, 3 अगस्त को रिजल्ट आएगा। मगर बांकीपुर के इस उपचुनाव में संग्राम में मुकाबला त्रिकोणीय है, सभी दल यहां पर अपनी जीत के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन सबकी निगाह इस सीट पर चुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर पर है।

0: कहने को तो बांकीपुर में उपचुनाव होना है, मगर यहाँ की सियासी सरगर्मियाँ जबरदस्त तरीके से बढ़ी हुई हैं। मुकाबला त्रिकोणीय है। बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने ताल ठोकी है। उनके सामने अब बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार और आरजेडी के प्रत्याशी रेखा गुप्ता हैं। मगर बीजेपी मान के चल रही है कि बांकीपुर में पीके की हार तय है।
1: अब उनके पार्टी से कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था ये बाय इलेक्शन में बांकीपुर से, अपने कच्छा पिन के उतर गए क्योंकि कोई उम्मीदवार ही नहीं आ रहा था। अब ये जाएंगे तो जवाब देंगे, जवाब तो लोग देख रहे हैं, झूठ की खेती बार बार नहीं चलता।
0: बीजेपी के इस भरोसे के पीछे वो आंकड़े हैं जिनमें 3 दशक से बांकीपुर पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है। यहाँ बड़ी तादाद में कायस्थ मतदाता हैं और वही बीजेपी की ताकत है, इसीलिए बीजेपी के सहयोगी दल भी भरोसे से भरे हुए हैं।
2: अरे उनको इस बात की समझ हो गई है कि यहाँ रहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि जनता एनडीए के साथ।
0: बांकीपुर में नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन है। कुल 11 प्रत्याशियों ने अब तक नामांकन दाखिल किया है, जिसमें लालू प्रसाद नाम के एक निर्दलीय प्रत्याशी भी है, मगर कांग्रेस ने अब तक अपने किसी प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा है। अलबत्ता कांग्रेस कह रही है कि बांकीपुर से इस बार बीजेपी हारेगी।
3: पहली बार वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है सम्राट जी के नेतृत्व में और उनकी परीक्षा हो रही है। एक तो पहले उन्होंने ऐसा प्रत्याशी बनाया जो जिसपे करप्शन के चार्जेस थे, जिसके पिताजी पे करप्शन के चार्जेस थे, फिर जिनको अभी बदला उन पे भी कई तरह की कंट्रोवर्सीज हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी।
0: बांकीपुर का रण दिलचस्प है। देखना होगा कि पहली बार चुनावी रण में उतरे पीके क्या बीजेपी के गढ़ को फतह कर पाएंगे। आज तक ब्यूरो।
4: अब आपको एक हैरान कर देने वाली तस्वीर दिखाते हैं, जहां सूरत में अचानक चलते चलते एक कार आग का गोला बन गई। चंद मिनटों ही में कार ये जलकर राख हो गई।
0: सड़क पर खड़ी एक कार धधक रही है। आग इतनी भयानक है कि इसे बुझाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। भयानक आग खौफनाक है। दमकल कर्मी इस पर पानी की बौछार कर रहे हैं, मगर आग भयानक है। काफी देर बाद आखिरकार कार की आग बुझाई गई, मगर तब तक कार पूरी तरह से राख हो चुकी थी। तस्वीरें सूरत की हैं। सूरत के वेसु इलाके में चलती कार में अचानक आग लगी। ये घटना ओमेगा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने बीआरटीएस बस स्टैंड के पास हुई, जिससे थोड़ी देर के लिए मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया था। अच्छी बात ये रही कि वक्त रहते कार में सवार लोग बाहर निकल आए थे, इसीलिए कोई हताहत नहीं हुआ। हाँ, कार जरूर राख हो गई। कार में आग किस वजह से लगी इसका पता भी नहीं चला है। संजय सिंह राठौड़, सूरत आज तक।
4: अब एक और हैरान करने वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं, और ये तस्वीर उत्तराखंड के कोटद्वार से आई है, जहां हाथियों का झुंड रिहायशी इलाके में आ गया। हाथियों का ये झुंड लोगों के घरों में भी जा घुसा।

0: जंगल में हाथियों को टहलते हुए आपने बहुत बार देखा होगा। पहली बार रिहायशी इलाके में हाथियों को टहलते हुए देखिए, देखिए कितने आराम से ये हाथी इस मकान में प्रवेश कर रहे हैं। सामने से आ रहे इस हाथी के साथ बाईं ओर से प्रवेश कर रहे इस दूसरे हाथी को भी देखिए। इन दोनों के साथ एक तीसरा हाथी भी है, ये हाथी का बच्चा है। ये तीनों हाथी इस घर में प्रवेश कर गए हैं। अब आगे की तस्वीरें देखिए, ये छोटा हाथी घर की छत तक पहुंच गया है। छत पर रखी पानी की टंकी से ये पानी पी रहा है। दूसरा हाथी यहाँ इस कमरे में प्रवेश कर गया। ये तीनों हाथी इस घर में लगातार चहलकदमी कर रहे हैं और हाथियों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो रही हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड में कोटद्वार के वार्ड नंबर 1 के ग्रास्टनगंज की हैं। बताया जा रहा है कि इन हाथियों ने 5 से 6 घरों में जमकर तोड़फोड़ की है। पीड़ितों का आरोप है कि उन्होंने बार बार वन विभाग को शिकायतें दी है मगर कार्रवाई नहीं हुई। अब लोग दहशत में हैं।
1: हाथी तो कभी कल तो 4-5 थे, अब तो 2 आदमी से क्या होगा। जरा स्टाफ बढ़ाओ,
2: यहाँ पे 35
1: स्टाफ बढ़ाओ, इसलिए स्टाफ के पास तुम टॉर्च दो, वो बंदूक दो, जिससे कि वो बंदूक वो हाथी भाग जाएंगे। नहीं तो हमको तो बहुत दिक्कत हो रही है। हम रात 3 बजे 3:30 बजे सोए।
3: परसों भी अंदर आया था हाथी, मतलब पूरा तोड़ के गया, वॉश बेसिन वगैरह, टंकी, मेरी खिड़की पूरी तोड़ दी उसने, पल्ले बाहर निकाल के रख दिए। तो मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बोला है कि आओ। तो सर एक बात मुझे समझ नहीं आती, अगर इनके फॉरेस्ट गार्ड आते हैं, जो भी यहाँ पे है वो चौकी पे वो आते हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास कुछ, उनको आके हम करें क्या? न उनके पास कोई एयर गन वगैरह है कि वो हाथी भगाएं। सर डंडे से तो हाथी नहीं भागेगा ना। अभी पिछली बार फॉरेस्ट गार्ड आया था तो वो डंडे से वो पीछे भाग रहा था हाथी के, उसको भगाने के लिए हाथी ने उसको ही दौड़ा दिया। उसका रविंदर नाम है भैया का, उनका ही फोन टूट गया।
0: लोग खौफ ज़दा हैं और मांग कर रहे हैं कि इन हाथियों से मुक्ति दिलाया जाए, कोई ऐसा कदम उठाया जाए कि हाथी रिहायशी इलाके में न आए। विकास, कोटद्वार, आज तक।
4: अब बात वियतनाम से, एक बड़े हादसे की। वियतनाम के फुकोक द्वीप के पास में भारतीय पर्यटकों से भरी एक टूरिस्ट बोट पलट गई। हादसे में 15 भारतीयों की मौत हो गई, 21 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। बोट पर उस समय कुल 36 लोग सवार थे, जिसमें 32 भारतीय और 4 क्रू मेंबर्स थे।
5: वियतनाम में छुट्टियों की तस्वीरें आखिर यादें बन गई हैं। समंदर का सफर मौत का सफर बन गया। परिवारों के लिए अब सिर्फ दर्द बचा है। वियतनाम के फुकवोक आइलैंड के पास एक टूरिस्ट बोट पलटी और देखते ही देखते गहरे पानी ने कई जिंदगियां निगल ली। जिस नाव में सवार होकर लोग नए अनुभवों की तलाश में निकले थे, वही नाव कई परिवारों के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा बन गई। वियतनाम से आई ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। समंदर की ऊंची लहरों के बीच पलटी हुई टूरिस्ट बोट और चारों तरफ मदद के लिए जूझते लोग। ये वही नाव थी जिसमें भारत से घूमने पहुंचे पर्यटक सवार थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटक और 4 क्रू मेंबर मौजूद थे। नाव होनमे रूट से अनथोई पोर्ट की तरफ जा रही थी, तभी फुकवोक आइलैंड के पास करीब 400 मीटर दूर अचानक हादसा हो गया और देखते ही देखते पूरी नाव समंदर में पलट गई और 15 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे की खबर मिलते ही भारत सरकार भी सक्रिय हो गई। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बताया कि हादसे के बाद हनोई स्थित एम्बेसी और होची मिन्ह सिटी स्थित कॉन्सुलेट में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। दूतावास ने कहा कि भारतीय पर्यटकों की जानकारी जुटाई जा रही है और हर संभव मदद दी जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हादसे पर दुख जताते हुए लिखा, वियतनाम के फुकवोक के पास भारतीय नागरिकों से जुड़े इस दर्दनाक हादसे से बेहद दुखी हूं। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया। पीएम मोदी ने कहा, वियतनाम में भारतीय नागरिकों से जुड़े नाव हादसे की खबर से बेहद दुखी हूं। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। भारतीय दूतावास और अधिकारी हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। हादसे में पीड़ित परिवारों में मातम है। केरल के मछलीपट्टनम में रहने वाले पीड़ित परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वियतनाम नाव हादसे में गेली जयलक्ष्मी की मौत की खबर के बाद परिवार में चीख पुकार मच गई। घर में मौजूद परिजन अब सिर्फ उस पल को याद कर रहे हैं जब एक सफर जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। वहीं केरल के ही रहने वाले एसी थॉमस और लोवेनी थॉमस की मौत की पुष्टि की गई है। केरल सरकार विदेश मंत्रालय के संपर्क में है ताकि मृतकों के पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाया जा सके। एक टूरिस्ट ट्रिप जो यादों का सफर बनने निकली थी वो अचानक मातम में बदल गई। समंदर की एक लहर ने कई परिवारों से उनके अपने छीन लिए। अब सवाल सिर्फ हादसे का नहीं, सवाल यह भी है कि आखिर ऐसी पर्यटक नावों की सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है। वियतनाम से आई इस त्रासदी ने एक बार फिर समंदर में सुरक्षा इंतजामों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
4: अब बात कनाडा के टोरंटो में हुई फायरिंग की। टोरंटो में एक स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान गोलीबारी से हड़कंप मचा। हमले में दो लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग इसमें घायल हुए हैं। पुलिस ने इसे एक्टिव शूटर केस बताया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है।
6: टोरंटो में सालसाउन सेंट क्लेयर फेस्टिवल में गोलियों की तड़ताहट, अफरा तफरी का माहौल, चीखते चिल्लाते लोग। तस्वीरें कनाडा के टोरंटो की हैं, जहां शनिवार शाम एक प्रसिद्ध स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से हड़कंप मच गया। मिड टाउन टोरंटो में आयोजित वार्षिक लैटिन सांस्कृतिक उत्सव सालसाउन सेंट क्लेयर के दौरान हुई इस फायरिंग के बाद मौके पर भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। टोरंटो पुलिस के मुताबिक गोलीबारी में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई जबकि चार लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने इलाके को तुरंत अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और लोगों से घटनास्थल से दूर रहने की अपील की गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक संदिग्ध हमलावर अभी फरार है। फिलहाल पुलिस फायरिंग के कारणों, हमलावर की पहचान और घटना के पीछे की वजहों की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़ी और जानकारी जल्द जारी की जाएगी। आज तक ब्यूरो।
4: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध इतना भीषण हो गया है कि एक हफ्ते के अंदर ईरान के कई शहरों में ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की गए हैं। अमेरिका ने ईरान के कई बंदरगाहों पर बम बरसाए जिसके जवाब में ईरान ने कतर, बहरीन समेत कई खाड़ी देशों में उसके मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचाया है।

0: टूटा युद्ध विराम, शुरू हो गया भयंकर घमासान। ईरान के कई शहरों पर अमेरिका के विनाशकारी प्रहार। ईरान ने कई खाड़ी देशों पर बरसाए बम। हॉर्मुज पर ईरान की तालाबंदी, कीमतों में फिर लगेगी आग। आखिर जिसका डर था वही हुआ। धीरे धीरे टूटता युद्ध विराम अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। एक के बाद एक मिसाइल छोड़ी जा रही है। कई शहरों में सायरन की आवाज गूंज रही है, जो हमलों का संदेश देने के साथ साथ युद्ध फिर से शुरू होने का ऐलान कर रही है। अमेरिकी मिसाइलों ने हफ्ते भर में तीसरी बार ईरान पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक किए। ड्रोन और मिसाइलों के जखीरे ने एक बार फिर तबाही का तांडव मचाना शुरू कर दिया है। अमेरिका का दावा है कि इस बार करीब 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इनमें मिसाइल और ड्रोन साइट, नेवी के ठिकाने, गोला बारूद भंडार, संचार नेटवर्क और तटीय निगरानी केंद्र शामिल हैं। जिन ईरानी शहरों को निशाना बनाया गया उनमें न्यूक्लियर सिटी बुशहर समेत असालुये, बंदर एतेयर, जास्क और चाबहार के सैन्य ठिकाने शामिल हैं। अमेरिका हॉर्मुज में लगातार हो रहे हमलों से गुस्से में है और उसने पहले ही ईरान को ताबड़तोड़ हमलों की चेतावनी दी थी। पिछले तीन दिनों में ईरान के 300 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। खैर, ईरान को भी जवाब देना ही था, लिहाजा उसने भी कई खाड़ी देशों में बने अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों के जरिए बम बरसाने शुरू कर दिए। कतर में अमेरिका के अलुदीद एयरबेस पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से हुए हमले में जंगी जहाजों के मेंटेनेंस और रिपेयर सेंटर के साथ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया है। कतर में ईरानी हमले को नाकाम करने के दौरान मलबा गिरने से 3 लोग घायल हो गए। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने भी मिसाइलों का मोर्चा मध्य पूर्व की ओर खोल दिया है। कतर के अलावा जॉर्डन, कुवैत, बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी ईरान ने निशाना बनाया है। साथ ही यूएई पर भी ईरान की ओर से मिसाइल दागी गई है। बहरीन में लगातार सायरन बज रहे हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी जा रही है। ईरान अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले करने के साथ साथ बयानों में भी आक्रामक होता जा रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई ने अपने पिता अली खामेनेई की मौत का बदला लेने का ऐलान कर दिया है, जिससे अमेरिका और ईरान के बीच घमासान और तेज होने की आशंका बढ़ गई है। अमेरिका के साथ बातों मुलाकातों के दौर में ईरान की ओर से अहम किरदार निभाने वाले मोहम्मद बागेर गालिबाफ के सुर भी तल्ख हो गए। उन्होंने लिखा कि एक तरफा समझौतों का दौर खत्म हो चुका है। हमने पहले ही कहा था, या तो अपना वादा निभाइए या फिर इसकी कीमत चुकाइए। अब हकीकत सामने है। गालिबाफ ने अपने पोस्ट के साथ समझौते की तस्वीर भी साझा की है, जिसमें हॉर्मुज को दोबारा खोलने और वहां व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी ईरान की बताई गई है। खैर, अमेरिका तो जो नुकसान ईरान का कर रहा है वो दुनिया देख ही रही है, लेकिन ईरान के जबरदस्त पलटवार से ट्रंप के बार बार किए जा रहे इन दावों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने ईरानी की पूरी सैन्य ताकत का खात्मा कर दिया है।
1: And I think the third regime is more reasonable, but we'll find out. But we've destroyed their, as you know, completely destroyed. 150. They had 159 ships. Every single ship is at the bottom of the sea. We've completely destroyed. They don't have one airplane. They don't have radar.
0: सीज़फ़ायर के दौरान ईरान ने अपने एंटी-मिसाइल सिस्टम को दुरुस्त किया और मिसाइल लॉन्चर्स को मजबूत किया। ईरान की यह तैयारी खाड़ी देशों पर किए गए हमलों में साफ दिखाई दे रही है। तांडव की इन तस्वीरों से इतना तो साफ है कि महायुद्ध पार्ट 2 और विनाशकारी होने जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
2: हॉर्मुज में हर कोई अपना नियंत्रण चाहता है। अमेरिका बिना किसी टोलबंदी के यहां से जहाजों की आवाजाही चाहता है, लेकिन ईरान के पास अमेरिका का सामना करने के लिए सबसे बड़ा हथियार है। तेल के इस खेल से हालात फिर से बिगड़ने लगे हैं, क्योंकि ईरान ने फिलहाल इसे बंद करने का ऐलान कर दिया है।

0: होर्मुज में हाहाकार से फिर बढ़ेगा घमासान। जहाजों पर बमबारी से बढ़ रहा कोहराम। होर्मुज को न खोलने का खामियाजा भुगतेगा तेहरान। क्या अमेरिका के सामने अपनी गलती मान रहा ईरान? होर्मुज की शांत लहरों में बमों की बारिश के बाद से एक बार फिर सुनामी दिखने लगी है। दो दिन में तीन जहाजों पर ईरान की बमबारी के बाद से सीज फायर की पूरी तस्वीर ही बदल गई है। एक बार फिर होर्मुज का पेच ही अमेरिका और ईरान के बीच फंस गया है और आशंका तो इस बात की लगातार बढ़ रही है कि तेल के खेल की वजह से ही महायुद्ध का पार्ट टू शुरू होने वाला है। ईरान ने होर्मुज से गुजर रहे इन तीन कमर्शियल जहाजों पर हमला किया था। इससे ट्रंप का पारा इतना चढ़ा कि दोनों ओर से हमलों की एक नई लहर से ईरान के कई शहरों के अलावा बहरीन और कतर तक में बर्बादी का मंजर दिखाई देने लगा। होर्मुज में इस हफ्ते जो हमले हुए हैं, क्या ईरान ने इसे अपनी गलती मानी है? CBS न्यूज ने यह दावा किया है। इसमें अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि ईरानी अफसरों ने निजी तौर पर ट्रंप के सलाहकारों से कहा कि होर्मुज में जहाजों पर अटैक गलती थी और ये हमले कट्टरपंथियों के एक ऐसे गुट ने किए जो बातचीत को नाकाम करना चाहते हैं। ईरान बेशक कितना ही कह ले कि होर्मुज में हमले एक गलती थे, लेकिन अमेरिका ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है और उसके खिलाफ हटाई गई तेल निर्यात की पाबंदियों को एक बार फिर लगा दिया है जो अगले हफ्ते से लागू कर दी जाएंगी। होर्मुज से शुरू हुई लड़ाई तेजी से खार्क तक पहुंच गई है। हफ्ते भर पहले ही अमेरिका ने यहां एयर स्ट्राइक की और ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया। ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा खार्क से ही जुड़ा है। जब से दोनों देशों के बीच जंग शुरू हुई है, खार्क को अमेरिका के कई हमले झेलने पड़े हैं। अब ये एक बार फिर से अमेरिका के निशाने पर आ गया है।
1: Which we can knock down. I would say in one day we knocked down every single bridge in Iran. There's not a thing they can do about it. Their electric manufacturing facilities, right? Their electric plants where they make their electricity there. We'll take them out. I don't want to do that, but if we have to, we'll take them out. They have desalinization plants. We'll take them out if we have to. I hate to do that. That's probably the one I would like not to do least. We attacked Kharg Island last night. We knocked out a piece. I said, don't touch the oil, because maybe we'll take over Kharg Island. You know, we may take over Kharg Island.
0: वैसे अमेरिका ने ईरान को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि ईरान कमर्शियल जहाजों के लिए होर्मुज को खोले और जहाजों पर हमले पूरी तरह बंद करे, साथ ही सार्वजनिक तौर पर इसका ऐलान करे। अमेरिका ने दो टूक चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने ऐसा नहीं किया तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। ये चेतावनी ऐसे वक्त पर दी गई है जब अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हवाई हमले कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
2: वक्त हो चला अब छोटे से ब्रेक का, कुछ और खबरों के साथ होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

पंजाब में आपस में हाथ आजमाते दिख रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजवर्धनी को हटाने पर अड़ी चन्नी गुट। रंधावा ने बताया कॉम्प्रोमाइज लीडर, आला कमान के दरबार में पहुंचा झगड़ा। उमर के ऑपरेशन लोटस वाले बयान पर बौखलाई बीजेपी, कहा दो सबूत या मांगो माफी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने लगाया था आरोप, हमारे विधायकों को खरीदने की हो रही है साजिश। बीजेपी ने प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के गिनाए 10 फायदे, कहा इंडो पैसिफिक में भारत बना बड़ी ताकत, वैश्विक साझेदारियों को मिली नई मजबूती, कांग्रेस का कटाक्ष। ट्विशा केस में एम्स ने सीबीआई को सौंपी दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सूत्रों से खबर फंदे के लिए इस्तेमाल, बेल्ट पर मिले स्किन टिश्यू, चोट के निशान से हुए मैच। अमेरिकी हमलों की नई किश्त के बीच में दुनिया के सामने आएंगे मुज्तबा खामेनेई, मंगलवार की सभा में करेंगे शिरकत, अटैक में मारे गए लोगों को देंगे श्रद्धांजलि, यूएस की तरफ से जारी है भयानक बमबारी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कई अहम खुलासे हुए। आरोपियों ने बताया कि वो चढ़ावा की चोरी सिर्फ इवनिंग शिफ्ट में किया करते थे। वहीं एक अहम खबर यह भी है कि ट्रस्ट ने सीईओ की नियुक्ति की कोशिशें तेज कर दी हैं। और तीसरी बड़ी खबर है कि टिन्नू यादव और सुभाष यादव से अयोध्या पुलिस ने पूछताछ की तैयारियां की हैं।

0: राम मंदिर के प्रांगण में मौजूद जिस कमरे में चढ़ावे की गिनती होती थी वहां दो पालियों में काउंटिंग की जाती थी। चढ़ावे की गिनती के लिए पहली शिफ्ट सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक होती थी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक की थी। चढ़ावा चोरी की वारदात दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक की शिफ्ट में ही हुई, यानी चोरी दूसरी पाली में हुई। दरअसल सभी आरोपी उसी 2 से 9 वाली शिफ्ट में काम करते थे। दरअसल शाम के शिफ्ट में चोरी करना आरोपियों के लिए ज्यादा आसान था। काउंटिंग के दूसरी शिफ्ट में चढ़ावा चोरी का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने 4 आरोपियों से पूछताछ की। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 40 दिन में 70 बार चोरी की गई। सबसे ज्यादा 50 से अधिक बार चोरी अविनाश शुक्ला ने ही की थी। वो एक दिन में 2 बार चढ़ावा चोरी करता था। जिन 40 दिनों का रिकॉर्ड पुलिस ने खंगाला है उसमें से 5 दिन ऐसे भी रहे जब एक ही दिन में चढ़ावा चोरों ने 3-3 बार चोरी की।
1: सेकंड शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक होती थी और ये वो वक्त होता था जब कैश लेकर बाहर निकलते समय न सिर्फ निगरानी कम होती थी बल्कि इनके लिए कैश लेकर निकलना भी आसान हो जाता था।
0: पुलिस की जांच में ये सच सामने आने के बाद ही राम मंदिर ट्रस्ट ने चढ़ावे की गिनती अब सिर्फ एक ही शिफ्ट में करने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत अब सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चढ़ावे की गिनती शुरू कर दी गई है। तमाम खुलासों के बीच अयोध्या पुलिस राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव से भी पूछताछ की तैयारी में है। संतोष कुमार शर्मा, अयोध्या आज तक।
2: एक तरफ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर जांच चल रही है तो दूसरी ओर इस पर सियासत जबरदस्त तरीके से हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जब से राम मंदिर दर्शन करके लौटे हैं तब से वो हिंदुत्व का राग अलाप रहे हैं। बीजेपी की ओर से अरविंद केजरीवाल का भी एक पोस्टर जारी किया गया जिसमें अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया गया।
3: दिल्ली बीजेपी ने यह नया पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया गया है। इस पोस्टर को जारी करने के साथ ही बीजेपी ने लिखा है कि जो लोग भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण से खुश नहीं हैं, जिन्होंने मंदिरों और गुरुद्वारों के बाहर शराब की दुकानें खुलवाई, जिनकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही है, जो राम मंदिर की जगह अस्पताल बनवाना चाहते थे, जिन्होंने बजरंग बली का मजाक उड़ाया, जिनके शासन में इमामों को तो वेतन बांटा गया लेकिन पुजारियों को कभी कुछ नहीं दिया।
4: आज केजरीवाल जी को फिर राम याद आए हैं। ये राजनीतिक हिंदू हैं, आज फिर इनकी नौटंकी प्रारंभ हो गई है।
5: अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं और ये हम पहली बार नहीं बोल रहे। जब जब चुनाव आते हैं अरविंद केजरीवाल के जो कर्म होते हैं वो प्रूफ कर देते हैं कि वो चुनावी हिंदू हैं। आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो राम मंदिर में